चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी, मोदी शाह की भूमिका की कराएंगे जांच, सरकारी गवाह बन जाएंगे अनिश कुमार। आज देश भर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने दिया पॉइंट वाइज जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है पीएम मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार, दीपके ने कसी कमर, कहा 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, कहा तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की जानकारी दें। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना।

0: देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर इस पहले बुलेटिन में और शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर को लेकर के एसआईआर पर हुए हंगामे के बीच, खुलासों के बीच अब चुनाव आयोग पर विपक्ष का दबाव सड़क से लेकर अदालत तक बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ कल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल देश भर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज प्रदर्शन करेंगे तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एसआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इन्हें एसआईआर के मुद्दे पर अब चुनाव आयुक्त और याद रहे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। बिहार में आरजेडी सभी जिला मुख्यालयों पर आज दोपहर 2 बजे ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करेगी। दिल्ली में कांग्रेस दोपहर 2:30 बजे निर्वाचन सदन के बाहर प्रदर्शन करेगी। यूथ कांग्रेस दोपहर 1 बजे जंतर मंतर की ओर मार्च करेगी तो पंजाब में सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस 11 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्यालय की ओर मार्च करेगी। मध्य प्रदेश में भी हंगामा होगा, दोपहर 12 बजे प्रदर्शन होगा तो वहीं लेफ्ट फ्रंट ने भी एसआईआर के खिलाफ पूरे सप्ताह भर के आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, एक तरफ सड़क पर हंगामा, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एसआईआर को लेकर के 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कोल्हापुर बेंच में दाखिल याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीधे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 14 आदेशों को चुनौती, हटाए गए वोटरों की बहाली की मांग की याचिका की गई है तो दूसरी याचिका में डोर टू डोर वेरिफिकेशन और वोटर डिलीशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। दोनों मामलों में अगले हफ्ते सुनवाई के लिए उल्लेख होने की भी संभावना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि पूरा विपक्ष लामबंद होके एक तरफ संसद में महाभियोग लाने की तैयारी, दूसरी तरफ सड़कों पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा तो अदालत में भी ज्ञानेश कुमार द्वारा लिए गए फैसलों को चुनौती दी जा रही है। यानी एसआईआर के मुद्दे पर अब तक जो सिर्फ आवाजें उठ रही थीं अब वो मुखर हो गई हैं। इस बीच सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस जनता पार्टी ने भी चेतावनी दी है, 48 घंटे में इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के खुलासा हुआ है, जो मीडिया रिपोर्ट में बातें सामने आई कि 3 सदस्य वाले चुनाव आयुक्तों के पैनल में सारे फैसले सिर्फ ज्ञानेश कुमार लिया करते थे। 2 चुनाव आयुक्तों की जो भी आपत्तियां थी उनको दरकिनार किया गया, सब कुछ सेंट्रलाइज किया गया, केंद्रीकरण किया गया। तो एसआईआर पर विपक्ष जो मोर्चा खोल रहा था दिल्ली के बाद बिहार बन जा तो आज देश भर में प्रदर्शन है। दिल्ली कांग्रेस का निर्वाचन सदन पर घेराव होगा। बिहार में आरजेडी सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन करेगी ज्ञानेश कुमार का दोपहर के 2 बजे। इसी के साथ दिल्ली कांग्रेस जो है निर्वाचन सदन के बाहर वहां घेराव करेगी दोपहर 2:30 बजे। आज दिन हंगामेदार रहने वाला है। दिल्ली यूथ कांग्रेस का जंतर मंतर की ओर दोपहर के 1 बजे मार्च होना है और इसी के साथ साथ पंजाब में कांग्रेस चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करेगी सुबह 11 बजे। यानी 10 बजे के बाद हंगामे भरा दिन होने वाला। उधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सीईसी के इस्तीफे को लेकर के प्रदर्शन करेगी। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लेफ्ट पार्टियां भी मोर्चा खोलेंगी। पूरे 1 सप्ताह एसआईआर प्रक्रिया और उसमें हुई अनियमितताओं के खिलाफ बिहार में आरजेडी सभी मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकेगी। कांग्रेस निर्वाचन सदन के बाहर 2:30 बजे जाएगी, उधर 11 बजे पंजाब में, उधर उसके बाद मध्य प्रदेश में। यानी राज्य राज्य शहर दर शहर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो ये वो आंदोलन की रूपरेखा है जो विपक्ष ने कल तय की। इसके पहले राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि जो ज्ञानेश कुमार ने किया है वो देशद्रोह है और इसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। और उसके बीच जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद हो रही है उनके लिए गए फैसलों और चुनाव आयोग में कथित मने। अब इसके अलावा ये देखिए, एक तरफ सड़क हंगामा है, कानूनी चुनौती कैसी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई है। कोल्हापुर बेंच में क्या कहा गया है, हटाए गए जो वोटर हैं जिनको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है उनको तत्काल बहाल कर दिया जाए। मुंबई बेंच में याचिका क्या गई है, एसआईआर की प्रक्रिया जो अभी है उस पर तुरंत रोक लगा दी जाए और एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए जो अनियमितताएं हुई हैं। मुंबई बेंच की याचिका में और क्या कहा गया है, डोर टू डोर वेरिफिकेशन जिस तरह से एसआईआर में हो रहा है उस पर सवाल उठाए गए और साथ ही वोटर डिलीशन, अचानक से जो लाखों करोड़ों वोटर डिलीट हुए देश भर में उन पर भी सवाल उठाया गया है। और कोल्हापुर बेंच में याचिका में क्या कहा गया है, सीईसी ने जो 14 आदेश दिए हैं फॉर्म नंबर 6 से लेकर के एडिशन डिलीशन, उन सब को चुनौती दी गई है और खासकर वो मतदाता जिनको अपने मताधिकार से वंचित किया गया एसआईआर प्रक्रिया में उसको लेकर के भी इस याचिका में चुनौती दी गई है। डोर टू डोर वेरिफिकेशन में जो अनियमितताओं के बारे में लगातार जानकारी आ रही थी, आखिरकार एसआईआर का वो मुद्दा जो अब तक सुखभुगाहट के रूप में था, चुनाव आयोग उसे खारिज कर देता था, अब वो जिन्न बाहर निकल चुका है बोतल से। तो चुनाव आयोग में मतभेद के बाद राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी ने इसी बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल पूछा, सलाह में चेतावनी भी दी। क्या कहा राहुल गांधी ने, बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते, क्यों 6-7-8 फेज में चुनाव होते हैं, क्यों चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लंबा खींचा जाता है, चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता। बार बार चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से गोलमोल जवाब दे करके महत्वपूर्ण सवालों को दरकिनार कर दिया जाता है, जो डेटा मांगा जाता है उस डेटा से वो किनारे हो जाता। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार अब सरकारी गवाह बन जाएं, लेकिन ज्ञानेश कुमार को सजा मिलेगी। एसआईआर के नाम पर जो कुछ हुआ है उसको लेकर के राहुल गांधी ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को चेतावनी दी है। यह भी कहा मोदी शाह की भी जांच करवाएंगे। राहुल गांधी की दो टूक कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर आखिर क्यों नहीं दिखे, क्योंकि सब कुछ मैंने चुनाव आयोग से किया गया। राहुल गांधी से पूछा गया कि जब वोट चोरी का आरोप वो काफी पहले से लगा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद 2027 के चुनाव को लेकर क्या स्टैंड लेंगे। तो इस बीच राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं और जिस तरह से मोर्चा खोला है उसका असर आज सड़कों पर हंगामे के रूप में दिखाई देगा।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है, आप डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वो चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Ganesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: Rahul Gandhi ke ye aarop us media

0: are both going to be investigated for what has been done. Without any doubt, both the Prime Minister and Amit Shah are at the top of this conspiracy, and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: तो राहुल कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है. ऐसा सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, सिर्फ उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे.
2: विपक्ष सीधे सीधे ये कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे थे. लेकिन ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने जब सब कुछ कहा तो उनसे सवाल नहीं पूछे गए. राहुल गांधी से पूछा गया कि वोट चोरी का आरोप तो बहुत पहले से लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद 2027 के चुनाव को लेकर अब वो क्या स्टैंड लेंगे? अगर बीजेपी 2029 में दोबारा जीतती है तब वो क्या करेंगे?
0: दिस चेन बिटवीन वोट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस, दिस इज अ सेक्रेट चेन. If you believe in the Indian Union, this is your religion. Let me repeat it. If you believe in the Indian Union, if you believe in that flag, then this is your religion. Because this is how India's people express their voice. So we are sitting in a very different place. And as I said, the information is available not only to us, to multiple actors. Opposition mein 100% agreement hai ki vote chori ho rahi hai aur vote chori ko rokna hai. Not 99%, everybody. Aur frankly, main aapko batau to BJP ke andar bhi log keh rahe hai. Right? So it is very clear that this is the single biggest issue in front of our democracy. We are going to cooperate. Hum opposition ke saath cooperate karenge. Hum ek saath unke saath kaam karenge. And our duty, our sacred duty, is to protect the constitution and the vote, which we are going to do.
2: तो एसआईआर में अनियमितताओं को लेकर के पूरे दिन हंगामा होगा. लगातार हम उसकी भी आपको अपडेट देते रहेंगे. रुक करते हैं अगली खबर का. बिहार में बाढ़ की त्रासदी के बाद किसान सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं. सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया है, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी 1 रुपया भी नहीं मिला है.
1: कटिहार, बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार. ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है. पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया.
3: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है. देखिए बारिश हो रही है इस समय. हम जब यहाँ पर हैं, जो रह रहकर बारिश हो रही है, बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं छत के ऊपर पन्नी. इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है, या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है. तो ये समस्या जो है वो सामने है.
1: खेत आज भी लबालब हैं. जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है.
3: सरकार सबको जो राहत का पैसा
4: नहीं है, मिला है.
3: पानी कम हुआ है काफी?
5: हाँ, पानी कम हुआ है काफी.
3: अभी भी घर सूखा नहीं है,
5: गीला है घर. तो
1: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं.
3: कोई लेकिन सरकारी मदद मिला है? कोई सरकारी पैसा
5: वही मिला है 7,000. 7,000 से क्यों होगा?
1: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है.
6: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह

0: कर रहे हैं डीएम साहब से कि जितना मेरा परिवार है, 400 घर है, जिसको जीआरसी अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जीआरसी की उपलब्ध की जाए।
1: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता यह है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के मालिक और बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। छपरा, बिहार, फसलें बर्बाद, रोते किसान। ये बाढ़ में तबाह हुए छपरा के दिलिया रहीमपुर पंचायत का हाल है।
2: इतना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियां ना काम होती है, क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है, और ये सारा चीज बहा के ले गया।
1: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है।
2: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। जो आ रहा है अपना टीआरपी बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
1: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
3: नेनुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
4: तो आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
3: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
1: बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां हैं, और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जैसे बाढ़ में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है।
5: जब ही हम मंत्री बने थे तब ही हम अपने सचिव को कहे जो पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, उस विभीषिका के को हम जानते हैं, तो जितने भी ऊंचे स्थान है और शिविर रखने का, बाढ़ राहत केंद्र और समुदाय किचन बनाने की व्यवस्था है, वो सब जगह चिन्हित कर लिए थे, और राहत सामग्री के लिए पोलोथीन शीट, जीआर की राशि, सूखा राशन सब के लिए हम लोगों ने पहले ही टेंडर कर दिए थे।
1: ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि सिर्फ दावों से बात नहीं बनने वाली है, सरकार को उन किसानों की सुध लेनी होगी जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसलें बोई और आज बाढ़ ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वो जाएं तो कहां जाएं?
6: बिहार में इस बार जो भयंकर त्रासदी बाढ़ के रूप में आई है, उसमें अगर केवल सरकारी आंकड़ों पर ही नजर रखें, नजर डालें, तो तकरीबन 51 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और तकरीबन 40% जो बिहार का हिस्सा है वो इस बार बाढ़ की चपेट में आया है, यानी कि 15 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और काफ़ी फसल का नुकसान हुआ है।
1: कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उधर यमुना एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस में आग लगने से 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर मान लेते तो यह हादसा नहीं होता।
1: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे। सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस में आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बात इस मामले में FIR करवाने वाले ने आज तक को बताई।
8: आग दौड़ी, उसमें आग लग गई, जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे तो इसने लोग निकल पाए तो आग ने विकराल रूप ले लिया। ओ इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, ओ बाहर नहीं निकल पाए। ओ
1: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
9: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
8: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
9: अच्छा,
8: लेकिन फिर हाँ, लेकिन अंधेरा इतना हो गया तो अन्ना को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर, जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो गैलरी में गिर गया, फिर उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
9: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
8: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं निकल रहा होगा, उसने रुका होगा, कोई दिक्कत नहीं।
9: ओ
8: बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या धुआं बदबू आ रही, क्या हो रहा। जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए। ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए लेकिन 9 लोग जल कर मारे गए।
10: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे,
11: बस चल रही थी या रुकी?
10: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था छोड़ के।
11: और उसके बाद बाकी सब लोग जो थे
10: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुम में मूर्ति पड़ी रहे, अपने आप पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चल रही थी।
11: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर ऐसे आग लगने की या फिर ऐसे कोई जलने की बदबू आ रही है?
10: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
11: ड्राइवर के पास से आग लगी,
12: वो बस छोड़ के भाग गया।
10: आगे से आग लगी है,
11: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था ऐसा,
10: बस हो रही,
11: अफरा तफरी मच गई थी पूरे बस।
1: तो इस मामले में हर कदम पर नियम और कानून की अनदेखी हुई। जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
7: IIT बॉम्बे में छात्र के सुसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार प्रोफेसर डुल्ला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है, तो सियासी पार्टियां भी अब IIT के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
13: IIT बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
14: IIT पवई के बाहर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने वाले के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको अंदर डाल दिया।
15: हम आंदोलन नहीं, आंदोलन करें, ये आप देखिए आवाज उठाने पर भी पाबंदी लग रही है। मोदी सरकार में ये हो रहा है कि आवाज उठाने पर भी पाबंदी। हम तो आकर शोक जताने के लिए खड़े हैं, हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही है सर।
13: उधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
16: जी बिल्कुल, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि IIT बॉम्बे में, मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये 3 बार पहले भी घटना ऐसी हुई है और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएस करण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
13: छात्र साहिल वाकोडे के माता पिता भी आईआईटी बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस बीच आज तक को एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आता है। इस बीच प्रोफेसर दुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास से बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर दुल्ला ने उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से साहिल ने सुसाइड किया।
12: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो,
16: किसने बोला है? किसने?
12: मेरे से बोला उसने।
16: किसने बोला? साहिल को किसने बोला? ये
12: ओ दुल्ला प्रोफेसर, ओ प्रॉपर्टी है ना उसका, क्या है वो डीन है ना वहाँ का, उसने उसको।
13: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और इनमें उन 3 छात्रों के बयान दर्ज किए जो कथित तौर पर साहिल वाकोडे के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
7: वक्त ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
17: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
18: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
19: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
20: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
17: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
21: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
22: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कर।
17: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
23: गणपति विसर्जन के पूजा की महिमा क्या है? अनंत चतुर्दशी की पूजा का विधान और इस दिन कैसे मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी, मोदी शाह की भूमिका की कराएंगे जांच, सरकारी गवाह बन जाएंगे अनिश कुमार। आज देश भर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने दिया पॉइंट वाइज जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है पीएम मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार, दीपके ने कसी कमर, कहा 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, कहा तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की जानकारी दें। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना।

0: स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से। यमुना बाजार इलाके में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा सवार यात्रियों पर बदमाशों ने अचानक चाकुओं से हमला किया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कश्मीरी गेट थाना पुलिस और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घटनास्थल से अहम सुराग भी जुटाए हैं। फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी है। पुलिस लूट समेत कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। यमुना बाजार का इलाका कश्मीरी गेट के पास ई रिक्शा पर सवार ये मुसाफिर जा रहे थे, उन पर अचानक बदमाश आते हैं, उन पर चाकुओं से हमला करते हैं। अब ये लूटपाट के इरादे से हुई है, वजह कुछ और है, इसकी जानकारी पुलिस जांच में जुटाएगी। हमारे सहयोगी हर्षित मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना इलाके के यमुना बाजार अंडरपास पर लूटपाट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस मौजूद है। और बता दें आपको कि गांधीनगर से खारी बावली की तरफ ई रिक्शा में 4 लोग जा रहे थे, जिनके संग यहीं पे लूटपाट की कोशिश करने की गई। और लूटपाट का जब विरोध किया गया तो हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। और बताया जा रहा है इसमें 3 लोगों को चाकू लगे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। और चलती फिरती ये व्यस्त जगह है जहां पर इस तरीके की वारदात को जब अंजाम दिया गया तो उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। हर्षित मिश्रा आज तक।
0: और रुक करते हैं अब उस खबर का जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष का दबाव सड़क से लेकर अदालत तक बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल आज देश भर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, मोर्चा खोलेंगे, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एसआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार में आरजेडी सभी जिला मुख्यालयों पर दोपहर 2 बजे ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करेगी। दिल्ली में कांग्रेस दोपहर 2:30 बजे निर्वाचन सदन के बाहर प्रदर्शन करेगी, जबकि यूथ कांग्रेस दोपहर 1 बजे जंतर मंतर की ओर मार्च करेगी। उधर पंजाब में भी सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस 11 बजे ईसीआई कार्यालय की ओर मार्च करेगी। तो मध्य प्रदेश में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, दोपहर 12 बजे प्रदर्शन होगा। लेफ्ट फ्रंट भी खुलकर सामने आ गया है। एसआईआर के खिलाफ पूरे 1 सप्ताह के आंदोलन की रूपरेखा का ऐलान कर दिया गया है। तो ये हो गई सड़क पर हंगामे की बात, यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष लामबंद। तो उधर महाराष्ट्र में एसआईआर को लेकर 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कोल्हापुर बेंच में दाखिल याचिका में सीईसी ज्ञानेश कुमार के 14 आदेशों को चुनौती और हटाए गए वोटरों की बहाली की मांग की गई है। दूसरी याचिका डोर टू डोर वेरिफिकेशन और वोटर डिलीशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। दोनों मामलों में अगले हफ्ते सुनवाई के लिए उल्लेख होने की भी संभावना है। उधर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल सलाह और चेतावनी दी।
2: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
3: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। आप डर डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
2: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
4: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
2: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वो चोरी है। एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
4: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके 2 जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
2: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है। अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
4: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन। आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Gyanesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Gyanesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
2: Rahul Gandhi ke ye aarop us media report ke baad lagaye gaye, jisme Chunav Aayog mein matbhed ke daave kiye gaye, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
4: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन विदाउट एनी डाउट। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह are at the top of this conspiracy and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
2: So Rahul keh rahe hain ki satta virodhi lehar loktantra ki ahem taakat hai. Aisa sare loktantrik deshon mein hota hai. Sirf Uttar Korea mein aisa nahi hota. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे।
0: राहुल गांधी से पूछा गया कि वोट चोरी का आरोप वो काफी पहले से लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद 2027 के चुनाव को लेकर वो क्या स्टैंड लेंगे? अगर बीजेपी 2029 में दोबारा जीत जाती है तब वो क्या करेंगे?
4: दिस चेन बिटवीन वोट, Constitution, laws and institutions. This is a sacred chain. If you believe in the Indian Union, this is your religion. Let me repeat it. If you believe in the Indian Union, if you believe in that flag, then this is your religion. Because this is how India's people express their voice. We are sitting in a very different place. And as I said, the information is available not only to us, to multiple actors. Opposition mein 100% agreement hai ki vote chori ho rahi hai aur vote chori ko rokna hai. Not 99%, everybody. Aur frankly, main aapko batau to BJP ke andar bhi log keh rahe hain. Right, so it is very clear that this is the single biggest issue in front of our democracy. We are going to cooperate. Hum opposition ke saath cooperate karenge. Hum ek saath unke saath kaam karenge. And our duty, our sacred duty, is to protect the constitution and the vote, which we are going to do.
0: राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजेपी ने पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, लेकिन उनकी खुद की उम्र 56 साल ही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है।
5: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है। उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में। भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती। जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है। उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं। मेरा विचार है राहुल गांधी जी, आप अपने अप्रूवर बन जाइए। कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए। तो एक बिंदु, एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है।
0: एनएसआईआर में अनियमितताओं के अब तक जो आरोप थे, जिस तरह से चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं, अब ये जिंद बाहर आया है। हंगामा लगातार जारी रहेगा, हम इस पर भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन मुंबई में गणपति विसर्जन को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर शहर में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुंबई पुलिस के 24,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। बीएमसी ने भी विसर्जन को लेकर बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। शहर में 67 प्राकृतिक विसर्जन स्थलों के साथ 278 जगहों पर 383 कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं। विसर्जन व्यवस्था संभालने के लिए 25,000 से ज्यादा बीएमसी कर्मचारी तैनात रहेंगे। वहीं लाइफगार्ड, एम्बुलेंस, मोटरबोट, फ्लडलाइट, सर्च लाइट की व्यवस्था की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए रिसेप्शन सेंटर, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन टावर भी बनाए गए हैं।
6: गणेश विसर्जन को लेकर के मुंबई पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त है। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं, वो रास्ता दिखाऊं जहां से मुंबई में जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, जिनमें लालबाग के राजा, चिंतामणि, तेजुका का राजा, गणेश गली, परेल का महाराजा, परेल का राजा, विघ्नहर्ता, लंबोदर, तमाम बड़े पंडालों की ऊंची ऊंची गणेश जी की प्रतिमाएं यहीं से होकर के सीधे गिरगांव चौपाटी में विसर्जन करने के लिए चले जाएंगे। आपको बताएं कि साउथ मुंबई का ये गिरगांव चौपाटी है जहां पर तमाम बड़ी ऊंची गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है और सारी जिम्मेदारी अच्छी व्यवस्था की इस समय मुंबई पुलिस के कंधों पर है। आपको बताएं कि 22,000 से ज्यादा मुंबई पुलिस के कर्मी पूरे मुंबई में विसर्जन के लिए तैनात होंगे। गिरगांव चौपाटी भी उसी में शामिल होता है। लगभग 38 से ज्यादा जो है डीसीपी लेवल, लगभग 66 से ज्यादा एसीपी लेवल, 6 ज्वाइंट कमिश्नर, 3,000 से ज्यादा सीनियर पुलिस कर्मी, 1,000 के आसपास तकरीबन है।
0: तो अगले बरस तो जल्दिया के उद्घोष के साथ आज बप्पा की विदाई हो जाएगी। और अब बात करेंगे कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड की, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर पुलिस ने दावा किया है कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनीत मिनोचा का ही बेटा है। पहले इस हत्याकांड में कारोबारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया है। एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या की साजिश क्यों रची, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में।
7: सुब्रत हमारी जांच दायरे में पहले ही से थे, तो आज उनको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया।
8: पत्नी की कोई भूमिका नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं पता था इस बारे में।
9: 20 दिन पहले कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या हुई थी और उस वक्त आरोप लगा था विनीत मिनोचा की बहू शालू पर। लेकिन अब इस हत्याकांड में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अब पता चला है कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड बहू नहीं बल्कि बेटा था। कानपुर पुलिस ने विनीत मिनोचा हत्याकांड में अब उनके बेटे सुब्रत को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुब्रत ही है। सुब्रत ने ही अपनी दुकान के पुराने नौकर के साथ ये साजिश रची थी। सुब्रत ने ही इस हत्याकांड में अपनी पत्नी को फंसाने का काम किया और सुब्रत के ही कहने पर आरोपी नौकर विशाल ने सुब्रत की पत्नी शालू का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने शालू को गिरफ्तार किया था। शालू तब से जेल में थी, लेकिन इधर पुलिस की जांच चल रही थी और अब पुलिस ने पूरा केस ही पलट कर रख दिया है। पता चला है कि हत्या बहू शालू ने नहीं बल्कि बेटे सुब्रत ने करवाई है।
7: सुब्रत हमारी जांच दायरे में पहले ही से थे। सुब्रत ने जिस प्रकार से अपनी पत्नी को और विशाल के द्वारा जो एविडेंस दी गई थी और जो घटनाक्रम था पूरा सही खुलासा हो गया था, तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें सुब्रत की भी भूमिका है। सुब्रत की हमने जो मोबाइल्स का डिटेल स्टडी करी, जो मोबाइल फ़ोन जो हत्या में उपयोग में लाया गया था विशाल द्वारा जो कातिल है, और उसकी वार्ता और सुब्रत की वार्ता से हमें लग गया था कि केवल मर्डर में ये मोबाइल फ़ोन यूज होता है और सबसे पहले कॉल जो है सुब्रत को होती है, 4 कॉल होती हैं। और इसके साथ साथ हमें सुब्रत के जो उधारी थी उसकी जानकारी मिल गई थी। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में कि सुब्रत ने घर का CCTV भी बंद करा था, सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा TV काम नहीं कर रहा है। सुब्रत को ये भी हमें जानकारी कि इनके पिताजी भी पार्टी करते थे, ये भी जानकारी में आया था कि ये पिता की और बेटे की अनबन थी, पटरी निभाती थी आपस में। और ये भी जानकारी मिली थी कि इनके जो पैसा इनको मिलता है वो पैसा बहुत कम मिलता है, इनकी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है।
9: लेकिन सवाल उठता है कि क्यों तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। ये दावे भी उस वक्त कानपुर पुलिस ने किए थे, लेकिन अब जब उनका बेटा इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ एक बेटे ने अपने ही पिता को मार डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है उनके पिता विनीत मिनोचा के कई औरतों के साथ अवैध संबंध थे। उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके न ले आए, और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा न हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उसके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे।
10: जिनमें से मुझे थोड़ा शक भी होता था कभी बार कि मतलब कहीं और कोई आना जाए और किसी और को ना ले आओ, ले आने का मतलब ब्याह पे या कोई और ना आ जाए कि गर्भवती है या ये है,
11: संपत्ति ना चली जाए। तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना है?
10: सब मेरे ऊपर
12: सब मिला करके कितना कर्जा होगा?
10: सब मिला करके लगभग 40 लाख के आसपास का खर्चा है।
12: उसके कितने महीने में कितनी किस्तें, कितने रुपए की किस्त जाती है?
10: महीने की लगभग 55-56 हज़ार रुपये की किस्त जाती है।
12: आपको आपके पिताजी खर्च के लिए हर महीने कितने पैसे देते थे?
10: 40,000 रुपये।
12: आप 40,000 रुपये खर्च के लिए देते थे, 55,000 रुपये किस्त हर महीने आपकी हो जाती थी।
10: जी सर।
12: तो आप उसको बढ़े हुए पैसे कहाँ से लाते थे?
10: सर नया लोन लेते थे लोन चुकाने के लिए, या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते थे उससे पैसा बढ़ते थे।
12: और क्या करते थे?
10: और सर कभी कुछ दुकान से माल पार करवा के।
12: माल पार कराने के मतलब?
10: मतलब माल चोरी करके।
12: किसके माध्यम से?
10: विशाल को ही देते थे।
12: अच्छा, विशाल दुकान के अंदर घुसता था या
10: हम बाहर पहुँचवा देते?
9: इसी वजह से सुब्रत मिनोचा ने अपने पिता की हत्या करवा दी और हत्यारा बना उनका ही पुराना नौकर, जिसे सुब्रत ही दुकान से दवाएं चुरा कर देता था और फिर वो उसे आगे मार्केट में बेचता था। लेकिन सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, आज तक के कैमरे पर उसने ये स्वीकार किया है। उसे बस अफसोस ये है कि पिता को चाकुओं से गोद कर मारा, क्योंकि डील तकिए से मुंह दबा कर मारने की थी।
13: क्यों मारा आपने अपने पिताजी को? यही मौका
14: सर, यही है, हमें पसंद नहीं था उनका किसी और लेडी के साथ रहना, लेकिन वो बड़े खुलेआम करता था, बड़े कैजुअल थे कि हम करते हैं उससे तुम्हारा मतलब नहीं है।
13: पैसों का भी मामला,
14: हम अपना कुछ मानते थे, पैसा की हम दे दो कुछ करना है या अपने एंजॉयमेंट।
13: अपनी बीवी पत्नी को
14: मना करते थे।
13: पत्नी को क्यों बताया?
14: उसका सर प्री प्लान नहीं था, लेकिन उसने नाम ले लिया तो हमने सोचा कि हम बच सकते हैं।
13: आपका प्लान था पत्नी को फंसाने का?
14: नहीं, वो मौके उसने नाम ले लिया, पहले हमने उससे एक दो बार विचारा था, लेकिन फिर मना कर दिया गया था,
13: बिल्कुल भूमिका
14: नहीं लेना है,
13: पत्नी की
14: कोई भूमिका नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं पता था इस बारे में।
13: कर्ज किस चीज का था आपके 20-30 लाख रुपए जो पुलिस ने बताया, यही वजह थी? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी आपके पास?
14: फाइनेंशियल नहीं सर, मैं
13: एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह, क्या आपको पछतावा है?
14: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया, मैं वैसे नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
13: अभी भी आप यही चाहते हैं कि उनका मरना जायज था या आपको इस चीज का मतलब?
14: बहुत पीड़ित थी इससे, उनके संबंध से, वो कहती थी चलो जो करना करो अब, लेकिन आके वो खुले हम ऐसे बताते थे।
0: रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या है गणपति विसर्जन के पूजा की महिमा, क्या है अनंत चतुर्दशी की पूजा का विधान, और इस दिन कैसे मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In India, there is a fundamental force called anti-incumbency that very quickly starts to resist any government. And it does not spare anybody. Indira Gandhi ji wins the Bangladesh war, is at the height of her popularity. And then suddenly, within a year or two, massive anti-incumbency, massive pressure. The same exact thing happens to leader after leader after leader. Happens to Congress leaders, happens to regional parties, but for some reason, it never happens to Mr. Narendra Modi, does not happen to Mr. Shah, does not happen to the BJP. Haryana swings from one party to another for 50 years. Suddenly anti-incumbency disappears. Maharashtra swings, suddenly it disappears. Uttar Pradesh swings. Sometimes Samajwadi, sometimes BSP, it disappears. Madhya Pradesh, it disappears. Gujarat, it disappears. And this has been a fundamental question for us.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी मोदी शाह की भूमिका की कराएंगे जांच, सरकारी गवाह बन जाएंगे अनिश कुमार। आज देश भर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने दिया पॉइंट वाइज जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है पीएम मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार, दीपके ने कसी कमर, कहा 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, कहा तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की जानकारी दें। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है और आज भगवान गणेश की स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे श्री गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के बारे में और अनंत चतुर्दशी के पर्व के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात को 11:06 तक, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 11:22 तक चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन के बारे में। गणेश चतुर्थी का, गणेश महोत्सव का पर्व क्या है और गणेश प्रतिमा के विसर्जन की महिमा क्या है? देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश चतुर्थी का एक लंबा पर्व मनाते हैं, जिसको गणेश महोत्सव कहा जाता है। भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और गणेश प्रतिमा का विसर्जन भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। कुल मिलाकर ये 9 जो भगवान गणेश से संबंधित हैं, इनको गणेश नवरात्रि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप गणपति की मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो भगवान गणेश सूक्ष्म रूप से वापस कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा है और इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। कुछ विशेष उपाय करके इस दिन जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी अनंत चतुर्दशी का जो दिन है, गणेश प्रतिमा के विसर्जन का जो दिन है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इस दिन पूजा उपासना दान करने का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आपने अपने घर में या मंदिर में गणेश महोत्सव में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है तो गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन का तरीका क्या है? प्रातः काल से उपवास अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको विसर्जन में जाना है या केवल फलाहार करें, फल ग्रहण करें, विसर्जन के पहले घर में स्थापित प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूर्वा ये जरूर अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करके उनकी प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाएं। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रख कर ले जाइएगा, और अगर प्रतिमा बड़ी है तो लोगों की सहायता से उठाकर ले जाइएगा। प्रतिमा को ले जाते समय भगवान गणेश को जो अक्षत अर्पित किए थे उस अक्षत को पूरे घर में बिखेर दीजिएगा, इससे सुख और समृद्धि बनी रहेगी। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के स्ट्रैप वाली घड़ी, चमड़े से बना हुआ पर्स पास में मत रखिएगा, और नंगे पैर मूर्ति का वहन कीजिएगा। नंगे पैर मूर्ति को ले जाकर जल में विसर्जित करिएगा। प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक के कागज पर बना हुआ चित्र ना तो स्थापित करें और ना इसका विसर्जन करें। मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करना और मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन करना सबसे ज्यादा बढ़िया है। विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश से कल्याण की और मंगल की प्रार्थना करिएगा कि आप अपनी कृपा हम सब के ऊपर बनाए रखिए। गणपति विसर्जन और अनंत चतुर्दशी पर बातें अभी बाकी हैं, आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये

जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, पारिवारिक जीवन का ध्यान दें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न

मेल लिखती हैं, इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1999 शाम के 6:55 लखनऊ। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रही हूँ, किस क्षेत्र में और कब तक मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रिया, आपकी कुंडली के हिसाब से आप रेलवे में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, ऐसे क्षेत्रों में अगर नौकरी की कोशिश करें तो इन क्षेत्रों में नौकरी मिलेगी। नौकरी का अच्छा समय चल रहा है, साल 2027 में नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो चतुर्दशी तिथि का एक महत्व तो ये है कि इस दिन गणपति प्रतिमा का विसर्जन होता है। और क्या महत्व है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर यानी आज मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक अनंत सूत्र या अनंता ये हाथ में बांधा जाता है और व्रत के पारायण के समय, व्रत के समापन के समय इसको खोल दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। पारायण में मीठी चीजें जैसे सिवैया या खीर खाई जाती हैं। आज के दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर अगर कोई व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो जीवन की तमाम विपत्तियों से, तमाम मुश्किलों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें, जीवन की तमाम कठिनाइयों से, तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक या धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन का आगमन होता रहेगा, संतान पक्ष पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा।

पारिवारिक तनाव हल होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब आपको बताते हैं एक बहुत विशेष उपाय के बारे में, जो अगर आप गणपति की प्रतिमा के विसर्जन के समय करें तो जीवन की तमाम समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। क्या उपाय है? आज एक भोजपत्र या एक नया पीला कागज ले लीजिए, अष्टगंध की स्याही या नई लाल स्याही की कलम भी ले लीजिए। भोज पत्र या पीले कागज पर अष्टगंध की स्याही से या लाल पेन से सबसे ऊपर स्वस्तिक बनाइए। इसके बाद स्वस्तिक के नीचे लिखिए ओम गं गणपतये नमः। इसके बाद क्रम से एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखिएगा। जब आप लिख रहे हो अपनी समस्याएं तो लिखावट में काट पीट मत करिएगा और कागज के पीछे कुछ मत लिखिएगा। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें और फिर गणेश मंत्र लिखें, ओम गं गणपतये नमः। सबसे आखिर में मंत्र लिखने के बाद फिर से एक स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद कागज को मोड़ करके रक्षा सूत्र से या मौली से बांध लें और इसको गणेश जी को समर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि जो जो समस्याएं मैंने लिखी हैं मेरे जीवन की, वो समस्याएं दूर हो जाएं। इसके बाद जब गणेश जी की मूर्ति विसर्जित करेंगे उसके साथ ये कागज भी विसर्जित कर दीजिएगा। आप देखेंगे जल्द से जल्द आपको तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने अपने घर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित ना की हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जहां गणेश जी के प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है, जिस नदी में या जिस तालाब में, जहां भी हो रहा है वहां जरूर जाएं और किसी भी गणपति प्रतिमा के चरण छू करके अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। उसके बाद मूर्ति का विसर्जन होने दें। अगर आप ऐसा करते हैं, विसर्जन के पहले गणपति के चरण स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।
राशि धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला।

रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, अभी धैर्य बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः पूजा में गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, क्यों? देखिए, पौराणिक कथा है कि भगवान गणेश ने अनलासुर के अत्याचार को नष्ट करने के लिए अनलासुर को निगल लिया था। उसको निगलने की वजह से उनकी पेट में जलन पैदा हुई और इस जलन को शांत करने के लिए ऋषियों ने उनको दूर्वा दिया ग्रहण करने के लिए, जिसको ग्रहण करने से उनके पेट की जलन शांत हो गई। तब से एक मान्यता चली आ रही है कि भगवान गणेश को नियमित रूप से दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, लाभकारी यात्रा के योग हैं। नंबर 6, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहिए। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।

शाम को 6 बजे से 7:30 तक इस समय में भगवान गणेश को पीला फूल अर्पित करिएगा। आपके जीवन में चली आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुशील कुमार जी ने हमें लिखा है, जबलपुर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। सुशील जी की जन्म तारीख है 17 जनवरी 1970। जन्म का समय सुबह के अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। जन्म स्थान है जबलपुर। सुशील जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और मेरा जीवन कब तक बेहतर होगा। सुशील जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगले साल मई के बाद कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू होगी और लगभग 1.5 साल में 2028 के अक्टूबर तक आप अपने अधिकतम कर्जों से छुटकारा पा जाएंगे। इस बार तो बच जाएंगे, लेकिन आगे कर्ज वर्ज लेने की कोशिश मत करिएगा वरना आगे आप फंसे रह सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लें। अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, शक्कर खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ गुलाब का एक फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा।

कुंभ राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, मन अच्छा रहेगा। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को, बेवजह की तनाव और चिंता परेशान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ कार्य मत करिए। और आज भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करिए, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

गुजरात के जूनागढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। घर के बाहर निकली एक 6 साल की बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया। तेंदुए के हमले की तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हो गई है। बच्ची घर के बाहर खेलने के लिए निकली थी कि तभी वहां घूम रहा एक तेंदुआ आता है, उसने बच्ची पर हमला किया और एक झटके में बच्ची को उठा करके लेके चला गया। बच्ची का शव बाद में खेत से बरामद किया गया। इस हादसे के बाद तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अभियान शुरू किया है। कुल मिलाकर 8 पिंजरे लगाए गए हैं, जिससे जगह जगह जहां पर तेंदुआ बच्ची को उठा कर ले गया उसे महज 200 मीटर की दूरी पर एक स्कूल भी है। यानी अभी भी खतरा तमाम बच्चों पर बना हुआ है जो उस इलाके में हैं। ये देखिए, ये सीसीटीवी की तस्वीर है। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और अचानक तेंदुआ आता है। ये देखिए, ये बच्ची यहाँ खेल रही है और तेंदुआ अचानक से आता है। इसके पहले बच्ची भागती, उसको भागने का भी मौका नहीं मिला, तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। 6 साल की मासूम बच्ची थी, वहां खेल रही थी। और ये जूनागढ़ का इलाका, आपको बता दें जूनागढ़ इसी के आसपास जहाँ तक तो ये इलाके हैं, ये वन क्षेत्र भी है। और तेंदुए का ये आतंक देखने को मिला। आप सोचिए कि जहाँ पर ये बच्ची थी उसी के पास एक स्कूल भी है और ऐसे में वहाँ कई सारे जो बच्चे हैं अब उनके जीवन पर भी खतरा है। जो वन विभाग की जो टीम है उसने बाड़े लगा दिए हैं इस तेंदुए को पकड़ने के लिए, इसकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन इसके पहले बच्ची संभल पाती, देखिए सीसीटीवी तस्वीर है, तेंदुआ आता उस पर हमला करता है और उसके बाद उसे उठा ले जाता है। इस बच्ची का शव पास के खेत में बरामद हुआ। ये वो बच्ची की तस्वीर है, वो मासूम जो अपने घर से बाहर निकली थी खेलने के लिए और उसे नहीं पता था कि पल भर में क्या हो जाएगा। अचानक एक तेंदुआ उस इलाके में आता है, हमला करता है। यानी तेंदुआ घात लगा करके उस इलाके में बैठा था और जैसे उसने बच्ची को देखा, ये देखिए ये दूसरे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है, तेंदुआ आता है, बहुत धीमी चाल से चल रहा है, घात लगाकर बैठ रहा है। यानी उसने संभवतः देख लिया था इस बच्ची को और वो घात लगाकर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ इस बच्ची की तस्वीर आप देख रहे हैं जो अपने घर के बाहर निकली थी, देखिए कितनी धीमी चाल से वो चल रहा है। संभवतः उसने देखा था इस इलाके को और वो घात लगाने की तैयारी में। और दूसरी तरफ वो तस्वीरें आपने पहले देखी कि जो बच्ची वहां पर अपने घर से दौड़ के बाहर निकलती है और एकदम रफ्तार से अचानक तेंदुआ आता और झपट पड़ता है। घात लगा के दिख रहा है वो तेंदुआ। जूनागढ़ का इलाका, ये वन क्षेत्र आसपास बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिए पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं, इसमें बच्ची अपने घर से अचानक से निकलती है। ये देखिए बच्ची चलकर जा रही है और अचानक तेजी से आता है, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे घात लगा के बैठा हुआ था, दौड़ के आता है, बच्ची पर हमला करता है और उसके बाद तुरंत उसे उठा ले जाता है। ये 6 साल की वो मासूम है। और तीसरी वो तस्वीर जब घात लगाते हुए तेंदुआ दिखाई दे रहा है। और आइए अब देखते हैं नॉन स्टॉप 100।

0: वोट चोरी पर सियासी संग्राम तेज हो चुका है। राहुल गांधी का पीएम मोदी, अमित शाह और सीसी ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, वोट चोरी से कानून चोरी तक पहुंचा मामला, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी उठाए सवाल। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई। राहुल गांधी ने कहा अप्रूवर बनकर वो सच को सामने लाएं। वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा राहुल गांधी का दावा पूरी तरह बेबुनियाद है। एसआईआर विवाद को लेकर के सियासी घमासान मचा। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाभियोग की तैयारी, ड्राफ्ट तैयार करा रहा है इंडिया ब्लॉक। बिहार में आरजेडी का भी बड़ा प्रदर्शन आज है। सभी जिला मुख्यालयों पर सीसी ज्ञानेश कुमार के पुतले फूके जाने का ऐलान किया गया है। विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने फिर सफाई देते हुए एसीआई नेट को बताया विकेंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया है कि वैधानिक काम संबंधित फील्ड अधिकारी ही करते हैं, मुख्यालय से हस्तक्षेप नहीं होता है। 29 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होने वाली है। एसआईआर विवाद और सीसी के खिलाफ आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने सीसी पर हमला बोलते हुए कहा कि आरोप अगर सही है तो इस्तीफा दे और आपराधिक कार्यवाही का सामना करे ज्ञानेश कुमार। हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा सीसी अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते, आयोग बहुमत या सहमति से निर्णय करता है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीसी से इस्तीफा मांगा, बोले मतदाताओं के अधिकार और वोट की पवित्रता से समझौता हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि सीसी पर आरोप गंभीर, उन्हें खुद इस्तीफा देकर पद छोड़ देना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुबह उठते ही आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर के सियासी घमासान तेज हो चुका है। जमुई के बाद समस्तीपुर में भी छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। जमुई के बाद बिहार के कई जिलों में महिलाओं से बदसलूकी के आरोप, तेजस्वी यादव ने तमाम विपक्षी नेताओं के साथ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अब बेहद खराब है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव ने सभी डीएम और एसपी के साथ बैठक बुला करके गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। चिराग पासवान ने महिला सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज अपराध के बाद तुरंत कार्यवाही होती है, तेजस्वी अपने पिता के शासनकाल को याद करें। रामकृपाल यादव का विपक्ष पर पलटवार, बोले बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठीक है, विपक्ष घटनाओं पर राजनीति कर रहा है। मुकेश सैनी ने बिहार की घटनाओं को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, बोले सरकार को महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने महिलाओं से बदसलूकी के वीडियो पर जताई नाराजगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जमुई पीड़िता के मां ने सरकार की कार्रवाई पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ किसी और बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव का पीडीए रथ लखनऊ से निकला। एसपी प्रमुख ने रायबरेली से अपना राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा से यूपी की सियासत गरमाई, बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा एसपी ने पूरे प्रदेश में अभियान की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब की वोट का बुलडोजर चलेगा और इनको हमेशा के लिए धराशायी कर देगा। यूपी के मंत्री संदीप सिंह का अखिलेश यादव पर हमला, उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए लोधी समाज की याद नहीं आती, सत्ता से बाहर होते पिछड़ों की राजनीति शुरू कर देते अखिलेश। अखिलेश के पीडीए रथ पर सियासी घमासान मचा। रायबरेली में अखिलेश के अभियान पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा पिछड़ा वर्ग एनडीए के साथ है, 2027 में जनता जवाब देगी। यूपीआई पर एमडीआर को लेकर सरकार का फैसला, ग्राहकों पर चार्ज का बोझ नहीं डालने की तैयारी। यूपीआई एमडीआर पर सरकार और आईबीए मिलकर बनाएंगे व्यवस्था, दुकानदारों से ग्राहकों पर लागत न डालने की अपील की गई है। 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआई भुगतान पर एमडीआर, सरकार ने कहा ग्राहकों से अतिरिक्त पैसा न लिया जाए। एनपीसीआई सीईओ का दावा, यूपी के करीब 96% लेन देन पर एमडीआर का असर नहीं पड़ेगा, 75% वैल्यू मुफ्त रहेगी। यूपीआई चार्ज पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, सांसद प्रवीण चक्रवर्ती बोले आप लोगों पर बोझ डालने का विरोध करेंगे। दिल्ली एसआईआर में आडवाणी, धनखड़ और जयशंकर समेत प्रमुख मतदाताओं का वेरिफिकेशन पूरा हुआ, अंतिम सूची में नाम शामिल करने की तैयारी। दिल्ली एसआईआर पर इसी की सफाई, नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं है, सुनवाई और सत्यापन के बाद ही अंतिम मतदाता सूची में होगा फैसला। तमिलनाडु के चर्चित जेम वीरोमणी पोस्को केस में बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही हुई है। 2024 की शिकायत पर निष्क्रियता को लेकर 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पद से हटाए गए। वीरमणि केस में जांच भी तेज हुई है। पॉक्सो कोर्ट ने शांति और उनके पति महेंद्र सिम्हन को 3 दिन के पुलिस हिरासत में पूछताछ की मंजूरी दी। वीरमणि केस पर एमके स्टालिन का बयान, बोले अपराध में शामिल या आरोपी को बचाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून से नहीं बचेगा। चिली में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। 4 इलाकों में बाढ़ और नदी उफान पर है। 74 घरों को नुकसान पहुंचा। हजारों लोग बिजली संकट में है। चिली में तूफानी मौसम से बिगड़े हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ने पर कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। उड़ीसा के कंधमाल में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। कलिंगा घाटी में भूस्खलन से NH 157 पर यातायात पूरी तरह बंद है। समस्तीपुर में बारिश के बीच स्कूल परिसर में विशाल बरगद का पेड़ गिर गया। 2 छात्राओं की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। पुरुलिया में भारी बारिश से कई इलाकों का संपर्क बाधित हुआ। प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगा दी है। उदयपुर में मशहूर गणपति मन्नत वाले राजा का भव्य श्रृंगार बापा को धारण कराए गए। 2,51,00,000 रुपए के नोटों से बनी अनोखी आंगन। श्रृंगार में 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया। इस सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अकोला में कलाकार की अनोखी भक्ति ने दिल जीता। 35,000 मोतियों से बनाई बप्पा की सुंदर प्रतिमा। दिल्ली में गणपति बप्पा की विदाई की तैयारी। प्रतिमा विसर्जन के लिए जगह जगह कृत्रिम घाट तालाब बनाए गए। दक्षिण भारत में भी दिख रहे गणपति विसर्जन का रंग। तेलंगाना के वारंगल में दी जा रही बापा को विदाई। गुरुग्राम में सीनियर सिटीजन के सुरक्षित जीवन पर लामोज ग्रुप की पहल। ग्रेटिट्यूड 84 में स्वास्थ्य और सुविधाओं पर जोर। गणेशोत्सव को लेकर के आगरमालवा में विशेष उत्साह। उत्सव में 10 दिनों तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। पुंछ में युवाओं के लिए काउंसलिंग सेशन। स्टार्टअप आइडिया बिजनेस अवसरों पर चर्चा हुई। दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग पर राष्ट्रीय सम्मेलन। एमआरआई की मांगों पर सरकार फास्ट ट्रैक सुधारों पर करेगी विचार। आईपी ज्वाइंट सेक्रेटरी जोजी जॉन के खिलाफ यौन शोषण धोखाधड़ी के आरोपों में एफआईआर दर्ज। शिकायतकर्ता और वकीलों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अमरोहा में महिला से दुष्कर्म के आरोप में दरोगा हेड कांस्टेबल सस्पेंड। बर्खास्तगी का प्रोसेस शुरू हुआ। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जूनागढ़ में 5 साल के बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया। खेत से शव बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज सामने आने से गांव में दहशत का माहौल है। गुरुग्राम में फिर सामने आया खौफनाक रोड रेज। गोल्फ कोर्स के रोड पर मां बेटी की कार में मारी टक्कर। लोहे की रॉड से किया हमला। 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। सहरसा में आपदा प्रबंधन मंत्री ने किया दावा। सामुदायिक किचन में अब तक 2 करोड़ से भी अधिक बाढ़ पीड़ितों ने किया भोजन। मुजफ्फरपुर में नहाते समय महिला का वीडियो बनाया। वायरल करने की धमकी देकर 3 साल तक यौन शोषण का आरोप है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भिवंडी में 3 सवारियों की क्षमता वाली ऑटो में 17 स्कूली बच्चों को ठूस कर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। बलरामपुर में 7 साल की बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। डीजे मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। खरगोन में गणेश पंडाल में गरबा कराने को लेकर एक समुदाय के 2 गुटों में खूनी संघर्ष। पथराव से 3 लोग घायल। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूरत में 2 लग्जरी बसों की टक्कर। 2 बसों में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई। बाल टला बड़ा हादसा। अलवर में व्यापारी से तमंचे की नोक पर बदमाशों ने की लूट। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश। 1,60,000 रुपए लूट कर बदमाश हुए फरार। नागपुर में 2 परिवार के बच्चों के बीच विवाद ने लिया हिंसक मोड़। बच्चों के माता पिता आपस में भिड़े। लोहे की रॉड से हत्या। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पैसेंजर बस में लगी आग। 14 यात्री सवार थे सभी सुरक्षित। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजकोट के मोरबी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों की जान चली गई। सवाई माधोपुर में एक होटल परिसर में लेपर्ड घुस गया। होटल के सीसीटीवी कैमरे में लेपर्ड की तस्वीरें और पूरी गतिविधियां कैद थी। अहमदाबाद में अमेरिकी लोगों को ठगने वाला कॉल सेंटर पकड़ा गया। बैंक वकील की फर्जी पहचान बताकर 200 से अधिक लोगों को ठगा। 2 युवतियों समेत 7 गिरफ्तार। बरनाला में युवक ने जहरीला पदार्थ सेवन कर जान देने की कोशिश की। पुलिसकर्मी पर रिपोर्ट के बदले 5 से 10,000 रुपए मांगने के आरोप। इंदौर में खाना ठंडा होने पर डिलीवरी बॉय से मारपीट। शराब के नशे में विवाद का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में चारा लेने निकले 2 मासूम भाई। पटाखों के कचरे में धमाका हुआ। छोटा भाई 4 दिन से वेंटिलेटर पर। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। जालौन में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगी। 9 की मौत। उरई के हाजिम खान ने जान पर खेलकर बचाई 13 से 14 यात्रियों की जान। फरीदाबाद में 30 से 40 युवकों का उत्पात। वर्कशॉप पर पथराव। लाठी डंडों से हमला। पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। सीसीटीवी सामने आया। पुलिस की कार्रवाई। वेलकम फिल्म एक्टर मुश्ताक खान का निधन हो गया है। 56 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। 5 साल से कैंसर से पीड़ित थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की मच अवेटेड फिल्म द विवान आज रिलीज होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। आज से थिएटर्स में आ रही है महाकाव्य श्री रामायण कथा। अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी है फिल्म। एवेंजर्स एंडगेम एंड गोर भी आज दोबारा बड़े पर्दे पर लौट रही है। दिसंबर में डूम्स डे के पहले मार्वल फैंस के लिए शानदार तोहफा। एक बार फिर साथ आई इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की जोड़ी। फिल्म गन मास्टर G9 का पहला गाना अफसाना बनाया आपने रिलीज किया गया। यूक्रेन से शांति समझौते पर रूसी सरकार का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन में अस्थायी सीज फायर नहीं, स्थायी शांति समझौता चाहता है रूस। काला सागर की सुरक्षा को लेकर के न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच मुलाकात हुई। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का बड़ा बयान। कहा दिसंबर में अमेरिका में होने वाली G20 बैठक में रूसी राष्ट्रपति को बुलाने से यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता जारी रखने को मिल सकता है बढ़ावा। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव पर रूस का बड़ा हमला। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी डीजल निर्यात पर संभावित रोक को लेकर जताई चिंता। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को दी सावधानी बरतने की चेतावनी। ओमान के तट पर कोयला ले जा रहा है जहाज एमवी केपताओ पर हुआ ईरानी मिसाइल हमला। परमाणु हथियारों पर उत्तर कोरियाई सरकार का बड़ा बयान। कहा उत्तर कोरिया को मिला परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा नहीं बदला जा सकता। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हवाई हमला। यूएन महासभा में अफ्रीकी नेताओं ने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग दोहराई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार सर एक दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
4: क्या चीज है
3: वायरल है चाहिए
5: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना रहा है
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: ओ नादान परिंदे बैठ
6: बैठ बैठ
5: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: Actually, sir, आपकी बेस्ट थी.
2: I like this only. तेरा प्यार प्यार प्यार.
3: एक दो विश्राम.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
3: पापा,
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ, तू
6: अभी तो डिस्चार्ज हुआ यार।
7: ओले बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
11: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: यार लोन भूल गया मैडी।
18: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
19: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
17: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
19: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
20: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन। There's nothing small about it.
17: Ujjivan, nothing small about us.
21: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
22: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
21: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
23: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
7: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन विदाउट एनी डाउट। Both the Prime Minister and Amit Shah are at the top of this conspiracy and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: In association with
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बार तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: कैची है
0: वायरल है थैंक यू।
2: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता।
5: नो सर,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: उनादान परिंदे बैठ
1: बैठ बैठ
2: सर, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: Die Wahl. Ekdam sorry. Fuck!
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
3: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.
4: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी. पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने. भीम ऐप से करो पे. इट्स द माही वे.
5: पापा
6: सॉरी यार गलती हो गई है. ये चोट खर्चा वर्चा.
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा.
6: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया
6: है. हां ओ ला भाई मेरा बैट. वो अभी तो ठीक हुआ. तू
7: बिलोट चार्ज हुआ यार.
8: ओ ला बैट किसका है.
9: टाटा एआईजी है तो भरोसा है.
10: और भाई कहां गए थे घूमने.
11: जीके मैक्स.
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है.
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
13: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट.
15: जेके मैक्स.
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
17: जेके मैक्स पेंट्स.
16: जेके मैक्स पेंट्स. खुशियों के रंग.
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर. मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर. बेबाक है मेरा सिग्नेचर. सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
19: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है.
20: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
19: अब मैं आराम से चल पाता हूँ. कपीवा डायबिटीज जूस.
21: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
22: In India, there is a fundamental force called anti-incumbency that very quickly starts to resist any government. And it does not spare anybody. Indira Gandhi ji wins the Bangladesh war, is at the height of her popularity, and then suddenly, within a year or two, massive anti-incumbency, massive pressure. The same exact thing happens to leader after leader after leader. Happens to Congress leaders, happens to regional parties, but for some reason, it never happens to Mr. Narendra Modi, does not happen to Mr. Shah, does not happen to the BJP. Haryana swings from one party to another. For 50 years, suddenly anti-incumbency disappears. Maharashtra swings, suddenly it disappears. Uttar Pradesh swings, sometimes Samajwadi, sometimes BSP, it disappears. Madhya Pradesh, it disappears. Gujarat, it disappears. And this has been a fundamental question for us.
23: We are in a democracy. हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है. डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए. और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं. फुल स्टॉप.
24: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है. इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी. अब वो विरोध कब प्रकट किया उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है.
25: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान, महाभियोग की तैयारी। राहुल गांधी बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे, बीजेपी बोली आयोग में मतभेद नहीं। चिंतन शिविर में पीएम मोदी का मंत्रियों को मंत्र, जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर जोर, कहा मंत्रालयों की कमियां और चुनौतियां पहचान कर एक्शन प्लान बनाए। यूपी में मिशन 2027 पर सियासी संग्राम तेज, गोरखपुर में बोले सीएम गजनवी ने सनातन को चोट पहुंचाया, पीडीए यात्रा से अखिलेश का पलटवार, कहा वोट का बुलडोजर चलेगा। दिल्ली के यमुना बाजार में मर्डर से हड़कंप, ई रिक्शा सवारों पर चाकू से हुआ हमला, एक की मौत, दो घायल, हमलावर फरार, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण पर जोरदार विरोध, कई देशों के डिप्लोमेट्स ने भाषण के बीच छोड़ा हॉल, वॉकआउट से भड़के नेतन्याहू, कोई और कायर है तो बाहर चला जाए।

0: आपके साथ पूजा शर्मा, सुबह के 8 बज चुके हैं। बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों की, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की झलकियों पर नजर डालते हैं। निर्वाचन आयोग के खिलाफ आर पार के मूड में विपक्ष नजर आ रहा है, जगह जगह पर विरोध इसका किया जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी की चेतावनी के बाद सियासी तकरार अब बढ़ गई है। बात दिल्ली में बेखौफ बदमाशों की भी करेंगे। सरेआम हत्या हो जा रही है दिल्ली के कालकाजी गैंगरेप में, पीड़िता की जुबानी भी आपको बताएंगे। वहीं खबर जूनागढ़ में तेंदुए के अटैक की भी बताएंगे। संबल में नया विवाद क्या है इसकी भी करेंगे बात। वहीं गणपति अपने गांव चले, बप्पा के विसर्जन की खबरें भी आपको दिखाएंगे और दुनियादारी की खबरें भी होंगी। सऊदी में अब फ्रेंच आर्मी उतरेगी, डिटेल के साथ आपको इस खबर पर भी बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, आतंकवाद के सवाल पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चुप्पी साध ली है। दरअसल न्यूयॉर्क में पत्रकार के सवाल पर शहबाज शरीफ बिना जवाब दिए वहां से निकल गए। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी पीएम से पत्रकार ने सवाल पूछा कि कब तक वो आतंकवादियों को पनाह देंगे, और उसी पर शहबाज शरीफ ने चुप्पी साध ली और वहां से वो निकलते हुए नजर आए। न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ थे और बिना जवाब दिए वो वहां से निकल गए जब न्यूयॉर्क में पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा।
1: Prime Minister, when will you stop harboring terrorists?
2: U.S. and Iraq. You can have a
1: listen. Prime Minister, when will you stop harboring terrorists?
2: U.S. and Iraq. You can have a listen.
0: शहबाज शरीफ बिना जवाब दिए निकल गए। न्यूयॉर्क के एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछा कि कब तक वो आतंकवादियों को पनाह देते रहेंगे, और प्रणय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, जो नया वीडियो सामने आया है, जब न्यूयॉर्क में पत्रकार ने सवाल पूछा है तो बिल्कुल चुप्पी साधते हुए वहां से निकल गए हैं शहबाज शरीफ, इस चुप्पी का इशारा क्या समझा जाए?
3: देखिए, ये चुप्पी बयां करती है कि शहबाज शरीफ के हाथ से बाहर की ये चीज है, क्योंकि ये सवाल कई बार दुनिया के अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से पूछा जाता रहा है, और हर बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की तरफ से जवाब कुछ इसी तरीके और इसी अंदाज के अंदर सामने आया है पूजा, जिसके अंदर वो एक चुप्पी है, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान वो जगह है जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा यूएन सैंक्शन टेररिस्ट रहते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की सरकार, भारत के नेता और कई नेता पाकिस्तान को घेरते रहे हैं, ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कब करेगा। पत्रकारों की तरफ से भी ये सवाल कई बार उनसे पूछे जाते रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो सत्ता है उसमें जो सत्ता के वास्तविक सूत्र हैं वो पाकिस्तान की सेना के हाथ में होते हैं। कई सबूत कई बार सामने आए हैं कि किस तरीके से, चाहे वो मुंबई का आतंकी हमला हो 2008 का, या उसके बाद उड़ी का, या पठानकोट का, या पहलगाम तक का आतंकी हमलों के अंदर उन आतंकी ताकतों के पीछे जो उनके पनाहगार हैं वो सारे वो सेना से जुड़े हुए सूत्र हैं, पाकिस्तान की आईएसआई, वो सारी जो ताकतें हैं जो शायद पाकिस्तान की सरकार के लिए भी उनसे बाहर की चीजें, और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान का जो निजाम है या पाकिस्तान की सरकार, उसका प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब शायद नहीं दे सकता कि वो कार्यवाही आखिर कब होगी।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के यूएन स्पीच की। दरअसल यूएन में नेतन्याहू भाषण देने पहुंचे तो कई देश के डेलीगेट्स ने वॉकआउट वहां से कर लिया, जिसके बाद नेतन्याहू भड़क गए। नेतन्याहू ने उन्हें मोरल कॉवर्ड्स कहा और कहा है कि अगर कोई भी और कायर बचा हो तो हॉल से जा सकता है। नेतन्याहू ने अपने भाषण में गाजा में इसराइल की कार्रवाई का बचाव किया और कहा कि इसराइल ने नरसंहार नहीं किया बल्कि उसे रोका। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पर भी हमला किया।
4: मिस्टर ममदानी, सिंस यू वर इलेक्टेड मेयर ऑफ दिस सिटी, मेनी ज्यूज नो लॉन्गर फील सेफ इन न्यूयॉर्क। दे टॉक टू मी, दे टेल मी दिस इज़न्ट द सिटी वी रिमेंबर, इट चेंज्ड सो क्विकली। नाउ इट्स नो वंडर यू प्रेज क्रिमिनल्स कन्विक्टेड ऑफ सपोर्टिंग हमास। You count as friends people like Hassan Piker, who said America deserved 9/11. America deserved 9/11. Some friends you have. You invite into your home a Palestinian journalist who filmed Hamas terrorists beating and torturing Israeli hostages, and later admitted that he refused to publish the videos in order to protect, you guessed it, the terrorists. Your wife liked a post praising the October 7th massacre. She liked another post saying Tel Aviv shouldn't exist. You refused to condemn any of that. You falsely, repeatedly accuse Israel of genocide. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth.
0: इस बीच एक बड़ी खबर सऊदी से है. दरअसल हूती विद्रोहियों ने सऊदी के खिलाफ हमले अब तेज कर दिए हैं. सऊदी अरब के सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया है कि यानुपोर्ट और ताइफ शहर को निशाना बनाकर हूती विद्रोहियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए. वहीं हूती विद्रोहियों ने भी हमले और तेज करने की बात कही है. हूतियों ने तेल मशीनरी और रियाद को निशाना बनाया है. आगे भी हमले की चेतावनी दी गई है. हूती विद्रोहियों ने सऊदी के खिलाफ हमले अब और ज्यादा तेज कर दिए हैं. सऊदी अरब के सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया है कि यानुपोर्ट और ताइफ शहर को निशाना बनाकर हूती विद्रोहियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं. ऐसे में हमले और तेज करने की बात अब सामने आ रही है. हूतियों ने तेल मशीनरी और रियाद को भी इस बीच निशाना बनाया है. इसी बीच बड़ी खबर पेरिस से है. फ्रांस ने ऐलान किया है कि सऊदी में फ्रेंच आर्मी उतरेगी और सऊदी सहायता के लिए फ्रेंच आर्मी लाल सागर कोस्ट पर उतरेगी. सऊदी की सहायता के लिए फ्रेंच आर्मी मैदान पर उतरेगी, ये दावा किया जा रहा है. पेरिस से ये बड़ी खबर. ऐलान किया गया है कि सऊदी में फ्रेंच आर्मी अब उतरेगी. सऊदी सहायता के लिए फ्रेंच आर्मी लाल सागर कोस्ट पर उतरेगी.

0: चलिए दिल्ली के कश्मीरी गेट से इस वक्त की एक बड़ी खबर। दरअसल यमुना बाजार इलाके में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा सवार यात्रियों पर बदमाशों ने अचानक से हमला कर दिया। चाकू से हुए हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और सूचना मिलते ही कश्मीरी गेट थाना पुलिस और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशन टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से अहम सुराग जुटाए। फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी है और पुलिस लूट समेत कई एंगल से मामले की जांच भी कर रही है।
1: राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना इलाके के यमुना बाजार अंडरपास पर लूटपाट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस मौजूद है। और बता दें आपको कि गांधीनगर से खारी बावली की तरफ ई रिक्शा में 4 लोग जा रहे थे, जिनके संग यहीं पे लूटपाट की कोशिश करने की गई। और लूटपाट का जब विरोध किया गया तो हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। और बताया जा रहा है इसमें 3 लोगों को चाकू लगे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। और चलती फिरती ये व्यस्त जगह है जहां पर इस तरीके की वारदात को जब अंजाम दिया गया तो उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। हर्षित मिश्रा आज तक।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी के संभल की। दरअसल संभल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब नगर पालिका की टीम 4 दुकानों को हटाने पहुंची और मौके पर 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। जी हां, जमीन पर मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देखकर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को हटाकर स्थिति को संभाला गया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और अधिकारियों ने पैदल मार्च भी किया है। प्रशासन के मुताबिक एक पक्ष ने अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी, जबकि दूसरा पक्ष जमीन को निजी संपत्ति बता रहा है। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट जमीन से जुड़े दावों की जांच भी कर रहे हैं। जमीन के मालिकाना हक को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिनकी उस बीच झड़प हो गई। यूपी के संभल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहां पर चल रही थी और उसी दौरान तनाव की स्थिति बन गई।
2: संभल के सराय तरीन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर पालिका की टीम पुलिस और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची थी। शिकायत थी कि घरों के आगे फड़ और दुकानें लगाकर रास्ते पर कब्जा किया गया है। टीम 4 दुकानों को चिन्हित करने की कार्रवाई कर रही थी, तभी जमीन के मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कहासुनी बढ़ी और बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ को हटाया और इलाके में फोर्स तैनात कर दी। इसके बाद अधिकारियों ने संवेदनशील इलाके में पैदल मार्च भी किया।
3: पूरा प्रकरण की जो जांच है सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा की जा रही है। दोनों पक्षों को बताया गया कि अपने अपने जो अपना अपना पक्ष जाकर वहां रखें, न्यायालय में कानूनी तरीके से रखें। बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और हम लोगों के द्वारा उस पर निगरानी रखी जा रही है।
2: सीओ के मुताबिक कुछ लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया है, जबकि निजी जमीन के दावे की जाँच सिटी मजिस्ट्रेट कर रही है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
4: फिलहाल आप यहाँ जो देखेंगे तो देखिए, एक तरफ बाजार बंद है, पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है जगह जगह, जो कि चौकी की पुलिस फोर्स है, थाना की पुलिस फोर्स है, उसको यहाँ पर जो है तैनात किया गया। और इसी तरह से जो पूरा बाजार है वो फिलहाल बंद है, लेकिन पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है और जो सतर्कता है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस पूरे इलाके में PAC को तैनात किया गया है और इसके अलावा जो 3 थानों की पुलिस फोर्स है उसको कॉल किया गया है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
0: तो गुजरात के जूनागढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। दरअसल घर के बाहर निकली एक 6 साल की बच्ची को तेंदुआ उठा कर ले गया। तेंदुए के हमले की तस्वीर CCTV में कैद हो गई है। बच्ची घर के बाहर खेलने के लिए निकली थी और तभी वहां पर घूम रहे तेंदुए ने उस पर हमला किया और एक झटके में बच्ची को उठा कर ले गया। बच्ची का शव खेत से बरामद किया गया है। हादसे के बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अभियान भी शुरू कर दिया है। 8 पिंजरे

0: रात एक 5 साल की बच्ची को तेंदुए ने उठाकर ले गया था। हम जहाँ पर खड़े हैं वो यहाँ पर ये वही घर है जहाँ से जब बच्ची खेलने के लिए बाहर आ रही थी तभी से यहाँ से एक तेंदुआ आया और उसने लपक कर बच्ची को अपने ओर खींच लिया और खेतों के अंदर ले गया। दूर तक ले जाने के बाद बच्ची को शिकार नहीं किया, उसको मार डाला। भार्गवी जोशी, आज तक, जूनागढ़।
1: चलिए अब चुनाव आयोग पर मचे हुए घमासान की खबर की बात कर लेते हैं। एसआईआर में धांधली और चुनाव आयोग में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसको लेकर 3 बड़े अपडेट आपको बताते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है विपक्ष, तो वहीं आज देश भर में विपक्षी पार्टियां विरोध करेंगी। और तीसरा अपडेट यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है जिसमें एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के कई फैसलों को चुनौती भी दी गई है। तो महाभियोग लाने की तैयारी है और देश भर में जगह जगह पर विपक्ष की तरफ से इसको लेकर विरोध भी किया जाएगा। अब चलिए अपडेट आपको दे देते हैं इसी खबर से जुड़ा। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। अब आप समझिए, देश भर में प्रदर्शन होना है। बिहार आरजेडी का सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन होगा। लगभग 2 बजे वो वहां पर पहुंचेंगे। दिल्ली कांग्रेस का निर्वाचन सदन के बाहर प्रदर्शन होगा। 2:30 बजे प्रदर्शन किया जाएगा और वहीं दिल्ली यूथ कांग्रेस का जंतर मंतर की ओर भी मार्च का प्रोग्राम है। 1 बजे लगभग ये होना है। पंजाब कांग्रेस का ईसीआई कार्यालय की ओर मार्च होगा लगभग 11 बजे, ये भी होना है। तो एसआईआर पर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा लगभग 12 बजे। एमपी कांग्रेस का सीईसी के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। लेफ्ट पार्टियां एसआईआर के खिलाफ सप्ताह भर का विरोध इस पर जताएंगी। तो जगह जगह पर अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सीईसी के 14 आदेशों को भी चुनौती दी गई है। कोल्हापुर बेंच में बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं इसको लेकर दाखिल की गई है। अब आप समझिए, हटाए गए वोटर्स की बहाली की भी मांग मुंबई बेंच की तरफ से की गई है। वहीं एसआईआर पर रोक और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। तो महाराष्ट्र में एसआईआर पर कानूनी चुनौती को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई है। डोर टू डोर वेरिफिकेशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से केंद्र में कई सवाल खड़े हो गए और वो था कि चाहे केंद्र हो या फिर राज्य, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं होती। राहुल ने कहा कि वो 50 साल से राजनीति में पहले ऐसा भी कभी नहीं हुआ है।
2: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया पर फिर सवाल उठाए। निशाने पर था 2014 से बीजेपी के 30 साल तक सत्ता में रहने का दावा। राहुल के मुताबिक करीब 50 साल की राजनीति में उन्होंने भारत या दुनिया में ऐसे उदाहरण नहीं देखा जहां सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़े। राहुल का आरोप है कि इसकी वजह वोट चोरी है। उनका दावा है कि एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं और चुनाव आयोग के भीतर भी इसे लेकर मतभेद सामने आए हैं। राहुल गांधी के मुताबिक वोट की चोरी से कानून और फिर संस्थाओं की भी चोरी होती है।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए। उनके 2 जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम। ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर। माय एडवाइस टू हिम।
2: राहुल गांधी के ये आरोप उस मीडिया रिपोर्ट के बाद आए जिसमें चुनाव आयोग में मतभेद के दावे किए गए हैं। राहुल ने इन्हें अपने वोट चोरी के आरोपों की पुष्टि के तौर पर पेश किया है।
3: Both the Prime Minister and Amit Shah are at the top of this conspiracy and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
2: तो राहुल गांधी का दावा है कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है और भारत में इसके कमजोर पड़ने की वजह चुनाव आयोग की भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
1: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। सुधांशु ने कहा है कि राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, मगर उनकी खुद की उम्र 56 साल ही है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान 0 है।
4: मैं राहुल गांधी से पूछना

0: कहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है। अद्भुत ज्ञान संपन्न है। उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में। भाई सब 7 साल की उम्र में है, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती। जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं, अप्रूवर। मेरा विचार है, राहुल गांधी जी आप अपने अप्रूवर बन जाइए। कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए।
1: तो SIR को लेकर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी है, चलिए अब आपको वो भी समझा देते हैं। ECI नेट और गोवा के 97 मामलों पर सफाई दी गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ECI नेट का डिसेंट्रलाइज हुआ, वहीं वैधानिक अधिकार फील्ड अधिकारियों के पास है, ये कहा गया है, ये सफाई दी गई है। BLO से CEO तक अलग ID पासवर्ड उसमें है, मौजूद है, ये सफाई दी गई है। वही ये कहा गया है कि ECI मुख्यालय का अधिकारी वैधानिक फैसला नहीं ले सकता है। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ECI नेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि चुनाव से जुड़े फैसले स्थानीय अधिकारी ही लेते हैं, ये कहा जा रहा है। वैधानिक अधिकार फील्ड अधिकारियों के पास ही है, BLO से लेकर CEO तक हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक काम करता है और दिल्ली में बैठे अधिकारी उनकी जगह फैसला नहीं ले सकते हैं। तो वहीं गोवा में 97 मतदाता ऐसे मिले जिन्हें अधिकारी योग्य मान चुके थे, लेकिन उस समय सॉफ्टवेयर में उनके नाम दोबारा जोड़ने का विकल्प ही नहीं था। वहीं CEO गोवा के मुताबिक इन मामलों को BLO ने घर घर जाकर दोबारा प्रोसेस किया, कई नाम अब वोटर लिस्ट में जुड़ चुके हैं और बाकी पर प्रक्रिया जारी है। EC ने फॉर्म 6 के साथ अतिरिक्त डिक्लेरेशन को भी नियमों के तहत लिया गया कदम ही बताया है।
2: SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने अपने डिजिटल सिस्टम ECI नेट को लेकर सफाई दी है। इसी के मुताबिक ECI नेट एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी चुनाव से जुड़े जरूरी और कानूनी फैसले फील्ड में मौजूद अधिकारियों के पास ही रहते हैं। BLO से लेकर AERO, ERO, DEO और CEO तक हर अधिकारी अपनी अलग ID और पासवर्ड से काम करता है। आयोग का कहना है कि दिल्ली में बैठे किसी अधिकारी के पास इनकी जगह वैधानिक फैसला लेने का अधिकार नहीं है। ये सफाई उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें चुनावी डेटा के सेंट्रलाइजेशन और सिस्टम एक्सेस को लेकर चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की बात कही गई थी। यहाँ SIR के दौरान 97 ऐसे मतदाता पाए गए जिन्हें अधिकारी पात्र मान चुके थे, लेकिन सॉफ्टवेयर में उनके नाम वापस जोड़ने का विकल्प नहीं था। CEO गोवा के मुताबिक इन मामलों में BLOs ने घर घर जाकर अलग से प्रोसेस किया, कई नाम शामिल किए जा चुके हैं और बाकी मामलों पर काम जारी है। आयोग का कहना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटेगा नहीं। वही फॉर्म 6 के साथ मांगे गए अतिरिक्त डिक्लेरेशन पर भी ECI ने सफाई दी है। आयोग के मुताबिक इसे SIR के आदेश में उसकी मंजूरी के बाद शामिल किया गया था और फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: इसके साथ सुपर 8 में वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मन जाएगा, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: मैं करता हूँ ना,
14: मैं करूँगा।
15: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
16: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
15: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
16: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही चैंपियन है।
15: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
18: पापा।
19: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
20: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
19: छक्का?
20: सब कैशलेस हो गया है।
19: हाँ
21: ओ ले ला भाई मेरा बैट,
22: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
21: अभी तो डिस्चार्ज हुआ यार।
22: ओ ले बैट किसका है?
23: टाटा AIG है तो भरोसा है।
24: बिजली का बिल पेड,
25: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
26: कैसे?
25: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
26: वे।
27: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
28: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
27: असली शहद, असली स्वाद।
29: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
30: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
29: स्मॉल बैंक?
30: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RD, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
29: ओके
30: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
31: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
32: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
31: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
29: आगे आगे, उधर उधर, करेक्ट करेक्ट।
33: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन छमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
2: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
7: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
8: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली।
9: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: सीएसी के अनिश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान, महाभियोग की तैयारी। राहुल गांधी बोले अनिश कुमार इस्तीफा दे, बीजेपी बोली आयोग में मतभेद नहीं। चिंतन शिविर में पीएम मोदी का मंत्रियों को मंत्र, जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर जोर, कहा मंत्रालयों की कमियां और चुनौतियां पहचान कर एक्शन प्लान बनाए। यूपी में मिशन 2027 में सियासी संग्राम तेज, गोरखपुर में बोले सीएम, गजनवी ने सनातन को भी चोट पहुंचाया। पीडीए यात्रा से अखिलेश का पलटवार, कहा वोट का बुलडोजर चलेगा। दिल्ली के यमुना बाजार में मर्डर से हड़कंप, ई रिक्शा सवारों पर चाकू से हुआ हमला, एक की मौत, दो घायल, हमलावर फरार, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। मुल्क में आतंकवाद को पनाह देने के सवाल पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने साधी चुप्पी, न्यूयॉर्क में पत्रकार ने पूछा सवाल तो बिना जवाब दिए निकल गए शहबाज। Presented by

आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साधी चुप्पी। न्यूयॉर्क में पत्रकार के सवाल पर शहबाज शरीफ बिना जवाब दिए निकले। इसराइल को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बंद करने की मांग को लेकर न्यूयॉर्क में बड़ा प्रदर्शन। एक्ट्रेस सुसान सारंडन भी शामिल हुए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ी तो वो सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए जिप टाई का इस्तेमाल किया। यूएन में कैंपेन स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के ममदानी की आलोचना की। उन्होंने ममदानी पर उन्हें न्यूयॉर्क आने से रोकने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। नेतन्याहू ने कहा, ममदानी इसराइल की गाजा कार्रवाई के बारे में झूठ फैलाकर न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदियों को खतरे में डाल रहे हैं। वोट चोरी पर सियासी संग्राम तेज। राहुल गांधी का पीएम मोदी, अमित शाह और सीईसी ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, वोट चोरी से कानून चोरी तक पहुंचा मामला, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी उठे सवाल। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज। राहुल गांधी बोले, अप्रूवर बनकर सामने लाएं सच। वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद। एसआईआर विवाद को लेकर सियासी घमासान। विपक्ष ने सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर से महाभियोग की तैयारी। ड्राफ्ट तैयार कर रहा है इंडिया ब्लॉक। बिहार में आरजेडी का बड़ा प्रदर्शन। आज सभी जिला मुख्यालयों पर सीसी ज्ञानेश कुमार के पुतले फूके जाने का ऐलान। विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की सफाई। ईसीआई नेट को बताया विकेंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। वहीं चुनाव आयोग का दावा, वैधानिक काम संबंधित फील्ड अधिकारी ही करते हैं, मुख्यालय से नहीं होता है कोई भी हस्तक्षेप। 29 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। एसआईआर विवाद और सीईसी के खिलाफ आगे की रणनीति पर होगा मंथन। प्रियंका गांधी का सीईसी पर हमला, बोली आरोप सही है तो इस्तीफा दें और आपराधिक कार्रवाई का सामना करें। हिमंत बिस्व शर्मा बोले, सीईसी अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता, आयोग बहुत या सहमति से करता है निर्णय। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सीसी से इस्तीफा मांगा, बोले मतदाताओं के अधिकार और वोट की पवित्रता से समझौता हुआ। अखिलेश यादव बोले, सीसी पर गंभीर आरोप हैं तो उन्हें खुद इस्तीफा देकर पद छोड़ देना चाहिए। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना, बोले उठते ही आरोप लगाना राहुल की आदत बन गई है। बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान तेज। जमुई के बाद समस्तीपुर में भी छेड़छाड़ का मामला सामने आने से विपक्ष ने सरकार को घेरा। जमुई के बाद बिहार के कई जिलों में महिलाओं से बदसलूकी के आरोप। तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, बोले बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद ही खराब। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रशासन सख्त। मुख्य सचिव ने सभी डीएम और एसपी को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। चिराग पासवान ने महिला सुरक्षा पर जताई चिंता, बोले लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितिन राम मांझी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले आज अपराध के बाद तुरंत कार्रवाई होती है। तेजस्वी अपने पिता के शासनकाल को याद करें। रामकृपाल यादव का विपक्ष पर पलटवार, बोले बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, विपक्ष घटनाओं पर राजनीति कर रहा है। मुकेश सहनी ने बिहार की घटनाओं को बताया बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, बोले सरकार को महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने महिलाओं से बदसलूकी के वीडियो पर जताई नाराजगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जमुई पीड़िता की मां ने सरकार की कार्रवाई पर जताई संतुष्टि, बोली मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी और बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव का पीडीए रथ लखनऊ से निकले एसपी प्रमुख। रायबरेली से शुरू हुआ राज्यव्यापी अभियान। अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा से यूपी की सियासत गरमाई, बीजेपी ने साधा निशाना, एसपी ने पूरे प्रदेश में अभियान की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अब की वोट का बुलडोजर चलेगा और इनको हमेशा के लिए धराशायी कर देगा। यूपी मंत्री संदीप सिंह का अखिलेश यादव पर हमला, सत्ता में रहते लोधी समाज की याद नहीं आती, सत्ता से बाहर होते ही पिछड़ों की राजनीति शुरू। अखिलेश के पीडीए रथ पर सियासी घमासान। रायबरेली में अखिलेश के अभियान पर दिनेश प्रताप सिंह बोले, पिछड़ा वर्ग एनडीए के साथ 2027 में जनता जवाब देगी। यूपीआई पर एमडीआर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, ग्राहकों पर चार्ज का बोझ नहीं डालने की तैयारी। यूपीआई एमडीआर पर सरकार और आईबी मिलकर बनाएंगे व्यवस्था, दुकानदारों से ग्राहकों पर लागत न डालने की अपील। 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआई भुगतान पर एमडीआर, सरकार ने कहा ग्राहकों से अतिरिक्त पैसा ना लिया जाए। एनपीसीआई सीईओ का दावा, यूपीआई के करीब 96% लेनदेन पर एमडीआर का असर नहीं पड़ेगा, 75% वैल्यू मुफ्त रहेगी। यूपीआई चार्ज पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, सांसद प्रवीण चक्रवर्ती बोले आम लोगों पर बोझ डालने का विरोध करेंगे। दिल्ली एसआईआर में आडवाणी, जगदीप धनखड़ और एस जयशंकर समेत प्रमुख मतदाताओं का वेरिफिकेशन पूरा, अंतिम सूची में नाम शामिल करने की तैयारी। दिल्ली एसआईआर पर ईसी की सफाई, नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं,
सुनवाई और सत्यापन के बाद ही अंतिम मतदाता सूची में होगा फैसला। तमिलनाडु के चर्चित जेम वीरमणि पॉक्सो केस में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, 2024 की शिकायत पर कथित निष्क्रियता को लेकर दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पद से हटाए गए। वीरमणि केस में जांच तेज हुई, पॉक्सो कोर्ट ने शांति और उनके पति महेंद्र सिम्हन को 3 दिन की पुलिस हिरासत में पूछताछ की मंजूरी दी। वीरमणि केस पर एमके स्टालिन का बयान, बोले अपराध में शामिल या आरोपी को बचाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून से नहीं बचेगा। चिली में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 4 क्षेत्रों में बाढ़ और नदी उफान पर 74 घरों को नुकसान हुआ, हजारों लोग बिजली संकट में। चिली में तूफानी मौसम से बिगड़े हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश। ओडिशा के कंधमाल में भारी बारिश का कहर, कालिंगी घाट में भूस्खलन की वजह से NH 157 पर यातायात पूरी तरह से बंद हुआ। समस्तीपुर में बारिश के बीच स्कूल परिसर में गिरा विशाल बरगद का पेड़, 2 छात्राओं की मौत हुई, 1 गंभीर रूप से घायल। पुरुलिया में भारी बारिश से कई इलाकों का संपर्क बाधित हुआ, प्रशासन ने आवाजाही पर लगाई रोक। उदयपुर में मशहूर गणपति मन्नत वाले राजा का भव्य श्रृंगार बप्पा को धारण कराई गई, 2,51,00,000 रुपए के नोटों से बनी अनोखी आंखें। इस अनोखे श्रृंगार में 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल, इस सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अकोला के कलाकार की अनोखी भक्ति ने जीता दिल, 35,000 मोतियों से बनाई गणपति की सुंदर प्रतिमा। दिल्ली में गणपति बप्पा की विदाई की तैयारी, प्रतिमा विसर्जन के लिए जगह जगह बनाए जा रहे कृत्रिम तालाब। दक्षिण भारत में भी दिख रहे गणपति विसर्जन के रंग, तेलंगाना के वारंगल में दी जा रही है बप्पा को विदाई। कानपुर में हाईवे पर लोडर और ट्रॉली की सामने टक्कर। कानपुर में भीषण टक्कर हुई, दोनों चालकों की मौत हो चुकी है, हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 21 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। जैसलमेर में एक बाजार में भीषण आग लगने की वजह से कपड़े की 6 केबिन नुमा दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव के समापन के बाद 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, दोनों ओर से कुर्सियां और हेलमेट फेंके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के झांसी में युवक ने किया आत्महत्या, सुसाइड वीडियो में पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। अमरोहा में महिला से दुष्कर्म के आरोप में दारोगा हेड कांस्टेबल सस्पेंड हुआ, बर्खास्तगी का प्रोसेस शुरू, आज चारों आरोपियों को कोर्ट में करेंगे पेश। जूनागढ़ में 5 साल की बच्ची को तेंदुआ उठाकर ले गया, खेत से शव बरामद हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आने से गांव में दहशत। गुरुग्राम में फिर से सामने आया खौफनाक रोड रेज, गोल्फ कोर्स रोड पर मां बेटी की कार में मारी टक्कर। वहीं सहरसा में आपदा प्रबंधन मंत्री ने किया दावा, सामुदायिक किचन में अब तक 2 करोड़ से भी अधिक बाढ़ पीड़ितों ने किया भोजन। मुजफ्फरनगर में नहाते समय महिला का एक वीडियो बनाया गया, जो कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भिवंडी में 3 सवारियों की क्षमता वाली ऑटो में 17 स्कूली बच्चों को ठूस कर ले जाने का वीडियो तेजी से वायरल। बलरामपुर में 7 साल की बच्ची की मौत के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, डीजे मालिक और ऑपरेटर गिरफ्तार। खरगोन में गणेश पंडाल में गरबा करने को लेकर एक समुदाय के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, पथराव में 3 लोग घायल। सूरत में 2 लग्जरी बसों की टक्कर, दोनों बसों में सवार यात्रियों को आई मामूली चोट। अलवर में व्यापारी से तमंचे की नोक पर बदमाशों ने की लूट, घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश। नागपुर में 2 परिवारों के बच्चों के बीच विवाद ने लिया हिंसक मोड़, बच्चों के माता पिता आपस में जाकर भिड़े। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पैसेंजर बस में लगी भीषण आग, 14 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। राजकोट के मोरबी रोड पर भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की गई जान। सवाई माधोपुर में एक होटल परिसर में घुसा लेपर्ड, होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। अहमदाबाद में अमेरिकी लोगों को ठगने वाला कॉल सेंटर पकड़ा गया, बैंक वकील की फर्जी पहचान बताकर 200 से अधिक लोगों से ठगी करता था। बरनाला में युवक ने जहरीले पदार्थ सेवन कर जान देने की कोशिश की, पुलिसकर्मी पर रिपोर्ट के बदले 5,000 से 10,000 रुपए मांगने के आरोप। इंदौर में खाना ठंडा होने पर डिलीवरी बॉय से मारपीट की गई, शराब के नशे में विवाद का आरोप। बिजनौर में चारा लेने निकले थे 2 मासूम भाई, पटाखों के कचरे में हुआ धमाका। वहीं जालौन में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 9 की मौत, उरई के हासिम खान ने जान पर खेल कर बचाई 13 से 14 यात्रियों की जान। फरीदाबाद में 30 से 40 युवकों का उत्पात, वर्कशॉप पर पथराव और लाठी डंडों से हमला किया गया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। रात को 11:06 तक नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। प्रातः 11:22 तक चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, पारिवारिक जीवन का ध्यान दें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन का आगमन होता रहेगा, संतान पक्ष पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, पारिवारिक तनाव हल होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

लोग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला।

अभी धैर्य बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: बिजली का बिल पेड तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
5: इत्ता माही वे।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
8: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
10: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
12: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंबल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
13: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
14: तो कौन सी बनानी है?
15: थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
16: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
17: आई लाइक दिस ओनली।
18: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
19: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
18: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
20: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
21: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित।
22: मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
23: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
24: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
20: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
25: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
26: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर कर।
20: पंचायत आज तक सिर्फ आज तक पर।
27: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी को मिला ये बड़ा मुद्दा बेहद गंभीर क्यों है इसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के पार्ट 2 से समझ लीजिए। रिपोर्ट के पार्ट 1 में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की 14 आपत्तियों में गोवा के 97 वोटरों का मसला भी था। रिपोर्ट के पार्ट 2 के मुताबिक 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की वजह से ड्राफ्ट वोटर सूची से बाहर हुए लोगों के नाम सार्वजनिक करने उन्हें दस्तावेज देने और अपनी आपत्ति रखने का मौका देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गोवा में 649 आवेदन आए। इन मामलों की जांच के बाद 97 मामलों में स्थानीय ईआरओ और एईआरओ ने माना कि पहले लिया गया फैसला वापस लेकर इन्हें अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए लेकिन पूरा मामला ईसीआई नेट के स्तर पर अटक गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम में इन नामों को रोल बैक या दोबारा शामिल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर ने इस सुविधा के लिए 11 से 17 फरवरी के बीच 8 बार ईमेल और पत्र भेजे लेकिन 21 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई और रिपोर्ट के मुताबिक इन 97 नामों को फाइनल वोटर लिस्ट में जगह नहीं मिली।
28: सर जो 97 नाम है जुड़वाने की
27: अब हैरानी की बात यह है कि इन 97 वोटरों का सवाल पूछे जाने पर गोवा के चुनाव अधिकारी संजय गोयल आज तक के सवालों पर भड़क गए।
28: सर इशू रिसेंट इशू है रिसेंट इशू पे अगर
29: बात
28: आपके पास नॉलेज बट सर कुछ जो
29: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड
28: पर सर 97
29: मैं अपने रिकॉर्ड चेक करूंगा अभी मैंने नहीं देखे ना रिकॉर्ड्स। इट इज 8 मंथ बैक मैटर
28: 8 मंथ बैक बट अभी इशू कैसे आ गया?
0: चेक विद माय रिकॉर्ड, ओके?
28: बट जो सामने
0: चेक विद माय रिकॉर्ड, आपको समझ नहीं आ रहा बार बार बार रिपीटिंग सेम क्वेश्चन?
28: बट तो इशू तो अभी
0: चेक विद माय रिकॉर्ड, देन ओनली आई कैन रिप्लाई।
28: पर सर 97 नाम जुड़वाने के लिए कोई रिप्लाई आया है क्या? सर जो 97 नाम है जुड़वाने
0: के
28: बट
0: अभी मैंने आपको बता दिया, प्लीज अभी आपको बता दिया, लेट मी चेक माय रिकॉर्ड देन यू कम बैक।
28: बट ये इशू अभी का है सर, अभी रिसेंट इशू आया है। बट आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर।
0: रूम को लेट यू एंटर द केबिन, यू आर एक्टिंग टू रिजिड अननेसेसरली।
28: ओके,
27: चुनाव से जुड़े मसलों पर जो सवाल और आशंकाएं उठ रही हैं, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नजरिए से बेहद अहम है। लेकिन जहां एक ओर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई जैसी मांगे उठा रहे हैं, तो बीजेपी दावे कर रही है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह से परे है। चुनाव आयोग पर राजनीति की टक्कर बीते कई सालों से चल रही है, लेकिन अब नौबत आर पार की हो चली है। आज तक ब्यूरो

0: सीसी के अनिश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान, महाभियोग की तैयारी, राहुल गांधी बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, बीजेपी बोली आयोग में मतभेद नहीं। चिंतन शिविर में पीएम मोदी का मंत्रियों को मंत्र, जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर जोर, कहा मंत्रालयों की कमियां और चुनौतियां पहचान कर एक्शन प्लान बनाएं। यूपी में मिशन 2027 पर सियासी संग्राम तेज, गोरखपुर में बोले सीएम, गजनवी के सनातन को भी चोट पहुंचाई, पीडीए यात्रा से अखिलेश का पलटवार, कहा वोट का बुलडोजर चलेगा। दिल्ली के यमुना बाजार में मर्डर से हड़कंप, भी रिक्शा सवारों पर चाकू से हमला, एक की मौत, दो घायल, हमलावर फरार, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। और मुल्क में आतंकवाद को पनाह देने के सवाल पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने साधी चुप्पी, न्यूयॉर्क में पत्रकार ने पूछा सवाल तो बिना जवाब दिए निकल गए शहबाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से वडनगर निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा के सेवा यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं और उनके जन्मदिन पर यह यात्रा निकली थी जो 7 अक्टूबर को संपन्न होगी। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर 25 साल पूरे होंगे।
3: यात्रा में 30 टोलियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, इन 10 राज्यों, 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1159 गांवों से होकर गुजर रही है। वाराणसी से चली 10 टोलियां माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, गोमती, सरयू, नर्मदा, राप्ती, संगम और बेतवा के नाम से सेवा का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। बाबा विश्वनाथ से हाटकेश्वर महादेव तक वाराणसी से चले सेवा यात्री उत्तर प्रदेश की पवित्र नदियों का जल लेकर हाटकेश्वर महादेव जी को वडनगर में जलाभिषेक करेंगे। हर पड़ाव पर एक सेवा, लगभग 25 प्रकार के सेवा कार्य हो रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता, फल वितरण, मेडिकल केयर किट वितरण, अंगदान का संकल्प और एजुकेशन किट वितरण, ऐसे कई 25 जैसे सेवा के कार्य बीच में हो रहे हैं। स्वच्छता से स्वागत, यात्रियों के पहुंचने से 2 दिन पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा भी उस स्थान को स्वच्छता अभियान के माध्यम से स्वच्छ किया जाता। माननीय प्रधानमंत्री जी, सेवा संकल्प अभियान का एक एआई से जुड़ा डैशबोर्ड हमारे सभी केंद्रीय टोली ने बनाया है, जिसमें 20 टोलियां दिन में 2 बार रिपोर्ट करती है और उनका जो रियल टाइम लोकेशन है वो प्रति घंटा उसमें अपडेट होता रहता। दूरी, कार्यक्रम, जन भागीदारी और तस्वीरें एक ही जगह रियल टाइम में मिलती है, जहां से कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है। इसका एक संक्षेप में मैं आपको ब्यौरा रखना चाहूंगा। अभी तक पूरी यात्रा यानी कि 20 टोली ने 13,733 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसमें से हमारी वाराणसी से वडनगर की जो यात्रा है उन्होंने 25 सितंबर तक 5,961 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके अंदर सक्रिय सेवा यात्री 1,069 से वाराणसी वडनगर में 532 सक्रिय सेवा यात्री अभी मौजूद है। कुल कार्यक्रम 571 जो पूरे यात्रा के उसमें से वाराणसी वडनगर के 267।
0: तो प्रधानमंत्री को अभी इस यात्रा के बारे में अपडेट दिया जा रहा है, जब वो बोलेंगे उनका रुख भी करेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर, जहां पर मुखर्जी नगर इलाके में डीयू की छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात हुई। वारदात मंगलवार की है। पीड़िता के मुताबिक कार सवार 4 लड़कों ने उस पर अश्लील कमेंट्स किए और कार में जबरन खींचने की कोशिश की। पीड़िता का यह आरोप है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसे कई थानों के चक्कर लगाने पड़े।
4: बिहार से लड़कियों से छेड़छाड़ की शर्मनाक खबरों के बीच अब दिल्ली में हुआ है बेटियों की सुरक्षा पर हमला। वारदात कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के नॉर्थ कैंपस की है। आरोप है कि पीड़िता मंगलवार रात करीब 9:30 बजे अपनी दोस्त के साथ विजयनगर से OGC रोड की ओर जा रही थी, तभी सफेद रंग की गाड़ी में सवार चार लड़कों ने पीछा कर अश्लील कमेंट किया। मना करने पर बीच चौराहे पर गाड़ी रोककर गाली गलौज और धमकी दी। आरोप है कि नशे में धुत कार सवारों ने पीड़िता को अपनी कर में खींचने की भी कोशिश की। सुनिए पीड़िता की आप बीती।
5: जैसे कि मैंने बताया, मैं और मेरी दोस्त है, वी आर क्लासमेट्स, तो हम 9:30 बजे रात में विजयनगर हकीकत पार्क की तरफ से ओल्ड गुप्ता चौक की तरफ जा रहे थे। एंड वहां पर जब हम थोड़ा ओल्ड गुप्ता चौक की तरफ मोड़ से मुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे से एक गाड़ी आती है, वो रुकती है एंड वो अपना शीशा नीचे करते हैं एंड वो हम पे कमेंट पास करते हैं। तो हम बस उनसे इतना कहते हैं कि दिस इज नॉट द वे हाउ यू टॉक एंड जस्ट प्लीज लीव। तो वो इस पे इतने ऑफेंड हो जाते हैं, वो इतने उग्र हो जाते हैं कि वो हमें गालियां देने लगते हैं। बहुत लाइक आई वुड से दैट द वर्स्ट दैट दे वुड हैव सेड, उन्होंने वो सब कुछ बोला। उन्होंने हर प्रकार की गालियां दी, मां बहन की गालियां दी।
4: वारदात से पहले का ये CCTV फुटेज है जिसमें पीड़िता उस रास्ते से गुजरती दिख रही है। इलाका बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने छात्रा से शर्मनाक हरकत की।
5: वो हमारा पीछा कर रहे हैं और हम तो जब तक चल रहे थे तब तक वो हमारे एडजेसेंट चल रहे थे, बट द मोमेंट दैट वी स्टॉप इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड देयर वीडियो और समथिंग, वो भी हमारे एडजेसेंट वहां पर रुक जाते हैं चौराहे पर और वो आधी उनका जो बॉडी थी वो खिड़की से बाहर निकालकर वो गालियां देना शुरू करते हैं। और वो वहां पर मतलब जितनी तेज आवाज में वो गालियां दे सकते थे कि अपने आप को समझती क्या हो, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, इतना क्यों भड़क रही हो, इन प्लस प्लस प्लस ऑल दोस गालियां, सारी गालियां कि माँ की बहन की, तुम कैसे घर से आते हो, हमें पता है।
4: पीड़िता का आरोप है कि FIR के लिए उसे 3 थानों के चक्कर कटवाए गए। मॉरिस नगर और मॉडल टाउन थाने ने एरिया का बहाना बनाकर मुखर्जी नगर भेज दिया। वह रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक थाने में खड़ी रही।
5: तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन गई, बिकॉज दिस वाज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम विजयनगर। तो हम यहाँ आते हैं, देयर वाज अ विमेन कांस्टेबल, तो उन्होंने हमसे इतना भी नहीं पूछा कि व्हाट हैज हैपेंड। मैं दो लड़कियां थी, मैं और मेरी दोस्त थी, हम दोनों वहां पे जाते हैं, वो हमसे इतना भी नहीं पूछते कि हुआ क्या है, फॉर व्हाट हैव यू कम हियर, कुछ नहीं पूछते हैं। हमारे अंदर तो हमारे अंडर वो एरिया आता नहीं है, मॉडल टाउन आता है, तो आप वहां चले जाइए। हमने बोला कि आप मतलब आप इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमसे क्या होगा। दिस वाज द स्टेटमेंट, दिस वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट।
4: पीड़िता ने बताया कि उसने खुद गाड़ी नंबर से एक आरोपी की पहचान की। आरोपी खुद को करावल नगर के SHO का रिश्तेदार बताकर धमका रहा था। पुलिस ने उस सफेद कार को जब्त कर लिया है जिस पर आरोपी सवार थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरोपी कब गिरफ्त में आएगा। दिल्ली से हर्षित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री का संवाद।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी सेवा यात्रियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी अनुमति हो तो इस संवाद से पहले इस पूरी वाराणसी वडनगर की यात्रा का एक संक्षेप में ब्यौरा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।
6: वडनगर से वाराणसी वाली टोली का बताया, आज आप वाराणसी से वडनगर वाली टोली का बताएंगे।
3: जी माननीय प्रधानमंत्री,
6: वहां प्रारंभ कीजिए।
3: जी धन्यवाद। पहियों पर संकल्प, हाथों पर सेवा और दिल में भारत, यही है हमारी सेवा संकल्प यात्रा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वाराणसी से वडनगर की ओर बढ़ रही 10 टोलियों की हर सेवा यात्री की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2001 से आज तक आपके 25 वर्षों के जनसेवा जीवन ने देश के युवाओं को एक ही मंत्र दिया है, बदलते हैं सेवा का संकल्प नहीं बदलता। आपकी कर्मभूमि काशी से जन्मभूमि वडनगर तक हमारे सभी युवा सेवा यात्री इसी मंत्र को लेकर निकले हैं। यह यात्रा 4 भावों से जुड़ी है। जल, उत्तर प्रदेश की पवित्र नदियों का जल आस्था की धारा को वडनगर तक ले जाता हुआ। जन, हर गांव, हर चौपाल पर लोगों से सीधा संवाद। सेवा, हर पड़ाव पर सेवा से ठोस कार्य। और संकल्प, सेवा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प। 17 सितंबर को वाराणसी और वडनगर से एक साथ शुरू हुई इस यात्रा में 20 टोलियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, इन 10 राज्यों, 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1,159 गांवों से होकर गुजर रही है। वाराणसी से चली 10 टोलियां माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, गोमती, सरयू, नर्मदा, राप्ती, संगम और बेतवा के नाम से सेवा का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। बाबा विश्वनाथ से हाटकेश्वर महादेव
7: जी। एक मैं लाभार्थी का अनुभव बताना चाहूंगा, जो मैं कि उन्नाव गांव में, उन्नाव जिले में पूर्वा विधानसभा में एक जनसंपर्क कर गया था। एक दादी माँ थी, तो वो दादी माँ बोली बच्ची अपने वहाँ की लोकल लैंग्वेज बच्ची कहाँ जात हुआ, तो हम बोला कि हम लोग मोदी जी के गांव जा रहे हैं। तो बोले अच्छा, और काहे बदे वहां, तो बोले एक सेवा संकल्प यात्रा निकला है जिसमें हम लोग सभी सेवा यात्री वाराणसी से वडनगर जा रहे हैं, सभी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जो लाभार्थी हैं उनसे मिलते हुए उनके आशीर्वाद और उनके धन्यवाद को ज्ञापित करने हम लोग मोदी जी के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला मेरा भी एक प्रधानमंत्री जी के पास धन्यवाद पहुंचा दीजिए, आज ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा ये पक्का मकान नहीं बना होता तो आज मेरा परिवार हो सकता सुरक्षित नहीं रहता। बेटा ये जो बगल में देखो एक टूटी हुई मकान, ये मेरा पहले का पुराना कच्चा मकान है। एक दिन मैं ऐसे ही बाहर बैठी थी तब तक पुराना घर जो मेरा है वो ढह गया और उसमें कुछ ईंटें जो थे आके कुछ छटक के मेरे पांव में लगे। इतने में ही साहब वो एकदम रोने लगी, उनका भावुक मन हो गया और बोली कि उसके मैं इतना रोने कि आज यदि यदि मुझे आवास नहीं मिला होता तो आज मेरा परिवार हो सकता उसमें रह के घटना कुछ अलग हो जाता। फिर उन्होंने बोला कि उसके साथ साथ बेटा मोदी जी ने मेरे जो चोट लगी है पांव में उसका भी ध्यान दिया, मुफ्त में इलाज पूरे अच्छे तरीके से हो गया और बहुत ही प्रसन्न थी और भावुक थी कि अंदर एक खुशी भी उनकी आंखों में दिख रही थी। कभी आपसे मिलने का मौका मिला तो मैं उसके वीडियो क्लिप भी आपको जरूर दिखाऊंगा उन दादी माँ की।
6: अच्छा, आप के साथ गंगा जी हैं, गंगा माता का जल है, तो लोग जब गांव में जानते हैं ये गंगा जल भी आपके साथ है तो क्या भाव व्यक्त करते हैं लोग?
7: सभी लोग आके पहले तो उस गंगा कलश यात्रा के स्पर्श करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जो जैसे कुछ कुछ नदियों में पड़ती यमुना उस नदी के कुछ लोग वहां के जो रहते हैं वहां के स्थानीय लोग वो लोग आके पानी भी उसमें डालते हैं उस हमारे कलश यात्रा में।
6: कुलदीप जी और आपकी पूरी टीम सेवा संकल्प यात्रा में जो अनुभव आपको मिल रहे हैं ये सचमुच में बहुत अमूल्य है। आपकी पूरी जीवन यात्रा में ये यात्रा एक नई ऊर्जा भर देगी और लोगों के बीच जाना, उनको उनसे जुड़ना, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी बोलचाल, उसमें अपने आप को ढाल देना, ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। और अलग अलग प्रदेश के गांवों में जब आप जाएंगे तो ऐसा भारत कितना भव्य है, कितना विराट है, कितना विशाल है, कितना वैविध्य से भरा है, ये आप किताबों में नहीं समझ सकते जो आप इस यात्रा में देखेंगे। हर जगह पे अलग अलग परंपरा ही होगी, खान पान तो अलग होता ही होता है अपने यहाँ, और सेवा के आनंद में देखिए समाज कितना जुड़ता है। हम तो क्या है, कुछ नहीं है जी, लोग कितना करते हैं, उनको जब मिलते हैं उनसे सुनते हैं तो कितना आनंद आता है और वही हमारे लिए ऊर्जा बन जाता है। बस आप जी इस यात्रा को जी लीजिए और जीवन का एक बहुत बड़ा खजाना आपको मिला है, इसको कभी भी ओझल मत होने देना, जीवन में इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी, आइए आगे कहां चलते हैं।
7: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आपकी अनुमति से जिला रायसेन मध्य प्रदेश में जो हमारे सेवा यात्री श्री प्रदीप मुखर्जी के जो मूलतः झारखंड से हैं,
6: क्या उनसे क्या नाम बताया
3: कि वे आए? श्री प्रदीप मुखर्जी झारखंड से।
6: प्रदीप जी
3: जी, प्रदीप जी के जो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना अनुभव कथन प्रस्तुत करें।
6: प्रदीप जी नमस्कार, क्या बात है, आप लोग तो बड़ा केसरिया साफा लगा करके बैठे हैं, गांव वालों ने पहना है क्या?
8: जी जी जी सर।
6: अरे वाह, तो पहले तो गांव गांव के लोगों ने आपका इतना बड़ा सत्कार किया, स्वागत किया, सबसे पहले तो गांव वालों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रदीप जी, आप सब लोग ठीक तो है ना?
8: सब ठीक है सर, सब ठीक है सर।
6: बहुत अच्छा, भोजन वोजन ठीक हो जाता है?
8: जी जी जी जी सर, जी सर।
6: लेकिन ये साफा पहनकर तो नहीं चलाते ना, हेलमेट पहन के चलाते ना गाड़ी तो?
8: जी जी जी सर, जी सर, साफा तो अभी सर मिला है सम्मान।
6: अच्छा,
8: साफा और श्रीफल
6: गांव के लोगों ने सम्मान में पहनाया है।
8: जी सर, जी सर,
6: कभी साफे को ही

0: से बात करते होंगे, युवाओं से बात करते होंगे, या भागने की रहती है मन में, कैसे वडनगर पहुंच जाए कि जहां जाते हैं वहां जीने की कोशिश करते हैं?
1: नहीं नहीं नहीं सर, भागने की ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है सर। और चूंकि हम लोग सेवा कार्य में निकले हैं, और जो आपसे जो प्रेरणा हम लोगों को मिला है कि आप बिना रुके बिना डरे पूरा 25 वर्ष सेवा कार्य का, जन सेवा का पूरा कर लिए, तो आप हमारे प्रेरणा स्रोत है सभी युवाओं का। और हम आपसे प्रेरणा लेकर के, ये तो मात्र 2000 किलोमीटर की यात्रा है सर, अगर 20,000 की किलोमीटर की यात्रा भी तय करना पड़े तो हम लोग तय करेंगे सर।
0: वाह सर, अनुभव आते हैं बताइए।
1: सर अनुभव बता देते हैं सर, अगर थोड़ा परिचय सर हम लोग कर देते।
0: हाँ, करवा दो।
1: बता जी सर। सर मैं प्रदीप मुखर्जी, स्टील सिटी जमशेदपुर से निवासी, जमशेदपुर का निवासी हूँ, और मैं झारखंड जो वीर भूमि है,
0: तो भगवान बिरसा मुंडा,
1: सिद्धू कान्हू,
0: चांद
1: भैरव की भूमि, जी जोहार सर, चांद भैरव की भूमि से आकर के आपको झारखंडी जोहार दे रहा हूँ सर।
0: जोहार।
1: ये तो हेलो।
0: हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है।
1: जी सर, जी सर। तो सर हम लोग जब इस यात्रा को वाराणसी से निकले और आगे वडनगर की तरफ बढ़ रहे थे, तो कुछ जिला को पार करते हुए हम लोग सर माँ शारदा की भूमि, जो माही हार से पहले जानी जाती थी, मैहर जिला में हम लोग पहुंचे। वहां पर लाभार्थियों से संवाद के समय में एक महिला से हमारा संवाद हुआ सर, अपनी पूजा पटेल करके महिला थी, उनसे संवाद हुआ हमारा। और संवाद में सर वो महिला जो आपके द्वारा जो आयुष्मान भारत, जो पूरे स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो आपका ये योजना आया हुआ है, उस योजना के लिए वो बताती हैं कि उनके घर में एक 5 वर्षीय भतीजी थी उनकी, और उनका कुछ दिन से तबीयत खराब चल रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर के पास जब लेके गए तो जांच के क्रम में पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। तो उनके घर में ऐसा लगा कि जैसे उनके परिवार में एक पहाड़ सा टूट पड़ा है, क्योंकि कैंसर नाम से ही लोग त्रस्त हो जाते हैं। तो उनके घर पे रोने धोने का सारा ये मन लगने लगा। तो फिर अपने एक कार्यकर्ता से उनका मुलाकात हुआ, और वो आयुष्मान भारत से, जो हमारे भारत सरकार और आपका सोच है सर, जो ये आयुष्मान भारत कि हर गरीब तक, अंतिम अंत्योदय के व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य लाभ पहुंचे, कोई बिना इलाज के ना मरे, उसका सर फायदा मिला। और वो बच्ची का पूरा इलाज हो गया सर, और अभी वो बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और स्कूल वगैरह भी जा रही है सर। तो वो कहते कहते सर लगभग रोने जैसा हो गई और बोली कि हम तो कभी मिल नहीं पाएंगे आदरणीय मोदी जी से, लेकिन आप मोदी जी को हमारा एक संदेश जरूर दीजिएगा कि मेरा और मेरे पूरे परिवार का तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग जीवन भर उनका ऋणी रहेंगे। और आप मैंने उनको भगवान, मेरी उम्र भी उनको लग जाए, ऐसा वो बताएं सर।
0: देखिए, मेरी तरफ से भी उस बच्ची को बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन आपने देखा होगा
1: जी सर
0: कि जब योजनाएं बनती हैं तो कभी कभी लगता है चलो भाई सरकार है तो योजना बना दी। कभी कभी हम पॉलिटिकल लोग उस योजना का वर्णन भी करते हैं, लेकिन से योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती है, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है, और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है। और इसलिए मैं तो सभी सेवा यात्रियों को कहूंगा कि आप जीवन भर सार्वजनिक में जब जीते हैं तो सामान्य मानवीय के जीवन में जो बदलाव लाने वाली योजना है उसका, उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, सही लाभ मिले, और उसकी जिंदगी भी सही रास्ते पर चले, इसके लिए लगातार हमने काम करते रहना चाहिए। हाँ बताइए, और क्या कह रहे थे?
1: जी सर, उससे उसके बाद सर उस जिले से हम लोग आगे बढ़े तो एक

0: सिहोरा जिला में हम लोग विधानसभा में गए, वहां पे नगर पार्षद सिहोरा में सफाई कर्मियों से हमारा संवाद था सर। तो सफाई कर्मियों से संवाद हुआ, उनका हम लोगों ने पूजन वगैरह किया। उसके बाद सर एक महिला से हमने बात करने की कोशिश की, तो महिला से बात हुआ। तो थोड़ा पहले महिला शर्मा रही थी, फिर हमसे बात होने लगा। फिर हम महिला से पूछे कि कैसा लग रहा है चाची जी कि आपका सम्मान हम लोग कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, सफाई का आप सफाई का काम करते हैं, स्वच्छता साथी हैं आप, कैसा ऐसा। तो ये बातचीत जब क्रम में होने लगी तो वो महिला बता रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं उसके बाद से समय समय पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सफाई कर्मियों के साथ बैठकर एक फोटो कभी आता है, सफाई कर्मियों के साथ बैठ के आप चर्चा कर रहे हैं, उन पर कभी फूल छिड़क कर आप उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, तो उसके बाद से वो बोलती हैं कि जो लोग हमको समाज में पहले पूछते नहीं थे वो अभी हमको पूज रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हम लोग का आया है और हम लोग अब सर झुका के काम नहीं करते हैं, सर उठा के काम करते हैं। तो हम बोले आप सर उठा के काम, सर छुपा के, सर उठा के क्यों काम, ऐसा ऐसा क्या बोल रहे हैं? तो फिर वो बोल रहे हैं कि हम सर उठा के इसलिए काम कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि अब तो हम अपने सांसद जी को भी देखते हैं, अपने विधायक जी को भी देखते हैं, नेता जी को भी देखते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो हम लोग को झाड़ू लगाने से क्या सर, ऐसा है सर।
1: देखिए गांधी जी के जीवन की तरफ देखते हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ते थे, आजादी का आंदोलन भी चलाते थे, लेकिन वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे, आवाज उठाते थे। हमें भी हमारे समाज में निरंतर रिफॉर्म भी हो उसके लिए हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने काम करते रहना चाहिए। सिर्फ अपनी वोट बैंक की तरफ ध्यान रख करके सब कुछ चलता है चलने दो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये स्वच्छता के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, उनको गरिमा मिले, उनको सम्मान मिले, उनको हम गले लगाएं, क्योंकि वो समाज को कितनी बड़ी सेवा देते हैं, उस सेवा का सम्मान होना चाहिए। ये संस्कार समाज के एक एक घर में, एक एक व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। ये सिर्फ जब मैंने प्रयागराज में जो सफाई का काम करते थे और जिसके कारण प्रयागराज में हमारा कुंभ पूरी दुनिया में स्वच्छता के लिए मशहूर हो गया था, भारत की इज्जत बढ़ गई थी, तो मेरा मन कर गया कि जिन्होंने भारत की इज्जत को इतना बढ़ाया है, सफाई करके बढ़ाया है, मैं उनके पैर धो करके आशीर्वाद लूंगा। और इसलिए मैंने वो प्रयागराज में सभी हमारे सफाई कर्मी भाई बहन थे उनके पैर धो करके, क्योंकि उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया था, उन्होंने वहां के लोगों को स्वच्छता दी, सुविधा दी, वो तो एक है, लेकिन उनके उस काम के कारण देश का सम्मान बढ़ा था। तो इसलिए कोई समाज में छोटा नहीं है, समाज में कोई काम छोटा नहीं है। आपकी सेवा यात्रा के माध्यम से आप भी जरूर अनुभव करते होंगे, आप भी सीखते होंगे और आप ये संदेश भी पहुंचाते होंगे। आइए, बहुत बातें हुई, आगे किसके साथ बात करेंगे?
0: धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद प्रदीप जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपकी अनुमति से जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में हमारे जो सेवा यात्री हैं श्री रोहित सन्यासी जी, जो मूलतः उत्तर प्रदेश से ही हैं, उनसे विनती करूंगा कि वो आए और आपके समक्ष अपना अनुभव कथन प्रस्तुत करें।
1: रोहित जी नमस्ते।
3: सादर प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी।
1: अभी कहाँ पहुंचे हैं आप लोग?
3: अभी माननीय जी मैं ललितपुर में अपनी टोली के साथ पहुंचा हूँ।
1: आप सब ठीक है ना? कोई कठिनाई तो नहीं हुई है ना?
3: जी नहीं भाई साहब, एक नई ऊर्जा के साथ पूरी टोली आगे बढ़ रही है और रोज अपने मार्ग पे एकदम तेजी से आगे।
1: सभी राज्यों के लोग आपके साथ हैं तो सब राज्यों के विषय में भी जानकारी लेते हो नहीं, जब कहीं रात को रुकते हो
3: जी?
1: तो अलग अलग राज्यों के विषय में जानकारी लेते हो कि नहीं लेते हो?
3: हमारी जो सेवा टोली है इसमें हरियाणा और छत्तीसगढ़ के सेवा यात्री हैं और एक परिवार जैसा माहौल पूरी टोली के अंदर बन गया है। हम लोग साथ में उठते बैठते हर सेवा कार्य जो भी है सब साथ में मिलके करते, खाना पीना हर चीज, मतलब एक पारिवारिक माहौल बन गया है पिछले 6-7 दिनों में साथ रहते रहते।
1: आपकी टोली में है कोई जो पहले गुजरात गए हुए हैं?
3: हम ही गए थे अभी 6 महीने पहले, मैं गुजरात गया था।
1: और कोई गुजरात से परिचित नहीं है इसमें?
3: ये वहां पे अभी कोई परिचित नहीं हुए।
1: अच्छा, तो क्या आपने तो गुजरात देखा हुआ है, तो इन सबको बताया गुजरात में कहाँ कहाँ जाएंगे, यात्रा के बाद वहां रुकेंगे तो क्या क्या देखेंगे, इसका कोई प्लान वान किया है कि भाग जाओगे?
3: नहीं नहीं, हम लोगों ने पूरे प्लानिंग की है कि वहां पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और वहां पे जो
1: लिबर्टी तो अमेरिका में है भाई, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो अमेरिका में है, तो अमेरिका जाओगे?
3: नहीं नहीं, वो
1: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है।
3: जी जी जी
1: हाँ, देखिए यही है हम लोगों का काम कि सही बात हम भी याद रखें और गांव गांव तक सही बात सही शब्दों में पहुंचे, वरना क्या हम लोग सबको पता ही है, सबको पता ही ऐसा मानते, ऐसा नहीं होता है। हर चीज की बारीकियां लोगों को पता नहीं होती, बतानी चाहिए।
3: जी
1: हाँ, रोहित जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही
3: तो वहां पे हम लोग।
1: हाँ बताइए, अब सुनाई दे रहा है।
3: जी भाई साहब, तो वहां पे हम लोग द्वारकाधीश जो पानी समुद्र के अंदर कॉरिडोर बना है, ये सब हमारे हरियाणा वाले भाई और छत्तीसगढ़ वाले भाई ने बोला है कि भैया वहां चलेंगे, तो ये चीजें घूमना है।
1: अच्छा, यात्रा के दरमियान, वहां पे चलेंगे यात्रा के दरमियान,
3: जी
1: जो सेवा यात्रा है, ये आप सेवा का संकल्प लेकर के चले हैं, सेवा की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वाह इस सेवा के कारण कितना बड़ा हमें भी संतोष मिलता है, जहां सेवा कर रहे हैं उनको भी संतोष मिलता है, कोई बता सकते हैं अनुभव?
3: जब हम लोग यात्रा लेकर खजुराहो के पास पहुंचे तो रात में लगभग 9:30 बजे का टाइम था, और उस समय मैंने वहां पे देखा कि रात में 9:30 बजे लगभग 100 की संख्या में बुजुर्ग महिलाएं बच्चियां बच्चे सब खड़े थे, और वहां पे तो हाथ में एक बोर्ड लिए थे जिसपे लिखा था कि प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम शुक्रिया। तो हम उनसे पूछे, हम कहे एक चीज ये बताइए, आप लोग इतनी रात में और इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे खड़े हैं और ये मोदी जी को धन्यवाद वाला बोर्ड लेके क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने बताया, एक दादाजी थे जिनकी एज लगभग 72 ईयर थी, उन्होंने बताया कि बच्चा जब हम लोगों ने यहाँ पे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पे खून तो आराम से मिल सकता है था पहले, लेकिन जल खोजने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ा, और इस समस्या का निदान आज तक कितनी कोई भी सरकारें हम इसके बारे में विचार नहीं किया, लेकिन हमारे मोदी जी ने केंद्र सरकार की जो योजना ये केन और बेतवा परियोजना जो लाए हुए हैं, ये 2-3 साल में जब बनकर तैयार होगी तो जो चीज की पीड़ा हम लोगों ने सहा है वो हमारे बच्चों को इस पीड़ा को नहीं झेलना पड़ेगा, और हम सुकून से ये आशा करेंगे कि हमारा बुंदेलखंड पिछले अगले 2-3 सालों में हरा भरा हर प्रदेश की तरह दिखाई देगा। तो ये चीजें जब मैंने देखा तब मुझे समझ में आया कि सेवा की जो भावना आप लेकर काम कर रहे हैं वो लोगों के दिलों में किस प्रकार से अंदर तक एकदम अपनी जगह बना ली है, और कितने अच्छे से वो लोग इतना ज्यादा आपको वो बोले कि अगर वहां जा रहे हो तो मोदी जी को मेरा राम राम बोल दियो।
1: चलिए, मेरा भी राम राम उनको बता दीजिए। अब आप लोग नौजवान है, आपने देखा होगा बुंदेलखंड में इतने बढ़िया बढ़िया किले हैं, क्या कभी उन किलों की तरफ नजर गई? पहले सुना भी नहीं था, और कभी मन करता है कि यात्रा पूरी होने के बाद कभी 2-4 नौजवान की टोली बुंदेलखंड के हर किले पर चढ़ेंगे और हर किले को देख के आएंगे, ऐसा मन में इच्छा होती है कि सबको?
3: जी, एक दो जो पास में नजदीक में पढ़ते हैं वहां पे हम लोग स्वच्छता अभियान 1-2 किलो पे जाके किया है।
1: ये बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छा किया, किले की सफाई की, ये बहुत अच्छा किया आपने। आपको मालूम होगा महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने खुद ने जाकर के किलों की सफाई का नेतृत्व किया था, ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आपको मालूम है ना, बुंदेलखंड में मठा और आलू, मठा आलू खाया जाता है, नहीं खाया जाता है?
3: जी जी जी जी
1: हाँ, मैं जब भी गया बुंदेलखंड के लोगों ने मुझे बहुत प्यार से खिलाया
3: जी।
1: देखिए साथियों, जब भी आप रास्ते में जाएं, आप लगातार सेवा का काम करते रहें, स्कूल के बच्चे हो, गांव के बुजुर्ग हो, हमारी योजनाएं हो, उस योजनाओं को लोगों को लाभ मिले। और लोगों को ये भी प्रेरित करना चाहिए कि देखिए, ये देश को विकसित भारत बनाना है तो हर किसी को कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। दो चार लोग करते रहे इससे बात बनेगी नहीं, ये भाव हरे के अंदर जगाना है आपको। दूसरा, आप जो अनुभव है आपके, उसको लिखिए। लिखने का समय नहीं है तो मोबाइल फोन पर टैप कर लीजिए, और जब यात्रा पूरी होने के बाद जाएंगे तब लिख लेना, ये आपको बहुत काम आए
3: जी।
1: आप लोग रास्ते जी, में जी। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, सोशल मीडिया का ग्रुप बनाना, लोगों से नंबर लेना, लोगों के मोबाइल में नमो ऐप डाउनलोड कराना, ये सब करते हैं क्या?
3: जी जी जी भाई साहब,
1: चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे कौन है भाई, बात करेंगे?
3: धन्यवाद
2: जी। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अनुमति से मैं अभी जिला सागर मध्य प्रदेश में उपस्थित श्री अमन अग्रहरी के, जो छत्तीसगढ़ से हैं हमारे सेवा यात्री, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना अनुभव कथन प्रस्तुत करें।
1: अमन जी नमस्ते।
4: नमस्ते। राधे राधे।
1: राधे राधे
4: जी। हम बहुत अच्छे से हैं, सागर जिला पहुंचे हैं अभी, और सागर जिला के साथ ही हमें एक बहुत अच्छा परिवार भी मिल गया है। इसके इस परिवार में हमारे तमिलनाडु के कुछ साथी हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे इंचार्ज अश्वनी सिंह जी का मार्गदर्शन है। इसके साथ ही सभी बहुत अच्छे से नए परिवार के साथ मेल मिलाप को चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस यात्रा में। मान लीजिए
1: अमन जी, आप कहाँ से हो?
4: मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ से बिलासपुर में, एक कोटा नाम का जनपद है अपना, वहीं से मूल निवास है मेरा।
1: तो आप पुराने मध्य प्रदेश से और नए मध्य प्रदेश में जा रहे हो?
4: जी जी, मैं आते वक्त ये बात बोला भी था कि मेरा जन्म तो वाकई में मध्य प्रदेश में ही हुआ है, लेकिन आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण हम कहीं छत्तीसगढ़ में पल रहे हैं।
1: अच्छा बताइए भाई, की तरह ही क्या अनुभव रहा है? आप घर परिवार में संपर्क रहते हैं, रोज डेली बात करते होंगे, घर में सारी बातें बताते होंगे?
4: हाँ जी।
1: तो ऐसा तो नहीं है सारे यात्री जैसे ही शाम को ठिकाने पर पहुंचते होंगे तो सब बातचीत करते ही नहीं होंगे, सब अपने अपने मोबाइल पर अपने घर में लग गए होंगे, ऐसा तो नहीं करते ना?
4: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि यहाँ एक मेरा सुकमा का एक साथी है, जब लोग कई बार वो सुकमा का अपने इंट्रोड्यूस करता है, उसे वो कई बार नक्सली के नाम से पूछ देते हैं, भैया आप तो नक्सली क्षेत्र से है ना, तो वो सुनकर कहीं ना कहीं मेरे पे एक दर्द सा होता है कि भाई को इस तरह नक्सली से क्यों जोड़ा जा रहा है। लेकिन उतने में वो बड़ा हर्ष से उत्तर देता है, वो पुराना सुकमा था, अभी तो ये मोदी जी का सुकमा है जिसमें आज बहुत ही अच्छे से हम लोग खुशहाल जिंदगी।
1: आपने दुखी नहीं होना चाहिए, आप ठीक है, वो समय था और जनता याद रखेगी, उनको अभी बताइए हाँ ऐसी ऐसी भयंकर स्थिति थी, ये स्थिति का वर्णन जरूर कीजिए, छुपाइए मत, और फिर बताइए कि धीरे धीरे करके 10 साल में क्या बदलाव आया और सुकमा अब सुकमा बन गया है, ये सबको बताइए आप।
4: जी जी बिल्कुल। और एक अनुभव रहा है हम लोग का कि हम लोग एक यात्रा के दौरान अपने सागर जिला में ही एक बंडाई स्थान पर रुके, कल वहाँ एक आरती पूजन में हनुमान जी के सम्मिलित होना हुआ, वहाँ कुछ महिलाएं वहाँ कीर्तन कर रही थी, उस कीर्तन में हम सभी बैठकर भी उनका कीर्तन सुन रहे थे। उसी दौरान निकलते वक्त प्रसाद देते टाइम हमने एक माता जी के चरण छुए, चरण छूते ही उन्होंने बड़ी आत्मीयता से हमें आशीर्वाद के रूप में अपने सर ने हाथ रखा, जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो हमने माता जी से पूछ पड़ा, माता जी आप क्या आप इस यात्रा के विषय में जानती कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो माता जी ने कहा, बेटा ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन अवश्य ये राम का काज है जो प्रभु हनुमान जी आप लोगों के माध्यम से करा रहे हैं, आप इसमें मोदी जी का सहयोग करिएगा, और कहीं ना कहीं हम सबके साथ जो मिलकर चल रहे हैं उसमें मोदी जी ने आज हम लोगों को अपने घर से, बेटा हम घूंघट डाल के रहते थे, आज घर से जो आगे आकर मंदिर आ पा रहे हैं, आज सामने नेतृत्व कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी का किया हुआ एक वातावरण निर्मित हुआ है महिलाओं के लिए। और इस वातावरण को निर्मित करने में वाकई में आज की सरकार ने बहुत सारे काम किए। इस सरकार में एक भावुक पल भी उन्होंने बताया कि पहले हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी बेटा इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमको थोड़े थोड़े चीजों में आज जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसके चक्कर हमने पुनः शीश उठाकर चढ़ना सीख पाया है। और हमारे यहाँ स्वयं पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की जो नेतृत्व करता है, आज स्वयं एक हमारी रानी कुशवाहा दीदी कर रही है, जिनके नेतृत्व में वास्तव में एक महिला को, कम उम्र की महिला को इतना बड़ा नेतृत्व देना भी एक उदाहरण योग्य है। ऐसा करके उन्होंने एक दो एग्जाम्पल भी रखे। इसी एग्जाम्पल के दौरान उन्होंने बताया भी कि मुझे भी कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना के अंतर्गत शिवराज मामा जैसे एक परिवार में रहने का मौका मिला है, इसके लिए भी मैं शासन की बहुत बहुत आभारी हूँ।
1: क्या आप लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर ली है और इस दरमियान कई जगह लाभार्थी सम्मेलन भी हुए हैं, आप अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से भी बात कर रहे हैं?
4: बिल्कुल,
1: इन जनरल जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को इन सारी चीजों की कितनी जानकारियां हैं? क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो तो हम जब आए उसके पहले तो वो कोई 4 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, उसको उस समय का कुछ मालूम नहीं होगा। तो अभी जब युवाओं से बात करते हो तो उनको पता चलता है कितना बड़ा बदलाव आया है।
4: हाँ जी, एक वार्तालाप, मेरी स्कूल की कुछ बहनें वहां पर वंदे मातरम गीत करने आई हुई थी, उनसे जब मैंने संवाद किया कि बहन ये वंदे मातरम गीत के विषय में आपका क्या मन ध्यान है, क्योंकि वो बड़ा भाव विभोर होकर वंदे मातरम को अंदर से गा रही थी, तो उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि भैया मेरे यहाँ पिताजी जब भी मैं स्कूल से वंदे मातरम सीख के आती, घर पे उनको बताती, तो वो थोड़ा दुखित होते थे, बेटा ये अधूरा है, ये अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया है। जब वो मुझे सिखाए, मैंने उसको सीखने का अभ्यास भी किया, लेकिन स्कूल में मुझे रोक दिया जाता, इसके आगे वंदे मातरम नहीं गाना है, यहाँ वंदे मातरम ऐसा उपयोग नहीं करना है। लेकिन जब से वंदे मातरम को आज पूरा सम्मान मोदी जी के कारण मिला है, मुझे घर से उठाकर मेरे पिताजी से परमिशन लेके मुझे बुलाया जाता है, भैया कि दीदी आपको उस कार्यक्रम में ना वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करना है, थोड़ा सा आप समय निकालेंगे, ऐसा करके मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वास्तव में पूरे भारत देश के राष्ट्रीय गीत को मोदी जी ने सम्मान दिलाया, जिसकी वजह से आज मैं मंच पर आकर वंदे मातरम गीत प्रस्तुत कर पाती हूँ। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद।
1: सभी यात्रियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, और जब बड़नगर जा रहे हैं तो उस धरती को मेरी तरफ से भी नमन कर दीजिएगा, और
4: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल,
1: और गुजरात भी देखिए, जानिए, वडनगर को देखिए, जानिए, क्योंकि काशी की तरह वो भी हजारों साल पुराना गांव है, बहुत सारा
4: महाकाली
1: इतिहास उसमें समाया हुआ है, तो आप जरूर देखिए, जानिए। चलिए आगे कौन है, हमसे कौन बात करेगा?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी अनुमति से झांसी महानगर से जो श्री समीरन दास, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं हमारे सेवा यात्री, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना अनुभव कथन प्रस्तुत करें।
1: समीर जी नमस्ते।
5: जय मां दुर्गा मोदी जी।
1: समीर जी आप कहां से हैं?
5: मैं बंगाल से हूँ।
1: बंगाल से
5: जिला से पूर्व।
1: तो बंगाल के लोग तो अभी तो दुर्गा पूजा में तैयारी में लगे होंगे, आप कहाँ यहाँ घूम रहे हो भाई?
5: एकदम एकदम सब लोग दुर्गा पूजा में लगे हुए हैं, और आपका जो सपना है विकसित भारत बनाना है, तो हम लोग का युवा का जो आप लोग सोच, आप जो सोच के आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम लोग वो माता जी के लिए गांव का सब लोग है, और हम लोग आपका सपना और हम लोग का सपना साकार करने के लिए सेवक संकल्प अभियान के लिए आए हैं।
1: अच्छा, आपने अब सैकड़ों गांवों की यात्रा की है, बीते 12 वर्षों में भारत में शहरों और गांवों के बीच का जो गैप है वो काफी कम हुआ है, गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है, हमारी बहनों बेटियों वो भी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम बढ़े हैं, कहीं कहीं तो नमो ड्रोन दीदी मिली होगी, कहीं पर लखपति दीदी मिली होगी, कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं क्या? लोग बताते हैं, इस बदलाव की चर्चा करते हैं क्या?
5: जी मोदी जी, मैंने दो जगह हमको सबसे अच्छा लगा मोदी जी, जैसा उत्तर प्रदेश में एक गांव है गांव का मैं डायरी में नोट करा हुआ है। तो गांव में गया मोदी जी, वहां पे जो स्कूल में हम लोग पहुंचे, तो वहां पे जब स्कूल में जब पहुंचे दोपहर को, देख रहे हैं वहां पे बच्चे लोग एलईडी जो स्क्रीन होता है उस स्क्रीन में बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा मैंने पूछा वहां से माता जी को, पूछ रहे जे यहाँ पे स्कूल कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, बोला यहाँ से 10 साल पहले जो शासन काल था उसमें ये स्कूल में शिक्षक होता ही नहीं था, अभी मोदी जी का शासन काल में ये आप भी देखिए कितना बच्चा है, कितना अच्छा से पढ़ाई कर रहा है और एलईडी लगा के वो लोग कार्टून देखते रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं।
1: और सबसे बड़ा और किसी का कोई अनुभव है क्या, बताना चाहते हैं क्या आप?
5: चीज है, मैं हम लोग जो बनारस से मोमा जिला पहुंचे तो रास्ते पे अचानक बारिश हो गया था, तो इसी का वजह से मैं और मेरा जो बाइक का साथी है यूपी का वो कानपुर से है, तो एक साथ हम लोग थे तो पानी की रास्ते का साइड में एक घर मिला, तो घर मिलने के बाद तो माता जी को बोले जी माता जी मेरे को प्यास लग रहा है तो थोड़ा पानी पिला दीजिए, तो माता जी ने पानी पिया और बोला कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला माता जी हम लोग का जो संकल्प है सेवा संकल्प अभियान, हम लोग बनारस से गुजरात तक जा रहे हैं मोदी जी का गांव, तो बोला तो मैंने जब पानी जब करने वाले थे तब माता जी को पूछे जी माता जी आपको भाजपा का सरकार में या मोदी जी के शासन काल में आपको क्या सुविधा मिला, तो मेरे को हंस के बोला जी बेटा मैं जब अगला वाला जो सरकार था उस सरकार में हम क्या दूर जाके जंगल में लकड़ी सूखा जो लकड़ी होता है हम सर पे लाके हम घर में लकड़ी जमा करते थे फिर हम लोग भोजन करना पड़ता था वो जला के। अभी मोदी जी का शासन काल में हम लोग का जो सूखा लकड़ी उसका छुटकारा मिला, हम लोग को योजना से हम लोग का गैस का चूल्हा मिला। योजना से क्या होता है कि हम लोग को जो पहले लकड़ी से सूखा लकड़ी से हम लोग काशी होता था उसमें आग जलता था, अभी उससे छुटकारा मिला और दूर दूर से लकड़ी लाना हम लोग को छुटकारा मिला। और एक चीज बोला है मोदी जी आपके आपको आपके लिए एक वार्ता है वहां का माता जी का, माता जी बोला है हमें मोदी को हमारे तरफ से धन्यवाद करिए।
1: चलिए मेरा भी प्रणाम कर दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे, अब क्योंकि आप लोगों को भी निकलना होगा, दिन भर आपको तो दौड़ते रहना होता है, सेवा का काम भी करना होता है, सेवा का संदेश भी देना होता है।
5: मोदी जी और एक चीज बोलना है, हम लोग जैसा बंगाल से है हम लोग का साथ उत्तर प्रदेश का भाग लोग है कानपुर फतेहपुर उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र से हम लोग का भाई लोग है, हम लोग जो हम लोग का संकल्प अभियान है ये संकल्प अभियान में हम लोग एक नारा सेट किया हुआ है। एक नारा क्या है, हम पहले बोलते थे एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम, अभी हम लोग का नारा है एक ही नारा एक ही नाम जय माँ काली जय श्री राम।
1: वाह चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे, अब आगे क्या कार्यक्रम है भाई?
2: जी धन्यवाद समीरन जी। माननीय प्रधानमंत्री जी आगे का क्रम में शुरू करूं, वैसे तो अनुभव कथन का क्रम पूर्ण हुआ है पर आपकी अनुमति से एक अनुभव मुझे कहना है कि कल मैं पुष्कर जिले के केसरपुरा गांव में गए थे और वहां पे लाभार्थियों का संपर्क जब हम कर रहे थे तब हम एक प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में गए, शिवराम जी का वो घर था, वहां पे घर की चौखट में एक चूल्हा भी था, तो उन्होंने बोला कि बहन ने बोला कि आप चाय पियेंगे, तो मैं थोड़ा हेजिटेंट हो रहा था कि अभी भी यहाँ पे चूल्हे में चाय बना रहे हैं, मैंने बोला नहीं नहीं आप इतना दिक्कत मत करिए, तो शिवराम जी मेरे बॉडी लैंग्वेज को समझ गए, वो बोले कि साहब ये चूल्हा तो अभी हम शौक से यहाँ पे खाना बनाते हैं, हमारे यहाँ पे उज्ज्वला योजना का हमारे पास सब कुछ है तो हम चाय वहां पे बना रहे हैं आप चिंता मत करिए। तो इस प्रकार से पहले जो मजबूरन चूल्हे में भोजन बना रहे थे अभी वे शौक से कभी अगर मन हुआ है चूल्हे का खाना है तो ही बनाते हैं और उज्ज्वला योजना से उनके घर में इतना बदलाव आया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा और अभी मैं आपसे ही विनती करूंगा कि आप हम सभी सेवा यात्रियों को अपना प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्रदान करें।
6: वक्त एक ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: बड़े सौभाग्य की बात है साथियों, वडनगर ने मुझे जीवन के संस्कार दिए और काशी ने मेरे संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग भरे हैं। मुझे संतोष है कि आप सभी युवा साथी भी अपनी आत्मा को अनेक सेवा के रंगों से सराबोर कर रहे हैं। ये रंग देशभक्ति के हैं, ये रंग सेवा के हैं, संस्कारों के हैं, संकल्प के हैं। विकसित भारत बनाकर के ही रुकेंगे, इस भाव का प्रगटीकरण है सेवा संकल्प यात्रा में, तो ये भाव हर तरफ दिखता है। कल पहली टोली से बात करते हुए भी मैंने कहा था, सेवा का संदेश सिर्फ कथन से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से आगे बढ़ना चाहिए, और वो आप सभी मेरे नौजवान साथी, देश के कोने कोने से मोटरसाइकिल पर निकले हुए साथी, आप सबने करके दिखाया है। आज आप सब जिस समर्पण के साथ सेवा कार्य कर रहे हैं, जब मैं आपका ट्रैकर देख रहा था, वेबसाइट पर आपकी फोटो देख रहा था, बिफोर और आफ्टर के सारे दृश्य देख रहा था, इतना संतोष होता है कि वाह क्या अद्भुत काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत गर्व होता है। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती भी है। पंडित दीनदयाल जी चरैवेति चरैवेति चरैवेति के मंत्र का हमें हमेशा संदेश देते रहे, लेकिन अपने जीवन से देते रहे। वे स्वयं अविरत यात्री थे, एक सेवा यात्री के रूप में निरंतर चलते रहना ही हमारा ध्येय है, और इसमें हमें बहुत बड़ी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मिलती है। पंडित दीनदयाल जी भारतीय राजनीति के उन महान व्यक्तित्वों में रहे हैं जिन्होंने भारत को विदेशी चश्मे से देखने के बजाय स्वदेशी विजन दिया। उन्होंने सेवा के संस्कार को नए सिरे से गढ़ा। उनके एकात्म मानव दर्शन में सेवा का वो स्वरूप है जो बीजेपी के हर कार्यकर्ता, बीजेपी की हर सरकार को हमेशा प्रेरित करता है। एकात्म मानव दर्शन को सरल शब्दों में समझना है तो यही है कि व्यक्ति का विकास हो, लेकिन वो विकास व्यक्ति समाज और देश से अलग नहीं हो। समाज का विकास हो लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके नहीं, और देश का विकास हो लेकिन उस विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी जरूर पहुंचे। साथियों, पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं, और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये सात सूत्र हैं, सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। ये हैं ये सात सूत्र। और साथियों, आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है। आप गांवों में जाते हैं, बच्चों को पढ़ने लिखने का सामान देते हैं, गांव में पौधारोपण का काम करते हैं, वृद्ध जनों की सेवा करते हैं, कहीं माताओं बहनों से संपर्क करते हैं, कहीं युवाओं के साथ बैठकर उनके सपनों को समझते हैं। यह सब अलग अलग काम दिखाई देते हैं, लेकिन इनके पीछे एक ही भाव होता है, और वो भाव मानवता को केंद्र में रखकर समाज की सेवा का है। और यही सेवा भाव हमें दीनदयाल जी के अंत्योदय के विचार तक ले जाता है। हर भाजपा कार्यकर्ता को गर्व है कि पंडित दीनदयाल जी ने हमें जो प्रेरणा दिए हैं, हम पूरे सेवा भाव से उस पथ पर चल रहे हैं। साथियों, सेवा संकल्प यात्रा से जुड़ी जितनी भी टोलियां हैं, ये बहुत बड़ा काम है। 20 टोलियां, 20 अलग अलग रूट, 1000 से ज्यादा सेवा यात्री, हजारों गांव, हजारों किलोमीटर, लाखों लोगों के दर्शन, उनसे बातचीत, ये सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य, सुखद अनुभव है। और ये भी सुखद है कि हर टोली के नामकरण में भी इसकी झलक दिखती है। टोली का नामकरण हमारी पवित्र नदियों पर किया गया है। नदी यह नहीं पूछती कि उसके किनारे कौन रहता है, वह यह नहीं पूछती कि कौन किस भाषा का है, नदी ये नहीं पूछती कि कौन किस परिवार का है, कितना अमीर या कितना गरीब है। नदी बस बहती है, सुजलाम सुफलाम का मंत्र देते हुए हर किसी को नव जीवन देती है। सेवा संकल्प यात्रा भी ऐसे ही एक नदी के गुणधर्मों को लेकर के, नदी की तरह ये युवा ऊर्जा की प्रतीक है। ये यहां से गुजर रही है, वहां आसपास रहने वाले लोगों के जीवन को जीवंत कर रही है। ये जन कल्याण से जग कल्याण के भाव की प्रतीक बन रही है। साथियों, आप सभी जानते हैं मेरे अपने जीवन में इस तरह की सेवा यात्राओं की कितनी बड़ी भूमिका रही है। देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मुझे जाने का सौभाग्य न मिला हो, उस जिले की मिट्टी को माथे पर चढ़ाने का मुझे अवसर न मिला हो। अनगिनत जिले होंगे जहां मुझे रात को रुकने का मौका मिला है। ये यात्राएं भी एक तरह से हर यात्रा और यात्रा में मिला हुआ हर अनुभव एक गुरु की तरह आज भी मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। इन यात्राओं ने मुझे बहुत सिखाया है। आप जहां जा रहे हैं वरनगर, वहीं 17-18 वर्ष की आयु में मेरी यात्रा शुरू हुई थी। पहले खुद को खोजने के लिए, अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए, और फिर समाज और राष्ट्र सेवा के लिए। इन यात्राओं में मैं जिस भी व्यक्ति से मिला, जिस परिवार के घर में रुका, हर किसी ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। ये जो सीख है, ये जो अनुभव है, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आज मैं आप सभी को इसी तरह अपने जीवन में अनुभवों की पूंजी जुटाते देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। साथियों, सेवा और संकल्प की यात्रा कभी भी रुकती नहीं है, ये निरंतर ही चलती रहती है। एक पड़ाव के बाद दूसरा नया और बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ती है। हजारों वर्षों के अनुभव समेटे हमारा भारत भी आज एक नई यात्रा पर है, एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हमें विकसित भारत बनाना है और समय जितना भी हमारा साथ है, पल पल हमें विकसित भारत के सपने को जीना है, उसे साकार करना है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं, इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी हम जितने अधिक लोगों के जीवन से जुड़ेंगे, जितने अधिक लोगों के बीच जाकर उनसे सीखेंगे, जितने रीति रिवाज परंपराएं, नए नए सोच, नई कई बातें, नए नए अनुभव, नई नई कहावतें, जितना भी सीखेंगे, खान पान भी नया होगा, पहनाव भी नया होगा, क्या कुछ नहीं होता है। विविधता, विशालता, व्यापकता, कितना बड़ा खजाना है। जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है, संकल्प कितना भी बड़ा हो, चुनौती कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सफलता का रास्ता तो छोटे छोटे प्रयासों से ही बनता है। छोटे छोटे प्रयासों की सिद्धि ही बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करता है। आपका ये प्रयास, आपकी हर सेवा, आपकी हर कोशिश उसी का एक सबसे बड़ा सबूत है। साथियों, काशी से वडनगर की सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा छोटी छोटी यात्राओं के हिस्सों में आगे बढ़ रही है। हर हिस्से का अपना आनंद है, अपनी सीख है, अपनी ऊर्जा है। कल मेरी जो चर्चा हुई थी, उसमें मैंने सभी युवाओं से कहा था कि अपने अनुभवों को लिखते रहे, रिकॉर्ड करते रहे। आपसे भी मैं फिर से एक बार इसी का आग्रह करूंगा। इस यात्रा पूरा होने के बाद ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। साथियों, वडनगर तक की यात्रा तो कुछ समय बाद पूरी हो जाएगी, लेकिन विकसित भारत की यात्रा और आपके व्यक्तित्व के विकास की यात्रा ये अनवरत चलती रहेगी। इस यात्रा के बाद नई ऊर्जा के साथ चलती रहेगी, सोचने की व्यापकता के साथ चली रहेगी। आप सभी इस यात्रा से अपने अपने अनुभव, अपने अपने सबक अपने घर तो ले जाएंगे, अपने साथियों के बीच में ले जाएंगे। और जब आप गुजरात पहुंच जाए तो समय मिले तो वहां के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को भी जरूर देखिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती आश्रम, सोमनाथ, द्वारिका और लायन तो वहीं पर है, गिर नेशनल पार्क जाइए, मुझे मालूम नहीं है इन दिनों किस तारीख से वो खुलेगा, क्योंकि मौसम के कुछ समय वो बंद रहता है, लेकिन अगर वो खुलता है तो उसका सौभाग्य आपको मिलेगा, वरना दोबारा आना पड़ेगा। इंसानों को करीब से देखिए, वहां के लोगों को भी मिलिए, बातें कीजिए, बहुत कुछ सीखिए। मुझे विश्वास है यात्रा आपके भीतर के हर किसी के अंदर कुछ तो तत्व होते ही होते हैं, लेकिन यात्रा एक प्रकार से अहम सोए वयम की तरफ, स्व से समष्टि तरफ जाने की एक बहुत बड़ी सीख होती है। आपकी तरफ उम्मीदों की दृष्टि से देश देख रहा है, युवा पीढ़ी देख रही है, आने वाली पीढ़ियों को भी ये आपकी बातें बहुत काम आने वाली है। आपको मेरा एक और आग्रह भी है कि आप यात्रा पूरी होने के बाद, क्योंकि आप 10-10 रूट के लोग हैं, अभी तो आप जब चल रहे हैं तो 20 लोग हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे तब आप 500 लोग हो जाएंगे। जब वडनगर पहुंचेंगे तब 500 लोग होंगे, 7 अक्टूबर को आप पहुंचेंगे। जब काशी पहुंचेंगे वो भी 500 लोग होंगे। इन 500 लोगों ने 2-3 घंटे एक साथ बैठ करके अपने अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए, ये कार्यक्रम जरूर करना, वरना आप थक गए हैं, इतनी मोटरसाइकिल चलाई अब कितना करेंगे, ऐसा मत करना, वो बातें बहुत काम आएगी, सीखने के लिए काम आएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर करके, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े, अपने को भी संभालें, परिवार से संपर्क बनाए रखें, जहां से गुजर रहे हैं उन क्षेत्रों का भी संपर्क बनाए रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आप देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का संवाद उन यात्रियों के साथ जो बाइक यात्रा पर निकले हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम का आज सुबह हम शुरू करते हैं। पहले बताते हैं आपको कि आज क्या क्या खास रहेगा इस बुलेटिन में। बात होगी मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी की, राहुल गांधी के आक्रमण की और बीजेपी के जवाबी प्रहार की। रुक करेंगे यूपी का, जहां चुनावी संग्राम में योगी ने गजनवी के आक्रमण को सनातन पर चोट बताया है, तो अखिलेश ने बुलडोजर को वोट से जोड़ दिया है। साथ ही बताएंगे कि अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कैसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सवाल पूछे जाने पर भागते हुए नजर आए हैं, तो ये सब आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चुनाव आयोग को लेकर सियासी घमासान अब सड़क से संसद और थाने तक पहुंच गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस आज देश भर में चुनाव आयोग के दफ्तरों पर विरोध मार्च निकाल रहा है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत कर लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग में कथित मतभेदों का हवाला देते हुए ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने और सरकारी गवाह तक बनने की अपील की है। तो बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। तो नेता विपक्ष ने, यानी कि राहुल गांधी ने, न सिर्फ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की बल्कि उन्हें सरकारी गवाह बनने तक की भी सलाह दे डाली है। सुनिए क्या कहते हैं।
5: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
4: तो राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार में देरी नहीं की।
6: जब वो कहते हैं कि मैं 50 साल से इसको देख रहा हूं, जिसकी 56 साल की एज है वो 50 साल की उम्र से सारी चीजें समझ रहा है। मुझे लगता है 5-6 वर्ष की आयु में राजनीति को समझने की ऐसी अद्भुत प्रतिभा सिर्फ पक्की दाढ़ी वाले नौजवान में ही हो सकती है। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी का अपना अनुभव बिल्कुल सही है और राजनीतिक दृष्टि से उनका ज्ञान अत्यंत शून्य है। भारत की राजनीति का फंडामेंटल ज्ञान उन्हें नहीं है। पहली बात, उस न्यूज रिपोर्ट में किसी भी इलेक्शन कमीशन का कोट है, हां या नहीं? नहीं। तो किस आधार के ऊपर कोई बोल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने यह बोला है? किसी भी मिला जाता है और उनका स्टेटमेंट लिया जाता है, वो स्टेटमेंट कोटेड है? नहीं। एक भी क्या कोई ऐसी आपके पास रिपोर्ट है कि सर्वसम्मत से निर्णय ना हुआ हो? नहीं।
4: तो राहुल गांधी के हमले में ज्ञानेश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री भी आए हैं।
5: बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री। दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडियाज पीपल एंड वी कैनॉट सिट साइलेंट, We refuse to sit silent while this happens.
4: तो राहुल ने कहा था कि हर सरकार को एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर झेलनी पड़ती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। तो उनके सत्ता विरोधी लहर के बात को लेकर राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी ने पीएम की लोकप्रियता से जवाब दिया है।
5: हरियाणा स्विंग्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर फॉर 50 ईयर्स, suddenly anti-incumbency disappears. Maharashtra swings, suddenly it disappears. Uttar Pradesh swings, sometimes Samajwadi, sometimes BSP, it disappears. Madhya Pradesh, it disappears. Gujarat, it disappears. And this has been a fundamental question for us. We can understand the popularity of a person. We can understand the performance of a government, but we cannot understand how anti-incumbency disappears.
6: Anti-incumbency वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी के अंदर, इस गांधी परिवार के अंदर है। 100 साल से लगातार सत्ता में है कांग्रेस पार्टी की सत्ता में, और आज anti-incumbency इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो अपनी सीट बगैर अपने सहयोगी दल की बैसाखी के नहीं जीत सकते। पिछले 25 साल से रायबरेली और अमेठी समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस पार्टी जीतती रही है, वरना सोनिया जी, राहुल जी की क्षमता नहीं है कि बगैर सपा के सपोर्ट के अपने दम पे अपनी खानदानी सीट निकाल लें। और राहुल गांधी जी वायनाड जीते और प्रियंका गांधी वायनाड जीती, मुस्लिम लीग के सपोर्ट पर जीते हैं जहां 60-65% मुस्लिम है। क्षमता नहीं है, हैसियत नहीं है कि बगैर मुस्लिम लीग के समर्थन के अपनी सीट निकाल सके।
4: हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगता है कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और अलग अलग तरीके से हमले कर रहे हैं, चाहे वो प्रदर्शन हो या फिर ये सवाल हो कि महाभियोग लाया जाए या नहीं और उसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
7: बिल्कुल अंजलि, सड़क से संसद तक ये जो लाइन है एक रेटोरिक लाइन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब इस स्ट्रैटेजी पर बिल्कुल 100% काम करते हुए दिख रही है। पहले भी हमने मॉनसून सेशन के समय देखा था, जब गृहमंत्री अमित शाह को घेरना था कांग्रेस पार्टी को, तो उस वक्त वो सड़क से लेकर संसद तक कार्रवाई कर रहे थे। अब ज्ञानेश कुमार के भी मामले में यही एक्शन प्लान है। आज आपको दिखेगा कि अलग अलग राज्य इकाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट करते हुए दिखेंगे, यानी कि सभी स्टेट यूनिट्स को तुरंत कह दिया गया। और कांग्रेस के खुद के वर्क कल्चर से थोड़ा एडवांस मॉडल है, क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस हफ्ता दिन या 4-5 दिन का गैप तो लेती है। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज प्रोटेस्ट आपको होता हुआ दिखाई देगा। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, उसमें रणनीति तय होगी कि कैसे ज्ञानेश कुमार जो सीसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको घेरने के लिए देश भर में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा अभियान शुरू होगा, और इसके साथ साथ कैसे सभी विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर लेकर आया जाए। वहीं बंगाल से लेकर दिल्ली तक इसको इस मामले को लेकर सुगबुगाहट शुरू है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, अभिजीत दीप के कांग्रेस जनता पार्टी अपने स्तर पर कह रही है कि ज्ञानेश कुमार 48 घंटे के अंदर इस्तीफा दे, नहीं तो देशभर में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए सीजेपी तैयार है। तो कुल मिलाकर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और सीजेपी जैसे जो अपरेशर ग्रुप्स हैं ये सब इस मामले में इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाअभियोग, प्रोटेस्ट, और क्या ये मामला फिर से एक बार जब भी सदन चालू होगा, चाहे वो विंटर सेशन हो या स्पेशल सेशन हो, क्या उस वक्त भी इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाएगी, ये भी देखना होगा। अंजलि
4: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट के निशाने पर भी अब मुख्य चुनाव आयुक्त आ गए हैं। ममता बैनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तो ज्ञानेश कुमार की शिकायत दिल्ली के थाने में कर दी है।
8: I have come today to the Parliament Street Police Station and given a complaint to the police station here against Chor Gyanesh Kumar, Gyanesh Chor Kumar, the sorry figure who is the Chief Election Commissioner of this country. And apparently he enjoys immunity under the CEC and EC Act of 2023, Section 16, which says that the election commissioners enjoy immunity from civil and criminal prosecution.
9: ये लोग चुनाव आयोग में निर्वाचन सदन में लोकतंत्र का स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसका मुखिया है ज्ञानेश कुमार, यह हमने नहीं कहा। और दो चुनाव आयुक्त है सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी, ये दो जो लोग हैं, देश उनका आभारी रहेगा हमेशा, ये बात सामने लाई है और हमारी बातों को पुष्टि मिले उससे। ये स्लॉटर हाउस चला रहा है, ये माफिया है, अभी का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो माफिया है।
4: और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां चुनावी संग्राम में फिर आक्रांता गजनवी की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृहनगर गोरखपुर में गजनवी के हमले को सनातन पर चोट बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि गजनवी सिर्फ लूटपाट करने नहीं आया था, वो सनातन को नष्ट करने, उसे चोट पहुंचाने आया था। उनका कहना था कि जब सोमनाथ मंदिर में वो गया था तो वहां पर उसको कहा गया था लूट लो जो लूटना है, तो उसने कहा नहीं, मैं मंदिर भी तोड़ूंगा, और उसने इसी वजह से वहां की मूर्तियों को भी नष्ट किया था। तो उसका मकसद सनातन को चोट पहुंचाना था।
10: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत की वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था। जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए गया तो तमाम वहां के पुजारियों ने कहा कि भाई देखो, आप मंदिर को मत तोड़िए, भगवान सोमनाथ की मूर्ति को क्षतिग्रस्त मत करिए, बदले में जितना तुम्हें सोना चाहिए, जवाहरात चाहिए, हम तुम्हें दे देते हैं। उसने कहा नहीं भाई, मैं केवल लूटने के लिए थोड़े आया हूं, जो मिलेगा वो तो मैं लेके जाऊंगा ही, लेकिन मेरा उद्देश्य तो भारत की सनातन परंपरा को नष्ट करना है। और उसने भगवान सोमनाथ की मूर्ति को भी तोड़ा, मंदिर को भी क्षतिग्रस्त किया, लूटपाट करके फिर वापस गजनी वापस चला गया, और हर आक्रांता यही करता रहा।
4: वहीं अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा में बुलडोजर की एंट्री कर दी है, उन्होंने इसे वोट से जोड़ दिया है, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर का ही इस्तेमाल किया गया उनकी यात्रा के दौरान, और वहां से फूल बरसाए गए।
11: जन समर्थन के साथ न केवल प्रशासन

0: आप अपडेट देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा, न केवल हराएगा बल्कि ऐसी नकारात्मक राजनीति करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का काम करेंगे।
1: और अब खबर दिल्ली से, दिल्ली के कश्मीरी गेट में से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यमुना बाजार इलाके में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा सवार यात्रियों पर बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। चाकू से हुए हमले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 1 की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कश्मीरी गेट थाना पुलिस और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशन टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से अहम सुराग भी जुटाए। फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी है और पुलिस लूट समेत कई एंगल से मामले की जाँच कर रही है।
2: राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना इलाके के यमुना बाजार अंडरपास पर लूटपाट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस मौजूद है। और बता दें आपको कि गांधीनगर से खारी बावली की तरफ ई रिक्शा में 4 लोग जा रहे थे, जिनके संग यहीं पर लूटपाट की कोशिश करने की गई। और लूटपाट का जब विरोध किया गया तो हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। और बताया जा रहा है इसमें 3 लोगों को चाकू लगे हैं, जिसमें से 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। और चलती फिरती ये व्यस्त जगह है जहां पर इस तरीके की वारदात को जब अंजाम दिया गया तो उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। हर्षित मिश्रा आज तक।
1: रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। न्यूयॉर्क में शाहबाज शरीफ पत्रकारों से सवाल से बचते हुए नजर आए हैं। एक पत्रकार ने जब उनसे आतंकवाद को लेकर सवाल पूछा तो शाहबाज शरीफ ने जवाब देने से इनकार कर दिया और वहां से निकल गए।
3: प्राइम मिनिस्टर, व्हेन विल यू प्रोसिक्यूट हाफिज सईद? When will you prosecute Hafiz Saeed? Prime Minister, when will you stop harboring terrorists? Prime Minister, when will you prosecute Hafiz Saeed? When will you prosecute Hafiz Saeed? Prime Minister, when will you stop harboring terrorists?
1: और अब बात इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के यूएन स्पीच की। यूएन में नेतन्याहू भाषण देने पहुंचे तो कई देशों के डेलीगेट्स ने वॉकआउट ही कर दिया, जिसके बाद नेतन्याहू भड़क गए। नेतन्याहू ने उन्हें मॉरल कावर्ड्स कह दिया और कहा कि अगर कोई और कायर बचा है तो वो हॉल से बाहर जा सकता है। तो उनको मॉरल कावर्ड्स कहकर बुलाया नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने अपने भाषण में गाजा में इसराइल की कार्रवाई का बचाव भी किया और कहा कि इसराइल ने नरसंहार नहीं किया बल्कि उसे रोका है। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पर भी हमला किया अपनी यूएन स्पीच के दौरान।
4: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me. They tell me. This isn't the city we remember. It changed so quickly. Now, it's no wonder. You praise criminals convicted of supporting Hamas. You count as friends people like Hassan Piker, who said America deserved 9/11. America deserved 9/11. Some friends you have. You invite into your home a Palestinian journalist who filmed Hamas terrorists beating and torturing Israeli hostages and later admitted that he refused to publish the videos in order to protect, you guessed it, the terrorists. Your wife liked the

0: post praising the October 7th massacre. She liked another post saying Tel Aviv shouldn't exist. You refuse to condemn any of that. You falsely, repeatedly accuse Israel of genocide. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth.
1: और रुक करते हैं इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर का। एशियाई खेलों में भारत को दूसरा गोल्ड मिल गया है। भारत की सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में जीत लिया है ये स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में भारत का ये पहला गोल्ड है। मिक्स डबल्स में आप देख सकते हैं मिक्स्ड एयर पिस्टल के जो कॉम्पिटिशन है उसमें भारत ने ये गोल्ड जीता है। ये तस्वीर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसी दौरान जब ये कंपटीशन हुआ था उस वक्त की तस्वीर है ये।
2: सेकंड गोल्ड मेडल इन द एयर पिस्टल 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट।
1: भारत की टीम को आप देख सकते हैं एक तरफ सुरुचि जो अपना निशाना साध रही हैं
2: ऑन टारगेट ऑल थ्रू
1: और साथ में कमलजीत की ये तस्वीर जब उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है
3: रूटीन से।

0: जीना भी क्या जीना जो एक्सट्रीम ना हो।
1: तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत।
3: चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक दो तीन झुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: क्या चीज है?
2: वायरल है? चाहिए
4: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मैं हूँ ना, मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता।
5: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: ओ नादान परिंदे, बैठ
5: बैठ जा, बैठ जा।
4: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
8: तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: Maddie, I need to open a savings account.
6: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
5: स्मॉल बैंक?
6: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
5: Okay.
6: Oh, Jeevan, nothing small about us.
7: Papa.
8: Sorry, यार ये गलती हो गई है, ये छोड़ खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ।
7: टाटा
9: AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: बिजली का बिल पेड,
10: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
11: पे। इत्ता माही वे।
12: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
14: आगे आगे,
15: अरे उधर
14: उधर गया।
15: करेक्ट करेक्ट,
16: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा संकल्प यात्रियों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद, कहा योजनाओं से आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना ही सरकार का मकसद। बाइक सवारों ने सुनाए अपने अनुभव। चिंतन शिविर में पीएम मोदी का मंत्रियों को मंत्र, जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर जोर, कहा मंत्रालयों की कमियां और चुनौतियां पहचान कर एक्शन प्लान बनाए। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान, महाभियोग की तैयारी। राहुल गांधी बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे, बीजेपी बोली आयोग में मतभेद नहीं।

0: और एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड, सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में जीता सोना, 50 मीटर राइफल में देश को मिला सिल्वर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है और खबरें सियासी। लगता है कि अखिलेश यादव की रथ यात्रा कांग्रेस को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अखिलेश की ये यात्रा योगी सरकार के खिलाफ कम, हमें ताकत दिखाने की कोशिश ज्यादा थी। अजय राय ने कहा है कि अगर अखिलेश अमेठी रायबरेली आएंगे तो हम भी कन्नौज, इटावा और मैनपुरी जा सकते हैं। अजय राय ने यह भी कहा कि लगता है कि ये यात्रा राहुल गांधी को ताकत दिखाने के लिए निकाली गई है। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच जो कि है तो गठबंधन में, लेकिन इस वक्त रिश्ते काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, यहां ये दोनों विपक्षी पार्टियां जो गठबंधन में, इन्हें साथ मिलकर योगी को काउंटर करना चाहिए, लेकिन ये तो आपस में ही भिड़ रही हैं।
3: आप बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से कल ये रथ यात्रा दिखाई गई है और वो भी रायबरेली से, तो कांग्रेस का जो गढ़ है रायबरेली, जहां कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी रहते हैं हमेशा और वो बात करते हैं, तो पहले भी सीटों को लेकर ये मामला पेच फंसा हुआ था। और अब जब पीजे रथ वहां से शुरुआत की है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है कि भाई ये ताकत दिखाई किसको जा रही है, बीजेपी को या राहुल गांधी को या कांग्रेस को। और यही वजह है कि अगर कोई नेता रायबरेली से शुरू कर सकता है तो वो शुरू कर सकते हैं इटावा, कन्नौज, मैनपुरी से भी, तो क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं जो सीटों को लेकर अभी तक बात कहते आ रहे थे वो अब रार खुलकर सामने आ रही है। यही वजह है कि अजय राय जो साफ तौर से कहते आए हैं, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी चीफ और अजय राय के बीच में चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो कहीं ना कहीं अब ये माना जरूर जा रहा है कि जो सीटों को लेकर एक दूसरे के बीच में बात थी वो बन नहीं पा रही है, क्योंकि रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और वहीं कांग्रेस एक भी वहां पर सीट माना जा रहा है कि अभी तक कहीं ना कहीं देने के पक्ष में नहीं है। अब ऐसे में ये रैली जरूर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि हमारा मजबूत स्तर है यानी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस में, और इसी वजह से वहां पर ये रैली दिखाई गई। ईडी की रथ यात्रा कांग्रेस, क्योंकि वहां पर एक मजबूत स्तंभ है कांग्रेस की रायबरेली में, और वहीं पर वो सीटों को लेकर हमेशा से अग्रेसिव मोड में रहे हैं। अब ऐसे में ये पीडीए रथ आखिर ये किसको दिखाने का मैसेज है, ये बड़ा कांग्रेस को लाया है। इसी वजह से चाहे वो सीटों की बात हो, गठबंधन कहीं ना कहीं रार दिखती हुई नजर आ रही है, और इसी की वजह से माना जा रहा है कि अभी तो 2027 चुनाव शुरू नहीं हुए हैं, ये पहली रैली थी और रैली पहली भी वो भी कांग्रेस के गढ़ से, तो ये कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा है। भले ही हरचंदपुर की सीट की बात हो, भले ही रायबरेली के मनोज पांडे वाली सीट की बात हो या अमेठी की सीट की बात हो, लेकिन जो रैली थी वो जरूर बड़ा संदेश थी कि कांग्रेस के गढ़ में धमाका एक बहुत मजबूत स्तर है, और यही कांग्रेस को कहीं ना कहीं चुभ रहा है, और इसी वजह से ये साफ तौर से मैनपुरी और जो इटावा और उसकी बात की जा रही है, तो ये तो जरूर है कि ये पेच अभी भी फंसा हुआ है। और सीटों के गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ये पहली रैली की है उसमें कई सवाल खड़े हो गए हैं, कांग्रेस इसको बिल्कुल भी भा नहीं रहा है, और आने वाले समय में ये राज जरूर देखने को मिलेगी जरूर।
0: जी बिल्कुल, और सवाल ये भी बनता है कि पहले से ही हम सुन रहे थे अलग अलग नेता दोनों पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते रहते थे, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि अब अध्यक्ष स्तर पर भी ये बात बोली जा रही है, तो जिन लोगों को साथ में बैठकर सीट के बंटवारों पर आइए एक बार सुन लेते हैं, माफ कीजिएगा आपको सुना देते हैं कि अजय राय कह क्या रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं।
4: चुनाव का समय है और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी आज जिस तरीके की बात आम आदमी को उठा रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग को उन्होंने पहले से पहले दिन से जिस तरीके से सीरीज के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताई चुनाव आयोग की सत्यता कैसे चोरी करा रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के अलावा मजबूती के साथ इस बात को किसी ने नहीं उठाया।
0: तो उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। आज से अखिलेश यादव ने भी औपचारिक तौर पर अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है और अखिलेश का चुनावी रथ अपने पहले सफर में पहुंचा था रायबरेली। ये कल ही शुरुआत हो गई थी। तो रायबरेली यानी कि कांग्रेस पार्टी का गढ़। अब सवाल है कि अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से रायबरेली को ही क्यों चुना? क्या इससे बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी कोई मैसेजिंग है?

0: अखिलेश यादव ने 2027 में यूपी जीतने के लिए आज बिगुल फूंक दिया। अखिलेश का रथ निकल चुका है, मिशन है यूपी फतेह और जगह चुनी है रायबरेली, वही रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ है। अखिलेश यादव ने हर चुनाव की तरह इस बार भी एक लग्जरी बस को अपना रथ बनाया है। इस बार नारा पीडीए का है। वैसे तो अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हैं और इस पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन अब की बार इस बस पर ही लिख दिया है कि जो पीड़ित है वो पीडीए है। और एक बदलाव और हुआ है कि अखिलेश यादव ने बीएसपी के नीले रंग को भी अपने लाल रंग के साथ जोड़ दिया है।
1: काज होगा उस पीडीए रथ के जरिए। इस पीडीए रथ तैयार है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ जो पीडीए में पी है वो पीड़ित वो पीडीए, यानी जो पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है। एक नया एक नारा और उसमें ब्लू रंग को भी शामिल किया गया। नीले रंग जो परंपरागत समाजवादी पार्टी का हरा और लाल रंग होता है, उसमें नीले रंग को भी शामिल किया गया। तो एक तरीके से पीडीए से समाजवादी पार्टी ने कई गढ़ साधने की कोशिश की है, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से। वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन समाज के जो बीएसपी का जो नीला कलर है उसके जरिए भी पीडीए में जो पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा, एक अपने वोट दायरे को बढ़ाने की भी कोशिश है। तो एक तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आगाज किया है पीडीए रथ के द्वारा, और 2027 के चुनावी समर की शुरुआत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली से यात्रा करके कर।
0: उत्तर प्रदेश में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की दो प्रमुख यूएसपी है, पहला है कानून व्यवस्था और दूसरा है सनातन। यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर न्याय इतना फेमस है कि उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ के राज में माफिया राज खत्म हुआ और गलत निर्माण पर बुलडोजर चला। यही बुलडोजर यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। हालांकि ये भी आरोप लगते हैं कि योगी का बुलडोजर एक तरफा कार्रवाई में लोगों के घर भी तोड़ता है।
2: बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
0: अब अखिलेश यादव इसी बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ को जवाब दे रहे हैं। जैसे ही वो आज रायबरेली पहुंचे, तुरंत उनके कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर स्वागत के लिए खड़े थे और बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे थे, जैसे कि ये संदेश दे रहे हो कि समाजवादी पार्टी का बुलडोजर घर नहीं तोड़ता बल्कि फूल बरसाता है।
1: ये बुलडोजर से अखिलेश यादव के रथ पर, बुलडोजर से अखिलेश यादव के रथ पर फूलों की बारिश हो जा रही है। माला लेकर बुलडोजर खड़ा हुआ है, जो बुलडोजर बीजेपी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन का प्रतीक माना जाता है, उसी बुलडोजर से अखिलेश यादव का स्वागत किया जा रहा है। ये बुलडोजर ये खड़ा किया गया है रायबरेली के बसरामा में, और आप देखिए कि बुलडोजर पर तमाम कार्यकर्ता हैं। अभी तक ये तस्वीरें जो आती थी वो बीजेपी के नेताओं के स्वागत की आती थी, लेकिन रायबरेली में बुलडोजर से अखिलेश यादव का स्वागत किया जा रहा है और ये बुलडोजर पर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। और यहाँ से और देखिए अखिलेश यादव रथ पर हैं। एक रायबरेली पहुंचकर जिस तरीके से कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और फिर बुलडोजर से स्वागत।
0: अखिलेश बढ़ते जा रहे थे और कार्यकर्ताओं की भीड़ उनका स्वागत करती जा रही थी। जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी और जगह जगह कार्यकर्ता बुलडोजर और जेसीबी मशीन लेकर खड़े थे। अखिलेश की बस के दोनों तरफ ऊंची ऊंची जेसीबी मशीनें खड़ी कर दी और उन पर कार्यकर्ता सवार होकर अखिलेश को फूलमाला पहना रहे थे।
1: बीजेपी के बुलडोजर का जवाब समाजवादी पार्टी बुलडोजर से दे रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रायबरेली पहुंचे तो बुलडोजर लगाकर जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करने में लगे हैं। देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत के लिए बीजेपी के का जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जेसीबी लेकर पहुंचे हुए हैं। जेसीबी है, बुलडोजर है, जगह जगह पर बसरामा में भी बुलडोजर के साथ, और ये जेसीबी के पूरी एक दो तीन तीन जेसीबी के साथ ये माला पहनाई जा रही है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को। और ये एक तरीके से बीजेपी का जो बुलडोजर और जेसीबी जिसके सहारे वो कानून व्यवस्था बेहतर करने का दावा करती है, उसी का जवाब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया है कि वो जेसीबी लगा करके अपने अध्यक्ष का स्वागत कर रही है और अपने उत्साहित कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दे रहे हैं अखिलेश यादव के किसी भी तरीके से कोई खतरा ना ले, लेकिन उत्साही कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। जेसीबी पर चढ़ करके जो कार्यकर्ता वो पहुंचे हुए हैं और ये 3 जेसीबी लगाकर अब रायबरेली पहुंच चुका है अखिलेश यादव का काफिला।
0: चुनावी कैंपेन की शुरुआत में ही अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव वो पीडीए के नारे पर ही लड़ रहे हैं। रायबरेली की रैली में उन्होंने पीडीए का एक नया मतलब भी बता दिया। पीडीए मतलब पीड़ित, दुखी और अपमानित।
2: और मुझे तो लग रहा है यहाँ हम लोग कह रहे थे कि पीडीए का तूफान, पीडीए की हवा चल रही है, लेकिन रायबरेली में देखने को मिल रहा है कि पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, लेकिन कहीं लोधी बनाम योगी तो नहीं हो गया चुनाव। सामाजिक आंदोलन हमेशा इस धरती पर सफल हुए, भारत की धरती पर सफल हुए, ये भी वही आंदोलन की कड़ी है पीडीए का आंदोलन। और ये पीडीए का जो आंदोलन है वो तमाम हमारे पीड़ित लोग, दुखी लोग और जो अपमानित हो रहे हैं वो सब एकजुट होते चले जा रहे हैं। ये जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं,
0: बीजेपी भी जानती है कि अगर उन्हें अखिलेश यादव को जवाब देना है तो उनके पीडीए की हवा निकालनी होगी। इसीलिए बीजेपी में हर कोई इसी नैरेटिव पर है कि पीडीए पर अखिलेश यादव कंफ्यूज है।
3: पीडीए के बारे में खुद कंफ्यूज है कि पीडीए क्या है। कभी पीडीए वो कहते थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, फिर पिछड़े में पंडित को जोड़ दिए, पिछड़े में फिर ऐसे पूरे आधी आबादी को जोड़ दिए, तो खुद उस पीडीए में कंफ्यूज है पीडीए का। कुछ दिन के बाद कह देंगे कि पताल धरती आकाश है, तो ये क्या है ये, पहले खुद स्पष्ट तो हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद ही कहे कि पी से पंडित, ए से आधी आबादी, अब पहले क्या कहते थे, तो अब आगे क्या कहेंगे, आगे कह देंगे कि धरती अकाल पता सब कह देंगे, तो कह दे पहले तो पीडीए का सही क्या है वही बताएंगे। पीडीए कुछ नहीं है, उनका एक जुमला है और समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है।
4: अब रथ यात्रा कोई काम नहीं आएगी, पीडीए की चौपाल भी अब कोई काम नहीं आएगी, कोई षड्यंत्र काम नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग जब याद करते हैं 12 से 17 के 5 वर्षों की सरकार के कालखंड को, तो आज भी चेहरे पे, लोगों के चेहरे पे तनाव होता है। महिलाओं और बच्चियों के मन में दहशत का भाव होता है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सूझवान हो गई है, इसलिए ऐसी किसी पार्टी को, ऐसे किसी दल को सत्ता में नहीं लाएगी जिस दल का उद्देश्य गुंडागर्दी हो, जिस दल का उद्देश्य परिवारवाद हो, जिस दल का उद्देश्य भ्रष्टाचार हो, दंगा और फसाद हो, इसलिए रथ या चौपाल अब सब व्यर्थ की बात।
0: संतोष कुमार शर्मा, रायबरेली, आज तक।
5: वैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात फंसी हुई है। अब अंदर की बात क्या है पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता और सांसद तक समाजवादी पार्टी से जल्द सीट फाइनल करने को कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कोई लोड नहीं ले रहे हैं। सवाल है कि क्या यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होगा।

0: अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा रायबरेली से ही शुरू क्यों की, जो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी सांसद रहे और अभी मौजूदा दौर में राहुल गांधी जिस रायबरेली के सांसद हैं, ऐसे कांग्रेस के गढ़ को अपनी यात्रा की शुरुआत के लिए अखिलेश यादव ने क्यों चुना? क्या 2027 के विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग से पहले अखिलेश यादव कांग्रेस को कोई मैसेज देना चाहते हैं या किसी तरह की दबाव की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है और जिस तरह की बयानबाजी दोनों खेमों से हो रही है उससे तो इस गठबंधन पर सवाल भी उठने लगे हैं। तीन दिन पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो लोकसभा सांसद सीट शेयरिंग पर ही मीडिया के कैमरों के सामने भिड़ चुके हैं। ऐसी बयानबाजी कि गठबंधन को दोस्ती तो किसी लिहाज से न कहा जाए, ये बयानबाजी बता रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 21 सितंबर को इमरान मसूद से पूछा गया कि यूपी में सपा के साथ गठबंधन पर क्या फाइनल हुआ, तो उन्होंने साफ साफ समाजवादी पार्टी को जवाब दे दिया कि अगर कांग्रेस के बिना जाने की सोच रहे हैं तो फिर गलत फहमी न पाले।
1: अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है, तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है, इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है और कांग्रेस ही लड़ सकती है, राहुल गांधी का नेतृत्व इनसे पार पा सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं।
0: इमरान मसूद ने कांग्रेस को ऐसे बताया कि जैसे वो यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी हो, और राहुल गांधी को ऐसा दिखाया जैसे वो यूपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि जमीनी लड़ाई में कांग्रेस यूपी में कहीं नहीं ठहरती। इसीलिए तुरंत अगले ही दिन समाजवादी पार्टी की ही मुस्लिम सांसद से इमरान मसूद को जवाब मिला।
2: बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं।
0: इकरा हसन ने तो इमरान मसूद को एकदम से बेवकूफी कह दिया। असल में कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो यूपी में उन सीटों को जीत सकती है जहां मुस्लिम वोट की बहुलता है, लेकिन लगता है कि इमरान मसूद को ऊपर से कुछ फटकार पड़ी है, इसीलिए अब वो थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने उनके नेता के गढ़ से यात्रा की शुरुआत की है, फिर भी वो बड़े कूल दिख रहे हैं।
3: वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: बिजली का बिल पेड,
10: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
11: पे। इत्ता माही वे।
12: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
14: आगे आगे।
15: अरे उधर
14: उधर किधर?
15: करेक्ट करेक्ट।
16: मिल गया।
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चले।
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: इन एसोसिएशन विद
19: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
11: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इंसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
16: इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
21: सोच बदलो और बैंक भी।
16: In association with
22: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
23: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
24: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित।
25: मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
26: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
27: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
23: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
28: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
29: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूं कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। कितना जरूरत है
23: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
30: सारे प्रमाण तो मिल गए हैं, डॉक्यूमेंट्री मिल गए हैं, ओरल मिल गए हैं, गवाह रिलायबल मिल गए हैं। दोनों बगल में बैठे हुए जो मेंबर्स हैं, उन्होंने वही तो कहा है जो राहुल गांधी ने कहा था। तो संवैधानिक रूप से अब ये केस बनता है इम्पीचमेंट का, संवैधानिक रूप से लोकतंत्र की डकैती का केस बनता है। FIR लॉज होनी चाहिए। और आप देखिए, आज नहीं होगी कल होगी।
31: जो डिफीटेड डायनेस्टी है वो जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो है वो अगर डिमोलिश करना चाहेगी, उनके बारे में जो है वो भय और भ्रम का माहौल पैदा करना चाहेगी, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि ये देश जो है वो बहुत दिनों से, चुनाव आयोग को आज तो बना नहीं है, बीजेपी ने नहीं बनाया। एक समय था कि जब चुनाव आयोग जो है वो एक सदस्यों का होता था, उसके बाद जो है वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारा देश जानता है। 1989 के बाद जो है वो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बन गया। उसके बाद उन तमाम चुनाव आयोगों को लेकर के, चुनाव की व्यवस्था को लेकर के कई बार सवाल हुए, हम भी सवाल करते रहे और भी लोग सवाल करते रहे, लेकिन वो सवाल सुधारों के लिए थे। ये नहीं था कि जो है वो आप डिफीट के डिप्रेशन में जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो है वो डिमोलिश कर दो।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी को मिला ये बड़ा मुद्दा बेहद गंभीर क्यों है, इसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के पार्ट टू से समझ लीजिए। रिपोर्ट के पार्ट वन में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की 14 आपत्तियों में गोवा के 97 वोटरों का मसला भी था। रिपोर्ट के पार्ट टू के मुताबिक 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की वजह से ड्राफ्ट वोटर सूची से बाहर हुए लोगों के नाम सार्वजनिक करने, उन्हें दस्तावेज देने और अपनी आपत्ति रखने का मौका देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गोवा में 649 आवेदन आए। इन मामलों की जांच के बाद 97 मामलों में स्थानीय ERO और AERO ने माना कि पहले लिया गया फैसला वापस लेकर इन्हें अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन पूरा मामला ECI नेट के स्तर पर अटक गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम में इन नामों को रोल बैक या दोबारा शामिल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर ने इस सुविधा के लिए 11 से 17 फरवरी के बीच 8 बार ईमेल और पत्र भेजे, लेकिन 21 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई और रिपोर्ट के मुताबिक इन 97 नामों को फाइनल वोटर लिस्ट में जगह नहीं मिली।
1: सर, जो 97 नाम है जुड़वाने की,
0: अब हैरानी की बात यह है कि इन 97 वोटरों का सवाल पूछे जाने पर गोवा के चुनाव अधिकारी संजय गोयल आज तक के सवालों पर भड़क गए।
1: सर, इशू रिसेंट इशू है, रिसेंट इशू पे अगर
2: बात,
1: आपके पास नॉलेज, बट सर कुछ जो
2: रिकॉर्ड,
1: पर सर 97
2: ना रिकॉर्ड चेक करूंगा, अभी मैंने नहीं देखे ना रिकॉर्ड, इट इज 8 मंथ बैक मैटर,
1: 8 मंथ बैक, पर अभी इशू कैसे आ गया,
2: चेक विद माय रिकॉर्ड, ओके,
1: बट जो सामने
2: चेक विद माय रिकॉर्ड, आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार बार रिपीटिंग सेम क्वेश्चन,
1: बट तो इशू तो अभी
2: चेक विद माय रिकॉर्ड, देन ओनली आई कैन रिप्लाई।
1: पर सर 97 नाम जुड़वाने के लिए कोई रिप्लाई आया है क्या? सर जो 97 नाम है जुड़वाने
2: के, नोट हैव एनी न्यू ईमेल लेके
1: गए, बट
2: अभी मैंने आपको बता दिया, प्लीज, ठीक है ना, सी आई हैव अदर क्वेश्चन, अभी आपको बता दिया, लेट मी चेक माय रिकॉर्ड, देन यू कम बैक,
1: बट ये इशू अभी का है सर, अभी रिसेंट इशू आया है। बट आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर,
2: रूम टू लेट यू एंटर द कैबिन, यू आर एक्टिंग टू रिजिड अननेसेसरली,
1: ओके।
0: चुनाव से जुड़े मसलों पर जो सवाल और आशंकाएं उठ रही हैं, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नजरिए से बेहद अहम है, लेकिन जहां एक ओर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई जैसी मांगे उठा रहे हैं, तो बीजेपी दावे कर रही है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह से परे है। चुनाव आयोग पर राजनीति की टक्कर बीते कई सालों से चल रही है, लेकिन अब नौबत आर पार की हो चली है। आज तक ब्यूरो

0: में बदलाव लाना ही सरकार का मकसद, बाइक सवारों ने सुनाए अपने अनुभव।
1: रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा पर कांग्रेस में खलबली। अजय राय बोले, हम भी जा सकते हैं कन्नौज और इटावा। पूछा, क्या बीजेपी की जगह राहुल गांधी को ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश?

0: कुमार इस्तीफा दें। बीजेपी बोली आयोग में मतभेद नहीं।
1: एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड। सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में जीता सोना। 50 मीटर राइफल में देश को मिला सिल्वर।
0: अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से हो रही गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी चौकस, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी। देर रात तक चलेगा विसर्जन।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक के साथ। मोदी ने आज दूसरे दिन सेवा यात्रियों से की बात। इस दौरान सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इस मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, युवा शक्ति करेगी विकसित भारत का निर्माण। सेवा यात्रियों द्वारा आयुष्मान योजना से मिले लाभ पर पीएम मोदी ने कहा, सरकारी योजना का लाभ अंतिम लोग तक पहुंचना लक्ष्य। हमें सभी के सेवा का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों से जुड़ने और सेवा की भावना को कार्य में बदलने का अवसर है। वोट चोरी पर सियासी संग्राम तेज। राहुल गांधी का पीएम मोदी, अमित शाह और सीसी ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, वोट चोरी से कानून चोरी तक पहुंचा है ये मामला। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी उठाए सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज। राहुल गांधी बोले, अप्रूवर बनकर सामने लाएं सच। वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी का दावा पूरी तरह बेबुनियाद। एसआईआर विवाद को लेकर सियासी घमासान। विपक्ष ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया।
0: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाभियोग की तैयारी। ड्राफ्ट तैयार कर रहा है इंडिया ब्लॉक। बिहार में आरजेडी का बड़ा प्रदर्शन आज। सभी जिला मुख्यालयों पर सीईसी ज्ञानेश कुमार के पुतले फूके जाने का किया ऐलान। विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की सफाई। ईसीआई नेट को बताया विकेंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनाव आयोग का दावा, वैधानिक काम संबंधित फील्ड अधिकारी ही करते हैं, मुख्यालय से नहीं होता है कोई हस्तक्षेप। 30 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। एसआर विवाद और सीसी के खिलाफ आगे की रणनीति पर मंथन। प्रियंका गांधी का सीसी पर हमला, बोली आरोप सही है तो इस्तीफा दें और आपराधिक कार्रवाई का सामना करें। हेमंत शर्मा बोले, सीसी अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते, आयोग बहुमत या सहमति से ही करता है निर्णय। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सीसी से इस्तीफा मांगा, बोले मतदाताओं के अधिकार और वोट की पवित्रता से समझौता हुआ है। अखिलेश यादव बोले, सीसी पर गंभीर आरोप हैं तो उन्हें खुद इस्तीफा देकर पद छोड़ देना चाहिए। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना, बोले उठते ही आरोप लगाना राहुल की आदत बन गई है।
1: बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान तेज। जमुई के बाद समस्तीपुर में भी छेड़छाड़ का मामला सामने आने से विपक्ष ने सरकार को घेरा। जमुई के बाद बिहार के कई जिलों में महिलाओं से बदसलूकी के आरोप। तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, बोले बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रशासन सख्त। मुख्य सचिव ने सभी डीएम और एसपी को गश्त बढ़ाने के दिए निर्देश। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। चिराग पासवान ने महिला सुरक्षा पर जताई चिंता, बोले लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जीतनराम मांझी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले आज अपराध के बाद तुरंत कार्रवाई होती है, तेजस्वी अपने पिता के शासनकाल को याद करें। रामकृपाल यादव पर विपक्ष पर पलटवार, बोले बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठीक है, विपक्ष घटनाओं पर राजनीति कर रहा है। मुकेश सानी ने बिहार की घटनाओं को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बोले सरकार को महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने महिलाओं से बदसलूकी के वीडियो पर जताई नाराजगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। जमुई पीड़िता की मां ने सरकार की कार्रवाई पर जताई संतुष्टि, बोली मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी और बेटी के साथ नहीं होना चाहिए।
0: दो हजार 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव का पीडीए रथ, लखनऊ से निकले एसपी प्रमुख, रायबरेली से शुरू हुआ राज्यव्यापी अभियान। अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा से यूपी की सियासत गरमाई, बीजेपी ने साधा निशाना, एसपी ने पूरे प्रदेश में अभियान की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना का, आपकी वोट का बुलडोजर चलेगा और इनको हमेशा के लिए धराशायी करेगा। यूपी मंत्री संदीप सिंह का अखिलेश पर हमला, सत्ता में रहते लोधी समाज की याद नहीं आती, सत्ता से बाहर होते ही पिछड़ों की राजनीति शुरू हो जाती है। अखिलेश की पीड़ित रथ पर सियासी घमासान, रायबरेली में अखिलेश के अभियान पर दिनेश प्रताप सिंह बोले पिछड़ा वर्ग एनडीए के साथ, 2027 में जनता जवाब देगी। रायबरेली में अखिलेश की पीड़ित यात्रा पर बोले अजय राय, रायबरेली अमेठी जाएंगे तो कांग्रेस का नौ जटावा जाएगी।

यूपीआई पर एमडीआर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, ग्राहकों पर चार्ज का बोझ नहीं डालने की तैयारी। यूपीआई एमडीआर पर सरकार और आईबीए मिलकर बनाएंगे व्यवस्था, दुकानदारों से ग्राहकों पर लागत न डालने की अपील। 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआई भुगतान पर एमडीआर, सरकार ने कहा ग्राहकों से अतिरिक्त पैसा ना लिया जाए।

दिल्ली एसआईआर में आडवाणी, जगदीप धनखड़ और एस जयशंकर समेत प्रमुख मतदाताओं का वेरिफिकेशन पूरा।

चिली में भारी बारिश ने मचाई तबाही, चार क्षेत्रों में बाढ़ और नदी उफान पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, हजारों लोग बिजली संकट में।

0: अब खबर मुंबई की, जहां आज गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जगह जगह निकल रहे हैं जुलूस। भक्तिभाव से बप्पा की पूजा के बाद आज गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं भक्त। ढोल ताशों के बीच बप्पा को विदाई देने के लिए जुटे हैं भक्त, अगले साल जल्दी आने की कामना। जलगांव में बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए भारी संख्या में जुटे भक्त, अपने प्रिय गणपति को दे रहे हैं भक्तिपूर्ण विदाई। अकोला में विसर्जन को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, 3,000 पुलिसकर्मी तैनात, 200 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जालना में भी जगह जगह मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था, प्रशासन सभी प्रबंधों को लेकर कर रहा है जायजा।
1: कानपुर में हाईवे पर लोडर और ट्रॉली के आमने सामने टक्कर, दोनों चालकों की मौत, हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में आग, 21 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जैसलमेर में एक बाजार में भीषण आग लगने से कपड़ों की 6 दुकान जलकर खाक, लाखों का नुकसान। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव के समापन के बाद दो पक्षों में मारपीट, दोनों ओर से कुर्सियां और हेलमेट फेंके गए, वीडियो वायरल। यूपी के झांसी में युवक ने आत्महत्या की, सुसाइड वीडियो में पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप। अमरोहा में महिला से दुष्कर्म मामले में दारोगा हेड कांस्टेबल सस्पेंड, बर्खास्तगी का प्रोसेस शुरू, आज चारों आरोपियों को कोर्ट में करेंगे पेश। जूनागढ़ में 5 साल की बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया, खेत से शव बरामद, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद गांव में दहशत। गुरुग्राम में फिर सामने आया खौफनाक रोड रेज, गोल्फ कोर्स रोड पर मां बेटी की कार में मारी टक्कर, लोहे की रॉड से किया हमला, 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज। सहरसा में आपदा प्रबंधन मंत्री ने किया दावा, सामुदायिक किचन में अब तक 2 करोड़ से भी अधिक बाढ़ पीड़ितों ने किया भोजन। मुजफ्फरपुर में नहाते समय महिला का वीडियो बनाया गया वायरल करने की धमकी देकर, 3 साल तक यौन शोषण का आरोप।
0: भिवंडी में 3 सवारियों की क्षमता वाली ऑटो में 17 स्कूली बच्चों को ठूस कर ले जाने का वीडियो वायरल, ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर में 7 साल की बच्ची की मौत के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, डीजे मालिक और ऑपरेटर गिरफ्तार। खरगोन में गणेश पंडाल में गरबा करने को लेकर एक समुदाय के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, पथराव में 3 लोग घायल, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सूरत में 2 लग्जरी बसों की टक्कर, दोनों बसों में सवार यात्रियों को आई मामूली चोटें, बाल-बाल टला बड़ा हादसा। अलवर में व्यापारी के से तमंचे की नोक पर बदमाशों ने की लूट, घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश, 1,60,000 रुपए लूट कर बदमाश हुए फरार। एलीट कॉन इंटरनेशनल का वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफर टैक्स 2.7 गुना बढ़कर 185 करोड़ रुपए तक पहुंचा। लैब ग्रोन डायमंड्स और डिमांड घटने से 2021 के मुकाबले नेचुरल डायमंड 30-40% तक हुआ सस्ता, इस गिरावट के बावजूद महंगे सोने ने डायमंड ज्वेलरी की कीमतों में नहीं आने दी कमी। कोटक महिंद्रा बैंक के मुताबिक 25 से 30 साल के होम लोन ग्राहकों की संख्या 2 साल में 86% बढ़ी, होम लोन पोर्टफोलियो में जेन जी की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 9% हुई। ICRA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना 530 करोड़ रुपए का नुकसान, OMCs को पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 9 रुपए प्रति लीटर का घाटा। सरकार ने क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 16.5% से घटाकर 5% की, पिछले 1 साल में करीब 20% महंगा हुआ था खाने का तेल, इस कटौती से त्योहारों में राहत मिलने की है उम्मीद।
1: भारत की सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण पदक, एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में भारत का 2रा गोल्ड। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत ने जीता सिल्वर, ऐश्वर्य प्रताप, रुद्रांश और नीरज कुमार ने बढ़ाया देश का मान। शूटिंग में एशियन गेम्स का पहला गोल्ड मेडल, भारतीय निशानेबाज अब तक 10 मेडल जीत चुके हैं, इनमें 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है। भारत इन गेम्स में अब तक 2 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के साथ 19 मेडल जीत चुका है, मेडल टैली में 12वें स्थान पर। जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने स्क्वाश के मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत का मेडल पक्का, फिलीपींस की जोड़ी को 11-3, 11-5 से हराया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मान में व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जिनपिंग ने स्वागत भोज को किया संबोधित। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने की बताई जरूरत, समानता और सम्मान के साथ सहयोग पर दिया जोर। व्हाइट हाउस में जिनपिंग के सम्मान में स्वागत समारोह का किया गया आयोजन। व्हाइट हाउस के ऊपर B-2 बॉम्बर और 4 F-22 रॉप्टर फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। तिब्बत समर्थकों का US कैपिटल के सामने प्रदर्शन। व्हाइट हाउस में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बैठक के दौरान प्रदर्शन। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा अमेरिका को तय करना है कि वो जंग खत्म करना चाहते हैं या नहीं, अमेरिका पर जंग खत्म करने का है दारोमदार।
0: सऊदी अरब की मदद के लिए फ्रांस का सेना भेजने का ऐलान। लाल सागर बंदरगाह शहर यानबू की सुरक्षा करेगी फ्रांसीसी सेना। आतंकियों की पनाह पर शाहबाज शरीफ से सवाल, न्यूयॉर्क में भारतीय पत्रकार को नहीं मिला जवाब। यूएन महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का डेलीगेट्स ने किया बहिष्कार, नेतन्याहू के आते ही निकले बाहर। इसराइल को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बंद करने की मांग को लेकर न्यूयॉर्क में प्रदर्शन। अभिनेत्री सुजन सरैंडन समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। एंटी इमिग्रेशन कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद इंग्लैंड में थाने के बाहर प्रदर्शन। प्रवासियों की नाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में कार्यकर्ता डैनियल थॉमस की हुई थी गिरफ्तारी।
1: पिछले 10 दिन से देश भर में गणेश उत्सव की रौनक है। अलग अलग शहरों में बप्पा विराजे हुए हैं, लेकिन अब बप्पा को विदा करने का वक्त आ गया। आज अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है और अब धूमधाम से बप्पा की विदाई होगी।
0: शहर शहर गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। प्रतिमा का विसर्जन एक प्रतीक है, एक चक्र के अंत और आरंभ का। जब आप भी इस रस्म को निभाएंगे तो गणपति विसर्जन के साथ आप अपने भीतर और आसपास मौजूद तमाम नेगेटिविटी और बुराइयों को बप्पा के साथ विदा कर सकते हैं। वो आदतें और विचार जिन्हें छोड़कर जिंदगी को बदला जा सकता है।
1: तो देश भर में बप्पा को विसर्जन

0: लेकिन ये सबसे भव्य मूर्ति इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसी तरह से लालबाग का राजा जो बहुत प्रसिद्ध है मुंबई के, उनके विसर्जन की भी तैयारी की जा रही है। जय घोष के साथ गणपति बप्पा मोरिया आज मुंबई के अलग अलग स्थानों, अलग अलग गलियों पर आपको यही जय घोष सुनाई देगा, पूरी धूमधाम के साथ, पुष्प वर्षा के साथ, यहाँ तक कि रंग भी खेला जाता है। और अलग अलग जगहों पर बप्पा की विशालकाय मूर्ति दिखाई देती है। ये पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं, लालबाग का राजा की तस्वीर आप देख रहे हैं, हैदराबाद में भी गणपति विसर्जन की तैयारी है। दगड़ूसेठ पुणे के मशहूर और प्रसिद्ध, हर साल दगड़ूसेठ के दर्शन के लिए लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं। और ऐसे ही लालबाग का राजा जो बेहद प्रसिद्ध है मुंबई भर में और आसपास के महाराष्ट्र के इलाकों से भी यहां पर लोग पहुंचते हैं इनके दर्शन के लिए। जितनी जिसकी आस्था होती है बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच जाता है। आज बेहद भव्य दिन, अनंत चतुर्दशी, जिसमें बप्पा का विसर्जन किया जाता है धूमधाम के साथ, रंग खेला जाता है उत्सव की तरह। यह पूरा माहौल महाराष्ट्र ही नहीं, अब देश के अलग अलग कोनों में भी दिखाई देने लगा है। ये देखिए रंगारंग कार्यक्रम, रंगोली की तैयारी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब एक समान इस पूरे रंगोत्सव में शामिल होते हैं। ये बप्पा के साथ साथ एक ऐसा पर्व है जिसमें आप उन सारी कुसंगतियों, बुराइयों का भी अंत करने कि सोचते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, जिसको लेकर आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ सकती है। एक तरीके से ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार, एक ऐसा पर्व जिसे पूरे उल्लास के साथ महाराष्ट्र मनाया जाता है। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, आप किस विसर्जन में मौजूद है और लाल बागचा के विसर्जन की क्या तैयारी है?
1: जी बिल्कुल, देखिए नेहा, मैं इस वक्त लालबाग परिसर में ही खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो बड़ा गेट देख रहे हैं जहाँ शंकर जी की मूर्ति है, वो लालबाग के राजा का मंडप है और हम फिलहाल उसी के बाहर खड़े हैं। यहाँ से तेजुकाया की जो मूर्ति है गणपति जी की, वो यहाँ से गुजर रही है। उनकी जो विसर्जन यात्रा है वो यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है। सामने देख सकते हैं कितनी ही सुंदर मूर्ति जो है वो यहाँ पर तेजुकाया मंडल की जो है दिखाई दे रही है। थोड़े ही क्षणों में लालबाग के राजा जो है अपने मंडप से निकलेंगे और उनकी भी जो विसर्जन यात्रा है वो शुरू होगी। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भक्तजन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने बप्पा को आज विसर्जन देने के लिए अपनी जो 11 दिन उनके साथ थे, जो मनोकामनाएं उनकी पूरी हुई, जो मनोकामनाएं उनकी पूरी होंगी और अगले साल जल्दी आने की मनोकामना को लेकर आज बप्पा के इस विसर्जन यात्रा में लोग पहुंचे हैं। उम्र का कोई बंधन नहीं है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक हर कोई इस विसर्जन यात्रा में बड़े ही हर्षोल्लास से शामिल हुआ है। और ऐसे ही दृश्य सिर्फ यहाँ मुंबई के लालबाग में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है गणेशोत्सव महाराष्ट्र का, जो जिसका आज समापन होगा विसर्जन, गणपति जी के विसर्जन के साथ। और फिलहाल आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति, कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर हम देखने को मिल रही है। और ऐसी ही मूर्तियां मुंबई के कई मंडपों में, कई पंडालों में भी देखने को मिलेंगी।
2: दीपेश, ये भी समझाएं कि किस तरीके से आज विसर्जन किया जाता है, क्योंकि इतनी सारे पंडाल, इतनी सारी मूर्तियां, सबकी आस्था है, सब प्यार से लेके जाते हैं बप्पा को विसर्जित करने के लिए। ऐसे में किस तरीके से वहां प्रशासन, साथ में आयोजन कमेटियां, सरकार, ये सब एक साथ मिलकर किस तरीके से काम करती हैं कि ये सारा काम अच्छे तरीके से, मंगलमय तरीके से हो सके?
1: जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने बताया कि ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है महाराष्ट्र का और तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से उसी स्तर की देखने को मिलती हैं। जो मुंबई के अलग अलग चौपाटियां हैं वहां पर पुलिस बंदोबस्त के साथ साथ मुंबई महानगर पालिका हो, राज्य प्रशासन हो, उनकी भी तैयारियां वहां पर होती हैं। 25,000 से 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो पूरे मुंबई में तैनात हैं ताकि जो विसर्जन है वो सही तरीके से, शांतिबद्ध तरीके से पूरा हो सके और किसी को भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी की भी तैयारियां पूरी होती हैं ताकि जो भी मूर्तियां विसर्जित हों उनका पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो सही तरीके से हों, पारंपरिक पद्धति से हों। जो छोटी मूर्तियां होती हैं उनके लिए अलग से
0: लौटेंगे। दो तस्वीरें देखिए, कैसी भव्य तैयारी है और वहां पर क्या गरीब, क्या अमीर और क्या छोटा बड़ा, हर धर्म, हर वर्ग के लोग इस पूरे भव्य आयोजन में जुड़ते हैं। एक लंबा चौड़ा जुलूस

जो है मुंबई की हर एक गली में लगभग आपको दिखाई देगा। जाहिर तौर पर प्रशासन और पुलिस की हर साल की ये ड्रिल होती है, कैसे एक सुचारू तरीके से बप्पा का विसर्जन संपन्न हो पाए, और ऐसे में अगले बरस तू जल्दी आ का उद्घोष भी सुनाई देता है।

0: और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: यार लोन भूल गया मैरी, इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
4: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
5: There's nothing small about
3: it. Ujjivan, nothing small about us.
6: Bheem Payments app ki taraf se aap sabhi ko happy Ganesh Chaturthi. Paaiye 500 rupees tak ka cashback har mahine. Bheem app se karo pay, it's the Mahi way.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
11: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
12: अब पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
13: मेरे पास एक आइडिया।
11: क्या?
13: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
14: ये ऐड को झेलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
15: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
12: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
16: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
17: तो कौन सी बनानी है?
18: एकदम
19: थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
20: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
12: आई लाइक दिस ओनली।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफिल जूस।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
7: अब वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
9: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: ओ नादान परिंदे, बैठ जा। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
12: एकदम
11: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
13: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
7: आई लाइक दिस ओनली।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: पहले आवाज चिराग पासवान ने कहा चुनाव प्रक्रिया पर शक हो जाए तो गलत होगा, आयोग करे शंकाओं का समाधान।
1: रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा पर कांग्रेस में खलबली, अजय राय बोले हम भी जा सकते हैं कन्नौज और इटावा। पूछा कहा क्या बीजेपी की जगह राहुल गांधी को ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश।
0: वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा संकल्प यात्रियों से पीएम मोदी का संवाद, कहा योजनाओं से आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना ही सरकार का मकसद है। बाइक सवारों ने सुनाए अपने अनुभव।
1: एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड, सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में जीता सोना, 50 मीटर राइफल में देश को मिला सिल्वर।
0: अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से हो रही है गणपति बप्पा की विदाई, मुंबई में 25,000 प्लस कर्मियों की तैनाती, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी, देर रात तक चलेगा विसर्जन।

0: बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव आयोग में मतभेदों की खबर के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बड़ा बयान आया है। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग को लोगों का भरोसा बनाए रखना चाहिए, चुनाव आयोग को सामने आकर शंकाओं को दूर करना चाहिए।
1: आपको बता दें कि चिराग पासवान जो कि मंत्री भी हैं सरकार में, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह की अगर शंका आई है तो उसे दूर करना चाहिए खुद चुनाव आयोग का। उन्होंने कहा है कि ज्ञानेंद्र कुमार को खुद सामने आके इन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी तरह की शंका इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि सवाल उठाना तो विपक्ष का काम है।
2: चुनाव आयोग, ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है, कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं, बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है। ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी बातों को और मजबूती से रखना चाहिए। राहुल गांधी जी या किसी विपक्ष को जवाब देने के लिए नहीं, जनता के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
0: तो इसी में मतभेद पर चिराग पासवान का ये बड़ा बयान कि जनता के विश्वास को बनाए रखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी सफाई पेश करनी चाहिए ताकि जितनी भी शंकाएं हैं वो दूर हो जाएं। पिछले 3 दिन से लगातार ये देश का सबसे चर्चित विषय बन गया है कि क्या वाकई ईसी की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी है, वोटिंग और एसआर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो वाकई क्या गंभीर तरीके से उठाए गए। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। देखिए, रोहित, सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान की, ऐसे में इस तरह का बयान देना किस तरीके के संकेत दे रहा है?
3: नहीं, बिल्कुल, देखिए नेहा, विपक्ष जब ये मुद्दा उठा रहा था तो जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ी परेशानी शायद बीजेपी के लिए नहीं दिख रही थी पिछले 2 दिनों में। लेकिन अब जब अपने ही दल के अंदर से, दल यानी कि मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, अलायंस के अंदर से जब पहली बार किसी नेता ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और सीधा सीधा चुनाव आयोग पर कहा है कि भाई आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, और ये जो रुख चिराग पासवान ने अपनाया है ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बेचैनी बढ़ा सकता है, क्योंकि हम 2 दिनों से पहले देख रहे हैं, पिछले 2 दिनों से किस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार के पीछे खड़ी नजर आ रही है, चुनाव आयोग को बिल्कुल कहें तो साफ पाक साफ जो है साबित करने में जुटी हुई है। लेकिन जब चिराग पासवान गठबंधन के अंदर से ये आवाज आई है कि ईसी सामने आए, स्थिति स्पष्ट करे कि वो पारदर्शी है या नहीं, तो जाहिर सी बात है ये एनडीए के लिए जो है खासकर शुभ संकेत नहीं है, और बीजेपी को इससे जरूर बेचैनी होगी कि चिराग पासवान ने ये मांग उठाई है कि चुनाव आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करे इस पूरे विवाद को लेकर।
1: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे ने विपक्ष के हाथों में हथियार थमा दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आज देश भर में सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है और कई जगह मार्च शुरू हो भी चुका है।
0: उधर बिहार में भी तेजस्वी यादव ने ज्ञानेश कुमार पर पूरी ताकत से हमला करने की प्लानिंग की है। आरजेडी ने बिहार में ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन की योजना बनाई है। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा भी लगातार मुखर होकर बोल रही है महाभियोग की तैयारी में विपक्ष है, नए ड्राफ्ट की तैयारी की जा रही है।
4: ज्ञानेश कुमार मस्ट रिजाइन इमीडिएटली।
5: राहुल गांधी जी ने आपके सामने एक बार फिर एक पीपीटी का प्रदर्शन किया।
6: भाजपा की इलेक्शन कमीशन जो है मजबूती बढ़ने के चुनाव में काम कर रही है, एसआईआर के जरिए लोगों का वोट काट रही है।
7: जितना मर्जी झूठ बोले लोग जागरूक हैं, इनके झूठे बातों में भ्रम फैलाने वालों में नहीं आने वाले।
8: he has ignored it and intentionally allowed an unfair election to take place. He should be criminally prosecuted.
9: एक खुलासा हुआ और विपक्ष को जैसे संजीवनी बूटी मिल गई। चुनाव आयोग पर इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे ने विपक्ष के हाथों में नया हथियार थमा दिया, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके बहाने मोदी सरकार पर हमलों की बौछार होने लगी। राहुल गांधी इस मोर्चे पर एक दिन बाद उतरे और सीधे इस्तीफे की मांग कर दी।
4: इज मिस्टर ज्ञानेश कुमार मस्ट रिजाइन इमीडिएटली। ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए। उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम। ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर। माय एडवाइस टू हिम।
9: जाहिर है राहुल गांधी को घर बैठे एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिस पर वो पहले भी आक्रामक रहे हैं, वो पहले भी वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। तब मामला एक राजनीतिक मुद्दा लग रहा था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे ने स्थिति बदल दी है। कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली, पंजाब और दूसरे राज्यों में खास तैयारी है। सचिन पायलट खास तौर पर पंजाब जा रहे हैं। कांग्रेस ने 29 सितंबर को CWC की बैठक बुला ली है।
4: आई वांट टू एम्फसाइज, फ्रॉम वोट चोरी कम्स कानून चोरी, बिकॉज इफ द वोट इज स्टोलन द लीगल स्ट्रक्चर इज गॉन।
9: ताजा खुलासे ने बिहार में तेजस्वी यादव और बंगाल में ममता बनर्जी को भी बीजेपी के खिलाफ नए मोर्चे खोलने का आधार दे दिया है। RJD ने आज बिहार में ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने की तैयारी कर रखी है, तो विपक्ष की तरफ से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी प्लानिंग है।
6: चुनाव आयोग एक पुतली है जिसका इस्तेमाल करके भाजपा सत्ता में हर राज्य में आ रही है फर्जीवाड़ा करके, और बिहार और बंगाल का चुनाव फर्जीवाड़ा था, यहाँ पुनः चुनाव होना चाहिए।
9: विपक्ष के हमलों का बीजेपी की तरफ से भी पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर सवाल उठा दिया है।
5: मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी का अपना अनुभव बिल्कुल सही है और राजनीतिक दृष्टि से उनका ज्ञान अत्यंत शून्य है, भारत की राजनीति का फंडामेंटल ज्ञान उन्हें।
9: बीजेपी ने उस रिपोर्ट की व्याख्या पर भी सवाल उठाए जिस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त और मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे।
5: पहली बात, उस न्यूज रिपोर्ट में किसी भी इलेक्शन कमीशन का कोट है, हां या नहीं? नहीं तो किस आधार के ऊपर कोई बोल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने यह बोला है? किसी भी न्यूज के बारे में मैं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए कहता हूं, बाकायदा संबंधित व्यक्ति को क्वेश्चन पूछा जाता है और उनका स्टेटमेंट लिया जाता है, वो स्टेटमेंट कोटेड है नहीं? एक भी क्या कोई ऐसी आपके पास रिपोर्ट है कि सर्वसम्मत से निर्णय ना हुआ हो? नहीं।
9: जाहिर है ये लड़ाई फिलहाल थमने वाली नहीं, बल्कि इसमें अभी और तेजी आने वाली है। आज तक ब्यूरो।
0: तो देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। इसकी शुरुआत कोलकाता के कुछ तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, साउथ कोलकाता, जहां पर इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम इस्तीफे से कैंपेन नहीं मानेंगे।
1: और हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। क्या मांगे हैं इनकी और किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर?
10: देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार के करता है वो बाहर रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बेसिकली कोलकाता में जो स्थित CEO का ऑफिस है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिस है पश्चिम बंगाल में, उनके ऑफिस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया है। मांग आप देख सकते हैं, अरेस्ट ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार की इस्तीफा और ज्ञानेश कुमार को अरेस्ट करने की मांग के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आज रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था नई दिल्ली में, आज कांग्रेस उतर चुकी है रास्ते में कोलकाता में। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को हटा के बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी बन चुकी है, और यहाँ पे जो विपक्ष का जो वैक्यूम है वो भी कहीं ना कहीं उसको लेके एक लड़ाई है, और कांग्रेस चाहती है कि वो जगह कांग्रेस पार्टी ले ले, और इसी का कारण है आप देख सकते हैं किस तरह के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके पूछते हैं डिमांड क्या है, आप लोगों को पुलिस यहाँ पे रोक लिया है लेकिन आप क्या डिमांड कर रहे हैं?
11: ये तो अभी पुलिस का काम ही है, जब टीएमसी की सरकार थी तब भी हमें रोका गया, आज बीजेपी की सरकार है वो और भी निकम्मी सरकार है, ये सारे मिली भगत है इन लोगों की। आज जो वोट चोरी हुआ है, गणेश कुमार का खुलासा हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आज जो सरकार बनी है ये सिर्फ चोरी से बनी है।
10: तो बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
11: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
10: तो केरला में भी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भी चुनाव हुआ था, वहाँ पे आपकी सरकार बनी है फिर?
11: देखिए ये तो खेला है ना, ये बीजेपी कहीं कहीं अपना लॉलीपॉप तो देगी ना, हर जगह अगर खेला कर देगी तो ये तो पूरा करप्टेड हो ही जाए, ऐसे तो करप्टेड है और भी बदनाम हो जाएगी, इसलिए कुछ कुछ जगह को छोड़कर ये अपना गुल खिला रहे हैं। और बंगाल में,
0: और इस बीच जम्मू कश्मीर में भी सीएसी के इस्तीफे की मांग की जा रही है, विधानसभा में ये मांग उठाई गई है। लगातार देश भर में अब ये प्रदर्शन के साथ साथ इस्तीफे की मांग अलग अलग राज्यों में की जा रही है। अभी पश्चिम बंगाल की सीपीएम आपको दिखाए थे, अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएसी के इस्तीफे की मांग उठाई गई है। कांग्रेस विधायक इरफान हफीज ने पोस्टर दिखाए।
1: आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त विधानसभा के सत्र जारी है, और ऐसे में विधानसभा में आज ये देखने को मिला है कि एक कांग्रेस विधायक ने वहां पर पोस्टर दिखाया है। असेंबली के अंदर पोस्टर तख्ती लाना मना होता है, ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक तरीका है कांग्रेस की तरफ से अपना दबाव बनाने का, और आज प्लान भी यही है कांग्रेस का कि अलग अलग राज्यों में या तो वो मार्च कर रहे हैं या किसी तरह का विरोध प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। और यहां पर भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के एक विधायक ने अपना विरोध जाहिर करने के लिए सीईसी के इस्तीफे की मांग का पोस्टर दिखा दिया। तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं अब। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी पूरी ताकत से चुनावी तैयारियों में जुटी है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को ताकत दिखाने में लगे हैं। कल अखिलेश ने रायबरेली से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। अखिलेश की रथ यात्रा में भारी भीड़ भी जुटी।
0: अखिलेश की रथ यात्रा कांग्रेस को बिल्कुल रास नहीं आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अखिलेश की यात्रा योगी सरकार के खिलाफ कम, हमें ताकत दिखाने की कोशिश ज्यादा है। अजय राय ने कहा कि अगर अखिलेश अमेठी रायबरेली जाएंगे तो हम कन्नौज मैनपुरी जाएंगे।

0: लंबा काफिला, समर्थकों की भारी भीड़, जबरदस्त स्वागत। अखिलेश ने रायबरेली में अपनी ताकत दिखाई और इशारों में ये बताया कि जब कभी सीट बंटवारे का सवाल आएगा, समाजवादी पार्टी अपने दावे को मजबूती से रखेगी।
1: मुझे तो लग रहा है, यहाँ हम लोग कह रहे थे कि पीडीए का तूफान, पीडीए की हवा चल रही है, लेकिन रायबरेली में देखने को मिल रहा है कि पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, लेकिन कहीं लोधी बनाम योगी तो नहीं हो गया चुनाव।
0: तो अखिलेश ने एक तरह से रथ यात्रा का आगाज किया है और वो भी उस रायबरेली से जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। अखिलेश की ये यात्रा कांग्रेस को रास नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही है। अखिलेश की रथ यात्रा पर कांग्रेस पूरी तरह आग बबूला है।
2: चुनाव का समय है और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी आज जिस तरीके की बात आम आदमी को उठा रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग को उन्होंने पहले दिन से जिस तरीके से सीरीज के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताई चुनाव आयोग की सत्यता कैसे चोरी करा रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के अलावा मजबूती के साथ इस बात को किसी ने नहीं उठाया।
0: रायबरेली को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तनातनी अब छिपी नहीं है, ये तनातनी अब खुलकर बाहर आ रही है, दायरे तोड़ रही है। समाजवादी पार्टी की दलील है कि रायबरेली की 6 सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो ये कांग्रेस का गढ़ कैसे हो सकता है।
3: जहां जहां कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाएगा, उनके साथ जुल्म किया जाएगा, सभी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथी कार्यकर्ता उन सभी के साथ खड़े हैं बड़ी मजबूती के साथ।
4: क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का जाने की पीछे वजह भी यही है कि जो विधायक राहुल लोधी के साथ हुआ उसको लेकर?
3: जहां जहां भी पीडीए का अपमान होगा, वहां वहां समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी।
4: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
3: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है।
0: सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की बेचैनी अब बेकाबू हो रही है। कांग्रेस चाहती है कि बंटवारे जल्द से जल्द हो ताकि प्रचार की शुरुआत हो सके, लेकिन अखिलेश यादव खामोशी साधे हुए हैं। बंटवारे को लेकर चंद रोज पहले ही इमरान मसूद और इकरा हसन की जुबानी जंग सामने आ चुकी है।
5: कि अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है कहीं भी, पूरे देश में नहीं है।
6: बिल्कुल ही बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए भी।
0: सीट बंटवारे में जैसे जैसे देरी हो रही है, तनातनी की गुंजाइश भी बढ़ती जा रही है। क्या अखिलेश यादव की खामोशी भी किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? संतोष शर्मा, रायबरेली आज तक।
7: उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में कानून व्यवस्था का मुद्दा गर्मा गया। एक और पुलिसकर्मी की यहां हत्या हुई है। चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल नितिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर से हेड कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है। असीम बस्सी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। असीम, क्या ये पूरा मामला?
8: ये पहले मैं बता दूं, ये चंडीगढ़ का है, यूपी का प्रशासन है, यहाँ पंजाब में नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस में एक तैनात है हेड कांस्टेबल नितिन, जो कि इनके अकाउंट ब्रांच में थे, हेडक्वार्टर में तैनात थे, और उनकी डेड बॉडी जो है घर से मिली और उनको बुलेट इंजरी हुई है। हालांकि फोरेंसिक टीम जो वहाँ पर मौके पर मौजूद है, एसएसपी कंवर जी को खुद वहां पहुंचे थे और उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है सारे एंगल से, किस तरह इनको गोली मारी गई और किसने गोली मारी। कई लोगों पर शक भी है, लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक इनको क्लैरिफिकेशन नहीं होती इन्वेस्टिगेशन में तब तक नहीं बता सकते। लेकिन ये बड़ी घटना है कि चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल को जो है वो गोली मारी गई है, उनका जो शव है उनके घर से मिला है, हॉस्पिटल लेके गए थे, पड़ोसियों ने आवाज सुनी और उसके बाद हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे उनको जो है डेड घोषित किया गया। बड़ी एक घटना है चंडीगढ़ में, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि इस मर्डर के पीछे कौन है। जी हाँ
9: जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
10: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल
11: पावर्ड बाय वाल्वोलिन द ओरिजिनल इंजन ऑयल.
12: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. एयू
13: सोच बदलो और बैंक भी.
14: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक दो तुम झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा.
15: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर.
16: मेरे पास एक आइडिया.
14: क्या?
16: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए. रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
17: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. आई हैव वन. एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है.
15: ओ नादान परिंदे बैठो. मेरा ना सिंपल है. एक लड़की है उसका भाई जेल में है. लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है.
18: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा. तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
17: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
15: आई लाइक दिस ओनली.
10: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला.
19: आपका सपना तो पूरा हुआ. जनता का सपना कब पूरा होगा?
20: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते.
21: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश. देखो क्या हो जाए.
19: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं. आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
10: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
22: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे.
10: पंचायत आज तक सिर्फ आज तक पर.
23: In India, there is a fundamental force called anti-incumbency that very quickly starts to resist any government. And it does not spare anybody. Indira Gandhi ji wins the Bangladesh war, is at the height of her popularity. And then suddenly, within a year or two, massive anti-incumbency, massive pressure. The same exact thing happens to leader after leader after leader. Happens to Congress leaders, happens to regional parties, but for some reason, it never happens to Mr. Narendra Modi, does not happen to Mr. Shah, does not happen to the BJP. Haryana swings from one party to another for 50 years. Suddenly anti-incumbency disappears. Maharashtra swings, suddenly it disappears. Uttar Pradesh swings, sometimes Samajwadi, sometimes BSP. It disappears. Madhya Pradesh, it disappears. Gujarat, it disappears. And this has been a fundamental question for us. The Prime Minister and Amit Shah are both going to be investigated for what has been done. Without any doubt, both the Prime Minister and Amit Shah are at the top of this conspiracy and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
2: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है, इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एकदम दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
15: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
16: मेरे पास एक आइडिया है।
14: क्या?
16: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
17: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
16: आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
17: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
15: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
18: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
16: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
15: आई लाइक दिस ओनली।
24: खरीदारी और पेमेंट के तरीके को पूरी तरह बदलने वाले यूपीआई पर 15 अक्टूबर से एमटीआर लगने वाला है। ये चार्ज 2,000 रूपए से बड़े यूपीआई पेमेंट करने वाले कारोबारियों को देना होगा। नियमों के तहत 2,000 रूपए के ऊपर के चुनिंदा P2M यूपीआई पेमेंट पर 0.4% एमटीआर लगेगा। 75,000 रूपए या उससे ज्यादा के पेमेंट का अधिकतम एमटीआर 300 रूपए होगा, जबकि P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांसफर पहले की तरह फ्री रहेगा। इस बदलाव का असर हर कारोबारी पर एक जैसा नहीं होगा। जिन कारोबारियों में अक्सर बड़ा बिल बनता है वहां लागत बढ़ सकती है, जबकि रोजमर्रा की छोटी खरीदारी वाले कारोबार पर असर सीमित रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े पेमेंट आम बात है, वहीं हाई वैल्यू फैशन और लाइफस्टाइल खरीदारी भी प्रभावित हो सकती है, जबकि फूड डिलीवरी का औसत ऑर्डर करीब 500 रूपए होता है और क्विक कॉमर्स का औसत ऑर्डर भी 2,000 रूपए से काफी नीचे है। लेकिन इस नियम में कुछ बड़ी छूट भी दी गई है, जिसमें 2,000 रूपए तक के P2M UPI पेमेंट पर कोई MDR नहीं लगेगा। वहीं QR के जरिए महीने में 1,00,000 रूपए तक पाने वाले पात्र छोटे मर्चेंट्स पर 0 MDR लगेगा, जबकि रेल ईंधन टेलीकॉम और बीमा पेमेंट पर फ्लैट 5 रूपए MDR लागू होगा। नियमों के मुताबिक MDR का भुगतान मर्चेंट को करना होगा, ग्राहक को नहीं करना होगा। साथ ही बैंकिंग सिस्टम को सुनिश्चित करना होगा कि ये शुल्क सीधे ग्राहक पर न डाला जाए। इसके बावजूद रिटेल सेक्टर में चिंता बनी हुई है। वजह है, अगर बड़े UPI पेमेंट पर लागत बढ़ती है तो कुछ कारोबारियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है, जिससे कुछ कारोबारी ऑपरेशनल खर्च घटा सकते हैं, जिससे डिस्काउंट या ऑफर स्ट्रक्चर में बदलाव संभव होगा और कुछ कारोबारी कैश पेमेंट को प्राथमिकता दे सकते हैं। बड़े और छोटे कारोबार के बीच असर का अंतर भी समझना जरूरी है। जिन दुकानों में औसत बिल 2,000 रूपए से कम है वहाँ ज्यादातर ट्रांजैक्शन MDR के दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन ज्वेलरी, आई वियर, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे हाई वैल्यू कारोबार में असर ज्यादा दिख सकता है। प्रीमियम रिटेल में MDR लागत बढ़ सकती है। UPI की सबसे बड़ी ताकत आसान और कम लागत वाली डिजिटल पेमेंट व्यवस्था रही है। 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए MDR नियम के बाद बड़े यूपीआई पेमेंट करने वाले कारोबारियों की लागत बढ़ती है या नहीं, इसका असर बाजार में कितना दिखता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ग्राहक पर सीधे चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन कारोबारियों और पेमेंट इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि एक आशंका ये भी है कि अगर कारोबारी बढ़ी हुई लागत अपने मुनाफे से नहीं संभाल पाते तो कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की कोशिश करके या डिस्काउंट और ऑफर कम करके ये बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं। आज तक ब्यूरो।

चुनाव आयोग पर उठते सवालों और विपक्ष के सामूहिक हल्ला बोल के बाद एनडीए से आई बड़ी आवाज। चिराग पासवान ने कहा, चुनाव प्रक्रिया पर शक हो जाए तो गलत होगा, आयोग दूर करे शंकाएं। रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा पर कांग्रेस में खलबली। अजय राय बोले, हम भी जा सकते हैं कन्नौज और इटावा। पूछा, क्या बीजेपी की जगह राहुल गांधी को ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश? वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा संकल्प यात्रियों से पीएम मोदी का संवाद। कहा, योजनाओं से आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना ही सरकार का मकसद। बाइक सवारों ने सुनाए अपने अनुभव। एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड। सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में जीता सोना। 50 मीटर राइफल में देश को मिला सिल्वर। और अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से हो रही गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी चौकस। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी। देर रात तक चलेगा विसर्जन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ वांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर में पहली खबर कोलकाता से होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोलकाता में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता चुनाव आयुक्त दफ्तर पर कांग्रेस का हल्ला बुला, पूरे देश में प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। थोड़ी देर में दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू होगा।
1: राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन के बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ है बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार। दादा, क्या डिमांड है?
2: ज्ञानेश कुमार को पदोत्तर करना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसका पासपोर्ट कैंसिल करना चाहिए। ज्ञानेश कुमार का नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसको बातिल करना चाहिए।
1: ममता बनर्जी भी ये कह रही थी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रद्द होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। आप लोगों का डिमांड क्या है?
2: सारा देश में ज्ञानेश कुमार का नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, राहुल गांधी आज देश का हीरो है। कब से उन्होंने बोल रहे थे, सारा देश आज राहुल गांधी का पीछे है। मेरा बात यही है, इमीडिएटली ज्ञानेश कुमार को अरेस्ट करना चाहिए और उसका ये पद से हटाना चाहिए। और जितना उनका नेतृत्व में चुनाव है वो सुप्रीम कोर्ट उसको विचार करना चाहिए, देखना चाहिए।
1: शंकर जी, सवाल ये है कि केरला में भी ज्ञानेश कुमार ने ही चुनाव किया, आप जीते, लेकिन उसको लेकर आप लोग क्यों सवाल नहीं?
2: आम इसलिए बात यह है, कोई कोई जाएगा ज्ञानेश कुमार कामयाब नहीं हुआ ईवीएम मशीन को बदल करने का। इधर 4000 ईवीएम मशीन जल गया, क्या हुआ मेरे को आज बताइए। ज्ञानेश कुमार केरला में कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाते, क्यों? बंगाल में हर जगह में ऐसा ही जो तरीका से हुआ वो गलत तरीका से हुआ।
1: पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति जो बदल चुकी है और कांग्रेस जो मेन विपक्ष का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, उभर के आ रहा है, वो जो वैक्यूम बना हुआ है तृणमूल कांग्रेस के जाने के बाद, कहीं ना कहीं उसको कब्जा करने की कोशिश भी है। और यही कारण है आप देख सकते हैं भारी तादाद में कांग्रेस के समर्थक रास्ते पे उतर के राहुल गांधी के कॉल के बाद आज ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठाई जा रही है। कैमरा पर्सन और घोष के साथ इंद्रजीत, आज तक कोलकाता।
0: और देखिए, अब तो थोड़ी देर में दूसरे शहरों में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने वाले हैं, जबकि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता निर्वाचन सदन पर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की पूरी रणनीति को बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज।
3: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए नए खुलासों के बाद राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना हमला और धारदार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक सीईसी ज्ञानेश कुमार को घेरने की तैयारी में है और आज देश भर में कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाइयों को कहा गया है कि वो विरोध प्रदर्शन करें। लोकल इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेस का घेराव करने का आदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्य इकाइयों को दे दिया है। कुल मिलाकर देश भर में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन आज दिखाई देगा। कांग्रेस पार्टी न केवल सड़क पर सीसी ज्ञानेश कुमार को घेरने की तैयारी में है, बल्कि राष्ट्रव्यापी इस मामले पर एजेंडा बनाने की भी तैयारी में लग गई है। यही वजह है कि 29 सितंबर को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में ज्ञानेश कुमार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सीसी ज्ञानेश कुमार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर एक बड़ी रणनीति भी बनाने को तैयार दिख रही है।
0: और देखिए, चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को लोगों का भरोसा बनाए रखना चाहिए, चुनाव आयोग को सामने आकर शंकाओं को दूर करना चाहिए।
4: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है, कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना, आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे। पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।
0: अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में जो अगली रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अखिलेश की यात्रा योगी सरकार के खिलाफ कम और हमें ताकत दिखाने की कोशिश ज्यादा थी। अजय राय ने कहा कि अगर अखिलेश अमेठी रायबरेली आएंगे तो हम भी कन्नौज इटावा और मैनपुरी जा सकते हैं। अजय राय ने कहा कि लगता है ये यात्रा राहुल गांधी को ताकत दिखाने के लिए निकाली गई है।
5: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना पीडीए रथ रायबरेली से निकाला और वैसे में रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ है वहां से प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक थी। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है समाजवादी पार्टी रायबरेली से निकाल सकती है अगर अपना पीडीए रथ, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इटावा मैनपुरी से भी अपना शुरुआत कर सकती है। दोनों के 20 सीटों को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है और पीडीए का रथ रायबरेली से निकालने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो मैसेज है कि वह कांग्रेस के गढ़ में भी मजबूती से खड़ी है, तो कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वह समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी मजबूती से खड़ी है। हालांकि बीजेपी साफ कहना है कि ये दोनों दल एक मत नहीं हो पा रहे हैं और रार जारी है।
0: अब अजय राय ने अखिलेश की रथ यात्रा पर क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं।
6: कल समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी रैली की रायबरेली में, अपना पीडीए रथ लेकर चले गए वहां पर और हजारों लाखों तादाद
7: में पूरे प्रदेश में चुनाव आ गया है, हर गलियों में लोग जाएंगे और निश्चित तौर से लोग अपना प्रचार करेंगे। हम लोग भी कन्नौज जाएंगे, हम लोग भी इटावा जाएंगे, मैनपुरी जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, गाजीपुर जाएंगे, बनारस जाएंगे, गोरखपुर, पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, हर गली चौराहे, हर ब्लॉक, हर तहसील पर काम करेंगे।
0: 12 बजे रिपोर्टर में बात बिहार की। जमुई समस्तीपुर के बाद अब बिहार के बांका से युवती के साथ अभद्रता का एक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में 3 सितंबर की तारीख है और ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में 22 सितंबर को आया। घटना बांका की ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मंदार पर्वत की है। वायरल वीडियो में युवती के साथ कुछ युवक बदसलूकी करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने 6 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
8: जमुई और समस्तीपुर के बाद अब बांका जिले से भी वैसा ही वीडियो वायरल हुआ है जहां पर एक महिला को कुछ लोग छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसे परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद बांका पुलिस जो है वो एक्शन में आ गई है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जाँच के आधार पर 6-7 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 3 सितंबर का है लेकिन ये 22 सितंबर को ही वायरल किया गया, जिसके बाद पुलिस के संज्ञान में भी ये पूरा मामला आया है। ये मामला दरअसल बौसी पुलिस स्टेशन अंतर्गत मंदार पर्वत का बताया जा रहा है और जिस तरीके से जमुई, उसके बाद समस्तीपुर और बांका में अब जिस तरीके से महिला के साथ दुर्व्यवहार और यौन शोषण का मामला सामने आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं बिहार में कानून व्यवस्था पर और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
0: अब 12 बजे रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट देहरादून से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी एक शर्मनाक और डराने वाली तस्वीर आई। देहरादून में दिनदहाड़े महिला के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। ये देखिए वो तस्वीर है, दिनदहाड़े महिला का अपहरण करने की कोशिश की जा रही है।
9: उत्तराखंड में कानून का डर खत्म हो चुका है, या फिर कहे कि उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है वो कभी इस तरह की दहशतगर्दी के लिए तैयार ही नहीं थी। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें देहरादून के नालापानी चौक के पास सुबह 6:45 पर एक महिला अपने बच्चे को स्कूल बस के लिए छोड़ने के लिए जाती हैं और लौटते समय स्कूटी पर जब वो घर आ रही होती हैं तो 2 युवक स्विफ्ट कार में आते हैं और उनको खींचने की कोशिश करते हैं। इस बीच आसपास के लोग शोर मचाते हैं और महिला को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो इस डर से वो युवक गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं और गाड़ी फरार हो जाती है। अब इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया, मामला भी दर्ज हो गया और पुलिस ने 3 टीमें जो हैं गठित कर दी हैं, लेकिन 3 दिन बीतने को आए हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। सवाल यही उठ रहा है कि जिस
0: वहीं दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में DU की छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात हुई। वारदात मंगलवार रात की है। पीड़िता के मुताबिक कार सवार 4 लड़कों ने उस पर अश्लील कमेंट किया, कार में जबरन खींचने की कोशिश की। पीड़ित का यह भी आरोप है कि FIR दर्ज कराने के लिए उसे कई थानों में चक्कर लगाने पड़े और सोचिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जब FIR दर्ज कराने के लिए कई थानों में चक्कर लगाने पड़े।
10: दिल्ली पुलिस ने पिंक फोर्स बनाया, पेट्रोलिंग शुरू की और वहीं दूसरी तरफ मुखर्जी नगर में डीयू की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना हो गई। और हद तो ये है कि छात्रा जब थाने पहुंची तो उसे मॉरिस नगर से मॉडल टाउन और मॉडल टाउन से दूसरे थाने, तीन थाने घुमाया गया और आखिर में उसकी FIR दर्ज हुई मुखर्जी नगर में। लेकिन करीबन 3 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस जहां दावे करती है कि वो महिलाओं के साथ किसी भी अपराध में बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस लेके चलती है, ऐसे में ये मामला बताता है कि दरअसल जमीनी हकीकत क्या है। हालांकि FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, CCTV जुटाए, आरोपियों की पहचान की और आरोपियों की गाड़ी को सीज कर लिया है। हालांकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
0: और आइए अब आपको दिखाते हैं पीड़ित छात्रा की आपबीती। आज तक से बातचीत में छात्रा ने उस रात की वारदात के बारे में पूरी डिटेल में बताया।
11: जैसा कि मैंने बताया, मैं और मेरी दोस्त है VR क्लासमेट, तो हम 9:30 बजे रात में विजयनगर हकीकत पार्क की तरफ से ओल्ड गुप्ता चौक की तरफ जा रहे थे। एंड वहां पर जब हम थोड़ा ओल्ड गुप्ता चौक की तरफ मोड़ से मुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे से एक गाड़ी आती है, वो रुकती है एंड वो अपना शीशा नीचे करते हैं एंड वो हम पे कमेंट पास करते हैं। तो हम बस उनसे इतना कहते हैं कि दिस इज नॉट द वे हाउ यू टॉक एंड जस्ट प्लीज लीव। तो वो इस पे इतने ऑफेंड हो जाते हैं, वो इतने उग्र हो जाते हैं कि वो हमें गालियां देने लगते हैं। बहुत लाइक आई वुड से दैट द वर्स्ट दैट दे वुड हैव सेड, उन्होंने वो सब कुछ बोला। उन्होंने हर प्रकार की गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी। वो हमारा पीछा कर रहे हैं और हम तो जब तक चल रहे थे तब तक वो हमारे एडजेसेंट चल रहे थे, बट द मोमेंट दैट वी स्टॉप इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड देयर वीडियो और समथिंग, वो भी हमारे एडजेसेंट वहां पर रुक जाते हैं चौराहे पर और वो आधी उनका जो बॉडी थी वो खिड़की से बाहर निकाल कर वो गालियां देना शुरू करते हैं। और वो वहां पर मतलब जितनी तेज आवाज में वो गालियां दे सकते थे कि अपने आप को समझती क्या हो, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, इतना क्यों भड़क रही हो, इन प्लस प्लस प्लस ऑल दोस गालियां, सारी गालियां कि माँ की बहन की, तुम कैसे घर से आते हो हमें पता है।
0: और 12:12 रिपोर्टर में जो अगली रिपोर्ट है वो दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में चाकूबाजी की है। यमुना बाजार इलाके में ई रिक्शा सवार यात्रियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। चाकू से हुए हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस लूट समेत कई एंगल से मामले की जांच कर रही है।
12: दिल्ली के कश्मीरी गेट से एक बार फिर से एक हत्या का मामला सामने आया है। ये घटना कल देर शाम हुई जब एक इलेक्शन एजेंट प्रभात अपने 2 अन्य साथियों के साथ ई रिक्शा से कश्मीरी गेट से चांदनी चौक की तरफ जा रहा था। तभी कुछ लोग पीछे से आते हैं और उससे वो पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश करते हैं। जब प्रभात इसका विरोध करता है तो उसे धारदार हथियार से अटैक करते हैं, हमला करते हैं, जिसके बाद जब प्रभात को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद नॉर्थ दिल्ली के पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है एक FIR दर्ज कर ली है। आसपास के इलाकों से जो CCTV फुटेज है उसे इकट्ठा किया जा रहा है। इस वक्त दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये अपराधी थे कौन। उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है पूरे इलाके से जो CCTV फुटेज है उसे ले लिया गया है और ये भी देखा जा रहा है कि अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो क्या उनके खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज हैं। अब दिल्ली पुलिस का फोकस पूरे इस मामले पर है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जल्दी से जल्दी इस अपराधी को हिरासत में लिया जाए ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं की जा सके और प्रभात की जो मृत्यु हुई है उसके घर वालों को इंसाफ मिल सके, जिसकी वो इस वक्त दिल्ली पुलिस से डिमांड कर रहे हैं।
0: अब 12:12 रिपोर्टर में अगली खबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फजीहत की है। न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ आतंकवाद के सवाल पर बचते दिखे। एक पत्रकार ने जब उनसे आतंकवाद और हाफिज सईद को लेकर सवाल किया तो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गए। UN मुख्यालय से निकलते समय शहबाज से पूछा गया था कि आप आतंकवादियों को पनाह देना कब बंद करेंगे।

0: से बचते हुए निकले। यूएनजीए में हिस्सा लेने पहुंचे शहबाज शरीफ से पत्रकारों ने जब आतंकवाद के बारे में पूछा तो वो बिना कुछ कहे चुप्पी साधते हुए वहां से निकल गए। दरअसल यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा है उसमें हिस्सा लेने पहुंचे शहबाज शरीफ से लगातार पत्रकारों ने ये बात पूछी कि आखिर क्यों आतंकवाद को पाकिस्तान लगातार पनाह देता है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दिए बिना ही वहां से चले गए। इतना ही नहीं, जब वो बाहर आ रहे थे तो एक बार फिर पत्रकारों ने पूछा कि आखिर हाफिज सईद पर मुकदमा कब चलाया जाएगा और लगातार इन आतंकवादियों को पनाह क्यों दी जाती है। ऐसे सवालों की बौछार पर एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी हुई है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था।
1: Prime Minister, when will you prosecute Hafiz Saeed? When will you prosecute Hafiz Saeed? Prime Minister, when will you stop harboring terrorists? Prime Minister, when will you prosecute Hafiz Saeed? When will you prosecute Hafiz Saeed? Prime Minister, when will you stop harboring terrorists?
2: और 12 बजे रिपोर्टर में आप संयुक्त राष्ट्र महासभा की रिपोर्ट। कल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का कई देशों ने बहिष्कार किया। यूएन में नेतन्याहू ने जैसे ही भाषण शुरू किया कई देशों के डेलीगेट्स उठकर जाने लगे। डेलीगेट्स को जाते देख पहले तो नेतन्याहू कुछ देर शांत रहे, फिर कहा कि अगर कोई और कायर बचा हो तो हॉल से जा सकता है। नेतन्याहू ने अपने भाषण में न्यूयॉर्क के ममदानी पर तीखा हमला बोला और कहा कि न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदी अब सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।
3: यूएनजीए के 81वें सत्र के दौरान जब जैसे ही इसराइल के प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया वैसे ही करीबन 75 देशों से ज्यादा उनके प्रतिनिधि वहां से वॉकआउट करना शुरू कर गए। दरअसल नेतन्याहू जब से बात कर रहे थे आत्मरक्षा की और गाजा में उनके हमलों की, तभी इसी वक्त तमाम जो देश थे उनके प्रतिनिधि करीबन 75 देशों से ज्यादा प्रतिनिधि वहां से बाहर निकलना शुरू हो गए। लेकिन इसके बाद नेतन्याहू ने इन सभी को मोरल कॉवर्ड कहा, यानी नैतिक गद्दार या फिर कायर कहा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि नेतन्याहू ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी कार्रवाई इसराइल की आत्मरक्षा के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि यूएनजीए की इस बैठक के अंदर मेंबर स्टेट्स के बीच में एक बड़ा मतभेद देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मतभेद इस बात को लेकर है कि इसराइल अब तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या किसी देश की नहीं सुन रहा और लगातार गाजा के अंदर बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। इसराइल को लेकर नाराजगी तमाम देशों के अंदर है।
2: और 12 बजे रिपोर्टर में एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन की रिपोर्ट आपको बताते हैं। जापान का नागोया में हो रहे एशियाई खेल में भारत ने आज सोना चांदी पर निशाना साधा। भारत की सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स 2024 में शूटिंग में भारत का यह पहला गोल्ड है, जबकि महिला क्रिकेट के बाद नागोया एशियाड में दूसरा गोल्ड। भारत को आज निशानेबाजी में ही पदक मिला। पुरुषों की 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया।
4: जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है और आज के दिन की शुरुआत भारतीय शूटर्स ने गोल्ड मेडल के साथ की। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट का फाइनल मुकाबला खेलने उतरे भारत के दो खिलाड़ियों ने ये कारनामा किया है। सुरुचि सिंह और कमलजीत ने ये भारत को गोल्ड मेडल दिला है। ये शूटिंग से पहला गोल्ड मेडल है जबकि भारत का ओवरऑल दूसरा गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में सुरुचि और कमलजीत ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा। हालांकि कोरिया ने दबाव बनाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी और भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया। टोटल अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो 484.6 पॉइंट के साथ भारत ये गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि शूटिंग से अभी हमें और गोल्ड मेडल मिलेंगे। हालांकि अगर आप ऐसे देखें तो क्रिकेट ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया था और अब शूटिंग से जाकर हमें ये दूसरा गोल्ड मेडल दिला है।
2: और अब आपको लिए चलते हैं मुंबई। आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। 10 दिन के गणपति उत्सव का समापन हो रहा है। देखिए दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
5: गणेश विसर्जन की शुरुआत हो चुकी है मुंबई से। मुंबई का राजा कहे जाने वाले गणेश गली के गणपति थोड़ी ही देर में इस मंडप से बाहर निकलेंगे और विसर्जन के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो जोश और उत्साह है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। बड़ी रंगोलियां यहाँ पर बनाई गई हैं गणेश विसर्जन के लिए। आप देख सकते हैं ऐसे ही रंगोलियां।

0: देखेंगे तो दूसरी तरफ जो भक्तगण हैं उनका उत्साह अपने चरम पर है। यहाँ पर ढोल ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं।
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स।
8: बेस्ट पेंट
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
11: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: बिजली का बिल पेड,
6: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिए।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
7: पे। इतना माही वे।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
10: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
9: स्मॉल बैंक?
10: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
9: ओके
10: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
11: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
11: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
13: आगे आगे,
14: अरे उधर
13: उधर, करेक्ट करेक्ट।
15: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: इन एसोसिएशन विद
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
18: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
19: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
20: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
21: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
18: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
22: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
23: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर।
18: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
3: इतना माही वे।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो झुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
5: क्या चीज है?
4: वायरल है। थैंक यू।
3: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता।
6: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे, बैठ
6: बैठ जा, बैठ जा।
3: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
2: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.
3: न्यूयॉर्क में भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात हुई. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की. बैठक में भारत अमेरिका संबंधों के साथ रूस और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई. जयशंकर ने रूबियो के सामने सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट को लेकर भारत के हितों और चिंताओं को रखा. दोनों नेताओं ने गल्फ और यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा की. अमेरिका की ओर से कहा गया कि भारत और अमेरिका क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और इंडो पैसिफिक से जुड़े मुद्दों पर लगातार तालमेल कर रहे हैं. ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी सहयोग पर चर्चा हुई. नए अमेरिकी कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार है. भारत ने साफ किया कि उसकी प्राथमिकता देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा है. दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और AI जैसे मुद्दों पर सहयोग जारी रखने पर भी जोर है. वहीं सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 19 अक्टूबर को भारत का दौरा कर सकते हैं. न्यूयॉर्क से ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब रूस से भारत की ऊर्जा खरीद को लेकर अमेरिका का दबाव बढ़ा है. ब्यूरो रिपोर्ट आज तक.
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रायबरेली में अखिलेश की पीडीए यात्रा पर बोले अजय राय, बोले अखिलेश रायबरेली अमेठी जाएंगे तो कांग्रेस कन्नौज इटावा जाएगी। अजय राय ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, रायबरेली यात्रा योगी सरकार के खिलाफ कम और राहुल गांधी को शक्ति दिखाने के लिए ज्यादा थी। अजय राय के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा आखिर ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर चुनौती क्यों दे रहे हैं। आलोक अवस्थी ने जीत का दावा करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरे बहुमत से तीसरी बार फिर से आने जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता दीपक रंजन ने बीजेपी के बयान पर किया पलटवार, कहा जहां भी लोगों के साथ अन्याय होगा समाजवादी पार्टी का रथ वहां पर खड़ा मिलेगा। 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव का पीडीए रथ लखनऊ से निकले, एसपी प्रमुख रायबरेली से शुरू हुआ राज्यव्यापी अभियान। अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा से यूपी की सियासत गरमाई, बीजेपी ने साधा निशाना, एसपी ने पूरे प्रदेश में अभियान की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा अब की वोट का बुलडोजर चलेगा और इनकी हमेशा के लिए धराशायी कर देगा इनको। यूपी मंत्री संदीप सिंह का अखिलेश यादव पर हमला, सत्ता में रहते लोधी समाज की याद नहीं आती, सत्ता से बाहर होते ही पिछड़ों की राजनीति शुरू। अखिलेश के पीडीए रथ पर सियासी घमासान, रायबरेली में अखिलेश के अभियान पर दिनेश प्रताप सिंह बोले, पिछड़ा वर्ग एनडीए के साथ 2027 में जनता जवाब देगी। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में बीजेपी का मिशन मोड, लोकसभा विधानसभा की तर्ज पर तैयारी के निर्देश। धर्मशाला सिंह का कार्यकर्ताओं को टारगेट, हर मतदाता से संपर्क और मतदान केंद्र तक पहुंचाने पर जोर। शिक्षक स्नातक चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार, धर्मपाल सिंह बोले कम समय में ज्यादा गति से करना होगा काम। ग्रेटर नोएडा में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज, गृहमंत्री और सीएम योगी एक मंच पर रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश भर के चिकित्सकों को लिखा पत्र, दवाओं के नाम हिंदी या देवनागरी लिपि में लिखने का अनुरोध। कानपुर में हाईवे पर लोडर और ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हुई, दोनों चालकों की मौत, हादसे का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 21 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के झांसी में युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड वीडियो में पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के बदायूं में सिपाही को डीसीएम ने से कुचलने की कोशिश, पीछे भागकर उसने जान बचाई, पशु तस्करी रोकने पहुंचा था सिपाही। कौशाम्बी में युवती से छेड़खानी के आरोप के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या, 5 नामजद 2 हिरासत में।

0: तो देखिए, उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरों में आगे बढ़े हैं, उससे पहले हम आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं चुनाव आयोग से जुड़े खुलासों पर। लखनऊ में इस वक्त कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट में अजय राय से लेकर राजेंद्र पाल गौतम तक मौजूद हैं। लेकिन आज के दिन समाजवादी पार्टी लखनऊ में कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, ये कहां प्रदर्शन हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी प्रदर्शन नहीं कर रही और इसके पीछे की वजह क्या है जब कांग्रेस इतनी एक्टिव है तो?
1: देखिए, मैं राजीव, मैं आपको बताऊं, ये प्रदर्शन कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में चल रहा है और समाजवादी पार्टी इसमें शामिल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि चारों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वोट चोर गद्दी चोर कह रहे हैं और यहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सभी वो नेता मौजूद हैं जो कि यहाँ प्रदर्शन में चुनाव आयोग के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर राजेंद्र गौतम जी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आज आपको यहाँ मौजूद है, ये प्रदर्शन कितना बड़ा है?
2: प्रदर्शन अभी चालू कहाँ हुआ है? प्रदर्शन तो अब से एक डेढ़ घंटे बाद होगा, अभी तो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई देश को बचाने की है। देश के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने गद्दारी की है और जिन षड्यंत्रकारियों के इशारे भी किए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्यों ना हो, वो जेल के पीछे होंगे, एक दिन बचेंगे नहीं। ये इम्यूनिटी जो इनको दी है ना ज्ञानेश कुमार को, ये इम्यूनिटी परमानेंट रहने वाली नहीं है। एक दिन ज्ञानेश कुमार जेल में होंगे, देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे होंगे। अभी उनको राहुल गांधी जी ने सलाह दी है कि वो देश से माफी मांगे, सरकारी गवाह बने और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश करें, और डर में या लालच में किस वजह से उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया वो बताएं तो शायद बच जाएं।
1: देखिए, यहाँ पर राजीव, साफ तौर से जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो प्रतिपक्ष नेता वो भी मौजूद है। राजीव, आप जिस तरीके से आप देखिए कि ये पूरा प्रदर्शन जो चल रहा है, इसमें अभी आगे क्या होना है, कहाँ आप लोग?
2: प्रदर्शन तो अभी होगा, अभी तो लोग आ रहे हैं, टाइम 2 बजे का अभी लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब लग रहा है कि उनकी वोट चुराई जा रही है, कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान ने इलेक्शन कमीशन को दी थी, इलेक्शन कमीशन ने विशेष तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने,
0: मतलब कांग्रेस फुल ऑन एक्टिव मोड में यहां पर दिखाई दे रही है, उनकी बातों से बहुत साफ स्पष्ट दिख रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग को लेकर अखबार में जो खुलासे हुए उसके बाद सबसे ज्यादा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ही हमलावर नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। वोट चोरी और चुनाव आयुक्तों के हवाले से किए गए खुलासों को लेकर कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठी है। हालांकि सभी विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ आंदोलन का आह्वान कर रखा है, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा अभियान अभी तक सड़कों पर नजर नहीं आया है। जबकि कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जरूर सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहे आंदोलन में नजर आए हैं।
3: आरोप नहीं लगाया है, जुर्म साबित किया है, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। संविधान ने उनको एक जिम्मेदारी दी थी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की, और उनके पास जो अधिकार है वो संविधान के देवे, वो बीजेपी के देवे नहीं है। वो अलग बात है, बीजेपी की सरकार ने उनको बचाने के लिए सुरक्षा कवच जरूर दिया है कि अगर वो कोई अपराध करें और जानबूझकर किसी का वोट काटें, जानबूझकर जीते हुए को हरा दें और जानबूझकर हारे हुए व्यक्ति को जिता दें, पूरे चुनाव को चोरी करवा दें, सरकारों को चोरी करवा दें, तो उसके बाद भी देशद्रोह करने के बाद भी उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल या सिविल केस नहीं डलेगा। ये प्रोटेक्शन देने का काम ठीक है, मोदी जी ने उनको कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ साबित किया है कि वो देशद्रोह कर रहे हैं, उनको सलाह भी दे दी है।
0: देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के लिए विकास बड़ा मुद्दा है और पिछले 9 साल के डबल इंजन और 12 साल के सिंगल इंजन के विकास की दावे को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में जा रही है। और इसी कड़ी में आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रहा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन हो रहा है और वहां पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं उनको।
4: हमारे एमएसएमई सेक्टर को, हमारे अन्नदाता किसान की मेहनत को, और इन सब को लेकर के हम चलें तो यूपी को एक नई पहचान दिलाने की एक नई पहल है। और इसको देख करके हम कह सकते हैं कि जो अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता है, दुनिया उसको फॉलो करती है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उसका एक प्रतीक बनकर के आज हम सबके सामने यहां पर खड़ा है। आज का यह अवसर हमारे लिए ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के लिए, हेरिटेज और इनोवेशन की दृष्टि से, हुनर और मार्केट के कंबाइंड पावर को देखने के लिए और उसको समझने का भी एक अवसर प्रदान कर रहा है। इस चतुर्थ भव्य संस्करण में आप सभी की गरमामयी उपस्थिति इसके वैश्विक स्वरूप की ओर होने वाले उस आकर्षण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो भारत के प्रति अपने ट्रस्ट को व्यक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी आईटीएस में आज हमारे साथ पार्टनर कंट्री के रूप में जापान, वियतनाम, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और बेलारूस जैसे देश हमारे साथ जुड़े हैं। इनके विशेष पेवेलियन हमारे द्विपक्षीय व्यापारिक प्रतिबद्धताओं को भी एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। हम यहां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट वेंचर की न्यू भी रखने आए हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। उत्तर प्रदेश उन समझौतों का लाभ उठाकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आमंत्रित करने और यहीं से वैश्विक निर्यात करने का भी सबसे सुलभ रास्ता दे रहा है। इनके साथ ही दुनिया के अनेक देशों से आए इंटरनेशनल बायर्स यहां उपस्थित हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के उत्पादों की गुणवत्ता, यहां की सप्लाई चेन की मजबूती और यहां के उद्यमियों की क्रेडिबिलिटी पर आज पूरी दुनिया को पूरा भरोसा भी है। इनके साथ ही 36,000 स्क्वायर मीटर का जो ये एक्सपोर्ट सेंटर है, इसमें 2400 से अधिक एग्जीबिटर्स इसका हिस्सा बने हैं। आज का दिन उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखने का है, जिसने पिछले 10 वर्षों में अपने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में अपनी पहचान की एक नई परिभाषा भी लिखी है। मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत एक समय दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया थी। धीरे धीरे करके विभाजित शक्ति के कारण एक कालखंड वह भी आया जब हमें गुलामी की बेड़ियों से जकड़ना पड़ा था, और वह कालखंड केवल देश की गुलामी का नहीं था, कारीगरों के हुनर को, हस्तशिल्पियों के कला को और बुनकरों के हुनर को भी हतोत्साहित किया गया, उन्हें हर प्रकार से प्रताड़ित किया गया। और आपने स्वतंत्र भारत के बाद दशकों तक उपेक्षित पड़ी यह कारीगरी, इस हस्तशिल्पी को उपेक्षित भाव के साथ भी देखा है।
0: तो देखिए, इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में 88 देश हिस्सेदार हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर ने मेले से एक रिपोर्ट भेजी है, वो हम आपको दिखाते हैं।
5: तमाम जो यूपी से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, उनको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाया गया है। यानी कि पीतल के जो प्रोडक्ट हैं, पीतल नगरी जिसे मुरादाबाद कहा जाता है, वहां पर इस तरीके के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। लकड़ी का काम जो खास तरीके का होता है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उनके तमाम प्रोडक्ट जो हैं ODOP के तहत, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश में एक जिले में एक प्रोडक्ट किस तरीके का है उसको लेकर के यहाँ पर दिखाया गया है। कोशिश की जा रही है कि ये विदेशों में जाकर के इसकी बिक्री किया जाए और इसी तरीके के जो काम है जैसे चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही जो मेटल का पीतल का काम जो है वो मुरादाबाद का है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम चीजें जो हैं यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ट्रेड फेयर में यहाँ पर लगाया गया है और ये खास यही दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से विकास की ओर जा रहा है।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीएम योगी और बीजेपी तो पहले से एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब अखिलेश ने भी रायबरेली से रणभेरी फूंक दी है, लेकिन इस रणभेरी की गूंज दुश्मन के खेमे में कम और गठबंधन के खेमे में ज्यादा सुनाई दी। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से समाजवादी पार्टी के रथ की शुरुआत करने पर अब बात आगे बढ़ने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम भी कन्नौज और मैनपुरी जा सकते हैं।
6: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जनसमूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 सीटों में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
7: अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
6: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का बयान क्यों आया उसके पीछे की कहानी समझने के लिए रायबरेली यात्रा के कुछ बयान सुनिए।
8: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। यहाँ पर
6: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
9: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
10: देखिए समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
9: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
10: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
6: हालांकि रायबरेली से रथ उतारने के समाजवादी फैसले को लेकर कार्यक्रम के पहले से सवाल उठाए जाते रहे और समाजवादी पार्टी की दलील रही कि चूंकि वहां राहुल लोधी और समाजवादी छात्र नेता उत्पीड़न के शिकार थे, इसलिए रैली वहां से शुरू की गई।
8: जहां पीड़ा होगी, जहां अपमान होगा, रथ वहां जाएगा।
9: लेकिन रायबरेली से इस चुनावी प्रचार की शुरुआत की वजह क्या?
10: जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाएगा, उनके साथ जुल्म किया जाएगा, सभी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ही कार्यकर्ता उन सभी के साथ खड़े हैं बड़ी मजबूती के साथ।
7: कल देखो आप, कल हम मौलाना तौकीर राजा साहब के घर गए जिनको सरकार प्रताड़ित कर रही है, जेल भेजी है, वहाँ तत्काल हम सब लोग जाकर उनकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है।
6: समाजवादी पार्टी सिर्फ रायबरेली के कांग्रेसी गढ़ पर ही दावा नहीं ठोक रही, बल्कि देश के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे का क्रेडिट भी कांग्रेस को नहीं देना चाहती।
8: समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले 2022 में आरोप लगाया था,
7: जिस तरीके से सीरीज के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताई चुनाव आयोग की सत्ता कैसे चोरी करा रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के अलावा मजबूती के साथ इस बात को किसी ने नहीं उठाया।
8: सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात रखी थी।
6: चुनाव आयोग से जुड़े खुलासों को लेकर कांग्रेस क्रेडिट लेती दिखती है, तो अखिलेश यशवंत सिन्हा तक को समर्थन देने की बात करते हैं, लेकिन भूल से भी राहुल और कांग्रेस का नाम नहीं लेते।
8: कल फोन आया था देश के बहुत वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा जी का, वो भी अपने गांव से यात्रा लेकर के निकलना चाहते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। हमने उनको भी पूरा समर्थन दिया है
7: और आज पूरा देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी मजबूती के साथ देश की बात उठा रहे हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
6: गौर करने की बात ये कि कांग्रेस चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे पर जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, चंडीगढ़ से लेकर बिहार में आरजेडी तक का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जिस यूपी में राहुल अखिलेश को मिलकर चुनाव लड़ना है वहां वोट चोरी और चुनाव आयोग वाले मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कोई बड़ा आंदोलन करती नहीं दिख रही। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और देखिए अजय राय के बयान को, क्या यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद के तौर पर गलत तरीके से देखा जा रहा है? अखिलेश की रथ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज तक से बातचीत में क्या कहा वो आप ही सुनिए।
11: कल समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी रैली की रायबरेली में, अपना पीडीए रथ लेकर चले गए वहां पर और हजारों लाखों तादाद
12: में पूरे प्रदेश में चुनाव आ गया है, हर गलियों में लोग जाएंगे और निश्चित तौर से लोग अपना प्रचार करेंगे। हम लोग भी कन्नौज जाएंगे, हम लोग भी इटावा जाएंगे, मैनपुरी जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, गाजीपुर जाएंगे, बनारस जाएंगे, गोरखपुर, पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, हर गली चौराहे, हर ब्लॉक, हर तहसील पर काम करेंगे।
0: तो गठबंधन के अंदर चुनावी सीजन की खींचतान से आ गया। अब मौजूदा चुनाव की बात, यूपी में इन दिनों राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों को लेकर बहुत गहमा गहमी है। खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी रणनीतियां बन रही हैं कि एक बूथ तक सैनिटाइज किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लखनऊ खंड स्नातक चुनाव को इस बार लोकसभा विधानसभा वाली शिद्दत के साथ लड़ा जा रहा है। चुनावी योजना के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी अपने अपने वार्डों में प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। कुल 1720 पोलिंग स्टेशन प्रभारी और बूथ लेवल एजेंटों की सूची तैयार की गई है, जिसमें करीब 450 प्रभारी और एजेंटों का प्रशिक्षण 4 अक्टूबर को कराया जाएगा। प्रशिक्षण लेने वाले कार्यकर्ता आगे बाकी प्रभारियों और एजेंटों को प्रशिक्षित करेंगे।
13: अभी 23 अक्टूबर चुनाव की तिथि आ चुकी है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। बूथ लेवल पे भी बूथ एजेंट से काम हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं उस पर मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है। तो हम समझते हैं अब की बार जितनी भी विधान परिषद की सीटें हैं उस पर सब पे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेगी।
14: पिछले चुनाव में जो सीटें हम जीते थे उनको सुरक्षित रखेंगे और जहां हमको असफलता मिली थी उन सीटों को भी जीतने के लिए अलग से तैयारी की जा रही है। पूरा भरोसा है कि शिक्षकों का और स्नातकों का आशीर्वाद मत के रूप में मिलेगा और सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मोहब्बत से जीतेगी।
0: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, माई गॉड मजा आ जाएगा।
18: कैची है वायरल है।
17: थैंक यू।
19: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
20: मैं हूँ ना, मेरे पास एक आइडिया है।
17: क्या?
20: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
19: उन आदान परिंदे बैठ
20: बैठ बैठ।
19: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
20: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: हरियाणा स्विंग्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर फॉर 50 इयर्स, सडनली एंटी इनकम्बेंसी डिसअपीयर्स। महाराष्ट्र स्विंग्स, सडनली इट डिसअपीयर्स। उत्तर प्रदेश स्विंग्स, समटाइम्स समाजवादी, समटाइम्स बीएसपी, इट डिसअपीयर्स। मध्य प्रदेश इट डिसअपीयर्स, गुजरात इट डिसअपीयर्स। एंड दिस इज बीन अ फंडामेंटल क्वेश्चन फॉर अस। वी कैन अंडरस्टैंड द पॉपुलैरिटी ऑफ अ पर्सन, वी कैन अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, बट वी कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ एंटी इनकम्बेंसी डिसअपीयर्स।
2: एंटी इनकम्बेंसी वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी के अंदर, इस गांधी परिवार के अंदर है। 100 साल से लगातार सत्ता में है कांग्रेस पार्टी की सत्ता में, और आज एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो अपनी सीट बगैर अपने सहयोगी दल की बैसाखी के नहीं जीत सकते। पिछले 25 साल से रायबरेली और अमेठी समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस पार्टी जीतती रही है, वरना सोनिया जी, राहुल जी की क्षमता नहीं है कि बगैर सपा के सपोर्ट के अपने दम पे अपनी खानदानी सीट निकाल लें। और राहुल गांधी जी वायनाड जीते और प्रियंका गांधी वायनाड जीती, मुस्लिम लीग के सपोर्ट पर जीते हैं जहां 60-65% मुस्लिम है। क्षमता नहीं है, हैसियत नहीं है कि बगैर मुस्लिम लीग के समर्थन के अपनी सीट निकाल सके।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, जहां पर डेलिब्रेशंस हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले ही छंद में, अपने पहले ही पैराग्राफ में एक बात बड़े स्पष्टता के साथ लिख दिया है, सारे ऑफिशियल डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन होने के बाद अंततो गत्वा एट द एंड SIR जो हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, वो यूनानिमिटी के साथ हुआ, अर्थात हम सब ने, तीनों कमिश्नर उसमें यूनानिमस थे, उसमें किसी प्रकार का मतांतर, मतभेद, मनांतर नहीं था, दे वर ऑल ऑन द सेम पेज।
7: माननीय CEC ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया, जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया, उन्होंने चुनाव आयोग को हाईजैक करके अपने कॉलीग्स को एक प्रकार से उसमें सर्व करने से अलग कर दिया, उन्होंने अपने खुद के ECs को हाईजैक कर दिया। ये एक आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण है, तो बाहरी बुलडोजर और आंतरिक बुलडोजर किस प्रकार से पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, उसका यह बहुत घिनौना एक उदाहरण है, और विशेष रूप से घिनौना है एक संवैधानिक संस्था के लिए। सभी संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, स्टैट्यूटरी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण उतनी ही होती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं एक स्पेशल स्टेटस रखती हैं।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हो चुकी है, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं,
1: ये मेक इन इंडिया की मोदी जी की पॉलिसी का ही परिणाम है। मित्रों, आज यहां पर देश विदेश से पधारे कई सम्मानित अतिथियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और उद्यमियों और निवेशकों को मैं एक बात याद कराना चाहता हूं। 2013 का साल था, 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए। और आज देखिए साहब, वही उत्तर प्रदेश आज भय मुक्त होकर निवेश का केंद्र बन रहा है और देश के विकास का इंजन बन रहा है। ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन डबल इंजन की सरकार का जादू है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। मित्रों, आज इस प्रदर्शनी में, ये व्यापार मेले में सैकड़ों व्यापारी आए हैं, अपने प्रोडक्ट के, उत्पाद के क्रय के लिए देश और दुनिया के व्यापारी को आकर्षण करते हैं। यहां कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहां मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। आज ये जो व्यापार मेले का यहां उद्घाटन कर रहे हैं, ये इसका चौथा संस्करण है। पहले संस्करण के शुभारंभ में राष्ट्रपति महोदय आई थी, दूसरे में उपराष्ट्रपति महोदय आए थे, तीसरे में स्वयं मोदी जी आए थे और मुझे आनंद है कि आज मैं इसके उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं। ये चौथे संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और चौथे में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2025 का वर्ष इंपैक्ट का वर्ष बना था, 5 लाख से अधिक लोग आए, 2400 से ज्यादा एमओयू हुए और इसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी आया और ट्रेड एग्रीमेंट भी हुए। और ये संस्करण मुझे लगता है कि 25 के रिकॉर्ड सभी प्रकार के तोड़ने में सफल होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश का विकास सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, करीब करीब 24 करोड़ से ज्यादा आबादी है, विपुल जल संपदा है, भूमि है, मेहनती कारीगर है और अब उद्योग के लिए अच्छा वातावरण भी बना है।
0: वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

देश भर की कई जगहों पर चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, कोलकाता में बंगाल सीईओ ऑफिस तक मार्च, पोस्टर्स के साथ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतले फूके, जमकर साधा चुनाव आयोग पर निशाना। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ज्ञानेश कुमार की तुरंत गिरफ्तारी और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इम्फाल में मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर मार्च किया, परिसर में घुसने की कोशिश की। वो चोरी पर सियासी संग्राम तेज, राहुल गांधी का पीएम मोदी, अमित शाह और सीसी ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, वोट चोरी से कानून चोरी तक पहुंचा मामला, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उठाए सवाल। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज, राहुल गांधी बोले अप्रूवर बनकर सामने लाए सच। वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले राहुल गांधी का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद। एसआर विवाद को लेकर सियासी घमासान, विपक्ष ने सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिल्म अभियोग की तैयारी, ड्राफ्ट तैयार कर रहा है इंडिया ब्लॉक। बिहार में आरजेडी का बड़ा प्रदर्शन, आज सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञानेश कुमार के पुतले फूके जाने का ऐलान। विपक्षी आरोपों के बीच चुनाव आयोग की सफाई, ईसीआई नेट को बताया विकेंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनाव आयोग का दावा, वैधानिक काम संबंधित फील्ड अधिकारी करते हैं, मुख्यालय से नहीं होता कोई हस्तक्षेप। 29 सितंबर को कांग्रेस समिति की अहम बैठक, एसआर विवाद और सीसी के खिलाफ आगे की रणनीति पर होगा मंथन। प्रियंका गांधी का सीसी पर हमला, बोली आरोप सही है तो इस्तीफा दें और आपराधिक कार्रवाई का सामना करें। हेमंत बिस्वा बोले सीसी अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते, आयोग बहुमत या सहमति से करता है निर्णय। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सीसी से इस्तीफा मांगा, बोले मतदाताओं के अधिकार और वोट की पवित्रता से समझौता हुआ। अखिलेश यादव बोले सीसी पर गंभीर आरोप हैं तो उन्हें खुद इस्तीफा देकर पद छोड़ देना चाहिए। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना, बोले उठते ही आरोप लगाना राहुल की आदत बन गई। पीएम मोदी ने आज दूसरे दिन सेवा यात्रियों से की बात, उस दौरान सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही मोटरसाइकिल यात्राओं को देश युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा युवा शक्ति करेगी विकसित भारत का निर्माण। सेवा यात्रा द्वारा आयुष्मान योजना पर मिले लाभ पर पीएम मोदी ने कहा सरकारी योजना का लाभ अंतिम लोगों तक पहुंचता है, हमें सभी के सेवा का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं है बल्कि लोगों से जुड़े और सेवा भावना को कार्य बदलने का अवसर है। बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान तेज, जमुई के बाद समस्तीपुर में छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। जमुई के बाद बिहार के कई जिलों में महिलाओं से बदसलूकी के आरोप, तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, बोले बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रशासन सख्त, मुख्य सचिव ने सभी डीएम और एसपी को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। चिराग पासवान ने महिला सुरक्षा पर जताई चिंता, बोले लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर सवाल उठाया, बोले आज अपराध के बाद तुरंत कार्रवाई होती है, तेजस्वी अपने पिता के शासनकाल को याद कर लें। रामकृपाल यादव का विपक्ष पर पलटवार, बोले बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठीक है, विपक्ष घटनाओं पर राजनीति कर रहा है। मुकेश सैनी ने बिहार की घटनाओं को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बोले सरकार को महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने महिलाओं से बदसलूकी मामले में जताई नाराजगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। जमुई पीड़िता की मां ने सरकार की कार्रवाई पर जताई संतुष्टि, बोली मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ किसी और बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव का पीरिय रात, लखनऊ से निकले एसपी प्रमुख, रायबरेली से शुरू हुआ राज्यव्यापी अभियान। अखिलेश यादव की पीरिय यात्रा से यूपी की सियासत गरमाई, बीजेपी ने साधा निशाना, एसपी ने पूरे प्रदेश में अभियान की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आपकी वोट का बुलडोजर चलेगा और इनको हमेशा के लिए दरशाही कर देगा। यूपी मंत्री संदीप सिंह का अखिलेश पर हमला, सत्ता में रहते लोधी समाज की याद नहीं आती है, सत्ता से बाहर होते ही पिछड़ों की राजनीति शुरू हो जाती है। अखिलेश के पीरिय रथ पर सियासी घमासान, रायबरेली में अखिलेश के अभियान पर दिनेश प्रताप सिंह बोले पिछड़ा वर्ग एनडीए के साथ है, 2027 में जनता जवाब देगी। रायबरेली में अखिलेश की पीरिय यात्रा पर बोले अजय राय, बोले अखिलेश रायबरेली अमेठी जाएंगे तो कांग्रेस का नौ जुटावा जाएगी। अजय राय ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा रायबरेली यात्रा योगी सरकार के खिलाफ कम और राहुल गांधी की शक्ति दिखाने के लिए ज्यादा थी। अजय राय के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा आखिर ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर चुनौती क्यों दे रहे हैं।
आलोक अवस्थी ने जीत का दावा करते हुए कहा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे बहुमत से तीसरी बार आने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी नेता दीपक रंजन ने बीजेपी के बयान पर किया पलटवार, कहा जहां भी लोगों के साथ अन्याय होगा समाजवादी पार्टी का रथ वहां पर खड़ा मिलेगा। यूपीआई पर एमडीआर को लेकर सरकार का फैसला, ग्राहकों पर चार्ज का बोझ नहीं डालने की तैयारी। यूपीआई एमडीआर पर सरकार और आईबीए मिलकर बनाएंगे व्यवस्था, दुकानदारों से ग्राहकों पर लागत न डालने की अपील। 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआई भुगतान पर एमडीआर सरकार ने कहा ग्राहकों से अतिरिक्त पैसा ना लिया जाए। एनपीसीआई सीईओ का दावा यूपीआई करीब 96% लेन देन पर एमडीआर का असर नहीं पड़ेगा, 75% वैल्यू मुफ्त रहेगी। यूपीआई चार्ज पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, सांसद प्रवीण चक्रवर्ती बोले आम लोगों पर बोझ डालने का विरोध करेंगे। एसआर में अडवाणी, जगदीप धनखड़ और एस जयशंकर समेत प्रमुख मतदाताओं का वेरिफिकेशन पूरा, अंतिम सूची में नाम शामिल करने की तैयारी। दिल्ली एसआर पर ईसी की सफाई, नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं, सुनवाई और सत्यापन के बाद ही अंतिम मतदाता सूची में फैसला होगा। तमिलनाडु के चर्चित जेम विरमणि पॉक्सो केस में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, 2024 की शिकायत पर कथित निष्क्रियता को लेकर 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हटाए गए। विरमणि केस में जांच तेज, पॉक्सो कोर्ट ने शांति और उनके पति महेंद्र सिम्हन को 3 दिन की पुलिस हिरासत पूछताछ की मंजूरी। वीरमणि केस पर एमके स्टालिन का बयान, बोले अपराध में शामिल आरोपी को बचाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से नहीं बचेगा। चिली में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 4 क्षेत्रों में बाढ़ और नदी उफान पर 74 घरों को नुकसान, हजारों लोग बिजली संकट से घिरे। चिली में तूफानी मौसम से बिगड़े हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ने पर कई इलाकों में अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश। ओडिशा के कंधमाल में भारी बारिश का कहर, कलिंगा घाटी में भूस्खलन से NH-157 पर यातायात बंद। समस्तीपुर में बारिश के बीच स्कूल परिसर में गिरा विशालकाय बरगद का पेड़, 2 छात्राओं की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। पुरुलिया में भारी बारिश से कई इलाकों का संपर्क कटा, प्रशासन ने आवाजाही पर लगाई रोक। मुंबई में आज गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जगह जगह निकल रहे हैं जुलूस, भक्ति भाव से बप्पा की पूजा के बाद आज गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं भक्त। ढोल ताशो नगाड़ों के बीच बप्पा की विदाई के लिए जुटे हैं भक्त, अगले साल जल्दी आने की कामना। जलगांव में बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए भारी संख्या में जुटे भक्त, अपने प्रिय गणपति को दे रहे हैं भक्तिपूर्ण विदाई। अकोला में विसर्जन को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, 3000 पुलिसकर्मी तैनात, 200 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जालना में जगह जगह मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था, प्रशासन सभी प्रबंधों का ले रहा है जायजा। कानपुर में हाईवे पर लोडर और ट्रॉली के आमने सामने टक्कर, दोनों चालकों की मौत।

0: ग्रेटर नोएडा में पेन फैक्ट्री बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, 21 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जैसलमेर में एक बाजार में भीषण आग लगने से कपड़े की 6 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव के समापन के बाद दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों ने कुर्सियां हेलमेट एक दूसरे पर फेंके, वीडियो वायरल। यूपी के झांसी में युवक की आत्महत्या का मामला, सुसाइड वीडियो में पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के बदायूं में सिपाही को डीसीएम से कुचलने की कोशिश, पीछे भागकर बचाई जान, पशु तस्करी रोकने पहुंचा था सिपाही। कौशाम्बी में युवती छेड़खानी के आरोपों के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या, 5 नामजद 2 हिरासत में। लुधियाना में तेज रफ्तार कार का कहर, 100 किलोमीटर के आसपास रफ्तार से आई कार ने 5 लोगों को उड़ाया, खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। कार इतनी तेज थी कि बाइक सवार टक्कर के बाद करीब 5 फीट हवा में उछलकर करीब 30 फीट दूर सड़क पर जा गिरा। गुरुग्राम में थार सवार दबंगों का तांडव, यूनिवर्सिटी छात्र को टक्कर मारकर बेरहमी से पीटा, छात्रों से बदसलूकी। वीर बचाव करने आई छात्राओं के साथ आरोपियों ने हाथापाई और मारपीट की, पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने के कारण छात्रों में नाराजगी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पानी के तेज बहाव के बावजूद पुल को पार करते समय पेट्रोल से भरा टैंकर बहा। चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल के घर पर गोली मारकर हत्या, मामले की जांच जारी। मध्यप्रदेश के मैहर में बदमाशों के डर से पलायन को मजबूर लोग, विरोध में हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आगरा में बर्थडे पार्टी के बहाने चंगाई सभा, फिर धर्मांतरण की कोशिश का आरोप, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मान में व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन, राष्ट्रपति ट्रंप और जिनपिंग ने स्वागत भोज को किया संबोधित। राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने की बताई जरूरत, समानता और सम्मान के साथ सहयोग पर जोर। व्हाइट हाउस में जिनपिंग के सम्मान स्वागत समारोह में व्हाइट हाउस के ऊपर B-2B और 4 F-22 राफ्टर फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। तिब्बत समर्थकों का यूएस कैपिटल के सामने प्रदर्शन, व्हाइट हाउस में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बैठक के दौरान प्रदर्शन। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा अमेरिका को तय करना है कि वो जंग खत्म करना चाहता है नहीं, अमेरिका पर जंग खत्म करने का दारोमदार। सऊदी अरब की मदद के लिए फ्रांस का सेना भेजने का ऐलान, लाल सागर बंदरगाह शहर यानबू की सुरक्षा करेगी फ्रांसीसी सेना। आतंकियों की पनाह पर शहबाज शरीफ से सवाल, न्यूयॉर्क में भारतीय पत्रकार को नहीं मिला जवाब। यूएन महासभा में इजरायली पीएम नेतन्याहू का डेलीगेट्स ने किया बहिष्कार, नेतन्याहू के आते ही निकल गए बाहर। इसराइल को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बंद करने की मांग को लेकर न्यूयॉर्क प्रदर्शन, अभिनेत्री सुजन सरेंडन समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। एंटी इमिग्रेशन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद इंग्लैंड में थाने के बाहर प्रदर्शन, प्रवासियों की नाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में कार्यकर्ता डैनियल थॉमस की हुई गिरफ्तारी। भारत की सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण पदक, एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में भारत का पहला गोल्ड। 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में भारत ने जीता सिल्वर, ऐश्वर्य प्रताप, रुद्राक्ष और नीरज कुमार ने बढ़ाया देश का मान। शूटिंग में एशियन गेम्स का पहला गोल्ड मेडल हासिल, भारतीय निशानेबाज अब तक 10 मेडल जीत चुके हैं, इनमें 5 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज शामिल है। भारत इन गेम्स अब तक 2 गोल्ड 8 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज के सहारे 19 मेडल जीत चुका है, मेडल टैली में 12वें स्थान पर। जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने स्क्वाश के मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत का मेडल पक्का किया, फिलीपींस की जोड़ी को 11-3 11-5 से हराया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो चुका है, देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं, कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग में वन मैन शो चल रहा है, बाकी 2 चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नहीं सुन रहे हैं। एक अखबार के खुलासे के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ आज देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन किया है।

0: का बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया है। इसमें आप गोगोई को देख सकते हैं, वो प्रदर्शन में शिरकत करते हुए। ये गुवाहाटी की तस्वीर है जहां पर उन्होंने प्रदर्शन की अगुवाई की। और ये अगली तस्वीर लखनऊ की है, यहाँ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट दिखाई दे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें। वहां इलेक्शन कमीशन में वन मैन शो चल रहा था, ज्ञानेश कुमार सिर्फ अपनी चला रहे थे, बाकी दो कमिश्नर्स की नहीं सुन रहे थे। यही आरोप लगातार विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस सबसे मुखर तौर पर सामने दिख रही है। ये कोलकाता की आप तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस का रण, शहर शहर में विरोध प्रदर्शन। शैलजा कुमारी इस प्रदर्शन में दिखाई दे रही हैं। ये देहरादून का प्रदर्शन है जहां पर कांग्रेस एक देशव्यापी अभियान के तहत अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही है। छह शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि कैसे इन शहरों में कांग्रेस का मार्च हुआ। ये चंडीगढ़ की प्रदर्शन की तस्वीर है, यहाँ पर संबोधन तो हुए, इसके साथ साथ प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला गया। जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा के भीतर ही इस बात को उठाया गया कि ज्ञानेश कुमार को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। ये तस्वीर मणिपुर की है, यहां पर भी प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। यहां चीफ इलेक्टोरल ऑफिस मणिपुर के सामने ये दरअसल प्रदर्शन किया गया। इम्फाल में चुनाव आयोग के दफ्तर के भीतर दाखिल होने की कोशिश कार्यकर्ताओं ने की प्रदर्शनकारियों ने, और इन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तो यहां प्रदर्शन दरअसल शांतिपूर्ण नहीं रहा, अंदर दाखिल होने की कोशिश और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां आंसू गैस के गोले छोड़े। बात जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जहां पर फिर हंगामा हुआ है। इस दौरान बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा को मार्शल के जरिए जबरन विधानसभा से बाहर किया गया। रंधावा विधानसभा की कुर्सी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के साल 2000 के उस विवादित प्रस्ताव का खास जिक्र किया गया, जिसमें 1953 से पहले की स्थिति के आधार पर स्वायत्तता की मांग की गई थी। इसी प्रस्ताव पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायकों ने 2000 के विवादित स्वायत्तता प्रस्ताव का जिक्र किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी विधायकों ने उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव की प्रतियां तक फाड़ दी गई। वक्त एक ब्रेक का उछला है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Nothing small about us.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
14: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, माय गॉड मजा आ जाएगा।
15: अब पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
16: मेरे पास एक आइडिया है।
14: क्या?
16: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
17: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
18: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
19: ओ नादान परिंदे, मेरा नाम सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
20: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
21: तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
22: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
19: आई लाइक दिस ओनली।
23: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
4: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
5: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
6: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
7: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
8: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
9: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
3: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का।
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक दो टूटी ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
12: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
13: मेरे पास एक आइडिया।
11: क्या?
13: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
14: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
15: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
12: ओ नादान परिंदे बैठ, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
16: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
17: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
12: आई लाइक दिस ओनली।
1: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
18: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत के वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
19: इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पासवान ने कहा चुनाव प्रक्रिया पर शक हो जाए तो गलत होगा, आयोग दूर करे शंकाएं। यूपी से बंगाल तक चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, पवन खेड़ा ने पूछा क्या सीईसी से बंद हैं दोनों चुनाव आयुक्तों की बातचीत, बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा एसआर का मामला। ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक मंच पर गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की महत्वाकांक्षी मुहिम,

0: अजय राय बोले हम भी जा सकते हैं कन्नौज और अटावा। पूछा क्या बीजेपी की जगह राहुल गांधी को ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश। अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से हो रही है गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी चौकस, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी, देर रात तक चलेगा विसर्जन। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत कर रहे हैं पटना की तस्वीरों के साथ, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। दरअसल देशव्यापी प्रदर्शन का हिस्सा है, जिसमें सीसी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सीसी के खिलाफ ये कांग्रेस का रण पटना में भी जारी है। यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, तस्वीरें दिखाइए।
1: बिल्कुल नया तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये पटना में आप देखिए वाटर कैनन चलाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पर। और थोड़ी देर पहले ही जो ज्ञानेश कुमार को लेकर पूरा देशव्यापी आज कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, उसी कड़ी में राजधानी पटना में भी आर ब्लॉक से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध प्रदर्शन निकाला गया। लेकिन इन सभी जो नेता कार्यकर्ता जो प्रदर्शन में शामिल थे, इन सब प्रदर्शनकारियों को बिहार विधानसभा के गेट के बाहर ही रोक दिया गया, क्योंकि ये सेंसिटिव इलाका है, इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। बैरिकेडिंग लगाया गया था, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं प्रदर्शनकारी, ये लोग बैरिकेडिंग को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद फिर प्रशासन के पास लगता कोई विकल्प नहीं बचा, तो अब देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से, जो तमाम प्रदर्शनकारी भी हैं, उन लोगों को यहाँ से तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हुए हैं, और जो अमूमन हम लोगों ने देखा है जनजी आंदोलन में भी कि रेन डांस शुरू कर देते हैं, तो वैसा ही कुछ जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से राजधानी पटना में इस वक्त कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा है, आर ब्लॉक से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने की इनका जो इरादा था, और बीच में ही प्रशासन ने विधानसभा के गेट के ठीक बाहर इनको रोक दिया, इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं कांग्रेस के, उन पर चलाया जा रहा है। नेताओं में पप्पू यादव भी शामिल हैं, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता हैं वो सभी लोग शामिल हैं। लेकिन स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई। कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और आखिरकार प्रशासन ने उन पर वाटर कैनन देखिए चला दिया है। और लगातार आप देखिए पानी के फवारे के जरिए इस भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देखिए प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं सड़कों पर ही, जो जहां पर है वहीं पर बैठ गए हैं, और लगातार यहां पर एक कह सकते हैं तो एक स्थिति बनी हुई है जहां पर प्रशासन और प्रदर्शनकारी आमने सामने नजर आ रहे हैं। नेहा,
0: ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। असीम बस्सी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा सीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर। असीम, वहां पर क्या तस्वीर है, क्या वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है या नियंत्रण में है?
2: तस्वीर यहां पर चंडीगढ़ से किस तरह वाटर कैनन जो है लगातार यहां पर यूज किया जा रहा है, और ताकि यहां से कांग्रेस वर्कर्स को स्कैटर किया जाए, इनको यहां से हटाया जाए, लेकिन लगातार कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं यहां पर बने हुए हैं और यहां से वो हट नहीं रहे हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में ही जो है इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, और यहां मार्च करने के लिए पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट राजा वड़िंग के लीडरशिप में यहां पंजाब कांग्रेस वर्कर्स इकट्ठे हुए थे। और आप देख सकते हैं लगातार यहां पर वाटर कैनन जो है चलाया जा रहा है ताकि ये लोग आगे ना जा सकें। एक बार जो है फिर से आप देख सकते हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो है वो ब्राउन टर्बन में हाथ हिलाते हुए बैरिकेडिंग के बिल्कुल पास आगे जाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गुस्सा है, उनकी एफजी को भी जलाया गया, और अब प्रोटेस्ट जो है लगातार यहां पर चंडीगढ़ में चल रहा है। पंजाब कांग्रेस इस वक्त आगे जाना चाहती है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में चंडीगढ़ पुलिस किस तरह लीडर्स को यहां से हटा रही है, खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं वो यहां पर डटे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से किस तरह पंजाब कांग्रेस के वर्कर्स को हटाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस को डिप्लॉय किया गया था, बैरिकेडिंग जो है यहाँ की गई थी, अब इनको खदेड़ने के लिए यहाँ से जो है पुलिस जोर लगा रही है। और अमरिंदर सिंह राजावड़िंग जो है वो लगातार बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए, और एक बार इधर देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह ये अनिल जोशी है, कांग्रेस लीडर है, जो जिन्हें पुलिस यहां से हटा रही है, लेकिन अमरिंदर सिंह राजावड़िंग लगातार जो है वो चढ़े हुए हैं स्टेज के ऊपर, बैरिकेडिंग के ऊपर माफ कीजिएगा, ताकि वो आगे जा सके। हालांकि सचिन पायलट को इसको प्रोटेस्ट को लीड करना था लेकिन नहीं पहुंचे। और ये तस्वीरें हैं यहां चंडीगढ़ की सेक्टर 17 की, यहां से कुछ दूरी पे ही इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, और जिस दिन से इलेक्शन कमीशन को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है उस दिन से सवाल उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और आज कांग्रेस काफी जगह पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, और जहां पर चंडीगढ़ में भी यही सिचुएशन है कि वाटर कैनन यूज किया गया है चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा।
0: बीच तस्वीरें पटना से भी लगातार आ रही हैं। देखिए यथास्थिति दिखाई दे रही है रोहित चंडीगढ़ में भी, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये कहां से कहां तक का मार्च पटना में निकाला जा रहा है?
1: चौक से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक, यानी तकरीबन जो है आधा पौन किलोमीटर का जो ये पूरी दूरी है, वहां पर प्रदर्शन निकाला गया था। और थोड़ी ही दूर के बाद जैसे ही इन लोगों ने आर ब्लॉक से प्रदर्शन शुरू किया था, उसके बाद जैसे ही ये लोग विधानसभा पहुंचे थे तो विधानसभा पर पूरी बैरिकेडिंग जो है वो देखिए किस तरीके से हम दिखा रहे हैं। यहां पर व्यवस्था की गई थी, बैरिकेडिंग लगाकर जो है इनको रोकने की पूरे इंतजाम थे, और यहां पर रोका भी गया था, भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था यहां पर। और फिर जो कांग्रेस के प्रदर्शनकारी हैं वो लोग यहां से बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी दौरान जब प्रशासन उन्हें रोका, पुलिस ने रोका और वो मानने को तैयार नहीं थे, तब वाटर कैनन चलाया गया है। और वाटर कैनन में भी जब पानी समाप्त हो गया है तो अब पुलिस खुद मैदान में उतर कर यहाँ देखिए, अब यहाँ पर धक्का मुक्की की स्थिति जो है वो हो रही है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। आप देखिए कांग्रेस के लोग यहाँ पर लगातार धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस इनको यहाँ से हटाने की लगातार कोशिश हो रही है, यानी कि दोनों तरफ से जो है वो रस्सा कस्सी स्थिति यहाँ बनी हुई है, धक्का मुक्की चल रही है, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो लगातार एक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ऐसा लग रहा है मानो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है ये इलाका। हालांकि अभी तक कोई बहुत ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया है, लाठीचार्ज जैसी स्थिति अभी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन हाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर करके भीड़ को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी ऐसा लगता है कि नाकामयाब है प्रशासन, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए पुलिस जो है, महिला पुलिस कुछ महिला कार्यकर्ताओं को भी यहाँ से उठाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे देखिए इस तरफ देखिए, धक्का मुक्की देखिए, किस तरीके से पुलिस के लोग जो है वो पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं इन कार्यकर्ताओं को, और आपस में जो एक देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है एक दूसरे के बीच में, और पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं प्रदर्शनकारियों को जो है वो यहाँ से हटाना। और फिलहाल यहाँ पर दोनों पक्ष के बीच में, यानी दोनों तरफ से जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है, और पुलिस यहां से इनको धकेलने की कोशिश कर रही है, पीछे हटाने की कोशिश कर रही है। नेहा
0: ठीक है, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि ये कार्यकर्ता इस वक्त आगे बढ़ने के स्थिति में नहीं है क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। असीम बस्सी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ। असीम तस्वीरें दिखाइए, क्या स्थिति नियंत्रण में है इस वक्त, क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जितनी संख्या अपेक्षित थी उतनी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जुड़े, लग रहा है वहां पर हिरासत में लेने की भी तैयारी है, बस तैयार है।
2: जी हाँ, मैं आपको बता दूं क्योंकि कांग्रेस वर्कर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ जाना चाहते थे, जैसे ही वो बैरिकेडिंग के नजदीक आए तो पुलिस ने जो है हैवी यूजेज किया जो वाटर कैनन का था, लेकिन अब जो है स्थिति कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं पीछे धकेल दिया गया है, बसेस में डिटेन कर दिया गया है। इस पूरे प्रोटेस्ट को पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजावड़िंग लीड कर रहे थे, और वाटर कैनन का काफी यूजेज यहां हुआ, जिसके बाद कांग्रेस वर्कर्स को पीछे पुश किया गया। यहां आप देख सकते हैं जो चंडीगढ़ पुलिस की डिप्लॉयमेंट, पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट, और चंडीगढ़ पुलिस ने जो व्हीकल्स डिप्लॉय किए हैं उसमें जो है वर्कर्स को डिटेन करके लेके जा रहा है। सो इलेक्शन कमीशन जब से अंडर स्कैनर आया है तब से लगातार जो है विरोध हो रहे हैं, और यहाँ चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस ने तगड़ा विरोध किया, लेकिन ये बैरिकेडिंग तोड़ के आगे जाना चाहते थे जहां इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में, लेकिन पुलिस ने इनको रोका और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और अब सिचुएशन है यहां पर आप देख सकते हैं कंट्रोल में है। कुछ वर्कर्स जो है बस के ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन ये बस देखिए आप मूव कर रही है, जिन्हें डिटेन कर लिया गया ऑलरेडी। हालांकि सचिन पायलट भी इसको लीड करने वाले थे, लेकिन सचिन पायलट किसी वजह से यहां नहीं पहुंचे। सो अमरिंदर सिंह राजा वुडिंग की लीडरशिप में यहां पर ये एक बड़ा टेस्ट जो है चंडीगढ़ में हुआ है और अभी भी यहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के वर्कर्स यहां पे मौजूद हैं। दूर दूर से वर्कर्स यहां पे आए थे, भारी रश यहां पर हुआ, लेकिन पुलिस ने पूरी ताकत लगाकर वाटर कैनन यूज करके इनको यहां से आगे जाने नहीं दिया। और आप देख सकते हैं पुलिस जो है इन्हें वर्कर्स को डिटेन करके बसेस में ले जाती हुई, और ये बस आप मूव होते हुए देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं कि एक टाइम पे जहां एक कांग्रेस के वर्कर्स जो है बिल्कुल बैरिकेडिंग के ऊपर थे, राजा वड़िंग खुद लीड कर रहे थे, वाटर कैनन यूज किया गया, उसके बाद यहां इनको यहां पीछे पुश किया गया और अब डिटेन करके चंडीगढ़ पुलिस ने यहां से लेके जा रही है। जी हां,
3: गद्दार, इसने उनको सत्ता में रहने के लिए देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है। इस गाने से कोई पूछे, तेरे मोदी और शाह ने देश को आजादी दिलवाई या देश का संविधान बनाया, जिनको सत्ता में रखने के लिए तू देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है।
4: पुलिस स्टेशन ले जाना चाह रहे हैं क्या है?
3: ये तिहाड़ जाएगा, इसके बाद दो ही रास्ते हैं, या तो ये तिहाड़ जाए या देश को छोड़ के जाए। देश इसको छोड़ने नहीं देंगे, हर एक एयरपोर्ट में यूथ कांग्रेस के लोग हैं, कहीं भी मिल गए इसको दबोच लेंगे।
5: So right there on the ground, you have protests going on by Indian.
0: दिल्ली और पटना से दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर तौर पर एक ही मांग है, एक ही मुद्दा है, जिसको लेकर कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई दे रही है। देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और दिल्ली से अमित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद थे अब से कुछ देर पहले। पटना में रोहित सिंह मौजूद हैं। पटना की ताजा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर मार्च अब संभव नहीं हो पाएगा रोहित, ऐसा लग रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब पुलिस ने जो है एक तरीके से पीछे ढकेल दिया है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। और ऋषि मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद है। ऋषि जी, ये बताइए, आप लोग इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप लोग को आगे जाने नहीं दिया गया है।
6: ये चोरी से आए हुए जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के मदद से जो लोग सरकार में आज है, वो लोग क्या करेंगे? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम लोग तो चुनाव आयोग से सिर्फ मिलना चाहते थे, हमारे सिर्फ अध्यक्ष को बुला लेते, हम लोग अपनी बातों को वहां रख देते। ये लोग जो चोरी से, डकैती से जो लोग सरकार बनाए, ये लोग क्या करेगा?
1: क्या चाहते क्या है?
6: हम लोग तीन चीज चाहते हैं चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग को एक आरटीआई गया था कि एसआईआर का आदेश किसने दिया, उसका जवाब आता है कि ये आदेश चुनाव आयोग का नहीं था, तो किसका था भाई? दूसरा सवाल, अगर आप फॉर्म 6 में किसी तरह का कोई भी बदलाव करते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट जाना चाहिए था।
1: क्या ऋषि जी
6: मांग है? इस्तीफा दे ज्ञानेश कुमार और साथ तीनों, एक नहीं तीनों इस्तीफा दे।
1: यहाँ पे इस्तीफे की मांग को लेकर ही आज कांग्रेस और यहाँ पर प्रशासन के बीच में जो है वो ठन गई थी और फिलहाल अब स्थिति जो है वो काबू में नजर आ रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ पर एक तरीके से पीछे ढकेल दिया गया है और स्थिति को वापस एक तरीके से कहें तो सामान्य करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नेहा,
0: दो तस्वीरें चंडीगढ़ और पटना की, अब दरअसल डिटेन करने की तैयारी हो रही है। दोनों जगहों पर पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद है और बस भी आ चुकी है। हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाए, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जाए। अभी भी वहां पर दोनों जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे थे रोहित, वहीं चंडीगढ़ से असीम बस्सी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये समझना होगा कि ये दरअसल एक झलक है उस प्रदर्शन की जो पूरे देश में किया जा रहा है। दो जगह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हमने आपको इम्फाल की भी तस्वीरें दिखाई थी, इसी तरीके से लखनऊ में भी प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दिल्ली में भी प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। एक ही मांग, एक ही सुर है, किसी सी ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। कई जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा है कि जो तीनों कमिश्नर हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि अब स्थिति दरअसल काफी तनावपूर्ण दिखाई दे रही है पटना और चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की आप तस्वीर देखिए, वहां पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जो इस वक्त इस गाड़ी की छत पर सवार हो गए हैं। सड़क पर कांग्रेस का ये युद्ध सीसी के विरुद्ध है और छह जगहों की तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी, इस तरह से अब दो जगहों पर विस्तृत रिपोर्ट आप तक पहुंच चुकी है कि पटना में और चंडीगढ़ में दरअसल क्या हाल है। पार्टी की भी तस्वीर देखिए यहाँ पर तरुण गोगोई इस मार्च में हिस्सा लेते हुए बैरिकेड से उन्हें रोका गया क्योंकि हर जगह पर दरअसल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ये मार्च गौरव गोगोई इस प्रदर्शन का हिस्सा रहे और गौरव गोगोई ने कहा कि हम ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से कम में नहीं मानेंगे। पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। वहां पटना में क्या स्थिति है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है क्योंकि चंडीगढ़ में तो हम यही हालात देख रहे हैं।
7: बिल्कुल, देखिए पटना में विधानसभा के बाहर जो है वो स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जरूर हो रही है लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों को यहाँ उठाया भी जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर भी इस जगह देखिए आप भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और कुछ प्रदर्शनकारी जो है वो फिलहाल बैठ गए हैं यहाँ पर विधानसभा के बाहर ही, आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में, और यहाँ से उठने को तैयार नहीं है और पुलिस को भी काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरफ अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कुछ कार्यकर्ता जमीन पर जो है वो धरना देकर बैठ गए हैं और पुलिस जो है यहाँ से लगातार इनको हटाने की कोशिश कर रही है लेकिन लोग ये हट नहीं रहे। लेकिन बाकी हम अगर आप देखें तो इस तरफ भी देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी कुछ जो है यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो काफी कह सकते हैं पटना में जो है वो जबरदस्त बवाल की स्थिति जो है वो देखने को मिली जहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे जो ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर जो है आज उन्होंने प्रदर्शन निकाला हुआ था आर ब्लॉक से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक, उन्हें विधानसभा के गेट के बाहर रोका गया है। उसके बाद दोनों पक्षों में जो है वो एक तरीके से कहें तो झड़प हुई है, बैरिकेटिंग को तोड़कर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जब इन्हें नहीं आगे जाने दिया गया तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया बल और फिर स्थिति को अब सामान्य करने की जो है वो कोशिश यहां लगातार की जा रही है और बार बार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यहां पर कांग्रेस के नेता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से मार्च या फिर क्या चल रहा है वहाँ?
5: नेहा देखिए, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यूथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स से निकले, मार्च आगे बढ़ा है और इस वक्त एक बार अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो पीछे यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दिखाई देंगे जो बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं, हाथों में झंडा लिए हुए। ज्ञानेश कुमार जो सीसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। उदय भानु चिब जो आईवाईसी के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ एक व्यक्ति को सीसी ज्ञानेश कुमार का मास्क पहना कर लाया गया है, हाथों में हथकड़ियां डालकर लाया गया है। सांकेतिक रूप से वो कह रहे हैं कि देखिए अब समय आ गया है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो कल राहुल गांधी द्वारा स्पष्ट किया गया कांग्रेस पार्टी को एक्शन मोड में आना पड़ेगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया, देश भर में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप विरोध प्रदर्शन कीजिए। आज देश भर में राज्य इकाइयों द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन है और यूथ कांग्रेस द्वारा भी प्रदर्शन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। बैरिकेड्स के ऊपर तमाम ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हाथ में कहीं आपको सीसी ज्ञानेश कुमार का चेहरा दिखाई देगा। उदय भानु चिब जो अध्यक्ष आईवाईसी के, वो देखिए एक वर्कर को, आईवाईसी के वर्कर को यूथ कांग्रेस सीसी ज्ञानेश कुमार का चेहरा लगाकर लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि हम पुलिस थाने में हैंडओवर करना चाहते हैं। तो जिस बात को राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो तमाम दावे किए और आरोप लगाए सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, अब उसको उसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कार्रवाई जो है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को दे दी गई है जिम्मेदारी, और जो चाहे वो स्टेट यूनिट्स हो या आईवाईसी हो वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 29 सितंबर को जो सीडब्ल्यूसी है उसमें भी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा, बड़ा अभियान तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल। ज्वाइंट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, चाहे इम्पीचमेंट मोशन का एक्शन हो, तो सड़क से लेकर संसद तक एक रणनीति तैयार हो रही है सीसी ज्ञानेश कुमार को घेरने की। एक बार फिर मैं कहूंगा सहयोगी सत्या को वो तस्वीरें दिखाए कैसे उदय भानु चिब एक व्यक्ति को आईवाईसी के वर्कर को लेकर आए हैं साथ में जिनके ऊपर ज्ञानेश कुमार का।
0: ठीक है, नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me. They tell me. This isn't the city we remember. It changed so quickly. Now, it's no wonder. You praise criminals convicted of supporting Hamas. You count as friends people like Hassan Piker, who said America deserved 9/11. America deserved 9/11. Some friends you have. You invite into your home a Palestinian journalist who filmed Hamas terrorists beating and torturing Israeli hostages and later admitted that he refused to publish the videos in order to protect, you guessed it, the terrorists. Your wife liked a post praising the October 7th massacre. She liked another post saying Tel Aviv shouldn't exist. You refuse to condemn any of that. You falsely, repeatedly accuse Israel of genocide. Mr. Mamdani, you try to stop me from coming here. You try to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth.

0: एफआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया पर फिर सवाल उठाए। निशाने पर था 2014 से बीजेपी के 30 साल तक सत्ता में रहने का दावा। राहुल के मुताबिक करीब 50 साल की राजनीति में उन्होंने भारत या दुनिया में ऐसे उदाहरण नहीं देखा जहां सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़े। राहुल का आरोप है कि इसकी वजह वोट चोरी है। उनका दावा है कि एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं और चुनाव आयोग के भीतर भी इसे लेकर मतभेद सामने आए हैं। राहुल गांधी के मुताबिक वोट की चोरी से कानून और फिर संस्थाओं की भी चोरी होती है।
1: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए। उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम। ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर। माय एडवाइस टू
0: राहुल गांधी के ये आरोप उस मीडिया रिपोर्ट के बाद आए जिसमें चुनाव आयोग में मतभेद के दावे किए गए हैं। राहुल ने इन्हें अपने वोट चोरी के आरोपों की पुष्टि के तौर पर पेश किया है।
1: बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री। दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडियाज पीपल एंड वी कैनॉट सिट साइलेंट। वी रिफ्यूज टू सिट साइलेंट व्हाइल दिस हैपेंस बिकॉज दीज आर देशद्रोहीज। अ पर्सन हु अटैक्स द वोट, हु फंडामेंटली डिस्ट्रॉयज इंडियाज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इज नथिंग अदर देन अ देशद्रोही। यू कैनॉट गिव हिम एनी अदर वर्ड। दैट्स द वर्ड।
0: तो राहुल गांधी का दावा है कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है और भारत में इसके कमजोर पड़ने की वजह चुनाव आयोग की भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है। उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में। भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती। जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है। जैसे उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं, अप्रूवर, मेरा विचार है राहुल गांधी जी आप अपने अप्रूवर बन जाइए। कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए। तो एक बिंदु, एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता से लेकर चंडीगढ़, गुवाहाटी तक चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। कहीं पानी की बौछारें तो कहीं हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता।

चुनाव आयोग पर उठते सवाल और विपक्षी सामूहिक हल्ला बोल के बाद एनडीए सीआई बड़ी आवाज। चिराग पासवान ने कहा चुनाव प्रक्रिया पर शक हो जाए तो गलत होगा, आयोग दूर करे शंकाएं। ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक मंच पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की महत्वाकांक्षी मुहिम। रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा पर कांग्रेस में खलबली। अजय राय बोले हम भी जा सकते हैं कन्नौज और इटावा। पूछा क्या बीजेपी की जगह राहुल गांधी को ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश। अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से हो रही है गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी चौकस, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी, देर रात तक चलेगा विसर्जन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक बार फिर से दो बज गए हैं न्यूज रूम लाइव में। हम आप सभी के सामने आते रहे। तो न्यूज रूम लाइव में कौन सी खबरें हैं वो सबसे पहले हम आपको बता दें। देश भर में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्यों किया जा रहा है? सीईसी का विरोध करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विरोध करते हुए। और देखिए कैसे हंगामा हो रहा है। कहीं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं पर बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग शहर में क्या तस्वीरें हैं, वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दें। दूसरी बड़ी खबर, चिराग बने ज्वाला। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग से भरोसा अगर उठ रहा है आम जनता का, वोटर्स का, तो वो शंकाएं दूर करनी चाहिए। तो सवाल उठाया है चिराग पासवान ने। तीसरी जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दें। तीसरी बड़ी खबर जिसके बारे में हम बात करने जाएंगे, कांग्रेस के गढ़ में अखिलेश यादव कल रथ यात्रा निकाली थी। अब उसके बाद कांग्रेस का पलटवार आ गया कि हम भी चाहें तो मैनपुरी और जो बाकी जगह है वहां से निकाल सकते, इटावा से। किसको दिखाना चाहते हैं ताकत? तो आपस में ही वो गतरोध की स्थिति दिखाई दे रही है। इस पर बात करेंगे और ठीक आधे घंटे बाद गणपति बप्पा मोरिया, आज हर बांका की भी बात करेंगे। बांका में कैसे दरिंदगी हुई, बिहार में कितने जम हुई, ये हम आपको 2:30 बजे बताएंगे। देखिए बांका से कुछ तस्वीरें सामने आई, उससे पहले जमुई का सबने देखा, समस्तीपुर का भी देखा। बार बार बिहार से ही क्यों आ रहा है, ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो होगी कांग्रेस के प्रदर्शन की। कांग्रेस जो हर जगह, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में कर रही है जोरदार प्रदर्शन। बहुत जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में यह प्रदर्शन जारी है। अलग अलग जगहों की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर आप देखेंगे, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आपको कोलकाता की तस्वीर भी आपको दिखाई देगी, आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाई देगी, देहरादून की आपको तस्वीर दिखाई देगी, आपको गुवाहाटी, चंडीगढ़ और मणिपुर, इन सब जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हल्ला बोल दिया गया है, कह दिया गया है कि इस्तीफा दे दो। अब सोशल मीडिया जो कांग्रेस का अकाउंट है वो तो लगातार कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार इट्स डन ब्रो, इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये 6 तस्वीरें, ये अलग अलग जगह से हैं। कांग्रेस का हल्ला बोल इस वक्त, जोरदार प्रदर्शन। कहीं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर जो पुतला है वो ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर दिया गया। अब ये जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए ज्ञानेश कुमार पर कैसा रण हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। ये है बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें। हालांकि पटना में इससे पहले जितने भी प्रदर्शन हुए हैं बहुत अलग तस्वीरें देखने को मिली और बहुत अलग तरह के प्रदर्शनकारी देखने को मिले हैं, मतलब मजे मजे में प्रदर्शन करते हैं। अब इस बार जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पटना की तस्वीरें, देखिए चुनाव आयोग के विरुद्ध कांग्रेस का देशव्यापी युद्ध। अब देशव्यापी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 6 तस्वीरें तो आपको दिखा दी थी जिसमें लखनऊ भी है, कोलकाता भी है, अब ये पटना भी देखिए और यहाँ पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता तितर बितर नहीं हो रहे हैं, वो डट के खड़े हैं। अब पानी की बौछार जितनी तेज हो रही है वैसे ही वो बैरिकेडिंग को पकड़ लेते हैं। हालांकि कुछ लोग किसी पर अगर वाटर कैनन जो पानी की तेज बौछार से घायल भी होते हैं तो वहां पर पुलिस वाले उनको उठा देते हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो कांग्रेस का झंडा और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ये तस्वीरें आप पटना में आप इस वक्त देख रहे हैं। अब सिर्फ पटना क्यों, आप चंडीगढ़ भी देखिए, चंडीगढ़ में भी इससे पहले कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया था, आप सरकार को जब घेरा था उन्होंने, और अब वो तस्वीरें आप देखिए, यहां भी बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की जा रही है, यहां भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और फुल ऑन शोर। कांग्रेस अकेले ताकत झोंक रही है इस पूरे मुद्दे पर। हालांकि गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लखनऊ में क्यों नहीं दिखाई दे रही है, उनको समाजवादी पार्टी को लखनऊ में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन क्यों दूरी बना ली है? कांग्रेस अकेले क्यों प्रदर्शन कर रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ? तो ये उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं, हालांकि उन सवालों के जवाब भी बहुत जल्द सामने आएंगे। लेकिन अभी ये तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें हो गई, पटना की भी तस्वीर है, चंडीगढ़ की भी तस्वीर है, गुवाहाटी की भी तस्वीर है, हर जगह आपको जोरदार प्रदर्शन दिखाई देगा। बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की जा रही है, जो बैरिकेड्स वहां लगाए गए हैं उन बैरिकेड्स को पार किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। और एक ही मांग है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो जाए, तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब ये देखिए, कुछ लोग तो बैरिकेड पर चढ़ भी गए हैं और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस का झंडा है, वाटर कैनन का सामना कर रहे हैं, पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। जम्मू कश्मीर विधानसभा तक फुल शोर आपको दिख रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध कांग्रेस का देशव्यापी युद्ध। देखिए कितना अच्छा, अब आपको एक बार सुना देते कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से किस तरह से मांग की जा रही है, प्रदर्शन करते हुए क्या कहा क्या जा रहा है।
1: ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त किया जाए और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, और दो साल में जो ऐसे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं जिनके उनके केवल उनके हस्ताक्षर है और दोनों दूसरे कमिश्नर्स का उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो सारे रद्द किए जाए।
0: तो आपको भी अप्रीहेंशन है, पंजाब में इलेक्शन है, किस तरह का शक शुबा है आपको?
1: जब दो इलेक्शन कमिश्नर जिनको इन्होंने अपॉइंट किया है उनको ही अप्रीहेंशन हो गई है तो फिर बात तो साफ है सब।
0: तो चलिए सबसे पहले तो आपको लखनऊ लिए चलते हैं, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लखनऊ से जरा तस्वीरें दिखाइए आशीष, कैसे प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त?
2: निवासी देखिए, जिस तरीके से आप प्रदर्शन देखिए, हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो निकल कर बाहर आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले से यहाँ पर सारे कार्यकर्ता मौजूद थे और अब ये सभी बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो कि पूरी तरीके से उनका इस्तीफा होना चाहिए, इसकी लेकर ये मांग कर रहे हैं। जिसको आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वहां पर कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जो सारे कार्यकर्ता नेता सब कुछ अब बाहर निकल रहे हैं और हाथों में झंडे हैं, छाते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। इस वजह से ये प्रदर्शन पहले तो लग रहा था कि स्थगित हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी स्थगित नहीं है और ऐसे में अब सारे लोग इधर विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार और क्या चुनाव जो आयोग का ऑफिस स्टेट का है वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ये सारे एक साथ एकजुट होकर पार्टी ऑफिस से निकल कर आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी बिल्कुल भी कोई भी कार्यकर्ता रुकने को तैयार नहीं है और ये सभी अपने जा रहे हैं वहां पर प्रदर्शन करने के लिए। और ऐसे में आप देखिए कि जो ये कार्यकर्ता हैं ये सुबह से ही आज आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर और उसके बाद अब सभी निकले हैं कूच किया, हालांकि पुलिस फोर्स लगी है, पुलिस फोर्स रोकने के लिए इनको, लेकिन उसके बावजूद अभी भी किसी तरीके से रुकने को तैयार नहीं है। और देखिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ओके, और देखिए बिल्कुल यहाँ पर वोट चोर गद्दी चोर की बात कह रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में ये सभी पूरी तरीके से
0: यहाँ पर देख लिए हैं। अब आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, असीम बसी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। असीम जरा बताइए कि वहाँ किस तरह के हालात है, किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से?
3: जी हाँ, कुछ समय पहले पंजाब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अब आप देख सकते हैं हरियाणा कांग्रेस यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रही है जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। हरियाणा कांग्रेस जो है ये यहाँ से मूव करेंगे आगे इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि ऑफिस जो है वो यहाँ पर चंडीगढ़ में ही है, सेक्टर 17 में है। और आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है और ये कुछ समय में यह मार्च शुरू होगा, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ समय में, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है इनका प्रोटेस्ट मार्च शुरू होगा। और लगातार जिस दिन से इलेक्शन कमीशन अंडर स्कैनर आया है इस तरह के प्रोटेस्ट आज यहाँ पर पूरे देश भर में हो रहे हैं। और चंडीगढ़ में कुछ समय पहले पंजाब ने प्रोटेस्ट किया था, पंजाब कांग्रेस ने, अब आप देख सकते हैं यहाँ क्यों आप प्रोटेस्ट, आप क्या डिमांड करते हैं जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट?
4: हमारा सिर्फ यही मुद्दा है, जो वोट चोरी करके भाजपा सरकार अपनी रसमलाई खा रही है, वो भाजपा सरकार अपने नरेंद्र मोदी जी अपनी गद्दी छोड़ दे, जो गद्दी उन्होंने वोट चोरी कर पाई है। ये राहुल जी ने कल की कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है कि वोट चोरी हुए हैं और ज्ञानेश कुमार जो उसमें अपराधी हैं उनको सजा मिले और वो जवाब दे ही ले कि मैंने ये कुमार इस्तीफा दे।
3: तो आप यहाँ मूव करेंगे
4: इलेक्शन कमिश्नर जो ऑफिस है उसका घेराव करेंगे और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो बहुत बड़ा विदेश जो प्रदर्शन है वो पूरे उसमें डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट से प्रदेश में पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर धरना होगा।
3: सुना भी किस तरह भी जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं यहाँ पर लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ समय मार्च शुरू होगा कुछ समय के बाद और ये आगे जाएंगे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ। हालांकि पुलिस ने उस तरफ बैरिकेडिंग कर रखी है उनको रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर नारेबाजी लगातार हो रही है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। और कुछ देर में दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पहुंचेंगे और ये प्रोटेस्ट मार्च जो है आगे बढ़ेगा। सो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, हरियाणा कांग्रेस कर रही है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो गुस्सा अब सड़कों पे है। जी हाँ,
0: देखिए अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही है, अब तरह कुछ तस्वीरें शिमला से भी हम आपको दिखा रहे हैं, शिमला से भी वो तस्वीर आई, लेकिन जम्मू कश्मीर से किस तरह से प्रदर्शन किया एक रिपोर्ट वहां से भी दिखा देते हैं आपको।
5: कांग्रेस पार्टी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। यहाँ जम्मू में भी निर्वाचन भवन के बाहर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता जो है यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हैं और यहाँ पर निर्वाचन भवन के बाहर ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने चुनाव में धांधलियां की है, ये इनका आरोप है। और साफ तौर पर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं यहाँ जम्मू में निर्वाचन भवन के बाहर, और यहाँ जो है सुरक्षा बल भी भारी संख्या में तैनात है और सुरक्षा बल यही प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी है ये निर्वाचन भवन तक ना पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं और जो प्रदर्शन है इसकी अगुवाई जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो है वरिष्ठ नेता जो है नासिर हुसैन कर रहे हैं और यहाँ पर धक्का मुक्की भी हो रही है। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शनकारी हैं जो ये आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। तो साफ तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है वो मोदी सरकार के खिलाफ इस समय हल्ला बोल रही है समूचे देश में और जम्मू में भी उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। यहाँ पर वोट चोरी का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगा रही है। दरअसल जिस प्रकार से एक अखबार की एक जो मुख्य खबर थी उसमें ये दावा किया गया था कि जो देश के दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कई बार जो है अपनी आपत्ति दर्ज की थी SIR की प्रक्रिया के खिलाफ, तो लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया जो है की, तो इसको लेकर यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और इनका दावा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो मोदी सरकार की शह पर कार्य कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। और यहाँ पर पुतला भी फूका जा रहा है, यहाँ पर देखिए जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार उनका पुतला फूका जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है अपना उग्र प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए है और यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की भी हो रही है, सुरक्षा बल भी भारी संख्या में यहाँ तैनात है और यहाँ पुतला जलाया जा रहा है ज्ञानेश कुमार का। तो उग्र प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, हाथों में बैनर लिए हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और ये मांग कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। तो उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है यहाँ जम्मू में निर्वाचन भवन के बाहर भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर समूचे देश में इस समय कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल रही है मोदी सरकार के खिलाफ, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।
0: तो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर से देखी, आपने पटना से देखी, आपने लखनऊ से देखी, चंडीगढ़ से देखी, अब कोलकाता की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कोलकाता में किस तरह से जोरदार प्रदर्शन हुआ, कोलकाता में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, पानी की बौछारें हो रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। एक रिपोर्ट देखिए,
6: कार्यकर्ता है वो बाहर रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बेसिकली कोलकाता में जो स्थित CEO का ऑफिस है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिस है पश्चिम बंगाल में, उनके ऑफिस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको रोक दिया गया है। मांग आप देख सकते हैं, अरेस्ट ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार की इस्तीफा और ज्ञानेश कुमार को अरेस्ट करने की मांग के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आज रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था नई दिल्ली में, आज कांग्रेस उतर चुकी है रास्ते में कोलकाता में। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को हटा के BJP सत्तारूढ़ पार्टी बन चुकी है और यहाँ पे जो विपक्ष का जो वैक्यूम है वो भी कहीं ना कहीं उसको लेके एक लड़ाई है और कांग्रेस चाहती है कि वो जगह कांग्रेस पार्टी ले ले और इसी का कारण है। आप देख सकते हैं किस तरह के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके पूछते हैं डिमांड क्या है, आप लोगों को पुलिस यहाँ पे रोक लिया है लेकिन आप क्या डिमांड कर रहे हैं?
7: ये तो अभी पुलिस का काम ही है, जब TMC की सरकार थी तब भी हमें रोका गया, आज BJP की सरकार है वो और भी निकम्मी सरकार है। ये सारे मिली भगत है इन लोगों की। आज जो वोट चोरी हुआ है, गणेश कुमार का खुलासा हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आज जो सरकार बनी है ये सिर्फ चोरी से बनी है।
6: तो बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
7: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
6: तो केरला में भी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भी चुनाव हुआ था, वहाँ पे आपकी सरकार बनी है फिर?
7: देखिए, ये तो खेला है ना, ये बीजेपी कहीं कहीं अपना लॉलीपॉप तो देगी ना, हर जगह अगर खेला कर देगी तो ये तो पूरा करप्टेड हो ही जाए, ऐसे तो करप्टेड है और भी बदनाम हो जाएगी, इसलिए कुछ कुछ जगह को छोड़कर ये अपना गुल खिला रहे हैं।
0: तो देश के अलग अलग हिस्सों से आपने तस्वीरें देखी, लेकिन इन तस्वीरों में एक चीज आप बहुत बारीकी से अगर देख पाए तो समझ में आया होगा कि कांग्रेस यहां पर अकेले पड़ती हुई देखी, कोई साथी गठबंधन का यहां पर दिखाई नहीं दिया। देखिए, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, समाजवादी पार्टी गायब। पटना में प्रदर्शन हुआ, आरजेडी वहां पर गायब। कोलकाता में मोर्चेबंदी हुई, लेकिन वहां पर टीएमसी साथ में दिखाई नहीं दी। अब क्यों नहीं दिखाई दी, अब ये सवाल लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, आखिर क्यों साथी दोस्त उनके दिखाई नहीं दिए, गठबंधन के साथी दिखाई नहीं दिए। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, तो नहीं सही बात करते मौसमी।
8: जी, जी, जी।
0: तस्वीरें हमने अलग अलग जगह से दिखाई है लिए, और इसमें हमने ये देखा कि कोलकाता में प्रदर्शन हुआ, वहां पर टीएमसी नहीं। लखनऊ में हुआ, वहां पर समाजवादी पार्टी नहीं। पटना में हुआ, आरजेडी नहीं। क्यों नहीं है गठबंधन साथी साथ में?
8: देखिए, इसमें ये पूरा जो रणनीति थी कि राहुल गांधी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके दूसरे दिन कांग्रेस उतरेगी, तो यहाँ पे

0: होगी, लेकिन सारी राज्य इकाइयों को, हिमांशु, इंचार्जेस को और अध्यक्षों को लिखा गया था। और ये एक्चुअली मतलब ये पुरानी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट हर महीने कोई ना कोई फरमान जारी होता है AICC से, लेकिन कार्यकर्ता सड़क पर नजर नहीं आते। यानी कि बिहार हो या चंडीगढ़ हो या यूपी हो, ऐसे कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए।
1: या फिर इसीलिए कि क्रेडिट सीए सिर्फ कांग्रेस के पास जाए, किसी और के पास ना जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और वहां पर तो देख ही रहे हैं क्या कुछ हो रहा है।
0: हाँ, ये भी है कि भाई देखिए, कांग्रेस पहले तो चाहती है कि हम अपनी दुकान लगा लें।
1: अच्छा,
0: कांग्रेस ये भी चाहती है ना कि हमने लगातार इसी को लेकर सवाल खड़े किए, राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, तो पहले राहुल गांधी अपना प्रेस वार्ता कर लें, उसके बाद हम अपना धरना प्रदर्शन कर लें और उसके बाद फिर चलेंगे विपक्ष को एक साथ लेने।
1: नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को तो लखनऊ में कम से कम साथ आना चाहिए था, वहां पर तो आप 2027 की लड़ाई एक साथ लड़ने वाले हैं, वहां पर भी अलग अलग देखे, वहां पर भी नहीं आई समाजवादी पार्टी।
0: मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने मांगा भी था उनका समर्थन, मतलब वो कांग्रेस के झंडा रहेगा या सपा का झंडा रहेगा, ऐसे में कांग्रेस चाह रही थी कि भाई हमारा प्रदर्शन हो। आप देखिए, इसमें सिर्फ कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे होंगे, तो ये क्लियर कट निर्देश दिल्ली से आया है कि पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। और इसको लेके लगातार यूथ कांग्रेस को फटकार पड़ रही है, NSUI को फटकार पिछले एक दो महीने में पड़ी है, राहुल गांधी जब PM आवास पर बैठे थे तब दिल्ली के प्रदेश के यूनिट सड़कों पर नजर नहीं आया, राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में बैठे हुए थे तब पार्लियामेंट में जब धरने पर बैठे हिमांशु तो उस वक्त भी नजर नहीं आए थे ज्यादा कार्यकर्ता, वरना चक्का जाम हो जाता। तो उसको लेके अब लग रहा है कि आज हम सड़क पर नजर आए, हमारा कार्यकर्ता नजर आए। और
1: पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसमें दावा किया कि तीनों में अब भी बात नहीं होती है। क्या वो दावा कर रहे 25-26 में करीब 50 अधिकारियों के तबादले हुए, कई CEO डिप्टी चुनाव अधिकारी शामिल थे, लेकिन इन अधिकारियों की ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अब तक लंबित है, अभी भी तीनों में बात नहीं होती, क्या ऐसा कह रहे हैं वो?
0: बिल्कुल, देखिए ये जो आरोप है राहुल गांधी लगातार इसी के सूत्रों का हवाला दे रहा है, यानी कि कोई तो ऐसा सूत्र है चुनाव आयोग में जो राहुल गांधी को टिप ऑफ दे रहा है। और अब पवन खेड़ा उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए जो है बता रहे हैं कि तीनों में आपस में झगड़ा है, तीनों में बातचीत नहीं चल रही है। और जो दस्तावेज सामने आए हैं, अपने आप में मुझे लगता है कांग्रेस को लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है सियासी रूप से कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं।
1: देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो लगातार घेराव किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें, चिराग से ज्वाला बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, शंकाओं को दूर करना चाहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान की तरफ से भी अब इस मुद्दे पर सवाल उठाएगा, और चिराग पासवान अब इस मुद्दे पर ये सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कहीं कुछ शंकाएं हैं, कोई परेशानी है, अगर वोटर का लोगों से EC से अगर भरोसा उठ रहा है तो उसको बनाए रखना जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही है।
2: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे CEC की है, कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का काम है राजनीति करना, आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे। पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए CEC को नहीं, बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।
1: चिराग पासवान की तरफ से सवाल उठाए गए, कहा है कि इस मामले में बात होनी चाहिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: आगे आगे,
6: अरे उधर
5: उधर
6: उधर,
5: करेक्ट करेक्ट,
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: देवा विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
6: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
7: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
6: स्मॉल बैंक?
7: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
6: ओके
7: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
11: बिजली का बिल पेड
12: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
13: कैसे?
12: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
13: इत्ता माही वे।
14: In association with
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: पे।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक दो तीन झुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
4: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
9: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
4: I like this only.
10: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
11: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित।
12: मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
13: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
14: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
10: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
15: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
16: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। कितना जरूरत है
10: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
17: I have come today to the Parliament Street Police Station and given a complaint to the police station here against Chor Gyanesh Kumar. Gyanesh Chor Kumar, the sorry figure who is the Chief Election Commissioner of this country, and apparently he enjoys immunity under the CEC and EC Act of 2023, Section 16, which says that the election commissioners enjoy immunity from civil and criminal prosecution.
18: ये लोग चुनाव आयोग में, निर्वाचन सदन में लोकतंत्र का स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का स्लॉटर हाउस, कत्तल खाना बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसका मुखिया है ज्ञानेश कुमार। ये हमने नहीं कहा, और दो चुनाव आयुक्त है, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये दो जो लोग हैं, देश उनका आभारी रहेगा हमेशा, ये बात सामने लाई है और हमारी बातों को पुष्टि मिले उससे। ये स्लॉटर हाउस चला रहा है, ये माफिया है। अभी का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो माफिया है।

दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता से लेकर चंडीगढ़, गुवाहाटी तक चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। कहीं पानी की बौछारें तो कहीं हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। चुनाव आयोग पर उठते सवाल और विपक्ष के सामूहिक हल्ला बोल के बाद एनडीए से आई बड़ी आवाज। चिराग पासवान ने कहा, चुनाव प्रक्रिया पर शक हो जाए तो गलत होगा, आयोग दूर करे शंकाएं। ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक मंच पर गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की महत्वाकांक्षी मुहिम। रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा पर कांग्रेस में खलबली। अजय राय बोले, हम भी जा सकते हैं कन्नौज और इटावा। पूछा, क्या बीजेपी की जगह राहुल गांधी को ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश? अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से हो रही है गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी चौकस, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी। देर रात तक चलेगा विसर्जन।

और देखिए बुलेटिन के सेगमेंट में हम बात करेंगे प्यार में कुछ वक्त से जो खबरें आ रही है ना, कहीं युवती से छेड़छाड़ होती है, कहीं नाबालिग से छेड़छाड़ होती है, इस बारे में। सबसे पहले एक तस्वीर आती है जमुई से, जहां पर एक छात्रा के साथ मन चलो को कानून का भय नहीं रहता और उसके बाद सारी हदों को पार करते हैं, बाद में गिरफ्तारी भी होती है। फिर उसके कुछ ही वक्त बाद मामला आता है समस्तीपुर से, जहां पर बीच सड़क लड़की से बदतमीजी की जाती है, बाल खींचे जाते हैं, गाली गलौज किया जाता है, यहां भी एक्शन लिया जाता है। हालांकि ये समस्तीपुर वाला वीडियो जमुई से पहले का है। और उसके बाद फिर एक तस्वीर आती है बांका मंदार पर्वत पर, लड़की से युवती से छेड़छाड़ की जाती है, और ये वीडियो तो सबसे पहले का है लेकिन ये आता कई दिनों के बाद है। अब इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में ये कैसी कानून व्यवस्था है।

देखिए बिहार के बांका से एक मामला सामने आता है। बांका में मंदार पर्वत जो कि पर्यटन स्थल भी कहा जाता है, पहाड़ है वहाँ, वहाँ युवक युवती घूमने जाते हैं, वहां पर कुछ मनचले आ जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, वही होता है जो जमुई में रात के अंधेरे में हुआ, जो समस्तीपुर में दिन के उजाले में हुआ। बांका में एक युवती के साथ छेड़छाड़ की जाती है, मनचले आकर गाली गलौज करते हैं, सारी हदों को पार करने की कोशिश करते हैं और फिर एक बार सवाल उठ जाता है कि आखिर बिहार में ये जो सिलसिले चले आ रहे हैं युवतियों से छेड़खानी के, ये कब रुकेंगे।

0: जमुई, समस्तीपुर और अब बांका, बिहार की ये तीनों घटनाएं उन नेताओं को देखनी चाहिए जो ये कहते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था तो सातवें आसमान पर है। बांका में दिन के उजाले में टूरिस्ट प्लेस पर लड़का और लड़की के साथ वही हरकत की गई जो जमुई और समस्तीपुर में हुई। सिर्फ स्थान और तारीख का अंतर है, बाकी सब वही है। तीन चार मन चले एक कपल को घेर लेते हैं, पिटाई करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, गंदी बात करते हैं। ये वीडियो बांका के बौसी इलाके की है जहाँ मंदार पर्वत पर घूमने के लिए लड़का अपने दोस्त के साथ गया था। मंदार पर्वत बौसी का प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन वहाँ भी मनचलों ने इस जोड़े को घेर लिया। एक मनचला लड़की को पकड़े हुए था, दूसरे ने लड़के को पकड़ रखा था। बाकी लोग खड़े मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। वीडियो रील के फॉर्मेट में है, ओरिजिनल ऑडियो हटाकर भोजपुरी गाना लगा दिया है, इसलिए ये पता नहीं चल पाया कि ये मनचले लड़की को क्या बोल रहे हैं। लड़का और लड़की दोनों बेबस थे, वो विरोध करते तो मनचलों का गिरोह उन्हें पीटने लगता, लड़की को खींचने लगता। मंदार पर्वत पर काफी देर तक ये चलता रहा। जब वीडियो बांका पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस की टीम मंदार पर्वत भी गई। छानबीन करने पर पता चला कि घटना 3 सितंबर की है, लेकिन वीडियो अब आया है। 22 सितंबर को बौसी थाने में 6 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। जब जमुई का वीडियो सामने आया था तो बिहार के हुक्मरानों ने कहा था कि किसी एक घटना से बिहार की कानून व्यवस्था को कमजोर नहीं कहा जा सकता। तो सवाल उन हुक्मरानों से कि बिहार की मजबूत कानून व्यवस्था में ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? बिहार में कानून का राज कहाँ है? कानून के राज की परिभाषा क्या है? क्या बिहार के रूल ऑफ लॉ में लड़का और लड़की एक साथ किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते? बिहार में अराजक तत्व मनचलों की बहार है, वो सरेआम कानून को ठेंगा दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसे वायरल भी कर देते हैं। बांका के वीडियो में आरोपियों ने आखिरी में अपने ग्रुप की फोटो भी लगाई है, जो इस बात का संकेत है कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। बांका, समस्तीपुर और जमुई की घटनाएं बिहार में कानून व्यवस्था के दावों का भंडाफोड़ है। अगर कहीं कुछ ठीक है तो उसे इत्तेफाक ही मानिए। कानून व्यवस्था का गुब्बारा तभी तक उड़ रहा है जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं हो जाता। दीपक कुमार, बांका आज तक।
1: देखिए, सबसे पहले वीडियो कहाँ से आता है? सबसे पहले वीडियो आता है जमुई से, जहां पर एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की जाती है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस पीड़ित से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और इसके साथ ही उनकी तरफ से एक बयान भी आता है कि बिहार में अगर कोई अपराध करेगा और उसका वीडियो बनाएगा तो वो बचेगा नहीं। तो इस पर विपक्षी तरफ से पलटवार आ जाता है। विपक्ष कहता है कि आप क्यों नए नए आइडिया दे रहे हैं कि वीडियो अगर नहीं बनाएगा तो क्या वो बच जाएगा? क्यों किसी को आप ये बता रहे हैं कि कांड करो और वीडियो मत बनाओ?

0: उसने यदि रील नहीं बनाया होता तो पकड़ाता क्या?
1: ये क्या कहना चाहते हैं कि रील मत बनाओ, कांड करो।
2: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इधर जमुई कांड के पीड़ितों से मिल रहे थे और उधर बांका में कानून व्यवस्था का गुब्बारा फट गया। एक तरफ तो मुख्यमंत्री सम्राट अपराधियों को हड़का रहे थे कि गलत किया और रील बनाई तो पुलिस कुछ और बना देगी, दूसरी तरफ बांका में मनचलों ने एक कपल को घेर लिया। जमुई कांड के बाद अब तक 3 वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें मनचलों ने लड़की के साथ असभ्यता की। जब जमुई कांड हुआ तो सम्राट चौधरी अपराधियों को धमका रहे थे कि डील बनाओगे तो बचोगे नहीं। विपक्ष ने उनकी यही बात पकड़ ली। तेजस्वी यादव ने पूछ लिया कि अपराधियों को नए नए आइडिया क्यों दे रहे हो?
0: आजकल रील बनाने के चक्कर में मारा जा रहा है। आज की जो घटना है आपने देखा होगा, उसने यदि रील नहीं बनाया होता तो पकड़ाता क्या? इसलिए रील बनाने के चक्कर में इतने लोग मारे जाएंगे।
1: रील नहीं बनता तो बच जाता, यानी ये क्या कहना चाहते हैं कि रील मत बनाओ, कांड करो, कांड करोगे रील नहीं बनाओगे तो बच जाओगे। ये तो खुद अपराधी हैं और एक नया नया आइडिया जो है वो दे रहे हैं।
2: बिहार में कानून के राज जंगल राज की लड़ाई पुरानी है। अब एक के बाद एक जिलों से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं तो विपक्ष पूछ रहा है कि ये जंगल राज है या कानून का राज?
3: जो सरकार को अपराध को खत्म करने के का जिज्ञासा ही नहीं है, कोशिश ही नहीं है। और अभी जो लिस्ट निकली है उसमें तो 212 विधायक सत्ता पक्ष के या विधायकों की पूरी टोली अपराध के साथ जुड़ी हुई है, उनका नाम है इन सब चीजों में। तो अपराधियों के साथ अगर सरकार चलेगी और आपराधिक चरित्र के साथ अगर सरकार चलेगी तो अपराध ना रुके, ऐसा ख्याल आप कैसे सोचते हैं? हर रोज घटना हो रही है, जमुई के बाद और 2 घटना हो गई, और घटनाएं होंगी। ये सिचुएशन यहां बन गई है, अफसोस का मकाम है, दुख का अफसान है, कंडेमनेबल कार्यक्रम हो रहा है। और ये सरकार को जितना जल्द हो क्लैरिटी से बात करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए।
4: देखिए, जमुई में जो घटना घटी वो बिहार के लिए शर्मनाक थी और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आपने देखा जो अपराधी हैं उनके साथ कानून कितना सख्ती से निपटा, और ऐसी घटनाएं जहां भी होंगी कानून सख्ती से निपटेगी। ये बिहार के सुशासन की सबसे बड़ा संकल्प है, इसीलिए अपराधी सचेत हो जाए, अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं।
2: जमुई घटना के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी के पैर में गोली भी मारने का दावा किया गया। समस्तीपुर के शैतान भी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल फिर भी बाकी है कि बिहार में वीडियो सामने नहीं आते तो क्या ये नफंगे कभी पकड़े जाते? क्या बिहार पुलिस की टीमें पेट्रोलिंग नहीं करती? क्या पुलिस को कुछ पता ही नहीं है कि क्राइम के हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है? मुख्यमंत्री की पीड़ितों से मुलाकात हो रही है, आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि बिहार में कानून का डर इतना कमजोर क्यों है कि कार्रवाई के लिए पुलिस को हर बार वायरल वीडियो का इंतजार करना पड़ता है? जो लोग वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं उनमें कानून का खौफ क्यों नहीं है? आज तक ब्यूरो।
5: बिहार में ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। और बिहार सरकार क्या कह रही है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? अगर एक युवक युवती कहीं घूमने जा रहे हैं तो इस तरह से मंचलों की हिम्मत क्यों इतनी बढ़ गई है कि वो छेड़छाड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं? किस रूल बुक में लिखा है कि कहीं पर शाम को एक युवक युवती साथ में नहीं घूम सकते?
2: बस तारीख और जगह का अंतर है, बाकी सब वही है। जमुई में जोड़े के साथ जो जानवरपन हुआ उसका आक्रोश अभी कम नहीं हुआ था कि बिहार के समस्तीपुर में वही कांड हो गया। एक लड़की को गांव के मंचलों ने घेर लिया, कोई उसे गंदी गालियां दे रहा था, कोई निजी टिप्पणियां कर रहा था, तो कोई उसका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश कर रहा था।
6: बिहार के समस्तीपुर में ये सब दिन दहाड़े हो रहा था एकदम खुल्लम खुल्ला, न पुलिस का भय न कानून का डर। ये मनचले लड़की को थप्पड़ भी मार रहे थे, लड़की चिल्लाती रही, संघर्ष करती रही, मदद मांगती रही, लेकिन वहाँ कोई इंसान हो तो मदद करे ना। वहाँ तो सब कायर इकट्ठा हुए थे जो या तो तमाशबीन बने थे या फिर लड़की के चरित्र की पैमाइश कर रहे थे। ये घटना समस्तीपुर के करपुरी ग्राम इलाके की है जहां 23 सितंबर को लड़का और लड़की बांध पर घूमने गए थे। इस दौरान कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जब लड़का भाग गया तो अकेली बची लड़की को टॉर्चर करने लगे। ये मनचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश हुई। ये सब कुछ बीच सड़क पर हो रहा था।
7: समस्तीपुर में भी जमुई कांड के जैसा जो हुआ है वो इसी स्थान पे हुआ है। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे ये जो काफ़ी सुनसान जगह है जहां युवकों ने जो है नाबालिग बच्ची के साथ जो है गलत हरकत किए, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया, और ये देख सकते हैं कि काफ़ी सुनसान जगह है। बगल में नदी है और इधर खाली झाड़ी ही झाड़ी है, और इसी दरमियान जो है लोगों ने लड़की को पकड़ा था।
6: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। समस्तीपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 19 साल का राहुल कुमार पासवान, 46 साल का अवधेश पासवान, 32 साल का विकास शर्मा और 38 साल का आरोपी राम बाबू सहनी शामिल हैं।
8: सबसे पहले जो वीडियो था उसका सत्यापन किया गया, घटना स्थल स्थापित किया गया, और जो जानकारी मिली उसमें करपुरी ग्राम थाना अंतर्गत जगत सिंहपुर स्थित बांध के पास जो सड़क जाती है वो सड़क घटना स्थल के रूप में चिन्हित हुआ। वीडियो में दिख रही जो बच्ची है उसको प्रथम दृष्टया हम लोगों ने वो नाबालिग दिख रही थी, तो नाबालिग मानते हुए हम लोगों ने आगे कार्रवाई करने का प्रयास किया। प्राथमिकी जब तक दर्ज हो रही थी तब तक उस बच्ची का सत्यापन नहीं हो पाया था, इसलिए घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पदाधिकारी के बयान पर ही करपुरी ग्राम थाना अंतर्गत कांड संख्या 117-26 जो BNS पॉक्सो और IT एक्ट की सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। इस घटना में शामिल जो व्यक्ति हैं वो घटनास्थल के आसपास जगत सिंहपुर और बिजौलिया इन गांवों के अभियुक्त थे।
6: पुलिस ने 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे कर दिया है, लेकिन सवाल बिहार की कानून व्यवस्था पर है, बिहार के हुक्मरानों से है जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन हकीकत उसके एकदम उलट है। आज तक ब्यूरो।
5: अब देखिए ये तो बिहार की बात है, लेकिन दिल्ली के मुखर्जी नगर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर DU की छात्रा जब शाम को टहल रही थी अपनी सहेली के साथ, वहां पर एक कार आती है, वहां पर कुछ अश्लील टिप्पणी उनसे की जाती है, और जब वो कन्फ्रंट करती है, बात करती है, तो उसके बाद गाड़ी रोककर उनके साथ गाली गलौज की जाती है।
2: बिहार से लड़कियों से छेड़छाड़ की शर्मनाक खबरों के बीच अब दिल्ली में हुआ है बेटियों की सुरक्षा पर हमला। वारदात कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के नॉर्थ कैंपस की है। आरोप है कि पीड़िता मंगलवार रात करीब 9:30 बजे अपनी दोस्त के साथ विजयनगर से OGC रोड की ओर जा रही थी, तभी सफेद रंग की गाड़ी में सवार 4 लड़कों ने पीछा कर अश्लील कमेंट किया। मना करने पर बीच चौराहे पर गाड़ी रोककर गाली गलौज और धमकी दी। आरोप है कि नशे में धुत कार सवारों ने पीड़िता को अपनी कर में खींचने की भी कोशिश की। सुनिए पीड़िता की आप बीती।
9: जैसे कि मैंने बताया, मैं और मेरी दोस्त है, वी आर क्लासमेट्स, तो हम 9:30 बजे रात में विजयनगर हकीकत पार्क की तरफ से ओल्ड गुप्ता चौक की तरफ जा रहे थे, एंड वहां पर जब हम थोड़ा ओल्ड गुप्ता चौक की तरफ मोड़ से मुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे से एक गाड़ी आती है, वो रुकती है एंड वो अपना शीशा नीचे करते हैं एंड वो हम पे कमेंट पास करते हैं। तो हम बस उनसे इतना कहते हैं कि दिस इज नॉट द वे हाउ यू टॉक एंड जस्ट प्लीज लीव। तो वो इस पे इतने ऑफेंड हो जाते हैं, वो इतने उग्र हो जाते हैं कि वो हमें गालियां देने लगते हैं। बहुत आई वुड से दैट द वर्स्ट दैट दे वुड हैव सेड, उन्होंने वो सब कुछ बोला, उन्होंने हर प्रकार की गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी।
2: वारदात से पहले का ये CCTV फुटेज है जिसमें पीड़िता उस रास्ते से गुजरती दिख रही है। इलाका बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने छात्रा से शर्मनाक हरकत की।
9: वो हमारा पीछा कर रहे हैं और हम तो जब तक चल रहे थे तब तक वो हमारे एडजस्टिंग चल रहे थे, बट द मोमेंट दैट वी स्टॉप इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड देयर वीडियो और समथिंग, वो भी हमारे एडजेसेंट वहां पर रुक जाते हैं चौराहे पर, और वो आधी उनका जो बॉडी थी वो खिड़की से बाहर निकालकर वो गालियां देना शुरू करते हैं, और वो वहां पर मतलब जितनी तेज आवाज में वो गालियां दे सकते थे कि अपने आप को समझती क्या हो, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, इतना क्यों भड़क रही हो, इन प्लस प्लस प्लस ऑल दोस गालियां, सारी गालियां कि माँ की बहन की तुम कैसे घर से आते हो हमें पता है।
10: पीड़िता का आरोप है कि एफआईआर के लिए उसे 3 थानों के चक्कर कटवाए गए। मॉरिस नगर और मॉडल टाउन थाने ने एरिया का बहाना बनाकर मुखर्जी नगर भेज दिया। वह रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक थाने में खड़ी रही।
9: तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन गई, बिकॉज दिस वाज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम विजयनगर। तो हम यहाँ आते हैं, देयर वाज अ वुमेन कांस्टेबल, तो उन्होंने हमसे इतना भी नहीं पूछा कि व्हाट हैज हैपेंड। मैं दो लड़कियां थी, मैं और मेरी दोस्त थी, हम दोनों वहां पर जाते हैं, वो हमसे इतना भी नहीं पूछते कि हुआ क्या है, फॉर व्हाट हैव यू कम हियर, कुछ नहीं पूछते हैं। हमारे अंदर तो हमारे अंडर वो एरिया आता नहीं है, मॉडल टाउन आता है, तो आप वहां चले जाइए। हमने बोला कि आप मतलब आप इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमसे क्या होगा। दिस वॉज स्टेटमेंट, दिस वॉज एग्जैक्ट स्टेटमेंट।
10: पीड़िता ने बताया कि उसने खुद गाड़ी नंबर से एक आरोपी की पहचान की। आरोपी खुद को करावल नगर के SHO का रिश्तेदार बताकर धमका रहा था। पुलिस ने उस सफेद कार को जब्त कर लिया है जिस पर आरोपी सवार थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरोपी कब गिरफ्त में आएगा। दिल्ली से हर्षित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: तो देखिए, अलग अलग जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तराखंड के देहरादून से भी एक शर्मसार करने वाली तस्वीर आई, और वो इसीलिए क्योंकि बीच सड़क पर दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण करने की कोशिश की गई। तस्वीर आप देखिए, कार सवार वहां पर रोकते हैं, कार को रोकते हैं, और उसके बाद स्कूटी पर पीछे जो युवती होती है उसको खींच कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, उसका अपहरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो युवती अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और जब शोर मचाती है तो उसके बाद आरोपित मौके से फरार हो जाते हैं। मामला रायपुर थाना क्षेत्र का है। बुधवार सुबह का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 7:15 बजे महिला अपनी बेटी को कॉलेज बस के लिए छोड़कर स्कूटी से वापस घर लौट रही थी, जिस वक्त ये वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। वहीं सूरत में जिस तरह से एक डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से सुसाइड किया गया, अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब लोगों के अंदर काफी आक्रोश है और इस मामले की अब गहराई के साथ जांच भी की जा रही है।
10: जोधपुर एम्स में ड्यूटी के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर ने की आत्महत्या, और अब सूरत गवर्नमेंट अस्पताल में एक और रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। दूसरों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर रहे हैं? क्या वजह है कि सालों साल मेडिकल की पढ़ाई के बाद जब डॉक्टर बने तो जिंदगी जवाब देने लगी? जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
11: तो उसकी वो घर पे पता नहीं, वो नहीं गया, इंटरसेक्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी डिसेक्शन हॉल में से मिली और काफी सारा ब्लीडिंग हो चुका था।

0: कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
1: तो उसकी वो घर पे पता नहीं, वो नहीं गया, डिसेक्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी डिसेक्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी।
2: सर एक बार दो तीन थमका लगाने, बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: अब पर वो पीएम की बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
7: तो कौन सी बनानी है?
8: एकदम सॉरी,
7: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
9: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: पंजाब के लुधियाना से रफ्तार की खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली हैं। एक टियागो ईवी कार जो कि बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को टक्कर मार देती है। गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई थी और साथ ही ये भी बताया गया कि इतनी तेजी के साथ गाड़ियों को टक्कर मारी इस कार ने कि एक शख्स जो बाइक पर था वो 15 फीट ऊपर हवा में उछल गया है। इसके अलावा 2 ई रिक्शा और 1 एक्टिवा को भी कार चालक ने जोरदार टक्कर मारी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: चुनाव आयोग, ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना, आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे। पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है। ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी बातों को और मजबूती से रखना चाहिए, राहुल गांधी जी या किसी विपक्ष को जवाब देने के लिए नहीं, जनता के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना आए इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।

0: मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, जहां पर डेलिब्रेशंस हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले ही छंद में, अपने पहले ही पैराग्राफ में एक बात बड़े स्पष्टता के साथ लिख दिया है, सारे ऑफिशियल डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन होने के बाद अंततो गत्वा एट द एंड SIR जो हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, वो यूनानिमिटी के साथ हुआ, अर्थात हम सब ने, तीनों कमिश्नर उसमें यूनानिमस थे, उसमें किसी प्रकार का मतांतर, मतभेद, मनांतर नहीं था, देवर ऑल ऑन द सेम पेज।
1: माननीय CC ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया, जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया, उन्होंने चुनाव आयोग को हाईजैक करके अपने कॉलीग्स को एक प्रकार से उसमें सर्व करने से अलग कर दिया, उन्होंने अपने खुद के ECs को हाईजैक कर दिया। ये एक आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण है। तो बाहरी बुलडोजर और आंतरिक बुलडोजर किस प्रकार से पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, उसका यह बहुत घिनौना एक उदाहरण है, और विशेष रूप से घिनौना है एक संवैधानिक संस्था के लिए। सभी संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, स्टैट्यूटरी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण उतनी होती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं एक स्पेशल स्टेटस रखती हैं।

खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, कहीं पानी की बौछार तो कहीं हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। चुनाव आयोग पर उठते सवालों और विपक्ष के सामूहिक हल्ला बोल के बाद एनडीए से भी आई बड़ी आवाज। चिराग पासवान ने कहा, चुनाव प्रक्रिया पर शक हो जाए तो गलत होगा, आयोग दूर करे शंकाएं। ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक मंच पर दिखे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की महत्वाकांक्षी मुहिम। रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा पर कांग्रेस में खलबली। अजय राय बोले, हम भी जा सकते हैं कन्नौज और इटावा। पूछा, क्या बीजेपी की जगह राहुल गांधी को ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश यादव? अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से हो रही है गणपति बाप्पा की विदाई। मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी चौकस, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा से नजर, देर रात तक चलेगा विसर्जन।

0: नमस्कार, 3 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले 100 शहर 100 खबरों के साथ। देशभर में कई जगहों पर चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस पार्टी। कोलकाता में बंगाल सीओ ऑफिस तक मार्च, पोस्टरों के साथ जमकर किनारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतले भी फूके, जमकर साधा चुनाव आयोग पर निशाना। दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी, सीसी को हटाने की मांग की। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ज्ञानेश्वर कुमार की तुरंत गिरफ्तारी और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इम्फाल में भी मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर मार्च किया और परिसर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें झड़प भी हुई। बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं ने सीसी ज्ञानेश्वर कुमार और वोटर लिस्ट में जुड़े मुद्दों के खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पानी की बौछार के बावजूद डटे रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में भी विरोध मार्च निकाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सजा देने की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। इसके बावजूद कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। लखनऊ में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार के लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन, हाथों में पैम्फलेट और बैनर पोस्टर लेकर गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग की। सीसी ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ पंजाब कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन, चंडीगढ़ में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला, जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग की गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां और पुतले लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। ज्ञानेश्वर कुमार के पद से बर्खास्त करने और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। गुवाहाटी में भी सीसी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बड़े बड़े पोस्टर लेकर पद से हटाने की मांग की गई। हैदराबाद में भी कांग्रेस कमेटी के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वोटरों के नाम जोड़ने और हटाने का और वोटर डेटा के सेंट्रलाइजेशन को लेकर चिंता जताई गई। कांग्रेस नेताओं ने 14 आरोपों वाली खबर की पारदर्शिता जांच की मांग की है। कहा है कि अगर गड़बड़ी साबित होती है तो सीसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्टूडेंट प्रस्ताव को जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी एनसी आमने सामने आ गए, मेज पर जड़े विधायक। कुर्सी फेंकने की कोशिश करने पर मार्शल ने बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। बीजेपी के सदस्य सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा जैसे नारे लगाए गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में जम्मू कश्मीर का एक राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दी। स्टेटहुड के प्रस्ताव के साथ ही सदन में पुराने ऑटोनॉमी प्रस्ताव की मुद्दा भी उठाया गया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने छीन के लेंगे अपना हक के नारे भी लगाए। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपीआईटीसी के 2026 के चौथे संस्करण का आगाज किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्रेड शो का उद्घाटन किया। सीएम योगी भी इसमें मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार ने माफियाओं का समाप्त करने का काम किया, इसी के कारण उत्तर प्रदेश भर में निवेश का माहौल बना है। योगी और बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत में, उनके बाधाओं के बाद भी विकास दर में बरकरार रखा गया है। सीएम योगी ने भी सभा को संबोधित करते हुए बोला कि आज का अवसर ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, हेरिटेज और इनोवेशन के संगम का अवसर है। सीएम योगी ने कहा कि ट्रेड शो के चौथे संस्करण में सभी की उपस्थिति भारत के प्रति दुनिया के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। रायबरेली में अखिलेश यादव की पीटीए यात्रा पर बोले अजय राय, बोले कि अखिलेश रायबरेली अमेठी जाए तो कांग्रेस कन्नौज और इटावा जाएगी। अजय राय ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि रायबरेली यात्रा योगी सरकार के खिलाफ कम और राहुल गांधी की को शक्ति दिखाने के लिए ज्यादा की गई है। अजय राय ने बयान पर बीजेपी का पलटवार कहा कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर चुनौती क्यों दे रहे हैं। आलोक अवस्थी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे बहुमत से तीसरी बार भी आने वाली है। समाजवादी पार्टी नेता दीपक रंजन ने बीजेपी के बयानों पर किया पलटवार, कहा कि जहां भी लोगों के साथ अन्याय होगा समाजवादी पार्टी का रथ वहां खड़ा दिखेगा मिलेगा। शिक्षक सनातन एमएलसी चुनाव में बीजेपी का मिशन मोड है, लोकसभा विधानसभा की तर्ज पर तैयारियां तेज की गई। धर्मपाल सिंह का कार्यकर्ताओं को टारगेट, हर मतदाता से संपर्क और मतदान केंद्र तक पहुंचने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षक स्नातक चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार है, धर्मपाल सिंह बोले हैं कि कम समय के में ज्यादा गति से करना होगा हमको काम। डिप्टी सीएम मंजेश पाठक ने प्रदेश भर में चिकित्सकों और को लिखा है पत्र, दवाओं के नाम हिंदी या देवनागरी लिपि में लिखने का अनुरोध किया गया है। राजस्थान के 10 नगर निगमों में से बीजेपी ने 9 नगर निगमों में जीत हासिल कर लिया, कांग्रेस को केवल एक जगह ही जीत मिली है। पीएम मोदी ने आज दूसरे दिन सेवा यात्रियों से बात की है, इस दौरान सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभवों को भी साझा किया है। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों से चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना, यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा युवा शक्ति करेगी विकसित भारत का निर्माण। सेवा यात्रियों द्वारा आयुष्मान योजना से मिले लाभ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकारी योजना का लाभ अंतिम लोगों तक पहुंचाना है हमारा लक्ष्य, हमें सभी के सेवाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने या का माध्यम नहीं है बल्कि लोगों से जोड़ने और सेवा की भावना को कार्य में बदलने का अवसर है। 12 दिनों के गणपति उत्सव में के बाद गणपति बाप्पा को विदाई देने जाने का समय आ गया, धूमधाम से निकाली गई मुंबई में लालबाग चार राजा की सवारी। पारंपरिक आरती के बाद पंडाल में निकली लालबाग चार राजा की यात्रा, बाप्पा के आखिरी दर्शनों के लिए भारी संख्या में भीड़ नजर आई। ढोल और ताशों के बीच बाप्पा की विदाई देने उमड़ा श्रद्धा का समंदर, अगले साल जल्दी आने की कामना भी की गई। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर के बीच बाप्पा पर अबीर गुलाल और फूलों की बारिश की गई, लालबाग से गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ रहा है मुंबई चा राजा का विसर्जन जुलूस। सबसे प्यारे बाप्पा की श्रद्धा भरी विदाई से भावुक दिखे लोग, गणपति बाप्पा मौर्य का गूंज जय घोष दिखाई दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुंबई स्थित अपने आवास पर किए गणेश प्रतिमा का विसर्जन, पत्नी अमृता फडणवीस के साथ मौजूद रहे। बप्पा की आरती और परंपरा पूजा अर्चना के बाद किया गया विसर्जन, अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को विदाई दी गई। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, पारंपरिक आरती के साथ हुई यात्रा की आधिकारिक शुरुआत। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु, हर तरफ गूंज रहे गणपति बाप्पा मोरे और अगले बरस तू जल्दी आना के गजय घोष। अनंत चतुर्दशी पर पुणे के श्रीमंत दर्शुशेठ हलवाई गणपति मंदिर पहुंची डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, भक्ति भाव से की पूजा अर्चना और लिया आशीर्वाद। नागपुर के राजा का विसर्जन जुलूस भी का हुआ शुरुआत, भक्तों की भीड़ के बीच बाप्पा को काजे बाजे के साथ दी जा रही विदाई। ढोल ताशों के बीच बड़ी संख्या में विसर्जन यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु, पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अकोला में निकाली गई बार भाई मान के गणपति की विसर्जन की पालकी, ढोल और डीडी के पारंपरिक वादन के साथ निकाली गई यात्रा। अकोला में विसर्जन के दौरान सुरक्षा चौक चौबंद कर दी गई है, 3,000 पुलिसकर्मी तैनात है, 200 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जलगांव में बापा की मूर्ति विसर्जन के लिए भारी संख्या में जुटे भक्त अपने प्रिय गणपति को दे रहे हैं भक्तिपूर्ण विदाई। इतरम में नशा तस्कर के अवैध मकान पर चला हरियाणा पुलिस का बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। आरोपी के विरुद्ध कैथल में नशा तस्करी के संबंधित करीब 8 मामले दर्ज, डीजीपी ने दिए अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। मोतिहारी में दबंगों की दबंगाई का लाइव तस्वीर आई सामने, मामूली विवाद के बाद ने शहर के एक प्रतिष्ठित वकील की पिटाई कर दी। अधिवक्ता की पिटाई से आहत जिला संघ ने वकीलों ने कोर्ट परिसर में किया जमकर विरोध। प्रशासन दो दिनों के अंदर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। आगरा से फिरोजाबाद जा रहे एक महात्मा के काफले को टोल देने के लिए रोकने पर विवाद हो गया। महात्मा ने कर्मचारी के साथ गाली गलौज और अभद्रता भी की। कानपुर में हाईवे पर लोडर और ट्रॉली के आमने सामने टक्कर मार दी, दोनों चालकों की मौत हो गई। हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। ग्रेटर नोएडा में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 21 दमकल का गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। जैसलमेर में एक बाजार में भीषण आग लगने से कपड़े की 6 कैबिन नुमा दुकानें जलकर राख हो गई। दुकान लाखों का नुकसान भी हुआ है। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव में समापन के बाद दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों ओर से कुर्सियां और हेलमेट फेंके गए और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के झांसी में युवक ने आत्महत्या का सुसाइड वीडियो भी पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सिपाही को डीसीएम से कुचलने की कोशिश की गई, पीछे भागकर बचाई अपनी जान। पशु तस्करी रोकने पहुंचा था सिपाही। कौशाम्बी में युवती से छेड़छाड़ के बाद आरोपों के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 5 नामजद और 2 हिरासत में लिए गए। लुधियाना में तेज रफ्तार कार का कहर, 100 किलोमीटर के आसपास रफ्तार से आई कार ने 5 लोगों को उड़ाया। खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। कार इतनी तेज थी कि बाइक सवार टक्कर के बाद करीब 15 फीट हवा में उछलकर करीब 30 फीट दूर तक सड़क पर जा गिरा। गुरुग्राम में थार सवार दबंगों का तांडव, यूनिवर्सिटी छात्र को टक्कर मारकर बेरहमी से पीटा। छात्राओं से भी की बदसलूकी। पीट बचाव करने आए छात्राओं के साथ भी आरोपियों ने हाथापाई की और मारपीट की। पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने नहीं किए जाने के कारण छात्रों में रोष है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पानी के तेज बहाव में बावजूद पुल को पार करते हुए समय पेट्रोल से भरा टैंकर बह गया। दुर्घटना में बाल बाल बची टैंकर चालक की जान। चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल की घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच अब भी जारी है। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने की जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मेहर में बदमाशों के डर से पलायन को मजबूर हुए लोग। विरोध में हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। आगरा में बर्थडे पार्टी के बहाने चंगाई सभा की गई है, फिर धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साधी अपनी चुप्पी। न्यूयॉर्क में पत्रकार के सवाल पर शहबाज शरीफ ने बिना जवाब दिए निकल गए। इसराइल को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बंद करने की मांग को लेकर न्यूयॉर्क में बड़ा प्रदर्शन किया गया। एक्ट्रेस सुसान सरेंडन ने इसमें शामिल हुए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने आई, आगे बढ़ रही थी तो वह सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए जीप ट्राई का इस्तेमाल किया। यूएन में कैंपेन स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के ममदानी की आलोचना की। उन्होंने ममदानी को उन्हें न्यूयॉर्क आने से रोकने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। नेतन्याहू ने कहा कि ममदानी इसराइल की गाजा कार्रवाई के बारे में झूठ फैलाकर न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदियों को खतरे में डाल रहे हैं। सऊदी अरब की मदद के लिए फ्रांस का सेना भेजने का ऐलान। लाल सागर बंदरगाह शहर यानबू में सुरक्षा करेगी फ्रांसीसी सेना। आतंकियों की पनाह पर शहबाज शरीफ ने सवाल किया गया, न्यूयॉर्क में भारतीय पत्रकार ने को नहीं मिला उनका जवाब। यूएन महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डेलीगेट से किया बहिष्कार। नेतन्याहू के आते ही निकल गए सारे प्रतिनिधिमंडल के लोग। इसराइल को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बंद करने की मांग को लेकर न्यूयॉर्क में प्रदर्शन किया गया। अभिनेत्री सुजन ने समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। एंटी इमिग्रेशन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद इंग्लैंड में थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रवासियों की नाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में कार्यकर्ता डैनियल थॉमस ने की गई है गिरफ्तारी। भारत की सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में भारत का पहला गोल्ड। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी भारत ने जीता है सिल्वर। ऐश्वर्य प्रताप, रुद्राक्ष और नीरज कुमार ने बढ़ाया देश का मान। शूटिंग में एशियन गेम्स का पहला गोल्ड मेडल भी जीता है भारतीय निशानेबाज। अब तक 10 मेडल जीत चुके, इसमें 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भी शामिल है। भारत इस गेम्स में अब तक 2 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के सहारे 19 मेडल जीत चुका है। वह मेडल टैली में 12वें स्थान पर है। जोशना चेनप्पा और बेलवन सेंथिल कुमार ने स्क्वाश में मिक्स डबल्स में सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत का मेडल पक्का कर लिया। फिलीपींस की जोड़ी ने 11-3 और 11-5 से हराया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसता है।

आज देशभर में गणपति बाप्पा की विदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाप्पा के भक्त भावुक हैं। कई दिनों तक श्रद्धालु ने पूरे उत्साह श्रद्धा के साथ बाप्पा की पूजा अर्चना की और अब उन्हें विदाई देने का वक्त आ गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक विसर्जन के लिए खास तैयारियां की गई। दिल्ली में गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए आर्टिफिशियल कुंड बनाए गए ताकि आस्था के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सके। वहीं मुंबई में भी सुबह से ही विसर्जन की चहल पहल शुरू हो चुकी है। अलग अलग पंडालों में बाप्पा की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकाली जा रही। विसर्जन स्थलों पर बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए ताकि बाप्पा की विदाई श्रद्धा और सुरक्षित दोनों तरीकों से हो सके। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बाप्पा के इस विसर्जन से पहले बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया,

रोगियों की आंखें नम भी हुई और लोग लगातार अपने बापा के वापस आने की और अगले साल वापस आने की मनोकामना भी कर रहे हैं। और पिछले 12 दिनों से मुंबई में गणपति महोत्सव की रौनक छाई हुई है। आम श्रद्धालुओं से लेकर वीआईपी तक बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब बप्पा की विदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुंबई के अलग अलग गणेश पंडालों में बप्पा की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकाली जा रही। लाल बागचा राजा के भव्य विसर्जन यात्रा के लिए धूमधाम भी शुरू हो चुकी है।

0: बप्पा की विदाई का काउंटडाउन शुरू। मुंबई में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। लालबागचा राजा समेत बड़े गणपति मंडलों की विसर्जन यात्रा, मुंबई तैयार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। समुद्र से कृत्रिम तालाब तक विसर्जन की तैयारी, बीएमसी और पुलिस ने संभाला मोर्चा। मुंबई में अब बप्पा की विदाई की तैयारी है। जिस शहर में पिछले 12 दिनों से गणपति के जयकारे गूंज रहे थे, वहां अब विसर्जन की शुरुआत हो गई। गली मोहल्लों से लेकर बड़े बड़े गणेश पंडालों तक हर तरफ बप्पा को अंतिम विदाई का आरंभ हो चुका है। 14 सितंबर से शुरू हुआ गणेश उत्सव आज बप्पा के विसर्जन के साथ संपन्न हो रहा है। यानी आज बप्पा अपने भक्तों से विदा ले रहे हैं। भक्तों के लिए ये पल भावुक करने वाला है। 12 दिनों तक जिस गणपति की पूजा की, आरती की, जिनसे सुख समृद्धि की कामना की, अब उन्हीं बप्पा को विदाई देने का वक्त आ गया है। बप्पा की विदाई के इस महापर्व के लिए मुंबई प्रशासन तैयार है। आज विसर्जन के दौरान लाखों श्रद्धालु सड़कों पर उतरेंगे, लिहाजा बीएमसी से लेकर मुंबई पुलिस तक हर विभाग तैयार है। इको फ्रेंडली विसर्जन से लेकर सुरक्षा, ट्रैफिक और इमरजेंसी इंतजाम तक प्रशासन ने हर स्तर पर खास व्यवस्था की है।
1: चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: क्या चीज है
2: वायरल है? थैंक यू।
4: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना रहा है,
6: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: ओ नादान परिंदे, बैठ
3: बैठ बैठ।
4: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: JK Maxx Paints.
9: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
11: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।

0: बार एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: AU सेविंग्स अकाउंट

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफिल जूस।
5: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
6: यार लोन भूल गया। मैरी
7: इट्स
6: जस्ट अ गुड बैंक ना।
7: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
6: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
7: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
8: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
6: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
6: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
7: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
8: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
9: I have come today to the Parliament Street Police Station and given a complaint to the police station here against Chor Gyanesh Kumar. Gyanesh Chor Kumar, the sorry figure who is the Chief Election Commissioner of this country, and apparently he enjoys immunity under the CEC and EC Act of 2023, Section 16, which says that the election commissioners enjoy immunity from civil and criminal prosecution.
10: ये लोग चुनाव आयोग में, निर्वाचन सदन में लोकतंत्र का स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का स्लॉटर हाउस, कत्तल खाना बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसका मुखिया है ज्ञानेश कुमार। ये हमने नहीं कहा, और दो चुनाव आयुक्त है, सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी, ये दो जो लोग हैं, देश उनका आभारी रहेगा हमेशा, ये बात सामने लाई है और हमारी बातों को पुष्टि मिले उससे। ये स्लॉटर हाउस चला रहा है, ये माफिया है। अभी का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो माफिया है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता से लेकर चंडीगढ़, गुवाहाटी तक चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, कहीं पानी की बौछारें तो कहीं हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। चुनाव आयोग पर उठते सवालों और विपक्ष के सामूहिक हल्ला बोल के बाद एनडीए से आई बड़ी आवाज। चिराग पासवान ने कहा, चुनाव प्रक्रिया पर शक हो जाए तो गलत होगा, आयोग दूर करे शंकाएं। ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक मंच पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की महत्वाकांक्षी मुहिम। रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा पर कांग्रेस में खलबली, अजय राय बोले, हम भी जा सकते हैं कन्नौज और इटावा। पूछा, क्या बीजेपी की जगह राहुल गांधी को ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश? अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से हो रही है गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में 25,000 पुलिस कर्मी चौकस, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी, देर रात तक चलेगा विसर्जन।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएट
13: आप देखिए आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सीईसी के खिलाफ कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, कहीं पर पुतला फूंका गया तो कहीं पर बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी हुई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। चंडीगढ़ और पटना में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, यानी चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का विरोध अब सड़क पर भी जोर पकड़ता दिखाई दिया। हालांकि इस देशव्यापी प्रदर्शन में विपक्षी गठबंधन के बाकी दलों की मौजूदगी बहुत सीमित रही। कई सहयोगी दलों ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। तो पटना में भी आरजेडी ने दूरी बनाई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर भी किया गया, लेकिन कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे, अपनी जगह पर डटे रहे। हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। कहीं पर सीईसी ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका, जैसे ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कोलकाता में। कोलकाता में ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका, इस्तीफे की मांग की गई और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए तस्वीरें कुछ लखनऊ से आई तो कुछ चंडीगढ़ से आई और कुछ पटना से भी। तो पटना में कांग्रेस ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हमारे संवाददाता रोहित सिंह की एक रिपोर्ट।
14: कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो आज ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अब यहां पर बिहार विधानसभा के बाहर रोक दिया गया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इनको यहां से तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से दो दिनों से हम देख रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद चल रहा है, चुनाव आयोग को लेकर विवाद चल रहा है, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और पटना में आप देखिए ये तस्वीरें, जब कांग्रेस आर ब्लॉक से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जो प्रदर्शन उन लोगों ने निकाला था, उसके बाद उन्हें विधानसभा पर रोक दिया गया था, लेकिन बैरिकेडिंग लगाने के बाद वो लोग यहाँ रुके हुए थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस को लगा कि ये लोग अब हटने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है, तो इनके खिलाफ देखिए यहाँ पर वाटर कैनन का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ से देखिए वाटर कैनन से अब कांग्रेस के इन नेताओं कार्यकर्ताओं को जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, उन पर देखिए पानी के फव्वारे चलाए जा रहे हैं और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। यानी स्पष्ट है कि कांग्रेस लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है और अब स्थिति ऐसी हो गई है आज पटना में कि यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस को जो है यहाँ पर उठा उठा कर जो है कुछ कार्यकर्ताओं को ले जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और देखिए किस तरीके की स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है।
13: वहीं पटना में आरजेडी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंक दिया। आरजेडी ने बिहार और बंगाल में फिर से चुनाव कराने और ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की है और उसी के तहत यह प्रदर्शन किया गया, जहां पर हाथ में आरजेडी का झंडा लिए, तख्तियां लिए, बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन किया गया। सीईसी ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका। कांग्रेस की तरफ से अलग प्रदर्शन किया गया, आरजेडी की तरफ से अलग प्रदर्शन किया गया। तो वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। राजधानी से संवाददाता अमित भारद्वाज की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
15: विपक्ष राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तमाम आरोप लगाए तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दे दिया गया है। देश भर में इस मैसेज को लेकर आम आदमी के बीच में पहुंचना है और जहां एक तरफ आपको अलग अलग राज्यों से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी, ये तस्वीरें दिल्ली से आ रही है जहां यूथ कांग्रेस सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाता हुआ हाथों में पोस्टर लेके यहां पहुंचा है। उदय भानु चिब जो आईवाईसी के अध्यक्ष है वो खुद इस प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे हैं, तो आईवाईसी के हेडक्वार्टर से मार्च को लीड करते हुए यहां तक पहुंचे हैं और साथ में एक आईवाईसी कार्यकर्ता को सीसी ज्ञानेश कुमार का मास्क पहनाकर लाया गया। देखिए हाथों में आपको मास्क दिखेगा, जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में दिख रहे हैं और बैरिकेड्स को फान के आईवाईसी के अध्यक्ष अब बैरिकेड्स को फान के दूसरी तरफ जा चुके हैं, तो उनकी कोशिश है कि वो जंतर मंतर की तरफ या संसद मार्ग की तरफ मार्च करे। डिटेंशन की कार्रवाई एक बार सत्य आपको दिखाएंगे, जो उदय भानु चिब है उनको डिटेन किया जा रहा है, उदय भानु चिब को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि बैरिकेड जहां तक लगाए गए थे वो बैरिकेड्स को फान कर दूसरे तरफ गए और अब पैरा फोर्सेस की तरफ से जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं उनको यहां से डिस्पोज किया जा रहा है। वीडियो सहयोगी सत्या के साथ मैं अहमद भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
13: सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें?
16: हाँ देखिए हिमांशु, मेरी इस वक्त मौजूदगी दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर है जो कि यहाँ से सीधा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहाँ पर पुलिस ने बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग जो है वो करी है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त आपको सड़कों पर इस तरीके से आपको नजर आएंगे। देखिए पोस्टर बैनर के साथ यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और आप बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि आज देश भर में अलग अलग हिस्सों में अगर देखा जाए तो तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, दिल्ली कांग्रेस हो, सबकी एक तरीके से एक ही मांग है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा जो है वो हो। और इसी को लेकर के यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे हिमांशु। और आप तस्वीरें दिखाइए, मैं आपको दिखाऊँ कांग्रेस के कई लीडर इस वक्त जो है वो आपको प्रदर्शन में जो है वो शामिल नजर आएंगे। काफी क्योंकि ये जो बड़ा मुद्दा है इस मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बुनाने की कोशिश में है और इस्तीफे की मांग यहां पर की जा रही है और सीधे तौर पर हमला जो है वो केंद्र सरकार पर। आप ये देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है वो की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से आगे जाने की इजाजत जो है वो उनको नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता वो इस वक्त पुलिस बैरिकेडिंग पर है और इसको तोड़ करके आगे जाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। जिस दिन से ये पूरा मुद्दा उठा है उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर जो है वो हमलावर है। आपको तस्वीरें दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है और कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके बीच में इस वक्त जबरदस्त झड़प जो है वो देखने को मिल रही है और ये बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश, इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक जाने की कोशिश जो है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। जो तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर यहाँ से मैच चंद कदम की दूरी पर बीजेपी मुख्यालय है, वहां तक जाने की पहले कोशिश जो है वो कांग्रेस वर्कर की तरफ से जो है यहाँ पर की जा रही है। हिमांशु
13: नहीं आपके अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या सांकेतिक गिरफ्तारी यहाँ पर दी जाएगी या इनको हिरासत में लिया जाएगा, कितनी देर तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे क्योंकि यहाँ से तो आगे जाने नहीं दिया जा रहा है इनको?
16: देखिए फिलहाल ये इनका कहना है कि अभी ये फिलहाल यहीं पर डटे रहेंगे। आप देखेगी यादव की तस्वीरें देखिए किस तरीके से बैरिगेट पर इस वक्त जो है वो यहाँ पर देवेंद्र यादव जो है वो आपको नजर आएंगे। ये प्रदर्शन इनका जारी रहेगा क्योंकि ये चाहते हैं कि आगे की तरफ जाने के उनको दिया जाए, लेकिन फिलहाल पुलिस ने आगे जाने से रोक जो है वो फिलहाल लगा दी है। हिमांशु आज देखा जाए तो इसी तरीके से पूरी दिल्ली भर के अंदर प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो आज कांग्रेस की तरफ से जो है वो दिल्ली में नजर आ रही है। आप ये देखिए कि बैरिकेडिंग पर अब चढ़ गए क्योंकि अब आगे जाने की इजाजत नहीं है, या दूसरी तरफ देखिए कि हाथों में किस तरीके से पोस्टर्स बैनर्स हैं और पुलिस से लगातार आगे भिड़ते हुए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अब ये जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसी को लेकर के कांग्रेस केंद्र सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर लगातार हमला बढ़ रहा
13: है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशांत। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार हुई, उन्हें हिरासत में भी लिया गया। आज तक संवाददाता असीम बसी वहां मौजूद थे जिस वक्त ये प्रदर्शन किया जा रहा था और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था इन कार्यकर्ताओं पर। उनकी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं।
17: वर्कर्स के वर्कर्स लीडर्स यहाँ पर।
18: जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आज पंजाब कांग्रेस यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ पर पंजाब कांग्रेस के वर्कर्स के ऊपर चंडीगढ़ पुलिस ने जो है वाटर कैनन जो है चला दिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पंजाब कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए थे। राजा वड़िंग इनको लीड कर रहे थे और यहाँ पर वाटर कैनन जो है वो चला दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे जाना चाहते हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब कांग्रेस वर्कर्स के ऊपर जो है वाटर कैनन जो है वो चला दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के वर्कर्स और लीडर्स जो हैं वो आगे जाना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने उनके दफ्तर तक जाना चाहते हैं। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वाटर कैनन जो है चलाया गया है और ताकि कांग्रेस के वर्कर्स जो है वो आगे ना जा सके। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं राजा वड़िंग जो लीड कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो गुस्सा है इनको, वो आगे जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन पंजाब कांग्रेस के वर्कर्स लीडर्स यहां पर डटे हुए हैं। अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग आप देख सकते हैं दोनों बाजू में ऊपर करके यहां पर काफी हंगामा यहां पर हो रहा है क्योंकि को हटाने की कोशिश कर रही है चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में ही जो है इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है और यहां मार्च करने के लिए पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट राजा वड़िंग के लीडरशिप में यहां पंजाब कांग्रेस वर्कर्स इकट्ठे हुए थे। और आप देख सकते हैं लगातार यहां पर वाटर कैनन जो है चलाया जा रहा है ताकि ये लोग आगे ना जा सके। एक बार जो है फिर से आप देख सकते हैं अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग जो है वो ब्राउन टर्बन में हाथ हिलाते हुए बैरिकेडिंग के बिल्कुल पास आगे जाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गुस्सा है, उनकी एफजी को भी जलाया गया और अब प्रोटेस्ट जो है लगातार यहां पर चंडीगढ़ में चल रहा है। पंजाब कांग्रेस इस वक्त आगे जाना चाहती है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में चंडीगढ़ पुलिस किस तरह लीडर्स को यहां से हटा रही है, खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं वो यहां पर डटे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से।
13: जम्मू में भी कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ, माहौल वहां पर क्या था वहां से भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
19: कांग्रेस पार्टी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। यहां जम्मू में भी निर्वाचन भवन के बाहर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता जो है यहां भारी संख्या में पहुंचे हैं और यहां पर निर्वाचन भवन के बाहर ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने चुनावों में धांधलियां की है, ये इनका आरोप है। और साफ तौर पर यहां पर देखिए कि यहां पर उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं यहां जम्मू में निर्वाचन भवन के बाहर, और यहां जो है सुरक्षा बल भी भारी संख्या में तैनात है और सुरक्षा बल यही प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी है ये निर्वाचन भवन तक ना पहुंच सके। लेकिन यहां पर उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं और जो प्रदर्शन है इसकी अगुवाई जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो है, वरिष्ठ नेता जो है नासिर हुसैन कर रहे हैं और यहां पर धक्का मुक्की भी हो रही है। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शनकारी हैं जो ये आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन यहां पर सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। तो साफ तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है वो मोदी सरकार के खिलाफ इस समय हल्ला बोल रही है समूचे देश में और जम्मू में भी उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। यहां पर वोट चोरी का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगा रही है। दरअसल जिस प्रकार से एक अखबार की एक जो मुख्य खबर थी उसमें यह दावा किया गया था कि जो देश के दो अन्य चुनाव आयुक्त तो हैं उन्होंने कई बार जो है अपनी आपत्ति दर्ज की थी SIR की प्रक्रिया के खिलाफ, तो लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया जो है की, तो इसको लेकर यहां पर अब कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और इनका दावा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो मोदी सरकार की शह पर कार्य कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। और यहां पर पुतला भी फूंका जा रहा है। यहां पर देखिए जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनका पुतला फूंका जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है अपना उग्र प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए है और यहां पर देखिए धक्का मुक्की भी हो रही है, सुरक्षा बल भी भारी संख्या में यहां तैनात है और यहां पुतला जलाया जा रहा है ज्ञानेश कुमार का। तो उग्र प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, हाथों में बैनर लिए हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और ये मांग करें कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। तो उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ जम्मू में निर्वाचन भवन के बाहर भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर समूचे देश में इस समय कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल रही है मोदी सरकार के खिलाफ, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।
13: देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जिस वक्त उनका प्रदर्शन हुआ उस समय का माहौल दिखा रहे हैं आज तक संवाददाता अंकित शर्मा।
20: पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस जो है सड़कों पर इस समय आ गई है और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हम महज कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं चुनाव कार्यालय से। यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ देखते ही बनती है। यहाँ पर देखा जा सकता है दूर दूर तक कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में प्लाकार्ड्स भी हैं और जो प्लाकार्ड्स हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है मतदाता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसके साथ ही जो सीईसी ज्ञानेश कुमार हैं उनका पुतला दहन भी किया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं सूर्यकांत धस्माना जी, उनसे बात करेंगे।
21: राहुल गांधी ने आज तक जितनी बातें कही वो उन्होंने कोविड के बारे में कहा, वो उन्होंने जीएसटी के बारे में कहा, वो उन्होंने नोटबंदी के बारे में कहा और वो उन्होंने नीट के पेपर के लीक के बारे में और अब चुनाव के बारे में जो उन्होंने बातें पिछले समय कही वो एक एक बात अक्षरश साबित हो गई है। वोट चोरी हो रहा है, वोटों में डकैती पड़ रही है और उसमें चुनाव आयोग संलिप्त है। ज्ञानेश कुमार के कंधों पर चढ़ करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के आम नागरिक का जो सबसे बड़ा अधिकार जो हमारे देश के बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, नेहरू ने, सरदार पटेल ने जो हमको अधिकार वोट का दिया है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जो सबसे बड़ा अधिकार दिया है उस पर डाका डालने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कंधों में चढ़कर ज्ञानेश कुमार को के कंधों पर चढ़ के कहा।
13: तो दूसरी तरफ प्रदर्शन जम कर किए गए, कोलकाता की तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें, देहरादून की तस्वीरें आपके सामने है। तो दूसरी तरफ गुवाहाटी, चंडीगढ़, मणिपुर, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन चाहे लखनऊ हो या फिर पटना हो, वहां पर उनके साथी साथ में नजर नहीं आए। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
22: कार्यकर्ता है वो बाहर रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बेसिकली कोलकाता में जो स्थित सीईओ का ऑफिस है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिस है पश्चिम बंगाल में, उनके ऑफिस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको रोक दिया गया है। मांग आप देख सकते हैं, अरेस्ट ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार की इस्तीफा और ज्ञानेश कुमार को अरेस्ट करने की मांग के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आज रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था नई दिल्ली में, आज कांग्रेस उतर चुकी है रास्ते में कोलकाता में। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को हटा के बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी बन चुकी है और यहाँ पे जो विपक्ष का जो वैक्यूम है वो भी कहीं ना कहीं उसको लेके एक लड़ाई है और कांग्रेस चाहती है कि वो जगह कांग्रेस पार्टी ले ले और इसी का कारण है। आप देख सकते हैं किस तरह के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके पूछते हैं डिमांड क्या है, आप लोगों को पुलिस यहाँ पे रोक लिया है लेकिन आप क्या डिमांड कर रहे हैं?
23: ये तो अभी पुलिस का काम ही है, जब टीएमसी की सरकार थी तब भी हमें रोका गया, आज बीजेपी की सरकार है वो और भी निकम्मी सरकार है। ये सारे मिली भगत है इन लोगों की। आज जो वोट चोरी हुआ है, गणेश कुमार का खुलासा हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आज जो सरकार बनी है ये सिर्फ चोरी से बनी है।
22: तो बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
23: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
22: तो केरला में भी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भी चुनाव हुआ था, वहाँ पे आपकी सरकार बनी है। फिर
23: देखिए ये तो खेला है ना, ये बीजेपी कहीं कहीं अपना लॉलीपॉप तो देगी ना, हर जगह अगर खेला कर देगी तो ये तो पूरा करप्टेड हो ही जाए, ऐसे तो करप्टेड है और भी बदनाम हो जाएगी, इसलिए कुछ कुछ जगह को छोड़कर ये अपना गुल खिला रहे हैं।
13: तो कोलकाता से आपने तस्वीरें देखी, एक बार फिर से आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं जहां जोरदार प्रदर्शन और उसके बाद ये देखिए चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की कोशिश की जा रही थी, बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया और उसके बाद अब बस में गिरफ्तार इनको हिरासत में लिया जा रहा है, जो सांकेतिक तौर पर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस दफ्तर से आगे बढ़कर हंगामा किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब इनको रोक दिया गया। वहीं चुनाव आयोग में मतभेदों की खबर के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को लोगों का भरोसा बनाए रखना चाहिए, चुनाव आयोग को सामने आकर शंकाओं को दूर करना चाहिए।
1: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है, कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना, आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे। पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।
13: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
24: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
25: सोच बदलो और बैंक भी।
26: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
27: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
26: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तमाम आरोप लगाए तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दे दिया गया है। देश भर में इस मैसेज को लेकर आम आदमी के बीच में पहुंचना है और जहां एक तरफ आपको अलग अलग राज्यों से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी, ये तस्वीरें दिल्ली से आ रही है जहां यूथ कांग्रेस सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाता हुआ हाथों में पोस्टर लेके यहां पहुंचा है। उदय भानु चिब जो आईवाईसी के अध्यक्ष है वो खुद इस प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे हैं, तो आईवाईसी के हेडक्वार्टर से मार्च को लीड करते हुए यहां तक पहुंचे हैं और साथ में एक आईवाईसी कार्यकर्ता को सीसी ज्ञानेश कुमार का मास्क पहनाकर लाया गया। देखिए हाथों में आपको मास्क दिखेगा। जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में दिख रहे हैं और बैरिकेड्स को फान के आईवाईसी के अध्यक्ष अब बैरिकेड्स को फान के दूसरी तरफ जा चुके हैं, तो उनकी कोशिश है कि वो जंतर मंतर की तरफ या संसद मार्ग की तरफ मार्च करे। डिटेंशन की कार्रवाई एक बार सत्य आपको दिखाएंगे। जो उदय भानु चिब है उनको डिटेन किया जा रहा है, उदय भानु चिब को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि बैरिकेड जहां तक लगाए गए थे वो बैरिकेड्स को फान कर दूसरे तरफ गए और अब पैरा फोर्सेस की तरफ से जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं उनको यहां से डिस्पोज किया जा रहा है। वीडियो सहयोगी सत्या के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी, कहीं पानी की बौछार तो कहीं हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। चुनाव आयोग पर उठते सवालों और विपक्ष के सामूहिक हल्ला बोल के बाद एनडीए से आई बड़ी आवाज। चिराग पासवान ने कहा, चुनाव प्रक्रिया पर शक हो जाए तो गलत होगा, आयोग दूर करे शंकाएं। ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक मंच पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की महत्वाकांक्षी मुहिम।

0: कांग्रेस में खलबली। अजय राय बोले, हम भी जा सकते हैं कन्नौज और इटावा। पूछा, क्या बीजेपी की जगह राहुल गांधी को ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश यादव? अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से हो रही है गणपति बाप्पा की विदाई। मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी चौकस, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी, देर रात तक चलेगा विसर्जन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: यूएन में 77 देशों ने किया नेतन्याहू का बहिष्कार। पलटवार में यूएन के मंच से नेतन्याहू की दहाड़।
4: Well, I can tell you this.
3: बहिष्कार करने वालों को बताया नैतिक कायर।
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall,
3: पेजर दिखाकर हिजबुल्ला को दिलाई धमाकों की याद।
4: हिजबुल्ला certainly remembers this.
3: यूएन को क्यों दिखाया मिसाइलों से मिट जाने का डर।
4: I'm going to leave this device with you.
3: अमेरिका में जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी क्यों। ट्रंप ने जिनपिंग के सामने कैसे उड़ाया बाइडेन का मजाक। पत्रकारों से जंग में ट्रंप की क्यों हुई फजीहत। मुश्तबा की सेहत पर क्या बोले पेदेशकियान। अब तक क्यों नहीं आया मुश्तबा का वीडियो। रणभूमि में देखिए कूटनीति से रणनीति तक की हर बड़ी खबर।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका के दो शहर इस वक्त सबसे बड़ी हलचल तेज हो गई है। न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गरजे तो किसी को भी नहीं बख्शा। भले ही 77 देशों ने उनका बहिष्कार कर दिया, लेकिन वो ये बताना नहीं भूले कि बहिष्कार करने वालों पर भी इजराइल ने कई एहसान कर रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम बातचीत हुई है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवालों पर उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि बातचीत अच्छी रही। यानी चीन को लेकर अमेरिका का रुख बेहद नरम दिख रहा है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है इसे लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। यूएन महासभा में ईरान का पक्ष रखने के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा कि अमेरिका तय कर ले कि वो युद्ध चाहता है या फिर शांति। वहीं ईरान ने के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर भी उन्होंने कई खुलासे किए। तो वहीं युद्ध के दूसरे मोर्चे यानी रूस और यूक्रेन पर लगातार बारूदी तबाही का गवाह बना हुआ है। इस बीच दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन को लेकर, जहां पर यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े रूसी ड्रोन से हमले किए गए। रूस की ओर से दागे गए जेट संचालित ड्रोन ने कीव के मध्य में स्थित बेहद पॉश इलाकों पर और केंद्रीय इलाकों पर बड़े हमले किए हैं, और एक 16 मंजिला आवासीय इमारत को भी निशाना बनाया गया। रूस का ड्रोन बहुमंजिला इमारत से जा टकरा है। स्थानीय पुलिस के अनुसार इस हमले में 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है और कम से कम 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रूस पिछले कुछ हफ्तों से कीव और उसके आसपास के इलाकों पर तेज रफ्तार और ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले ड्रोन से लगातार बमबारी कर रहा है, जिन्होंने इंटरसेप्ट करना यूक्रेनी एयर डिफेंस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। यह हमला ठीक उसी वक्त हुआ है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर है और वैश्विक मंच पर यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अधिक एयर डिफेंस प्रणाली की मांग कर रहे हैं। वहीं रूस में यूक्रेन के पलटवार की भी खबरें लगातार मिल रही है। रोस्तोव इलाके में खासतौर पर ऑयल रिफाइनरीज पे रात भर यूक्रेनी ड्रोन से हमलों के बाद कामकाज बंद करना पड़ा। आपको बता दें कि यूक्रेन भी लगातार रूस के कई ऑयल रिफाइनरीज पर टारगेट कर रहा है। रूस के रोस्तोव प्रांत में स्थित तेल रिफाइनरी पर बीती रात ड्रोन से हमले किए गए। ड्रोन हमले में रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद इसके ऑपरेशंस को पूरी तरीके से रोक दिया गया। रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन ने इस क्षेत्र में निशाना बनाने के लिए एक साथ लगभग 50 ड्रोन के झुंड से अटैक किया। हालांकि रूस का दावा है कि उसने हवाई सुरक्षा प्रणाली ने सभी अधिकांश ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन इस ऑयल रिफाइनरी पर आ गिरे और मलबे में आग लग गई। भारी क्षति इससे पहुंची है। यह रोस्तोव प्रांत की एकमात्र सक्रिय तेल रिफाइनरी है, जहां इससे पूरे दक्षिणी रूस में पेट्रोलियम उत्पादनों जैसे गैसोलीन, डीजल, हीटिंग ऑयल और मरीन फ्यूल की सप्लाई की जाती है। कुल मिलाकर अगर आप देखें, यूक्रेनी सेना ने बीती रात रूस के 4 अलग अलग प्रांतों पर औद्योगिक और सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले किए और इससे रूस के एक बार फिर से बड़े ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। रूस तो वो इलाका है जहां से रूस लगातार सदर्न इलाकों में यानी डॉनबास, लुहांस्क के इलाकों में अपनी साजो सामान रसद को आगे पहुंचाता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये रूस के लिए बड़ा, आप कह सकते हैं, नुकसान के तौर पर इसे देखा जाएगा। तो ये एकमात्र खबर नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रूस के बड़े ऑयल स्ट्रक्चर्स पर, ऑयल रिफाइनरीज पर बड़े अटैक किए गए, और आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रूस की वो 6 सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन कौन सी है जिन पर यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में ताजा हमले किया। ये मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि आखिरकार वो कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरी है जहां पर बड़े हमले किए गए। सबसे पहले ओमस के इलाके में 6 जुलाई 2026 को पहला अटैक होता है, और अगर आप देखें सबसे बड़ी रिफाइनरी है, 22 मिलियन टन प्रतिवर्ष इसकी कैपेसिटी, यूक्रेनी सीमा से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बाद FP1 ड्रोन से इसकी दूरी को, आपके दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया गया, करीबन 2200 से 25 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। और यह पहली ऑयल रिफाइनरी ऐसी थी जिसके बाद रूस अलर्ट हो गया, क्योंकि रूस को समझ में आ गया कि अब यूक्रेन भी रेसिप्रोकल अटैक करेगा या फिर इकोनॉमिक फ्रंट पर रूस को बड़े क्षति पहुंचाने की कोशिश करता। अब दूसरी है कृषि का इलाका वो है जो करीबन, अगर आप देखें, ये दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, इसकी करीबन 20 से 21 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कैपेसिटी है, मुख्य निर्यात केंद्र है, और लगातार ड्रोन हमलों से इसके काम को भी ठप कर दिया गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप समझिए कि इस समय जो ऑयल संकट है वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं बल्कि अब रूस के ऊपर भी मंडराने लगा। अगर बात करें रियाजान की बात करें, 15 मई 2026 को यह अटैक किया गया, 17.1 मिलियन प्रति टन वर्ष की इसकी कैपेसिटी है। मॉस्को मध्य रूस के लिए रणनीतिक ईंधन केंद्र है, क्योंकि ये सेंट्रल में मौजूद है और मॉस्को के साथ साथ आसपास के शहरों को ये साजो सामान या फिर आप कह सकते हैं कि ऑयल का भंडार यहीं से पहुंचता है। ड्रोन हमले के बाद प्रोसेसिंग पूरी तरीके से रोक दी गई, यानी प्रोसेसिंग का कामकाज जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिए कि आखिरकार इस समय ताजा हालात कैसे। अब कुस्तोवो के अंदर भी 2 जुलाई को हमले किए गए थे और इसके अंदर भी करीबन 17 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कैपेसिटी है, और 2 जुलाई को हमले के बाद 50% जो इसका उत्पादन है वो खत्म हो चुका है। यानी अगर आप देखें 6 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज रूस की जो इस समय पैरालाइज हैं या फिर उनका पूरी तरीके से काम 100% काम काज बिल्कुल ठप हो चुका है। अब ये एक बात करते हैं यारोस्लाव की। अब 2026 में कई बार इस पर हमले करने की कोशिश की गई, 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष इसकी कैपेसिटी है, और सिलसिलेवार तरीके से इससे हमलों को, इसको लेकर इसके ढांचे जो है, जो इसका बुनियादी ढांचे है, उसको नुकसान पहुंचा, और इसको लेकर भी कहा जा रहा है इसके कामकाज के अंदर भी काफी ज्यादा प्रतिबंध, काफी ज्यादा विविधा आई है। अब देखे वोल्ग्राड का वो इलाका है जो 2026 में भी इस पर भी कई बार हमले किए गए। अब इसकी कैपेसिटी जो है वो 14.8 मिलियन टन की है, दक्षिणी रूस लॉजिस्टिक नेटवर्क का एक बड़ा स्रोत है ये, और कई बार ड्रोनों से इस पर भी हमले करने की इसकी कोशिश की गई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप इन तमाम चीजों को देख के समझिए कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात क्या है और क्यों लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि इस समय 6 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर इस अटैक के बाद रूस को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पैरालाइज करने की कोशिश इस समय यूक्रेन करता है। अब रुक करते हैं न्यूयॉर्क का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के दुश्मनों को जमकर निशाना साधा है। हालांकि उनकी स्पीच से पहले ही उनसे कई देशों के प्रतिनिधि हॉल छोड़कर चले गए। कुल मिलाकर करीबन 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधि मंडल हॉल के बाहर निकल गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि वो नैतिक कायर है, यानी मोरल कॉवर्ड है। अभी उन्होंने कहा कि वो हॉल छोड़कर जा सकते हैं। इजरायली पीएम ने दावा किया कि बहिष्कार करने वाले कई देशों की मदद इजरायल ने की है, लेकिन उनमें से इजरायल के साथ खड़े रहने का नैतिक साहस किसी के पास नहीं। बहिष्कार करने वालों में सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले लगातार झेल रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड रहा है कि ईरान के खिलाफ इजरायल के हमलों में सबसे बड़ी राहत सऊदी अरब जैसे सुन्नी अरब देशों को मिली है। नेतन्याहू के अनुसार अगर इसराइल ईरान को ना रोकता तो ईरान पूरे मध्य पूर्व को निकल जाता। इसके अलावा इसराइल तकनीक और सुरक्षा खुफिया के स्तर पर भी सऊदी के लिए साथ अनौपचारिक सहयोग का दावा करता रहा है। इसके अलावा इस्लामिक आतंकी संगठन से जूझ रहे केनिया युगांडा की मदद भी इसराइल कर चुका है। नेतन्याहू ने मंच पर स्पष्ट कर दिया और कहा कि इसराइल अकेले 7 मोर्चों पर लड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान समर्थित इन शक्तियों को कमजोर करके इसराइल ने अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी वैश्विक और अफ्रीकी देशों की रक्षा की है जो आतंकवाद के रडार पर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो देश आज हॉल छोड़कर भाग रहे हैं, वो भी जानते हैं कि इसराइल की इस लड़ाई में उसका अपना देश सुरक्षित हुआ है। 40 मिनट के इस संबोधन में लगातार इसराइल की प्रधानमंत्री इस बात को स्पष्टीकरण देते आए, इस बात को साफ रूप से रखते आए कि इसराइल के 7 फ्रंट पर लड़ने का मकसद दरअसल सिर्फ इसराइल की सुरक्षा नहीं बल्कि इन तमाम देशों की सुरक्षा है।
4: बिफोर आई बिगिन, जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, इफ देयर आर एनी अदर मोरल कावर्ड्स हु हैवंट येट लेफ्ट दिस हॉल, प्लीज डू सो नाउ। Thank you very much.
0: दरअसल UNGA का ये 81 सेशन है, लेकिन इस समय पूरे ड्रामे से लबरेज है। नेतन्याहू की स्पीच और इसराइल की गतिविधियां इस बार यूएन में ड्रामे से भरपूर दिखाई दी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई। कल नेतन्याहू ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्स डिवाइस दिखाया था और इसराइल के पीएम ने स्टारलिंक की डिवाइस को दिखाते हुए कहा कि ईरान के लोगों को इसकी जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान इंटरनेट को सेंसर करने पर करोड़ों और अरबों डॉलर खर्च करता है। अगर ईरान के लोगों को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट एक्सेस मिल गई तो वो सच को जान पाएंगे और अपनी आवाज उठा सकेंगे। इजरायली पीएम की इस स्पीच के बाद यूएन में उनके स्थायी राजदूत डेनी डेनन ने ईरान के राजनयिक के पास गए और स्टारलिंक डिवाइस को लेकर उनके पास पहुंचे और उन्हें इसका ऑफर किया। उन्होंने कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। उन्होंने कहा कि इससे ईरान का भला होगा क्योंकि वहां सत्ता परिवर्तन से मैं स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट तक लोगों की पहुंच हो सकेगी। हालांकि इस दौरान ईरान के राजनयिक ने इजरायली राजदूत को अनसुना कर दिया। वो एक तरीके से बिल्कुल अनसुना करके मुंह फेर कर उधर बैठ गए। सुनिए नेतन्याहू का वो बयान और फिर कैसे इजरायली राजदूत ने ईरान के राजनयिक को स्टारलिंक डिवाइस ऑफर करने की कोशिश की। इस तमाम चीज आपको दिखाते
4: हैं। When their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spends millions and billions of dollars censoring the internet.
5: I thought it's appropriate to give you the Starlink. If you heard the Prime Minister, it can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come that day.
0: और यूएन के मंच से नेतन्याहू ने हिजबुल्ला और उसके समर्थकों के जख्मों पर भी नरम नमक छिड़कने का काम किया। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में पेजर दिखाया और हिजबुल्ला को याद दिलाया कि ये पेजर 2 साल पहले कैसे फटने लगे थे। नेतन्याहू ने पेजर दिखाकर पूछा कि क्या यूएन में बैठे लोगों को ये याद है। उन्होंने कहा कि किसी और को याद हो ना हो, लेकिन हिजबुल्ला को अच्छी तरीके से याद होगा। दरअसल 17 सितंबर 2024 की शाम लेबनन में हिजबुल्ला समर्थकों और उनके आतंकियों के पास मौजूद पेजर एक के बाद एक फटने लग गए थे। बाद में पता चला कि जिस कंपनी से हिजबुल्ला ने पेजर खरीदे थे वो इसराइल की ये एक शेल कंपनी थी जिसका लिंक मोसाद से जुड़ा हुआ था। मोसाद यानी इसराइल की बेहद तेज तर्रार और खुफिया एजेंसी। सुनिए नेतन्याहू ने उस धमाके की याद दिलाकर हिजबुल्ला को कैसे याद उसकी दिलाई है।
6: हिजबुल्ला, यू रिमेंबर द बीपर्स, रिमेंबर दीस थिंग्स, रिमेंबर देम? या वेल, आई कैन टेल यू दिस, हिजबुल्ला सर्टेनली रिमेंबर्स देम। गेस व्हाट हैपेंड टू The bulk of the Hezbollah's vast arsenal of war.
0: वैसे मोसाद के ऑपरेशन हमेशा से एक माइलस्टोन रहे हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया ने इसराइल की इंटेलिजेंस का रिवाइवल देखा। कैसे लगातार इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, ये लगातार एक अपने आप में मिसाल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इस समय न्यूयॉर्क के मेयर है जोहरान ममदानी। वो जोहरान ममदानी जिन्होंने कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो वो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो ममदानी जिन्होंने ये कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधी है, और इसी बीच एक बड़ी खबर कि नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ही उन्हें भी करारा जवाब दिया। नेतन्याहू ने ममदानी को हमास और आतंकियों का समर्थक बताया और कहा कि इसराइल ने नरसंहार किया नहीं बल्कि नरसंहार को रोका है। और देखिए उन्होंने ये भी कहा कि देखिए उनके लगातार बयानों से यहूदी जो है यानी जो ज्यूज हैं वो कैसे लगातार खतरे में। उन्होंने लगातार ममदानी को लेकर कई बड़े बयान दिए, उन पर वार किया और लगातार उनसे कहा कि वो हमास के और लगातार ऐसी गतिविधियों के समर्थक हैं।
7: बेंजामिन नेतन्याहू इज ए वॉर क्रिमिनल, द आर्किटेक्ट ऑफ ए हॉरिफिक जेनोसाइड अगेंस्ट द पैलेस्टिनियन पीपल। He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia.
6: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
0: इसराइल की प्रधानमंत्री लगातार यूएन से अपनी बातें रख रहे थे, युद्ध में कैसे इसराइल लड़ रहा है, कैसे उसकी काबिलियत हुई है, कैसे उसकी बड़ी सफलता उसे हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ यह युद्ध अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक, एक बड़ी परेशानी लेकर आया। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी, जहां पर अमेरिका अब तक जिस चीज को, जिस खबरों को छुपा रहा था, वो खबर अब अमेरिकी सरकार के ही एक अधिकारी ने के हवाले से सामने आई है। अमेरिका के कार्यवाहक नौसेना सचिव हॉन्ग काओ ने कहा है कि खुलासा किया है कि 286 दिनों तक नॉन स्टॉप तैनाती के बाद विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 8 सैनिकों ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, उसमें से किसी की जान नहीं गई। लेकिन यह बताना है कि अमेरिका के सैनिक कितने ज्यादा तनाव में थे, कितने ज्यादा आप कह सकते हैं डिप्रेशन में थे। यह खुलासा नौसेना सचिव हॉन्ग काओ ने अमेरिकी संसद की रक्षा मामलों की समिति के डेमोक्रेटिक सीनेट कर्स्टन गिलब्रैड के लिखे एक आधिकारिक पत्र में किया गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद अमेरिका में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है और रक्षा विवाद इसने खड़ा कर दिया है। खुलासे में बताया गया है कि अगस्त 2026 की शुरुआत में ही एक सैनिक ने तंग आकर चलती हुई शिप से गहरे समंदर में छलांग लगा दी थी, जिसे सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। वहीं मार्च में भी एक अन्य सैनिक ने समुद्र में कूदने की कोशिश की, जिसे साथियों ने समय रहते पकड़ लिया। महीने तक लगातार युद्धक अभियानों के कारण सैनिक भयंकर तनाव में थे, और इसके अलावा जहाजों पर बुनियादी जरूरतें जैसे पीने के पानी, साफ पानी, टॉयलेट की किल्लत हो गई थी, जहां तक कि गर्म पानी का मिलना भी बंद हो गया था और इसी वजह से लगातार अमेरिकी सैनिक डिप्रेशन में थे और इसी दबाव के चलते उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। और चलिए अगली बड़ी खबर का भी रुख करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो इस समय अमेरिका के दौरे पर, शी जिनपिंग का 23 से 25 सितंबर 2026 यानी इसी साल यह आधिकारिक अमेरिकी दौरा है जो करीबन 3 दिन तक चलेगा और वो व्हाइट हाउस के भीतर भी बेहद भव्य और कूटनीतिक लगातार उनकी दौरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन की सड़कों पर इसके खिलाफ प्रचंड विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में एक सैन्य रिव्यू और शानदार स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। इससे पहले ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बंद कमरे में लगभग 90 मिनट तक बायलैटरल

0: जिसको लेकर बातचीत भी की गई। डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में अंदर शी जिनपिंग की मेजबानी कर रहे थे, ठीक उसी समय अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर और दिग्गज डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी नेशनल मॉल में और लाफेट पार्क में चल रहे चीन विरोधी प्रदर्शन का हिस्सा बनी हुई थी। नैन्सी पेलोसी दशकों से चीन में मानवाधिकारों के हनन, धार्मिक सेंसरशिप और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती आई है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के बीच मंच से ही भाषण देते हुए अमेरिकी संसद की तरफ से तिब्बत के प्रति अटूट समर्थन अपना दोहराया। प्रदर्शनकारियों ने चीन तिब्बत के बाहर निकलो के नारे लगाए, ट्रंप शी जिनपिंग और भरोसा मत करो, इसके भी नारे लगाए गए। हांगकांग के प्रदर्शनकारियों ने चीन की ओर से लागू किए गए सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का विरोध किया, जिसमें हांगकांग की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरीके से खत्म करने का दावा किया गया। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब शी जिनपिंग का स्वागत व्हाइट हाउस में किया जा रहा है, उसी वक्त बाहर अमेरिका के कई नेता और डेमोक्रेटी नेता नैन्सी पेलोसी लगातार वहां के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी थी। वो लगातार ना सिर्फ चीन की तिब्बत में गतिविधियों को लेकर सवाल उठा रही थी, बल्कि मानवाधिकार जैसे बड़े मुद्दों को लेकर भी चीन की मुखालफत या उनका विरोध करती हुई नजर आई। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में बहुत कुछ कहती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें दिखा रहे थे। दरअसल उस लॉबी में थे जहां पर सभी राष्ट्रपतियों की तस्वीर लगती है और इसे प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फ्रेम कहा जाता है। इस दौरान ट्रंप के मजाक का पर शी जिनपिंग ठहाके लगाकर हंस पड़े। ये मसला क्या था ये आप समझिए। ट्रंप ने अपनी तस्वीर दिखाई और फिर अगली तस्वीर जो बाइडेन की होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी जगह एक ऑटो पेन की तस्वीर लगी हुई थी। ऑटो पेन यानी राष्ट्रपति के दस्तखत करने वाले ऑटोमेटिक पेन जो हजारों पत्रों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साइन करते हैं। ट्रंप ये बताना चाहते थे कि अपनी कार्यकाल में आखिरी समय में बाइडेन सोचने समझने की क्षमता खो चुके थे, एक ऑटो पेन की तरह वो काम कर रहे थे। और जब ट्रंप ने शी को ऑटो पेन की तस्वीर दिखाकर कहा कि ये बाइडेन है तो वो हंस पड़े। देखिए कैसे लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ही इंस्टीट्यूशन, अपने ही पुराने राष्ट्रपतियों का मजाक उड़ाया, वो भी दूसरे देश के राष्ट्रपति के सामने। देखिए हमने आपको तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबर बताई रणभूमि में किस तरीके से अलग अलग देशों के अंदर क्या हालचाल है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। जम्मू कश्मीर जहां पर विधानसभा में आज उस वक्त जबरदस्त हंगामा और बवाल मच गया जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व राज्य के दर्जे को लेकर एक बेहद संवेदनशील और विवादित प्रस्ताव पेश कर दिया। इस प्रस्ताव में सिर्फ राज्य में दर्जे की मांग ही नहीं की गई, बल्कि इसमें साल 2000 के उस विवादास्पद स्वतंत्रता प्रस्ताव पर भी साफ जिक्र किया गया जो 1953 से पहले की स्थिति की वकालत करता है। इसका सीधा मतलब है जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री, अलग राष्ट्रपति और केंद्र के पास सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार जैसे सीमित अधिकार वापस मांगे जाएं। इसी संदर्भ में भड़के बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की, प्रस्ताव की प्रांतियां भी लगातार फाड़ दी गई और वेल में उतर आए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी भट्ट, ये बड़ा सरप्राइज है कि एकाएक लगातार अमर उब्दला की तरफ से ये आप देख सकते हैं ये पेश कर दिया गया और ऐसी चीजें जो लगातार हमेशा एक तरीके से आप कहीं उनका जिक्र नहीं था लंबे समय से।
1: जी बिल्कुल, आज अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज श्रीनगर में जो सत्र चल रहा है, आज उन्होंने एक प्रस्ताव विधानसभा में लाया और उस प्रस्ताव में ये मांग की गई कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है यानी कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इसकी ड्राफ्ट को देखें, इस प्रस्ताव की ड्राफ्ट को, तो इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि शुरुआत में ये लिखा गया है कि इन एडिशन टू द रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन 2000 का जो रेजोल्यूशन है उस एडिशन के आज का रेजोल्यूशन उसका जिक्र किया गया है, लेकिन चूंकि इसमें

0: 2000 के रेजोल्यूशन का जो बात की गई है उसको लेकर राजनीति गर्मा गई है और विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई कि ऑटोनॉमी का राग क्यों अलापा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बाद में
1: बात तो यही है कि देखिए एकाएक लगातार इस प्रस्ताव के लाने का क्या मतलब है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आगे आगे
4: करेक्ट।
5: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैडी, I need to open a savings account.
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक?
3: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
2: ओके
3: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: बिजली का बिल पेड
4: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
5: इतना माही वे।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार रोटी थमका लगाने बस बाई गॉड मजा आ जाएगा।
5: अब पर वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
8: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: ओ नादान परिंदे बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
11: तो कौन सी बनानी है?
12: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
13: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
14: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
15: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
16: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
13: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
17: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
18: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर।
13: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: खूटी बेलगाम, बढ़ गया घमासान। सऊदी अरब पर हमले लगातार, अब आर पार। यानबू और ताइफ पर हमलों की बौछार। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से वार, कई शहरों में प्रहार। ईरान ने हूतियों से झाड़ा पल्ला, अब मचेगा हल्ला। कई खाड़ी देश आए साथ, सऊदी अरब की मदद को बढ़ाए हाथ। फ्रांस का बड़ा ऐलान, हूती के खिलाफ छेड़ेगा बड़ा अभियान। जंग का ये नया मोर्चा सऊदी अरब को अच्छा खासा परेशान कर रहा है, लेकिन अब शुरू हो गई है हूतियों की जबरदस्त घेराबंदी।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रणभूमि। दरअसल एक तरफ तो ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन लगातार लड़ रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी सैन्य मोर्चे पर एक दूसरे के सामने टक्कर लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अचानक जंग का एक मोर्चा सऊदी अरब में भी खुल गया है। वो ना तो सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि खाड़ी पश्चिमी देशों के लिए यूरोप तक के असर डालने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब की एक बड़ी तेल सप्लाई हूतियों के हमले से प्रभावित हो गई है। हूती लगातार सऊदी अरब की राजधानी रियाद और समुद्री सीमा के इलाकों पर मिसाइलें और ड्रोनों से हमले कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इससे सऊदी अरब को भारी नुकसान भी हो रहा है। कई खाड़ी देश सऊदी अरब का साथ देने के लिए आगे भी आए हैं और एक गठबंधन हूतियों के खिलाफ भी तेजी से उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। मुसीबत के इस दौर में सऊदी अरब का सबसे साफ और सटीक साथ देने वाले का ऐलान करने वाला एक देश है फ्रांस, जिसने दो चूक कह दिया है कि वो हूतियों से लड़ने के लिए अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार है। इन्हीं तमाम खबरों के अलावा इस शो में हम आपको पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के बारे में भी बताएंगे। वैसे तो आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की नीति को लगातार आतंकियों को बनाना उसकी नीति बन चुकी है और बार बार इसकी बेइज्जती का सामना भी पाकिस्तान की आदत में शुमार हो चुका है। और इस बार ये बेइज्जती न्यूयॉर्क में एक बार फिर से हुई है, जहां हाफिज सईद जैसे आतंकी के बारे में पूछे जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चुप्पी साधते हुए मुंह छुपाकर वहां से भागते हुए नजर आए। लेकिन ये पाकिस्तान की लगातार आदत का ही में शुमार है, जहां पर पाकिस्तान ऐसा करता भी है और फिर मुंह भी छुपाता है। सबसे पहले आपको सऊदी अरब लिए चलते हैं और वहां से बताते हैं एक बड़ी खबर जो आ रही है सऊदी अरब से, जहां पर तुर्की पाकिस्तान और सऊदी ने ऐलान कर दिया है कि वो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब को मदद देने के लिए तरीकों पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके लिए वो अपने सेना प्रमुखों की एक जरूरी बैठक भी करने जा रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार ये कहा गया है कि न्यूयॉर्क में सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान के साथ एक बैठक की है और बयान में ये बात सामने आई। उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया गया कि सेना प्रमुख कब मिलेंगे, इसको लेकर अभी किसी तरीके की कोई डेट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन किस तरीके से मदद होगी इसको लेकर विचार किया जा रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 7 अगस्त को मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया था और इसी समझौते के तहत तीनों देशों में किसी भी एक देश पर हमला करने की स्थिति पर तीनों देशों पर वो हमला माना जाएगा, इसको लेकर एक करार किया गया था। लेकिन पिछले कई दिनों से हूतियों के सऊदी अरब पर हो रहे हमलों के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस बयान, कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। और इस बीच तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने थोड़ी देर पहले कहा कि सेना प्रमुख जनरल सेलकाक और आपात बैठक में शिरकत करने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। और देखिए इसी बीच कतर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। कतर ने सऊदी अरब के ताइफ और यानबू शहरों पर हूतियों की ओर से किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले को लेकर उसकी कड़ी निंदा की है। एक बयान में कतर की तरफ से कहा गया है कि इन हमलों को निंदनीय और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बताया गया है, साथ ही सऊदी संप्रभुता का खुला उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन भी बताया गया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों और नागरिक सुविधाओं पर हमले को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इन्हें हर हाल में रोका जाना चाहिए। कतर ने सऊदी अरब के साथ पूर्ण समर्थन और एकजुटता को दोहराया। कतर ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब जो भी कदम उठाएगा कतर उसके साथ खड़ा रहेगा। हम आपको बता रहे कि हूती लगातार सऊदी अरब पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ राजधानी रियाद बल्कि कई कोस्टल एरियाज पर लगातार बड़े हमले कर पूरे सऊदी के अंदर कोहराम मचा दिया। चलिए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और बताते हैं कि कैसे सऊदी अरब के एक साथ खड़े होने के लिए उसके साथ कई देश सामने आए हैं, जिसमें खाड़ी के कई देश और यूरोपियन देश भी सामने आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर लगातार सऊदी को समर्थन मिल रहा है, कौन कौन से देश हैं जो लगातार अब सऊदी के साथ खड़ा होना शुरू हो गए। सबसे पहले बात हम फ्रांस की कर लेते हैं। फ्रांस ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपने सेना को भेजने के लिए सऊदी में तैयार है, ताकि हूतियों के इन अटैकों को रोका जा सके। फिर दूसरी बात, मक्का समझौते में कुछ प्रोग्रेस आई है, तीनों देशों की आपात बैठक हुई है और यह कहा गया है कि तीनों देशों के सेना प्रमुख जल्दी मुलाकात करेंगे। कहां मुलाकात करेंगे, कब मुलाकात करेंगे, इसके बारे में ऐलान होना बाकी है। खाड़ी देश लगातार कुवैत बहरीन ने इसकी निंदा किया, जो खबर हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई। इसके अलावा यूएई ने भी ईरानी फ्लाइट्स पर रोक लगा दिया, वो इसलिए क्योंकि हूतियों को एक प्रॉक्सी माना जाता है ईरान का, और लगातार यूएई ने कहा है कि सारे अटैक के पीछे ईरान है, और इसी वजह से ये तीन बड़े कदम, या आप कह सकते हैं उन्होंने उनकी फ्लाइट पर रोक लगा दिया। लेकिन आप देखिए कौन कौन से देश सामने आ गए। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के सदस्यों ने सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान किया। करीबन 6 देश हैं जो लगातार इसके अंदर है, और खास बात यह इन तमाम देशों ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता दिखाई है और ये कहा है कि हम भी सऊदी अरब का साथ देंगे और लगातार जो भी सऊदी अरब कदम उठाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए ये बात जरूर है कि हूतियों के हमले से सऊदी अरब को कई मोर्चों पर परेशान कर दिया है, और इसी बीच एक बड़ी खबर यह कि उसकी समुद्री सरहदों पर मिसाइलें भी दागी जा रही है, उसकी तेल सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, यमन और आसपास उसकी सेनाओं पर विनाशकारी हमले किए जा रहे हैं, जिससे सऊदी अरब को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको बताएगी कि कैसे हूती और सऊदी अरब के बीच संघर्ष की ताजा तस्वीरें भी दिखाएगी, और सऊदी अरब के इन्हें रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाई है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं।
1: सऊदी अरब पर हूतियों के लगातार हमले, रियाद और अरामको में मिसाइल अटैक, हूतियों का दावा भारी नुकसान, सऊदी ने कहा हमला नाकाम। हर बीते दिन के साथ साथ हूती और भी आक्रामक होते जा रहे हैं। एक बार फिर हूतियों ने सऊदी अरब के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया है। इन हमलों में राजधानी रियाद के संवेदनशील ठिकाने और लाल सागर के बंदरगाह शहर यानबू में सऊदी अरामको की पेट्रोलियम सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है।

0: वैसे सऊदी अधिकारियों का दावा है कि ताइफ और यांगू समेत कई इलाकों की ओर दागी गई 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया गया है। लेकिन हूती लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके हाल के हमलों ने सऊदी अरब को सैन्य तौर पर भारी नुकसान पहुंचाया है।
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ، فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان.
0: इन हमलों को बैलिस्टिक मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन से अंजाम दिया गया। यानबू में स्टोरेज टैंक पर बम गिरते ही उनमें आग लग गई, जो तेजी से फैलती चली गई। बाब अल मंदेब के एक बड़े इलाके पर कब्जा करने से शुरू हुआ हूतियों का अभियान तेजी से लाल सागर के तट पर बने अरामको और सऊदी अरब की राजधानी रियाद की ओर बढ़ता जा रहा है। इस बीच सऊदी अरब के शीर्ष धार्मिक गुरु ने सैनिकों को हूतियों के खिलाफ अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहने को कहा है। सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती का कहना है कि सऊदी समर्थित यमनी सरकार को पूरे देश पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। ये बयान सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच हफ्तों से चल रहे मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों के बढ़ने के बाद आया है। मुफ्ती शेख सालेह बिन फौजान का ये संदेश देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए था। इसमें कहा गया कि इस महान राष्ट्र के एक इंच हिस्से पर भी कब्जा करने की कोशिश करने वाले को सजा देना सबसे नेक कामों में से एक है, जिसके लिए जान तक दी जा सकती है। सऊदी अरब और हूतियों के बीच घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हूतियों के बाब अल मंदेब में आगे बढ़ने से सऊदी अरब के लिए तेल की सप्लाई करना मुश्किल हो गया है। ईरान अमेरिका जंग की वजह से हुर्मुज में हाहाकार मचा तो सऊदी अरब की ये सप्लाई चेन कई देशों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी थी, लेकिन हूतियों के लगातार हमलों की वजह से इसे बंद करना पड़ा। हूतियों का साफ कहना है कि जब तक सऊदी अरब यमन की सरहद के पास की गई अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा, उस पर लगातार हमले जारी रहेंगे। लेकिन सऊदी अरब भी चुप नहीं बैठा है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है और अब कूटनीतिक तौर पर भी उसकी सक्रियता बढ़ गई है। वो तीन मोर्चों पर इस काम को तेजी से बढ़ा रहा है। एक तरफ उसने चीन को ईरान से बात करने के लिए कहा है तो दूसरी तरफ खाड़ी के बाकी देशों को अपने साथ लाने की मुहिम पर आगे बढ़ रहा है। तीसरा मोर्चा मक्का समझौते में शामिल पाकिस्तान और तुर्की के सैन्य प्रमुखों के साथ आगे की रणनीति तय करना है। फिलहाल खाड़ी में जंग का एक और मोर्चा खुलने से न सिर्फ मिसाइलों का शोर बढ़ गया है, बल्कि पहले से ही मुसीबतों का सामना कर रहा तेल का बाजार और महंगाई का संकेत देने लगा है। आज तक ब्यूरो।
2: इस समय सऊदी बड़ी आफत में है। एक तरफ हूती लगातार अटैक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी खतरा बरकरार है। लेकिन इस बीच, इन तमाम खबरों के बीच, पेरिस से एक बड़ी खबर यकीन तौर पर सऊदी के लिए एक हौसले बढ़ाने वाली खबर है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने एक ऐलान कर दिया है कि हूतियों से निपटने के लिए फ्रांस अपने सैनिकों को लाल सागर के पास भेजेगा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में सीधे सीधे वो सेना उतारने के हक में नहीं है, लेकिन जिस स्थान से हर रोज जहाज हजारों लीटर तेल की सप्लाई होती है उसकी रक्षा करना फ्रांस का दायित्व है और इसके लिए वो अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार है।
3: Les Saoudites et qui sortait en mer Rouge dans ce qu'on appelle le site de Yanbu. Bon, il a été très abîmé par une attaque des Houthis. Nous nous engageons pour le sécuriser.
4: Avec quels moyens?
3: Et donc aujourd'hui, c'est la discussion que nous avons finalisée avec les Saoudiens. Nous allons envoyer des moyens militaires, c'est-à-dire des soldats, des radars, des systèmes de défense pour protéger ce site. Pas nous engager dans quelques conflits, mais protéger ce site.
5: Pas d'aviation, des rafales?
3: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région. Mais en tout cas, on se met en situation de protéger ce site parce que sortez il y a quelques semaines de là, chaque jour, plus de 5 millions de barils. Bon, donc c'est pas négligeable. Donc
2: जो बात फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कही, उन तथ्यों को हम और तह तक जाकर आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे तेल का यह खेल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहा है, आने वाले संकट की ओर ले जा रहा है। लेकिन आइए मैं आपको बड़ी वॉल पे लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय इस तेल के खेल को लेकर क्या बड़ी बातें, क्या बड़े दावे जो लगातार फ्रांस की तरफ से किए गए, हूतियों ने बिगाड़ा इस तेल का पूरा खेल, ये हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे पिछले 6 महीनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जहां पर ये 34 से 35 किलोमीटर का ये गलियारा इन्होंने पूरी तरीके से बाधित कर दिया और यहां पर ईरान और अमेरिका के बीच में तनातनी ऐसी बनी हुई है कि अभी अमेरिका की डिप्लॉयमेंट यहां गल्फ ऑफ ओमान पर है और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यहां से आवाजाही IRGC ने ईरान ने प्रतिबंधित कर रखी है। ये पूरी दुनिया के अंदर तेल सप्लाई का करीबन 20 से 25% का करीबन यहां पे सप्लाई होती है। अब दूसरी तरफ यहां से कुछ किलोमीटर दूर पर ही यह है बाब अल मंदेब का स्टेट, यानी वो गलियारा जहां से करीबन दुनिया भर के अंदर 10 से 12% की सप्लाई होती है। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो कहा जाता है कि करीबन 35 से 40% की जो सप्लाई लाइन है वो इन दोनों के वजह से बाधित हो चुकी है। यानी यहां पर अब लगातार यहां पर भी अब जो होती है उन्होंने इन पोर्ट्स को, इस गलियारे को चोक कर दिया है और माना जाता है कि अमूमन यहां से जो 70 से 80 टैंकर्स गुजरते थे वो मात्र करीबन 5 से 6 रह गए हैं। अब अगर आप देखें कहां कहां पर ये समय है, 1200 किलोमीटर पाइपलाइन हर रोज 4 मिलियन बैरल, यानी ये वो पाइपलाइन है, यानी इन दोनों रूट्स के अलावा ये वो पाइपलाइन थी जो लगातार ईस्ट वेस्ट, जिसको बाईलाइन हम कहते थे सऊदी के लिए, और इसके ऊपर भी हूतियों ने अटैक कर दिया। यहां तक कि यहां से बैठे हुए हूती लगातार 2 से 3 हजार किलोमीटर दूर, 2 से 2.5 हजार किलोमीटर ना सिर्फ सऊदी के इन इलाकों में जानबू के अंदर बल्कि अब वो सीधे तौर पर रियाद तक अटैक करने में सक्षम है। और ये वो ड्रोन्स हैं जो लगातार हूतियों ने असेंबल कर ईरान की मदद से असेंबल कर अटैक करने शुरू कर दिया। और अगर आप देखें इन तमाम परिस्थितियों को आप देखें, और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट सीरिया और इराक, सीरिया और इराक से भी लगातार जो मिलिशिया हैं, जो समर्थित ईरान के समर्थित गुट हैं, वो भी सऊदी पर ही अटैक कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर सऊदी को डिस्टर्ब कर दिया तो पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर दिया। और यही वजह है कि अब इस समय सबका टारगेट, इस समय ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सीज का टारगेट इस समय सऊदी अरब बना हुआ है। लेकिन सऊदी के लिए अच्छी बात यह रही कि ना सिर्फ फ्रांस की तरफ से इसका ऐलान किया गया बल्कि फ्रांस ने मदद का ऐलान भी किया है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान ने साफ कह दिया है कि हूती किसी से कोई आदेश नहीं लेते और हमारा उनके हमलों से कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि हूती अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार है और हमसे कोई निर्देश वो नहीं लेते। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती को लेकर। दरअसल आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पत्रकारों के सवालों से बचते मुंह छिपाते हुए नजर आए। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आतंकवाद को लेकर सवाल किया तो शहबाज शरीफ ने जवाब देने के इनकार कर दिया और आगे निकल गए। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ ऐसी तस्वीरें पहले भी कई बार आई है, प्रधानमंत्री लगातार पाकिस्तान के बदलते हैं लेकिन उनका रवैया, उनका मुंह छिपाने का ये तरीका हमेशा से ऐसा ही रहता है।
4: Minister, when will you prosecute Hafiz Saeed? When will you prosecute Hafiz Saeed? Prime Minister, when will you stop harboring terrorists?
2: पाकिस्तान से पूछा गया लेकिन पाकिस्तान अपनी ही बीमारी का इलाज क्यों करेगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक वरदान। चलिए आज रणभूमि में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: बिजली का बिल पेड़
8: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
9: कैसे?
8: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
9: इतना माही वे।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक दो टूटी थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
9: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है।
11: मेरे पास एक आइडिया।
10: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
11: ये ऐड को झेलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
13: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
14: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
15: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
13: आई लाइक दिस ओनली।
16: एसआईआर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने अपने डिजिटल सिस्टम ईसीआई नेट को लेकर सफाई दी है। इसी के मुताबिक ईसीआई नेट एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी चुनाव से जुड़े जरूरी और कानूनी फैसले फील्ड में मौजूद अधिकारियों के पास ही रहते हैं। बीएलओ से लेकर एईआरओ, ईआरओ, डीईओ और सीईओ तक हर अधिकारी अपनी अलग आईडी और पासवर्ड से काम करता है। आयोग का कहना है कि दिल्ली में बैठे किसी अधिकारी के पास इनकी जगह वैधानिक फैसला लेने का अधिकार नहीं है। ये सफाई उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें चुनावी डेटा के सेंट्रलाइजेशन और सिस्टम एक्सेस को लेकर चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की बात कही गई थी। यहाँ एसआईआर के दौरान 97 ऐसे मतदाता पाए गए जिन्हें अधिकारी पात्र मान चुके थे, लेकिन सॉफ्टवेयर में उनके नाम वापस जोड़ने का विकल्प नहीं था। सीईओ गोवा के मुताबिक इन मामलों में बीएलओज ने घर घर जाकर अलग से प्रोसेस किया, कई नाम शामिल किए जा चुके हैं और बाकी मामलों पर काम जारी है। आयोग का कहना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटेगा नहीं। वहीं फॉर्म 6 के साथ मांगे गए अतिरिक्त डिक्लेरेशन पर भी इसी ने सफाई दी है। आयोग के मुताबिक इसे एसआईआर के आदेश में उसकी मंजूरी के बाद शामिल किया गया था और फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: I have come today to the Parliament Street Police Station and given a complaint to the police station here against Chor Gyanesh Kumar, Gyanesh Chor Kumar, the sorry figure who is the Chief Election Commissioner of this country. And apparently he enjoys immunity under the CEC and EC Act of 2023, Section 16, which says that the election commissioners enjoy immunity from civil and criminal prosecution.
1: ये लोग चुनाव आयोग में निर्वाचन सदन में लोकतंत्र का स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का स्लॉटर हाउस, कत्तल खाना बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसका मुखिया है ज्ञानेश कुमार। ये हमने नहीं कहा, और दो चुनाव आयुक्त है, सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी, ये दो जो लोग हैं, देश उनका आभारी रहेगा हमेशा, ये बात सामने लाई है और हमारी बातों को पुष्टि मिले उससे। ये स्लॉटर हाउस चला रहा है, ये माफिया है, अभी का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो माफिया है।
2: मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, जहां पर डेलिब्रेशंस हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले ही छंद में, अपने पहले ही पैराग्राफ में एक बात बड़े स्पष्टता के साथ लिख दिया है, सारे ऑफिशियल डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन होने के बाद अंततो गत्वा एट द एंड SIR जो हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, वो यूनानिमिटी के साथ हुआ, अर्थात हम सब ने, तीनों कमिश्नर उसमें यूनानिमस थे, उसमें किसी प्रकार का मतांतर, मतभेद, मनांतर नहीं था, दे वर ऑल ऑन द सेम पेज।
3: माननीय सीसी ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया, जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया, उन्होंने चुनाव आयोग को हाईजैक करके अपने कॉलीग्स को एक प्रकार से उसमें सर्व करने से अलग कर दिया, उन्होंने अपने खुद के ईसीस को हाईजैक कर दिया। ये एक आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण है, तो बाहरी बुलडोजर और आंतरिक बुलडोजर किस प्रकार से पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, उसका यह बहुत घिनौना एक उदाहरण है, और विशेष रूप से घिनौना है एक संवैधानिक संस्था के लिए। सभी संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, स्टैट्यूटरी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण उतनी ही होती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं एक स्पेशल स्टेटस रखती हैं।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता से लेकर चंडीगढ़, गुवाहाटी तक चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। कहीं पानी की बौछारें तो कहीं हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। चुनाव आयोग पर उठते सवालों और विपक्ष के सामूहिक हल्लाबोल के बाद एनडीए से आई आवाज। चिराग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुनाव आयोग को हर शंका को दूर करने की दी सलाह। ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक मंच पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी। लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की महत्वाकांक्षी मुहिम। रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा पर कांग्रेस में खलबली। अजय राय बोले, हम भी जा सकते हैं कन्नौज और इटावा। पूछा, क्या बीजेपी की जगह राहुल गांधी को ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश? अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से हो रही है गणपति बाप्पा की विदाई। मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी चौकस, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी, देर रात तक चलेगा विसर्जन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल चुनाव आयोग के नाम पर चल रही राजनीति को लेकर है। दो दिन पहले अखबार के खुलासे पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर संगीन सवाल खड़े किए। पूरा विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है और चुनाव ठीक नहीं हो रहे हैं। पूरे विपक्ष ने मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान चलाने की बात भी कही है, लेकिन आज के प्रोटेस्ट में सड़क पर सिर्फ कांग्रेस ही नजर आई है। और मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस इतनी कन्विंस्ड है कि अब नए दो और आरोप मीडिया में आए रिपोर्ट्स के हवाले से लगाए गए हैं। पहला आरोप कांग्रेस का यह कहना है कि चुनाव आयोग ने वीआईपी और सामान्य वोटर के दो वर्ग बना दिए हैं। दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि 2024 के बाद नए वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में नहीं दाखिल हो पा रहा है। चुनाव आयोग के अंदर के कामकाज को लेकर हुए खुलासों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां ज्ञानेश कुमार के लिए जो फैसले लिए गए हैं उसे रद्द करने, फॉर्म नंबर 6 को बिना संलग्न प्रपत्र यानी कोई एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन के बिना लागू कराने और 13 करोड़ वोटर के नाम काटे जाने पर एसआईटी जांच की मांग भी की गई है। मतलब यह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ आरोपों का पैंडोराज बॉक्स खुल गया है। रोज नए आरोप, रोज नए खुलासे, रोज नए दावे किए जा रहे हैं। उधर चुनाव आयोग है कि सीधे सीधे चुप्पी साधे हुए हैं। चुनाव आयोग के डिप्टी डायरेक्टर के एक प्रेस नोट के अलावा जो परसों निकाला गया था, कोई और बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। आयोग फॉर्म 6 में किसी बदलाव के आरोपों को गलत बता रहा है, लेकिन उसके साथ एनेक्स्चर जो मांगा जा रहा है, हलफनामे की संवैधानिकता पर वैधानिकता पर चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि अब तो केंद्रीय मंत्री यानी एनडीए के भीतर से आवाज आने लगी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को सामने आकर पूरा मामला क्लियर करना चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव आयोग की चुप्पी का आखिर मकसद क्या है? विपक्ष और कांग्रेस अब आगे क्या करने वाले हैं? और अब एक नया फैक्टर जो जंतर मंतर के बाद वजूद में आया है, उसकी भी बात करेंगे कि 48 घंटे का अल्टीमेटम कल खत्म होगा तो रविवार से उनका भी क्या प्लान होगा। आरोपों से लेकर अफवाहों तक हम तमाम चर्चा करेंगे। विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं।
2: चुनाव आयोग के अंदर कामकाज के तौर तरीकों को लेकर अखबार के खुलासे में संगीन सवाल उठे तो राहुल गांधी ने घंटे डेढ़ घंटे तक मौजूदा हुकूमत पर धुआंधार प्रहार किए। दूसरे ही दिन कांग्रेस सड़क पर थी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, एमपी से लेकर हरियाणा तक, पंजाब से लेकर बंगाल और असम तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए।
3: एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया।
4: बताइए चुनाव आयोग की सत्ता कैसे चोरी करा रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के अलावा मजबूती के साथ इस बात को किसी ने नहीं उठाया।
2: वैसे अखबारी खुलासे से मची सियासी सनसनी में देश के तकरीबन तमाम विपक्षी दलों ने वोट चोरी, चुनाव चोरी, पार्टी चोरी, सरकार चोरी के आरोपों की बौछार कर दी थी और मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के दावे तक किए थे। लेकिन सड़क पर प्रदर्शन की बारी आई तो कुल जमा तीन जगह प्रदर्शन दिखा। एक कांग्रेस का प्रदर्शन जो देश के कई हिस्सों में हुआ, दूसरा पटना में आरजेडी का प्रदर्शन जिसमें तेजस्वी तो छोड़िए प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं आए, तीसरा जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रदर्शन जिसमें एनसी विधायकों ने तख्तियां दिखाई। और ये तब था जब खुलासे के फौरन बाद ममता से लेकर उद्धव तक और तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक सब दावा कर रहे थे कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी के खिलाफ पहली शिकायत उनकी ही थी।
3: होता है ना, आई टोल्ड यू सो, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, वो एक मोमेंट आता है राहुल जी की लाइफ में, वो मोमेंट बार बार आ रहा है, वो हर चीज वो पहले बता चुके हैं ये हो रहा है।
4: जिस तरीके से सीरीज के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताई चुनाव आयोग की सत्यता कैसे चोरी करा रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के अलावा मजबूती के साथ इस बात को किसी ने नहीं उठाया।
5: सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात रखी थी।
2: क्रेडिट की होड़ ऐसी है कि चुनाव आयोग वाले मसले पर अखिलेश यशवंत सिन्हा तक को समर्थन देने की बात करते हैं, लेकिन भूले से भी राहुल और कांग्रेस का नाम नहीं लेते।
5: फोन आया था देश के बहुत वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा जी का, वो भी अपने गांव से यात्रा लेकर के निकलना चाहते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, हमने उनको भी पूरा समर्थन दिया है।
2: ये और बात है कि जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा था तो अखिलेश के एक भी समाजवादी सिपाही सड़क पर नहीं दिखे। अखबार के खुलासे और कांग्रेस के आरोपों के बाद से अभी तक चुनाव आयोग ने सिवाय एक प्रेस नोट के एक शब्द तक नहीं कहा है, जबकि कांग्रेस की ओर से आरोपों की बौछार हो रही है।
3: वीआईपी दर्शन होते हैं, वीआईपी लेन्स होती हैं, बहुत कुछ हमने देखा, वीआईपी की अलग ट्रैक होता है, सब कुछ देखा, लेकिन मतदाता वीआईपी हमने कभी नहीं देखे। अब ये गुप्ता जी क्या क्या करके जाएंगे और कब जाएंगे भाई।
2: कांग्रेस पार्टी ने इस दौरान दो नए आरोप आयोग पर लगाए, जिसमें एक तो ये कहा कि ज्ञानेश कुमार ने 2024 के बाद से नौजवान वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना बंद कर दिया है, दूसरा ये कि वोटर और वीआईपी वोटर में भेदभाव हो रहा है। डिजिटल मीडिया और अखबार की रिपोर्ट के हवाले से फिर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि सरकार वोटर और वीआईपी वोटर का भेदभाव कर रही है।
3: वीआईपी दर्शन होते हैं, वीआईपी लेन्स होती हैं, बहुत कुछ हमने देखा, वीआईपी की अलग ट्रैक होता है, सब कुछ देखा, लेकिन मतदाता वीआईपी हमने कभी नहीं देखे। अब ये गुप्ता जी क्या क्या करके जाएंगे और कब जाएंगे भाई।
2: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अलग अलग डिजिटल मीडिया और अखबारों ने दिल्ली की तहकीकात के हिसाब से रिपोर्ट किया है कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर मार्क करने का विशेष प्रावधान किया गया है और वीआईपी वोटर्स और सामान्य वोटर्स से दस्तावेज देने में बीएलओ भेदभाव कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे तमाम वीडियो डाले जिसमें बीएलओ आम लोगों के घर जाकर दस्तावेज लेने दिख रहे हैं। दरअसल वीआईपी वोटर वाले आरोपों के पीछे की कहानी ये है कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के दौरान विशिष्ट लोगों की पहचान का प्रावधान काफी पहले से है। 2023 के मैनुअल में भी पेज नंबर 94 पर साफ लिखा है कि जनप्रतिनिधि और विशिष्ट लोगों के नाम को फ्लैग किया जाए। पहले से चले आ रहे ऐसे प्रावधान को डिजिटल रूप में पहली बार देखा जा रहा है, लिहाजा सवाल उठाए जा रहे हैं।
6: So will there be a point? So will there be a point that you'll boycott the elections? Will it come to that? That you'll have to boycott the elections?
7: Thank you. Thank you very much.
8: Thank you. Thank you.
7: Distraction में नहीं जाऊँगा. I'll avoid the distraction. But thank you.
6: Impeachment.
7: Thank you. Thank you very much. Ma'am, please.
2: तो राहुल चुनाव बहिष्कार के स्तर तक विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ज्ञानेश कुमार के सभी फैसलों को गैर कानूनी घोषित किया जाए और मूल फॉर्म 6 को बहाल किया जाए, SIT जांच हो कि 13 करोड़ वोटरों के नाम कैसे हटाए गए। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार, IAS मनीष गर्ग, डिप्टी EC और ECI की IT हेड सीमा खन्ना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
9: चुनाव आयोग
8: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे।
2: हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष के नए आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये बता चुका है कि 2025 में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने के बाद से अब तक 18 से 28 वर्ष के आयु वर्ग यानी जेन जी के लगभग 2.73 करोड़ नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा चुके हैं। जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार जेन जी वोटर्स को वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब तक 20 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। 13 करोड़ मतदाताओं के नाम इसमें से कट चुके हैं। इसमें से कितने घुसपैठिए निकले, क्या इस पूरे मामले पर आगे होगा, तमाम बातें इसको लेकर हो रही है। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष की पूरी तरीके से नजर आ रही है और उन पर जिस तरीके से अटैक हो रहा है, पूरी चर्चा उसके आसपास सीमित होती जा रही है। उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा शामिल होंगी, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से और निशा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगी। लेकिन हम विशेष चर्चा सबसे पहले अभिजीत दीप के जो कन्वीनर है कांग्रेस जनता पार्टी के, क्योंकि 2 तारीख से 2 अक्टूबर से वो आंदोलन छेड़ने वाले हैं, तो उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे। लेकिन 3 सवाल मैं दरअसल सबके सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या आरोपों अफवाहों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 आयुक्तों को बयान अब देना चाहिए, क्योंकि अब उसकी मांग उठ रही है, क्यों नहीं अपनी भूमिका इस पर साफ कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ जोड़ा गया हलफनामा भी संवैधानिक वैधानिक माना जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है। और तीसरा, क्या चुनाव आयोग पर आरोपों के मामले में विपक्षी गठबंधन में क्या एकजुटता दिखाई देगी, क्या इस वक्त यह एकजुटता नहीं है। 3 सवाल है, लेकिन शुरुआत करते हैं अभिजीत दीप के। अभिजीत, 2 अक्टूबर से आपने घोषणा की है कि आप आंदोलन की शुरुआत करेंगे, क्या हम ये पूछ सकते हैं कि आपकी स्पेसिफिक मांग है इस पूरे मामले को लेकर, और आपका ये कहना है कि किसी भी हालत में ज्ञानेश कुमार को जाना होगा, और अगर ज्ञानेश कुमार 48 घंटे में नहीं जाएंगे तो आप सड़क पर उतरेंगे।
9: जी सर बिल्कुल, अगर ज्ञानेश कुमार रिजाइन नहीं करते तो हम एक मास एजिटेशन शुरू करेंगे जो कंट्री वाइड होगा। उसकी शुरुआत हम मुंबई से करेंगे। और ज्ञानेश कुमार को क्यों जाना चाहिए, लोकसभा इलेक्शन में जैसे ही बीजेपी मेजोरिटी के नीचे आ जाती है, एक पैनिक बटन प्रेस होता है। उस पैनिक बटन के बाद देश भर में 13 करोड़ वोट डिलीट हो जाते हैं। अगर हम याद करेंगे लोकसभा इलेक्शन, तो वहां पर बीजेपी और अपोजिशन का जो डिफरेंस था वो बस 2% का था। अब ये 13 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर्स में से लगभग 13 से 14% वोटर्स बनते हैं। तो ये 13-14% वोट अगर हट जाएंगे तो इससे फायदा किसको होगा, और हम देख रहे हैं जहां जहां वोट डिलीट हो रहे हैं वहां फायदा किसको हो रहा है, वहां फायदा क्लियरली बीजेपी को हो रहा है। अगर हम ये मानकर भी चले कि बीजेपी का और वोट डिलीशन का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन बहुत ही इंडिपेंडेंटली बहुत न्यूट्रल तरीके से काम कर रहा है, तो फिर भी उसके बाद जहां जहां वोट डिलीट होता है वहां पर बीजेपी को ही फायदा क्यों होता है। और इसके पीछे एक पैटर्न भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कोई डेटा देता है नहीं, जो वो डेटा रिलीज करते हैं वो मशीन रीडेबल डेटा भी नहीं है। अगर हम पैटर्न नोटिस करेंगे कि 2024 में क्या हुआ था, 2024 में 4-5 बड़े चीफ मिनिस्टर्स ने साथ में आकर कैंपेन करा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उनमें से थे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, पिनाराई विजयन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे। इन लोगों के साथ हुआ क्या है, उद्धव ठाकरे की पहले पार्टी तोड़ी गई, उनके पार्टी का सिंबल किसी और को दिया गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट पर 40,000 वोट डिलीट हो जाते हैं, वो कुछ 4-5,000 वोट से हार जाते हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सीट पर वोट डिलीट होते हैं, वो चुनाव हार जाती है। एमके स्टालिन की सीट पर वोट डिलीट होते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। केरला में वोट डिलीट होते हैं, पिनाराई विजयन अब सीएम नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या ये एक वेल थॉट प्लान था सारे बड़े चीफ मिनिस्टर्स को हराने का, क्योंकि ऐसा तो नहीं मान सकते कि ये एंटी इनकम्बेंसी थी। अगर मान लिया हम एंटी इनकम्बेंसी थी तो ये एंटी इनकम्बेंसी बस वहीं पर क्यों दिखती है जहां पर अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर थे। गुजरात में बीजेपी पिछले 20-25 साल से सत्ता में, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं वेल थॉट प्लान लग रहा है, और इसमें बस इलेक्शन कमीशन नहीं है सर, ये मतलब एक पूरा स्टेप बाय स्टेप जाते ही है। पहली शुरुआत हुई थी एमएलए और एमपी पोच करने से, ईडी सीबीआई को भेजकर एमएलए एमएलए तोड़ो, एमपी तोड़ो, उसके बाद पार्टी तोड़ो, पार्टी पार्टी तोड़ने के बाद इलेक्शन।
0: लेकिन अभिजीत, आज की स्थिति में आप जो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं दिखती, ऐसे कई उदाहरण आपको दिखाई देंगे कि जहां पर एंटी इनकम्बेंसी के वजह से, जैसे कर्नाटक का उदाहरण अगर हम देखें कि जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक जो मैंडेट मिला वो इससे पहले उनको नहीं मिला था, कभी बिहार में कभी ऐसा मैंडेट नहीं मिला था, उसी तरीके से कर्नाटक में भी कभी इस तरीके के मैंडेट कांग्रेस पार्टी को पहले नहीं मिला था जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पर जीती है, या माने केरल के भीतर हमने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी वर्क कर पाई, तमिलनाडु के भीतर हमने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी वर्क कर गई, झारखंड में हमने देखा उसी तरीके से कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते एंटी इनकम्बेंसी नहीं वर्क किया और वहां पर सरकार रिपीट एक तरीके से हुई। तो ये सारे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। आप किस इंफरेंस के आधार पर, क्योंकि फिलहाल तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में बिना ज्ञानेश कुमार का पक्ष जाने या वो अपनी भूमिका रखे बिना सीधे उनका इस्तीफा मांगना या सीधे उनको पद से हटाना, क्योंकि आसान नहीं है उनको हटाना, उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है, उनके खिलाफ महाभियोग लाना पड़ेगा। आपको भी पता है कि यह अधिकार पार्लियामेंट के पास है, सरकार डायरेक्टली उनको नहीं हटा सकती।
9: नहीं सर, बिल्कुल ज्ञानेश कुमार जी का पक्ष हम जानना चाहेंगे। ज्ञानेश कुमार अपना पक्ष रखे तो उनका पक्ष कौन रख रहे हैं? संबित पात्रा रख रहे, सुधांशु त्रिवेदी रख रहे, मतलब ये बहुत ही वियर्ड चीज है कि सवाल किए जा रहे ज्ञानेश कुमार से, जवाब दे रही है बीजेपी, तो यहाँ तो हैंड इन ग्लव्स आप यही पर हो गए। और दूसरा चीज, सही बात है आपकी, कुछ स्टेट से जहां पर अपोजिशन जीता है, लेकिन देखिए अगर हम फिक्सिंग की बात करें, अगर कोई क्रिकेट मैच फिक्स होता है तो उसमें सारे कैचेस ड्रॉप नहीं किए जाते हैं, नो बॉल डालनी तो हर एक बॉल नो बॉल नहीं डाली जाती है, कुछ कैचेस आपको पकड़ने भी पड़ते हैं, कुछ गेंदे आपको अच्छी भी डालनी पड़ती है ताकि मैच लास्ट ओवर तक चला जाए, ताकि लोगों को लगे कि मैच जेन्युइन हो रहा है। तो वो तो इल्यूजन मेंटेन करने के लिए थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना, बस वही चल रहा है।
0: दूसरा एक अहम सवाल यह है, क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि विपक्ष को अब चुनाव पर बहिष्कार डालना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इस बात को मानने को तैयार है, क्योंकि जब राहुल गांधी को कल स्पेसिफिकली पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि यह ध्यान भटकाने के लिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप बहिष्कार करेंगे चुनाव का, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी देखिए पूरे जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है कि किस तरीके से चुनाव हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, क्या आपको लगता है कि बहिष्कार यही एक माध्यम है कि इसके खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है, या डटकर साथ में चुनाव लड़े तो शायद उसका असर एक तरीके से अलग तरीके से दिखाई देगा?
9: सर, अपोजिशन को जो करना है वो तो अपोजिशन फाइनली वही डिसाइड करेंगे। हमें जो ऐसा लगता है कि अगर चुनाव रिग हो रहे हैं, जो बहुत ही एविडेंटली रिग हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो कहीं ना कहीं आप लेजिटिमाइज कर रहे हो उस रिगिंग को, क्योंकि जनता को लगेगा नहीं यार इलेक्शन अपोजिशन लड़ रहा है और देखो क्लोज मैच हो रहा है, 2% का ही गैप था, देखो यार मतलब लास्ट ओवर तक तो मैच जा रहा है, तो मैच देख लेते हैं ना पूरा, तो वो कहीं ना कहीं वो इल्यूजन मेंटेन कर रहा है। वो एक वेकअप कॉल होना चाहिए कि हाँ हमारे देश में चुनाव रिग हो रहे हैं और उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा।
0: नहीं तो क्या होना चाहिए, अगर अगर ज्ञानेश कुमार हट जाते हैं तो आपको लगता है कि चुनाव ठीक तरीके से हो जाएंगे? स्पेसिफिक आपकी डिमांड क्या रहेगी कि क्या चुनाव सीईसी का इस्तीफा किया कराए?
9: ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन वुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि क्लियरली ज्ञानेश कुमार ये अपने मन से तो नहीं कर रहे हैं, उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो ऑर्डर्स किससे मिल रहे हैं वो हम सबको पता है, वो अमित शाह और मोदी जी के इशारों पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद जो एसआईआर का लिस्ट है वो फ्रीज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस लिस्ट के बाद ही हम देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी उतनी सारी सीटें जीत रही है जितने वो पीक मोदी वेव में भी नहीं जीती थी, इतनी सारी सीटें इतने सारे स्टेट्स वो जीत रहे जितना पीक मोदी वेव में भी नहीं जीते थे वो। तो कहीं ना कहीं एसआईआर का जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, वो फ्रीज होना चाहिए, जो पुरानी वोटर लिस्ट थी उस पर करा जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि 13 करोड़ वोटर्स इललेजिटिमेट थे तो क्या इसका मतलब नरेंद्र मोदी आज जो प्रधानमंत्री बने हैं 2024 के इलेक्शन की जीत पर, तो क्या वो भी इललेजिटिमेट वोटर्स से जीते?
0: ठीक, आखिर में आपकी आगे की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि आपने कहा है कि 2 अक्टूबर से आपका आंदोलन शुरू होगा, 48 घंटे की आपकी डेडलाइन थी, तो यह आंदोलन किस तरीके से आप करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में इस बार आप सोच रहे हैं कि आंदोलन करेंगे 2 अक्टूबर से, यानी गांधी जयंती से आप ये आंदोलन शुरू करने की सोच रहे हैं, किस तरीके से आंदोलन?
9: जी बिल्कुल, गांधी जयंती के अवसर पर हम शुरू करेंगे, बिकॉज गांधी जी का एक सिग्निफिकेंस राइज देश में, इज द सोल ऑफ दिस नेशन, और उस दिन से हम इस देश का लोकतंत्र, इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू करेंगे, फॉर फ्री फेयर एंड फेयर इलेक्शन, और जब तक वो अचीव नहीं होता, जब तक ज्ञानेश कुमार रिजाइन नहीं करते हैं, जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं इंश्योर किए जाते हैं, वो आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन हो गया तो उसके बाद हम ये मानकर चले कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रेजिग्नेशन तो उनका बनता है क्योंकि उन्होंने जो करा है उसमें अब बस लोगों का ही वोट नहीं चुराया जा रहा है, जो दो और कमिश्नर से इलेक्शन कमीशन
0: लेकिन अभी जी, वोट चुराया जा रहा है। ये लंबी प्रक्रिया होती है, आपको भी पता है कि कुछ डिमांड्स इमीडिएट डिमांड्स होती है, ये लंबी प्रक्रिया है, रिफॉर्म की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है, चलती रहती है। और चुनाव आयोग में आपको भी पता है कि सालों से बदलाव होते आए तब जाकर कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाने की कोशिश हुई है, उसमें भी हालांकि बदलाव की गुंजाइश अब नजर आ रही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अपॉइंटमेंट को लेकर मामला चलेगा अभी, लेकिन ये तो लंबी प्रक्रिया है ना, क्या तब तक कोई चुनाव नहीं होने चाहिए इस देश में जब तक वो रिफॉर्म की आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक?
9: सर सरकारें रातों रात गिराई जाती है, पार्टियों के सिंबल रातों रात यहाँ के वहां किए जाते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छी चीज करनी होती है तब लंबी प्रक्रिया आती है, लेकिन जैसे ही सरकारें गिरानी है, एमएलए को यहाँ से वहां लेकर जाना है तब तुरंत हो जाता है। सुबह 5 बजे उठकर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम की शपथ ले लेते हैं, तब लंबी प्रक्रिया, तब प्रोसीजर याद नहीं आते। लेकिन जब भी इस देश में कोई अच्छा काम करना होता है तब हमें प्रक्रिया लंबी हो जाती है हमारे देश में।
0: तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक चुनाव का कोई मतलब नहीं है और पार्टियां चुनाव में हिस्सा ना ले, विपक्षी पार्टियां कोई
9: मतलब एक वेकअप कॉल होना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लोगे तो वेकअप कॉल नहीं होगा, लोगों को भी लगेगा नहीं यार चुनाव में वोट करने जाते हैं, और पार्टियों को भी ये लगेगा नहीं यार एक फाइट तो दे देते, फाइट देने का पॉइंट क्या है जब मैच पहले से डिसाइड हो चुका है।
0: ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत दिपके, आपने आज तक से और मुझसे बात की इसके लिए। उम्मीद है कि इस पर चुनाव आयोग किसी ना किसी तरीके से अपनी भूमिका स्पष्ट तरीके से सामने रखे, क्योंकि अब एनडीए के भीतर से भी आवाज आना शुरू हो चुका है। चिराग पासवान कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी इस बारे में कह रहे हैं कि अब उनको अपनी भूमिका रखनी चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल की जरूरत है, ये अब एनडीए के भीतर से भी आवाज उठना शुरू हो चुका है। सिद्धार्थ यादव, क्या आपको नहीं लगता कि एक बार दूध एक मिनट अभिजीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर में?
9: एक लास्ट,
0: उसके बाद चलेंगे सिद्धार्थ के पास।
9: इसके बाद ये लोग चला देंगे कि नहीं ये लोग तो मतलब एनआरकी फैलाने के मूड से, ये हम एनआरकी नहीं फैलाना चाहते, हम डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं। चुनाव देश में होने चाहिए, लोकतंत्र वही है जो जनता चाहती है ना कि जो सरकार चाहती है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोग सरकार चुने ना कि सरकार चुने कौन वोट करेगा कौन वोट नहीं करेगा। चुनाव होने चाहिए, चुनाव एक डेमोक्रेसी में

0: कहीं ना कहीं अब आवाज उठने लगी इस बात को लेकर। पहले तो यह मामला था सिर्फ विपक्ष बनाम बीजेपी कहे या विपक्ष बनाम चुनाव आयोग कहे, बाकी सारा चीज को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एनडीए के भीतर भी इसमें सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि भाई कम से कम तीनों आयुक्तों को सामने आना चाहिए, अपनी भूमिका स्पष्ट रखनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इतने सवाल खड़े होने के बाद कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को सामने आकर इसमें अपनी भूमिका साफ करनी चाहिए, सवालों के जवाब देने चाहिए, ताकि दोबारा इस इंस्टीट्यूशन पर लोगों का भरोसा हो सके?
1: साहिल जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने अभी एक एक्सपर्ट को अपने शो पर इतनी देर बुलवाया, मेरी इच्छा थी कि वो आगे भी रुकते, जवाब भी सुनते तो शायद और बेहतर होता, पर मुझे लगता है कि वो इतनी देर के लिए ही थे। पर उन्होंने कई बातें उठाई, मैं पहले उसका उत्तर देता हूँ फिर आपकी बात का उत्तर दे देता हूँ। जो जिस देश के प्रमुख एक्सपर्ट को आप अभी अपने शो पर बुलवा रहे थे, उन्होंने कहा कि आज चुनाव हमारे देश में फेयर नहीं होते, पहले फेयर होते थे, पहले जैसे होने चाहिए थे। 51 में कांग्रेस ने चुनाव जीता, 57 में कांग्रेस ने चुनाव जीता, 62 में जीता, 67 में जीता, 71 में जीता, 80 में जीता, 84 में जीता, लगातार जीता, तब चुनाव फेयर थे। तीन बार देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुन करके क्या भेज दिया, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा मन पर बढ़ गई कि आपको चुनाव फेयर हो रहे हैं इसके लिए साबित करना है तो आपको चुनाव हारना पड़ेगा। ये पहली बात हो गई, ये कमाल है हमारे देश में। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वोट चोरी की जा रही है, वोट काटे जा रहे हैं, जहां वोट काटे जाते हैं वहां बीजेपी को फायदा मिलता है। बंगाल का ही उदाहरण उठा लीजिए, बंगाल पे बहुत हल्ला हुआ था, जिन 20 सीटों पे सबसे ज्यादा वोट काटे गए उनमें से 13 सीटें टीएमसी जीती, एक सीट कांग्रेस जीती, केवल 6 सीटें हम जीते। तो जहां वोट सबसे ज्यादा काटा गया वहां पर चुनाव जीती टीएमसी। पर नैरेटिव बिल्डिंग के लिए देश के प्रमुख एक्सपर्ट आपके शो पर 20 मिनट आकर के बताएंगे कि कैसे चुनाव अनफेयर हो रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर 70 लाख वोट काटे गए, केरल के अंदर 10 लाख वोट काटे गए, हम नहीं जीते, कोई और जीता, पर वो जीतेंगे, भले ही वोट कटे नहीं कटे उसमें सब कुछ फेयर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ही थे, पर वहां पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केरल में नहीं पूछा जाएगा, तमिलनाडु में नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा जहां पर चुनाव हार दिए जाएंगे। ये जो हमारे देश के लोकतंत्र में आस्था देश के लोगों की है उसको कमजोर करने का जो प्रयत्न है, ये देश के साथ गद्दारी वाला काम है। साहिल जी, आप चुनाव जीत नहीं सकते, जनता आपको साथ दे नहीं सकती, जनता आपको चुनकर भेजना नहीं चाहती, और आप प्रश्न उठाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर, ये गलत है। किसी को कोई आपत्ति है, मैं कहता हूं आपको एक ऑब्जेक्शन है, 10 ऑब्जेक्शन है, इलेक्शन कमीशन के साथ रेस करिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़ा करिए। पर ये मीडिया ट्रायल चला करके मीडिया प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं? आपने 3 बात पूछी 4 बात पूछी, उनमें से मुझे बताइए कौन सी गलत है।
0: सिद्धार्थ जी, मैं आपको स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं अभी इस बात को लेकर, ठीक है? मैंने मुझे पता था कि इसका जवाब इस तरीके से दिया जाएगा, और ये बात ठीक है कि जस्ट बिकॉज कोई चुनाव हार रहा है एंटी इनकम्बेंसी कैसे काम नहीं करी, ऐसे 100 उदाहरण मिल जाएंगे कि जहां पर एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी लोग दोबारा चुनाव जीते हुए हैं, और ये हमने अलग अलग राज्यों में देखा हुआ है, देश में भी कई बार देखा हुआ है, जब सवाल उठता है कि अरे इतना गुस्सा था उसके बावजूद पर्टिकुलर पार्टी चुनाव कैसे जीती है, उसका हम इन्फरेंस लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ठोस सबूत के साथ के सामने नहीं आ सकते। लेकिन ये बात क्या आपको गंभीर नहीं लगती, जो सवाल इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में उठाए गए हैं, जो सवाल इस देश में तमाम विपक्षी पार्टियां, सुन लीजिए प्लीज सिद्धार्थ जी प्लीज, तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार उठाने की कोशिश कर रही है। आप कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चला रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से प्रतिबद्ध है इस पूरे मामले को लेकर कि आप अपनी भूमिका इस पर साफ करें, आप पारदर्शिता के तहत इस पूरे मामले में सामने आए। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वो आजकल कैमरा के सामने हो रहे हैं, कोई भी आम जनता का जनता से व्यक्ति वहां पर सुन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या चल रहा है, चीफ जस्टिस क्या टिप्पणी कर रहे हैं वो सुन सकते हैं। क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उसके जवाब देने के लिए बाध्य है? क्यों उसको देशभक्ति से जोड़ा जा रहा है? ये तो सवाल उठेगा ना सिद्धार्थ जी।
1: साहिल जी बिल्कुल उत्तर देना चाहिए, एक प्रश्न का क्यों 100 प्रश्नों का देना चाहिए। पर आपने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया, 16 बार रायबरेली में कांग्रेस पार्टी जीती तब एंटी इनकम्बेंसी कहां गई थी, 13 बार अमेठी में जीती तब एंटी इनकम्बेंसी कहां गई थी, मैंने लगातार साल बताया जब कांग्रेस पार्टी ने देश में सरकार चलाई थी तब एंटी इनकम्बेंसी कहां गई थी। पर छोड़ दीजिए उस बात को, पॉलिटिकल नैरेटिव है। आपने मेरे से पूछा कि पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी सरकार आने के बाद इलेक्शन कमिश्नर को बनाने में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पैनल का मेंबर है, उससे पहले जिनको मनमोहन जी अच्छे लगते थे उनको उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर बनाया, जिसको राजीव जी पसंद करते थे उसको बनाया, जिसको इंदिरा जी पसंद करती थी उसको बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी जिसको पसंद, कोई पैनल नहीं था साहिल जी, कोई पैनल नहीं था। क्या हम अपने देश की युवा जनरेशन को यह बात छुपा करके, यह बात छुपा, मेरी भी 10 सेकंड बात पूरी हो जाए उसके बाद आप पूरा कर लीजिएगा, क्या ये बात हम अपनी युवा जनरेशन से छुपा करके डिससर्विस नहीं कर रहे हैं? आज देश में लीडर ऑफ

0: पोजीशन भी उस प्रक्रिया का हिस्सा है। और आप ये प्रश्न पूछा जाए, तीसरी बात मैं बोलता हूं, मैं केवल लॉजिक पे बोल रहा हूं, मेरे को इलेक्शन कमीशन का तरफ से बयान या जवाब देना के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, नहीं मैं बोलूंगा, पर मेरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठ रहा है इसलिए मुझे कष्ट है। अरे अगर 10 महीनों में 14 बार किसी ने कोई अपना डिफरिंग ओपिनियन बताया तो इसमें वोट चोरी हो गई, ये इन्फ्लुएंस कहां से निकला? साहिल जी, इन दोनों बातों का लिंक कहां से है?
1: ठीक है,
0: सेक्शन 18 कहता है कि उसमें डिफरिंग ओपिनियन हो सकता है, या तो डिसीजन यूनैनिमस होगा या मेजॉरिटी से होगा।
1: ये मुद्दा सिर्फ डिफरेंस ऑफ, अगर सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उसमें कई और अहम सवाल भी उठाए गए। फॉर्म नंबर 6 को लेकर सवाल उठाए गए, ये भी सवाल उठाया गया है कि बंगाल के भीतर किसने इजाजत दी थी कि 16 लाख एप्लीकेशन आप ट्रिब्यूनल के सामने फाइल करिएगा एक क्लिक पर, एक ही अधिकारी 16 लाख एप्लीकेशन एक साथ बिना स्क्रूटिनी के कैसे फाइल कर रहा है, यह भी सवाल उसमें उठाया गया है। ये भी सवाल उठाया गया है कि फर्स्ट अमंग द इक्वल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्यों? ये भी सवाल उठाया गया है कि दो इलेक्शन कमिश्नर्स ने कैबिनेट सेक्रेटरी को, सुन लीजिए सर, मैं सवाल आपको बता रहा हूं, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मुद्दा नहीं है, दो इलेक्शन कमिश्नर्स कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखते और कहते कि भाई मनमानी तरीके से मामला चल रहा है पूरा इलेक्शन कमीशन के भीतर, और आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस पर आके सामने बात बतानी चाहिए कि भाई ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका हम जवाब देने के लिए तैयार है। पूछिए सवाल जो पूछना।
0: मैंने कहा एक बार प्रश्न पूछिए, 100 बार पूछिए, 100 बार जवाब भी आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। 10 महीने में 40 निर्णय लिए इलेक्शन कमीशन ने, 14 बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नोट करवाया गया, 40 निर्णयों में कोई फॉर्मल डिसेंट नोट नहीं है। मेरे को क्या समझा रहे हैं कांग्रेस वाले लोग आकर के कि वहां पर ये गलत था? अगर सेक्शन 18 2023 के एक्ट का कहता है कि डिसीजन या तो यूनैनिमस होगा या मेजॉरिटी से होगा, दोनों इलेक्शन कमिश्नर अगर खिलाफ थे तो डिसीजन हो ही नहीं सकता, मेजॉरिटी तो वो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी है। और रही बात फॉर्म 6 की,
1: इलेक्शन कमिश्नर की हमें तो पता ही नहीं था।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे?
1: सुखविंदर सिंह संधू यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था।
0: कहां
1: हमें तो पता ही नहीं था कि किस तरीके से, किस तरीके से ईआरआई नेट को केंद्र,
0: आपने कहा सुना?
1: उन्होंने उनका ईमेल जिक्र किया गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि गलत है, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन सामने आके कहता कि जो उस रिपोर्ट पे लिखा गया इंडियन एक्सप्रेस की वो पूरी तरीके से गलत है, हम झुटला रहे उस रिपोर्ट को, क्यों नहीं कहा जाता? देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शमिक भट्टाचार्य सी ज्ञानेश कुमार के लिए पद्म विभूषण की मांग की गई है, और ये मांग कौन कर रहा है? ये मांग कौन कर रहा है? शमिक भट्टाचार्य जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है, उनका ये, उनकी ये मांग है, उनकी ये मांग है कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें पद्म भूषण दिया जाए, पद्म विभूषण दिया जाए, पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण दिया जाए। सुनते वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद डॉली शर्मा प्रतिक्रिया, पहले बाइट सुनाते वो क्या कह रहे हैं।
2: नहीं मानता कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं? ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है कि इतना दिन बाद इंटिमिडेशन का बाहर ला करके कोई भी हत्या की घटना नहीं, लोगों को वोट डालने दिया गया।
1: डॉली शर्मा जी, पद्म भूषण की मांग की जा रही है,
3: सभी को नमस्कार। देखिए
1: डॉली शर्मा जी, आवाज
3: जी, जी आपको आ रही है मेरी आवाज?
1: जी जी आ रही है, आ रही है।
3: जी सभी को नमस्कार, और मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए पद्म विभूषण की मांग असल में कर कौन रहा है? यहाँ चुनाव जीतने या हारने की बात नहीं है। लगातार राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि संविधान की हत्या की जा रही, कैसे? जब देश का नागरिक वोट ही नहीं दे पा रहा। मैं आज एक रिपोर्ट देख रही थी, एक बूढ़े बुजुर्ग थे दिल्ली के रहने वाले, वो ये कह रहे थे कि मैं जिंदा हूं, ये मेरा घर है, और मुझे वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मेरे परिवार ने यह कहा कि वो है नहीं, बाहर गए हुए हैं। और उन्होंने बताया कि भाई ये फॉर्म में भर के मुझे ना फॉर्म भरवाया न कुछ किया, बस डेड डिक्लेयर कर दिया। किस चुनाव आयोग के किस अधिकारी को ये हक मिल गया कि एक जिंदा व्यक्ति को आप मृत बता दो? आप ऐसे ही देश के करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान के चुनाव आयोग में बैठे ज्ञानेश कुमार जी ने मृत घोषित कर दिया अपनी मर्जी से, और ये कितना बड़ा अपराध है हिंदुस्तान में ये आप सब जानते हैं। और लगातार ये जो बहस हो रही है, और ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया, ये जो चुनाव आयोग में बैठे दो लोग कह रहे हैं, वो भी चुनाव आयुक्त है, और वो भी यही कह रहे हैं कि किसने आपको, उन्होंने कितनी बार ऑब्जेक्शन दाखिल किया, 17 बार उन्होंने बार बार कहा गलत हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी ने समझा कि वो तो भगवान से ऊपर हो गए, हिंदुस्तान के देश में बैठे लोगों की किस्मत लिखने और गढ़ने लगने। अभी तक कौन जिंदा कौन मर गया ये भगवान के हाथ में था, मौत तो किसी के हाथ में नहीं थी, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने तय कर दिया कि जिंदा व्यक्ति को कैसे मारा जा सकता है, वोट देने का अधिकार कैसे छीना जा सकता है, और जो जिंदा है उसे डिलीट कर दो। मतलब ये बटन तो आज तक सिर्फ भगवान के हाथ में था जो ज्ञानेश कुमार जी ने ले लिया। अब यही लड़ाई चारों तरफ हो रही है कि भाई आपको किसने ये हक दिया, और आए ज्ञानेश कुमार जी जवाब दे पूरी जनता को। राहुल गांधी जी ने पूरे देश को कल हकीकत बताई, हम मांगते हैं जवाब चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये पता नहीं चलता कि इनका कितना नहीं,
1: मुझे
3: कितना
1: लेकिन लेकिन डॉली जी इस मैं चुनाव आयोग पर कई सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से की, बिहार के भीतर अलग प्रक्रिया थी, बंगाल के भीतर अलग प्रक्रिया थी, दिल्ली के भीतर अलग प्रक्रिया है, दिल्ली के भीतर तो अब VIP टैगिंग हो सकता है BLO के मोबाइल से, उनके पास वो सॉफ्टवेयर में वो सुविधा दी गई है, तमाम तरीके के सवाल उस पर उठ रहे हैं। ठीक है, मैं भी बंगाल में गया था, मैंने भी देखा SIR की प्रक्रिया किस तरीके से चलाई जा रही थी, लेकिन मुझे इस बात का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, ये इन्फ्लुएंस आप कहां से निकाल रहे हैं और राहुल गांधी कहां से निकाल रहे हैं कि कहीं पर एंटी इनकंबेंसी कैसे नहीं दिखती, इसका क्या लॉजिक हो गया? आज गुजरात का उदाहरण उन्होंने दिया, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, गुजरात में पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने तब जीता था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने दो बार चुनाव जीते 2007-2012 के, जब UPA की सरकार केंद्र में बैठी थी। तो मतलब मुझे इस बात का लॉजिक मुझे समझाइएगा। मुझे याद है महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP की सरकार, 2009 में टेरर अटैक होता है 2008 में, और उसके बाद मुंबई की 6 की 6 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीत जाती है 2009 के लोकसभा चुनाव में। भाई तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया था, तो मुझे यह समझना है कि एंटी इनकंबेंसी का क्या लॉजिक है। भाई लोगों को लगता है कि यह पार्टी सत्ता में रहने के लिए लायक है, उसको कई बार वोट दे देते हैं। SIR की प्रक्रिया पर सवाल अलग है, मैं आपकी बात उस बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं इस बात का लॉजिक समझना चाह रहा हूं आपसे।
3: साहिल जी, जब देश में भुखमरी बढ़ रही हो, जब देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, जब देश का युवा पेपर लीक झेल रहा हो और आत्महत्या कर रहा हो, जब बिहार में बेटियों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, बच्चे बदतर पूरे देश में हो रही है, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया, मुझे एक बात बताइए, इतनी सारे ऑब्जेक्शन जब बंगाल से फाइल हुए उसके बाद क्या जल्दी थी चुनाव कराने की? आप उन ऑब्जेक्शन का जवाब देते, वेट करते, आप एक एक मतदाता को वेरीफाई करते कि वो है हिंदुस्तान का नागरिक या नहीं है, या जो भी है घुसपैठी है उसपैठी है, जो भी इन्होंने चलाई प्रोपोगंडा, उन सब चीजों का आप अच्छे से उनकी जांच करते और उसके बाद आप लिस्ट से फाइनल करते। आज आप देखिए ना, जो मतदाता तब इन्होंने डिलीट कर दिए, आज उन मतदाताओं को कोर्ट ने कह दिया कि ये तो वैलिड है, अब लेकिन उनका क्या होगा, उनका वोट का हक तो आपने छीन लिया और बंगाल में आपने बिठा दी एक सरकार।
1: बंगाल पर सवाल उठ रहे हैं ना,
3: हाईजैक नहीं है महाराष्ट्र क्या?
1: बंगाल पर जो सवाल उठ रहे हैं ना सिद्धार्थ यादव, वो इसी के वजह से उठ रहे हैं। 93% का रेट है वहां पर कि दोबारा उन मतदाताओं को मंजूरी दी जा रही है, 93% का रेट है। और जल्दी से आपकी भी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए, देखिए पश्चिम बंगाल के आपके ही अध्यक्ष कह रहे हैं कि पद्म भूषण दे दीजिएगा, यहां पर बात हो रही है कि वो आके सफाई दे और वो कह रहे हैं कि पद्म भूषण दे दीजिएगा, फिर तो जोड़ा जाएगा ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो जाएगी जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतनी बड़ी लामबंदी चल रही है पूरे देश में, सवाल उठाए जा रहे हैं उनके।
0: देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात तो यह कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ वो ये SIR की एक्सरसाइज के बाद ही हुआ, पहली बार हुआ, और वो इसलिए हो पाया क्योंकि चुनाव फ्री एंड फेयर था, भय से दूर था। पूरी SIR की प्रोसेस, एक एक वोट कटने की प्रोसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में हुई। तो डॉली जी को कुछ कहना है तो उस कोर्ट में खड़े होकर जो इनके वकील कह रहे थे उनसे ज्यादा वहां पर बात चल रही थी, पर जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कोई एक्सरसाइज होती है देश के अंदर और एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है तो मुझे नहीं लगता उस पर प्रश्न उठाने चाहिए। पर मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं साहिल जी, हमको कह दिया जाए कि आप तो जवाब दीजिए मत, और ये कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार तो कुछ कर नहीं रहे, अभी दिपके आपके शो पर कह के गए ये तो मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पर हो रहा है, वाह भाई वाह। कोई जवाब ना दिया जाए, हम प्रश्न उठाएंगे उत्तर कोई देगा नहीं, हम प्रश्न उठाएंगे तो पीछे कोई आएगा नहीं।
1: लॉजिक कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने,
0: नहीं उन्होंने सारे आरोप हम पर, सारी बातें हम पर और जवाब कोई दे नहीं। लॉजिक हमारे सामने रखा है, मैं लॉजिक पर जवाब दे रहा हूं। मैं मेरे को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
1: पर प्रश्न यह है कि
0: इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न नहीं है, प्रश्न है देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। झूठ का ताना बाना बुन करके आप देश की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, अपनी हार का मुखौटा छुपाना चाहते हैं। जो रॉकेट लॉन्च नहीं हो पा रहा है, 100 से अधिक चुनाव जो लोग हार रहे हैं वो अपनी हार को छुपा रहे हैं।
1: अगर सरकार और चुनाव आयोग को अलग अलग चश्मे से देखना है तो यह बात भी जरूरी है कि चुनाव आयोग को अपनी भूमिका सामने आकर रखनी चाहिए। मैंने इसलिए जिक्र किया कि आजकल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी फुल कैमरा के सामने होती है, यूट्यूब पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के भीतर क्या चल रहा है वो अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। गणेश तिवारी, आपकी भूमिका रखिए इस पर सबसे पहले, और उसके बाद निशा चौधरी
4: जी, आपको, दर्शकों को और पैनलिस्ट को। सर्वप्रथम, ज्ञानेश गुप्ता कौन है? ये अमित शाह का दाहिना हाथ है। इस बात को आपका कोई भी दर्शक गूगल करेगा तो समझ जाएगा। ये इसने 6 साल अमित शाह के साथ काम किया, हैंडपिक्ड आदमी है। कैसे हैंडपिक किया गया? केवल इसी में नहीं, इससे पहले जो राम मंदिर में जहां पे इन्होंने चढ़ावा चोरी की वहां पे भी इसे हैंडपिक किया गया।
1: इसके पहले के भी तो इलेक्शन कमिश्नर रहे, वो कहीं ना कहीं सरकार में किसी ना किसी के साथ काम कर चुके हैं। नवीन चावला से लेकर कई उदाहरण उसके सामने रखे जाएंगे। टीएन शेषन कहां काम कर चुके, हर कोई
4: आधा अधूरा तर्क मत।
1: हाँ जी, घनश्याम जी बोलिए।
4: पहली बात
0: जिनको
4: बीजेपी का इनसाइड मैन है, जो उसका करियर है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे संविधान के हिसाब से एक व्यक्ति का वोट काटना गुनाह है, उससे उसका वोट छीना गुनाह है। सिद्धार्थ यादव 13 साल के लिए अपना वोट दे सकते हैं? किसी को हिम्मत है इतना सेक्रीफाइस करेंगे? इन्होंने देश के 13 करोड़ मतदाताओं का वोट छीना है। इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा अपराध तो देश में कोई सोच नहीं सकता। और यह अपराध किसने किया? उस व्यक्ति को, उस ज्ञानेश गुप्ता ने किया, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने हैंडपिक किया। हैंडपिक कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उस कमेटी का हिस्सा होने चाहिए। सभी ने कहा कि नहीं, अगर आपने ये नहीं किया तो इसका मतलब आप किसी को भी हैंडपिक कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे व्यक्ति को हैंडपिक किया। क्यों किया? जब 2024 में अमित शाह को पता चला कि 400 पार तो नहीं होने वाले, सरकार भी नहीं बन सकती, प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हारते हारते बचे थे, तो इन्होंने तय किया कि अब वोटर सरकार नहीं करते करेंगे, सरकार तय करेगी कौन वोटर है। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे,
1: बिहार समाजवादी पार्टी सड़क पर क्यों नहीं दिखाई दी लखनऊ में जब कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रदर्शन कर रही थी? तो आपने सबसे पहले सवाल उठाए थे, कांग्रेस पार्टी तो प्रदर्शन कर रही है वहां पर।
4: मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। आप जब से एसआईआर शुरू हुआ है सैकड़ों लोगों की जान गई है। आपको एक ऐसा महीना बता दीजिए जहां पर देश के किसी भी राज्य से एसआईआर के विरोध में, उसमें जो अपारदर्शिता है, उसमें जो लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, जो इस धांधली में सीधे तौर पे शामिल थी, क्योंकि ज्ञानेश उनका आदमी था। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर रहा था, आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की।
1: निशा चौधरी,
4: भारतीय जनता पार्टी ने बाकी वोट का चुनाव 52,000 वोटों से जीता था, 52,000 उनका मार्जिन था। और जब इस बार बाईपोल हुआ उन्हें 52,000 वोट नहीं मिले, 45,000 वोट मिले। तो जिस पार्टी ने, और बिहार में देखिए, बिहार की हालत देखिए, सबसे बदहाल मुख्यमंत्री जिनके की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, सभी लोग जानते हैं।
1: अब तो चिराग पासवान कह रहे हैं, बिहार के भीतर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग को सामने आकर अपनी भूमिका साफ करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव होने वाले हैं, एसआईआर की प्रक्रिया में 2 करोड़ करीब 90 लाख वोटर्स के नाम कटे हुए हैं। आपकी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरने वाली है, क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम अब चुनाव आयोग को अपनी भूमिका इस पर पूरी साफ करें, अपना पक्ष रखना चाहिए इस पर?
4: साहिल जी,
1: जो सवाल उठ रहे हैं उस
5: पर। साहिल जी आपके सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। साहिल जी, ऐसा है, ऐसा एक फ्रस्ट्रेशन सामने दिख रही है कि जो 54 साल राज किया तब इसका मतलब इसी तरीके से जीतते थे ये लोग, तो वो आज 12 साल में इतना उब गए हैं। रही बात, आप सोचिए वो एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया चुनने की देख लीजिए और उसके काम करने की। जब जो दो हमारे सीईसी हैं, अगर वो आज प्रश्न उठा रहे कि 14 बार उन्होंने लिखा, तो इतने दिनों तक वो कहाँ थे? और उनकी रजामंदी के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं बन सकता, ये सीधा सीधा लिखा। अब वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था, क्या ऐसा संभव है? आप बताइए, इस पद पर बैठ करके वो बोले कि हमें तो पता ही नहीं था कौन कौन से निर्णय हो गए, और जिन चुनाव में
1: क्यों नहीं संभव है आपको लगता है
5: वोट कटे? साहिल जी,
1: क्यों नहीं संभव है आपको लगता है? क्यों नहीं संभव है?
5: कैसे संभव हो सकता है? आप जिस संवैधानिक पद पे बैठे हैं उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको पद दिया गया है, उसका काम है। अगर इस काम में आपको यही नहीं पता क्या चल रहा है, तो उस संवैधानिक पद पे आप कर क्या रहे हैं? मतलब इतने टाइम बाद समझ आ रहा है। दूसरी बात साहिल जी, अभी कहा कि इतने वोट काट दिए गए हैं, क्या उसमें घुसपैठिए नहीं थे? क्या उसमें अनैतिक नहीं थे? क्या इलीगल वोटर्स नहीं थे?
1: 13 करोड़ में कितने घुसपैठिए निकले, मेरे पास पूरे नंबर हैं, 20 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज, 13 करोड़ वोट्स कटे हैं, 13 करोड़ में कितने घुसपैठिए थे, नंबर बताइए
5: जी, कितने सारे, देखिए नंबर बताइए, सारे नोटिस हैं, एक मिनट साहिल जी, कितने सारे नोटिस हैं, इवन मैं खुद की अपनी बता रही हूँ कि मेरा भी नाम कटा हुआ दिखा, उसमें कुछ एनएसएस में जो मेरी कमी थी, कुछ आईडी वगैरह मुझे देने
1: वही तो
5: थी,
1: वही तो आश्चर्य की बात तो है कि ये पूरी प्रक्रिया पूरे देश में चलाई जा रही है, लेकिन आज की स्थिति में सिद्धार्थ यादव जी जल्दी से, मेरे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन 13 करोड़ नाम इस पूरे मामले में कटे हुए हैं और आज की स्थिति में अभी भी इंतजार इस पूरे मामले का है कि चुनाव आयोग के तरफ से इस पूरे मामले पर उनका पक्ष कब रखा जाएगा, कब ज्ञानेश कुमार सामने आएंगे और कहेंगे कि जो आरोप अलग अलग विपक्षी पार्टियां लगा रही और उसके साथ साथ मीडिया के रिपोर्ट्स द्वारा सामने आई है, उस पर चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, क्या सफाई है उनकी, उसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने
6: जीके मैक्स
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
8: ₹500 तक का कैशबैक हर महीने भीम ऐप से करो पे इट्स द माही वे
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ कपीवा डायबिटीज जूस
11: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक दो टुक थमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा
12: अब पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है
13: मेरे पास एक आइडिया
11: क्या
13: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
14: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आई हैव वन एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
15: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
12: ओ नादान परिंदे बैठो मेरा ना सिंपल है लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
16: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा
17: तो कौन सी बनानी है
18: एकदम
19: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
20: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी
12: आई लाइक दिस ओनली

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा हो?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
7: कोई भी सुरक्षित नहीं है बिहार का। दिन दहाड़े घर में घुस करके जो है गोलियां मारी जा रही है।
8: भाई भाई साहब थोड़ा नीचे।
7: चाहे बच्चियां हो, चाहे ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये जनप्रतिनिधि है, तो आप समझ सकते हैं जब पटना जो राजधानी शहर है, जब वहाँ के जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब गोलियां नहीं चलती।
9: पूरे बिहार की ये स्थिति है और जंगल राज के नाम पर सत्ता में बैठे हुए लोग, ये उनको जवाब देना है कि बिहार के लोगों को आपने कहा कि जंगल राज से बचना है तो हमको वोट दो, और ये क्या है? अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? ये तो सम्राट चौधरी जी को बताना है, यहाँ के गृह मंत्री को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताना है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: In India, there is a fundamental force called anti-incumbency that very quickly starts to resist any government. And it does not spare anybody. Indira Gandhi ji wins the Bangladesh war, is at the height of her popularity. And then suddenly, within a year or two, massive anti-incumbency, massive pressure. The same exact thing happens to leader after leader after leader. Happens to Congress leaders, happens to regional parties, but for some reason, it never happens to Mr. Narendra Modi, does not happen to Mr. Shah, does not happen to the BJP. Haryana swings from one party to another for 50 years. Suddenly anti-incumbency disappears. Maharashtra swings, suddenly it disappears. Uttar Pradesh swings. Sometimes Samajwadi, sometimes BSP, it disappears. Madhya Pradesh, it disappears. Gujarat, it disappears. And this has been a fundamental question for us. The Prime Minister and Amit Shah are both going to be investigated for what has been done. Without any doubt, both the Prime Minister and Amit Shah are at the top of this conspiracy, and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: We are in a democracy. हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए. और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप.
2: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है. इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी. अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है.
3: खरीदारी और पेमेंट के तरीके को पूरी तरह बदलने वाले यूपीआई पर 15 अक्टूबर से एमटीआर लगने वाला है. ये चार्ज 2000 रुपए से बड़े यूपीआई पेमेंट करने वाले कारोबारियों को देना होगा. नियमों के तहत 2000 रुपए के ऊपर के चुनिंदा P2M यूपीआई पेमेंट पर 0.4% एमटीआर लगेगा. 75,000 रुपए या उससे ज्यादा के पेमेंट का अधिकतम एमटीआर 300 रुपए होगा, जबकि P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांसफर पहले की तरह फ्री रहेगा. इस बदलाव का असर हर कारोबारी पर एक जैसा नहीं होगा. जिन कारोबारियों में अक्सर बड़ा बिल बनता है वहां लागत बढ़ सकती है, जबकि रोजमर्रा की छोटी खरीदारी वाले कारोबार पर असर सीमित रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े पेमेंट आम बात है. वहीं हाई वैल्यू फैशन और लाइफस्टाइल खरीदारी भी प्रभावित हो सकती है, जबकि फूड डिलीवरी का औसत ऑर्डर करीब 500 रुपए होता है और क्विक कॉमर्स का औसत ऑर्डर भी 2000 रुपए से काफी नीचे है. लेकिन इस नियम में कुछ बड़ी छूट भी दी गई है. जिसमें 2000 रुपए तक के P2M UPI पेमेंट पर कोई MDR नहीं लगेगा। वहीं QR के जरिए महीने में 1,00,000 रुपए तक पाने वाले पात्र छोटे मर्चेंट्स पर 0 MDR लगेगा, जबकि रेल, ईंधन, टेलीकॉम और बीमा पेमेंट पर फ्लैट 5 रुपए MDR लागू होगा। नियमों के मुताबिक MDR का भुगतान मर्चेंट को करना होगा, ग्राहक को नहीं करना होगा। साथ ही बैंकिंग सिस्टम को सुनिश्चित करना होगा कि ये शुल्क सीधे ग्राहक पर न डाला जाए। इसके बावजूद रिटेल सेक्टर में चिंता बनी हुई है। वजह है, अगर बड़े UPI पेमेंट पर लागत बढ़ती है तो कुछ कारोबारियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है, जिससे कुछ कारोबारी ऑपरेशनल खर्च घटा सकते हैं, जिससे डिस्काउंट या ऑफर स्ट्रक्चर में बदलाव संभव होगा और कुछ कारोबारी कैश पेमेंट को प्राथमिकता दे सकते हैं। बड़े और छोटे कारोबार के बीच असर का अंतर भी समझना जरूरी है। जिन दुकानों में औसत बिल 2000 रुपए से कम है, वहां ज्यादातर ट्रांजैक्शन MDR के दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन ज्वेलरी, आईवीआर प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे हाई वैल्यू कारोबार में असर ज्यादा दिख सकता है। प्रीमियम रिटेल में MDR लागत बढ़ सकती है। UPI की सबसे बड़ी ताकत आसान और कम लागत वाली डिजिटल पेमेंट व्यवस्था रही है। 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए MDR नियम के बाद बड़े UPI पेमेंट करने वाले कारोबारियों की लागत बढ़ती है या नहीं, इसका असर बाजार में कितना दिखता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ग्राहक पर सीधे चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन कारोबारियों और पेमेंट इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि एक आशंका ये भी है कि अगर कारोबारी बढ़ी हुई लागत अपने मुनाफे से नहीं संभाल पाते तो कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की कोशिश करके या डिस्काउंट और ऑफर कम करके ये बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज, अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, लेकिन बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने की पद्म भूषण देने की मांग। चुनाव आयोग पर उठते सवालों, विपक्ष के सामूहिक हल्ला बोल के बाद एनडीए से आई आवाज, चिराग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुनाव आयोग को हर शंका को दूर करने की दी सलाह। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर, चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल बने गवाह, सभी के बयान हुए दर्ज। रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा पर भड़की कांग्रेस, अजय राय बोले हम भी जा सकते हैं कन्नौज और इटावा, पूछा क्या बीजेपी की जगह राहुल को शक्ति दिखाना चाहते हैं अखिलेश। अनंत चतुर्दशी पर आज धूमधाम से गणपति बप्पा की हो रही है विदाई, मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी चौकस, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी, देर रात तक चलेगा विसर्जन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: ज्ञानेश जी के आका, एक अकेला सब पे भारी वाला आका, हर संस्थान को जैसे उन्होंने तहस नहस कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक उसी तरह से ज्ञानेश बाबू चुनाव आयोग को अकेले हांक रहे थे। अब तानाशाह का दूत तो आधा तानाशाह तो खुद भी होता है।
3: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
4: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
5: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज चर्चा एक बार फिर से चुनाव आयोग के इर्द गिर्द होगी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई एक कदम आगे बढ़ गई है। कांग्रेस ने आज देश के हर कोने में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़क पर उतरे। राहुल गांधी ने एक नया वीडियो पोस्ट कर दिया है और सीधी चुनौती दी है कि भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के मसले पर जेंजी का आंदोलन भी खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आज कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले जेंजी को वोटर बनाने वाली स्पेशल समरी रिविजन SSR यानी कि जो प्रक्रिया है SSR की, वो जनवरी 2024 के बाद नहीं हुई है। इसे पार्टी जेंजी के खिलाफ युद्ध कह रही है। BLO ऐप में VIP कैटेगरी जोड़

0: का दावा भी कांग्रेस की ओर से हुआ। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के हंगामे के बीच आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहकर पूरे मुद्दे को और बढ़ा दिया है, दबाव बढ़ा दिया कि चुनाव आयोग के लोगों को शंकाएं दूर करनी ही चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के नाम पर मचा सियासी तूफान बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? वैसे आज बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी है, ये लीजिए। तो इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार पर यह लड़ाई कहां तक जाएगी, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा संग्राम हल्ला बोल में इसी पर बहस करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमीन साहब, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के हैं। और एलजेपीआर की तरफ से हमने प्रोफेसर विनीत सिंह को जोड़ा है ताकि हम ये समझ तो सकें कि चिराग पासवान क्या चाह रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, देश भर में आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, देखिए ये रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के इन तेवरों के बीच कांग्रेस उनके खिलाफ सड़कों पर उतरी। उत्तर हो, पूर्वोत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूरब हो, देश के हर कोने में सीईसी के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। असम में गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते देखे गए। पटना और चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें फेंकी गई। चंडीगढ़, हैदराबाद और गुवाहाटी में पुतला दहन किया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बना सके। कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी न होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
2: সাংবিধানিক পদকে অপব্যবহার করা হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমার ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী চিফ ইলেকশন কমিশনার, সেই পদের অপব্যবহার করেছে যে সে কখনো তার পদে থাকতে পারে না, তার শাস্তি হওয়া উচিত। ইমপিচমেন্ট করে তাকে পদ থেকে সরানো তো আছেই, তারপরেও আমি মনে করি তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস হওয়া দরকার, কারণ সে প্রকৃত দেশবিরোধী।
0: इस बीच आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर नए आरोपों की झड़ी लगा दी। पार्टी ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दावा किया कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
3: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब रचना की संविधान की, तब एक बात बहुत स्पष्ट थी, उस पर बड़ा जोर दिया गया था कि बाकी सब कुछ भले छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वोट की कीमत सबकी एक जैसी होगी। सत्ता पर अब ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं कि उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
0: कांग्रेस ने आज ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो सके हैं। पार्टी ने आज चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ किया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी SSR प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से भी पड़ा है।
4: मुझे लगता है ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग खासतौर पर सीईसी की बनती है कि वो अपनी तरफ से पक्षों को मजबूती से रखें ताकि देश के एक भी नागरिक के मन में, मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
0: सीईसी के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया।

0: तो उधर सीजेपी भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी देने लगी है।
1: ज्ञानेश कुमार को मैं कहना चाहता हूँ कि सब दिन समय एक तरीका नहीं है, थोड़ा शर्म करो तुम कि देश के संविधान के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। अभी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञानेश को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
2: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
0: ज्ञानेश कुमार के बहाने विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है। पलटवार में बीजेपी राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर सवाल उठा चुकी है।
3: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
0: वैसे जब से ज्ञानेश कुमार के नाम पर राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है तब शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदर्शन में लखनऊ से पटना और कोलकाता तक इंडिया गठबंधन के साथी नजर नहीं आए। आज तक ब्यूरो सामिक भट्टाचार्य, तो पद्म भूषण की मांग कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी पार्टी की क्या भी क्या इसी राय में है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी प्रशंसा कर दी लेकिन देश के अंदर तो प्रश्न उठ रहा है, और आखिर ये चुप्पी क्यों है, ये प्रेस नोट जारी कर देना, ये सोर्सेस के हवाले से चुनाव आयोग ये कह रहा है वो कह रहा है, सामने क्यों नहीं आते हैं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तो और दोनों चुनाव आयुक्त तो आ जाएं सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
4: जिस खबर की ये बात कर रहे हैं हाँ। उस खबर में किसी चुनाव आयुक्त तो अथवा चुनाव आयोग के किसी कर्मचारी का कोट है नहीं है, किसी का सोर्सेस के थ्रू भी रेफरेंस है नहीं है, कोई पेपर दिखाया गया है नहीं दिखाया गया है, तो जिस चीज को केवल छाप दिया गया चुनाव आयोग ने छाप के उत्तर दे दिया स्टेटमेंट में, इससे ज्यादा क्या अपेक्षा हो सकती है एक अनसब्सटेंशिएटेड न्यूज की, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, अगर कोई कोर्ट नहीं है कोई पेपर नहीं है कोई सोर्सेस का भी कोई ऑफ द रिकॉर्ड रेफरेंस भी नहीं है तो उसे अनसब्सटेंशिएटेड न्यूज ही।
0: आंदोलन खड़ा हो रहा है सर, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे ही उस वक्त भी हुआ था नीट के बाद।
4: नहीं, आंदोलन तो कुछ भी ना हो तब भी विपक्ष और कांग्रेस आंदोलन ही खड़ा करते रह रहे हैं, कब से आंदोलन नहीं हो रहा है, वैसे 12 साल में लोकतंत्र की हत्या 1200 बार तो हो ही चुकी होगी, हर दूसरे दिन लोकतंत्र की हत्या होती है, हर तीसरे दिन अनाप शनाप बातें बोली जाती हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द बोला जाता है, और आंदोलन के लिए तो कहे कि आंदोलन जीवी है, ये बहाना नहीं तो वो बहाना नहीं। और एक और बात समझ लीजिए, ये आंदोलन इसलिए हो रहा है, कल जो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी जी ने तो चुनाव आयोग के खिलाफ बोला कि वो अमित शाह जी की फोटो दिखा रहे थे और एक दर्जन लोगों की दिखा रहे थे, पत्रकारों की भी दिखा रहे थे, भाई साहब आप करना क्या चाह रहे थे ये तो बता दिए, बहुत साफ है, इसका अर्थ यह है कि आपको बहाना ढूंढना था और आप अमित शाह जी का नाम ले रहे थे और मोदी जी का, दोनों का एक एक सिर्फ जवाब देता हूं। मोदी जी वो व्यक्ति है जिसने 25 साल में 25 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है, और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो 25 हफ्ते कभी ऐसे नहीं गुजरे हैं संसद का सत्र शुरू होने के बाद जो वो विदेश न चले जाते हो, तो मोदी जी जमीन से जुड़े नेता हैं और ये जमीन से उड़े हुए नेता, ये तो बता दिए, बहुत साफ है, इसका अर्थ यह है कि आपको बहाना ढूंढना था और आप अमित शाह जी का नाम ले रहे थे और मोदी जी का, दोनों का एक एक सिर्फ जवाब देता हूं। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिसने 25 साल में 25 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है, और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो 25 हफ्ते कभी ऐसे नहीं गुजरे हैं संसद का सत्र शुरू होने के बाद जो वो विदेश न चले जाते हो, तो मोदी जी जमीन से जुड़े नेता हैं और ये जमीन से उड़े हुए नेता हैं, उड़ के विदेश चले जाते हैं। दूसरा जो अमित शाह जी के लिए कहा, मैं कहना चाहता हूं देखिए उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में स्पष्ट बहुमत नगर निगम में पाया और 30 साल का कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा समाप्त किया। अब मैं पूछना चाहता हूं वो वोट चोरी थी क्या? और दूसरी बात, क्या केरल में नगर निगम के चुनावों में जो इलेक्टोरल रोल्स बने और लोकसभा के इलेक्टोरल रोल्स में कोई अंतर था क्या? यदि नहीं तो ये बताएं। एंड पॉइंट नंबर 3, कह रहे ना चुनाव आयुक्त की उसमें केंद्र सरकार में तो नेता प्रतिपक्ष है कमेटी में, कितनी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के चयन में नेता प्रतिपक्ष है बताइए, जहां ना विपक्षी सरकार है, चुनौती से पूछो भाई, सीधे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, बताओ भाई कितने राज्यों में किया है, खुद भी यहां फजीहत दूसरों को नसीहत,
0: चलिए खुद फजीहत और दूसरों को नसीहत पर भी बोलिएगा। और एक सेकंड, क्या राजनीतिक हार की हताशा है ये कि 12 साल तक हम सत्ता से दूर रहे तो हम कह दें कि एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ क्यों नहीं?

0: हो रही है भाई। नवीन पटनायक भी इतने सालों तक रहे, ममता बनर्जी, लालू जी इतने सालों तक रहे, नीतीश कुमार इतने सालों तक रहे, कम्युनिस्ट पार्टी दशकों तक शासन करती रही, तब कहां था ये थ्योरी?
1: आपके प्रश्न का उत्तर के साथ में भाई साहब के प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहली बात कि आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी पहले नहीं होती थी, अब नहीं हो रही है और पहले होती थी, तो सच्चाई तो है कि वाजपेयी जी के समय में भी हुई थी, उससे पहले भी बहुत सारी सरकारें गठबंधन की संबित सरकारें बनती रहती थी, चेंज होते रहते थे। जहां तक बात है उस समय चुनाव आयोग पर इस तरह के कोई प्रश्न नहीं आते थे, भाजपा की तरफ से भी नहीं और बाकी लोगों के तरफ से भी नहीं, सरकारें आई और जाती रहती थी, क्योंकि किसी को भी इतने व्यापक स्तर पर चुनाव से वोट से वंचित करने का काम किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया।
0: एक चीज बताइए कि आपके आंदोलन का मकसद क्या है? ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा,
1: देखिए आंदोलन का मकसद है चुनाव में जो धांधली हो रही है, चुनाव की विश्वसनीयता पर जिस तरह इतना बड़ा प्रश्न आया है, इस पर यदि सरकार आकर के ईमानदारी से निष्पक्ष जो संस्था है उस पर बात नहीं रखेगी, चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमीशन आकर के यदि वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, जिस रिपोर्ट की बात अभी की जा रही है और हमारे भाजपा प्रवक्ता ने सिरे से नकारा, भाई जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सबको पता है कि वो रिपोर्ट ऐसे नहीं आई है, वो कहीं ना कहीं लिखित तौर पर औपचारिक तौर पर प्रक्रिया का पार्ट है। हाँ, वो लीक कैसे हुई यदि ये प्रश्न ये जानना चाहते हैं तो वाकई इनकी सरकार है, इनको उस क्वेश्चन उस पर है कि जो क्वेश्चन लगाया गया 14-10 महीने में उसका उत्तर इनको ढूंढना है, या वो कैसे लीक हो गई, तो ये अपने आप में एक सवाल आ गया कि भाजपा को इससे दिक्कत हो रही है कि दो चुनाव आयुक्त जो इन्हीं के द्वारा नियुक्त हैं, उन्होंने इतनी बड़ी काम जो किए, मान लीजिए चुनाव प्रोसेस में जिस तरह से उनको इग्नोर किया गया, उनके डिसीजन मेकिंग में उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं सम्मान नहीं रहा और एक तरह से गैर कानूनी कार्यक्रम हुए, उसके लेकर के जो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी तक चिट्ठी लिखी, ये लीक कैसे हो गई, तो लीक का प्रश्न का उत्तर तो अलग है और इससे आपकी भावना समझ में आती है। बात आपने कही कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, विपक्ष को दिक्कत है, अरे भाई इस देश के सामान्य लोकतंत्र के जो मतदाता है उनको अब दिक्कत हो रही है। जेएनजी का वोट 2024 के बाद से SSR जो होता था सारांश रिविजन वो नहीं हो पाया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? चुनाव आयोग है, जबकि इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने बात बार बार दोहराई कि इसको कराया जाना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको नहीं करा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार क्या अकेला चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही कमिश्नर है या बाकी भी दो सहयोगी उसी राइट के साथ है? ये तो अस्पष्ट है कि ये सभी इक्वल है, इक्वल अमोंग्स उसमें वो चीफ है, तो डिसीजन सर्वसम्मति से होना चाहिए या डिसीजन मेजोरिटी से होना चाहिए। अभी तक जो भी डिसीजन हुए जिसको ऑलरेडी दोनों चुनाव आयुक्तों ने स्पष्ट कह दिया कि भाई पिछले एक साल से तो फाइल ही नहीं दिखा रहे हैं ये, और तब तो जाकर के कैबिनेट सेक्रेटरी के पास उनको जाना
0: पड़ा। आपको चाहिए क्या, इस्तीफा चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए?
1: देखिए पूरी इस्तीफा तो देखिए इस्तीफा तो चाहिए क्या, इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा, ज्ञानेश कुमार को नहीं उनको देना ही पड़ेगा, यदि उनमें नैतिकता होगी तो देंगे, नहीं तो बहुत सारी उन्होंने कर दी है, तो या तो इस्तीफा वो देंगे या नहीं तो इस्तीफा देश की जनता उनसे लेगी। ये आप स्पष्ट मानिए कि लोकतंत्र के बुनियाद पर प्रश्न लगाने का कोई काम करेगा उसको कोई नहीं बर्दाश्त करेगा।
0: वो तो कह रहे जनता इस्तीफा लेगी।
1: दूसरी बात, राहुल गांधी जी से आपत्ति भाई साहब को जितनी हो करना चाहिए, विपक्ष के लोग हैं और मैंने वो सत्ता पक्ष के हैं तो उनको विपक्ष से आपत्ति हो सकती है, यदि कोई हम वैलिड प्रश्न करेंगे तो उनको उसका जवाब देना चाहिए, यही जवाब चुनाव आयोग ने मांगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं आया, वो 14 आपत्तियां क्या क्या है जनता के बीच नहीं आया, ये आम जनमानस का सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग यदि विश्वसनीय नहीं रहेगा तो इस लोकतंत्र में लोगों का अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा?
0: ठीक है, इस पर एक जवाब दीजिए आप सर, ये जनवरी 2024 से ये ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए, जनवरी 2024 से SSR की जो प्रक्रिया है वो क्यों नहीं हुई है, जो स्पेशल समरी रिविजन होता है जिसमें 18+ युवाओं को वोटर बनाने का अभियान होता है,
1: ये क्यों? एक प्रश्न और ले लीजिए, गोवा में 97 वोटर का जो है अधिकार वंचित किया गया, गोवा का जो चीफ इलेक्शन अधिकारी है वो सेंट्रल को लगभग 7-8 बार पिछले एक सप्ताह में लिख चुका और वो उसके बावजूद भी ऐड क्यों नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज किया गया, क्या ये सेंट्रलाइज सही है, क्या ईआरओ को इसका राइट क्यों नहीं रहना चाहिए, लोकल आदमी जो समझता है वो व्यक्ति को पहचानता है।
0: ईआरओ से उनका अधिकार लिया जा रहा था, इस मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा है इंडियन एक्सप्रेस के कि ईआरओ से जो उनका ईसीआई नेट में जो उनका अधिकार था वो उनसे कई दिनों के लिए विड्रॉ हो गया, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, और 97 वोट गोवा के, उस पर भी जवाब, एसएसआर नहीं होना 24 से क्यों?
2: देखिए ऐसा है, जहां तक सवाल इस बात का है कि पहले तो मैं गोवा का जवाब दूंगा, 97 वोट्स की बात कर रहे हैं, शायद ये इस बात को भूल जाते हैं कोई

0: आज की बात नहीं, ज्ञानेश जी के हाथ जिन्होंने सेंट्रलाइज किया है, यह हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू से है। उसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि संजय सिंह मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में हैं, उनकी वाइफ का वोट सुल्तानपुर में भी कटा और दिल्ली के साउथ में भी कटा गया, और बाद में कहा कि हमारी वाइफ का दिल्ली से डिलीट कर दिया गया है। बहुत शोर मचाया था संजय सिंह ने। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो सर्वर है बहुत पहले से लगा हुआ है, अगर दो जगह से मैच कर जाएगा तो ऑटोमेटिक दोनों जगह से उड़ जाता है। सेंट्रलाइज सिस्टम है, आप देखिए हर वोटर लिस्ट के लिए जब रजिस्ट्रेशन होता है एक टाइम खोल दिया जाता है हर स्टेट में, और उसके बाद जो हमारी ड्राफ्ट लिस्ट आती है उसका भी टाइमिंग है, और उसके बाद हमारी फाइनल लिस्ट आती है।
1: पर बार बार इंटीमेशन आ रहा है जब 97 वोट्स का, तो कुछ नहीं करेंगे, हाथ धरे धरे बैठे रहेंगे?
0: नहीं नहीं, हर चीज का टाइम लिमिट है।
1: जवाब ही नहीं आया।
0: नहीं, टाइम लिमिट है, इनको क्या पता कि इंटरनल क्या बातें हो रही है, टाइम लिमिट है। हाँ, हमारे सीईओ ने कहा टाइम लिमिट को कैसे उसको कर लेंगे, अब साल भर तो नहीं चलेगा रजिस्ट्रेशन, जैसे पार्टियां चाहती हैं कि साल भर उनके साथ काम करें हम। हमारा हर चीज का टाइम, एसआईआर का भी टाइम आप देख लीजिए, और आईटी में ये एक सिस्टम है।
1: नहीं, एसएसआर क्यों नहीं हो रहा है?
0: जी
1: एसएसआर क्यों नहीं हो रहा है?
0: क्यों नहीं
1: हो रहा? स्पेशल समरी रिविजन है।
0: देखिए हमने पहले कहा ना कि हर चीज का टाइम लिमिट है, अब हम जनता के हिसाब से नहीं चलेंगे, इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से चलता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 324 में इंडोर्स किया है कि इलेक्शन कमीशन की अपनी आजादी है कि वो किस तरह अपने काम करता है। और
2: बिल्कुल इनकी बातों पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, स्टेट्स में सबके वोट जो नए वोटर से ऐड किए जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे जब नेशनल इलेक्शन होगा उस समय होगा, क्या नए वोटर्स नहीं बने बंगाल में, नए वोटर नहीं बने बिहार में, 2024 के बाद नए वोटर नहीं बने महाराष्ट्र में, इसलिए यह बात पूरी तरह तर्कसंगत। अब मैं एक बार पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे दूं जो इन्होंने कहा। देखिए राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, आपने देखा प्रश्न पूछा गया उनसे कि एंटी इनकम्बेंसी होती है आपको कब पता चला, उन्होंने कहा 7 साल की उम्र में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने कहा तब मुझे पता चला कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब पहली बात तो समझिए, 7 साल की उम्र में किसी को एंटी इनकम्बेंसी पता हो। दूसरा, राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970, वो 7 साल के पूरे हुए 19 जून 1977, इंदिरा गांधी जी मार्च 1977 में चुनाव हार चुकी थी, तो जब वो 7 साल के हुए तब वो प्रधानमंत्री नहीं थी, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है तब तक उन्हें एहसास हो गया होगा कि एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है। फैक्ट नंबर वन, हार गई थी ना, अगर समय रहते होता तो इमरजेंसी लगी थी तो चुनाव ही ना करवाती। मतलब इंदिरा गांधी को यह पता था कि मैं चुनाव हारने वाली हूं, और इमरजेंसी को रिवोक करके संसद की लाइफ 6 साल की जा चुकी थी, उसके बाद वो चुनाव करा रही थी। ऐसी अप्रतिम बुद्धि 6 साल के ही किसी अद्भुत मेधा संपन्न व्यक्ति में हो सकती है जो यह कहे कि मुझे एंटी इनकम्बेंसी के बारे में पता था। अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, इस देश में एक इलेक्शन कमिश्नर थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे सरकार के खिलाफ, कौन थे? टीएन सेशन। जब ये दो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था, किसकी सरकार में हुआ था? एक इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने राष्ट्रपति को लिखा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी ने, कि इलेक्शन कमिश्नर को बर्खास्त कर दिया जाए, और 12 पॉइंट दिए थे कि ये कांग्रेस के साथ मिले हुए नवीन चावला जी, मगर कांग्रेस ने उल्टा उनको बना दिया। अब देखिए कितना निष्पक्ष था, 1985 विधानसभा चुनाव, मैं लोगों से कहता हूं जाके चेक करिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, पूरे उत्तर प्रदेश में शायद 37% या 38-40% कुल वोटिंग हुई थी। अमेठी विधानसभा में कितनी वोटिंग हुई थी पता है आपको? 91%, और कुछ पोलिंग बूथ पे अखबारों में आया था 100% से ज्यादा हुई थी, मगर चुनाव आयोग ने उसे देखा ही नहीं संदेह की दृष्टि से कि पूरे उत्तर प्रदेश में 37-38-40% वोटिंग हो रही है और एक विधानसभा में 91%। और सुनिए, ये संजय सिंह जिनका इन्होंने नाम लिया, ये कांग्रेस के टिकट पे 1,00,000+ से विधानसभा जीते थे, और उसके बाद वो जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो क्या बने? गुजरात के राज्यपाल, जो 82 से 85 तक बने थे।
1: इन सब का क्या करना है सर, अब तो हम 26 में आ गए हैं।
2: अगले पॉइंट, पहले तो मैंने
1: इनको तो जनता ने नकार दिया, इनको जनता ने बाहर कर दिया।
2: जो बोला ना, एक समय ऐसा था जब इलेक्शन कमीशन, अब आइए जो आपने बात कही, एसआईआर के मुद्दे के ऊपर कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो हो रहा है वो बिल्कुल प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से पावर है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के भी पक्ष में 40 साल तक नहीं रही है। कब? जब कोई सीसीटीवी नहीं था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं थे, बूथ लूटे जाते थे, सुनिए, बूथ कैप्चरिंग होती थी, और बूथ जो है बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, और इतना ही नहीं, फायरिंग होती थी। 1989 में अमेठी में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पक्ष में बूथ कैप्चरिंग की गई, संजय सिंह को गोली लगी, 21 लोगों पे एफआईआर दर्ज।
3: अंजना जी,
2: तब होता था, तब ये हमेशा
1: एक
2: मिनट सेंटेंस पूरा कर दिया, जब से पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए, वोटर आईडी कार्ड हो गया है, सीसीटीवी लग गए हैं, मीडिया निष्पक्ष हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल आ गए हैं, जुडिशरी निष्पक्ष है, तब से इनके लिए सत्ता दूर की कौड़ी हो गई, इसलिए बिलबिलाहट है।
1: ठीक है,
3: अच्छा ये चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है तीनों की, ये तो आप ही लोगों ने किया है ना, मोदी जी, अमित शाह जी।

0: मैंने पूछा था राज्य चुनाव आयोग कैसे अपॉइंट होते हैं, राज्यों के चुनाव आयोग कैसे अपॉइंट होते हैं,
1: अब बताइए। मैं बोलता हूं, मेरी आदत नहीं है। तो ये तीनों लोगों की नियुक्ति का तो आप ही को है, आप ही ने नियुक्त किया। यदि उनके अंदर कोई डिसेंट

0: तो ये तीनों लोगों की नियुक्ति का तो आप ही को है, आप ही ने नियुक्त किया, यदि उनके अंदर कोई डिसेंट बात आ रही है तो क्या ये दायित्व तो नहीं बनता है कि पब्लिकली आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले? सुनिए ना, बीच में नहीं, चुनाव आयोग के
1: अगर कोई ऐसी बात है, सुनिए
0: आपको बीच
1: में, अगर कोई ऐसी बात है तो आपको राष्ट्रपति को लिखना चाहिए।
2: अरे तो काहे नहीं सामने आ रहे हैं,
0: सुनिए
2: सामने आए ना,
0: ये तो बहुत ठीक है, लेट हिम कंप्लीट,
1: सामने कहना चाहिए,
0: ये तो अच्छा कर दिया कि आप दोनों लोगों को
1: प्रेसिडेंट के सामने जाना चाहिए थी।
0: अरे भैया चुप रहिए, आप दोनों लोगों के बात से स्पष्ट हो गया कि ये दोनों चुनाव आयोग पर आप लोगों को ही भरोसा नहीं है। ये तो स्पष्ट और क्लियर हो गया कि ये जो बात रख रहे हैं इसका मतलब ये दोनों गलत रख रहे हैं, तो ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न। अब इसके बाद क्या बचता है? पहली बात,
3: अब जवाब
0: हम कांग्रेस पार्टी
2: नहीं, अभी पूरा दूसरा पॉइंट है, उसके बाद वो बोलेंगे।
0: उसके बाद आपने राहुल जी के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, अब हम नहीं कहेंगे, हम
3: तो नहीं कहते, सिर्फ फैक्ट बोला है,
0: गटर के गैस से जो है वो बन जाता है क्या क्या, रडार में बादल मेरा रडार छुप जाता है, ये सब ज्ञान हमको भी नहीं पता है, यदि होता होगा तो होता होगा, मैं किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत ज्ञान पर प्रश्न नहीं लगाऊंगा। आप वाकई सबसे ज्ञानी प्रवक्ता हैं और आपको इस तरह के चीजों पर भी इतना सफाई के साथ ज्ञान देने के लिए बुला रही है भाजपा की,
2: प्रोफेसर साहब,
0: और चुनाव आयोग दोनों के पास कोई तथ्य नहीं रहा।
2: प्रोफेसर साहब एक सिंपल सवाल है, अल्टीमेटली
0: एकदम लास्ट
2: बोल लो,
0: हमने उन्होंने कहा कि जनता के हिसाब से नहीं होगा। अरे भाई, ये चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग को दी गई और जनता के भरोसे यदि नहीं उस चुनाव आयोग में रहेगा तो फिर उस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और चुनाव का क्या होगा, फिर लोकतंत्र का क्या होगा? चुनाव आयोग जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कांग्रेस पार्टी
2: ये से सवाल मैं भी उनसे पूछूंगी। बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: चुनाव आयुक्तों ने भी अभी पूर्व चुनाव आयुक्तों ने इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न लगाया और रायता फैलाया किसने? चुनाव आयोग ने रायता फैलाया है। ज्ञानेश जी का गुप्त ज्ञान अब सार्वजनिक हो गया कि वो ज्ञान कहां से ले रहे हैं,
3: गुप्त ज्ञान का मतलब पता है आपको?
0: चुप्पी चुप्पी जो है अभी तक प्रधानमंत्री जी की बनी हुई है। वाह मोदी जी वाह,
2: पर डिनाई तो कुछ चुनाव आयोग नहीं कर रहा ना सुधांशु जी, एक सेकंड,
0: वोट का अधिकार काटा जा रहा है
2: सुधांशु जी, चुनाव आयोग ही डिनाई नहीं कर रहा, प्रेस नोट पूरा निकाला है,
3: प्रेस नोट में
2: एक जगह भी डिनाइल नहीं है,
3: प्रेस नोट में डिनाइल नहीं है, ऑल रिजल्ट्स पर यूनानिमस। अब मैं एक बात कहता हूं,
4: सुधांशु जी डिनाइल तो कर ही रहे हैं ना,
3: चुनाव
2: आयोग के बयान आपने
3: रिटर्न में बोला, एक लाइन का जवाब, जैसे राहुल गांधी जी ने नोट ऑफ डिसेंट दिया, वैसे उन्होंने विवेक जोशी जी के लिए भी दिया था जिनके लिए आज वो
0: एकदम ठीक है,
3: ठीक है, तो वो नोट ऑफ डिसेंट रिकॉर्ड पे है, राहुल गांधी जी ने भी कहा हाँ मैंने दिया था, ये चुनाव आयुक्तों का कहा है नोट ऑफ डिसेंट,
0: ये आ जाएगा
3: और प्रक्रिया में, अरे दिखाइए ना,
0: अरे भाई
3: बगैर किसका मतलब बगैर आए बोल रहे हैं, बस
0: बगैर नहीं,
2: चलिए
3: अब आगे का
2: ठीक है, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब
0: डिनाई किया,
2: प्रोफेसर
0: साहब आयोग ने डिनाई किया, इसको डिनाई नहीं किया,
3: डिनाई किया है
0: नहीं,
3: सारे निर्णय यूनानिमस थे,
2: ठीक है, वही सवाल पूछ रही हूं नवल किशोर जी, ठीक है प्रोफेसर नवल किशोर, रुक जाइए सर, रुक जाइए प्रोफेसर नवल किशोर, अल्टीमेटली जो प्रेस नोट है उसमें यह कहा गया है कि लिखित मौखिक और भी कई आधार पर ड्राफ्ट के स्टेज में कई सारी आपत्तियां आई थी, लेकिन जो अंततः फैसले लिए गए हैं वो यूनानिमस फैसले हैं, यानी सहमति से लिए गए फैसले हैं। अब अगर नहीं है तो ये कैसे सच सामने आएगा? ये तो उन दोनों को आना चाहिए सामने। ओपी रावत ने मुझे कहा मेरे इंटरव्यू में, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि इन दोनों को तुरंत राष्ट्रपति, अरे रुकिए साहब, उनको तुरंत जाना चाहिए सीईसी के पास, राष्ट्रपति के पास, तो वो ये अधूरा गेम क्यों खेल रहे हैं?
4: नहीं नहीं देखिए, ये जो भी चीज आ रहा है वो तो फ्रंट न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से आ रहा है, अगर वो गलत है तो सुधांशु जी काबिल हैं, शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, रिपोर्टर जिसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के आधार पर ये रिपोर्ट छापा है उसको जेल भेज देना चाहिए, नंबर एक। लेकिन सवाल विपक्ष का बहुत सिंपल है कि चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र नहीं निष्पक्ष होना चाहिए और दिखना भी चाहिए, ये पूरे तौर पे आप देखेंगे कि ज्ञानेश जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम न पक्ष हैं, विपक्ष हैं, समपक्ष हैं, ये तो पता चल गया कि भाई चुनाव आयोग पे उंगली उठता है और सत्ता पक्ष आकर जवाब देता है और लड़ने को तैयार है, सारे लोगों के ज्ञान पे एकदम सवाल उठाते लगते हैं यहाँ पे, इसलिए पूरे देश में ये संदेश चला गया है कि ज्ञानेश जी ने अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जी के काम कर रहे हैं और किसी के लिए काम नहीं किए, लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल ये सबके सामने आ गया है और देश भर में यह चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में गुस्सा है। बिहार के हर जिला में आरजेडी ने भी आज ज्ञानेश जी के पुतला जलाए हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि आपने एक सत्ताधारी पार्टी के लिए काम किया है चुनाव आयोग रहते हुए, जबकि आप स्वतंत्र भी हैं और निष्पक्ष भी होना आपका दायित्व है, जो आपने नहीं दिखाया है। जो रिपोर्ट के आधार पर सारी बातें सामने आई है उसमें एक एक बात हम सच मानेंगे कि न्यूज़पेपर के सामने पेपर पे है, और उसको अगर आप सवाल करते हैं तो आप ये तो बताना पड़ेगा कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो क्यों है।

0: इलेक्शन कमीशन का कोई भी ऑर्डर बाहर नहीं जा सकता, सब सम्मिलित हो या टू टू वन होना चाहिए।
1: अरे तो लिखे ना रिपोर्ट में, तो लिखे ना रिपोर्ट में वो जो प्रेस नोट जारी करा रहे हैं किसी और के नाम से, उसमें वो लिख के दे कि भाई, अरे सुनिए ना साहब, सुनिए ना, हमें भी पता है कि दो का सिग्नेचर जरूर है, हाँ। लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट साफ साफ दावा कर रहा है, हाँ? कि दोनों चुनाव आयुक्त फॉर्म 6 में बदलाव के मुद्दे पर उसको इलीगल अनऑथराइज कह रहे थे,
2: बगैर किसी रिपोर्ट या कोर्ट के द्वारा, बगैर किसी दस्तावेज के दावा
3: कंट्रोल में भी करें,
2: बगैर दस्तावेज।
1: तो ज्ञानेश कुमार केस क्यों नहीं करते हैं इस पर, केस करें अगर गलत जानकारी दी जा रही है? वो भी तो नहीं कर रहे हैं सर,
3: वो भी कर सकते हैं, उनके पास ज्यादा पावर है।
2: अखबार में लिखा है ना भाई साहब, कितने अखबार है भारत में रजिस्टर्ड?
4: नहीं नहीं, अखबार
3: उससे क्या मतलब है आपको? हाँ। जो रिपोर्ट है वो गलत
2: बता रहा हूँ, अगर अखबार की लिखी बात पे आप कहेंगे,
3: आप देखिए, आप
2: इलेक्शन कमीशन है, आपने रिटर्न में
3: बोले, आप तथ्य से भटका रहे,
2: तथ्य से बिल्कुल तथ्य में बात कर रहा हूँ,
3: आप चुनाव आयोग के यहाँ पे बोल रहे हैं तो बोलिए।
2: नहीं, मैं आप एक और बात बता दूं, ये सरासर झूठ बोलते हैं। हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई परसों, जो अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में संबित जी ने की, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में मैंने की, और मैंने शुरू में बोला
3: चुनाव आयोग का काम आप क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग पे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं?
1: आप पूरा क्यों
3: करते हैं? आप क्यों करते हैं? आप उनके प्रवक्ता हैं।
0: देखिए देखिए पत्रकार,
2: अरे भाई कांग्रेस का जवाब दिया है,
3: चुनाव आयोग का जवाब मैंने बोला है,
1: ठीक है,
3: चुनाव आयोग का जवाब
1: सुनिए भाई,
3: कांग्रेस सवाल पूछ लिया चुनाव
2: आयोग। चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूं और दर्शकों से कि मैंने एक बार सेंटेंस बोला हो कि मैं चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए हूँ, मैंने कहा मैं राहुल गांधी,
3: जो बात तरीका है
1: भाई,
2: मैंने ये कहा मैं राहुल गांधी जी की प्रेस का पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल कर रहा हूँ,
1: ठीक है। अमीन साहब मेरा सवाल सुनिए, आपने अभी कहा कि जनता के हिसाब से थोड़ी कहा, तो चुनाव आयोग है किसके लिए? जनता के लिए नहीं तो भगवान थोड़ी बैठा रखे हमने, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये SSR नहीं होना, विपक्ष कह रहा है कि जेंजी को, चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ है इसलिए आप नहीं ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह की भ्रांतियां क्यों हो रही हैं? एक भी वोटर, आप कहते हैं कि हम जा रहे हैं भाई, हम मेघालय पूर्वोत्तर के राज्यों तक जा जाके वोटर इकट्ठा करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर पूल हमारा बने, है ना, है? और आप कह रहे हैं कि 97 वोट पर इनको सुध लेने का टाइम नहीं था, बार बार लिखा जा रहा है वहां से, ये कैसे होगा? बंगाल में आप सोचिए कि कितने लाख वोट, चूंकि मामला पेंडिंग रहा वो वोट नहीं दे पाए, ऐसे थोड़ी चलता है।
0: देखिए कंप्यूटर की वजह से मैचिंग में, ये संजय सिंह का मैंने जवाब दिया था,
1: दूसरी बात लिखित में चिट्ठी फिर
0: कोई भी पत्रकार, सुनिए सेशन के टाइम से कोई भी पत्रकार हमारे इलेक्शन कमीशन में नहीं एंट्री कर सकता, गृह मंत्रालय में जा सकता है, सभी जगह जा सकता है, इलेक्शन कमीशन में बिना परमिशन के कोई एंट्री नहीं कर सकता। नंबर एक, वो अभी तक सर्टिफाई नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट यहाँ की गई है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से चाहिए था कमिश्नर्स को, जिनका प्रोटोकॉल बनता है, जिनकी सर्वे सर्वा है राष्ट्रपति, उसके बाद बनना चाहिए।
1: आपने प्रेस नोट पढ़ा है?
0: कैबिनेट से
1: आपने प्रेस नोट पढ़ा है?
0: नहीं, मैंने
1: चुनाव आयोग का पढ़िए उसको, दूसरे ही लाइन में लिखा है कि मतभेद किसी भी संस्था में होते हैं और लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो,
2: खुद ही मान रहे हैं। लिखा है डिसेंट वर्ड लिखा है,
1: मतभेद तो लिखा है,
2: डिसेंट और मतभेद तो अलग बात है, सबका अलग अलग होता है, मगर उसके बाद भी जब यूनानी मत
1: लिखा, ठीक है, ये पॉइंट है अजय जी, ये पॉइंट है। उनका कहना है कि ड्राफ्ट के स्टेज में जब हम लोग इस पर अंतिम फैसला ले रहे थे तब ये किया जा रहा था, जितना भी था
5: एकदम,
1: तो ड्राफ्ट के वक्त पर अगर उनके मतभेद थे, क्योंकि वो सुनिए ना, वो बाहर आके खुल के कह भी तो नहीं रहे हैं कि हाँ भाई हमको ये दिक्कत थी।
5: देखिए ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, ड्राफ्ट के स्तर पर यदि ये बात होती और ये प्रक्रिया में कहीं क्वेश्चन नहीं होता तो दोनों चुनाव आयोग अलग अलग डेट में कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जाकर के अपना पत्र नहीं,
0: कैबिनेट प्रेसिडेंट को लिखना चाहिए,
5: सुनिए ना,
0: प्रोटोकॉल जो है
5: बीच में मैं नहीं बोल,
0: प्रोटोकॉल के नाते बता रहा
5: हूं, मैं आपका बहुत सम्मान कर रहा हूं, बीच में नहीं बोलता, आपकी बात बारी आएगी। तो दूसरी बात, यदि कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाना पड़ रहा है तो समझिए उनकी सुनवाई और प्रक्रिया में कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, वो मीटिंग जब हो रही है तो मीटिंग में उनकी बात नहीं समझी जा रही है, कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि एक साल तक हमको फाइल तक नहीं दी जा रही है, इसका मतलब एक तरफा फैसला का उन्होंने खुद लिखित कैबिनेट सेक्रेटरी पर गए, ठीक है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए एक अलग प्रश्न है, लेकिन ये गए इसका मतलब ना वो सर्वसहमति से कोई फैसले थे और ना ही वो मेजोरिटी से फैसले थे, और चुनाव आयोग का मतलब है जो TN सेशन के बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की बात आप कर रहे थे उसमें स्पष्ट तौर पे है कि तीनों इक्वल है, कोई सर्वे सर्वा वहां नहीं है, तो जब तीनों इक्वल है तो तीनों की सहमति से या बहुमत से जो फैसला नहीं हुआ वो गैर कानूनी है, और जितने फैसले पिछले इन आपत्तियों के कारण हुई है वो सारे फैसले रद्द होने चाहिए, और निश्चित तौर पे इसके लिए कोई
1: सुधांशु चिराग पासवान भी तो कह रहे हैं ना, देखिए एक भ्रांति तो पूरे देश में फैली रही है, एक भ्रम फैला है, और इस बार कोई विपक्ष का नेता ये खबर इतनी तूल क्यों पकड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये विपक्ष का कोई नेता कोई हवा हवाई आरोप नहीं लगा रहा है, ये चुनाव आयोग के अंदर से आई हुई खबर है जिसको ऑफिशियल, आप सोचिए ना, प्रेस नोट में एक लाइन लिख सकता था चुनाव आयोग दैट वी डिनाई द एंटायर रिपोर्ट, लेकिन वो डिनाई नहीं कर रहे हैं,
2: ठीक है।
1: चिराग
2: रिपोर्ट है क्या,
1: एक मिनट, रिपोर्ट चिराग पासवान भी कह रहे हैं ना,
2: सुनिए चिराग पासवान का स्टेटमेंट दिखाइए मैं आपको बताता हूं, रिपोर्ट है क्या, देयर इज नो रिपोर्ट, देयर इज नो डॉक्यूमेंट, देयर इज नो स्टेटमेंट,
3: अब इमेजिन वही डॉक्यूमेंट दिखाइए
2: टाइम पे सर,
1: अपने अपने बारे
2: जब डॉक्यूमेंट थी, अब आपको बताता हूं इनको समस्या क्या है,
1: इसके बाद
2: सुनिए, चुनाव आयोग पहले कितना अच्छा काम करता था, 1985 बिहार इलेक्शन कितनी मौतें हुई, 63, 1990 बिहार इलेक्शन कितनी मौतें हुई, 87, 1995 बिहार इलेक्शन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वायलेंस चार बार इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा, और
3: ने बता तो दीजिए किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब है,
2: बता रहे
3: उसमें डिबेट हो रहा है,
2: बता रहे
3: टीएन सेशन ने जब पहली बार इस तरह का बात बोली
2: ना, इस तरह की बात, अब सुनिए पूरा ही बिहार से ही जवाब दे रहा हूं, यानी तब चुनाव बहुत अच्छा लोकतंत्र होता था, 63-87 लोग मरते थे, चार चार बार वायलेंस होने के बाद स्थगित होता था, अब आइए अब बिहार का ही जवाब दे रहा हूं भाई साहब, आपकी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं, सुनिए 2010 का चुनाव कांग्रेस की कितनी सीटें आई, 4 परसेंटेज ऑफ वोट 3.5, जमानत जब 234, 2010 में तो इनकी सरकार थी, सब कुछ इनका था, वोट चोरी किसने की, 1995 90 2000 लालू यादव जी की सरकार, अब आप ये बताइए जिस पार्टी के बाद कुछ था ही नहीं, अब ये बताइए सुनिए, 1989 से यूपी से बाहर है, 91 में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, 95-96 में कुछ नहीं कर पाई यूपी में, उसके बाद 93 का चुनाव, 96 का चुनाव, 2002 का चुनाव, 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, कुछ नहीं, खत्म, और यहां आके कह रहे हैं आप वोट चोरी हो गया, समस्या क्या है कि हकीकत इन लोगों की यह है कि ये लोग किसी भी चीज के ऊपर सच नहीं स्वीकार करना चाहते, और एक टेक्निकल बात यह भी कह दूं, जो सेंट्रलाइज सर्वर को कनेक्ट किया जाता है उसमें यह है कि अगर किसी ने एंट्री करने के लिए समस्या नहीं है, डिलीट एक बार आपने एंट्री या डिलीट कर दिया, अब उसके बाद वो सेंट्रलाइज सर्वर से ही होगा, कारण क्या है, साइबर सिक्योरिटी के लिए चाहिए, नहीं नहीं नहीं लिया, सुनिए उन्होंने साफ किया
3: नहीं एक्सेस कर सकता है,
2: मेरी बात सुनिए, जैसे
3: आप जो बोल रहे हैं सिर्फ वही सही है, तो हम
2: लोग मैं सदन का बयान अपना कोट करता हूं, बिहार का चुनाव हुआ उससे पहले लोग कहते थे कि महाराष्ट्र का हरियाणा का सीसीटीवी फुटेज नहीं देते, इन्होंने 45 दिन का बार लगा रखा है, मैंने राज्यसभा में खड़े होकर बोला था बिहार चुनाव के बाद अभी 45 दिन के अंदर का समय है, मांगो सीसीटीवी फुटेज, नहीं मांगा, यानी साफ बात है कि तथ्य पे इनको पता है सीसीटीवी फुटेज आएगा तो कुछ नहीं करने वाला,
5: एक संक्षिप्त
1: छोटा सा जवाब दीजिए, फिर
5: सुधांशु जी ने
2: जो मैंने राज्यसभा में बोला था 45 दिन के अंदर का वक्त है,
5: दोनों का जवाब दे देता हूं, बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट, यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट, देश के इलेक्शन का रिजल्ट सब आपने गिना दिया, यही खूबसूरती थी कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता थी, सुनिए इसलिए इसलिए इसलिए परिवर्तन होता था, कोई क्वेश्चन आज तक नहीं उस पर लगाता था, आप भी नहीं लगाते थे, लेकिन अब इतना क्वेश्चन क्यों लग रहा है, क्योंकि लोगों के मताधिकार छीन लिए गए, बंगाल में क्या बताइए, जस्टिफाई कीजिएगा, 33-36 लाख लोगों का वोट आप छीन लेते हैं, 1,26,000 मात्र वोट जो है ट्रिब्यूनल में फैसला हो रहा है उसमें 93% लोगों का वोट सही पाया गया, दिल्ली में 33,13,000 को जो है अपने क्वेश्चन के दायरे में ला दिया, और कितने समय लगेंगे जब इस पर आएगा, बात नहीं है, दूसरी बात आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 45 दिन क्यों, आप 45 दिन में क्यों चाह रहे हैं उसको खत्म कर,
2: उसका भी
5: कानून क्यों बना दिया आपने, हमने मांगा था हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में जब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको निर्णय दिया एक सप्ताह के अंदर कहा कि आपने 45 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दूसरी बात आपने जो है चुनाव आयोग को इम्यूनिटी सिविल और फौजदारी केस से जो बिल लाए थे उस बिल में नहीं था 2023 के बिल में दिसंबर में, लेकिन अलग से आपने जो है एक संशोधन किया और धारा 16 में आपने उसको जोड़ने का काम किया ताकि ये चुनाव आयुक्त जो हैं जो आपके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे वो कम से कम जो अनर्थ कर ले लेकिन उन पर कोई जो है इम्यूनिटी रहेगी, उन पर कोई फौजदारी और सिविल केसेस नहीं होंगे, ये कहां का न्याय है,
2: कोई भी गलती करे उसको कोई भी नहीं अपराध आप दे सकते।
1: चिराग पासवान कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आकर सफाई दे, अरे सामने आना चाहिए ना उनको। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास
2: जो खिलवाड़ करेगा वो।
1: सुधांशु जी जल्दी से
2: उस पर राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा, जनता सब देख रही है।
1: सर जो चिराग पासवान कह रहे हैं, आप लोग भी कहिए ना कि चुनाव आयोग सामने आए।
2: उपाध्याय जी जवाब नहीं दे पाए कि जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहाँ चुनाव आयुक्त कैसे अपॉइंट होते हैं राज्य के चुनाव आयुक्त। अरे बोलो ना, कोई बैठा नेता नहीं, मैं तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर
5: ये बताइए 23 से पहले जो आप लोगों ने जो चेंज किया है, 10 सेकंड,
2: 23 से पहले कैसे होता था
5: जो अभी जो आपने चेंज किया,
2: पहले कैसे होता?
5: सुप्रीम कोर्ट
2: के सिंगल प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर होता था।
5: मैंने चीफ, अरे भाई एक रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत दिन रहे ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा के आप अपने मंत्री को ऐसे
1: दिखाइए दिखाइए। विवेक विनीत जी हमारे साथ है, एक बार विनीत जी से मैं एक बार भी नहीं ले पाई। विनीत जी क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, क्या सरकार से कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को सामने लाए, या चुनाव आयोग से ज्ञानेश कुमार से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं चिराग पासवान? अनम्यूट कीजिए।
4: अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे आदरणीय नेता ने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कह दिया है कि कोई भी संवैधानिक संस्था हो और विशेष करके आपका जो उत्तरदायित्व है वो जनता के प्रति बनता है, और मेरी पार्टी 2022 के बाद बड़ी मेहनत से बनाई गई इस पार्टी को, इस पार्टी में जो भी जनता की आवाज होगी हम उसको मुखरता से प्रमुखता से उठाएंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे मेरे हैं जो कि मेरे माध्यम से जनता जो है, आपके जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहते हैं, कृपया करके मुझे 30 सेकंड दे दीजिए।
1: विनीत जी वो चाहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या चाहते हैं वो?
4: हम वही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस बात को क्लियरिटी देनी चाहिए।
1: देखिए
4: चीजें क्या है
1: सुधांशु जी, वो तो चाह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको भी यही बात बोलनी चाहिए।
4: क्योंकि मुझे खत्म कर लीजिए,
1: अच्छा पूरा कीजिए,
4: क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अगर जनता में कोई भी अगर गलत मैसेज जाता है तो मुझे लगता है कि उसको क्लियर करना उनका उत्तरदायित्व है। दो चीजें मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आर्टिकल जो आया है ऐसा ही कुछ आर्टिकल नहीं राफेल के बारे में आया था हिंदू में, उसके बाद से ये चीजें गढ़ी गई थी, नैरेटिव गढ़ी गई थी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं 14 डिसेंट पॉइंट देख रहा था अंजना जी, एंड बी श्योर जो मेरी छोटी बुद्धि है मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उसमें वोट चोरी कहां लिखा हुआ है, कहां मेंशन किया हुआ है। तीसरी बात, क्या विपक्ष जो है इस मुद्दे पे एकमत है, क्योंकि लखनऊ में तो कुछ अलग दिखता है, यहाँ पे कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है और जो सपा जो है वो अपना रथ यात्रा निकालती है, तो ये सब की क्लियरिटी देनी जरूरी है। और ज्ञानेश कुमार,
1: मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ विनीत जी, अगर थोड़ा सा आपने अध्ययन किया होता आने से पहले तो आप समझ जाते, इसमें डायरेक्ट दावा है कि ईसीआई नेट जो कि 40 पोर्टल्स को बंद करके एक डिजिटल बैकबोन इलेक्शन कमीशन का बनाया गया, उसमें आरोप है कि ये दावा था संधू साहब का कि ईआरओस
2: का आधार क्या है, कोई कागज नहीं, कोई
1: ठीक है ठीक है,
2: कोई स्टेटमेंट नहीं,
1: एक्सेप्टेड,
2: ये पत्रकार की कल्पना है।
1: तो मीडिया रिपोर्ट में ये लिखा है कि ईआरओ से, अरे सुनिए तो साहब, ईआरओ से उनका अधिकार लेकर सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा था सिस्टम को। अब समझे आप, अगर सेंट्रलाइज हो रहा था, ईआरओ जिसको अधिकार है एडिशन डिलीशन का उससे हटाकर सेंट्रलाइज किया जा रहा था, वोट की हेराफेरी थी।
4: इलेक्शन कमीशन का रिमार्क नहीं सुना है, उन्होंने कहा है सब ईआरओ के पास यूनिक आईडी पासवर्ड है, दे कैन एक्सेस इट। अब मुझे ब्लेम कर रही हैं आप, अभी आपने बात नहीं, अभी आपने बात कहा कि एसएसआर क्यों नहीं हो रहा है, एसएसआर क्यों नहीं हो रहा है, 2 साल से जब स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होता है तो एसएसआर इज नॉट रिक्वायर्ड। अब याद कीजिए कि बिहार में 65 लाख वोट जो कटे थे, मात्र 30,000 वोट लोग जुड़वाने के लिए पहुंचे थे, और यही विपक्ष की, बिहार में पहली बार हुआ था, मैं पटना में बैठा हुआ हूं, विपक्ष से कोई भी कंप्लेन नहीं आया था एक्सेप्ट सीपीआई एमएल। तो थोड़ा सा ये देखिए ना, और फिर उस पर जवाब दीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को बाहर आना चाहिए और इसके बारे में
1: नवल जी,
3: ये बार बार डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, एसआईआर का अभी आरटीआई के रिस्पॉन्स में ये कहा गया है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ उसका जवाब, एसआईआर के कॉन्टेक्स्ट में जो इलेक्शन कमीशन के टीसी कॉम है उनका ये है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, नो रिकॉर्ड, आप सुन लीजिए, देयर एग्जिस्ट नो डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट एंड एंडोर्समेंट ऑफ एसआईआर एट द इलेक्शन कमीशन ऑफिस, द टाइमिंग ऑफ डिसीजन टू इम्प्लीमेंट एसआईआर रिमेन्स अनवेरीफाइड, इट रेजेस सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, कि जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो फर्स्ट ये आपको मालूम है टीसी कौन
2: तो सुप्रीम कोर्ट को कैंसिल कर देना चाहिए था, फिर क्यों नहीं कैंसिल किया,
3: बिल्कुल
2: ये कौन सा डॉक्यूमेंट कोट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर देना चाहिए था, तो नहीं हुआ, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए आप,
3: आप कोई चीज सुनने को तैयार नहीं है, इससे पता चलता है कि चोर चोर मौसेरा भाई है। सुधांशु जी, जितना भी आप जवाब देंगे, जवाब जनता को नहीं दे पाएंगे कि चोरी हुई है, डकैती हुई है, और उसमें आप
1: सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ना, ये तो एक सच्चाई है, फैक्ट है।
3: सुप्रीम कोर्ट
1: SIR को अपहेल्ड किया, ये सारी बातें वहाँ बताई गई।
3: सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों को भी माना जो हमने रेज किया बिहार से।
1: हाँ, लेकिन अपहोल्ड किया ना, अपहोल्ड किया, लेकिन अपहोल्ड किया कि नहीं SIR?
3: उसके बैकग्राउंड में ये है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ऑटोनोमस है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर सकती है, केवल सलाह दे सकती है। आप इस चीज को
1: देखिए, विपक्ष कह रहा है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहिए।
2: मैं बता रहा हूँ, सुनिए, BLO अपॉइंट होते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक, BLA अपॉइंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। 1,60,000 थे बिहार में, कितनों ने आपत्ति की है? हेलो, तुम्हारी पार्टी है, कितने BLO ने आपत्ति की? दो डाटा, कितने लोगों ने आपत्ति की? कोई आपत्ति नहीं।
3: और यहाँ बात मत कीजिए ना, आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बात कीजिए।
2: अरे पॉलिटिकल पार्टी आपके भी,
3: आपके भी तो
2: बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, राजद के आप प्रतिनिधि हैं, राजद के कितने बूथ लेवल एजेंटों ने लिखित शिकायत की, आइए बताइए दस्तावेज।
3: आधार हो सकता है वोट चोरी का?
2: अरे इसका मतलब वोट चोरी नहीं हुई करेंगे, आपका एरिया का राज नहीं होते हैं, नहीं हुई,
3: आप डिजिटल सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हैं।
1: ठीक है, चलिए उपाध्याय जी, उसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स।
2: अच्छा, कांग्रेस के BLA बता,
5: मैं चिराग पासवान जी के उस मक्तव्य को प्रशंसा भी कर रहा हूं, कम से कम उन्होंने इस बात को तो रखा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ेगी तो देश के लोगों का भरोसा इस लोकतंत्र पे और मजबूत होगा और हर व्यक्ति के चुनाव वोट के अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। इस बात को लेकर के भाजपा के लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है? भाजपा के लोगों को भी आगे आना चाहिए कि यदि बढ़ेगा। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा है कि बाकी चलिए राफेल ओफेल की बात, क्यों सबको पता है कि अनिल अंबानी को मेंटेनेंस का दिया गया था, अनिल अंबानी का कितना मेंटेनेंस राफेल का उन्होंने किया, वो ठेका कहां चला गया?
1: इसकी भी चर्चा हो रही है कि अंबानी जी की फोटो आप लोगों ने कल हटा दी थी।
2: ये सुनिए, कहां दिया गया अनिल अंबानी को राफेल का मेंटेनेंस? बताइए के डील में जवाब दीजिए, राफेल के डील में दसॉल्ट और अंबानी के ही टीम को दिए थे ना,
3: कोई मेंटेनेंस
2: का? उसका 1,000 करोड़ का ठेका था, आपको याद ही नहीं है? भूल गए, छोड़िए, पुराना बात हो गया।
3: बताइए,
2: अरे भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कोई मेंटेनेंस, कंपनी कहाँ गई? वो कंपनी कहाँ गई? लेकिन अभी चुनाव आयोग पर है। मैं भटकूंगा नहीं, मैं मुद्दे पर आऊंगा। चुनाव आयोग की बात अभी हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव, दो चुनाव आयुक्तों ने जो आपत्ति दर्ज की है, या तो आप उसके साथ हैं या आप ज्ञानेश कुमार के साथ हैं, या तीनों के साथ नहीं है, ये जनता जवाब चाहती है। और चुनाव आयोग तीनों
1: प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते?
2: प्रेस कॉन्फ्रेंस
1: क्यों नहीं तीनों सामने आते हैं?
0: अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
2: देखिए
0: अब हो गया ना, हमारे
1: राहुल गांधी को जवाब देने के लिए अगर वो इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो यहाँ तो लोगों के मन में शंका है।
0: ऐसे पूर्ण एग्री करता हूँ कि आज जो सिचुएशन हो गई है, अपोजिशन को, देश को और पत्रकारों को, सब सबको चाहिए, और इंटरनेशनल स्तर पे जो इस तरह से चर्चा हो रही है और हमारे उसकी बदनामी हो रही है संविधान की बॉडी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जिसकी चारों तरफ दुनिया में गूंज है, इसलिए मैं समझता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंटली करना चाहिए या जिनको कोई आपत्ति उनको
1: कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से।
2: बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में सभी बराबर है, हर नागरिक बराबर है, हर मीडिया संस्थान बराबर है, ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी बराबर है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार बराबर है, अधिकार नहीं, अधिकार, अब प्रश्न पूछने का अधिकार हर पॉलिटिकल पार्टी को है। भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं?
3: पूछ रहे हैं
2: 2000। अब सुनिए,
3: उससे
1: इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, माय गॉड मजा आ जाएगा।
1: कैची है वायरल
0: है
2: आप पे, वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे, बैठ
1: बैठ जा, बैठ जा।
2: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
1: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: Die बात एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: I like this only. तेरा प्यार प्यार प्यार
4: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
5: Money, money, money, money, every month.
6: सोच बदलो और बैंक भी.
7: एक दो, एक श्राम.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: बिजली का बिल पेड,
10: मैं मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
11: इतना माही वे।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
12: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
2: असली शहद असली स्वाद।
13: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
15: आगे आगे,
16: अरे उधर
15: उधर,
16: करेक्ट करेक्ट,
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
4: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
3: स्मॉल बैंक?
4: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
3: Okay.
4: Ujjivan, nothing small about us.
5: In association with E3 HDMR, ye rishta lamba chalega. अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
6: चौल में घर छोटे होते थे बट लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। जिस बच्चे की माँ दूसरों के घर पे काम करके जीवन निर्वाह कर रही थी, उस बच्चे को पैसों के बारे में समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
7: शॉर्टकट्स होते हैं क्या पैसा कमाने?
6: वॉरेन बफेट का एक रूल याद कर लिया, रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमने जो अनुभव किया है ट्रेडिंग करके लोगों के घर टूटते हुए देखे, ट्रेडिंग करके घर बनता हुआ बहुत कम देखा है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है।
5: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
8: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
9: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
10: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
5: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
11: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
12: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कर सकते।
5: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
13: देश भर में SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना Extra 2AB, चुनाव आयोग में Extra 2AB, संधू जी और जोशी जी आ गए। अब वो Extra 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी। हम ज्ञानेश जी को बात कहना चाहते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं इट्स डन ब्रो, हो गया, मान जाओ, राहुल जी की सलाह मान लो, इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ, नहीं तो नाज़ी युग जब खत्म हुआ था आपको मालूम है क्या हुआ था? न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे। ये दो शब्द गुप्ता जी को आप जाकर बता दीजिएगा, सुनते हैं आजकल बड़े फोन कर रहे हैं आप लोगों को।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सियासी संग्राम। अलग अलग शहरों में सड़क पर उतरी कांग्रेस, लेकिन बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने की पद्म भूषण देने की मांग। चुनाव आयोग पर उठते सवालों और विपक्ष के सामूहिक हल्ला बोल के बाद एनडीए से आई आवाज। चिराग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुनाव आयोग को हर शंका को दूर करने की दी सलाह। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय बने गवाह, सभी के बयान हुए दर्ज। समस्तीपुर में छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सख्त। 4 आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन। पहले हुई थी कोर्ट में पेशी। पहाड़ों पर भारी बारिश फिर बनी मुसीबत। उत्तराखंड में कल के लिए अलर्ट। कुछ जिलों में स्कूल बंद। दार्जिलिंग में सैलाब में बहा पुल। शो की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार के समस्तीपुर में छेड़छाड़ के वायरल वीडियो पर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 4 आरोपियों के अतिक्रमण की गई जगहों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। समस्तीपुर में 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच बुलडोजर एक्शन को ये तस्वीरें सामने आई हैं।

0: इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जमुई पीड़िता के साथ तस्वीर साझा करने पर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला किया है। तेजस्वी ने बिहार पुलिस पर सम्राट के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करने की मांग की है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर बिहार पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो कोर्ट जाएंगे।
1: लेकिन जिस प्रकार से पॉक्सो एक्ट का धजिया सम्राट चौधरी जी ने उड़ाया है वो आप सब लोगों ने देखा होगा। मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री हैं, काम के मुख्यमंत्री नहीं है। तो इनको तो इनके ऊपर बिहार पुलिस तुरंत पॉक्सो एक्ट लगाए। जमुई में या और कहीं भी घटना हुई है तो पुलिस ने कई लोगों पर 80-90 लोगों पर जो है पॉक्सो एक्ट लगाया है। अगर मुख्यमंत्री पर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा, कौन मानेगा पॉक्सो एक्ट को? और कानून सबके लिए बराबर है, अगर मुख्यमंत्री को अगर आप नहीं बनाते हैं अभियुक्त पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन में तो बाकी लोग को छोड़ दो, फिर बाकी लोगों को क्यों बनाया गया है? और अगर बिहार पुलिस नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री जी को पॉक्सो एक्ट का अभियुक्त तो हम लोग बिहार पुलिस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे।
0: उधर चुनाव आयोग को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। आज कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरे और जमकर उन्होंने हंगामा किया, ये तस्वीरें आ रही हैं।
2: दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, एमपी से लेकर हरियाणा तक, पंजाब से लेकर बंगाल असम तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए।
3: कांग्रेस तादर व्यापार इम्पीचमेंटर व्यापार आगे पार्लामेंटे ज्ञानेश कुमार बिुदे इम्पीचमेंट आना फिट केस फॉर इम्पीचमेंट जेखने सांविधानिक পদকে অপব্যবহার করা হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমার ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী সে কখনো তার পদে থাকতে পারে না।
2: इस बीच आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर नए आरोपों की झड़ी लगा दी। पार्टी ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दावा किया कि बेलो ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
4: सत्ता पर अब ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं कि उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
2: भले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पूरा जोर लगा दिया हो लेकिन विपक्ष के दलों में नाराजगी सिर्फ बयानों में नजर आई। फिर चाहे टीएमसी हो, आरजेडी या फिर समाजवादी पार्टी, जिन्होंने इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। उधर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी चुनाव आयोग से मामले पर सफाई मांग रहे हैं।
5: मुझे लगता है ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग खासतौर पर सीईसी की बनती है कि वो अपनी तरफ से पक्षों को मजबूती से रखें।
2: सीसी के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर सीजेपी भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी देने लगी है।
6: सब दिन समय एक सरीका नहीं है, थोड़ा शर्म करो तुम कि देश के संविधान के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। अभी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते।
7: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
8: कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
2: राहुल पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव के बहिष्कार के स्तर तक विरोध तो नहीं करेंगे लेकिन आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ज्ञानेश कुमार के सभी फैसलों को गैर कानूनी घोषित किया जाए और मूल फॉर्म 6 को बहाल किया जाए, एसआईटी जांच हो कि 13 करोड़ वोटरों के नाम कैसे हटाए गए। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार, आईएएस मनीष गर्ग, डिप्टी ईसीए और ईसीआई की आईटी हेड सीमा खन्ना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बहरहाल चुनाव आयोग को लेकर जारी एक घमासान अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दाखिल चार्जशीट को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को मामले में गवाह बना दिया गया है, जहां उनके बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने चढ़ावे की रकम हटाने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद होने का दावा किया है। 200 से ज्यादा बार चढ़ावे की रकम को हटाया गया है, जिसमें 8 आरोपी शामिल हैं। वहीं बाथरूम से करीब 2.25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों से अमेरिकी डॉलर और सोना चांदी भी बरामद किया है। 23 सितंबर को एंटी करप्शन टीम ने कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां बीजेपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शल को बल का प्रयोग करना पड़ा।
9: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
10: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
9: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
11: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इसे पहले भी कहा, स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट, अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे। मत मिसलीड।
9: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
0: सूरत से आज हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेसिडेंट डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। सूरत सिविल अस्पताल में 1.5 महीने के अंदर ये दूसरी बार डॉक्टर की आत्महत्या की खबर है।
2: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
12: तो उसकी वो घर पे पता नहीं, वो नहीं गया, रिसेप्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी रिसेप्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
2: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर पुलिस ने दावा किया है कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनीत मिनोचा का बेटा ही है। पहले इस हत्याकांड में कारोबारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल ये है कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता के कत्ल की साजिश क्यों रची और मामले में अपनी पत्नी को कैसे फंसाया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
13: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया ट्विस्ट आया है, जहां बहू नहीं बल्कि बेटे के पिता के कत्ल में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
14: तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें सुब्रत की भी भूमिका है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था। सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है। सुब्रत को ये भी हमें जानकारी कि इनके पिताजी भी पार्टी करते थे, ये भी जानकारी में आया था कि ये पिता की और बेटे की अनबन थी, पटरी निभाती थी आपस में। और ये भी जानकारी मिली थी कि इनके जो पैसा इनको मिलता है वो पैसा बहुत कम मिलता है, इनकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है।
13: सवाल उठता है कि क्यों। तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते थे, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। लेकिन अब जब उनका बेटा ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मरवा डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है कि उनके पिता विनीत मिनोचा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके ना ले आए और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उनके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे।
15: कई जगह संबंध थे, अवैध संबंध थे कई औरतों के साथ, जिनमें से शक भी होता था कई बार कि मतलब कहीं और कोई आ ना जाए और किसी और को ना ले आए। वो ले आने का मतलब
13: सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, उसे बस ये अफसोस है कि पिता को चाकुओं से गोद कर मारा, क्योंकि डील तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी।
16: तो एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह, क्या आपको पछतावा है?
17: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया, मैं वैसे नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
13: लेकिन सवाल है कि क्या इस प्लान में सुब्रत की पत्नी शालू शामिल थी या नहीं। सुब्रत तो इनकार कर रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस ने अभी तक शालू को क्लीन चिट नहीं दी है। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
0: इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की अर्जी पर मेटा को आपत्तिजनक तस्वीर हटाने के लिए आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सौरभ दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया है। पीड़ित महिला ने इन पर पीएम मोदी के साथ उनकी एआई से बनी तस्वीरों को मॉर्फ करके सर्कुलेट करने का आरोप लगाया है।

0: आज पूरा देश गणेश उत्सव के रंग में रंगा हुआ है, जहां गणपति के विदाई का वक्त आ गया। अलग अलग शहरों से गणपति विसर्जन की भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं।
1: बाप्पा की विदाई का वक्त आ चुका है। मुंबई की सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कोई डांस कर रहा है, कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। जिस शहर में पिछले 12 दिनों से गणपति के जयकारे गूंज रहे थे, वहां विसर्जन की शुरुआत हो गई है। गली मोहल्लों से लेकर बड़े बड़े गणेश पंडालों तक हर तरफ बप्पा को अंतिम विदाई का आरंभ हो चुका है।
2: ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया, बप्पा के सेवादार बप्पा के साथ लगातार उनकी सवारी पर है और एक खास म्यूजिक के साथ बप्पा का यहाँ पर आगमन। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, लालबाग के राजा की। आप बहुत ही ज्यादा करीब से इस समय लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। आप देखें, यहाँ पर लालबाग के राजा की दरबारी में मुंबई पुलिस भी एक बड़ी संख्या में मौजूद है, 22,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी।
0: मध्य प्रदेश में 21 सालों बाद सड़कों पर सरकारी नियंत्रण वाली सरकारी बस सेवा आज से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा नाम से इस सेवा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भोपाल से 7 शहरों में चलने वाली 351 बसों को हरी झंडी दिखाने का उन्होंने काम किया।
3: मध्य प्रदेश में 21 साल के बाद सरकारी परिवहन सेवा एक बार फिर से शुरू हुई है, यानी सड़कों पर एक बार फिर से सरकारी बसें दौड़ेंगी और इस सुगम परिवहन सेवा

0: के पहले मुसाफिर बने हैं खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने 21 सालों के बाद मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सेवा को शुरू करवाया है। मुख्यमंत्री जी, आप खुद पहले मुसाफिर भी बने हैं, सोच क्या रही थी 21 सालों तक जो सार्वजनिक परिवहन बंद रहा उसको शुरू करने
1: की? ये अंग्रेजों के समय से चली आने वाली सड़क की सरकारी बसों के आधार पर राज्य परिवहन निगम जनता की सेवा करता था। कांग्रेस के शासनकाल में कुप्रबंधन के बलबूते पर राज्य परिवहन सेवा को बंद करने का निर्णय किया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य से यह 21 साल पहले आउट हो गई। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार ने इस बस सेवा को पुनर्स्थापित किया। आज 1500 से ज़्यादा बसें राज्य के अंदर, नगर के अंदर और राज्य से बाहर अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है।
2: अब बात बाजार की, क्या है शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचा सोने चांदी का भाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
3: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 315 अंक चढ़कर 73,896 और निफ्टी 77 अंक की बढ़त के साथ 23,141 पर बंद हुआ। गुरुवार की तेज गिरावट के बाद निचले स्तरों पर खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और एशियाई बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेतों का भी असर रहा। हालांकि बाजार में खरीदारी चुनिंदा शेयरों तक ही सीमित रही। शेयर बाजार में तेजी के साथ रुपया भी मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे मजबूत होकर 95.80 रुपए पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट में सुधार और आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप से रुपए को सपोर्ट मिला। वहीं सर्राफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी रही और सोना 351 रुपए बढ़कर 1,51,136 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 1,070 रुपए की बढ़त के साथ 2,29,318 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। डॉलर में नरमी और पिछले सत्र की गिरावट के बाद खरीदारी से घरेलू सर्राफा बाजार में सोने चांदी को सहारा मिला।
2: अब बात एशियन गेम्स की, जहां भारतीय खिलाड़ियों का जलवा जारी है। क्या कुछ रहा आज एशियन गेम्स में खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
4: शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर पर निशाना, टेबल टेनिस में जीता कांस्य पदक, एशियन गेम्स में क्रिकेट के बाद आखिरकार बाकी खेलों में भी भारत ने सोने का खाता खोल लिया है। शुक्रवार को भारतीय जोड़ी ने शूटिंग में देश के लिए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। भारत की सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में भारत का ये पहला गोल्ड है। इसके अलावा 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारत ने सिल्वर अपने नाम किया। ये करिश्मा किया ऐश्वर्य प्रताप, रुद्रांश और नीरज कुमार ने।
5: हमें पता था कि हम कर लेंगे मेडल, मतलब तब हम फाइनल में आए तो हम कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि हमारा आ जाएगा आराम से मेडल, और गोल्ड का नहीं पता था कि हमारा गोल्ड आ जाएगा, और गोल्ड आ गया, वो भी एशियन रिकॉर्ड के साथ आ गया, तो बहुत अच्छी बात है।
6: मैं सोच रही थी कि शूटिंग में गोल्ड लेके आऊँ, मैं लेके आऊँ, लेकिन इंडिविजुअल तो मैं नहीं लेके आ पाई, तो मिक्स टीम में आ गया, तो आई एम हैप्पी।
4: इसके अलावा दिया चिताले और मानुष शाह की जोड़ी ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है, जबकि मनप्रीत कौर ने शॉटपुट में 17.17 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। हॉकी और पुरुष क्रिकेट जैसे कई खेलों में गोल्ड मेडल की आस अभी भी बनी हुई। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और

0: विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
1: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ
3: ओला ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ, तू
3: अभी तो चार्ज हुआ यार।
4: ओला बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
14: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: यार लोन भूल गया। मैरी
5: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
6: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
7: There's nothing small about it.
8: Ujjivan, nothing small about us.
9: आगे आगे।
10: अरे उधर
9: उधर क्या?
10: Correct correct.
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
13: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
14: मेरे पास एक आइडिया।
12: क्या?
14: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंटा टीएमटी बार से जो बना है,
15: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
16: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
17: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
18: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
19: तो कौन सी बनानी है?
20: एकदम सॉलिड।
21: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
22: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
23: आई लाइक दिस ओनली।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
4: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
5: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
6: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
7: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
8: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
9: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
3: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
10: मित्रों, आज मैं कुछ वक्रद्रष्टा लोग जो है वो भारत के जीडीपी के आंकड़ों को भी झुठलाने का प्रयास करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मूडीज ने भारत का विकास दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया। जापान की प्रमुख रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की सॉवरेन रेटिंग के BBB+ से अपग्रेड कर A- तक पहुंचा है। और पिछली तिमाही में भारत ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए 7.8% की ग्रोथ रेट को अचीव किया है। फिर भी कुछ लोगों को ये डेड इकोनॉमी लगती है, मैं उनको कहता हूं कि जिनकी सोच ही डेड हो उनको वाइब्रेंसी नहीं दिखाई पड़ती है, उनको सब जगह डेड ही डेड दिखाई पड़ता है। मित्रों, ये वक्रद्रष्टा लोग भारत का विकास नहीं देख सकते।
11: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत के वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था। जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए गया तो तमाम वहां के पुजारियों ने कहा कि भाई देखो, आप मंदिर को मत तोड़िए, भगवान सोमनाथ की मूर्ति को क्षतिग्रस्त मत करिए, बदले में जितना तुम्हें सोना चाहिए, जवाहरात चाहिए, हम तुम्हें दे देते हैं। उसने कहा नहीं भाई, मैं केवल लूटने के लिए थोड़े आया हूं, जो मिलेगा तो मैं लेके जाऊंगा ही, लेकिन मेरा उद्देश्य तो भारत की सनातन परंपरा को नष्ट करना है। और उसने भगवान सोमनाथ की मूर्ति को भी तोड़ा, मंदिर को भी क्षतिग्रस्त किया, लूटपाट करके फिर वापस गजनी वापस चला गया, और हर आक्रांता यही करता रहा।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सियासी संग्राम तेज। अलग अलग शहरों में सड़क पर उतरी कांग्रेस, लेकिन बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने की पद्म भूषण देने की मांग। चुनाव आयोग पर उठते सवालों और विपक्ष के सामूहिक हल्ला बोल के बाद एनडीए से आई आवाज। चिराग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुनाव आयोग को हर शंका को दूर करने की दी सलाह। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को आपत्तिजनक तस्वीर हटाने का दिया आदेश। एक महिला ने अभिजीत दिपके, सौरभ दास और रांका पर एआई से बनी फोटो को मॉर्फ करके सर्कुलेट करने का लगाया था आरोप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर। चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल राय बने गवाह। सभी के बयान हुए दर्ज। समस्तीपुर में छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सख्त। चार आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन। पहले हुई थी कोर्ट में पेशी।

नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील। दिल्ली में डर लगता है, ये सवाल आज दिल्ली में रहने वाली हर महिला के मन में है, क्योंकि दिल्ली बदल ही नहीं रही है। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे देश की राजधानी में धरे के धरे रह जाते हैं। 2012 में जब निर्भया गैंग रेप केस हुआ था तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। तब लगा था कि शायद दिल्ली की ये तस्वीर बदलेगी, लेकिन इन 14 वर्षों में कुछ नहीं बदला। 4 दिन पहले दिल्ली के पार्क में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के केस ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: यही हैं दिल्ली के हैवान आसिफ, हेमंत और मुकेश। इन तीनों ने ही दिल्ली के एक पार्क में एक नाबालिग के साथ पुलिस बनकर गैंग रेप किया।
1: की नोक पे जो भी हीनियस ऑफेंस किया गया वो चाकू की नोक पे किया गया।
0: इस गैंगरेप के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है।
2: बच्चों को लेकर के आते, हस्बैंड भी कभी कभी नहीं आते और ये सब यहाँ पे हो रहा है, सब सुन के डर लगता।
0: सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस ऐसी घटनाओं के बाद ही जागती है और क्या सिर्फ कैमरों के लिए ही ऐसे वीडियोज बनाए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में ऐसी वारदातें रुक नहीं रही। दिल्ली के इन तीन हैवानों की पूरी हैवानियत 17 साल की पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताई है। उसने बताया कि कैसे गन दिखाकर तीनों आरोपियों ने रेप किया। उसके बयान से ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में कानून का कोई डर नहीं रह गया। पीड़िता ने बताया है कि 21 सितंबर को वो अपने जन्मदिन पर कालकाजी मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। मंदिर में दर्शन के बाद वो शाम को 7 बजे के लगभग अपने एक दोस्त के साथ पार्क पहुंची। आस्था कुंज पार्क के गेट नंबर 7 से दाखिल होने के बाद वो दोनों एक बेंच पर बैठे थे, तभी पीछे से 30-35 साल के उम्र के तीन लड़कों ने उसके दोस्त को पकड़ा और थप्पड़ मारा। तीनों ने खुद को पुलिस वाला बताया और पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद उनमें से एक लड़का पीड़िता के दोस्त को पकड़कर दूसरी तरफ ले गया और फिर बाकी दो लड़कों ने पीड़ित को झाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया।
3: पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पीड़िता ने हैवानों को यह भी कहा कि अगर आप पुलिस वाले हैं तो मेरी मम्मी से बात कर लीजिए, लेकिन तीनों आरोपियों ने दोनों पीड़ितों का मोबाइल फोन छीन लिया। आसिफ ने अपना बंदूक निकालकर पीड़िता को डराया, जबकि दो और आरोपी जो वहां मौजूद थे उन्होंने चाकू निकालकर पीड़ितों को धमकाया।
0: सोचिए, 17 साल की एक नाबालिग लड़की जो अपने जन्मदिन पर दर्शन के लिए मंदिर गई थी, उसे क्या पता था कि उसके साथ इतनी घिनौनी वारदात होने वाली है, उसे पार्क के अंदर यह हैवान मिलने वाला।
3: पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि इसके बाद तीनों आरोपी उसे पार्क के एक अंधेरी जगह पर लेकर गए और बारी बारी से उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपियों ने पीड़िता की गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों को आरोपियों ने धमकाया, डराया और जान से मारने की धमकी दी। पार्क से बाहर आकर पीड़िता ने अपने दोस्त को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता के दोस्त ने पुलिस को कॉल करके पार्क बुलाया।
1: क्योंकि इसमें चाकू की नोक पे जो भी हीनियस ऑफेंस किया गया वो चाकू की नोक पे किया गया। पीड़िता जो थी वो पार्क में रही थी, दर्शन करे कालकाजी मंदिर में, उसके पास कॉन टेम्पल भी गई, उसके पास जो आशा कुंज पार्क है उसके अंदर ये सारी घटना घटित हुई।
4: और उसके साथ जो लड़का मौजूद था उसे भी साइड में ले जाकर पीड़िता बार बार चिल्लाती रही, कहराती रही कि मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, मुझे जाने दो। इन तीनों ने अपने आप को पुलिस वाला बताया। इस चक्कर में ये घिनौना अपराध कंज्यूम हो चुका वहां पर आशा कुंज में इन्होंने घटित किया। और पीड़िता ने हमेशा यही बोला कि सर अगर आप पुलिस में हैं, जो भी चीजें हैं, तो आप अपने मुझे अपने पेरेंट्स से बात कराइए या मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाने दीजिए, जो कि इनकी तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ। हम दिल्ली पुलिस की सराहना करते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है। तीनों एक्यूज को एज सून एज पॉसिबल दे अरेस्टेड देम, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी दिए गए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी गई। जो भी आईओ साहब हैं, जो भी दिल्ली पुलिस की टीम है, इसमें दो टीम गठित की गई थी, एक अमर कॉलोनी की और एक कालकाजी पुलिस स्टेशन की। और जो भी इसमें लेडी आईओ है उसका बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और अच्छी तरीके से सारे एक्यूज को उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया और उन्हें जेसी में भेजा।
0: इस घटना के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन आरोपियों ने पहले भी इस पार्क में अंधेरे का फायदा उठाकर इस तरह की वारदात तो नहीं की है, क्योंकि ये पूरी तरह से शातिर लग रहे हैं। जानकारी मिली है कि वारदात के बाद दो आरोपियों ने अपने कपड़े धुल दिए थे। हेमंत और मुकेश ने घर जाकर अपना लोअर समेत सब कुछ धो दिया था। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों के कपड़े बरामद कर लिए हैं। आसिफ, हेमंत और मुकेश तीनों आपस में बचपन के दोस्त। आरोपी आसिफ के मोबाइल फोन में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। वहीं मुकेश और हेमंत ने अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है।
1: तो उनका कहना यह था, उनकी एप्लीकेशन का जो एक्यूज साइड से पेश हुए थे, कि उन्होंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हमें बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं करे हैं। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मैंडेटरी जो कंडीशन थी वो कंप्लाई करी थी आईओ साहब ने, 164 की जो स्टेटमेंट है, जो 183 की स्टेटमेंट है विक्टिम की, वो भी अभियुक्तों के खिलाफ है, एक्यूज पर्सन के खिलाफ है। तीनों का नाम एफआईआर के अंदर भी मेंशन है और सारी चीजें वो मेंशन करी गई है प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करके। और एक अपराधी जो कि पार्क में जाते हुए लड़की के साथ जो घिनौना काम करा है इन्होंने, उसके लिए इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की हम कोशिश करेंगे। और हम विक्टिम साइड से हमने अपना पक्ष रखा है कि इनको उन्होंने पुलिस कस्टडी की जो मांग नहीं करी गई है आईओ द्वारा, क्योंकि पुलिस कस्टडी में जो भी इन्होंने रिकवर करना था, जो भी इनसी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, आईओ साहब द्वारा करी गई।
5: सारे डिफेंस के सारे जो उन्होंने एप्लीकेशन कराए थे सारे डिसमिस कर दिया उन्होंने।
0: जांच में शक है कि तीनों आरोपियों ने सोमवार शाम को 17 साल की लड़की को निशाना बनाने से पहले पूरी साजिश रची थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आसिफ हमेशा हथियार लेकर चलता था और क्या उसने इसी तरह पार्क में पहले भी दूसरी महिलाओं को भी निशाना बनाया है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
6: बात सिर्फ इस एक पार्क की नहीं है जहां ये वारदात हुई, बल्कि पूरी दिल्ली की है। दिल्ली पुलिस इस घटना के बाद अब थोड़ी एक्टिव हुई है, लेकिन अब क्यों और दिल्ली पुलिस कि ये सक्रियता कब तक रहेगी, जब तक कोई दूसरी वारदात नहीं हो जाती। असल में ये सिस्टम ऐसा बन चुका है जिसे अब कोई घटना, किसी भी घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उस आस्था कुंज पार्क से एक विशेष रिपोर्ट की है और ये बताया है कि ये कैसे इस पार्क की घटिया सुरक्षा व्यवस्था ऐसी घटनाओं को न्योता देता है।
0: दिल्ली में गैंगरेप की घटना के बाद अब दिल्ली पुलिस जागी। कालकाजी के जिस आस्था कुंज पार्क में यह घटना हुई है वहां भी अब दिल्ली पुलिस की दिन रात गश्त चल रही है। रात में भी दिल्ली पुलिस सक्रिय है। आस्था कुंज के अलावा दिल्ली के दूसरे हिस्सों के पार्कों और पब्लिक प्लेसेस में दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। बाकायदा घोड़ों पर पुलिस गश्त कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि हर वारदात के बाद ही पुलिस क्यों जागती है और यह भी सवाल है कि पुलिस कब तक जागी रहेगी। अगर दिल्ली पुलिस पहले जागी होती तो आस्था कुंज में यह घटना नहीं होती। डीडीए के इस पार्क में पीड़ित लड़की शाम को 7 बजे अपने दोस्त के साथ गई थी और इस वक्त कितना अंधेरा होता है यह आपको आज तक संवाददाता अरविंद ओझा बता रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इस पूरे पार्क का जायजा लिया, यहाँ सुरक्षा इंतजाम देखे और दुर्भाग्य देखिए, यहाँ इतने बड़े पार्क में ठीक ढंग से लाइट भी नहीं।
3: इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं, ये वो वक्त है जब 21 सितंबर को नाबालिग पीड़िता अपने दोस्त के साथ आस्था कुंज पार्क में दाखिल हुई थी। डीडीए का ये पार्क है। 7 बजे के आसपास कितना घुप अंधेरा इस पार्क में होता है हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 150 एकड़ में ये पार्क फैला हुआ है, डीडीए का पार्क है, लेकिन लाइट यहां पर नहीं है। तकरीबन 8 बजे के आसपास 21 सितंबर को पीड़िता के साथ यहीं पर गैंग रेप की वारदात हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस पार्क का जो एंट्री और एग्जिट गेट है उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। इसका मतलब कि पार्क में कौन दाखिल होता है और अंदर से जब बाहर जाता है तो उसके बारे में तीसरी आंख यानी जो सीसीटीवी कैमरा है चूंकि कैप्चर नहीं करता जब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। करोड़ों खर्च करके ये पार्क बनाया गया है लेकिन जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो लगभग ना के बराबर है और चूंकि 150 एकड़ में ये फैला पार्क है तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी होने चाहिए।
0: इस पार्क में ऐसे हालात हैं कि यह अपराधियों के लिए नंबर 1 अड्डा है। यह भी संभव है कि तीनों आरोपियों ने पहले भी इस पार्क में इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। दिल्ली पुलिस इसका भी पता लगा रही है। बड़ी बात यह है कि इस अंधेरे और सुनसान पार्क के आसपास दिल्ली के बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं। पास में ही कालकाजी मंदिर है, लोटस टेम्पल है और लेडी श्रीराम कॉलेज भी है।
3: पीड़िता ने जो शिकायत दी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी और तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली के पार्क का ये हाल देखिए, ये डीडीए का पार्क है। हम आपको दूसरी तरफ कैमरामैन आलोक दास से कहेंगे कि हमारे साथ फॉलो करें, हम आपको दिखाएं। ये देखिए, इस तरह से अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह से पूरा जो जंगल का एरिया है ये पार्क आस्था कुंज पार्क में ही आता है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की अगर कोशिश करते हैं तो सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको लोटस टेम्पल दिखाई देगा। और ये जो पूरा रूट है, इस रूट पर आप नीचे की तरफ ट्रैक करके दिखाइएगा आलोक दास कि इस तरह से यहाँ पर लोग वॉक करते हैं। लेकिन शाम होते ही तकरीबन 6:30 बजे के आसपास से ऐसा घुप अंधेरा होता है। कई कुछ जगहों पर यहाँ पर लाइट लगी हुई है लेकिन मोस्टली जगहों पर यहाँ पर लाइट नहीं लगी हुई है। और शायद जो आरोपी थे वो इसी बात का फायदा उठाते हैं और जो पीड़िता है उसके साथ पुलिस वाला बन के पहले उसके साथ पूछताछ करने की बात करते हैं, उसके बाद गैंग रेप की वारदात को अंजाम देकर यहां से फरार हो जाते हैं। जब पुलिस जांच होती है तो गेट के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखने की कोशिश करती है, तब पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज तो था ही नहीं। उसके बाद कड़ी मशक्कत, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाद जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राजधानी में इतने बड़े बड़े पार्क तो बना दिए जा रहे हैं लेकिन सुरक्षा के इंतजाम लगभग ना के बराबर है।
7: आसपास के लोग अक्सर इस पार्क में घूमने आते हैं लेकिन यहाँ इतना अंधेरा होता है कि वो शाम को यहाँ आना अवॉइड करते हैं। और
6: विशेष में वक्त है, अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
14: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
16: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट।
16: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
18: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
19: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
20: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
19: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
21: यार लोन भूल गया। मैरी
22: इट्स
21: जस्ट अ गुड बैंक ना।
22: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
21: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
22: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
23: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
21: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
24: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
25: अब पर वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
26: मेरे पास एक आइडिया।
24: क्या?
26: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
27: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
26: आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता
27: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
25: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
26: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
28: एकदम सॉलिड।
26: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
28: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
25: आई लाइक दिस ओनली।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
7: अब वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना रहा है,
9: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
12: तो कौन सी बनानी है?
13: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
14: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
7: आई लाइक दिस ओनली।
15: देश भर में SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधू जी और जोशी जी आ गए। अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी। हम ज्ञानेश जी को बात कहना चाहते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं इट्स डन ब्रो, हो गया, मान जाओ, राहुल जी की सलाह मान लो, इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ, नहीं तो नाज़ी युग जब खत्म हुआ था आपको मालूम है क्या हुआ था? न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे। ये दो शब्द गुप्ता जी को आप जाकर बता दीजिएगा, सुनते हैं, आजकल बड़े फोन कर रहे हैं आप लोगों को।
16: I have come today to the Parliament Street Police Station and given a complaint to the police station here against Chor Ganesh Kumar, Ganesh Chor Kumar, the sorry figure who is the Chief Election Commissioner of this country, and apparently he enjoys immunity under the CEC and EC Act of 2023, Section 16, which says that the Election Commissioners enjoy immunity from civil and criminal prosecution.
17: ये लोग चुनाव आयोग में, निर्वाचन सदन में लोकतंत्र का स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का स्लॉटर हाउस, कत्तल खाना बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसका मुखिया है ज्ञानेश कुमार। ये हमने नहीं कहा, और दो चुनाव आयुक्त है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये दो जो लोग हैं, देश उनका आभारी रहेगा हमेशा, ये बात सामने लाई है और हमारी बातों को पुष्टि मिले उससे। ये स्लॉटर हाउस चला रहा है, ये माफिया है, अभी का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो माफिया है,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सियासी संग्राम तेज, कई शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन, लेकिन बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने की पद्म भूषण देने की मांग।

0: आयोग को हर शंका को दूर करने की सलाह दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीर हटाने का आदेश दिया। अभिजीत दिपके, सौरव दास और रंका पर एआई से बनी फोटो को मॉर्फ करके सर्कुलेट करने का आरोप। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती समारोह में शामिल पीएम मोदी, पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या का भी कार्यक्रम। पहाड़ों से लेकर मैदानों में मुसीबत बनी बारिश, उत्तराखंड में कल के लिए अलर्ट जारी, दार्जिलिंग में बहा पुल तो यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आज खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जिस खबर के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं वो आपकी ताकत से जुड़ी है। आप हमारे दर्शक जिन्होंने सस्ते इलाज और पढ़ाई से जुड़े हक की रक्षा की। सबसे पहले हालांकि हम बात करेंगे चुनाव आयोग में खटपट की खबरों के बीच चिराग पासवान के अलग सुर की। ज्ञानेश कुमार पर चिराग ने क्या कहा है, उसका क्या मतलब है समझेंगे। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली पुलिस से जुड़ी है, जिसके सुरक्षा को लेकर दावे सवालों में है। और आज हमारी सबसे खास रिपोर्ट आज तक की खबर के असर से जुड़ी। मध्य प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हाथों में नहीं जाएंगे, हमने ये रिपोर्ट दिखाई, आपने समर्थन दिया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। पहले आपको दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पीएम मोदी भजन संध्या में शामिल हुए हैं।

0: और अब चुनाव आयोग से जुड़े विवाद की। चिराग पासवान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सफाई देने को कहा है। 24 घंटे पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगते हुए उन्हें सलाह दे रहे थे कि वो सरकारी गवाह बन जाएं वरना उनका बचना मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग में खटपट की खबरों के बीच विपक्ष के बाद अब सत्ता पक्ष में शामिल सहयोगी चुनाव की विश्वसनीयता का हवाला देते हुए ज्ञानेश कुमार से जवाब देने को कह रहे हैं।
1: देशद्रोहीज आर गोइंग टू गेट पनिश्ड। ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर।
2: ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के कामकाज का तौर तरीका राहुल गांधी के निशाने पर है। चुनाव आयोग में खटपट की खबरों ने राहुल को चुनाव आयोग के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को निशाना बनाने का मौका दे दिया।
1: बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री। दिस इज एन एक्ट against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens.
2: ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो। नई बात ज्ञानेश कुमार को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों का जवाब मांगना है। चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक बार फिर कटघरे में हैं।
3: 1951
2: खास बात यही कि शायद पहली बार सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए में शामिल सहयोगी दल ने उन्हें अपना पक्ष सामने आकर रखने को कहा है।
4: मुझे लगता है ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग खासतौर पर सीईसी की बनती है कि वो अपनी तरफ से पक्षों को मजबूती से रखें ताकि देश के एक भी नागरिक के मन में, मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
2: तो चिराग पासवान ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं तो फिर सफाई देने की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त की बनती है, वो अपनी बात रखे, क्योंकि मामला जनता से जुड़ा है। चुनाव प्रक्रिया में संदेह खड़ा होने का है, जो बात ठीक नहीं है।
5: ये हमारा विषय है।
2: तो एनडीए के साथी दल चुनाव आयोग के जरिए क्या सरकार को ये बता रहे हैं कि वो इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि मामला चुनाव से जुड़े संदेह का है। गौर करने वाली बात ये है कि बीजेपी की तरफ से वोट चोरी के आरोपों को लगातार खारिज किया जाता रहा है। राहुल गांधी के ताजा आरोपों के तुरंत बाद उसकी तरफ से इन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया।
6: पहली बात, उस न्यूज रिपोर्ट में किसी भी इलेक्शन कमीशन का कोट है, हां या नहीं? तो किस आधार के ऊपर कोई बोल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने यह बोला है? किसी भी न्यूज के बारे में मैं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए कहता हूं, बाकायदा संबंधित व्यक्ति को क्वेश्चन पूछा जाता है और उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। वो स्टेटमेंट कोटेड है? नहीं। एक भी क्या कोई ऐसी आपके पास रिपोर्ट है कि सर्वसम्मत से निर्णय ना हुआ हो? नहीं।
2: कांग्रेस के अंदर बीजेपी एक तरफ वोट चोरी के आरोपों से इनकार करती है तो वहीं उसकी तरफ से ज्ञानेश कुमार का न सिर्फ बचाव होता है बल्कि उन्हें पुरस्कार दिए जाने की भी मांग होती है।
7: राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता है, और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
2: ऐसा पहली बार नहीं है जब ज्ञानेश कुमार को सम्मान देने की मांग बीजेपी की तरफ से की गई हो। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर चुके हैं। ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं की इस तरह की मांगे, उनका बचाव, बीजेपी की तरफ से वोट चोरी के आरोपों को खारिज किए जाना और उसके बाद एलजेपी जैसे सहयोगी दल का ज्ञानेश कुमार को सामने आकर सफाई देने की मांग करना, कहीं न कहीं ये सवाल तो खड़ा करता है कि क्या इस मामले पर सत्ताधारी गठबंधन में एक राय नहीं है। आज तक के
0: तो चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच चिराग पासवान ये संकेत दे रहे हैं कि भले ही वो सरकार में हो लेकिन वो ज्ञानेश कुमार को डिफेंड नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस ने आज देश भर में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगते हुए प्रदर्शन किया, पर जमीनी विरोध से लेकर जुबानी बोल तक विपक्षी एकता पर भी कुछ सवाल है। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, जिसे पहली बार उठाने को लेकर श्रेय लेने की होड़ होती दिखती है।
3: Sir, will there be a point? Sir, will there be a point that you'll boycott the elections? Will it come to that? That you'll have to boycott the elections?
1: Thank you. Thank you very much.
8: Thank you. Thank you.
1: Distraction में नहीं जाऊंगा. I'll avoid the distraction.
2: This chain between राहुल गांधी को भरोसा है कि अगर 2029 में भी उनकी और विपक्ष की हार हुई तो फिर कोई इस फैसले को नहीं मानेगा. इस दौरान राहुल ने एक और भरोसा जताया और वो था विपक्ष की एकता को लेकर.
1: I have not used my imagination. Opposition में 100% agreement है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी को रोकना है. Not 99%, everybody. और frankly मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के अंदर भी लोग कह रहे हैं.
2: राहुल गांधी भले ही कहें कि वोट चोरी पर विपक्ष में एक राय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा है?
1: We are going to cooperate. हम opposition के साथ cooperate करेंगे. हम एक साथ उनके साथ काम करेंगे. This chain between
2: वोट चोरी के मामले को लेकर राहुल गांधी शुरू से आक्रामक रहे, इसलिए मामले को उठाने का श्रेय वो किसी और को लेने नहीं देते.
1: I've been saying from the beginning, 3 years now, that votes are being stolen, elections are not fair. Now you're saying to me that the Congress party is saying this. No, the Congress party was saying it.
2: राहुल कहते हैं कि वही इस मामले को सबसे पहले से उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बाकी नेता इस पर क्या सोचते हैं? क्या इसे लेकर भी कोई मतभेद है? इसे लेकर मतभेद कई लोगों को विपक्ष के किए गए प्रदर्शन और उस दौरान उसकी उदासीनता से दिखता है. बाकी दल इस मामले पर कांग्रेस की तरह ताकत दिखाते नजर नहीं आए.
9: मांग आप देख सकते हैं, अरेस्ट ज्ञानेश कुमार. ज्ञानेश कुमार की इस्तीफा और ज्ञानेश कुमार को अरेस्ट करने की मांग के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आज रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं. कल ही राहुल गांधी ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था नई दिल्ली में, और आज कांग्रेस उतर चुकी है रास्ते में कोलकाता में.
2: कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से लखनऊ तक, एमपी से लेकर बंगाल और पंजाब हरियाणा से असम तक प्रदर्शन किया. कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को खबरदार करते दिखे.
10: एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया.
2: चुनाव आयोग में मतभेद के दावों पर कांग्रेस के अलावा विपक्ष के सभी बड़े दलों ने ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा.
11: कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे. ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है.
12: दिस इलेक्शन कमीशन मस्ट बी अरेस्टेड. ही हैज नो मॉरल अथॉरिटी टू कंटिन्यू.
13: आज तक तो सिर्फ हम बोल रहे थे, मतलब विपक्ष, लेकिन आज पहली बार, शायद देश के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ होगा कि तीन आयुक्त होते हैं इस चुनाव आयोग में, और जो दो आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, इन्होंने अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास एक लेटर देकर कंप्लेंट दी है कि चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार की मनमानी चल रही है.
2: इस तरह राहुल की तरह अखबारी खुलासे के बाद सभी विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोला, लेकिन जमीन पर एकता का अभाव दिखा. चुनाव आयोग पर सवाल उठने के बाद कांग्रेस, आरजेडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन होता दिखा. कांग्रेस ने देश भर में इस मामले में अपनी मौजूदगी दिखाई, तो पटना में आरजेडी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव छोड़िए प्रदेश अध्यक्ष तक ने शामिल होना जरूरी नहीं समझा. तीसरा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर विधानसभा में एनसी विधायकों ने तख्तियां दिखाकर किया. मतलब पटना में कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव आयोग को घेरा, लेकिन अलग अलग.
14: और जिस तरीके से दो दिनों से हम देख रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद चल रहा है, चुनाव आयोग को लेकर विवाद चल रहा है, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है. और पटना में आप देखिए ये तस्वीरें, जब कांग्रेस आर ब्लॉक से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जो प्रदर्शन उन लोगों ने निकाला था, उसके बाद उन्हें विधानसभा पर रोक दिया गया था, लेकिन बैरिकेडिंग लगाने के बाद वो लोग यहाँ रुके हुए थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस को लगा कि ये लोग अब हटने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है, तो इनके खिलाफ देखिए यहाँ पर वाटर कैनन का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है.
2: गौर करने वाली बात यह है कि विपक्षी दलों ने प्रदर्शन करने के मामले में जहां कमजोरी दिखाई, लेकिन जब बारी वोट चोरी मामले का श्रेय लेने की आई तो ममता, उद्धव, तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक सभी नेता ये कहते सुने गए कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी के खिलाफ पहली शिकायत उनकी ओर से की गई।
13: प्रजातंत्र मारा जा रहा है और जैसे मैंने कहा कि एक जैसे कि एक तो जैसे गैंग होती है ना, जो पार्टी तोड़ती है, पार्टी की चोरी करती है और प्रजातंत्र का खून करती है,
10: होता है ना। आई टोल्ड यू सो, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, वो एक मोमेंट आता है राहुल जी की लाइफ में, वो मोमेंट बार बार आ रहा है, वो हर चीज वो पहले बता चुके हैं ये हो रहा है।
8: सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात रखी थी कि चुनाव आयोग को और इलेक्शन कमिश्नर जो भी हैं जिन्होंने इस तरह का भेदभाव किया है, संविधान और नियम कानून का उल्लंघन किया है, किसी की कठपुतली बने वो स्वयं इस्तीफा दे दें।
2: वोट चोरी के मामले में श्रेय लेने की होड़ में चुनाव आयोग वाले मसले पर अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा तक को समर्थन देने की बात कह दी, लेकिन भूले से भी राहुल और कांग्रेस का नाम उनकी जुबान पर नहीं आया।
8: फोन आया था देश के बहुत वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा जी का, वो भी अपने गांव से ये यात्रा लेकर के निकलना चाहते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। हमने उनको भी पूरा समर्थन दिया है। जो भी इलेक्शन कमीशन के जो नियम उल्लंघन किए हैं उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, हम तो पहले से ही लड़ रहे हैं। हम लोगों ने तो फेस किया है ये जो बाई इलेक्शन जिस तरह से इन्होंने लूटे थे। मैं तो कफन लेकर के लोकसभा में गया था, अगर आपको याद हो।
0: दिस चेन बिटवीन,
2: तो राहुल गांधी पूरे भरोसे से कहते हैं कि वोट चोरी पर पूरा विपक्ष एकजुट है, इस मामले पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जुबान से लेकर जमीन तक पर किए जाने वाले प्रदर्शन के दौरान ये एकता कम से कम फिलहाल तो नहीं दिखती। आज तक
0: विपक्ष के वोट चोरी के मुद्दे की पहली बड़ी परीक्षा 2027 के चुनाव में होनी है। सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, जहां चुनावी सीटों के बंटवारे को लेकर नेताओं की बयानबाजी के बाद अब एक नया मोर्चा खुलता दिखता है। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा शुरू किए जाने की बात अब आगे बढ़ती दिखती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि हम भी कन्नौज और मैनपुरी जा सकते हैं, कई सवाल खड़े करता है।
6: एंटी इनकम्बेंसी वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी के अंदर, इस गांधी परिवार के अंदर है। 100 साल से लगातार सत्ता में है कांग्रेस पार्टी की सत्ता में, और आज एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो अपनी सीट बगैर अपने सहयोगी दल की बैसाखी के नहीं जीत सकते। पिछले 25 साल से रायबरेली और अमेठी समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस पार्टी जीतती रही है, वरना सोनिया जी, राहुल जी की क्षमता नहीं है कि बगैर सपा के सपोर्ट के अपने दम पे अपनी खानदानी सीट निकाल लें।
2: राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर क्यों नहीं है, तो बीजेपी ने तंज के जरिए उन्हें यह बताया कि वो अपनी जीत तक के लिए समाजवादी पार्टी पर निर्भर है, जिस सीट पर कभी सोनिया गांधी 5 बार सांसद चुनी गई। वैसे रायबरेली को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ठनी हुई लगती है। इसकी वजह है अखिलेश यादव की यात्रा, जिसे उन्होंने शुरू करने के लिए रायबरेली को चुना।
8: इनका पाप का घड़ा भर गया है, जनता इनके ऊपर वोट डाल करके इनको हटाना के साथ साथ सफाया करेगी इन भारतीय जनता पार्टी का। लगातार इसी तरह पीडीए रथ चलता रहेगा, जहां पीड़ा होगी, जहां अपमान होगा, रथ वहां जाएगा।
2: अखिलेश ने अपनी यात्रा की शुरुआत उस धरती से की है जो कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। राहुल यहां से भले ही सांसद हों, लेकिन जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने जब गांधी परिवार के इस गढ़ को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतारा, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
15: चुनाव का समय है और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है। अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
2: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बयान क्यों आया, ये समझना भी जरूरी है। उसके पीछे की कहानी समझने के लिए रायबरेली में अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने चुनाव को लोधी बनाम योगी चुनाव बता दिया।
8: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
2: तो जिस रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा का शुरू किया जाना कांग्रेस को रास आता नहीं दिखा, रायबरेली जिले की जिन सीटों पर इस बार कांग्रेस अपना दावा मजबूती से रखने का मन बना रही थी, उसी रायबरेली की जमीन से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का नाम बताकर खेल कर दिया। रही सही कसर आशु मलिक जैसे अखिलेश यादव के करीबियों ने ये कहकर पूरी कर दी कि रायबरेली समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है।
16: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
17: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
16: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
17: उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
2: तो रायबरेली किसका गढ़ है, इसे लेकर इशारों इशारों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रस्साकशी दिखती है। इसलिए अखिलेश के यहाँ से रथ उतारने के फैसले को लेकर कार्यक्रम के शुरू से ही सवाल उठाए जाते रहे। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई कि यहाँ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी नेता उत्पीड़न के शिकार हुए थे, इसीलिए रैली को रायबरेली से शुरू किया गया।
8: जहाँ पीड़ा होगी, जहाँ अपमान होगा, रथ वहाँ जाएगा।
16: लेकिन रायबरेली से इस चुनावी प्रचार की शुरुआत की वजह क्या है?
17: जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाएगा, उनके साथ जुल्म किया जाएगा, सभी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ही कार्यकर्ता उन सभी के साथ खड़े हैं बड़ी मजबूती के साथ।
15: कल देखो आप, कल हम मौलाना तौकीर राजा साहब के घर गए, जिनको सरकार प्रताड़ित कर रही है, जेल भेजी है, वहाँ तत्काल हम सब लोग जाकर उनकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है।
2: 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी विकास रथ यात्रा निकाली थी, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा बदल दी थी और पार्टी को पूर्ण बहुमत की सत्ता दिलाई थी। इसके बाद 2017 और 2022 के चुनावों में भी अखिलेश यादव ने रथ को अपना मुख्य हथियार बनाया। हालांकि दोनों चुनावों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन 2022 की यात्रा ने पार्टी के वोट बैंक और सीटों में भारी इजाफा किया था। वहीं 2024 की रथ यात्रा ने उन्हें देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तक पहुंचा दिया था।
8: ये 24 में हारे हैं, 27 में इनका सफाया हो जाएगा।
2: अब 2027 की परीक्षा के लिए अखिलेश यादव एक बार फिर रथ पर सवार हैं। इस दौरान उमड़ रही भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं के हुजूम से समाजवादी पार्टी ये बता रही है कि वो चुनावी मोड में आ चुकी है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी तीर भले आपने देखे, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जो बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर आज नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखे। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ की, बता दिया कि बीजेपी के लिए यूपी में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे अहम है।
18: आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
2: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
18: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहाँ भारतीय जनता

0: विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
1: अमित शाह योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
2: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत की वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था।
1: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
3: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
1: 2022 की तरफ बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक भी
4: राजनीति के बाद अब बात बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी। सोमवार को कालकाजी में जिस तरह से एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद से दिल्ली पुलिस कटघरे में है। चिंता की बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद मंचलों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला मुखर्जी नगर से भी आया, जहां हिंदू कॉलेज की छात्राओं के साथ चार बाइक सवार गाली गलौज करते हैं, विरोध करने पर धमकाते हैं। इसके बाद छात्राएं पुलिस स्टेशन जाती हैं, जहां दावा है 3 थानों के चक्कर काटने के बाद छात्राओं की FIR लिखी जाती है। मतलब सड़क पर मनचले बेटियों को परेशान करते हैं तो थानों में पुलिस के काम करने का तरीका। इस मामले में 4 में से 2 आरोपियों को पकड़ने में दिल्ली पुलिस अब तक कामयाब हुई।
5: क्यों, हम लड़कियां हैं तो क्या हमें रात में निकलना नहीं चाहिए? 9 बजे कौन सी रात होती है? DU है ये। हमने बोला कि आप मतलब आप इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमसे क्या होगा। दिस वॉज अ स्टेटमेंट, दिस वॉज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, मैं चल के वहां बोल सकती हूँ। उन्होंने ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। वो तो हमारा लक था ना कि हम थोड़े दिन दहाड़े थे। वॉट इफ दे वुड हैव बीन सक्सेसफुल एट टेकिंग मी इनसाइड देयर कार, व्हाट वुड हैव बीन डन देन।
6: देश की राजधानी की बेटियों को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन क्यों?
5: 4 दिन का कैंडल मार्च निकलता, खत्म हो जाती बात, आई गई हो जाती कि ठीक है भाई कैंडल मार्च निकाल दिया, हमने तो अपने पार्ट का कर दिया, खत्म हो गई बात।
6: इसका जवाब मंगलवार रात की घटना है, जब एक छात्रा रात के 9:30 बजे अपनी दोस्त के साथ पैदल जा रही थी, तभी एक सफेद रंग की सफारी गाड़ी इनके पास रुकी और उसमें सवार लड़कों ने दावा है कि गाड़ी का शीशा डाउन करके उन पर कमेंट किया, विरोध करने पर गाली गलौज और धमकी दी और आखिर में अपनी कार में खींचने की कोशिश की। ये सब कुछ नॉर्थ कैंपस में हुआ। अब सवाल यह है कि दिल्ली में छात्राओं के साथ ऐसा क्यों हुआ? छेड़खानी का शिकार हुई ये छात्रा इसके लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि इन्हें अपने साथ हुई छेड़खानी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए 3 थानों के चक्कर लगाने को मजबूर किया जाता है।
5: पहले तो मैं मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन गई, बिकॉज दिस वाज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम विजयनगर। तो हम यहाँ आते हैं, देयर वाज अ वुमेन कांस्टेबल, तो उन्होंने हमसे इतना भी नहीं पूछा कि व्हाट हैज हैपेंड। मैं 2 लड़कियां थी, मैं और मेरी दोस्त थी, हम दोनों वहां पे जाते हैं, वो हमसे इतना भी नहीं पूछते कि हुआ क्या है, फॉर व्हाट हैव यू कम हियर, कुछ नहीं पूछते हैं। हमारे अंदर तो हमारे अंडर वो एरिया आता नहीं है, मॉडल टाउन आता है, तो आप वहां चले जाइए। वहां जाती हूँ मैं, वो मेरी थोड़ी बात सुनते हैं। एक तो आधे घंटे बाद उनके ऑफिसर आ रहे हैं, मतलब एज इफ इट इज नो मैटर, एज इफ तो रोज होता है, क्या हो गया, थोड़ी देर बाद भी आ जाएंगे तो क्या हुआ। ये नहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि हो सकता है अभी कैंपस में गाड़ी हो, अगर इमीडिएट एक्शन लेंगे तो शायद वो अभी पकड़ पाए। कुछ नहीं, आराम से मामला चल रहा है कि सोते हैं, खाते हैं, फिर चलेंगे, समय मिला तो जाएंगे, नहीं तो नहीं भी जाएंगे। वो सुनते

0: वो थोड़ा मतलब उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर वो ही इज ऑल्सो नॉट कन्फर्म्ड कि वेदर दैट एरिया कम्स अंडर देयर पुलिस स्टेशन और नॉट. वो वहां से छोड़कर आते हैं दोबारा हमें लेकर देखने के लिए. उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये तो हमारे अंडर भी नहीं आता, एक एरिया के लिए इतना चक्करम काट रहे हैं. फिर वहां से हम मुखर्जी नगर आते हैं. मुखर्जी नगर थाने में आने के बाद उन्होंने हमसे कंप्लेन रजिस्टर कराई और वो हमसे कहते हैं कि हो गई कंप्लेन तो आपकी, अब आप जाइए. नो एफआईआर हैज बीन फाइल्ड येट. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हो सकता था, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने सीधे कह दिया कि ठीक है कंप्लेन हो गई है, आप जाइए. जब हमने कहा कि हम एसएचओ से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि जिससे आपको बात करनी है आप वो बात कर लीजिए. ये उनके शब्द हैं कि जिससे आपको बात करनी है आप कर लीजिए, हमने हमारा पार्ट कर दिया, ये उन्होंने बोला है. और उसके बाद हम 3 बजे तक वहां खड़े थे. विद्यार्थी परिषद के जितने मेरे भाई, जितने मेरे दोस्त हैं, वो सब वहां पे थे और हम 3 बजे तक वहां खड़े हैं. हमने धरना प्रदर्शन भी वहीं पे कर दिया, प्रोटेस्ट भी वहीं किया, नारे वारे भी वहां पे लगाए. बट आफ्टर इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड ऑफ दैट पुलिस स्टेशन, कुछ नहीं कर रहे हैं. एफआईआर नहीं कर रहे हैं.
1: कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि छेड़खानी की शिकार छात्रा को मॉरिस नगर से बॉर्डर टाउन और फिर मुखर्जी नगर थाने के चक्कर लगवाए गए. वो रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक थाने में ही खड़ी रही. इस पूरी घटना की सबसे खबरदार करने वाली बात पुलिस का शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का रवैया है, जिसने एफआईआर दर्ज नहीं की न ही तुरंत कार्रवाई की. जबकि कुछ ही घंटों में इस पीड़िता ने अपने दोस्तों की मदद से आरोपियों की गाड़ी का नंबर, फोन नंबर, घर का पता और लोकेशन तक ढूंढ निकाली. लेकिन आरोप है कि दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही.
0: जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे भाई थे विद्यार्थी परिषद के, उन्होंने मेरे साथ रहकर गाड़ी का जो हमारे पास नंबर था, द पिक्चर दैट आई क्लिक्ड, उससे हमने उसका नंबर निकाला, उसका नाम पता किया, घर पता किया, फोन नंबर पता किया, किस कॉलेज में वो फैकल्टी ऑफ लॉ में है वो पता किया. एंड ये सारी लोकेशन, सारी चीजें जानने के बाद उसने अपनी खुद की लोकेशन भेजी, लाइव लोकेशन ही सेंट, करावल नगर की. थाने में है हम लोग, ये भी नहीं कि कोई घर, थाने में है हम, करावल नगर की उसने लोकेशन भेजी. अब तो सब आ चुका है, नाम, नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, फैकल्टी ऑफ लॉ का स्टूडेंट है, लोकेशन. ये बोल रहे हैं कि हम देखेंगे, क्योंकि जो आदमी के अंदर इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो बीच चौराहे पर खड़े होकर दो लड़कियों को गाली दे सके, वो कुछ भी कर सकता है. और यही रेपिस मेंटालिटी है, मैं आपको बताऊं, यही रेपिस मेंटालिटी है. इट इज नॉट कि कोई नया आदमी निकल कर आता है कि जो रेप कर रहे हैं, इन्हीं प्रकार के लोग हैं, इन्हीं के बीच में से हैं, जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, जो इस प्रकार की मेंटालिटी रखते हैं कि वो लड़की को खड़े होकर मां बहन की गालियां दे सकते हैं, ये वही लोग हैं जो कल को किसी का रेप कर देते हैं.
1: पीड़िता के मुताबिक आरोपी खुद को करावल नगर थाने के एसएचओ का रिश्तेदार बताकर धमका रहा था. सवाल ये है कि क्या इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई करने में इतनी सुस्ती दिखाई, और अगर पीड़िता के समर्थन में उसके दोस्त नहीं आते, धरना प्रदर्शन थाने में नहीं देते, तो क्या पुलिस आरोपियों की सफेद कार को जब्त नहीं करती? दिल्ली से हर्षित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो.
2: सोचिए, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को रात 11 बजे से 3 बजे तक 3 थानों में एफआईआर के लिए भटकना पड़ा. ये हाल देश की राजधानी का है. जैसा कि हर बार होता है, बड़ी वारदात के बाद पुलिस जागती है, दिखाती है कि वो बेटियों की सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए कदम उठा रही है. इस बार भी ऐसा ही हुआ. कालकाजी गैंगरेप केस के बाद दिल्ली पुलिस के जवाब वारदात वाले पार्क में गश्त लगाते दिखे. लेकिन सवाल यह है कि अगर गैंगरेप की वारदात के बाद ही पुलिस को पेट्रोलिंग की याद आई, पुलिस की तरह डीडीए की नींद भी टूटी. आस्था कुंज गैंगरेप के बाद डीडीए भी पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था अब मजबूत करेगा.
3: खबरदार, दिल्ली पुलिस एक बार फिर बड़ी वारदात के बाद जाग चुकी है. कालकाजी मंदिर के पास जिस पार्क में एक नाबालिग से रेप हुआ, उसी पार्क में दिल्ली पुलिस घोड़ों पर घूम रही है. दिल्ली पुलिस अगर बेटियों की सुरक्षा को लेकर सजग होती तो आसिफ, हेमंत और मुकेश नाम के ये हैवान दिल्ली के एक पार्क में एक नाबालिग के साथ पुलिस बनकर गैंगरेप नहीं करते. लेकिन अब ये वारदात हो चुकी है. राजधानी में बेटियों की सुरक्षा को लेकर पूरा देश चिंता जता रहा है. मामला गर्म है, इसलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि वो उन अंधेरे पार्कों में मुस्तैद है जहां वारदात के अगले दिन भी शाम 7 बजे के बाद खूब अंधेरा हो जाता है.
4: तकरीबन 150 एकड़ में ये पार्क फैला हुआ है, डीडीए का पार्क है, लेकिन लाइट यहाँ पर नहीं है. तकरीबन 8 बजे के आसपास 21 सितंबर को पीड़िता के साथ यहीं पर गैंग रेप की वारदात हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस पार्क का जो एंट्री और एग्जिट गेट है उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। इसका मतलब कि पार्क में कौन दाखिल होता है और अंदर से जब बाहर जाता है तो उसके बारे में तीसरी आंख यानी जो सीसीटीवी कैमरा है चूंकि कैप्चर नहीं करता जब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है।
3: सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस क्या सिर्फ कैमरों के लिए ऐसे वीडियो बना रही है, क्योंकि जनता नाराज है और वो इस तरह की वारदातों को रोकने में नाकाम है।
4: कहीं घोड़े पर सवार होकर पेट्रोलिंग करते दिल्ली पुलिस के जवान तो कहीं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर सड़क पर दौड़ लगाते दिल्ली पुलिस के इन जवानों की तस्वीरों को देखकर सवाल यही उठता है कि हर वारदात के बाद दिल्ली पुलिस क्यों जागती है और कुछ दिन तक जागे रहने के बाद उसी पुराने ढर्रे पर क्यों चली जाती है। सवाल ये भी उठता है कि राजधानी दिल्ली के पार्कों में रोशनी न होने का फायदा उठाकर अपराधी किसी महिला के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं तो फिर इसे सिस्टम की नाकामी नहीं तो और क्या कहा जाएगा।
3: अब आप ये देखिए, 21 तारीख को आस्था कुंज पार्क में शाम 7 बजे पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। पार्क में छाए अंधेरे और सुरक्षा की कमी के चलते अपराधी अपने मकसद में कामयाब हो गए। इसके 48 घंटे बाद आज तक संवाददाता अरविंद ओझा जब इस पार्क में पहुंचे तब वहां उन्हें न तो लाइट मिली और न ही कोई पुलिसकर्मी। अगर कुछ था तो वो थी असुरक्षा, दिल्ली पुलिस की गैर मौजूदगी जिसने पूरे इलाके को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया और ये वारदात हुई।
4: पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पीड़िता ने हैवानों को यह भी कहा कि अगर आप पुलिस वाले हैं तो मेरी मम्मी से बात कर लीजिए, लेकिन तीनों आरोपियों ने दोनों पीड़ितों का मोबाइल फोन छीन लिया। आसिफ ने अपना बंदूक निकालकर पीड़िता को डराया, जबकि दो और आरोपी जो वहां मौजूद थे उन्होंने चाकू निकालकर पीड़ितों को धमकाया।
3: पीड़िता ने बताया है कि वो 21 सितंबर को अपने जन्मदिन पर कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। मंदिर में दर्शन के बाद वो शाम को 7 बजे के लगभग अपने एक दोस्त के साथ पार्क पहुंची। आस्था कुंज पार्क के गेट नंबर 7 से दाखिल होने के बाद वो दोनों एक बेंच पर बैठे थे, तभी पीछे से 30-35 साल की उम्र के तीन लड़कों ने उसके दोस्त को पकड़ा और थप्पड़ मारा। तीनों ने खुद को पुलिस वाला बताया और पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद उनमें से एक लड़का पीड़िता के दोस्त को पकड़कर दूसरी साइड लेकर गया। इसके बाद बाकी के दो लड़कों ने पीड़िता को झाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया।
4: पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि इसके बाद तीनों आरोपी उसे पार्क के एक अंधेरी जगह पर लेकर गए और बारी बारी से उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपियों ने पीड़िता की गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों को आरोपियों ने धमकाया, डराया और जान से मारने की धमकी दी। पार्क से बाहर आकर पीड़िता ने अपने दोस्त को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता के दोस्त ने पुलिस को कॉल करके पार्क बुलाया।
3: दिल्ली में जब भी कोई बड़ी वारदात होती है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन कालकाजी की वारदात ने बता दिया है कि दिल्ली बेटियों के लिए आज भी कितनी असुरक्षित है। जिस अंदाज में कालकाजी में वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या आसिफ ने इसी तरह की वारदात पहले तो अंजाम नहीं दी। आशुतोष कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: तो ये दिखाया जा रहा है कि सुरक्षा को पुख्ता करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की लड़कियों को इस बात पर भरोसा हो रहा है? क्योंकि एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जिसके खिलाफ दिल्ली में बेटियों का प्रदर्शन जारी है।
5: आप लोग जो अपना आवाज उठा रहे हो आज यहाँ पे आके, जो घटनाएं घटी है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप एक औरत के तौर पे सेफ महसूस करते हैं जब आप घर से निकलते हैं?
6: नहीं, हम बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करते। दिल्ली जैसे राजधानी शहर में हम रहते हैं और सेफ्टी के मामले में हर सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है, कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है। उस डर के साथ हम बस में सफर करते हैं और मेट्रो में सफर करते हैं।
5: टुडे वी आर सीइंग कि देश की राजधानी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक आज विक्टिम ब्लेमिंग काफी नहीं थी। आज कह रहे हैं कि अगर आपके साथ हरासमेंट हुआ है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास आपके ऊपर है, बर्डन ऑफ डिफेंडिंग योर सेल्फ इज ऑल्सो ऑन यू। ये पुलिस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि आप पेपर स्प्रे लेकर चलिए। अरे हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो बंदूक लेकर चल रहे हैं, हम मेरे दोस्त की दादी है, वो गांव में फूलन देवी के गैंग में शामिल थी, तो वो तो बंदूकें लेके चलती थी। तो हम तो पुलिस पर्सन से कहना चाहते हैं बंदूकें भी अपने हमें दे दीजिए, क्योंकि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है। आपको पता है कि LSR और ना जाने तमाम कितने कॉलेजेस हैं जिनके आसपास लाइटिंग नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं है, PCR वैंस नहीं है, है तो वो कोई काम नहीं कर रही है।
7: कि हम लोग मतलब वो बुरी नजर से नहीं देखते हैं, मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे कि वो लोग सब बुरे, लेकिन फिर भी सेफ फील नहीं होता कि हाँ सबसे बात करें या फिर कोई भी छेड़ ना ले, हम लोगों को कुछ बोल ना ले, ये डर हमेशा रहता है, स्कूल से रहा है, अभी भी रहा है। यस,
5: क्या लगता है कैसे हम इसे चेंज कर सकते हैं?
7: इसके लिए तो चेंज एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, जहाँ पे उन लोगों को लड़कियों को सेफ रहने, लड़कियों को घर से ना निकलने से ज़्यादा ये उनको ये सिखाना चाहिए कि तुम लड़के हो, तुम्हें लड़कियों को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं। लड़कों को ज़्यादा सिखाना चाहिए एज कम्पेयर टू लड़कियों को।
2: अब बात उस खबर की जिसने एक साथ जनता, डॉक्टर, कर्मचारियों, छात्रों सबके चेहरों पर खुशियां ला दी हैं। 21 तारीख को खबरदार शो में हमने मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले के बारे में बताया था जिसके जरिए 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को PPP मॉडल पर प्राइवेट हाथों में दिया जाना था। हमने इस मुद्दे को उठाया, आपने समर्थन दिया और सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। सस्ते इलाज से लेकर सस्ती पढ़ाई के हक से जुड़ी चिंता खत्म हो गई।
8: आज तक की खबर का बड़ा असर, MP में प्राइवेट नहीं होंगे सरकारी अस्पताल।
9: मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज तक का कि उन्होंने अपने माध्यम से हमारी जो कीमत से लेके सरकार तक उन्होंने हमारी बात पहुंचाई और हमें मतलब इस चीज में हेल्प किया कि हम अपनी बात जो है उच्च स्तर पर पहुंचा सके।
8: आज तक की खबर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पलटा फैसला।
10: आज तक न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो हमारी आवाज है वो एक बड़े माध्यम पर एक नेशनल न्यूज उसको बनाकर सरकार तक पहुँचाई।
8: मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी ये सरकारी मेडिकल कॉलेजों के PPP बोर्ड का टेंडर रद्द करने के आदेश से जुड़ा है, जिसने एक साथ आम लोग, छात्र और कर्मचारियों को राहत की सांस दी है। 21 तारीख को खबरदार शो में हमने मध्य प्रदेश के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को PPP मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने के फैसले से जुड़ी खबर दिखाई। आज तक ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेजों के डीन, डॉक्टरों, प्रोफेसरों और MBBS के छात्रों की चिंता सामने रखी थी।
11: अत्यंत गरीब फैमिली से अधिकतर लोग बिलोंग करते हैं, कई लोगों को सरकार स्कॉलरशिप देती है, तो अगर ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट कंपनी को ये हस्तांतरण होता है कॉलेज, तो इन विद्यार्थियों का किस सिस्टम के द्वारा इनका आगे का भविष्य तय होगा?
9: प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं किया जाना चाहिए और इसको गवर्नमेंट ही रहने देना चाहिए, मतलब ताकि जो फैसिलिटीज है गवर्नमेंट अप्रूव, सारी जो फैसिलिटीज है सेटअप की, वो सब बच्चों को मिल सके, क्योंकि है तो आखिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही।
11: फीस को लेकर कितना अंतर समझते हैं?
9: फीस को लेकर इतना अंतर समझ सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी ईयरली जो MP की अगर हम लेके चले तो 1 लाख फीस होती है, और अगर वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 15 से 20 लाख की फीस होती है, प्लस ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस होती है, प्लस इसके अलावा उनमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि कैंडिडेट को खुद ही करने पड़ते हैं।
10: जो एक गोल था, जिस गोल से कॉलेज को चालू किया था, मेडिकल एजुकेशन फॉर ऑल, तो वो भी फिर कायम नहीं होगा अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे मेडिकल कॉलेजेस का।
8: मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से जुड़ी छात्रों और डॉक्टरों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हाथों में चले गए तो गरीब और आम मरीजों को मिलने वाले सस्ते इलाज का क्या होगा। जिस मेडिकल की पढ़ाई के लिए अभी छात्र साल भर में 1 लाख रुपए फीस दे रहे थे, वो निजी हाथों में जाने के बाद बढ़कर 20 लाख और उससे ज्यादा हो गए, तो फिर प्रतिभावान और गरीब छात्र डॉक्टर बनने के सपने को कैसे पूरा करेंगे?
9: मैं उसके लिए आज तक का धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमारी बात सुनी, हम मेडिकल छात्र हैं, अगर ऐसा कुछ होता कि प्राइवेटाइजेशन होता तो उसका इफेक्ट हम पे सबसे ज्यादा पड़ता, हमारी जो एजुकेशन है उस पे पड़ता, तो मैं सरकार का भी इसमें धन्यवाद करना चाहूंगी।
10: सरकार जागरूक हुई और उसके बाद जो सरकार ने फिर डिसीजन लिया वो कि बहुत अच्छा डिसीजन था कि पीपीपी मोड पे गवर्नमेंट कॉलेजेस को नहीं शिफ्ट किया उन्होंने। और ये अच्छा डिसीजन है क्योंकि हम भी जब हमने सोचा था कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो लाइक वो बहुत अच्छी बात थी और हमने उसके लिए मेहनत की थी। और अगर फिर ये प्राइवेट हो जाता तो इन फ्यूचर भी फिर हम ऐसा होता ना कि हम प्राइवेट कॉलेज से हमने MBBS किया है वो कहलाया जाता, तो वो एक सही बात नहीं होती।
8: इसके अलावा सवाल इन मेडिकल कॉलेजों में काम कर रहे कर्मचारियों और नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर भी था कि वो PPP मॉडल में किन शर्तों पर काम करेंगे। आज तक ने जब खबरदार शो में इन चिंताओं को देश के सामने रखा तो इसका असर ये हुआ कि पूरे प्रदेश में इस नीति के खिलाफ माहौल बन गया। चौतरफा घिरी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। 21 दिसंबर की देर रात राज्य शासन ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि जिन सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सरकार ने बनाया है या जो अभी बनाए जा रहे हैं उनका संचालन सरकार ही करेगी, इन्हें PPP मॉडल पर नहीं दिया जाएगा। इस तरह नीमच के सकलेचा मेडिकल कॉलेज की तरह MP के कुल 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज में आम आदमी को न सिर्फ सस्ता इलाज मिलता रहेगा बल्कि छात्रों को किफायती पढ़ाई के अधिकार की भी सुरक्षा होगी। इस तरह आज तक के खबर करने से जो डीन अपने कर्मचारियों को लेकर चिंता में थे, जो छात्र पढ़ाई महंगी होने को लेकर परेशान थे, उनकी चिंता आज तक पर रिपोर्ट दिखाए जाने के कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो गई।
12: आज तक की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर सरकार ने फिलहाल ब्रेक लगा दिए हैं, यानी आज तक ने सवाल उठाए, आवाजें सामने आई और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन आज तक जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर ऐसे ही आगे भी खबरदार करता रहेगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: यूनाइटेड नेशंस में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा। एस जयशंकर ने तीखा प्रहार किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि अब आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है।
13: Can you just tell us when your government will stop sponsoring terrorism in Pakistan?
2: एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफिल जूस।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
8: पापा
9: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
9: छक्का?
10: सब कैशलेस हो गया है।
9: हाँ
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: आगे आगे करेक्ट
13: करेक्ट मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया
4: है। ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तो
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
10: बिजली का बिल पेड
11: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
12: कैसे?
11: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
12: इतना माही वे।
13: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
14: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
13: स्मॉल बैंक?
14: स्मॉल Privilege savings account, गरिमा savings account, maxima business, edge current account, business, maxima business, privilege, RDF, there's nothing small about them.
13: Okay.
14: Oh, Jeevan, nothing small about us.
15: Tera pyar pyar pyar unta bar par ek baar dhukka thumka lagane bas my god maza aa jayega.
12: Aap pe wo PMT baar wali mazbooti nahi aa rahi hai.
14: Mere paas ek idea.
15: Kya?
14: Ek don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charon taraf se gher liya hai, lekin wo ghar ko tod nahi paaye. Rungta TMT bar se jo bana hai.
16: Ye ad ko jhelna mushkil hi nahi, namumkin hai. I have one. एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
17: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
12: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
16: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
18: खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है, तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
19: क्या
20: बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
18: कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है चुनाव आयोग, और जब उसी आयोग के मुखिया पर पक्षपात का सबसे बड़ा हमला हो तो सवाल उठना लाजमी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली से लेकर पटना, शिमला से लेकर लखनऊ तक पुतले फूंकने, वाटर कैनन चलने, चुनाव आयोग के बोर्ड पर काले पोतने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरोप भारी है, वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम काटने का आरोप और महाभियोग की मांग। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से ही सियासी कलेश मिटेगा?
1: नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
0: और ये तो विपक्ष भी नहीं, खुद एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान एलजेपीआर, जिसकी तरफ से ये बात सामने आ रही है। बहरहाल, उसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बोल रहे थे तो पूरा हॉल खचाखच भरा था, लेकिन जब इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मंच पर आए तो 75 से ज्यादा देशों के राजनयिक बाहर निकल गए। एक दौर था जब ईरान का बहिष्कार होता था, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी है। तो क्या इसराइल दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, या इसराइल ये साबित कर रहा है कि वो अकेला ही काफी है? रेड कार्पेट की चकाचौंध, बॉल्ड ईगल का तोहफा और पैंडा डिप्लोमेसी। जी हां, बात कर रहे हैं शी जिनपिंग और ट्रंप की। शी जिनपिंग की खातिरदारी में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ी, लेकिन क्या इस भव्यता के पीछे चाइना को वो मिला जो वो चाहता था, या फिर ट्रंप ने टैरिफ वॉर का सीज फायर बढ़ाकर और पैंडा लेकर बाजी अपने नाम कर ली और शी जिनपिंग के हिस्से सिर्फ रेड कार्पेट ही रह गया? हूती के हमलों के बाद अगली खबर, सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती ने अपने सैनिकों को आर पार की जंग का फरमान सुना दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंका जाता, तब तक सिपाही अपनी आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक डटे रहें। मुफ्ती के इस आक्रामक संदेश ने साफ कर दिया है कि यह जंग अब और भी भीषण होने वाली है। और अगली खबर पाकिस्तान से, जहां 27 सितंबर को होने वाले पीटीआई के मेगा मार्च से पहले ही शाहबाज सरकार की सांसें फूल गई हैं। जेल में बंद इमरान खान को छुड़ाने आ रहे लाखों समर्थकों को रोकने के लिए इस्लामाबाद और जो अटक बॉर्डर है उसको नुकीली कीलों, वेल्डेड जो होते हैं ना कंटेनर्स, वेल्ड किए गए कंटेनर से सील कर दिया गया है। अस्पतालों को मास कैजुअल्टी के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। क्या दो दिन बाद पाकिस्तान में बड़ा बवाल होने वाला है?

इस समय पूरा पाकिस्तान गुरिल्ला के पीछे पागल नजर आ रहा है। शादियों और पार्टीज में डीजे का शोर तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो नया ट्रेंड सामने आया है वो खूब चर्चा में है। पाकिस्तान की महफिलों में अब डीजे नहीं बल्कि विशालकाय नाचते हुए गुरिल्ला छा गए हैं। पार्टी में एंट्री मारते ही ये गुरिल्ला ऐसा जबरदस्त डांस करते हैं कि मेहमान झूमने पर मजबूर हो जाते हैं।

तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज उस वक्त जबरदस्त बवाल मच गया जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पेश कर दिया। प्रस्ताव में जैसे ही साल 2000 के ऑटोनॉमी वाले फैसले का जिक्र किया गया, बीजेपी विधायक भड़क उठे, नौबत हाथापाई तक आ पहुंची, वेल में जमकर धक्का मुक्की हुई और कागज तक फाड़ दिए गए। बीजेपी ने जहां इन नियमों का उल्लंघन इसे बताया है, वहीं उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया, कहा कि बीजेपी राज्य के दर्जे पर वोटिंग से भाग रही है। अगली खबर, पहाड़ों पर कुदरत का खौफनाक सितम जारी है। सिक्किम में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी है, जहां रिम्बी गांव में अचानक लैंडस्लाइड आया, सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मलबे के तेज बहाव में 32 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए। मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और खुद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हालात को बहुत गंभीर बताया है।

स्टंटबाजी का चस्का और जान से खिलवाड़। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ चलती बाइक पर छात्रों ने जोखिम की सारी हदें पार कर दी। एक ही बाइक पर कई छात्र सवार थे। हद तो तब हो गई जब एक छात्र दूसरे के कंधों पर बैठा नजर आया।

0: और दूसरी गाड़ी से कोई वीडियो भी बना रहा था, मुड़ मुड़ कर देखा भी जा रहा है कि वीडियो ठीक से बन रहा है या नहीं। 5 से 6 बच्चे एक स्कूटर पर, कैसे इनकी जिंदगी जोखिम में थी, इसीलिए ये वीडियो दिखाना जरूरी है ताकि हम ये समझें कि अंडर एज बच्चे अगर बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो एक हिस्सा इस पूरे मामले का, और दूसरा बिना हेलमेट इतने बच्चे एक साथ एक स्कूटर पर। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में एक विशेष भजन क्लबिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। देखिए
1: Can we all clap to his beat? Come on.

0: जिस तरह पहले भारत में जागरण या भक्ति से जुड़े कार्यक्रम होते थे, ठीक उसी तरह अब अगर आप देखिए तो ये जो नई युवा पीढ़ी है भजन क्लबिंग करते हैं, और यहाँ भजन क्लबिंग का मतलब है पारंपरिक भक्ति को आज की पीढ़ी के अनुकूल बनाना, इसे भजन क्लबिंग कहते हैं। जैसे इस भजन क्लबिंग में पारंपरिक जो भजन है, जो बहुत ही मतलब ऐसे भजन है जो लोगों की जुबान पर होते हैं, उन्हीं को टेक म्यूजिक के साथ और बहुत ही फास्ट म्यूजिक के साथ, नाइट क्लब या रॉक कॉन्सर्ट जैसे आधुनिक लाइट शो के साथ पेश किया जाता है। और नई पीढ़ी के युवा ये भी मानते हैं कि ये भजन क्लबिंग उन्हें उनकी संस्कृति या भक्ति से जोड़ने का सबसे मजबूत तरीका है। उदाहरण के लिए अब तक नाइट क्लब का मतलब होता था तेज और लाइव म्यूजिक में पार्टी करना, शराब पीना, डांस करना, लेकिन भजन क्लबिंग थोड़ा अलग है। इसमें लाइटिंग और माहौल तो नाइट क्लब जैसा होता है, लेकिन लाइव म्यूजिक में गाने भक्ति के होते हैं और साथ में चाय, लस्सी ये सब चलती रहती है। नई पीढ़ी के युवा इन भक्ति गीतों को अध्यात्म से जुड़ने और एक मॉडर्न और आधुनिक तरीका मानते हैं। दूसरा, जहां पहले ऐसा माना जाता था कि मॉडर्न दिखने के लिए युवाओं को पश्चिमी नाइट क्लब जो नाइट लाइफ है उसको अपनाना होगा, वहीं अब जेन ज़ी युवाओं ने ये साबित किया है कि वो पारंपरिक रहकर भी कूल और मॉडर्न देख सकते हैं। बहुत सारे युवा इसे मानसिक तनाव से मुक्ति का जरिया भी मानते हैं और इसे एक स्पिरिचुअल एस्केप कहते हैं। मतलब होता है अध्यात्म और भक्ति के जरिए मन की शांति ढूंढना, और ये मौजूदा पीढ़ी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की पीढ़ी स्क्रीन टाइम बहुत कई बार उनका बढ़ जाता है और कई तरह की डिप्रेशन एंग्जाइटी से वो जूझ रहे हैं, और ऐसे में भजन क्लबिंग उनके लिए एक कैथारसिस यानी मन का गुबार निकालने और बिना किसी साइड इफेक्ट के मानसिक शांति पाने का एक सामूहिक माध्यम बन गया है। यहाँ आप देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री भी जेन ज़ी से जुड़ने की कोशिश में इस भजन क्लबिंग का हिस्सा बने। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको ये बताते हैं कि इस वक्त पूरे विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग, और हमारे देश में चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव कराने वाली एक एजेंसी नहीं है। भारत के लोकतंत्र में करोड़ों लोगों का जो भरोसा, जो विश्वास है, चुनाव आयोग को उस विश्वास का सबसे बड़ा कस्टोडियन यानी संरक्षक माना जाता है। और इसीलिए आज जब पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, इस्तीफा तो दूर अब गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तब हम आपको इस पूरे विवाद की जड़ तक ले जाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं और जो चुनाव आयोग दलील दे रहा है, सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख है। उससे पहले आप कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन की ये तस्वीरें पहले देखिए, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की और गिरफ्तारी की मांग की गई है। इनमें भी दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार का मास्क पहनकर उन्हें देशद्रोही बताया, जबकि लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, पटना, भोपाल, गुवाहाटी में कांग्रेस के बड़े नेताओं की अगुवाई में पैदल मार्च निकाले गए। इसके अलावा शिमला में प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के ऑफिस बोर्ड पर कालिख पोत दी, जबकि लखनऊ में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, और पटना में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बड़ी बात यह है कि इन सभी विरोध प्रदर्शनों में ज्ञानेश कुमार कांग्रेस के निशाने पर रहे। कुछ शहरों में उनके पुतले जलाए गए, जबकि कुछ शहरों में 48 घंटे के अंदर इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए,
1: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
0: इन विरोध प्रदर्शनों के बीच ऐसी खबरें भी आई कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में अपने दो कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शामिल होने वाले थे। इनमें पहला कार्यक्रम मेरठ में आज यानी 25 सितंबर को और दूसरा कार्यक्रम वाराणसी में 28 सितंबर को होना था और कांग्रेस नेताओं का ऐसा दावा है कि विरोध के डर से ज्ञानेश कुमार ने खुद इन कार्यक्रमों को अब स्थगित कर दिया है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये दोनों कार्यक्रम 21 सितंबर को ही स्थगित किए गए थे और इसका मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ विवाद क्या है वो भी समझिए। ये बात सब जानते हैं कि विपक्ष पिछले कई महीनों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। इनमें भी सबसे बड़ा मुद्दा उसने वोटर लिस्ट के रिविजन को बनाया, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कहते हैं, यानी SIR, आपने भी सुना होगा। ये वही रिविजन है जिसके तहत अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं और विपक्षी दलों ने इस पर बार बार सवाल उठाए। इसी साल 12 मार्च को कुछ विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहती थी और उनका आरोप था कि ज्ञानेश कुमार SIR के जरिए वोटर्स का नाम काटकर चुनावों में बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन उस वक्त 6 अप्रैल को लोकसभा में यह प्रस्ताव स्पीकर द्वारा खारिज कर दिया गया था और विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर रहा। आप ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष ने SIR के इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कभी नहीं छोड़ा और इस पर उसकी तरफ से लगातार चर्चाएं चलती रहीं। और अब जब इस पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए तो विपक्ष को यह साबित करने का मौका मिला कि वो जो सवाल उठा रहा था वो सवाल गलत नहीं थे। अब द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, सरलता से आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि चुनाव आयोग में लगभग सभी बड़े फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद ले रहे थे, जबकि नियमों के खिलाफ है। कानून कहता है कि चुनाव में जो शीर्ष 3 सदस्य होंगे उन्हें सभी फैसले सर्वसम्मति यानी यूनानिमिटी से लेने होंगे, या तो तीनों एक तरफ हों या फिर कम से कम 2 लोग फैसले के समर्थन में हों। अगर फिर भी सदस्यों में मतभेद है तो जैसा हमने आपको बताया 2 out of 3, तो निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। लेकिन कोई सदस्य या मुख्य चुनाव आयुक्त खुद अपनी मर्जी से सिर्फ एक तरफा फैसले नहीं ले सकते, जबकि ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट है कि पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कम से कम 14 बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों में ज्ञानेश कुमार ने बाकी 2 आयुक्तों की असहमति को शामिल ही नहीं किया। ये 2 आयुक्त थे सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, जिनकी तस्वीर आप उनके साथ देख रहे हैं। दावा है कि इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने SIR की प्रक्रिया और उससे जुड़े फैसलों पर 14 आपत्तियां लिख कर दी, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने अपने अंतिम फैसले में उन्हें शामिल ही नहीं किया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आयुक्तों को कैबिनेट सचिव तक को पत्र लिखना पड़ा, लेकिन तब भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हालांकि बीजेपी का इस पर दावा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी गई चिट्ठियां या फिर जो भी इन्होंने आपत्तियां जताई थी उसका कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। यानी यहां से अगर आप देखिए तो विपक्ष जो आरोप लगातार लगा रहा है, विपक्षी नेताओं का तो ये कहने का मौका उनको मिल ही गया कि चुनाव आयोग के अपने ही आयुक्त SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जियां चला रहे थे। दूसरा दावा इस रिपोर्ट में यह है कि चुनाव आयोग के अंदर मतभेद इस कदर बढ़ चुके थे कि 9 सितंबर 2026 को हुई बैठक से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच पिछले 4 महीने में एक भी संयुक्त बैठक नहीं हुई थी। यानी ये तीनों एक साथ जो फुल कमीशन की बैठक होती है वो 4 महीने से नहीं हुई थी। और इस पर भी विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार ने खुद को चुनाव आयोग का अल्टीमेट बॉस समझ लिया था। अब ये देखिए कि वो कौन से मुद्दे थे जिन पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्तियां जताई और ज्ञानेश कुमार ने अपने फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया। इनमें पहला मुद्दा है फॉर्म 6 में बदलाव का। जब कोई नया वोटर मतदाता सूची में पहली बार अपना नाम जुड़वाता है तब उसे ये फॉर्म भरना होता है। पहले इस फॉर्म में नए वोटर से ये नहीं पूछा जाता था कि उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पुरानी वोटर लिस्ट या SIR की सूची में था या नहीं, लेकिन पिछले साल इस सवाल को भी फॉर्म में एक एनेक्शर के जरिए, एक एडिशनल पेपर के जरिए ये बात भी अब पूछी जा रही है। जब ये फैसला हुआ तब दावा है कि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस पर लिखित आपत्ति जताई। उन्होंने कहा था कि फॉर्म 6 को इस तरह बदला नहीं जा सकता, उसमें कोई भी नया पेपर नहीं जोड़ा जाता सकता, इसके लिए पहले सरकार को नियम बदलना पड़ेगा, सरकार कानून में बदलाव करे फिर यह हो सकता है। उनके साथ दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू ने भी विरोध जताया, लेकिन उनके विरोध के बावजूद ये सवाल फॉर्म में एक एनेक्शर के जरिए डाला गया और 21 सितंबर तक इसे हटाया नहीं गया था। दूसरा बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि वोटर लिस्ट का कंट्रोल स्थानीय अधिकारियों के पास रहे या सीधे दिल्ली में चुनाव आयोग के पास रहे। जिससे पहले स्थानीय अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं, जिसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं ईआरओ, वो किसी भी वोटर की जांच कर सकता था। मतलब वोटर का नाम ऐड करना है या निकालना है, ये उसका काम था। अगर उसे लगता था कि उस वोटर का पता सही है, उसने जो जानकारी बताई है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो अपने स्तर पर कंप्यूटर में उस वोटर का नाम मतदाता सूची में जोड़ सकता था, घटा सकता था। और इस व्यवस्था में दिल्ली में बैठे बड़े अफसरों का सीधा दखल होता ही नहीं था। लेकिन पिछले एक साल में आरोपों के मुताबिक यह व्यवस्था बदली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर इस रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने जो आईटी विभाग में नया सॉफ्टवेयर ईसीआई नेट बनाया, जिसको डिजिटल बैकबोन चुनाव आयोग का बना दिया गया, कई पोर्टल्स 40 के आसपास पोर्टल्स को खत्म करके, और अब स्थानीय अधिकारी सिर्फ नाम का सुझाव दे सकता था। यह इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईसीआई नेट में अब जो स्टेट में जो लोग काम कर रहे थे, धीरे धीरे बताया जा रहा है, आरोप है कि वो जो पहले फैसले ले रहे थे वो अब नहीं ले सकते थे। लेकिन अंतिम बटन या अप्रूवल दिल्ली से होता था, और इस बदलाव का भी दोनों चुनाव आयुक्तों ने लिखित विरोध किया था। लेकिन आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। अब इससे हुआ ये कि गोवा में जिन मतदाताओं को स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने सही पाया, उनके नाम भी दिल्ली में बैठे अफसरों ने वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए, जिससे ये विवाद और बढ़ गया। और आरोप यही है कि गोवा से बार बार उन 97 वोटर्स के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके उनको नहीं जोड़ा गया। तीसरा आरोप पश्चिम बंगाल के उन मतदाताओं को लेकर था जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। और यहां भी दावा है कि दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी इन फैसलों को लागू किया गया। और आखिर बड़ा विवाद तब हुआ जब जुलाई के अंत में चुनाव आयोग के अंदर प्रशासनिक काम के बंटवारे को लेकर आदेश जारी किया गया, और उसे दोनों आयुक्तों ने खारिज कर दिया और यह कहा कि इसके जरिए चुनाव आयोग को सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। और क्योंकि विपक्षी दल पहले से ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग कर रहे थे, इसलिए इस रिपोर्ट के आते ही नया सियासी बखेड़ा शुरू हुआ। विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और गिरफ्तारी दोनों चाहिए।

0: इसी के साथ साथ देश भर में विरोध की बात कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रही है और उनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। विपक्षी दल ही नहीं बल्कि एनडीए के 3 सहयोगी दलों ने भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। इनमें पहले हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिन्होंने ये कहा है कि चुनावी प्रक्रिया पर संदेह बढ़ना ठीक नहीं, चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि एसआईआर और ईवीएम से जुड़े विवाद को लेकर जनता में भ्रम है, इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत सही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी चुनाव आयोग से सवालों का जवाब देने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की ताकि उस पर जनता का भरोसा मजबूत रहे। सुनिए।
1: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
2: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
3: चुनाव आयोग ने इस देश में बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा कांड और भ्रष्टाचार किया है, चुनाव को हाईजैक किया है, वोट चोरी की है, सब कुछ किया है। एसआईआर का जो मुद्दा सामने आया है वो किया है।
4: हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी।
5: आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
0: इस पूरे विवाद के बाद विपक्षी दल सिर्फ ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं मांग रहे बल्कि वो बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार के विधानसभा चुनाव दोबारा से कराने की मांग भी कर रहे हैं। जबकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब वोटर लिस्ट का रिविजन नहीं हुआ था और ना ही ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। आगरा के रहने वाले ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल काडर के आईएएस अधिकारी हैं जो मई 2022 से 31 जनवरी 2024 तक सहकारिता मंत्रालय में सचिव थे। 15 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को चुनाव आयुक्त बनाया गया। 19 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 17 अगस्त 2025 को राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि राहुल गांधी हलफनामा दें या देश से माफी मांगे और उनके सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ मौजूदा सरकार में काम किया है। 2007 से लेकर 2012 तक यूपीए सरकार के दौरान ज्ञानेश कुमार रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। लेकिन अब कांग्रेस उन पर सवाल उठा रही है जबकि सरकार और चुनाव आयोग की दलील कुछ और है। चुनाव आयोग का कहना है कि जब किसी निकाय में एक से ज्यादा सदस्य होते हैं तो उनके बीच सहमति असहमति स्वाभाविक है जिसे विवाद नहीं बल्कि स्वस्थ चर्चा का हिस्सा मानना चाहिए। जबकि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष संस्थाओं को कमजोर करना चाहता है और अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट बना रहा है। सुनिए।
6: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए। सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है जी, इतना दिन बाद इंटिमिडेशन का बाहर ला करके कोई भी हत्या की घटना नहीं, लोगों को वोट डालने दिया गया।
0: खैर आपने सुना उन्होंने पद्मभूषण की मांग कर दी है जो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। खैर इस पूरी राजनीति के बीच विपक्षी दल ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग जेंजी युवाओं को वोटर बनने से रोक रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जंतर मंतर पर हुए जेंजी आंदोलन से सरकार डर चुकी है, उसने मतदाता सूची में 18 साल से ऊपर के नए युवा वोटर्स को शामिल करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस प्रक्रिया को जानते हैं कि ये क्या कहा जाता है। इसे स्पेशल समरी रिविजन कहते हैं जिसके तहत हर साल नियमित रूप से नए 18 साल के जो युवा हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। मृत या पता बदल चुके मतदाताओं की जानकारी अपडेट भी होती है इसी स्पेशल समरी रिविजन में। 18 साल की उम्र पूरी करने वालों को साल में 4 तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर के आधार पर वोटर बनने का मौका मिलता है और आमतौर पर SSR की घोषणा मई के आसपास होती है।

लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि साल 2024 से हमारे देश में SSR नहीं कराया गया है। यह भी तब हुआ जब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के पक्ष में थे और उनका तर्क था कि हर साल 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को वोटर लिस्ट सूची में शामिल करना जरूरी है और SIR की वजह से SSR नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

0: कोई जवाब नहीं आया। माफ कीजिएगा, इस विवाद पर चुनाव आयोग का स्पेसिफिक कोई जवाब SSR पर नहीं आया है। जैसे ही आता है हम आपको दिखाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि इसराइल पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है, या इसराइल पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि वो अकेला काफी है। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भाषण दे रहे थे, तब हॉल में अमेरिका और इसराइल जैसे देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के राजनयिक मौजूद रहे, प्रतिनिधि जो थे वो मौजूद थे, बैठे थे। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें आपको महासभा का मुख्य हिस्सा भरा हुआ नजर आएगा और इनमें वैश्विक नेताओं और राजनयिकों की भारी मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ये देखिए, इस एंगल से भी अगर आप देखिए तो काफी लोग दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सिर्फ 2 दिन पहले 23 सितंबर को यह भाषण दिया था, लेकिन इसके ठीक विपरीत जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आज भाषण हुआ तो लगभग पूरा हॉल ही खाली हो गया। इसराइल के मीडिया का दावा है कि 75 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार कर दिया। ये आपको दिख रही है पूरी तस्वीरें वहां की। जैसे ही भाषण के लिए उनका नाम पुकारा गया, वहां हॉल में मौजूद अलग अलग देशों के राजनयिक बाहर चले गए और इसके बाद इन 2 तस्वीरों को लेकर बहस शुरू हो गई और लोग इस बहिष्कार को इसराइल के लिए इंटरनेशनल आइसोलेशन बताने लगे। ये कहा गया कि जब मुस्लिम देशों के अलावा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में भी इसराइल की युद्ध नीतियों के खिलाफ भारी गुस्सा है, जैसे जिन देशों के राजनयिक हॉल छोड़कर चले गए उनमें ईरान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, तुर्की, ओमान, ब्राजील, सूडान, ट्यूनिशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, अल्जीरिया, मलेशिया, किर्गिस्तान का नाम शामिल था। और यहां बात सिर्फ बहिष्कार की नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू भाषण देने के लिए मंच पर आए, तभी हॉल में जोरदार हूटिंग, नारेबाजी हुई और देखते ही देखते गैलरी के कई हिस्से पूरी तरह खाली हो गए। यहां तक इतना तो समझ आ रहा था ईरान कई देशों को इसराइल के खिलाफ लामबंद करने में कामयाब हुआ है। देखिए,
1: our schools, our hospitals, our infrastructures, all of it against international law. When I took over the responsibilities as president, they assassinated Ismail Haniyeh in Iran on the day of my inauguration. Israel targets any neighborhood in any city, in any province, commits assassinations like a true terrorist. In Gaza, over 80,000 innocent civilians have been murdered, brutally murdered. Hundreds of thousands have been displaced.
0: वहीं आपने देखा कुछ समर्थक भी थे जो तालियां बजा रहे थे उनके लिए, वहीं बीबी उनको कहा जाता है नेतन्याहू को, तो उनके खिलाफ भी कई लोग निकलते हुए नजर आए। कुछ साल पहले तक यही चीज ईरान के साथ होती थी। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र में ईरान के पूर्व राष्ट्रपतियों के भाषणों के दौरान भारी वॉकआउट होते थे। ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग दिखाई देता था, लेकिन इस बार के सत्र ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया और इसलिए आज दुनिया में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि जो ईरान अलग थलग रहता था, अब उसके साथ कई देश खड़े हैं, और जो इसराइल अमेरिका के समर्थन से मजबूत स्थिति रखता था उसके लिए अब हॉल तेजी से खाली हो रहा है। देखिए,
2: हर बराबर सवाल अज होलोकॉस्ट सवाल कुनंदे रा मورد हजमे व तहदीद करार दिदहंद व दर बराबर सवाल अज हादसे 11 सितंबर तहदीद बे तहरीम व हमले निजामी मिकुनंद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.
0: इस वॉकआउट के बाद अब इसराइल ने एक और नई राह पकड़ी है और वो दुनिया को ये कह रहा है कि वो अकेला नहीं है बल्कि अकेला काफी है। आज जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार हुआ, तब हॉल छोड़कर जाने वाले राजनयिकों को उन्होंने नैतिक रूप से कायर बता दिया। उन्होंने शब्दशः कहा कि जो देश वॉकआउट करके हॉल से बाहर जा रहे हैं उनमें कई देश ऐसे भी हैं जिनकी इसराइल ने मदद की है। या जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के लिए

0: इसराइल को धन्यवाद दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इशारा सऊदी अरब की तरफ था, जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया ये दावा करता रहा है कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए अमेरिका और इसराइल से बात की थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि यूएई ने पिछले साल की तरह इस बार भी बहिष्कार करने वाले देशों में हिस्सा नहीं लिया। यूएई के अलावा बहरीन, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, नेपाल, पोलैंड, बहरीन, इटली, फिनलैंड, डेनमार्क के राजनयिक भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भाषण सुनते रहे। और जब 40 मिनट का यह भाषण पूरा हुआ तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उसने अपने मंच को इसराइल के प्रधानमंत्री का चुनावी मंच क्यों बनने दिया। यानी ईरान ये कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर युद्ध अपराधी होने के आरोप लग रहे हैं तो उन्हें भाषण देने के लिए इस मंच पर क्यों बुलाया गया और उनकी जगह यूएन के पोडियम पर होनी चाहिए या अदालत के कटघरे में। सुनिए,
1: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: और अब ये देखिए कि ईरान के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर संयुक्त राष्ट्र के मंच को अपनी चुनावी रैली का मंच बनाने का आरोप क्यों लगा रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण है इसराइल में अगले महीने 27 अक्टूबर को होने वाले संसदीय चुनाव। आरोप है कि इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वही मुद्दे संयुक्त राष्ट्र के मंच से उठाए जिन्हें वो इसराइल के मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के उस हमास हमले को याद किया जिसे इसराइल के बहुत सारे लोग आज भी भूले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि आबादी के अनुपात में यह हमला 9/11 के हमले से 16 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी दुनिया इसकी बात नहीं करती। सुनिए।
1: Altogether, they slaughtered 1,200 Israelis that day. I want to give you an idea of what this means for a country of 10 million. Proportionately, this is equal to 40,000 innocent Americans slaughtered in less than 24 hours. That's 16 times 9/11. 16 9/11s.
0: प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज अपने साथ स्टारलिंक का एक डिवाइस भी लेकर आए थे और उनका निशाना ईरान पर था। उन्होंने इस डिवाइस को दिखाते हुए ये कहा कि वो इसे ईरान के प्रतिनिधिमंडल के लिए छोड़ रहे हैं ताकि ईरान की जनता अपनी तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। और उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान का क्रूर शासन जल्द गिर जाएगा। हालांकि यहां ईरान भी जानता था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस पर हमलावर रहेंगे, इसीलिए वॉकआउट के बाद ईरान के राजनयिकों ने अपनी खाली सीट पर कुछ फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की तस्वीर रख दी थी जो पूरे भाषण के दौरान नेतन्याहू के सामने दिखती रही। और ये वही कासिम सुलेमानी है जिन्हें अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर साल 2020 में मार दिया था। देखिए,
1: द इरानियन रेजिम इज स्पेशली अफ्रेड व्हेन देयर पीपल हैव दिस, व्हेन देयर पीपल हैव दिस। दिस इज अ कम्युनिकेशंस डिवाइस, स्टारलिंक, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spends millions and billions of dollars censoring the internet. Mr. President, I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation. So when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
0: इससे पहले इजराइल के राजदूत ने भी संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजनयिकों को स्टारलिंक का इंटरनेट डिवाइस देने की कोशिश की। और जानते हैं इजराइल ये क्यों कर रहा है। इसराइल ऐसा करके ये बताना चाहता है, साबित करना चाहता है कि अगर ईरान की जनता वहां की इस्लामिक सरकार से आजादी नहीं चाहती तो ईरान में इंटरनेट बंद क्यों किया गया है। और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू स्टारलिंक का ये इंटरनेट डिवाइस लेकर आए। यही नहीं, इसी भाषण में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी बताया कि इसराइल अपने दुश्मनों को कितनी गहराई तक जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए वो अपने साथ एक पेजर डिवाइस या बीपर लेकर आए थे और ये वही पेजर है जिन्हें लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाके इस्तेमाल करते थे, लेकिन मोसाद ने इन्हें हैक करके इनमें ब्लास्ट कर दिया था। देखिए,
1: Israel hammered Hamas. We pummeled Hezbollah. You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this. Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leaders, dead.
0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अगर बेइज्जती कराने का कोई वर्ल्ड कप होता तो पाकिस्तान आसानी से जीत जाता। पिछले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता तो ये आतंकवादी आज न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कों पर घूम रहे होते। ये पुराना वीडियो है, आजकल खूब वायरल है, आपने भी देखा होगा। और उस वक्त शहबाज शरीफ को यही लगा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये बात बोलकर बड़ा तीर मार लिया, लेकिन दुनिया ने इसे पाकिस्तान का कबूलनामा माना और ये कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अपने आंगन में सांप को पाल पोस कर काबू में रखता है ताकि वो पड़ोसियों को ना काटे, उसी तरह पाकिस्तान ने भी आतंकियों को अपने देश में खूब पनाह दी। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के बूट पॉलिश प्रधानमंत्री ने अनजाने में आतंकवाद को शरण देने की बात तो मान ली थी पिछले साल, लेकिन आज जब इसी आतंकवाद पर अमेरिका में उनसे सवाल पूछे गए तो शहबाज शरीफ ऐसे निकले से अचानक सुनने की जो ताकत है वो चली गई हो, कुछ सुनाई ही नहीं दिया उनको। देखिए,
2: Prime Minister, when will you prosecute Hafiz Saeed? When will you prosecute Hafiz Saeed? Prime Minister, when will you stop harboring terrorists?
0: मतलब हाथ उठाया। खैर, आज नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उनके भाषण में दो बातें ऐसी रही जिनके बारे में पूरी दुनिया सोचने की जरूरत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर पिघलते समय किसी का पासपोर्ट या बॉर्डर लाइन देखते और इसीलिए दुनिया को भी इस संकट से निपटने के लिए सीमाओं से परे जाकर सोचना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, इंसानों ने जमीन के टुकड़ों को तो जमीन को टुकड़ों में तो बांट दिया, लेकिन ये जो प्रकृति है इसे कोई नहीं बांट सकता। और अगर इस प्रकृति पर संकट है तो इससे निपटने के लिए सबको साथ आकर काम करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इतनी अजीब हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी देश 72 घंटे के भीतर कहीं भी हथियार पहुंचाने में सक्षम है, लेकिन गरीबों तक खाना पहुंचाने का लॉजिस्टिक सिस्टम पूरी तरह टूटा हुआ है। हम हथियार तो बना लेते हैं, हथियारों को अंतरिक्ष में भी भेज रहे हैं, लेकिन अगर कहीं मानवीय संकट है, भूखमरी है, त्रासदी है, यही देश जरूरतमंद लोगों तक खाना नहीं पहुंचा पाते। आज प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए भारत और चाइना को भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से धन्यवाद दिया और अपने भाषण के अंत में पूरी दुनिया को कल्याण और शांति की कामना करते हुए भगवान पशुपतिनाथ का आह्वान किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। देखिए,
3: God and save lives. Let us reform the order that leaves the weakest with least power. And when the next warning comes from the rooftop of the world, let us be ready to hear it and ready to act. Bhagwan Pashupati Nath le Bishwa ko kalyan garun, yo Bishwa Buddha le dekhaye ko bato ma hidna sako. Dherai dherai dhanyabad, namaste.
0: 11 saal baad जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की सरजमीन पर स्टेट विजिट पर पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत ऐसा किया जैसा शायद ही किसी ग्लोबल लीडर का हुआ। लेकिन सवाल यह है कि रेड कार्पेट की इस भव्यता के पीछे हासिल क्या हुआ? क्या व्यापार, ताइवान, सेमीकंडक्टर और AI जैसे मोर्चों पर लगी आंच धीमी हुई, या फिर यह पूरी मुलाकात महज एक ऑप्टिक्स यानी तस्वीरों का खेल बनकर रह गई? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की आवभगत में कोई कसर तो नहीं छोड़ी? अमेरिका के नेशनल सिंबल बॉल्ड ईगल की एक शानदार कांस्य मूर्ति शी जिनपिंग को सौंपी गई। जिसकी डिजाइन खुद फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के सहयोग से तैयार की गई थी। ट्रंप ने इसे अमेरिका की फ्री एंड सोरिंग स्पिरिट का प्रतीक बताया, लेकिन कूटनीति के चश्मे से देखें तो आखिर शी जिनपिंग की इस खातिरदारी से डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? ट्रंप ने दोनों देशों के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के सीज फायर को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया, जो कि नवंबर में खत्म होने वाला था, जिसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को चुनावी आर्थिक दबाव के बीच कुछ महीनों की राहत जरूर मिल गई। चाइना ने आधिकारिक तौर पर पिंगपिंग और फुशुआंग नाम के दो विशाल पैंडा अटलांटा भेजने का ऐलान किया, जिसे ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जीत के रूप में पेश किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों और उद्योगपतियों को दिखाया कि वो चाइना को झुकाना ना सही, लेकिन मेज पर लाकर अमेरिका की शर्तों पर बात कराने की हैसियत रखते हैं। लेकिन इस भव्यता के बावजूद शी जिनपिंग को वो सब नहीं मिला जो वो चाहते थे। चाइना उम्मीद ये कर रहा था कि ये ट्रेड पॉज कम से कम एक साल के लिए बढ़े, ताकि शी जिनपिंग ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल तक सुकून की सांस ले सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स, अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद और एडवांस चिप्स पर गतिरोध बरकरार रहा। ट्रंप ने शी जिनपिंग का जोरदार स्वागत तो किया, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या रेड कार्पेट के इस भव्य स्वागत के पीछे की हकीकत भी उतनी ही चमकदार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप शी जिनपिंग को सम्मान दे तो रहे हैं, लेकिन चाइना का सामान नहीं खरीद रहे। आंकड़ों की जुबानी समझिए, साल 2018 में अमेरिका दुनिया से जितना सामान आयात करता था उसमें अकेले चाइना की हिस्सेदारी थी 21.2%। लेकिन जुलाई 2026 तक के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि चाइना की यह हिस्सेदारी अब घटकर हो गई है 7.9%, यानी लगभग 8%, जो इतिहास का सबसे निचला स्तर है। इतना ही नहीं, इस साल जनवरी से जुलाई के बीच अमेरिका ने चाइना से सिर्फ $156.4 बिलियन का सामान खरीदा, जो 2018 के मुकाबले $296.5 बिलियन जो उस वक्त का था उसके मुकाबले करीब करीब आधा रह गया है। दूसरी ओर अमेरिका से चाइना को होने वाला निर्यात भी घट गया है और अब महज 4.5% पर आ गया है। जो व्यापार घाटा 2018 में $418.2 बिलियन का था, वो अब जानते हैं कितना, $165.1 बिलियन। तो अमेरिका ने इस पर काम किया, चाइना से सामान कम खरीद रहे हैं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक चाइना ने अमेरिका आने वाले फोन्स और होम अप्लायंसेस में लगभग 39.1% की भारी गिरावट आई है, जबकि खिलौनों और स्पोर्ट्स गुड्स का निर्यात 37.1% घट गया है। इसके विपरीत अमेरिका अब चाइना को तकनीक बेच रहा है। 2025 में अमेरिका से चाइना जाने वाले सिविल एयरक्राफ्ट और स्पेयर पार्ट्स 37.3% बढ़कर $15.9 बिलियन पर पहुंच गए, और सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स का निर्यात वो भी लगभग 10.2% बढ़ा। वहीं दुनिया भर में चाइना का जो कुल ट्रेड सरप्लस है भले ही 3 गुना बढ़ गया हो, लेकिन अमेरिका के साथ उसका ट्रेड सरप्लस आधे से भी कम रह गया है। हालांकि मई 2025 में अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ 125% से घटाकर 10% कर दिया था और ट्रेड वॉर पर ब्रेक लगाया। फिर भी बीते 14 में से 11 महीनों में अमेरिका की चाइना से खरीदारी लगातार घटी है। साफ है कि सिर्फ टैरिफ घटा देने से व्यापारिक रिश्ते पुराने दिन नहीं लौटा पा रहे, यानी रनवे पर गर्मजोशी से हाथ मिलाना, रेड कार्पेट बिछाना, लोट लोट कर कार्पेट को साफ करना अपनी जगह कूटनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके बाजार का संदेश साफ है कि आयात के मोर्चे पर अमेरिका अब चाइना पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब आपको बेहद शांत दिखने वाले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठहाके जरा दिखाते हैं। आमतौर पर पोकर फेस यानी बहुत गंभीर माने जाते हैं संयमित दिखने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अचानक ठहाके लगाकर हंस पड़े। उन्हें हंसाने वाले कोई और नहीं, खुद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ट्रंप शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम दिखा रहे थे। जब वो जो बाइडेन की जगह पहुंचे तो वहां बाइडेन की तस्वीर नहीं बल्कि ऑटो पेन की फोटो लगी थी। ट्रंप ने हंसते हुए कहा, ये ऑटो पेन है, ये बाइडेन है। बस फिर क्या था, शी जिनपिंग खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। व वक्त का पहिया भले ही इंसान को बचपन से बुढ़ापे की ओर धकेल दे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुछ यादें, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही उम्र का हर दायरा ढह जाता है। जरा सोचिए, चेहरे पर झुर्रियां हो, सिर के बाल पक चुके हों, 65 से 68 साल की उम्र हो चुकी हो और अचानक वही कदम 50 साल बाद अपने पुराने स्कूल के गलियारे में लौट आए। सोशल मीडिया पर 1976 बैच के इन मासूम बुजुर्गों के रीयूनियन का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे हर देखने वाले को उसके बचपन का याद दिला दिया। सबसे मजेदार तो है गले से लटका ये वाटर बॉटल। मुझे लगता है कि बैग और वाटर बॉटल अपने बचपन का एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसी कहानी है अपने आप में जो हर किसी के दिल को पसीजने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही स्कूल का वो पुराना लोहे का गेट खुला, मानो वक्त की टाइम मशीन 50 साल पीछे लौट गई। सफेद कमीज, कंधे पर टंगा बस्ता, गले में लटकती रंग बिरंगी वाटर बॉटल्स, ये कोई छोटे बच्चों की टोली नहीं बल्कि 1976 बैच के वो छात्र हैं जो आज जिंदगी के 6 दशक पार कर चुके हैं। तमाम जिम्मेदारियां, दफ्तर की फाइल्स, बाल बच्चों के झंझट, सबको बाहर छोड़ दिया जब उन्होंने स्कूल के प्रांगण में कदम रखा। तो चेहरे की झुर्रियां जैसे गायब हो गई, बाहर निकल आया वही बेफिक्र बचपन, जिन हाथों ने जिंदगी के जाने कितने सख्त फैसले लिए, आज उन्हीं हाथों ने बड़ी शिद्दत से गिल्ली और डंडा थामा। धूल उड़ते मैदान में जब पिट्ठू के पत्थर गिरे तो 68 साल के ये बच्चे ऐसे भागे मानो कल ही इनका पीटी का पीरियड था। ना किसी को घुटनों के दर्द की परवाह थी, ना ब्लड प्रेशर का डर था। असली जादू तो तब देखने को मिला जब ये टोली अपने पुराने क्लासरूम में दाखिल हुई। लकड़ी के बेंचेस पर बैठना और मास्टर जी के आते ही एक सुर में खींचकर बोलना, गुड मॉर्निंग सर। अटेंडेंस की पुकार हुई, रोल नंबर्स बोले गए, फिर शुरू हुआ वही शरारतों का दौर। कभी बेंचेस पर हाथ थपथपाकर तालियां बजाना, कभी एक दूसरे की कमीज पकड़कर क्लासरूम के अंदर ही छुक छुक रेलगाड़ी बनाकर नाचना। हद तो तब हो गई जब किसी शरारती दोस्त ने क्लास में पटाखे की आवाज निकाली। मास्टर जी हाथ में छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। कोई बेंच के नीचे छिपा, कोई पुरानी अलमारी के पीछे दबक गया। इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया ये वीडियो सिर्फ एक रील नहीं बल्कि हम सब के भीतर सोए हुए एक बच्चे की पुकार बन गया है। इस रियूनियन ने एक खूबसूरत संदेश दिया कि वक्त इंसान की उम्र तो बढ़ा सकता है लेकिन बचपन की दोस्ती को बूढ़ा नहीं कर सकता। चेहरे बदल जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन जब पुराने यार मिलते हैं तो 50 साल की दूरी भी सेकेंड्स में मिट जाती है।
4: 50 साल बाद जब हम सभी पुराने दोस्त फिर से एक साथ मिले तो दिल में एक ख्वाहिश जागी, क्यों ना उन सुनहरे पलों को फिर से जिया जाए। हम अपने उसी स्कूल पहुंचे जहां कभी हमारी हंसी गूंजती थी। वहीं हमने एक यादगार फिल्म शूट की, पुराने खेल खेले, पुरानी शरारतों को याद किया और बचपन।
0: सिक्किम में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी है। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है. कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है. और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम. जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप.
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: एक दो
11: विश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
4: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
5: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
3: मतलब
5: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
4: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
5: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर
7: उधर यार,
8: करेक्ट करेक्ट।
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: देश भर में SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए। अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी। हम ज्ञानेश जी को बात कहना चाहते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं इट्स डन ब्रो, हो गया, मान जाओ, राहुल जी की सलाह मान लो, इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ, नहीं तो नाज़ी युग जब खत्म हुआ था आपको मालूम है क्या हुआ था? न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे। ये दो शब्द गुप्ता जी को आप जाकर बता दीजिएगा, सुनते हैं, आजकल बड़े फोन कर रहे हैं आप लोगों को।
2: आई हैव कम टू रेट टू द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन एंड गिवन अ कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेशन हियर अगेंस्ट चोर ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश चोर कुमार, द सॉरी फिगर हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दिस कंट्री एंड apparently he enjoys immunity under the CEC and EC Act of 2023 section 16 which says that the election commissioners enjoy immunity from civil and criminal prosecution.
3: ये लोग चुनाव आयोग में, निर्वाचन सदन में लोकतंत्र का स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का स्लॉटर हाउस, कत्तल खाना बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसका मुखिया है ज्ञानेश कुमार। ये हमने नहीं कहा, और दो चुनाव आयुक्त है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये दो जो लोग हैं, देश उनका आभारी रहेगा हमेशा, ये बात सामने लाई है और हमारी बातों को पुष्टि मिले उससे। ये स्लॉटर हाउस चला रहा है, ये माफिया है, अभी का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो माफिया है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही है, आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भरकर कैसे जियोगे। नमस्कार।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की दी सलाह। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीर हटाने का दिया आदेश। अभिजीत दीप के सौरभ दास रंका पर एआई से बनी फोटो को मॉर्फ करके सर्कुलेट करने का लगा आरोप। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों का फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती समारोह में शामिल पीएम मोदी। पेश की श्रद्धांजलि। भजन संध्या का कार्यक्रम। पहाड़ों से लेकर मैदानों में मुसीबत बनी बारिश। उत्तराखंड में कल के लिए अलर्ट जारी। यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका। झारखंड में भी एहतियात।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर छिड़े राजनीतिक क्लेश पर। कांग्रेस ने आज हमारे देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे तो राहुल गांधी ने एक नए वीडियो से ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती दी कि भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दे दी। अब सवाल यह भी है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेनजी का आंदोलन खड़ा करने की भी कोशिश हो रही है? तो आइए दिखाएं आपको कैसे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के टारगेट पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: सीईसी के खिलाफ जेनजी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी, ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबॉडी लेस। He was chosen by Amit Shah, and now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our.
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भरकर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आयसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
10: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
11: That Ganesh Kumar has to resign, the SIR process has to stop, the entire EC has to be overhauled and that the voter lists of January 2025 have to be reinstated.
1: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
3: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा,

0: नीतीश कुमार इस्तीफा दो।
1: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया, मेरी मांग है कि बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहाँ पे फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमानत जब्त कराएगी मोदी बनारस।
2: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
3: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोह का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
2: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
4: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
5: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
2: चंडीगढ़, शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
6: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
7: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाली गई है। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि चुनाव आयोग को लोगों की आशंकाएं और शंकाओं को दूर करना चाहिए, जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोक देना चाहिए।
2: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
8: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
2: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी न होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
9: ज्ञानेश कुमार विरुद्ध इम्पीचमेंट आना हुई एवं फिट केस फॉर इम्पीचमेंट जेखने सांविधानिक पद के अपव्यवहार करा हुई।
2: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
10: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं, क्यों उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
2: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी SSR प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
11: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
12: Should immediately resign and the whole SIR process should be thoroughly revisited.
2: CEC के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर सीजेपी ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा न होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
0: भी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
13: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
2: विपक्ष
7: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, जमुई पीड़िता के परिजनों के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर एक्शन हुआ है। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है और एक स्टेनो है सागर प्रसाद, उन पर यह कार्रवाई की गई है। पटना सचिवालय थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है। सागर प्रसाद ने ही ये फोटो जो थे उसे पोस्ट किया था और ये जो लड़की है जिसके साथ बदतमीजी हुई थी उसके माता पिता का फोटो पोस्ट किया। जीवन रक्षक दवाओं पर लूट वाले खेल की अब बात। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कैंसर की जिस दवा की एमआरपी 27,000 रुपए है वही दवा रिटेलर को 2,700 रुपए में कैसे मिल जाती है, एमआरपी और रिटेलर प्राइस के मार्जिन में इतना बड़ा अंतर क्यों है, यानी इतने बड़े मार्जिन के कारण रिटेलर और निजी अस्पताल मरीजों को मनमानी कीमत पर ये दवाइयां बेचते हैं और मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। इस मामले में 29 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन जीवन रक्षक दवाओं पर जारी लूट के खेल का सच क्या है, हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की इस ग्राउंड रिपोर्ट से आप समझिए।
2: आज तक की टीम दिल्ली के सबसे बड़े दवा बाजार में पहुंची ताकि दवाओं के थोक विक्रेताओं से जीवन रक्षक दवाओं की एमआरपी और रिटेल कीमत के बीच हजारों के मार्जिन का खेल समझ सके। थोक विक्रेताओं ने हमें इस खेल की पूरी एबीसीडी बता दी।
14: ये कैंसर में काम आती है ट्रस्टुजुमैब, इसकी एमआरपी आप देखिएगा, इसकी एमआरपी 39,124 रुपए, जो कंपनी से कॉस्ट हम लोगों को आती है वो इसकी अराउंड आती है 6,500-6,800 रुपए की, और जब ये रिटेलर तक पहुंचती है और रिटेलर अपना मार्जिन रख के इसमें मात्र 10% 5% जो भी घटा के पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, देख लीजिए कितना डिफरेंस आ जाता है इस चीज के अंदर, तो वो जो मेनली बेनिफिट मिलना चाहिए कंज्यूमर को वो इसमें नहीं मिल पाता है।
2: 39,124 रुपए की एमआरपी वाली कैंसर की दवा थोक विक्रेता की कंपनी 6,500 में देती है, मतलब एमआरपी और होलसेलर की तरफ से चुकाई गई कीमत में 32,624 का अंतर है। ऐसा ही अंतर तमाम दूसरी दवाओं में है। होलसेलर का आरोप है कि मरीजों की जेब पर डकैती के पीछे दवा बनाने वाली कंपनियां हैं। दवा कंपनियां अपनी लागत से कई गुना ज्यादा एमआरपी तय करती हैं। यही वजह है कि जीवन रक्षक दवाओं के लिए मरीजों की जेब पर सीधी चोट पड़ रही है।
15: तो इस तरह का ये जो अंतर है इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्या वजह?
14: मेनली इसका अंतर का जिम्मेदार है ही कंपनी। अगर कंपनी इसकी एमआरपी ही रिड्यूस कर देगी तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को ही जाएगा, तो अगर कंज्यूमर को बेनिफिट देना है तो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे, सरकार से चाहेंगे, कंपनी पे प्रेशर डाल के इसकी एमआरपी ही कम करवाई जाए, तभी डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचेगा।
15: ये तमाम वो दवाइयां हैं जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, कैंसर से लेकर लिवर की बीमारियां हो, तमाम दूसरी बीमारियां हो, जिनसे लोग जिन्हें खरीदने के लिए जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं और जो लोग ऐसे हैं जो जिनकी आय उतनी नहीं है उनके लिए खास तौर पे ये बहुत बड़ा सवाल बनता है।
2: अब सवाल यही है कि लूट का खेल रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, ये समझने के लिए हमने दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव आशीष ग्रोवर का रुख किया। बातचीत के दौरान ग्रोवर ने हमें बताया कि दवा के थोक कारोबारी लंबे अरसे से यही मांग कर रहे हैं कि ज्यादा एमआरपी का खेल बंद होना चाहिए, क्योंकि थोक कारोबारी दवाओं को 5-7% के मुनाफे पर मेडिकल स्टोर को बेचते हैं।
16: ये जो प्राइस फैक्टर मैटर है ये काफी पुराना है और ये पॉलिसी मैटर है, इसको ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और ड्रग पॉलिसीज जो फिक्स करते हैं प्राइसेस वो देखते हैं, तो पॉलिसीज के अंदर किस तरह से चल रहा है हर एक दवाई, ये नहीं कि आप खाली कैंसर पे जाएंगे, अब आप जो भी मेडिसिन देखेंगे जेनरिक जो मेडिसिन है उस पे एमआरपी काफी ज्यादा होता है, अब क्या रीजन है ये तो सरकार ही बताएगी।
2: ग्रोवर के मुताबिक

0: अब एक जीवन रक्षक दवाओं की MRP तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाली संस्था राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण दवाओं की कीमतों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। मतलब मरीजों के जेब पर पड़ रही डकैती को सरकार रोक सकती है।
1: देखिए, इशू उठा है तो कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ वजह है, और जो सरकार उसके ऊपर नीति अपनाएगी तो उसको कहीं ना कहीं इन द बेनिफिट ऑफ पेशेंट कंज्यूमर होना चाहिए। हम लोग ट्रेडर हैं, हमारा जो मार्जिन है वो हमारे को फिक्स होता है, तो उसमें जो कोई ज्यादा हमारे कोई फर्क नहीं है कि MRP से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जो पॉलिसीज हैं या ड्रग कंट्रोल प्राइस है वो होना चाहिए। अब तो काफी टाइम से इसकी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब कब होगा कैसे होगा ये सरकार बताएगी।
0: बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की रिटेल कीमत यानी खरीदार से वसूली जाने वाली रकम और MRP के बीच के मार्जिन पर सवाल उठाए। कोर्ट का यही मानना है कि जीवन रक्षक दवाओं की मनमानी MRP पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट से याचिकाकर्ता ने यही मांग की है कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत सख्त नियम लागू किए जाएं ताकि जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में होने वाली लूट को रोका जा सके।
2: एक तो बीमारी ऊपर से महंगी दवाओं की मारा मारी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमियों के दर्द को समझा और ये कहा कि कंपनियों को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, अस्पतालों को और दवा एजेंसियों को इस तरह से बाज आना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिसके हाथ में कार्रवाई करने की क्षमता है वो है सरकार। सरकार फिलहाल अभी तक चुप बैठी है, इसलिए ये देखना चाहिए कि सरकार को भी वो जूता पहनना चाहिए जो जूता आम आदमी को सबसे ज्यादा काटता है, क्योंकि जूता किधर से काटता है ये आम आदमी को ही पता है, पहनने वाले को ही पता चलता है। एक बार सरकार भी पहने तो पता चल जाएगा कि जूता किधर से काट रहा है और कितना। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
3: आपने दवाओं पर लूट पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता की देखी, और अब हम आपको दिल्ली सरकार के नामी कैंसर इंस्टीट्यूट की बदहाली की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो महंगे टेस्ट होते हैं और ना ही दवाइयां मिलती हैं। दावा यही है कि अस्पताल दवाइयों की कमी से जूझ रहा है। सोचिए, स्थिति यह है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कैंसर अस्पताल खुद बीमार है तो मरीजों का इलाज भगवान भरोसे ही होगा ना। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह को मरीजों की पीड़ा को सुनना, देखना और समझना चाहिए।
4: दवाई पूरी नहीं मिलती, महंगी दवाई बाहर से लो, सस्ती अंदर से मिल जाती है।
5: बाहर से भी लेनी पड़ती है, पूरी दवाई नहीं मिलती हमें।
6: कुछ मिलती है, कुछ बाहर से खरीदनी पड़ती है, टेस्ट भी बाहर से होते हैं। दवाई वही 400, 450 तक की भी आ जाती है बाहर से।
5: तो दवाई कुछ देते हैं यहाँ, जो महंगी दवाई है वो बाहर से लिख देते हैं।
0: ये है दिल्ली का कैंसर हॉस्पिटल, नाम है दिल्ली राज्य कैंसर चिकित्सा संस्थान। दावा यही है कि कैंसर के पीड़ित मरीजों के लिए वर्ल्ड क्लास इलाज मिलता है, लेकिन दावों से इतर ये कैंसर संस्थान खुद अव्यवस्था और बीमारी से जूझ रहा है। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में मरीजों को दवाइयां बहुत कम मिलती हैं। हालात ये हैं कि डॉक्टर मरीजों के पर्चे पर दवा लिखते हैं और उन्हें अस्पताल से नहीं बल्कि तमाम दवाएं मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती हैं।
7: किसका आप इलाज कराने के लिए आ रहे हो, कब से?
8: मेरी मदर का है, 5 महीने से इलाज चल रहा है उनका, लास्ट स्टेज 4th कैंसर, लंग कैंसर का है। ठीक है सर, यहाँ पे कॉमन मेडिसिन भी नहीं आती, जैसे आप ये देखिए प्रोटीन के डब्बे भी नहीं आ रहे, 150-150 रुपए के, वो भी नहीं मिल पाते यहाँ पे, वो भी काट रखा है। ठीक है, ये डेयरी फाइलाइन भी नहीं आती यहाँ पे, हाँ 6 नंबर मिलती है। ये
7: सन ऐसी हैं, 8 में से सिर्फ 2 मेडिसिन आपको बाहर से लेनी पड़ी
8: है, और सबसे मेन चीज जो मेन दवाई है ये 50,000 से ऊपर की पड़ती है 1 महीने की, वो यहाँ पे 8-9 महीने से आई नहीं रही है। कई बार रिक्वेस्ट की गई है, डायरेक्टर से भी मिला गया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो हेड है इन लंग डिपार्टमेंट की, उन्होंने खुद कहा है कि मैंने लिख करके दे रखा है, तब भी नहीं सुन रहे, मैं क्या कर सकती हूँ।
0: कैंसर संस्थान की OPD में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, मरीज दवाएं बाहर से खरीदने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ इतने बड़े अस्पताल में कई जरूरी जांच की सुविधा मौजूद नहीं है। मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन टेस्ट करवाने के लिए उन्हें निजी जांच केंद्रों में जाना पड़ता है।
9: मेरे पापा का इलाज चल रहा है, 8-10 कीमो लगा है, वो 300-500 की बोतल आती है कीमो की, सब बाहर से लगी है। हर बार बोलते थे है ही नहीं, खत्म हो गए।
7: दवाइयाँ आपको मिली यहाँ से कितनी, बाहर से आपको?

0: नहीं पड़ रही है?
1: बहुत दवाई अभी 3-4 महीने से, ये तो अभी का एडमिट हुए हैं 2 दिन से, ये तो 2 दिन का पर्चा है, इसमें 2 दवाई मैंने क्या नाम 300-400 रुपए की खरीदी है।
2: मिलती है जी वो, बस एक आधी दवाई बाहर से एक या दो तो लेनी पड़ती है जरूर, अंदर नहीं होती तो। खांसी वगैरह के भी सिर्फ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कैंसर की वो दवाइयाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बाद जो गोलियाँ खाई जाती हैं ज़्यादातर वो तो अंदर से ही मिलती हैं, लेकिन कोई ट्यूब वगैरह ऐसे या कोई सिरप वगैरह लेना पड़ जाए तो वो बाहर से ले लेते हैं।
3: लोगों का आरोप है कि कैंसर जैसी गंभीर और महंगी बीमारी के इलाज में कमी के चलते लोगों के स्वास्थ्य और जेब पर सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं। यही नहीं, कुछ मरीज डॉक्टरों पर मनमानी का आरोप भी लगा रहे हैं।
4: डॉक्टर आना जाना कोई टाइम टेबल नहीं, 11-11 बजे जाते हैं, 10:30 बजे आते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं। अब मनमानी है, मन में आई उठ के चलती है, पब्लिक बैठी है परेशान हो रहे हैं।
5: कम से कम 1.5 साल से ज्यादा हो गए मेरे को।
6: क्या दवाइयाँ मिल पाती है?
5: पूरी दवाई नहीं मिलती।
7: चेकअप
5: बाहर से कराते हैं, जो महंगे चेकअप है वो बाहर से कराओ और जो सस्ते हैं वो अंदर होते हैं। दवाई पूरी नहीं मिलती, महंगी दवाई बाहर से लो, सस्ती अंदर से मिल जाती है। लगातार
3: देखा जाए, आज तक संवाददाता सुशांत बेहरा ने कैंसर मरीजों की आप बीती दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंचाई। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने आज तक पर दावा किया कि जल्द ही अस्पताल में दवाइयों की किल्लत को दूर किया जाएगा।
8: जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमने भी जानकारी ली है और स्वाभाविक है कि जो कमियां हॉस्पिटल में दवाई की पाई गई है ये हमने पहले 1 महीने से इंस्ट्रक्शन दे रखा था और इसमें जो भी जिसकी गलती पाई जाएगी उस पर एक्शन जरूर करेंगे। जहां तक दवाई का विषय है हम इंश्योर करेंगे कि दवाई की कमी ना हो और जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको पनिशमेंट करेंगे।
3: अब देखना यही है कि सरकार अपने वादे पर कितनी खरी उतरती है, क्योंकि सवाल कैंसर के मरीजों का है, सवाल जवाबदेही का है, सवाल दिल्ली के कैंसर संस्थान की बदहाल तस्वीर को बदलने का है।
9: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ईरान का 7 दिन का अल्टीमेटम अब क्या होगा, देखते रहिए दशक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
13: Tera pyar pyar pyar unta baar baar baar तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
14: क्या चीज है
13: वायरल है? थैंक यू।
15: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
14: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
13: क्या?
14: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
16: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन।
14: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है,
16: पर स्टेज नहीं हिलता।
14: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
15: ओ नादान परिंदे, बैठ
14: बैठ बैठ।
15: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
14: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
16: तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
2: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU
4: सोच बदलो और बैंक।

0: సోకుడు.
1: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: Tera pyar pyar pyar unta baar baar baar तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार सर एक बार दो थमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा.
3: क्या चीज है वायरल
2: है? थैंक यू.
4: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर.
5: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है.
2: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए. रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. आई हैव वन. एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता. नो सर,
5: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है.
4: ओ नादान परिंदे, बैठ
3: बैठ बैठ.
4: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है. लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है.
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा.
8: तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी
2: आई लाइक दिस ओनली तेरा प्यार प्यार प्यार

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: पापा
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया
7: है।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
13: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट।
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: आगे आगे,
3: अरे उधर
2: उधर किधर?
3: करेक्ट करेक्ट,
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
4: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
5: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
7: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर कर सकते।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
8: आज उत्तर प्रदेश का विकास सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, करीब करीब 24 करोड़ से ज्यादा आबादी है, विपुल जल संपदा है, भूमि है, मेहनती कारीगर है और अब उद्योग के लिए अच्छा वातावरण भी बना है। उद्योग के लिए अच्छे वातावरण से मेरे मतलब है, एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। निवेश के माहौल की प्राथमिक शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, दूसरा इसके लिए अनुकूल औद्योगिक नीति बने, तीसरा प्रोएक्टिव गवर्नमेंट हो और चौथा फैसिलिटेट करने के उत्साह हो। आज मुझे लगता है कि चारों चीजें उत्तर प्रदेश में मौजूद है, इसलिए यहां पर निवेश का माहौल बना है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद दंसारी, स्वागत एक बार फिर से। ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच इस समय की सबसे बड़ी खबर ईरान के अल्टीमेटम की है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख ने अमेरिका के साथ शांति समझौते के लिए 7 दिनों की डेडलाइन भी तय कर दी। डेडलाइन के अनुसार 7 दिनों में ईरान की 7 शर्तें अमेरिका अगर मान लेता है तो युद्ध विराम होगा, वरना 7 दिन के बाद हॉर्मुस में महायुद्ध तय। सवाल यही है कि 7 दिनों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच डील होगी या फिर महायुद्ध।

0: हॉर्मुज स्ट्रेट पर महायुद्ध की नई धमकी। ट्रंप के साथ आर पार की जंग का ऐलान। सात दिन में शर्तें नहीं मानी तो महायुद्ध तय। सऊदी पर फिर से हुतियों के हमले शुरू। ईरान के डबल गेम में फंसे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका को सात दिन का अल्टीमेटम। बीते 72 घंटों में ईरान और अमेरिका के बीच हालात अचानक बदल गए। यूएन में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण के बाद ईरान ने कूटनीति के मोर्चे पर और युद्ध के मैदान में आर पार की लड़ाई का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। पहले हॉर्मुज के करीब तेल टैंकर को निशाना बनाया गया और फिर हूतियों की मिसाइलों ने सऊदी अरब के अलग अलग ठिकानों पर बारूदी कहर बरसाना शुरू कर दिया। इसी बीच ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अगर अमेरिका ने सात दिनों में ईरान की सात शर्तें मान ली तो ठीक, नहीं तो सात दिन बाद हॉर्मुज युद्ध का एपिसेंटर बनेगा, क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान अब हॉर्मुज पर पूरी तरह कब्जा करने का प्लान बना चुका है। 1989 की इस्लामी क्रांति की जीत के बाद से ईरान ने किसी अन्य देश पर हमला नहीं किया और केवल अपनी रक्षा की है। ईरान इस युद्ध से और भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है। संघर्ष के दौरान ईरान ने अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिसमें उन्नत अमेरिकी विमानों पर हमला करना और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को निशाना बनाया जाना शामिल है। ईरान ने एक अमेरिकी पनडुब्बी पर कब्जा कर लिया है और उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। अगर अमेरिका पहले हमारी शर्तें पूरी नहीं करता है तो ना तो हॉर्मुज खुलेगा और न ही हम बातचीत करेंगे। ईरान की सात शर्तें हैं जिन्हें लिखित रूप से पाकिस्तान और कतर के माध्यम से भेजा गया है। हॉर्मुज को फिर से खोलने से पहले तेहरान की शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। ईरान ने अमेरिका का साथ देने वाले पड़ोसी मुल्कों के नाम एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी में यही कहा गया है कि खाड़ी के देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की मदद की तो ईरान बदला लेगा। इधर ईरान ने मिडल ईस्ट को हद में रहने की धमकी दी। उधर हूतियों ने सऊदी अरब पर बारूद की बरसात कर दी। हूतियों का दावा है कि अभी ये ट्रेलर है, युद्ध की पिक्चर बाकी है।
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ، فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان.
0: हूतियों के हमले के बाद सऊदी अरब ने भी यमन में हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दावा यही है कि बीते कुछ घंटों में हूतियों के कई ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। यही नहीं, सऊदी अरब के शीर्ष धार्मिक गुरु ने सैनिकों को हूतियों के खिलाफ अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहने को कहा है। सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती का कहना है कि सऊदी समर्थित यमनी सरकार को पूरे देश पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। ये बयान सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच हफ्तों से चले आ रहे मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों के बढ़ने के बाद आया है। ग्रैंड मुफ्ती शेख सालेह बिन फौजान का ये संदेश देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए था। इसमें कहा गया है कि इस महान राष्ट्र के एक इंच हिस्से पर भी कब्जा करने की कोशिश करने वाले को सजा देना सबसे नेक कामों में से एक है, जिसके लिए जान तक दी जा सकती है। सऊदी अरब ने भी हूतियों के खिलाफ आर पार की जंग शुरू कर दी है। हालांकि ईरान ने सऊदी पर हूतियों के हमलों से खुद को दूर कर लिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की माने तो हूतियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है।
2: The Houthis are responsible for their own actions. They don't take directions from us. As those who are resisting in the region based on the situations that have been imposed on them, we have contacts with them. There is no systematic relationship. Hezbollah in reality.
0: بڑی بات یہ ہے کہ ہوتیوں کے خلاف سینے کاروائی کو لے کر سعودی عرب نے امریکی راشٹرپتی سے مدد مانگی تھی لیکن ٹرمپ نے مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ خبریں بھی سامنے آئی کہ ہوتیوں کے ساتھ پردے کے پیچھے امریکہ نے سمجھوتا کیا تھا. سمجھوتا یہ کہ وہ سعودی کی مدد نہیں کرے گا بلکہ کھاڑی کے دیشوں میں ہوتی امریکہ کے سینے ٹھکانوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے. لیکن اب ہوتیوں نے مڈل ایسٹ میں امریکی سینے ٹھکانوں پر حملے کی دھمکی دی ہے. اگر امریکہ اپنے بیڑے کے ساتھ سینے ہستکشیپ کرنے کی ہمت کرتا ہے یا باب المندیب پر نینترن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ان کے اور کسی بھی دوسرے ویکتی کے لیے ایک لکشمن ریکھا ہے. ہم امریکہ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ ہوائی حملوں یا ہوائی مدد کے ذریعے سعودی عرب کا سمرتھن کرنے کا جوکھم اٹھاتا ہے تو ہم اپنے آس پاس کے سبھی امریکی ہتوں کو نشانہ مانیں گے اور کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. امریکی جہازوں کے لیے باب المندیب کو پوری طرح سے بند کر دیں گے. ہم اس کے لیے لڑیں گے. ہوتیوں کی دھمکی پر ابھی تک امریکہ کی طرف سے کوئی پرتکریا نہیں آئی ہے لیکن فرانس نے ہوتیوں کے خلاف سعودی عرب کی مدد کا اعلان کر دیا ہے.
3: Arabie Saoudite et qui sortait en mer Rouge dans ce qu'on appelle le site de Yanbu. Bon, il a été très abîmé par une attaque des Houthis. Nous nous engageons pour le sécuriser.
4: Avec quels moyens ?
3: Et donc aujourd'hui, c'est la discussion que nous avons finalisée avec les Saoudiens. Nous allons envoyer des moyens militaires, c'est-à-dire des soldats, des radars, des systèmes de défense pour protéger ce site. Pas nous engager dans quelques conflits, mais protéger ce site.
5: Pas d'aviation, des rafales ?
3: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région. Mais en tout cas, on se met en situation de protéger ce site parce que sortait il y a quelques semaines de là, chaque jour, plus de 5 millions de barils. Bon, donc c'est pas négligeable.
0: اب سوال یہی ہے کہ ہوتی بنام سعودی یدھ میں فرانس کی انٹری سے کیا ہرمز کے بعد لال ساگر میں یدھ کا نیا فرنٹ کھل سکتا ہے؟ آج تک بیورو.
6: ایران کے الٹیمیٹم کی رپورٹ تو آپ نے دیکھ لی لیکن اسی بیچ ہوتیوں نے امریکہ کی نیند اڑانے والی ایک چیتاونی دے دی. ہوتیوں نے کھاڑی دیشوں میں امریکی ٹھکانوں پر حملے کی بات کر دی ہے. آخر ہوتیوں کی اس دھمکی کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہیں ہمارے سنواد داتا سمیت چودھری سے. سمیت بتائیے.
7: صحیح اس سمے ہوتی جو ہے وہ میجر کنسرن ہے نہ صرف پورے مڈل ایسٹ کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی. اگر آپ دیکھیں کہ ہوتیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل سے پہلے بھی کئی بار ایئر اسٹرائکس کی ہیں لیکن کچھ ہوا نہیں. اور حال ہی میں جو ہوتیوں کے پاس ویپنس پہنچے ہیں جو اکوپمنٹ پہنچے ہیں وہ لگاتار ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی کہا گیا تھا کئی ایسے ویپن روٹس نئے ڈیولپ کیے گئے تھے ایران دوارا جنہوں نے ہوتیوں کو نہ صرف سشکت کیا ہے بلکہ ان کے پاس کچھ ایسی ٹیکنالوجی کچھ ایسی فیکٹریز کا سیٹ اپ بھی کیا گیا ہے جہاں سے وہ لگاتار لمبے سمے تک نہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی کے اندر بلکہ مڈل ایسٹ کے کئی دیشوں میں یہاں تک کہ اسرائیل تک اٹیک کرنے کی شمتا رکھتے ہیں. اب اگر ایران یہ بات کہہ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں ایران نے یہ کہا کہ ہمارا ہوتیوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے ہم ان کو لگاتار آدیش نہیں دیتے لیکن سچ بات یہ ہے کہ سارا کی سارا کنٹرول ایران ہی کرتا ہے. لیکن اگر ایران ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے اور ایران یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کنٹرول کیجیے تو نشچت طور پر یہ کنسرن سعودی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے بھی بنے گا. فرانس کی طرف سے بھی مدد کا آگرہ کیا گیا. فرانس کی طرف سے کہا گیا کہ ہم بھی اپنے سینکوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں. وہ اس لیے کیونکہ آپ اس کی سیریسنس سمجھیے. ہوتی صرف اور صرف آپ باب المندیب تک نہیں سیمت ہے وہ لگاتار ریاض تک کنٹرول کر رہے ہیں اور ریاض تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹیک کر رہے ہیں. اور جو کوسٹل لائن 220 کلومیٹر کی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر وہ ایسا ہی کرتے رہے تو پھر سوئس کنال تک بھی وہ اپنے اٹیکس کو انیشیٹ کر سکیں گے. آپ مان کے چلیے کہ ان پورے علاقوں کے اندر ان کی موجودگی ایک ایسے نوٹوریس کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشن کے طور پر ایک ایسے ملیشیا کے طور پر ہے جو کہیں پر بھی کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اور شاید یہ کنسرن امریکہ سعودی کے ساتھ مڈل ایسٹ کے تمام دیشوں میں اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ سعودی کے ساتھ سارے مڈل ایسٹ کے دیش کھڑے ہیں امریکہ لگاتار سپورٹ کرنے کی بات کر رہا ہے اور یہاں تک کہ یورپ کے دیش یعنی فرانس بھی اب اس مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے.
6: اور آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اسرائیل کے پردھان منتری انٹرنیشنل بے عزتی کروا چکے ہیں. جی ہاں، نیو یارک میں سنیوکت راشٹر مہا سبھا میں بھاشن کے لیے جیسے ہی بنجمن نیتن یاہو منچ پر آئے 77 دیشوں نے بھری سبھا میں پہلے نیتن یاہو کی ہوٹنگ کر کے ورودھ کیا اور پھر بائیکاٹ کر کے باہر چلے گئے. اس انٹرنیشنل بے عزتی پر پہلے تو نیتن یاہو قریب 3 منٹ تک چپی سادھ کر کھڑے رہے. پھر بھاشن میں انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کوئی اور قائر ہے تو وہ باہر چلا جائے. حالانکہ اس دوران گیلری میں نیتن یاہو کے سمرتھک موجود تھے. انہوں نے تالیاں بجا کر نیتن یاہو کا سواگت کیا اور اسرائیل کی جنتا زندہ ہے کے نعرے بھی لگائے. اس کے بعد نیتن یاہو نے اپنے بھاشن میں غزہ، ایران، لبنان پر اسرائیلی کارروائی کا الیکھ کیا تو ٹرمپ کی تعریف کی، جبکہ نیو یارک کے میئر ممدانی اور یورپ کے نیتاؤں کی آلوچنا کی. دیکھیے.
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर नेतन्याहू की इंटरनेशनल बेइज्जती। सतहत्तर देशों ने किया बहिष्कार, 3 मिनट तक खामोश खड़े रहे नेतन्याहू। हॉल छोड़कर बाहर निकले 77 देशों के प्रतिनिधि, खिसिया गए नेतन्याहू। भाषण में निकाली नेतन्याहू ने भड़ास, बोले कायर बाहर चले जाएं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी पर बरसे नेतन्याहू, ईरान लेबनान पर गरजे। वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस के अंदर भले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को प्रेम और दुलार मिलता हो, लेकिन जब नेतन्याहू न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पहुंचते हैं तो वहां उनकी घोर बेइज्जती हो जाती है। जी हां, कुल 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधि मंडल हॉल से बाहर निकल गए। इसके बाद पहले नेतन्याहू करीब 3 मिनट तक खामोश खड़े रहे और इस बेइज्जती का घूंट पीते रहे। और जब नेतन्याहू ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कोई और कायर हो तो बाहर चला जाए।
4: बिफोर आई बिगिन, जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट। If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much. Seven fronts.
0: Israeli PM ने दावा किया कि बहिष्कार करने वाले कई देशों की मदद इजराइल ने की है, लेकिन उनमें इजराइल के साथ खड़े रहने का नैतिक साहस नहीं है। बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले छेड़ रहा है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू कुल मिलाकर 7 से 8 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। गाजा में अक्टूबर 2023 से इजरायली सेना हमास के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई और संघर्ष में फंसी है। लेबनन में उत्तरी सीमा पर ईरान समर्थित हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के जमीनी और हवाई हमले जारी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। 28 फरवरी को जिस तरह से इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, ईरान के साथ आज भी युद्ध जारी है। यमन से हूती विद्रोही इसराइली क्षेत्र और लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। सीरियाई क्षेत्र में सक्रिय मिलिशिया और सैन्य ठिकानों पर इजराइल लगातार हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इराक में मौजूद शिया मिलिशिया और ईरान समर्थकों के साथ इजराइल की लड़ाई चल रही है। वेस्ट बैंक के अंदरूनी हिस्से में भी इजरायली सेना को लगातार मोर्चा संभालना पड़ रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से नेतन्याहू इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि इजराइल अकेले 7 मोर्चों पर लड़ रहा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ईरान समर्थित इन शक्तियों को कमजोर करके इजराइल ने अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी वैश्विक और अफ्रीकी देशों की रक्षा की है जो आतंकवाद की रडार पर हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो देश आज हॉल छोड़कर भाग रहे हैं वो भी जानते हैं कि इजराइल की इस लड़ाई से उनका अपना देश सुरक्षित हुआ है। आज की तारीख में नेतन्याहू अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती पर भड़क रहे हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल को आईना दिखाया। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पोस्टर दिखाए, दुनिया के सामने कहा कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने मासूम बच्चों को मारा।
5: मैंने कल आपके सामने एक भाषण की तैयारी की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें आतंकवादी कहा, हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वजह के। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां उन्होंने एक स्कूल पर बम गिराया। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बम की चपेट में आकर मारे गए। जो बम अमेरिका और इसराइल ने इन पर गिराए, ये मासूम थे, इनका कोई अपराध नहीं था।
0: ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी तो नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में
8: children perished under bombs.
0: Starlink internet access device dikhaya. इसराइल के पीएम ने स्टारलिंक के डिवाइस को दिखाते हुए कहा कि ईरान के लोगों को इसकी जरूरत है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान इंटरनेट को सेंसर करने पर करोड़ों और अरबों डॉलर खर्च करता है. अगर ईरान के लोगों को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट एक्सेस मिल गई तो वो सच को जान पाएंगे और अपनी आवाज उठा पाएंगे.
4: This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spends millions and billions of dollars censoring the internet.
6: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही. आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा. शुभ रात्रि.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
11: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद अ कोला स्पा एट होम. What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
13: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट।
13: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
16: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
18: तेरा प्यार प्यार प्यार रूंगटा बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार रूंगटा बार बार बार। सर एक बार रूंगटा ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
19: कैची है
18: वायरल है। थैंक यू।
20: आप पे वो TMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
21: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
18: क्या?
21: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है।
22: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
21: आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है,
22: पर स्टेज नहीं हिलता।
21: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
20: उनादान परिंदे बैठ
21: बैठ बैठ।
20: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
21: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
22: तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
2: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.
3: In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल. सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स.

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
3: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के इन तेवरों के बीच कांग्रेस उनके खिलाफ सड़कों पर उतरी। उत्तर हो, पूर्वोत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूरब हो, देश के हर कोने में CEC के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। असम में गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते देखे गए। पटना और चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें फेंकी गई। चंडीगढ़, हैदराबाद और गुवाहाटी में पुतला दहन किया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बना सके। कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी न होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर नए आरोपों की झड़ी लगा दी। पार्टी ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दावा किया कि BLO ऐप में VIP वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
4: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब रचना की संविधान की, तब एक बात बहुत स्पष्ट थी, उस पर बड़ा जोर दिया गया था कि बाकी सब कुछ भले छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वोट की कीमत सबकी एक जैसी होगी। सत्ता पर अब ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं कि उन्होंने वोटर को भी VIP और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
3: कांग्रेस ने आज ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो सके हैं। पार्टी ने आज चुनाव आयोग पर Gen Z के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ किया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी SSR प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। आज चुनाव आयोग पर दबाव NDA सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से भी पड़ा है।
5: मुझे लगता है ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग खासतौर पर CEC की बनती है कि वो अपनी तरफ से पक्षों को मजबूती से रखें ताकि देश के एक भी नागरिक के मन में, मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
3: CEC के खिलाफ मचे हंगामे के बीच VIP के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर CJP भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट 2 की धमकी देने लगी है।
6: ज्ञानेश कुमार को मैं कहना चाहता हूँ कि सब दिन समय एक सरीका नहीं है, थोड़ा शर्म करो तुम कि देश के संविधान के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। अभी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
7: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
3: ज्ञानेश कुमार के बहाने विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है। पलटवार में BJP राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर सवाल उठा चुकी है। वैसे जब से ज्ञानेश कुमार के नाम पर राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है, तब शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदर्शन में लखनऊ से पटना और कोलकाता तक इंडिया गठबंधन के साथ ही नजर नहीं आया। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नरेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की दी सलाह। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीर हटाने का दिया आदेश। अभिजीत दिपके, सौरभ दास, रंका परियाई से बनी फोटो को मॉर्फ करके सर्कुलेट करने का है आरोप। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती समारोह में शामिल पीएम मोदी, पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या का कार्यक्रम। पहाड़ों से लेकर मैदानों में मुसीबत बनी बारिश। उत्तराखंड में कल के लिए अलर्ट जारी, तो यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका। झारखंड में एहतियात।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा मर्डर केस में उनकी बहू शालू की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। कानपुर पुलिस ने आज शालू की बेगुनाही के दस्तावेज कोर्ट में सौंप दिए। इसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही शालू जेल से बाहर आ जाएगी। कानपुर पुलिस ने कोर्ट को जो दस्तावेज सौंपे हैं उनमें वो चार वजहें बताई हैं जिनकी वजह से पहले शालू को गिरफ्तार किया गया और फिर उसे बेगुनाह करार दिया गया। ये कानपुर सेंट्रल जेल है। तस्वीर 23 सितंबर की है। कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की बहू शालू पुलिस पूछताछ के लिए जेल से बाहर लाई गई थी 24 घंटे के लिए। इस दौरान शालू को पुलिस अपने साथ कई जगह ले गई। फिर एक मौका ऐसा भी आया जब 16 दिन बाद शालू और उसका पति सुब्रत इसी थाने के कमरे में आमने सामने बैठे थे। 24 घंटे की पूछताछ के बाद बेशक शालू वापस इसी जेल में पहुंच गई, लेकिन ये 24 घंटे शायद शालू की जिंदगी के सबसे अहम और कीमती 24 घंटे थे, क्योंकि इन्हीं 24 घंटों में खुद कानपुर पुलिस ने यह साफ कर दिया कि ससुर विनीत मिनोचा की कातिल शालू नहीं बल्कि शालू का पति और विनीत मिनोचा का बेटा सुब्रत है। शालू अगले कुछ दिनों में इस जेल से फिर से बाहर आएगी, लेकिन इस बार वापस जाने के लिए नहीं बल्कि अब उसकी जगह इस जेल में विनीत मिनोचा का असली कातिल सुब्रत रहेगा। चौबीस सितंबर को कानपुर पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शालू की बेगुनाही का ऐलान किया था। इसके बाद 25 सितंबर को कानपुर पुलिस के आला अफसरों ने लीगल टीम के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में विनीत मिनोचा मर्डर केस में आए नए मोड़ और नए सबूतों के मद्देनजर शालू की बेगुनाही के कागजात तैयार किए गए। कानपुर पुलिस की ये रिपोर्ट 25 सितंबर को ही अदालत को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में शुरुआती जांच और उस जांच के बाद शालू के खिलाफ जाते सबूत और फिर शालू की गिरफ्तारी, फिर इसके बाद उसकी बेगुनाही के सबूतों का जिक्र किया गया है। इसी के बिना पर कानपुर पुलिस ने अदालत से शालू को जेल से रिहा कर देने की सिफारिश की। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने 24 सितंबर को ही आज तक से बातचीत के दौरान इस बात की तस्दीक की थी कि शालू की रिहाई के लिए पुलिस कोर्ट का रुख करेगी।
1: मैं आपको और आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे मन में ये था कि कोई गलत नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने PCR लेकर के और स्वयं मैं भी उसमें रहा हूं टीम के साथ। हमने पूरा थोरो इंटेरोगेशन करा ढंग से, चूल ये जो जितने गैप्स के उन गैप्स को करने की कोशिश करिए और उसको न्याय दिलाने के लिए अभी हमने तुरंत क्लीन चिट तो नहीं दी है, लेकिन हमारी ये जो विवेचना है उस डायरेक्शन में जा रही है कि जब जो है जो कॉन्ट्रडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स हैं विशाल ने पहले महिला को पूरा का पूरा आरोप इन पर मढ़ा और अब जो है वो उसने कहा कि भैया ने करवाया था, तो उसकी भी हम लोग गहराई से विवेचना कर रहे हैं और बहुत जल्द ही जो न्यायिक है उसको निर्दोष है तो उनके संबंध में, क्योंकि जांच विवेचना का विषय है, उसके संबंध में हम आख्या माननीय कोर्ट के समक्ष रखेंगे और माननीय कोर्ट जो है उसमें डिसीजन लेंगे। पहले मुझे हमें कहीं इसने ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस ने कोई जानबूझ करके उसको फंसाया हो, जो उस समय की परिस्थितियां जो साक्ष्य है उसके अनुरूप ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई कराई गई।
0: शालू की जल्द रिहाई के सिलसिले में कानपुर पुलिस ने अदालत को जो रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट में वो चार वजहें बताई गई हैं जिनकी वजह से शुरुआत में शालू को गिरफ्तार करना पड़ा जबकि बाद में पता चला कि वो बेगुनाह है। कानपुर पुलिस ने शालू की रिहाई के लिए जो पहली वजह बताई वो ये कि विशाल ने शुरू में ये कहा था कि शालू ने ही विनीत मिनोचा का कत्ल करने के लिए उससे कहा था, लेकिन जांच और पूछताछ के बाद ये साफ हो गया कि विशाल ने झूठा बयान दिया था। विशाल को शालू का नाम लेने के लिए सुब्रत ने कहा था। वो दूसरी वजह जिसकी वजह से शालू को गिरफ्तार किया गया वो थी सोसाइटी के गार्ड का वो बयान कि शालू ने ही शुभम के नाम से अपार्टमेंट में पहुंचे विशाल को अंदर भेजने के लिए कहा था, जबकि जांच में ये साफ हुआ कि उस दिन जानबूझकर सुब्रत ने शालू से ये काम करवाया। शालू ने घर के लिए कुछ ग्लास और गजरा मंगवाया था वही देने विशाल शुभम बनकर वहां आया था। शुभम बनकर आने का आइडिया सुब्रत ने ही उसे दिया था। विशाल को शुभम नाम से एंट्री दिलाने के नाम पर जब शालू ने सवाल किया तो सुब्रत ने कहा कि पापा विशाल को पसंद नहीं करते, वो गुस्सा हो इसलिए नाम बदल दिया।
2: हमारे पास उस समय की लीड के आधार पे हमने देखा ये घर के अंदर प्रवेश कैसे करे, तो गेट पे एंट्री के बारे में हमने जानकारी करी। गेट पे एंट्री के बारे में जब पता लगा है कि शालू ने फोन करके विशाल को बुलाया था और विशाल से जब हमने बातचीत करी तो इसका नाम जो है शुभम, सुब्रत ने ही इसका नाम शुभ्रम बताया था, शुभम बताया था। तो इस महिला ने, क्योंकि विशाल को इसके पिताजी पसंद नहीं करते थे और विशाल सुब्रत और शालू की मदद पहले से करता आ रहा था।
0: शालू को रिहा करने की कानपुर पुलिस ने जो तीसरी वजह बताई वो घर की चाबी का सच है। कानपुर पुलिस की जांच में ये साफ हो गया कि डुप्लीकेट चाबी शालू ने नहीं खुद सुब्रत ने बनवाई थी। हालांकि डुप्लीकेट चाबी बनवाने के बाद सुब्रत ने विशाल को घर की असली चाबी दे दी, जबकि डुप्लीकेट चाबी खुद अपने पास रखी। इसकी वजह ये थी कि अगर ऐन वक्त पर डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा न खुला तो क्या होगा, इसीलिए सुब्रत ने उसे असली चाबी दे दी।
3: चाबी आपने घर की फ्लैट की चाबी कब दी थी उसको?
4: चाबी हमने उसको सर हमारी गाड़ी में लगी रहती थी।
3: हाँ,
4: तो वही गाड़ी की चाबी दे दी थी।
3: निकाल के आपने दे दी?
4: निकाल के देगी जो इसकी डुप्लीकेट बनवा रहा हो।
3: तो डुप्लीकेट बनवाने के बाद ओरिजिनल चाबी उसने वापस की आपको?
4: तो उसने डुप्लीकेट बनवा के डुप्लीकेट हमको दे दी कि अगर काम ना करे तो हमने तो ओरिजिनल रख लो।
3: ठीक है,
4: डुप्लीकेट हमको दे दी।
3: ओके।
0: शालू की बेगुनाही की जो चौथी और आखिरी वजह कानपुर पुलिस ने बताया वो ये कि शुरू में पुलिस को शालू और विशाल के कॉल डिटेल से यह गलत फहमी हो गई थी कि दोनों कत्ल की साजिश के लिए बातचीत कर रहे, जबकि जांच में ये सामने आया कि शालू ने विशाल से 4 सितंबर को बेशक 4 बार बात की लेकिन ये सारी बातचीत जन्माष्टमी का सामान लाने के लिए हुई थी, जबकि कत्ल की असली साजिश की बातचीत विशाल से सुब्रत कर रहा था।
5: सुब्रत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का पूरा फोकस अब इस बात पर है कि कैसे शालू को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाला जा सके, जिसके चलते कानपुर पुलिस ने अपनी लीगल टीम के साथ एक बैठक की और उन 4 पॉइंट्स पर अपना जवाब तैयार किया, जिसके चलते शालू की रिहाई का रास्ता साफ होने पाए। पुलिस के मुताबिक विशाल ने सुब्रत के कहने पर शालू के खिलाफ पुलिस को झूठे बयान दिए, चाहे घर की चाबी वाली कहानी हो या फिर गार्ड द्वारा ये बयान देना कि उसने शालू के कहने पर विशाल की सोसाइटी में एंट्री करवाई या फिर विशाल के नए नंबर से शालू के साथ बातचीत के रिकॉर्ड्स हो। पुलिस के मुताबिक जो सभी तथ्य शालू की तरफ इशारा कर रहे थे उसे विशाल और सुब्रत ने मिलकर जानबूझकर गढ़ा था। फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है ताकि जल्द से जल्द इस केस में सुनवाई होने पाए और शालू जेल से बाहर निकलने पाए।
0: यानी कुल मिलाकर यही वो 4 वजह है जिसमें शालू फंस गई और इसी वजह से पुलिस ने उसे विनीत मिनोचा का कातिल करार देकर कत्ल के 72 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था और अब यही 4 वजह शालू की रिहाई का रास्ता खोलने जा रही है। कानपुर पुलिस को लीगल टीम के साथ मिलकर ये रिपोर्ट इसलिए तैयार करनी पड़ी कि अब शालू की रिहाई का फैसला कानपुर पुलिस नहीं बल्कि अदालत करेगी। शालू के वकील ने भी शालू की रिहाई के कानूनी दावपेच की जानकारी दी।
6: देखिए, शालू इस समय जुडिशियल कस्टडी में है तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कोई व्यक्ति नहीं बाहर आ जाता, तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। अगर पुलिस को लगता है कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है तो वो माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद ही शालू बाहर आएगी।
7: आप लोग की तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी अगर पुलिस थोड़ा देर करती या अभी नहीं करती, क्या आप लोग की तरफ से कोई एप्लीकेशन दायर करी जाएगी?
6: नहीं, चूंकि इसका कोई विधिक आधार अभी नहीं है, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा जब तक ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनेगा, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में नहीं आएंगे, तो जिस तरीके से अभी तक निष्पक्ष विवेचना हुई हमें लगता है कि बगैर देरी किए उसे इन्वेस्टिगेशन में ऐड करेंगे और जल्दी से जल्दी माननीय न्यायालय में शामिल करेंगे और सम्मिलित करेंगे और शालू को माननीय न्यायालय के आदेश से जेल से रिहाई हो जाएगी।
0: शालू को बेगुनाह करार देने पर अब शालू का परिवार भी खुश है। शालू के भाई का कहना है कि उन्हें कानपुर पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा था। बेशक बीच में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब जब सच सामने आ गया तब वो शालू को लेकर खुश है। लेकिन वो अब भी हैरान है कि सुब्रत ने ऐसा क्यों किया।
7: कानपुर पुलिस ने अपने के पक्ष रखा है, सुब्रत को गिरफ्तार किया है, उसने कबूल भी किया है कि उसी ने हत्या करी। क्या कहेंगे?
8: विवेचना का हम लोग को हमेशा से था कि पुलिस हमेशा अच्छी विवेचना करेगी, और जैसे कि पहले भी कहा था कि निष्पक्ष जांच होगी, और हम लोग संतुष्ट पुलिस की विवेचना से। धन्यवाद करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को और हमारे वकील साहब को, उन्होंने हमें अच्छी तरह से सब चीज़ें गाइड करी थ्रू आउट।
7: एक ये भी सवाल आ रहा है कि शुरुआत में जो गिरफ्तारी हुई शालू की, अब उस पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर पहले था तो हो सकता है कि और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, या तमाम इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। आपकी बहन है, जेल में रही हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? कि क्या पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो कितनी ठीक थी, कितनी ज़रूरी थी, कैसे देखते हैं?
8: प्रक्रिया का हिस्सा था। अब इसमें तो जो भी उन्होंने की विवेचना के आधार पर चीज़ें सामने लाए, अब निष्पक्ष हो गई हैं जाँचें, सबके सामने रिजल्ट आ चुके हैं,
7: पुलिस से कोई शिकायत नहीं।
8: कोई शिकायत?
7: सुब्रत के बारे में क्या कहेंगे? आपके जीजा हैं और एक ही परिवार में आप लोग रहे हैं, साथ समय बिताया होगा, इस तरीके से उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट सामने आना, और सबसे महत्वपूर्ण बात उनका शालू का नाम लेना, और शालू जब अंदर गिरफ्त में थी पुलिस के तो एक बार भी सामने ना आना, कैसे देखते हैं?
8: जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि इस चीज़ में उनका ना सामने आना स्पष्ट रूप से मैं नहीं कह सकता था, बट आप लोग के माध्यम से चीज़ें सामने आई हैं तो हम लोग भी बहुत चंबित हैं कि इसको किस तरह से लें, किस तरह से ना लें।
0: हालांकि कानपुर पुलिस 24 सितंबर को ही ये साफ कर चुकी है कि शालू को इस मर्डर केस में जानबूझकर फंसाया गया था। साजिश ऐसी रची गई थी कि शुरुआत में खुद पुलिस उसमें उलझ गई, लेकिन धीरे धीरे जाँच के दौरान कई ऐसी चीजें सामने आई जिसके बाद पुलिस इस पूरे केस में यूटर्न लेती है। दरअसल जिस पहली चीज ने कानपुर पुलिस की जांच का रुख मोड़ा वो विशाल कन्या सिम कार्ड था। 5 सितंबर यानी विनीत मिनोचा के कत्ल के 24 घंटे बाद जब विशाल को गिरफ्तार किया गया, तब पुलिस के पास उसका जो मोबाइल हाथ लगा उसमें उसका पुराना नंबर था। बाद में विशाल के एक दूसरे सिम के बारे में पुलिस को पता चला। ये दूसरा सिम विशाल ने 3 सितम्बर को खरीदा था। ये सिम उसने शुभम के नाम पर लिया। इस सिम का इस्तेमाल पहली बार उसने 3 सितंबर की शाम 6 बजे किया, फिर 6:29 पर इसी नए नंबर से सुब्रत को फोन किया, 6:29 से 6:49 के दरमियान। इसके बाद अगले 20 मिनट में इस नए नंबर से विशाल और सुब्रत ने कुल 4 बार बात की। 2 कॉल विशाल ने सुब्रत को किए, जबकि 2 कॉल सुब्रत ने विशाल को। इस नए नंबर के चालू होते ही विशाल ने अपना पुराना नंबर बंद कर दिया था। वो सुब्रत ही था जिसने विशाल का ये नया नंबर शालू को दिया था, वो शुभम के नाम पर।
2: जैसे ही विशाल नया नंबर यूज करता है जियो का और उसमें अपनी आइडेंटिटी शुभम लिखता है, ये शुभम नाम की जानकारी विशाल को है और सुब्रत को है, और शुभम का नाम शालू को बताने के लिए भी सुब्रत ने ही बताया, इसका नाम शुभम बताया जाए।
0: हालांकि कत्ल के 24 घंटे के अंदर ही विशाल शालू का नाम ले चुका था, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि विनीत मिनोचा के घर का सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा था। सुब्रत और विशाल दोनों ने पुलिस को शुरुआत में यही बताया था कि सीसीटीवी कैमरा शालू ने बंद किया था, लेकिन बाद में जब सीसीटीवी कैमरे की पुरानी रिकॉर्डिंग को खंगाला गया तो उसमें सुब्रत कैमरा बंद करते नजर आए।
1: हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में, कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था, सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है।
0: घर की डुप्लीकेट चाबी ने भी इस केस को नया मोड़ देने में एक अहम भूमिका निभाई। शुरू में कानपुर पुलिस को यही लगा था कि चाबी शालू ने बनवाई, यह बयान विशाल ने दिया था, लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि जिस दुकान से डुप्लीकेट चाबी बनाने की बात सामने आई वहाँ शालू कभी गए ही नहीं थे। डुप्लीकेट चाबी असल में सुब्रत ने बनवाई थी, वो भी सिर्फ 100 रुपए में, लेकिन डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए सुब्रत खुद नहीं गया था, बल्कि उसने ये काम विशाल से करवाया था। सुब्रत अपने घर की चाबी कार की चाबी के साथ रखता था। 5 सितंबर की शाम उसने घर की असली चाबी विशाल को दे दी।
2: हमें ये अंदाजा था कि चाबी जो है शालू ने बनवाई है और ये विशाल से उसी ने बनवाई है। जब आमना सामना हुआ तो हमें पता लग गया बाद में कि ये चाबी भी इसी ने बनवाई थी, डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल ना होकर के बल्कि असली चाबी का इस्तेमाल हुआ था उस दिन। डुप्लीकेट चाबी इसने अपने पास ही रख ली, इसने बनवाई थी गुमटी नंबर 5 के पास में इसने बनवाई थी, 100 रुपये में विशाल बना करके लाया था, वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, वो सब उनके बयान रिकॉर्ड हो गए हैं। तो इससे साबित हो गया है कि इन्होंने ही बनवाई थी, परंतु ये सारा का सारा जिम्मेदारी जो है शालू पर डाल दी गई थी।
0: इन सारी चीजों के अलावा पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश के दौरान सुब्रत और शालू दोनों के बैंक डिटेल, उनके पास्ट, विनीत मीनोचा और उनकी पत्नी के साथ दोनों के रिश्ते और कर्ज को लेकर छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा की। इसी दौरान पता चला कि असल में शालू से कहीं ज्यादा सुब्रत का अपने पिता से रिश्ता खराब था। हालांकि शालू की भी अपने सास से नहीं बनती थी, लेकिन वो शालू थी जिसने अपने पिता से करीब 15 लाख रुपए सुब्रत को उधार दिलवाए थे। 23 सितंबर की रात पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान पहली बार शालू ने पुलिस को ये बताया था कि सुब्रत कर्ज में डूबा था और उसे शराब की बुरी लत थी।
2: इनके बारे में ये भी कहना है कि जब तक वो चलता है सुब्रत पे काफी जो है लोन है, करीब 40-50 लाख का लोन है। सुब्रत की तनख्वाह उसके पिताजी द्वारा मात्र 40,000 रुपये दिया जाता है। सुब्रत के सारे शौक हैं, ये जो है इन्होंने जो आ सकता हो ये भी हमने इनका ढूंढा है।
0: हालांकि तब तक कानपुर पुलिस शालू को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन तब भी सुब्रत पर उसकी लगातार नजर थी। सुब्रत किससे मिल रहा, कौन कौन लोग उसे क्या सलाह दे रहे हैं, ये सारी जानकारी पुलिस को थी।
2: हम इनको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और इनको जो सुझाव मिल रहे थे उसके आधार पर भी हम जानना चाहते थे कि इनका क्या रिएक्शन रहता है। ये लगातार हमको झूठ बताते रहे। इनकी योजना ये भी थी कि इनके चाचा पर डाला जाए इसको, परंतु जो है घूम फिर करके जब सालू का नाम आ गया तो इन्होंने फिर उसी को अपना जो है वो करने की कोशिश करी कि ताकि उसी पर साबित हो जाए।
0: धीरे धीरे सारे सबूत अब सुब्रत के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी पुलिस तलाश रही थी, और वो ये कि एक बेटा अपने पिता का कत्ल क्यों करे। सिर्फ छोटे मोटे झगड़ों के चलते या फिर पैसों को लेकर कत्ल की बात पूरी तरह पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। इस दौरान पुलिस विनीत मीनोचा की जिंदगी में भी झांकने की कोशिश करती है, और फिर जवाब मिल गया। जवाब ये कि सुब्रत को अपने पिता से सख्त नफरत थी और इस नफरत की वजह उसके पिता का कैरेक्टर था। खुद सुब्रत ने पुलिस हिरासत में दिए अपने बयान में ये कहा है कि उसके पिता की कई महिलाओं के साथ रिश्ते थे। उसे डर था कि किसी दिन किसी महिला को शादी कर घर ले आए या फिर कोई गर्भवती महिला घर आ जाए तो सारी जायदाद शायद उनके हाथों में चली जाए। इसीलिए वो पिछले 4-5 महीनों से अपने पिता को मारने का प्लान बना रहा था।
7: क्या आपको पछतावा है?
9: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया। मैं वैसे नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
7: अभी भी आप यही चाहते हैं कि उनका मरना जायज था या कोई इस चीज का मजा?
9: बहुत पीड़ित थी इससे, उनके संबंध से। वो कहती थी चलो जो करना करो अब, लेकिन आके वो खुले हम ऐसे बताते थे।
7: आप कोर्ट में इस बात को कबूलेंगे कि हाँ आप ही ने मर्डर किया? पुलिस के सामने तो आपने
9: नहीं सर।
7: किसी चीज से आपकी पत्नी, आपको मलाल है कि आपकी पत्नी का इतना जो खबरें चली और तमाम चीजें, आपको इस चीज का गिल्ट है? ऐसा नहीं होना चाहिए,
9: शालू के साथ नहीं होना चाहिए।
2: इनके पिताजी के बारे में जैसे इन्होंने खुद ही बताया है, महिलाओं के बारे में इन्होंने बताया, तो इनको ये अंदेशा था। इनका ये भी कहना है कि पिताजी खुद फोटो हमको दिखाते थे और ये गोवा जाना और पार्टी में जाना, तो पिताजी के आचरण के बारे में इनको थोड़ा वो था, और इनको ये था कि संभवतः पिताजी के साथ अगर कोई महिला यहाँ आ जाएगी और कोई क्लेम करने लग जाएगी प्रॉपर्टी पे तो ये हमारे हम कहीं के नहीं रहे। ये भी एक रीजन था इनका वो कराने के लिए। और समाज में इनका ये कहना है कि लोग आपत्तियां करते होंगे, इन पे कमेंट मारते होंगे, जिसकी वजह से इनके द्वेष की भावना बढ़ती चली गई।
0: विनीत मीनोचा कानपुर के इस अपार्टमेंट में अपने बेटे सुब्रत, बहू शालू और 6 साल के पोते के साथ रहा करते थे। उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है।

0: नौ बज करके 46 मिनट पर विशाल और राजकिशोर जो इसमें मेन अभियुक्त हैं, जिनके द्वारा हत्या कारित की गई है 9:46 पर वो उस घर में प्रवेश करते हैं।
1: प्लान के उलट चाकू से विनीत मिनोचा के कत्ल के बाद सुब्रत घबरा गया था। अब उसे लगने लगा था कि पुलिस आएगी और जांच में सारा सच सामने आ जाएगा। लेकिन तभी जब विशाल और राजकिशोर को पुलिस गिरफ्तार करती है, तब विशाल मीडिया के सामने शालू का नाम ले लेता है। पहली बार सुब्रत तब हैरान भी हुआ और उसे लगा कि अब वो बच सकता है, क्योंकि अब शालू फंस जाएगी। हालांकि सुब्रत ने विशाल को ये समझा रखा था कि अगर पकड़े जाओ तो चाचा का नाम ले।
2: उसका सर प्री प्लान नहीं था, लेकिन उसने नाम ले लिया तो हमने सोचा कि हम बच सकते हैं।
3: आपका प्लान था पत्नी को फंसाने का?
2: नहीं, वो मौके उसने नाम ले लिया। पहले हमने उससे एक दो बार विचारा था, लेकिन फिर मना कर दिया गया था।
3: बिल्कुल भूमिका नहीं लेना है पत्नी की,
2: बिल्कुल भूमिका नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं पता था इस बारे में।
1: हालांकि कत्ल के 16 दिन बाद तक सुब्रत कानून के शिकंजे से बचता रहा, लेकिन उसे एक डर भी था कि शायद आगे चलकर वो पकड़ा जाएगा। उसे इस बात का अफसोस भी था कि उसकी वजह से उसकी बीवी शालू फंस चुकी है। इन 16 दिनों में उसे नींद नहीं आ रही थी, वो नींद की गोलियां खा रहा था। अगर पुलिस 23 सितंबर को उसे गिरफ्तार न करती या गिरफ्तारी में कुछ और देरी होती तो शायद वही नींद की गोलियां खाकर सुब्रत खुदकुशी कर चुका होता। सिमर चावला, कानपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे।
5: बिजली का बिल पेड
6: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
7: इतना माही वे।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: इतना माही वे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
2: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा हो?
3: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
4: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
2: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
5: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
1: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
1: पंचायत

0: आज तक, सिर्फ आज तक पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को शंका दूर करने की सलाह दी। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीर हटाने का आदेश दिया। अभिजीत दीप के सौरभ दास रांका पर एआई से बनी फोटो को मॉर्फ करके सर्कुलेट करने का है आरोप। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने की जांच की मांग। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती समारोह में शामिल पीएम। पेश की श्रद्धांजलि। भजन संध्या का कार्यक्रम। पहाड़ों से लेकर मैदानों में मुसीबत बनी बारिश। उत्तराखंड में कल के लिए अलर्ट जारी। तो यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका। झारखंड में खतरा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का। हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: महाराष्ट्र की कार्रवाई के बाद FSSAI का बड़ा कदम। नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स को पनीर बताने पर देशव्यापी रोक का प्रस्ताव। तुकाराम मुंडे ने कहा उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार कि वो वास्तव में क्या खरीद रहे हैं। इस बाबत जारी किया तुकाराम मुंडे ने नोटिस। IIT बॉम्बे मामले में तेज जांच। 20 लोगों के बयान दर्ज। 8 घंटे की पूछताछ के बाद साहिल के माता पिता बांद्रा क्राइम ब्रांच से बाहर निकले। मोबाइल फोन से डेटा जुटाने की कोशिश। मुंबई में गाजेबाजी के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा। भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज। श्रद्धालुओं का लगा मेला। बप्पा की विदाई के साथ इस वर्ष के गणेशोत्सव का समापन। देवेंद्र फडणवीस ने घर में कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की दवान फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज। फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की कहानी पर आधारित। श्री रामायण कथा भी थिएटर्स में रिलीज। फिल्म में रामायण से जुड़े प्रसंगों को बड़े पर्दों पर पेश किया गया। कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित लव लॉटरी की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री। कहानी में कानूनी दांवपेच के साथ रिश्तों के पहलू। एडवेंचर्स एंड गेम एंड कोर की फिर बड़े पर्दे पर वापसी। मार्वल की ब्लॉकबस्टर दोबारा भारत में रिलीज। नीम करोली बाबा पर बनी हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड कमाई हुई 377 करोड़ के पार। इन मूवी के सर्वे में दावा 77% फेस्टिव शॉपर्स इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा बजट रखेंगे। 50,000 से ज्यादा खर्च करेंगे। RBI डेटा के अनुसार जुलाई 2026 में गोल्ड लोन बढ़कर 5.5 लाख करोड़ पर पहुंचा। डेटा सूत्रम की रिपोर्ट में खुलासा। देश में कर्ज लेने लायक 90 करोड़ लोगों में से केवल 28% ही लोन ले रहे हैं। 60 करोड़ लोगों के पास अब भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं। कमजोर मानसून घटते जलस्तर से खरीफ रबी फसलों के उत्पादन पर खतरा। गेहूं चावल निर्यात पर दोबारा प्रतिबंध की आशंका। 2,000 रुपए से अधिक के UPI पेमेंट पर लगने वाले 18% GST की समीक्षा की संभावना। GST काउंसिल की बैठक में होगा विचार। एशियन गेम्स में भारत का शानदार आगाज। शूटिंग में देश को मिले 2 गोल्ड 2 मेडल। भारतीय एथलीट्स ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। कमलजीत सुरुचि की जोड़ी ने इतिहास रचा। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड। कमलजीत सुरुचि ने दक्षिण कोरिया की मजबूत जोड़ी को एक तरफा अंदाज में पछाड़ा। एशियन गेम्स में भारत का यह दूसरा गोल्ड मेडल। पुरुषों के 50 मीटर राइफल पोजीशन इवेंट में भारतीय खिलाड़ी तिकले ने किया कमाल। सिल्वर मेडल जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर रुद्राक्ष पाटिल नीरज कुमार ने सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए सिल्वर जीता।

0: गणपति बप्पा मौर्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज पूरी मुंबई मानो लालबाग के राजा के साथ बाकी गणेश मंडलों की विसर्जन यात्रा में उमड़ पड़ी। कई घंटों से बप्पा मुंबई करों को आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे विसर्जन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दिन भर के बाद पूरी रात ये विसर्जन जुलूस मुंबई की सड़कों से गुजरेगा और सुबह लालबाग के राजा को श्रद्धालु नम आंखों से विदाई देंगे और कामना करेंगे कि बप्पा अगले बरस जल्दी से आना।
1: बप्पा की विदाई का वक्त आ चुका है। मुंबई की सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है।
2: तमाम वो गणेश भक्त जो मौजूद हैं, जो निहार रहे थे सुबह से ही घंटों से कि बस एक बार बप्पा की झलक देखने को मिल जाए, क्योंकि ये विसर्जन है। आज जी भर के बप्पा को देखेंगे और उसके बाद एक साल पूरा का पूरा इंतजार होगा। जी हाँ, देखिए कितने ज्यादा भव्य, कितने ज्यादा खूबसूरत इस समय लालबाग के राजा लग रहे हैं। दरबार खुशी से झूम उठा है। आप देखें जिस तरफ भी आपकी नजरें जाएं, लालबाग के राजा को सिर्फ एक बार देखने के लिए खिड़कियों पर, गली पर, ब्रिज पर, ट्रैक पर, यहाँ तक के बांस बंबू के जो टेंट है उस पर भी लोग चढ़ गए हैं। पत्थरों पर भी लोग चढ़कर बिना अपनी जान की परवाह किए।
1: कोई डांस कर रहा है, कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। जिस शहर में पिछले 12 दिनों से गणपति के जयकारे गूंज रहे थे, वहां विसर्जन की शुरुआत हो गई है। गली मोहल्लों से लेकर बड़े बड़े गणेश पंडालों तक हर तरफ बप्पा को अंतिम विदाई का आरंभ हो चुका है। 14 सितंबर से शुरू हुआ गणेश उत्सव आज बप्पा के विसर्जन के साथ सम्पन्न हो रहा है। यानी आज बप्पा अपने भक्तों से विदा ले रहे हैं।
3: सभी आगे बढ़ते हुए यहाँ यहीं से निकलेंगे। अब ये वादन शुरू हो चुका है, ढोल लेके लोग यहाँ खड़े हैं, गुलाल आप देख सकते हो, और पुणे का राजा इस तरफ लक्ष्मी रोड की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इसके बाद तुलसीबाग गणपति जो चौथा गणपति है, और पांचवा यानी कि केसरीवाड़ा जो लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया था पुणे में, वही लोकमान्य तिलक का केसरीवाड़ा जो गणपति है वो गणपति पांच नंबर का है।

0: सुनते हैं ताकि वो अपने पापा को एक बार आखिरी बार उसकी विदाई के लिए उसके साथ आए।
1: भक्तों के लिए ये पल भावुक करने वाला है। 12 दिनों तक जिस गणपति की पूजा की, आरती की, जिनसे सुख समृद्धि की कामना की, अब उन्हीं बापा को विदाई देने का वक्त आ गया है।
2: थोड़ा खागी होता है, मतलब अच्छा लगेगा थोड़ा खागी, बट नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाएंगे बापा, तो और अच्छा लगेगा हम लोग को।
3: अच्छा, गणपति बापा बहुत लोग यहाँ, क्या क्या बोलेंगे?
4: मैं पहली बार आया हूँ दिल्ली से, मेरे को दर्शन करने थे, अभी यहाँ से मूर्ति चली गई, अभी मैं रास्ते में दर्शन करूँगा जय बाबा की।
3: क्या गणपति बप्पा,
4: गणपति मौर्या,
5: पुरचा वर्षी।
1: मुंबई के लिए गणपति सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये आस्था, परंपरा और बप्पा से करोड़ों लोगों का भावनात्मक रिश्ता है। 12 दिनों तक घर घर में विराजे बप्पा आज विदा हो रहे हैं। कहीं ढोल ताशों के साथ शोभा यात्रा है, कहीं भक्तों के आंखों में आंसू हैं, और हर तरफ अगले बरस बप्पा के जल्दी लौटने की प्रार्थना है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।
6: तो आज का जो दिन होता है वो गम और खुशी दोनों की मेलजोल वाला दिन होता है, क्योंकि एक तरफ जो है बप्पा का साल भर इंतजार करने के बाद जब बप्पा आते हैं तो उसकी खुशी होती है, लेकिन आज का दिन उनके विदाई का दिन होता है, विसर्जन का दिन होता है, और इसीलिए जो भक्त होते हैं उनकी खुशी और दुख दोनों का तालमेल जो है वो देखने को मिलता है उनकी भावनाओं में। लेकिन एक ही भावना होती है कि जो भी दुख जो भी पीड़ाएं हैं वो बप्पा हर लें और अगले साल वो जल्दी आएं, और इसी उम्मीद के साथ कि अगले साल बप्पा जल्दी आएंगे इस साल उनका विसर्जन किया जाएगा। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
7: आप देशभर में कहीं पर भी हों, किसी भी शहर में हों, इस समय हम आपको लालबाग के राजा के दर्शन करवाने जा रहे हैं। सीधे मुंबई लिए चलते हैं, विसर्जन के लिए निकल चुके हैं लालबाग के राजा, और ये देखिए, ये लालबाग के राजा हैं, भव्य दिव्य अद्भुत लालबाग के राजा के दर्शन मुंबई कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे विसर्जन के लिए लालबाग के राजा का जुलूस निकल रहा है। रास्ते भर अपने बप्पा को निहारने, उनका आशीर्वाद लेने, उनका पूजा अर्चन करने के लिए मुंबई कर सड़कों पर निकल पड़े हैं, और लालबाग के राजा के दर्शन करते हुए वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं। एक झलक लालबाग के राजा की, और लालबाग के राजा खुद अगर आपके इलाके से बाहर निकले, सामने से गुजरें और आप उनके दर्शन करें, श्रद्धा से उन्हें नमन करें, आपकी आंखें नम हो और आप गणपति बप्पा मोरिया बोलें, तो इससे ज्यादा प्रसन्नता मुंबईकरों को नहीं हो सकती। और ये देखिए, ये एक और विसर्जन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में मुंबईकर आज अपने बप्पा को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। अब बात राजनीति की करते हैं, राजनीतिक घमासान की करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर मचा हंगामा थम नहीं रहा। विपक्ष एक सुर में ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो दिल्ली से महाराष्ट्र तक कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरे। विशेष बात यह रही कि एनडीए के सहयोगी दल भी ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाने लगे हैं, और उनमें सबसे पहला नाम है चिराग पासवान का।
8: चुनाव आयोग के अंदर कामकाज के तौर तरीकों को लेकर अखबार के खुलासे में संगीन सवाल उठे, तो राहुल गांधी ने घंटे डेढ़ घंटे तक मौजूदा हुकूमत पर धुआंधार प्रहार किए। दूसरे ही दिन कांग्रेस सड़क पर थी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, एमपी से लेकर हरियाणा तक, पंजाब से लेकर बंगाल और असम तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए।
9: एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया।
10: बताई चुनाव आयोग की सत्यता कैसे चोरी करा रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के अलावा मजबूती के साथ इस बात को किसी ने नहीं उठाया।
8: वैसे अखबारी खुलासे से मची सियासी सनसनी में देश के तकरीबन तमाम विपक्षी दलों ने वोट चोरी, चुनाव चोरी, पार्टी चोरी, सरकार चोरी के आरोपों की बौछार कर दी थी और मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के दावे तक किए थे। लेकिन सड़क पर प्रदर्शन की बारी आई तो कुल जमा तीन जगह प्रदर्शन दिखा। एक कांग्रेस का प्रदर्शन जो देश के कई हिस्सों में हुआ, दूसरा पटना में आरजेडी का प्रदर्शन जिसमें तेजस्वी तो छोड़िए प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं आए, तीसरा जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रदर्शन जिसमें एनसी विधायकों ने तख्तियां दिखाई। और ये तब था जब खुलासे के फौरन बाद ममता से लेकर उद्धव तक और तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक सब दावा कर रहे थे कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी के खिलाफ पहली शिकायत उनकी ही थी।
5: आज तक तो सिर्फ हम बोल रहे थे, मतलब विपक्ष, लेकिन आज पहली बार, शायद देश के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ होगा कि तीन आयुक्त होते हैं इस चुनाव आयोग में, और जो दो आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, इन्होंने अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास एक लेटर देकर कंप्लेंट दी है कि चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार की मनमानी चल रही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और प्रजातंत्र मारा जा रहा है।
11: सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात रखी थी।
8: क्रेडिट की होड़ ऐसी है कि चुनाव आयोग वाले मसले पर अखिलेश यशवंत सिन्हा तक को समर्थन देने की बात करते हैं, लेकिन भूले से भी राहुल और कांग्रेस का नाम नहीं लेते।
11: फोन आया था देश के बहुत वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा जी का, वो भी अपने गांव से यात्रा लेकर के निकलना चाहते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। हमने उनको भी पूरा समर्थन दिया है।
8: ये और बात है कि जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा था तो अखिलेश के एक भी समाजवादी सिपाही सड़क पर नहीं दिखे। अखबार के खुलासे और कांग्रेस के आरोपों के बाद से अभी तक चुनाव आयोग ने सिवाय एक प्रेस नोट के एक शब्द तक नहीं कहा है, जबकि कांग्रेस की ओर से आरोपों की बौछार हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस दौरान दो नए आरोप आयोग पर लगाए, जिसमें एक तो ये कहा कि ज्ञानेश कुमार ने 2024 के बाद से नौजवान वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना बंद कर दिया है, दूसरा ये कि वोटर और वीआईपी वोटर में भेदभाव हो रहा है। डिजिटल मीडिया और अखबार की रिपोर्ट के हवाले से फिर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि सरकार वोटर और वीआईपी वोटर का भेदभाव कर रही है।
9: वीआईपी दर्शन होते हैं, वीआईपी लेन्स होती हैं, बहुत कुछ हमने देखा, वीआईपी की अलग ट्रैक होता है, सब कुछ देखा, लेकिन मतदाता वीआईपी हमने कभी नहीं देखे। अब ये गुप्ता जी क्या क्या करके जाएंगे और कब जाएंगे भाई?
8: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अलग अलग डिजिटल मीडिया और अखबारों ने दिल्ली की तहकीकात के हिसाब से रिपोर्ट किया है कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर मार्क करने का विशेष प्रावधान किया गया है और वीआईपी वोटर्स और सामान्य वोटर से दस्तावेज देने में बीएलओ भेदभाव कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे तमाम वीडियो डाले जिसमें बीएलओ आम लोगों के घर जाकर दस्तावेज लेते दिख रहे हैं। दरअसल वीआईपी वोटर वाले आरोपों के पीछे की कहानी ये है कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के दौरान विशिष्ट लोगों की पहचान का प्रावधान काफी पहले से है। 2023 के मैनुअल में भी पेज नंबर 94 पर साफ लिखा है कि जन प्रतिनिधि और विशिष्ट लोगों के नाम को फ्लैग किया जाए।
12: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। He is the biggest anti-national. Ganesh Kumar is the biggest anti-national of this country. और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
8: पहले से चले आ रहे ऐसे प्रावधान को डिजिटल रूप में पहली बार देखा जा रहा है, लिहाजा सवाल उठाए जा रहे हैं।
13: So will there be a point? So will there be a point that you'll boycott the elections? Will it come to that? That you'll have to boycott the elections?
14: Thank you very much.
15: Thank you.
14: Distraction में नहीं जाऊंगा, आई विल अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन, बट थैंक यू वेरी मच। मैम प्लीज।
8: तो राहुल चुनाव बहिष्कार के स्तर तक विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।
16: अच्छी ऑफर है राहुल जी की, बहुत दयालु है राहुल गांधी जी, दयावान है। इतने बड़े देशद्रोही गद्दार को भी वो खुले दिल से माफ करना चाहते हैं। देश के सबसे बड़े गद्दार जो सत्ता पर बैठे हैं, उनके आदेश से ही चुनाव आयोग ने इस देश में बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा कांड और भ्रष्टाचार किया है।
15: देखिए, राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है। जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहां बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं, ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा।
7: बारिश की कमी के कारण महाराष्ट्र में सूखे का संकट है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सूखे को लेकर पहली अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें जानकारी होगी कि किन किन इलाकों में सूखे जैसी स्थिति है और वहां सरकार कौन कौन से कदम उठाएगी। समीक्षा बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कई जिलों में कपास, सोयाबीन के साथ कई सारी फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है।
17: महाराष्ट्र में सूखे के संकट ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में सूखे को लेकर पहली अधिसूचना जारी होने वाली है। बारिश की कमी की वजह से मक्का, कपास और कोंकड़ में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन फसलों के नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से भी सहायता मांगने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी। अधिसूचना में यह जानकारी होगी कि किन इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं और वहां सरकार कौन कौन से कदम उठाएगी। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं।
18: तत्काल उद्यापासन फील्ड वर पंचनामे करण्याचे आदेश देखील दिलेले आहेत, जेणेकरून आपल्याला जी काही मदत करावी लागते आणि त्यानंतर केंद्र सरकारची मदत देखील घ्यावी लागते, या दोन्ही करता जे काही नियम आहेत त्या नियमानुसार प्रस्ताव तयार करण्याकरता फील्डवरची माहिती आपल्याला गोळा करावी लागते, ती गोळा केली जाणार आहे। साधारणपणे बहुतांश भागामध्ये दुष्काळी परिस्थिती दिसते आहे।
17: फडणवीस कैबिनेट ने किसानों को सूखे से तुरंत राहत और फसल के नुकसान के सर्वे के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है।
19: देखिए, कैबिनेट में आज बहुत ही चर्चा हुई है और जो सूखा पीड़ित जो इलाके हैं वहाँ जो दुष्काल जन्य परिस्थिति निर्माण हुई है उस पर सभी मंत्रियों ने चर्चा की और मुख्यमंत्री महोदय जी, सरकार, हम लोग सभी लोगों ने इस पर गंभीरता से लिया हुआ है और सभी हमारे जो जिलाधिकारी से लेके अधिकारी जो है और तालुका स्तरीय जो अधिकारी है, कृषि सेवक है, ग्राम सेवक है, तलाटी है, इनको तत्काल कल से पंचनामा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
17: इसके अलावा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद और विधायक हालात का जायजा लेने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मराठवाड़ा और विदर्भ के कई इलाके सूखे से बुरी तरह प्रभावित। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में भी किसान परेशान दिख रहे हैं। दाभड़ गांव में छोटे किसान आत्मराम टोकले भी सूखे से गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। नांदेड़ में परिवार का पेट पालने के लिए आत्मराम ने अपनी 5 एकड़ जमीन पर सोयाबीन की खेती करने के लिए पत्नी के कहने तक बेच दिए, लेकिन बारिश की भारी कमी की वजह से उनकी सोयाबीन और कपास की फसलें पूरी तरह सूख गई।
20: 4 एकड़ सोयाबीन लगा वाला, 1 एकड़ हल्दी लगा वाली।
21: अच्छा,
20: आई
21: क्या ये?
20: हाँ नहीं, सोयाबीन तो चला गया, सब चला गया। हल्दी उधर इसमें पानी लगा वाला, खाली हल्दी को 1 एकड़ खाली, 1 एकड़ का देख रहे।
7: एशियन गेम्स में भारत का जलवा, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबर एशियन गेम्स की, जहां भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है, क्या कुछ रहा आज एशियन गेम्स में देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
2: शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर पर निशाना, टेबल टेनिस में जीता कांस्य पदक, एशियन गेम्स में क्रिकेट के बाद आखिरकार बाकी खेलों में भी भारत ने सोने का खाता खोल लिया है। शुक्रवार को भारतीय जोड़ी ने शूटिंग में देश के लिए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। भारत की सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में भारत का ये पहला गोल्ड है। इसके अलावा 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारत ने सिल्वर अपने नाम किया। ये करिश्मा किया ऐश्वर्य प्रताप, रुद्रांश और नीरज कुमार ने।
3: हमें पता था कि हम कर लेंगे मेडल, मतलब तब हम फाइनल में आए तो हम कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि हमारा आ जाएगा आराम से मेडल, और गोल्ड का नहीं पता था कि हमारा गोल्ड आ जाएगा, और गोल्ड आ गया, वो भी एशियन रिकॉर्ड के साथ आ गया, तो बहुत अच्छी बात है।
4: मैं सोच रही थी कि शूटिंग में गोल्ड लेके आऊँ, मैं लेके आऊँ, लेकिन इंडिविजुअल तो मैं नहीं लेके आ पाई, तो मिक्स टीम में आ गया, तो आई एम हैप्पी।
2: इसके अलावा दिया चिताले और मानुष शाह की जोड़ी ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है, जबकि मनप्रीत कौर ने शॉटपुट में 17.17 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। हॉकी और पुरुष क्रिकेट जैसे कई खेलों में गोल्ड मेडल की आस अभी भी बनी हुई। आज तक ब्यूरो।
1: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
1: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है। इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की दी सलाह। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर FIR। RJD सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोली, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल PM, पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत की बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट, यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका, झारखंड में एहतियात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता से लेकर चंडीगढ़ गुवाहाटी तक चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस, कहीं पानी की बौछारें तो कहीं हिरासत में कार्यकर्ता। एसआर विवाद के बीच सीईसी के समर्थन में बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष, ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देना चाहिए। एसआर पर एनडीए में सवाल, एलजेपी, टीडीपी, आरएलएम ने चुनाव आयोग से मांगा स्पष्ट जवाब। गोवा सीईओ संजय गोयल बोले उपलब्ध लोगों के फॉर्म 6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे। ज्ञानेश कुमार पर उद्धव ठाकरे का हमला, बोले दो चुनाव आयुक्तों ने भी मनमानी को लेकर लिखी चिट्ठी। राहुल को अमित शाह का जवाब, जिन्हें भारत को डेड इकोनॉमी लगती है असल में उनकी अपनी सोच ही मृत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का राहुल परिवार, राहुल को हर जगह हार को पचाने की बजाय बार बार गिरे हुए स्तर का व्यवहार कर रहे हैं। रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा पर कांग्रेस में खलबली, अजय राय बोले हम भी जा सकते हैं कन्नौज इटावा। अजय राय ने पूछा क्या बीजेपी की जगह राहुल को शक्ति दिखाना चाहते हैं अखिलेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को आपत्तिजनक तस्वीर हटाने का आदेश दिया। अभिजीत दीप के, सौरभ दास और रांका पर एआई से बनी फोटो को माफ करके सर्कुलेट करने का आरोप। जमुई पीड़िता के परिजनों की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन, सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज, मीसा भारती ने की जांच की मांग। समस्तीपुर छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सख्त, 4 के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में 8 पर चार्जशीट, सीसीटीवी से रकम हटाने की 200 से अधिक गतिविधियों का दावा, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव बने गवाह। सीसीटीवी, मोबाइल चैट, बैंक खातों में से कथित कड़ियां जोड़ी गई, नकदी डॉलर, आभूषण बरामदगी, जमीन, मकान, वाहन की जांच, अब अदालत में साक्ष्यों की परीक्षा। इंदौर में अवैध दवा कारोबार पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, 52 लाख की दवाएं जब्त। महाराष्ट्र की कार्रवाई के बाद FSSAI का बड़ा कदम, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स को पनीर बताने पर रोक का प्रस्ताव। तुकाराम मुंडे बोले उपभोक्ताओं को जानने का अधिकार कि वो वास्तव में क्या खरीद रहे हैं। आईटी बॉम्बे मामले में जांच तेज, 20 लोगों के बयान दर्ज, 8 घंटे तक पूछताछ। मुंबई में गाजेबाजी के साथ लालबाग के राजा की शोभा यात्रा निकली, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा की गूंज। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के आह्वान पर 11 करोड़ हनुमान चालीस पलटा, देशव्यापी अभियान शुरू। मॉडल टाउन में हल्दीराम शॉप में भीषण आग, 25 फायर टेंडर, मौके पर कोई हताहत नहीं। सोनीपत में कार के अंदर युवक का शव मिला, चोट के निशान, परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की। लखनऊ कानपुर में शंक एयरलाइंस के डायरेक्टर्स के ठिकानों पर आईटी के छापे, गोमती नगर के घर ऑफिस पर छापे। उदयपुर में कार के बोनट में 10 फीट लंबा अजगर घुसा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। सूरत में खड़े डंपर में पीछे से घुसी कार, 4 लोगों की मौत। मुंबई से शंखेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था परिवार। गुरुग्राम में थार सवार दबंगों का तांडव, यूनिवर्सिटी छात्र को टक्कर मारी, बेरहमी से पीटा, छात्राओं के साथ बदसलूकी की, बीच बचाव करने आई छात्राओं के साथ भी मारपीट की गई, पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, छात्रों में गुस्सा। लुधियाना में तेज रफ्तार कार का कहर, 100 किलोमीटर के आसपास रफ्तार से 5 लोगों को उड़ाया, सीसीटीवी में कैद। कार इतनी तेज थी कि बाइक सवार टक्कर के बाद 15 फीट हवा में उछला, 30 फीट दूर जाकर गिरा। यूपी के बदायूं में सिपाही को डीसीएम से कुचलने की कोशिश, पीछे भागकर जान बचाई, पशु तस्करी रोकने पहुंचा था सिपाही। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पानी के तेज बहाव के बावजूद पुल को पार करते समय पेट्रोल से भरा टैंकर बहा, बाल बाल बची चालक की जान। चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल के घर पर ही गोली मारकर हत्या, मामले की जांच जारी, फोरेंसिक टीम भी पहुंची। मध्य प्रदेश के मैहर में बदमाशों के डर से पलायन को मजबूर लोग, विरोध में हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। आगरा में बर्थडे पार्टी के बहाने चंगाई सभा, धर्मांतरण की कोशिश का आरोप, 4 गिरफ्तार। नोएडा बस अग्निकांड मामले में मां को बचाने के प्रयास में बीजेपी नेता के इंजीनियर बेटे की मौत, बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष की पत्नी और बेटे की भी मौत। मेरठ में बाइक पर सवार 4 स्कूली छात्रों का वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बांदा में कार की टक्कर के बाद सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, युवती और भाई ने युवकों से मारपीट की, वीडियो वायरल। मोतिहारी में दबंगों की तस्वीरें सामने आई, मामूली विवाद में शहर के प्रतिष्ठित वकील को पीटा। वकील की पिटाई से आहत जिला संघ के वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, 2 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं हुए तो आंदोलन की चेतावनी दी।
बिहार में फिर से बाढ़ की स्थिति, नेपाल में लगातार बारिश के कारण 12 घंटे में कोसी नदी और गंडक का जलस्तर बढ़ा। कोसी में फिलहाल 2.5 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी छोड़ा जा रहा है, कई इलाकों में पानी भरा। बस्तर में बाढ़ का बड़ा संकट, नदियां उफान पर है, गांव शहर जलमग्न, घरों में पानी घुसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जमशेदपुर में चक्रवात अर्बन का असर, लगातार बारिश से कोल्हान में जल भराव, घरों में पानी ही पानी। प्रयागराज में बदला मौसम, 2 दिन से लगातार बारिश ने लोगों को गर्मी से दी राहत। बाढ़ बारिश को लेकर सीएम योगी का सख्त एक्शन, 24 घंटे में नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाए। बाढ़ बारिश के अलर्ट के बीच सीएम योगी का अफसरों को फील्ड में उतरने का निर्देश, लोगों की मदद पर जोर। रांची में खराब मौसम का असर, इंडिगो ने 12 फ्लाइट से रोटेशन रद्द की, 24 विमान प्रभावित। भारी बारिश के अलर्ट के बीच नैनीताल में आज से स्कूल बंद, कलेक्टर ने दिया आदेश। चमोली में आज ऑरेंज और कल येलो अलर्ट, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। लगातार चमोली में हो रही बारिश के बाद येलो अलर्ट जारी किया गया और आज है ऑरेंज अलर्ट। पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, आज से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए। दुर्गापुर में भारी बारिश से जलमग्न हुए इलाके, सड़कों पर पानी भरा, लोग परेशान। बारामूला के सुपौर में तेज ओलावृष्टि से फसलों पर कहर, धान और फलों की फसलों को नुकसान, मुआवजे की मांग। बेगूसराय में पुल से गंगा में गिरा युवक, 500 मीटर तक बहता रहा, गोताखोरों ने बचा लिया। लखनऊ में खराब मौसम, भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए, बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए निर्णय। दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भजन क्लबिंग इवेंट का आयोजन, पीएम मोदी हुए शामिल। भजन क्लबिंग कार्यक्रम में आनंद लेते दिखे पीएम, पीएम मोदी ने डफली भी बजाई। ग्रेटर नोएडा में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज, अमित शाह ने किया शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी मौजूद। यूपी ट्रेड शो में 2400 से ज्यादा प्रदर्शक, 6 लाख से अधिक विजिटर्स, 1 लाख वर्ग मीटर में महाकुंभ, कई देशों की भागीदारी। वाराणसी वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही है मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा से जोड़ना, 7 अक्टूबर तक यात्रा। कश्मीर के तंगधार बॉर्डर पर अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर, दुश्मन की गोलाबारी से बचने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी सर्जरी, बनाया ऑपरेशन थिएटर। तंगधार में सेना का ऑपरेशन दृष्टि, बॉर्डर बेल्ट में मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी, आंखों का इलाज, एडवांस्ड मेडिकल सुविधाओं से लैस सर्जिकल सेंटर। रूस के विदेशी पर्यटकों ने भी उठाया सफाई का बेड़ा, जोशीमठ में स्वच्छता अभियान। बिहार के गया में 15 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष मेले का शुभारंभ, सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन। सम्राट चौधरी ने विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया, 3500 करोड़ की लागत से तैयार होगा कॉरिडोर। एशियन गेम्स में भारत का शानदार आगाज, शूटिंग में देश को मिले 2 गोल्ड, भारतीय एथलीट्स ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर भी जीता। कमलजीत सुरुचि की जोड़ी ने रचा इतिहास, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में जीता गोल्ड, कमलजीत और सुरुचि ने दक्षिण कोरिया की मजबूत जोड़ी को हरा दिया, 2रा गोल्ड जीता। पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में भारतीय टिकड़ी का कमाल, शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार ने सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन किया, 1762 अंक के साथ सिल्वर जीता। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की द वान सिनेमाघरों में रिलीज, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की कहानी पर आधारित पौराणिक ड्रामा श्री रामायण कथा भी थिएटर्स में रिलीज, रामायण से जुड़े प्रसंगों को बड़े पर्दे पर दिखाया गया। कोर्ट रूम ड्रामा पर आधारित लव लॉटरी की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री, कहानी में कानूनी दांवपेश के पहलू। एडवेंचर्स एंड गेम एंड कोर की फिर बड़े पर्दे पर वापसी, मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म दोबारा भारत में दे रही है दस्तक। नीम इरोली बापा पर बनी फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई जारी, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 377 करोड़ के पार। इन मूवी के सर्वे में दावा, 77% फेस्टिव शॉपर्स इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा बजट रखेंगे, 50,000 से ज्यादा रुपया खर्च करेंगे। आरबीआई डेटा के अनुसार जुलाई 2026 में गोल्ड लोन बढ़कर 5.5 लाख करोड़ पर पहुंचा, 2 वर्ष पहले यह 4.5 गुना था। डेटा सूत्रम की रिपोर्ट में खुलासा, देश में कर्ज लेने लायक लगभग 90 करोड़ लोगों में केवल 28% ही लोन ले रहे हैं, करीब 60 करोड़ लोगों का सब भी क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद नहीं। कमजोर मानसून, घटते जलस्तर से खरीफ रबी फसलों के उत्पादन पर खतरा, चावल गेहूं के निर्यात पर दोबारा प्रतिबंध लगने की आशंका, दालों के दाम काबू में रखने के लिए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर लगने वाले 18% जीएसटी की समीक्षा की संभावना, 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगी चर्चा। सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को इंपोर्ट ड्यूटी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए, सोयाबीन सूरजमुखी तेल पर ड्यूटी घटाकर आम लोगों को राहत देने की तैयारी। एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन टीवी में हर वर्ष 8-10% की ग्रोथ का अनुमान, सीआईआई बीसीजी की रिपोर्ट में दावा।
एफएसएसएआई के प्रस्ताव के अनुसार नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स को पनीर के नाम पर बेचने पर पूरी तरह रोक लगेगी। कमजोर क्वालिटी के सामानों पर ग्राहकों की सेहत दुरुस्त रखने की पहल केंद्र सरकार। कीव की राजधानी ओडेसा और ज़ापोरिज़्या पर रूस का बड़ा हमला, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, मेडिकल सेंटर पर हमला, 14 वर्ष के बच्चे की मौत, 22 घायल। ज़ेलेंस्की का बयान, अमेरिका ने यूक्रेन रूस के बीच शांति वार्ता के लिए 3 देशों की बैठक का रखा प्रस्ताव। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात को ट्रंप ने बताया सफल, कहा बहुत सकारात्मक रही बातचीत। ईरान के राष्ट्रपति ने हुती लड़ाकों को लेकर बड़ी बात कही कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बोले हुतियों से निपटने के लिए फ्रांस लाल सागर में अपने सैनिक भेजेगा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, तीनों मिलकर मक्का ज्वाइंट पर करेंगे बातचीत। ग्रीस की राजधानी एथेंस में जबरदस्त विस्फोट, एक्रोपोलिस के पास धमाका, बह गई रिहायशी इमारत, बड़ा नुकसान। रूस में आम चुनाव के परिणाम घोषित, पुतिन की पार्टी की बड़ी जीत, 450 में से 349 सीटें जीती। इटली में सभी स्कूलों में बुर्का नकाब पर लगा बैन, प्रधानमंत्री ने लिया ये निर्णय। पोप लियो 4 दिन के दौरे पर फ्रांस, फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले, जबरदस्त स्वागत।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है चुनाव आयोग, और जब उसी आयोग के मुखिया पर पक्षपात का सबसे बड़ा हमला हो तो सवाल उठना लाजमी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली से लेकर पटना, शिमला से लेकर लखनऊ तक पुतले फूकने, वाटर कैनन चलने, चुनाव आयोग के बोर्ड पर काले पोतने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरोप भारी है, वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम काटने का आरोप और महाभियोग की मांग। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से ही सियासी कलेश मिटेगा?
1: नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
0: और ये तो विपक्ष भी नहीं, खुद एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान एलजेपीआर, जिसकी तरफ से ये बात सामने आ रही है। बहरहाल, उसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बोल रहे थे तो पूरा हॉल खचाखच भरा था, लेकिन जब इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मंच पर आए तो 75 से ज्यादा देशों के राजनयिक बाहर निकल गए। एक दौर था जब ईरान का बहिष्कार होता था, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी है। तो क्या इसराइल दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, या इसराइल ये साबित कर रहा है कि वो अकेला ही काफी है? रेड कार्पेट की चकाचौंध, बॉल्ड ईगल का तोहफा और पैंडा डिप्लोमेसी। जी हां, बात कर रहे हैं शी जिनपिंग और ट्रंप की। शी जिनपिंग की खातिरदारी में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ी, लेकिन क्या इस भव्यता के पीछे चाइना को वो मिला जो वो चाहता था, या फिर ट्रंप ने टैरिफ वॉर का सीज फायर बढ़ाकर और पैंडा लेकर बाजी अपने नाम कर ली और शी जिनपिंग के हिस्से सिर्फ रेड कार्पेट ही रह गया? हूती के हमलों के बाद अगली खबर, सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती ने अपने सैनिकों को आर पार की जंग का फरमान सुना दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंका जाता, तब तक सिपाही अपनी आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक डटे रहें। मुफ्ती के इस आक्रामक संदेश ने साफ कर दिया है कि यह जंग अब और भी भीषण होने वाली है। और अगली खबर पाकिस्तान से, जहां 27 सितंबर को होने वाले पीटीआई के मेगा मार्च से पहले ही शाहबाज सरकार की सांसें फूल गई हैं। जेल में बंद इमरान खान को छुड़ाने आ रहे लाखों समर्थकों को रोकने के लिए इस्लामाबाद और जो अटक बॉर्डर है उसको नुकीली कीलों, वेल्डेड जो होते हैं ना कंटेनर्स, वेल्ड किए गए कंटेनर से सील कर दिया गया है। अस्पतालों को मास कैजुअल्टी के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। क्या दो दिन बाद पाकिस्तान में बड़ा बवाल होने वाला है?

इस समय पूरा पाकिस्तान गुरिल्ला के पीछे पागल नजर आ रहा है। शादियों और पार्टीज में डीजे का शोर तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो नया ट्रेंड सामने आया है वो खूब चर्चा में है। पाकिस्तान की महफिलों में अब डीजे नहीं बल्कि विशाल काय नाचते हुए गुरिल्ला छा गए हैं। पार्टी में एंट्री मारते ही ये गुरिल्ला ऐसा जबरदस्त डांस करते हैं कि मेहमान झूमने पर मजबूर हो जाते हैं।

जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज उस वक्त जबरदस्त बवाल मच गया जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पेश कर दिया। प्रस्ताव में जैसे ही साल 2000 के ऑटोनॉमी वाले फैसले का जिक्र किया गया, बीजेपी विधायक भड़क उठे, नौबत हाथापाई तक आ पहुंची, वेल में जमकर धक्का मुक्की हुई और कागज तक फाड़ दिए गए। बीजेपी ने जहां इन नियमों का उल्लंघन इसे बताया है, वहीं उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया, कहा कि बीजेपी राज्य के दर्जे पर वोटिंग से भाग रही है। अगली खबर, पहाड़ों पर कुदरत का खौफनाक सितम जारी है। सिक्किम में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी है, जहां रिम्बी गांव में अचानक लैंडस्लाइड आया, सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मलबे के तेज बहाव में 32 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए। मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और खुद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हालात को बहुत गंभीर बताया है।

स्टंटबाजी का चस्का और जान से खिलवाड़। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ चलती बाइक पर छात्रों ने जोखिम की सारी हदें पार कर दी। एक ही बाइक पर कई छात्र सवार थे। हद तो तब हो गई जब एक छात्र दूसरे के कंधों पर बैठा नजर आया।

0: और दूसरी गाड़ी से कोई वीडियो भी बना रहा था, मुड़ मुड़ कर देखा भी जा रहा है कि वीडियो ठीक से बन रहा है या नहीं। 5 से 6 बच्चे एक स्कूटर पर, कैसे इनकी जिंदगी जोखिम में थी। इसीलिए ये वीडियो दिखाना जरूरी है ताकि हम ये समझें कि अंडर एज बच्चे अगर बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो एक हिस्सा इस पूरे मामले का, और दूसरा बिना हेलमेट इतने बच्चे एक साथ एक स्कूटर पर। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में एक विशेष भजन क्लबिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। देखिए
1: Can we all clap to his beat? Come on.

0: जिस तरह पहले भारत में जागरण या भक्ति से जुड़े कार्यक्रम होते थे, ठीक उसी तरह अब अगर आप देखिए तो ये जो नई युवा पीढ़ी है भजन क्लबिंग करते हैं, और यहाँ भजन क्लबिंग का मतलब है पारंपरिक भक्ति को आज की पीढ़ी के अनुकूल बनाना, इसे भजन क्लबिंग कहते हैं। जैसे इस भजन क्लबिंग में पारंपरिक जो भजन है, जो बहुत ही मतलब ऐसे भजन है जो लोगों की जुबान पर होते हैं, उन्हीं को टेक म्यूजिक के साथ और बहुत ही फास्ट म्यूजिक के साथ, नाइट क्लब या रॉक कॉन्सर्ट जैसे आधुनिक लाइट शो के साथ पेश किया जाता है। और नई पीढ़ी के युवा ये भी मानते हैं कि ये भजन क्लबिंग उन्हें उनकी संस्कृति या भक्ति से जोड़ने का सबसे मजबूत तरीका है। उदाहरण के लिए अब तक नाइट क्लब का मतलब होता था तेज और लाइव म्यूजिक में पार्टी करना, शराब पीना, डांस करना, लेकिन भजन क्लबिंग थोड़ा अलग है। इसमें लाइटिंग और माहौल तो नाइट क्लब जैसा होता है, लेकिन लाइव म्यूजिक में गाने भक्ति के होते हैं और साथ में चाय, लस्सी, ये सब चलती रहती है। नई पीढ़ी के युवा इन भक्ति गीतों को अध्यात्म से जुड़ने और एक मॉडर्न और आधुनिक तरीका मानते हैं। दूसरा, जहां पहले ऐसा माना जाता था कि मॉडर्न दिखने के लिए युवाओं को पश्चिमी नाइट क्लब जो नाइट लाइफ है उसको अपनाना होगा, वहीं अब जेन ज़ी युवाओं ने यह साबित किया है कि वो पारंपरिक रहकर भी कूल और मॉडर्न देख सकते हैं। बहुत सारे युवा इसे मानसिक तनाव से मुक्ति का जरिया भी मानते हैं और इसे एक स्पिरिचुअल एस्केप कहते हैं। मतलब होता है अध्यात्म और भक्ति के जरिए मन की शांति ढूंढना, और ये मौजूदा पीढ़ी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की पीढ़ी स्क्रीन टाइम बहुत कई बार उनका बढ़ जाता है और कई तरह की डिप्रेशन एंग्जाइटी से वो जूझ रहे हैं, और ऐसे में भजन क्लबिंग उनके लिए एक कैथारसिस यानी मन का गुबार निकालने और बिना किसी साइड इफेक्ट के मानसिक शांति पाने का एक सामूहिक माध्यम बन गया है। यहाँ आप देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री भी जेन ज़ी से जुड़ने की कोशिश में इस भजन क्लबिंग का हिस्सा बने। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको ये बताते हैं कि इस वक्त पूरे विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग, और हमारे देश में चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव कराने वाली एक एजेंसी नहीं है। भारत के लोकतंत्र में करोड़ों लोगों का जो भरोसा, जो विश्वास है, चुनाव आयोग को उस विश्वास का सबसे बड़ा कस्टोडियन यानी संरक्षक माना जाता है। और इसीलिए आज जब पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, इस्तीफा तो दूर, अब गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तब हम आपको इस पूरे विवाद की जड़ तक ले जाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं और जो चुनाव आयोग दलील दे रहा है, सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख है। उससे पहले आप कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन की ये तस्वीरें पहले देखिए, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की और गिरफ्तारी की मांग की गई है। इनमें भी दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार का मास्क पहनकर उन्हें देशद्रोही बताया, जबकि लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, पटना, भोपाल, गुवाहाटी में कांग्रेस के बड़े नेताओं की अगुवाई में पैदल मार्च निकाले गए। इसके अलावा शिमला में प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के ऑफिस बोर्ड पर कालिख पोत दी है, जबकि लखनऊ में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, और पटना में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बड़ी बात यह है कि इन सभी विरोध प्रदर्शनों में ज्ञानेश कुमार कांग्रेस के निशाने पर रहे। कुछ शहरों में उनके पुतले जलाए गए, जबकि कुछ शहरों में 48 घंटे के अंदर इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए,
1: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
2: ज्ञानेश कुमार

0: 이재명 잠깐
1: 호시야 호시야 호시야
2: इन विरोध प्रदर्शनों के बीच ऐसी खबरें भी आई कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में अपने दो कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शामिल होने वाले थे। इनमें पहला कार्यक्रम मेरठ में आज यानी 25 सितंबर को और दूसरा कार्यक्रम वाराणसी में 28 सितंबर को होना था और कांग्रेस नेताओं का ऐसा दावा है कि विरोध के डर से ज्ञानेश कुमार ने खुद इन कार्यक्रमों को अब स्थगित कर दिया है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये दोनों कार्यक्रम 21 सितंबर को ही स्थगित किए गए थे और इसका मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ विवाद क्या है वो भी समझिए। ये बात सब जानते हैं कि विपक्ष पिछले कई महीनों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। इनमें भी सबसे बड़ा मुद्दा उसने वोटर लिस्ट के रिविजन को बनाया जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कहते हैं, यानी SIR, आपने भी सुना होगा। ये वही रिविजन है जिसके तहत अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं और विपक्षी दलों ने इस पर बार बार सवाल उठाए। इसी साल 12 मार्च को कुछ विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहती थी और उनका आरोप था कि ज्ञानेश कुमार SIR के जरिए वोटर्स का नाम काटकर चुनावों में बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन उस वक्त 6 अप्रैल को लोकसभा में यह प्रस्ताव स्पीकर द्वारा खारिज कर दिया गया था और विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर रहा। आप ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष ने SIR के इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कभी नहीं छोड़ा और इस पर उसकी तरफ से लगातार चर्चाएं चलती रहीं। और अब जब इस पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए तो विपक्ष को यह साबित करने का मौका मिला कि वो जो सवाल उठा रहा था वो सवाल गलत नहीं थे। अब द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, सरलता से आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि चुनाव आयोग में लगभग सभी बड़े फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद ले रहे थे जबकि नियमों के खिलाफ है। कानून कहता है कि चुनाव में जो शीर्ष 3 सदस्य होंगे उन्हें सभी फैसले सर्वसम्मति यानी यूनानिमिटी से लेने होंगे, या तो तीनों एक तरफ हों या फिर कम से कम 2 लोग फैसले के समर्थन में हों। अगर फिर भी सदस्यों में मतभेद है तो जैसा हमने आपको बताया 2 out of 3 तो निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, लेकिन कोई सदस्य या मुख्य चुनाव आयुक्त खुद अपनी मर्जी से सिर्फ एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। जबकि ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट है कि पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कम से कम 14 बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों में ज्ञानेश कुमार ने बाकी 2 आयुक्तों की असहमति को शामिल ही नहीं किया। ये 2 आयुक्त थे सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, जिनकी तस्वीर आप उनके साथ देख रहे हैं। दावा है कि इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने SIR की प्रक्रिया और उससे जुड़े फैसलों पर 14 आपत्तियां लिखकर दी, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने अपने अंतिम फैसले में उन्हें शामिल ही नहीं किया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आयुक्तों को कैबिनेट सचिव तक को पत्र लिखना पड़ा, लेकिन तब भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हालांकि बीजेपी का इस पर दावा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी गई चिट्ठियां या फिर जो भी इन्होंने आपत्तियां जताई थी उसका कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। यानी यहां से अगर आप देखिए तो विपक्ष जो आरोप लगातार लगा रहा है, विपक्षी नेताओं का तो ये कहने का मौका उनको मिल ही गया कि चुनाव आयोग के अपने ही आयुक्त SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे लेकिन ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जियां चला रहे थे। दूसरा दावा इस रिपोर्ट में यह है कि चुनाव आयोग के अंदर मतभेद इस कदर बढ़ चुके थे कि 9 सितंबर 2026 को हुई बैठक से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच पिछले 4 महीने में एक भी संयुक्त बैठक नहीं हुई थी। यानी ये तीनों एक साथ जो फुल कमीशन की बैठक होती है वो 4 महीने से नहीं हुई थी। और इस पर भी विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार ने खुद को चुनाव आयोग का अल्टीमेट बॉस समझ लिया था। अब ये देखिए कि वो कौन से मुद्दे थे जिन पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्तियां जताई और ज्ञानेश कुमार ने अपने फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया। इनमें पहला मुद्दा है फॉर्म 6 में बदलाव का। जब कोई नया वोटर मतदाता सूची में पहली बार अपना नाम जुड़वाता है तब उसे ये फॉर्म भरना होता है। पहले इस फॉर्म में नए वोटर से ये नहीं पूछा जाता था कि उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पुरानी वोटर लिस्ट या SIR की सूची में था या नहीं, लेकिन पिछले साल इस सवाल को भी फॉर्म में एक एनेक्शन

0: के जरिए, एक एडिशनल पेपर के जरिए ये बात भी अब पूछी जा रही है। जब ये फैसला हुआ तब दावा है कि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस पर लिखित आपत्ति जताई। उन्होंने कहा था कि फॉर्म 6 को इस तरह बदला नहीं जा सकता, उसमें कोई भी नया पेपर नहीं जोड़ा जा सकता, इसके लिए पहले सरकार को नियम बदलना पड़ेगा, सरकार कानून में बदलाव करे फिर ये हो सकता है। उनके साथ दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू ने भी विरोध जताया, लेकिन उनके विरोध के बावजूद ये सवाल फॉर्म में एक एनेक्सर के जरिए डाला गया और 21 सितंबर तक इसे हटाया नहीं गया था। दूसरा बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि वोटर लिस्ट का कंट्रोल स्थानीय अधिकारियों के पास रहे या सीधे दिल्ली में चुनाव आयोग के पास रहे। जिससे पहले स्थानीय अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी हैं, जिसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं ईआरओ, वो किसी भी वोटर की जांच कर सकता था। मतलब वोटर का नाम ऐड करना है या निकालना है ये उसका काम था। अगर उसे लगता था कि उस वोटर का पता सही है, उसने जो जानकारी बताई है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो अपने स्तर पर कंप्यूटर में उस वोटर का नाम मतदाता सूची में जोड़ सकता था, घटा सकता था। और इस व्यवस्था में दिल्ली में बैठे बड़े अफसरों का सीधा दखल होता ही नहीं था। लेकिन पिछले एक साल में आरोपों के मुताबिक ये व्यवस्था बदली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर इस रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने जो आईटी विभाग में नया सॉफ्टवेयर ईसीआई नेट बनाया, जिसको डिजिटल बैकबोन चुनाव आयोग का बना दिया गया, कई पोर्टल्स 40 के आसपास पोर्टल्स को खत्म करके, और अब स्थानीय अधिकारी सिर्फ नाम का सुझाव दे सकता था। यह इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईसीआई नेट में अब जो स्टेट में जो लोग काम कर रहे थे, धीरे धीरे बताया जा रहा है, आरोप है कि वो जो पहले फैसले ले रहे थे वो अब नहीं ले सकते थे, लेकिन अंतिम बटन या अप्रूवल दिल्ली से होता था। और इस बदलाव का भी दोनों चुनाव आयुक्तों ने लिखित विरोध किया था, लेकिन आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। अब इससे हुआ ये कि गोवा में जिन मतदाताओं को स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने सही पाया, उनके नाम भी दिल्ली में बैठे अफसरों ने वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए, जिससे ये विवाद और बढ़ गया। और आरोप यही है कि गोवा से बार बार उन 97 वोटर्स के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके उनको नहीं जोड़ा गया। तीसरा आरोप पश्चिम बंगाल के उन मतदाताओं को लेकर था जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। और यहां भी दावा है कि दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी इन फैसलों को लागू किया गया। और आखिर बड़ा विवाद तब हुआ जब जुलाई के अंत में चुनाव आयोग के अंदर प्रशासनिक काम के बंटवारे को लेकर आदेश जारी किया गया, और उसे दोनों आयुक्तों ने खारिज कर दिया और ये कहा कि इसके जरिए चुनाव आयोग को सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। और क्योंकि विपक्षी दल पहले से ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग कर रहे थे, इसलिए इस रिपोर्ट के आते ही नया सियासी बखेड़ा शुरू हुआ। विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और गिरफ्तारी दोनों चाहिए। इसी के साथ साथ देश भर में विरोध की बात कांग्रेस जनता पार्टी भी कर रही है, और उनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। विपक्षी दल ही नहीं बल्कि एनडीए के 3 सहयोगी दलों ने भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। इनमें पहले हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिन्होंने ये कहा है कि चुनावी प्रक्रिया पर संदेह बढ़ना ठीक नहीं, चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि एसआईआर और ईवीएम से जुड़े विवाद को लेकर जनता में भ्रम है, इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत सही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी चुनाव आयोग से सवालों और का जवाब देने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, ताकि उस पर जनता का भरोसा मजबूत रहे। सुनिए।
1: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
2: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री, और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
3: चुनाव आयोग ने इस देश में बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा कांड और भ्रष्टाचार किया है, चुनाव को हाईजैक किया है, वोट चोरी की है, सब कुछ किया है। एसआईआर का जो मुद्दा सामने आया है वो क्या है?
4: हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी।
5: आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
0: इस पूरे विवाद के बाद विपक्षी दल सिर्फ ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं मांग रहे, बल्कि वो बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार के विधानसभा चुनाव दोबारा से कराने की मांग भी कर रहे हैं। जबकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब वोटर लिस्ट का रिविजन नहीं हुआ था और ना ही ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। आगरा के रहने वाले ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल काडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो मई 2022 से 31 जनवरी 2024 तक सहकारिता मंत्रालय में सचिव थे। 15 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया। 19 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 17 अगस्त 2025 को राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि राहुल गांधी हलफनामा दें या देश से माफी मांगे और उनके सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ मौजूदा सरकार में काम किया है। 2007 से लेकर 2012 तक यूपीए सरकार के दौरान ज्ञानेश कुमार रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। लेकिन अब कांग्रेस उन पर सवाल उठा रही है, जबकि सरकार और चुनाव आयोग की दलील कुछ और है। चुनाव आयोग का कहना है कि जब किसी निकाय में एक से ज्यादा सदस्य होते हैं तो उनके बीच सहमति असहमति स्वाभाविक है, जिसे विवाद नहीं बल्कि स्वस्थ चर्चा का हिस्सा मानना चाहिए। जबकि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष संस्थाओं को कमजोर करना चाहता है और अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट बना रहा है। सुनिए,
6: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता है, और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है जी। इतना दिन बाद इंटिमिडेशन का बाहर ला करके, कोई भी हत्या की घटना नहीं, लोगों को वोट डालने दिया गया।
0: खैर, आपने सुना, उन्होंने पद्मभूषण की मांग कर दी है जो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। खैर, इस पूरी राजनीति के बीच विपक्षी दल भी ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग जेंजी युवाओं को वोटर बनने से रोक रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जंतर मंतर पर हुए जेंजी आंदोलन से सरकार डर चुकी है, उसने मतदाता सूची में 18 साल से ऊपर के नए युवा वोटर्स को शामिल करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस प्रक्रिया को जानते हैं कि ये क्या कहा जाता है। इसे स्पेशल समरी रिविजन कहते हैं, जिसके तहत हर साल नियमित रूप से नए 18 साल के जो युवा हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। मृत या पता बदल चुके मतदाताओं की जानकारी अपडेट भी होती है इसी स्पेशल समरी रिविजन में। 18 साल की उम्र पूरी करने वालों को साल में 4 तारीखों 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर के आधार पर वोटर बनने का मौका मिलता है। और आमतौर पर SSR की घोषणा मई के आसपास होती है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि साल 2024 से हमारे देश में SSR नहीं कराया गया है। यह भी तब हुआ जब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के पक्ष में थे और उनका तर्क था कि हर साल 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को वोटर लिस्ट सूची में शामिल करना जरूरी है और SIR की वजह से SSR नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आपत्तियों को भी नजरअंदाज किया और अभी इस विवाद पर कांग्रेस का कोई जवाब नहीं आया। माफ कीजिएगा, इस विवाद पर चुनाव आयोग का स्पेसिफिक कोई जवाब SSR पर नहीं आया है। जैसे ही आता है हम आपको दिखाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि इसराइल पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है, या इसराइल पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि वो अकेला काफी है। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भाषण दे रहे थे, तब हॉल में अमेरिका और इसराइल जैसे देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के राजनयिक मौजूद रहे। प्रतिनिधि जो थे वो मौजूद थे, बैठे थे। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें आपको महासभा का मुख्य हिस्सा भरा हुआ नजर आएगा और इनमें वैश्विक नेताओं और राजनयिकों की भारी मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ये देखिए, इस एंगल से भी अगर आप देखिए तो काफी लोग दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सिर्फ 2 दिन पहले 23 सितंबर को यह भाषण दिया था, लेकिन इसके ठीक विपरीत जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आज भाषण हुआ तो लगभग पूरा हॉल ही खाली हो गया। इसराइल के मीडिया का दावा है कि 75 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार कर दिया। ये आपको दिख रही है पूरी तस्वीरें वहां की। जैसे ही भाषण के लिए उनका नाम पुकारा गया, वहां हॉल में मौजूद अलग अलग देशों के राजनयिक बाहर चले गए और इसके बाद इन दो तस्वीरों को लेकर बहस शुरू हो गई और लोग इस बहिष्कार को इसराइल के लिए इंटरनेशनल आइसोलेशन बताने लगे। ये कहा गया कि जब मुस्लिम देशों के अलावा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में भी इसराइल की युद्ध नीतियों के खिलाफ भारी गुस्सा है, जैसे जिन देशों के राजनयिक हॉल छोड़कर चले गए उनमें ईरान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, तुर्की, ओमान, ब्राजील, सूडान, ट्यूनिशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, अल्जीरिया, मलेशिया, किर्गिस्तान का नाम शामिल था। और यहां बात सिर्फ बहिष्कार की नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू भाषण देने के लिए मंच पर आए तभी हॉल में जोरदार हूटिंग, नारेबाजी हुई और देखते ही देखते गैलरी के कई हिस्से पूरी तरह खाली हो गए। यहां तक इतना तो समझ आ रहा था ईरान कई देशों को इसराइल के खिलाफ लामबंद करने में कामयाब हुआ है। देखिए,
7: आवर स्कूल्स, आवर हॉस्पिटल्स, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऑल ऑफ इट अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। व्हेन आई टुक ओवर द रिस्पांसिबिलिटीज एज प्रेसिडेंट, they assassinated Ismail Haniya in Iran on the day of my inauguration. Israel targets any neighborhood in any city in any province, commits assassinations like a true terrorist. In Gaza, over 80,000 innocent civilians have been murdered, brutally murdered. Hundreds of thousands have been displaced.
0: वहीं आपने देखा कुछ समर्थक भी थे जो तालियां बजा रहे थे उनके लिए। वहीं बीबी उनको कहा जाता है नेतन्याहू को, तो उनके खिलाफ भी कई लोग निकलते हुए नजर आए। कुछ साल पहले तक यही चीज ईरान के साथ होती थी। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र में ईरान के पूर्व राष्ट्रपतियों के भाषणों के दौरान भारी वॉकआउट होते थे। ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग दिखाई देता था, लेकिन इस बार के सत्र ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया और इसलिए आज दुनिया में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि जो ईरान अलग थलग रहता था अब उसके साथ कई देश खड़े हैं और जो इसराइल अमेरिका के समर्थन से मजबूत स्थिति रखता था उसके लिए अब हॉल तेजी से खाली हो रहा है। देखिए,
8: हर बराबर सवाल अज होलोकॉस्ट सवाल कुनंदे रा मورد हजमे व तहदीद करार मिदहंद व दर बराबर सवाल अज हादसे 11 सितंबर तहदीद बे तहरीम व हमले निजामी मिकुनंद।
9: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.
0: इस वॉकआउट के बाद अब इसराइल ने एक और नई राह पकड़ी है और वो दुनिया को ये कह रहा है कि वो अकेला नहीं है बल्कि अकेला काफी है। आज जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार हुआ तब हॉल छोड़कर जाने वाले राजनयिकों को उन्होंने नैतिक रूप से कायर बता दिया। उन्होंने शब्दशः कहा कि जो देश वॉकआउट करके हॉल से बाहर जा रहे हैं उनमें कई देश ऐसे भी हैं जिनकी इसराइल ने मदद की है या जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के लिए इसराइल को धन्यवाद दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इशारा सऊदी अरब की तरफ था, जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया ये दावा करता रहा है कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए अमेरिका और इसराइल से बात की थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि यूएई ने पिछले साल की तरह इस बार भी बहिष्कार करने वाले देशों में हिस्सा नहीं लिया। यूएई के अलावा बहरेन, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, नेपाल, पोलैंड, बहरेन, इटली, फिनलैंड, डेनमार्क के राजनयिक भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भाषण सुनते रहे और जब 40 मिनट का यह भाषण पूरा हुआ तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उसने अपने मंच को इसराइल के प्रधानमंत्री का चुनावी मंच क्यों बनने दिया। यानी ईरान ये कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर युद्ध अपराधी होने के आरोप लग रहे हैं तो उन्हें भाषण देने के लिए इस मंच पर क्यों बुलाया गया और उनकी जगह यूएन के पोडियम पर होनी चाहिए या अदालत के कटघरे में। सुनिए,
10: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: और अब ये देखिए कि ईरान के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर संयुक्त राष्ट्र के मंच को अपनी चुनावी रैली का मंच बनाने का आरोप क्यों लगा रहा है. इसके पीछे बड़ा कारण है इसराइल में अगले महीने 27 अक्टूबर को होने वाले संसदीय चुनाव. आरोप है कि इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वही मुद्दे संयुक्त राष्ट्र के मंच से उठाए जिन्हें वो इसराइल के मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते थे. सबसे पहले उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के उस हमास हमले को याद किया जिसे इसराइल के बहुत सारे लोग आज भी भूले नहीं हैं. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि आबादी के अनुपात में यह हमला 9/11 के हमले से 16 गुना बड़ा था लेकिन फिर भी दुनिया इसकी बात नहीं करती. सुनिए.
10: Altogether, they slaughtered 1,200 Israelis that day. I want to give you an idea of what this means for a country of 10 million. Proportionately, this is equal to 40,000 innocent Americans slaughtered in less than 24 hours. That's 16 times 9/11. 16 9/11s.
0: प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज अपने साथ स्टारलिंक का एक डिवाइस भी लेकर आए थे और उनका निशाना ईरान पर था. उन्होंने इस डिवाइस को दिखाते हुए ये कहा कि वो इसे ईरान के प्रतिनिधिमंडल के लिए छोड़ रहे हैं ताकि ईरान की जनता अपनी तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके. और उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान का क्रूर शासन जल्द गिर जाएगा. हालांकि यहां ईरान भी जानता था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस पर हमलावर रहेंगे. इसीलिए वॉकआउट के बाद ईरान के राजनयिकों ने अपनी खाली सीट पर कुछ फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की तस्वीर रख दी थी जो पूरे भाषण के दौरान नेतन्याहू के सामने दिखती रही. और ये वही कासिम सुलेमानी है जिन्हें अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर साल 2020 में मार दिया था. देखिए.
10: The Iranian regime is especially afraid when their people have this. When their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spends millions and billions of dollars censoring the internet. Mr. President, I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation. So when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
0: इससे पहले इसराइल के राजदूत ने भी संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजनयिकों को स्टारलिंक का इंटरनेट डिवाइस देने की कोशिश की. और जानते हैं इसराइल ये क्यों कर रहा है. इसराइल ऐसा करके ये बताना चाहता है, साबित करना चाहता है कि अगर ईरान की जनता वहां की इस्लामिक सरकार से आजादी नहीं चाहती तो ईरान में इंटरनेट बंद क्यों किया गया है. और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू स्टारलिंक का ये इंटरनेट डिवाइस लेकर आए. यही नहीं, इसी भाषण में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी बताया कि इसराइल अपने दुश्मनों को कितनी गहराई तक जाकर नुकसान पहुंचा सकता है. इसके लिए वो अपने साथ एक पेजर डिवाइस या बीपर लेकर आए थे और ये वही पेजर है जिन्हें लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाके इस्तेमाल करते थे लेकिन मोसाद ने इन्हें हैक करके इनमें ब्लास्ट कर दिया था. देखिए.
10: इज़राइल हैमर्ड हमास, वी पम्मल्ड हिजबुल्ला. यू रिमेंबर द बीपर्स? रिमेंबर दीस थिंग्स? रिमेंबर देम? या Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leaders, dead.
0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अगर बेइज्जती कराने का कोई वर्ल्ड कप होता तो पाकिस्तान आसानी से जीत जाता. पिछले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता तो ये आतंकवादी आज न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कों पर घूम रहे होते. ये पुराना वीडियो है, आजकल खूब वायरल है, आपने भी देखा होगा. और उस वक्त शहबाज शरीफ को यही लगा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में यह बात बोलकर बड़ा तीर मार लिया, लेकिन दुनिया ने इसे पाकिस्तान का कबूलनामा माना और ये कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अपने आंगन में सांप को पाल पोस कर काबू में रखता है ताकि वो पड़ोसियों को ना काटे, उसी तरह पाकिस्तान ने भी आतंकियों को अपने देश में खूब पनाह दी। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के बूट पॉलिश प्रधानमंत्री ने अनजाने में आतंकवाद को शरण देने की बात तो मान ली थी पिछले साल, लेकिन आज जब इसी आतंकवाद पर अमेरिका में उनसे सवाल पूछे गए तो शहबाज शरीफ ऐसे निकले से अचानक सुनने की जो ताकत है वो चली गई हो, कुछ सुनाई ही नहीं दिया उनको। देखिए,
11: प्राइम मिनिस्टर, व्हेन विल यू प्रोसिक्यूट हाफिज सईद? व्हेन विल यू प्रोसिक्यूट हाफिज सईद? Prime Minister, when will you stop harboring terrorists?
0: मतलब हाथ उठाया। खैर, आज नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उनके भाषण में दो बातें ऐसी रही जिनके बारे में पूरी दुनिया सोचने की जरूरत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर पिघलते समय किसी का पासपोर्ट या बॉर्डर लाइन देखते और इसीलिए दुनिया को भी इस संकट से निपटने के लिए सीमाओं से परे जाकर सोचना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, इंसानों ने जमीन के टुकड़ों को तो जमीन को टुकड़ों में तो बांट दिया, लेकिन ये जो प्रकृति है इसे कोई नहीं बांट सकता। और अगर इस प्रकृति पर संकट है तो इससे निपटने के लिए सबको साथ आकर काम करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इतनी अजीब हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी देश 72 घंटे के भीतर कहीं भी हथियार पहुंचाने में सक्षम है, लेकिन गरीबों तक खाना पहुंचाने का लॉजिस्टिक सिस्टम पूरी तरह टूटा हुआ है। हम हथियार तो बना लेते हैं, हथियारों को अंतरिक्ष में भी भेज रहे हैं, लेकिन अगर कहीं मानवीय संकट है, भूखमरी है, त्रासदी है, यही देश जरूरतमंद लोगों तक खाना नहीं पहुंचा पाते। आज प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए भारत और चाइना को भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से धन्यवाद दिया और अपने भाषण के अंत में पूरी दुनिया को कल्याण और शांति की कामना करते हुए भगवान पशुपतिनाथ का आह्वान किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। देखिए,
12: God and save lives. Let us reform the order that leaves the weakest with least power. And when the next warning comes from the rooftop of the world, let us be ready to hear it and ready to act. Bhagwan Pashupati Nath le Vishwa ko kalyan garun, yo Vishwa Buddha le dekhaeko bato ma hidna sakos. Dhere dhere dhanyabad, namaste.
0: 11 saal baad जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की सरजमीं पर स्टेट विजिट पर पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत ऐसा किया जैसा शायद ही किसी ग्लोबल लीडर का हुआ। लेकिन सवाल यह है कि रेड कार्पेट की इस भव्यता के पीछे हासिल क्या हुआ? क्या व्यापार, ताइवान, सेमीकंडक्टर और AI जैसे मोर्चों पर लगी आंच धीमी हुई, या फिर यह पूरी मुलाकात महज एक ऑप्टिक्स यानी तस्वीरों का खेल बनकर रह गई? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की आवभगत में कोई कसर तो नहीं छोड़ी? अमेरिका के नेशनल सिंबल बॉल्ड ईगल की एक शानदार कांस्य मूर्ति शी जिनपिंग को सौंपी गई, जिसकी डिजाइन खुद फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के सहयोग से तैयार की गई थी। ट्रंप ने इसे अमेरिका की फ्री एंड सोरिंग स्पिरिट का प्रतीक बताया, लेकिन कूटनीति के चश्मे से देखें तो आखिर शी जिनपिंग की इस खातिरदारी से डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? ट्रंप ने दोनों देशों के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के सीज फायर को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया, जो कि नवंबर में खत्म होने वाला था, जिसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को चुनावी आर्थिक दबाव के बीच कुछ महीनों की राहत जरूर मिल गई। चाइना ने आधिकारिक तौर पर पिंगपिंग और फुशुआंग नाम के दो विशाल पैंडा अटलांटा भेजने का ऐलान किया, जिसे ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जीत के रूप में पेश किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों और उद्योगपतियों को दिखाया कि वो चाइना को झुकाना ना सही, लेकिन मेज पर लाकर अमेरिका की शर्तों पर बात कराने की हैसियत रखते हैं। लेकिन इस भव्यता के बावजूद शी जिनपिंग को वो सब नहीं मिला जो वो चाहते थे। चाइना उम्मीद ये कर रहा था कि ये ट्रेड पॉज कम से कम एक साल के लिए बढ़े ताकि शी जिनपिंग ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल तक सुकून की सांस ले सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स, अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद और एडवांस चिप्स पर गतिरोध बरकरार रहा। ट्रंप ने शी जिनपिंग का जोरदार स्वागत तो किया, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या रेड कार्पेट के इस भव्य स्वागत के पीछे की हकीकत भी उतनी ही चमकदार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप शी जिनपिंग को सम्मान दे तो रहे हैं, लेकिन चाइना का सामान नहीं खरीद रहे। आंकड़ों की जुबानी समझिए, साल 2018 में अमेरिका दुनिया से जितना सामान आयात करता था उसमें अकेले चाइना की हिस्सेदारी थी 21.2%। लेकिन जुलाई 2026 तक के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि चाइना की यह हिस्सेदारी अब घटकर हो गई है 7.9%, यानी लगभग 8%, जो इतिहास का सबसे निचला स्तर है। इतना ही नहीं, इस साल जनवरी से जुलाई के बीच अमेरिका ने चाइना से सिर्फ $156.4 बिलियन का सामान खरीदा, जो 2018 के मुकाबले $296.5 बिलियन जो उस वक्त का था उसके मुकाबले करीब करीब आधा रह गया है। दूसरी ओर अमेरिका से चाइना को होने वाला निर्यात भी घट गया है और अब महज 4.5% पर आ गया है। जो व्यापार घाटा 2018 में $418.2 बिलियन का था, वो अब जानते हैं कितना, $165.1 बिलियन। तो अमेरिका ने इस पर काम किया, चाइना से सामान कम खरीद रहे हैं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक चाइना ने अमेरिका आने वाले फोन्स और होम अप्लायंसेस में लगभग 39.1% की भारी गिरावट आई है, जबकि खिलौनों और स्पोर्ट्स गुड्स का निर्यात 37.1% घट गया है। इसके विपरीत अमेरिका अब चाइना को तकनीक बेच रहा है। 2025 में अमेरिका से चाइना जाने वाले सिविल एयरक्राफ्ट और स्पेयर पार्ट्स 37.3% बढ़कर $15.9 बिलियन पर पहुंच गए और सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स का निर्यात वो भी लगभग 10.2% बढ़ा। वहीं दुनिया भर में चाइना का जो कुल ट्रेड सरप्लस है भले ही 3 गुना बढ़ गया हो, लेकिन अमेरिका के साथ उसका ट्रेड सरप्लस आधे से भी कम रह गया है। हालांकि मई 2025 में अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ 125% से घटाकर 10% कर दिया था और ट्रेड वॉर पर ब्रेक लगाया। फिर भी बीते 14 में से 11 महीनों में अमेरिका की चाइना से खरीदारी लगातार घटी है। साफ है कि सिर्फ टैरिफ घटा देने से व्यापारिक रिश्ते पुराने दिन नहीं लौटा पा रहे, यानी रनवे पर गर्मजोशी से हाथ मिलाना, रेड कार्पेट बिछाना, लोट लोट कर कार्पेट को साफ करना अपनी जगह कूटनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके बाजार का संदेश साफ है कि आयात के मोर्चे पर अमेरिका चाइना पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब आपको बेहद शांत दिखने वाले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठहाके जरा दिखाते हैं। आमतौर पर पोकर फेस यानी बहुत गंभीर माने जाते हैं संयमित दिखने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अचानक ठहाके लगाकर हंस पड़े। उन्हें हंसाने वाले कोई और नहीं, खुद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ट्रंप शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम दिखा रहे थे। जब वो जो बाइडेन की जगह पहुंचे तो वहां बाइडेन की तस्वीर नहीं बल्कि ऑटो पेन की फोटो लगी थी। ट्रंप ने हंसते हुए कहा, ये ऑटो पेन है, ये बाइडेन है। बस फिर क्या था, शी जिनपिंग खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। वक्त का पहिया भले ही इंसान को बचपन से बुढ़ापे की ओर धकेल दे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुछ यादें, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही उम्र का हर दायरा ढह जाता है। जरा सोचिए, चेहरे पर झुर्रियां हो, सिर के बाल पक चुके हों, 65 से 68 साल की उम्र हो चुकी हो और अचानक वही कदम 50 साल बाद अपने पुराने स्कूल के गलियारे में लौट आए। सोशल मीडिया पर 1976 बैच के इन मासूम बुजुर्गों के रीयूनियन का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे हर देखने वाले को उसके बचपन का याद दिला दिया। सबसे मजेदार तो है गले से लटका ये वाटर बॉटल। मुझे लगता है कि बैग और वाटर बॉटल अपने बचपन का एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसी कहानी है अपने आप में जो हर किसी के दिल को पसीजने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही स्कूल का वो पुराना लोहे का गेट खुला, मानो वक्त की टाइम मशीन 50 साल पीछे लौट गई। सफेद कमीज, कंधे पर टंगा बस्ता, गले में लटकती रंग बिरंगी वाटर बॉटल्स, ये कोई छोटे बच्चों की टोली नहीं बल्कि 1976 बैच के वो छात्र हैं जो आज जिंदगी के 6 दशक पार कर चुके हैं। तमाम जिम्मेदारियां, दफ्तर की फाइल्स, बाल बच्चों के झंझट, सबको बाहर छोड़ दिया जब उन्होंने स्कूल के प्रांगण में कदम रखा। तो चेहरे की झुर्रियां जैसे गायब हो गई, बाहर निकल आया वही बेफिक्र बचपन जिन हाथों ने जिंदगी के जाने कितने सख्त फैसले लिए। आज उन्हीं हाथों ने बड़ी शिद्दत से गिल्ली और डंडा थामा। धूल उड़ते मैदान में जब पिट्ठू के पत्थर गिरे तो 68 साल के ये बच्चे ऐसे भागे मानो कल ही इनका पीटी का पीरियड था। ना किसी को घुटनों के दर्द की परवाह थी, ना ब्लड प्रेशर का डर था। असली जादू तो तब देखने को मिला जब ये टोली अपने पुराने क्लासरूम में दाखिल हुई। लकड़ी के बेंचेस पर बैठना और मास्टर जी के आते ही एक सुर में खींचकर बोलना, गुड मॉर्निंग सर। अटेंडेंस की पुकार हुई, रोल नंबर्स बोले गए, फिर शुरू हुआ वही शरारतों का दौर। कभी बेंचेस पर हाथ थपथपाकर तालियां बजाना, कभी एक दूसरे की कमीज पकड़कर क्लासरूम के अंदर ही छुक छुक रेलगाड़ी बनाकर नाचना। हद तो तब हो गई जब किसी शरारती दोस्त ने क्लास में पटाखे की आवाज निकाली। मास्टर जी हाथ में छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। कोई बेंच के नीचे छिपा, कोई पुरानी अलमारी के पीछे दबक गया। इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया ये वीडियो सिर्फ एक रील नहीं बल्कि हम सब के भीतर सोए हुए एक बच्चे की पुकार बन गया है। इस रियूनियन ने एक खूबसूरत संदेश दिया कि वक्त इंसान की उम्र तो बढ़ा सकता है लेकिन बचपन की दोस्ती को बूढ़ा नहीं कर सकता। चेहरे बदल जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन जब पुराने यार मिलते हैं तो 50 साल की दूरी भी सेकंड्स में मिट जाती है।
13: 50 साल बाद जब हम सभी पुराने दोस्त फिर से एक साथ मिले तो दिल में एक ख्वाहिश जागी, क्यों ना उन सुनहरे पलों को फिर से जिया जाए। हम अपने उसी स्कूल पहुंचे जहां कभी हमारी हंसी गूंजती थी। वहीं हमने एक यादगार फिल्म शूट की, पुराने खेल खेले, पुरानी शरारतों को याद किया और बचपन।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही है। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भरकर कैसे जियोगे। नमस्कार।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक क्लेश छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेनजी का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: सीईसी के खिलाफ जेन जी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी, ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबॉडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस, फॉर द डैमेज दैट इज टेकन प्लेस टू आर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भर कर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: इलेक्शन कमीशन, ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश पर।
1: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आयसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
10: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
11: That Ganesh Kumar has to resign, the SIR process has to stop, the entire EC has to be overhauled and that the voter lists of January 2025 have to be reinstated.
1: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
3: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
6: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया। मेरी मांग है कि बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहां पे फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमानत जब्त कराएगी मोदी से बनारस।
1: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
12: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोही का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
1: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
13: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
14: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
1: चंडीगढ़, शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
15: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
0: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाल दी गई। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग को लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए, जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोक देना चाहिए।
1: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
16: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
1: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी न होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
17: ज्ञानेश कुमार विरुद्ध इम्पीचमेंट डाला हुई चिलो एवं एटा एक फिट केस फॉर इम्पीचमेंट जेखने सांविधानिक पद के अपव्यवहार करा हुई चिलो।
1: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
18: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं कि उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
1: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी SSR प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
19: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
20: Should immediately resign and the whole SIR process should be thoroughly revisited.
1: CEC के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया तो उधर CJP ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा न होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
21: वे अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
22: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
1: विपक्ष ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है तो ज्ञानेश कुमार के बचाव में BJP उतरी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के BJP अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी।
23: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता है और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। गणेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए। सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
1: उधर SIR को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में SIR के फैसलों, दिशा निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की SIT जांच की मांग की है। जबकि महाराष्ट्र में SIR के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें SIR की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे। इन पर लिखा था कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस बीच चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अखिलेश यादव ने अपने मिशन की शुरुआत रायबरेली से की, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली को ही क्यों चुना, अब इस पर राजनीति तेज हो गई।
1: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जनसमूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
2: अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
1: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का ये बयान क्यों आया? अखिलेश भी रायबरेली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और BJP की बता रहे हैं।
4: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
1: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
7: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
4: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त, और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
7: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
4: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
1: पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, जिसके बीच अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान का आगाज करना कहीं न कहीं गठबंधन को एक बड़ा संदेश है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भले ही जुबानी तीर छोड़े जा रहे हों, लेकिन अखिलेश और राहुल चुप हैं, जो ये बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई दिए। योगी अमित शाह साथ में थे तो अमित शाह ने योगी के कामकाज की जमकर तारीफ की। हम आपको बता दें कि BJP के लिए UP में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे महत्वपूर्ण है।
8: यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
1: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
8: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है।
5: इस ट्रेड शो में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में बातचीत करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ट्रेड शो भी देखा। स्टॉल पर भी दोनों साथ जानकारी लेते दिखे। इस दौरान शाह ने यूपी में निवेश के माहौल की बात की, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
8: 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
5: अमित शाह योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है, जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
9: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत की वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ स्वीकार नहीं रहा था।
5: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
10: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
5: 2022 की तरफ बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जहां बीजेपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल्स को बल प्रयोग करना पड़ा।
11: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
24: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
11: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
25: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इसे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरें, मत मिसलीड।
11: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
0: सूरत से आज हैरान करने वाली खबर आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। सूरत सिविल अस्पताल में डेढ़ महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की।
3: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
6: तो उसकी वो घर पे पता नहीं, वो नहीं गया, रिसेप्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी रिसेप्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
3: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में हैं, और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर पुलिस ने दावा किया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनीत मिनोचा का बेटा ही है। पहले इस हत्याकांड में व्यापारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की साजिश क्यों रची और इस मामले में अपनी पत्नी को कैसे फंसाया।
12: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया ट्विस्ट आया है, जहां बहू नहीं बल्कि बेटे के पिता के कत्ल में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
13: तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें सुब्रत की भी भूमिका है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में, कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था। सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है।

0: कि क्यों? तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते थे, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। लेकिन अब जब उनका बेटा ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मरवा डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है कि उनके पिता विनीत मिनोचा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके ना ले आए, और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उनके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे।
1: कई जगह संबंध थे, अवैध संबंध थे कई औरतों के साथ, जिनमें से शक भी होता था कई बार कि मतलब कहीं और कोई आ ना जाए और किसी और को ना ले आओ। ले आने का मतलब ब्याह का है।
0: सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, उसे बस ये अफसोस है कि पिता को चाकू से गोद कर मारा, क्योंकि दीद तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी।
2: तो एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह, क्या आपको पछतावा है?
3: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया, मैं वैसे नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
0: लेकिन सवाल है कि क्या इस प्लान में सुब्रत की पत्नी शालू शामिल थी या नहीं? सुब्रत तो इनकार कर रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस ने अभी तक शालू को क्लीन चिट नहीं दी है। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
4: खबर यूएन की, जहां खाड़ी देशों में जारी तनाव को महसूस किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद जब नेतन्याहू भाषण के लिए पहुंचे तो कई देशों ने बायकॉट कर दिया, और ये एक दो देश नहीं बल्कि 77 देश थे।
5: यूएन के मंच पर जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे तो 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधिमंडल हॉल से बाहर निकल गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने कायरों को बाहर जाने वाला तंज कसा।
6: बिफोर आई बिगिन, जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, इफ देयर आर एनी अदर मोरल कावर्ड्स who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
5: बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले झेल रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों से सबसे बड़ी राहत सऊदी अरब जैसे सुन्नी अरब देशों को मिली है। नेतन्याहू की स्पीच और इजराइल की गतिविधियां इस बार यूएन में ड्रामे से भरपूर दिखी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी। कल नेतन्याहू ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस डिवाइस दिखाया।
6: Regime is especially afraid when their people have this. When their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spells rather spends millions and billions of dollars censoring the internet.
5: इजरायली पीएम की इस स्पीच के बाद यूएन में उसके स्थायी राजदूत डेनी डेनन ईरान के राजनयिक के पास उसी स्टारलिंग डिवाइस को लेकर पहुंचे। उनसे कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। बहरहाल यूएन में खाड़ी देशों में जारी तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है, जहां अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद अब इसराइल के भाषण के दौरान बायकॉट की तस्वीरें आई हैं। आज तक फिरो।
4: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
1: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
1: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
2: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
3: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
1: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
4: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
0: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
5: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2000

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की दी सलाह। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोली, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल पीएम। पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत की बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट। यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका। झारखंड में एहतियात। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक क्लेश छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेंजी का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: सीईसी के खिलाफ जेंजी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश पर।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी। ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। बनारस में मोदी को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबॉडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस फॉर द डैमेज दैट इज टेकन प्लेस टू आवर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भरकर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: इलेक्शन कमीशन ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश पर या किसी रूलिंग पार्टी के आधार।
1: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आयसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
10: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
11: That Ganesh Kumar has to resign, the SIR process has to stop, the entire EC has to be overhauled and that the voter lists of January 2025 have to be reinstated.
1: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
3: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
6: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया। मेरी मांग है कि बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहां पे फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमाना जब्त कराएगी मोदी। बनारस
1: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
2: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोह का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
1: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
12: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
13: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
1: चंडीगढ़, शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
14: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
0: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाल दी गई। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग को लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए, जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोक देना चाहिए।
1: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
4: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
1: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी न होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
15: ज्ञानेश कुमार विरुद्ध इम्पीचमेंट आना हुई एवं फिट केस फॉर इम्पीचमेंट जिसमें सांविधानिक पद के अपव्यवहार करा हुई है।
1: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
16: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं कि उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
1: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी SSR प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
17: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
18: Should immediately resign and the whole SIR process should be thoroughly revisited.
1: CEC के खिलाफ मचे हंगामे के बीच VIP के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर CJP ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा न होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
19: वे अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करे, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
20: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
1: विपक्ष ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है, तो ज्ञानेश कुमार के बचाव में BJP उतरी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के BJP अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी।
21: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
1: उधर SIR को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में SIR के फैसलों, दिशा निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की SIT जांच की मांग की है, जबकि महाराष्ट्र में SIR के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें SIR की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे, इन पर लिखा था कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस बीच चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अखिलेश यादव ने अपने मिशन की शुरुआत रायबरेली से की, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली को ही क्यों चुना, अब इस पर राजनीति तेज हो गई।
1: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जनसमूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
22: अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
1: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का ये बयान क्यों आया? अखिलेश भी रायबरेली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और BJP की बता रहे हैं।
23: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
1: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
24: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
23: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
24: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
23: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
1: पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, जिसके बीच अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान का आगाज करना कहीं न कहीं गठबंधन को एक बड़ा संदेश है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भले ही जुबानी तीर छोड़े जा रहे हों, लेकिन अखिलेश और राहुल चुप हैं, जो ये बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई दिए। योगी अमित शाह साथ में थे तो अमित शाह ने योगी के कामकाज की जमकर तारीफ की। हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यूपी में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे महत्वपूर्ण है।
5: यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
7: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
5: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना।
7: इस ट्रेड शो में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में बातचीत करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ट्रेड शो भी देखा। स्टॉल पर भी दोनों साथ जानकारी लेते दिखे। इस दौरान शाह ने यूपी में निवेश के माहौल की बात की, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
5: 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
7: अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है, जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
8: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत के वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था।
7: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
9: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके पूँह पर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
7: 2022 की तरफ बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक भी
0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जहां बीजेपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल्स को बल प्रयोग करना पड़ा।
10: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
2: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
10: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
3: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इससे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे, मत मिसलीड।
10: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
0: सूरत से आज हैरान करने वाली खबर आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। सूरत सिविल अस्पताल में 1.5 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की।
6: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
11: तो उसकी वो घर पे पता नहीं, वो नहीं गया, डिसेक्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी डिसेक्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
6: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है, और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर पुलिस ने दावा किया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनीत मिनोचा का बेटा ही है। पहले इस हत्याकांड में व्यापारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की साजिश क्यों रची और इस मामले में अपनी पत्नी को कैसे फंसाया।
12: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया ट्विस्ट आया है, जहां बहू नहीं बल्कि बेटे के पिता के कत्ल में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
25: तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें सुब्रत की भी भूमिका है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में, कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था। सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है। सुब्रत को ये भी हमें जानकारी कि इनके पिताजी भी पार्टी करते थे, ये भी जानकारी में आया था कि ये पिता की और बेटे की अनबन थी, पटरी निभाती थी आपस में, और ये भी जानकारी मिली थी कि इनके जो पैसा इनको मिलता है वो पैसा बहुत कम मिलता है, इनकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है।
1: सवाल उठता है कि क्यों, तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते थे, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। लेकिन अब जब उनका बेटा ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मरवा डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है कि उनके पिता विनीत मिनोचा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके ना ले आए, और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उनके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे।
4: जिनमें से मेरे थोड़ा शक भी होता था कभी बार कि मतलब कहीं और कोई आना जाए और किसी और को ना ले आओ, ले आने का मतलब दिया कहें।
1: सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, उसे बस ये अफसोस है कि पिता को चाकू से गोद कर मारा, क्योंकि डील तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी।
13: तो एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह, क्या आपको पछतावा है?
14: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया, मैं वैसे नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
1: लेकिन सवाल है कि क्या इस प्लान में सुब्रत की पत्नी शालू शामिल थी या नहीं। सुब्रत तो इनकार कर रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस ने अभी तक शालू को क्लीन चिट नहीं दी है। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
0: खबर यूएन की, जहां खाड़ी देशों में जारी तनाव को महसूस किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद जब नेतन्याहू भाषण के लिए पहुंचे तो कई देशों ने बायकॉट कर दिया, और ये एक दो देश नहीं बल्कि 77 देश थे।
15: यूएन के मंच पर जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे तो 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधिमंडल हॉल से बाहर निकल गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने कायरों को बाहर जाने वाला तंज कसा।
16: बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, इफ देयर आर एनी अदर मोरल कावर्ड्स who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
15: बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले झेल रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों से सबसे बड़ी राहत सऊदी अरब जैसे सुन्नी अरब देशों को मिली है। नेतन्याहू की स्पीच और इजराइल की गतिविधियां इस बार यूएन में ड्रामे से भरपूर दिखी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी। कल नेतन्याहू ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस डिवाइस दिखाया।
16: Regime is especially afraid when their people have this. When their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spells rather spends millions and billions of dollars censoring the internet.
15: इजरायली पीएम की इस स्पीच के बाद यूएन में उसके स्थायी राजदूत डैनी डेनन ईरान के राजनयिक के पास उसी स्टारलिंग डिवाइस को लेकर पहुंचे, उनसे कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। बहरहाल यूएन में खाड़ी देशों में जारी तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है, जहां अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद अब इसराइल के भाषण के दौरान बायकॉट की तस्वीरें आई हैं। आज तक फिरो।
0: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की दी सलाह। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर FIR। RJD सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोली, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल PM, पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत की बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट, यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका, झारखंड में एहतियात। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक क्लेश छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेंजी का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: CEC के खिलाफ जेंजी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी। ज्ञानेश कुमार पर BJP बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस हिंदुओं को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस फॉर द डैमेज दैट हैज टेकन प्लेस टू आवर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भरकर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी ऐसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: इलेक्शन कमीशन ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष।
1: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर ऐसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
10: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
11: ज्ञानेश कुमार हैज टू रिजाइन, द SIR प्रोसेस हैज टू स्टॉप, द एंटायर EC हैज टू बी ओवरहॉल्ड एंड दैट द वोटर लिस्ट ऑफ जनवरी 2025 हैव टू बी रीइंस्टेटेड।
1: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
3: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
6: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया। मेरी मांग है कि बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहाँ पे फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमानत जब्त कराएगी मोदी से बनारस।
1: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
2: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोह का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
1: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
12: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
13: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
1: चंडीगढ़ शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
14: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
0: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाल दी गई। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग को लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए, जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोक देना चाहिए।
1: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
4: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
1: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी ना होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
15: ज्ञानेश कुमार विरुद्ध इम्पीचमेंट आना হয়েছিল এবং এটা একটা ফিট কেস ফর ইমপিচমেন্ট যেখানে সাংবিধানিক পদকে অপব্যবহার করা হয়েছে।
1: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
16: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं कि उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
1: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसएसआर प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
17: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
18: Should immediately resign and the whole SIR process should be thoroughly revisited.
1: सीईसी के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर सीजेपी ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
19: भी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
20: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
1: विपक्ष ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है, तो ज्ञानेश कुमार के बचाव में बीजेपी उतरी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी।
21: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता है, आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
1: उधर एसआईआर को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में एसआईआर के फैसलों, दिशा निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की एसआईटी जांच की मांग की है। जबकि महाराष्ट्र में एसआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें एसआईआर की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे, इन पर लिखा था कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस बीच चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अखिलेश यादव ने अपने मिशन की शुरुआत रायबरेली से की, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली को ही क्यों चुना, अब इस पर राजनीति तेज हो गई।
1: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जनसमूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
22: अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
1: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का ये बयान क्यों आया? अखिलेश भी रायबरेली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बता रहे हैं।
23: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
1: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
24: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
23: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
24: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
23: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
1: पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, जिसके बीच अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान का आगाज करना कहीं न कहीं गठबंधन को एक बड़ा संदेश है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भले ही जुबानी तीर छोड़े जा रहे हों, लेकिन अखिलेश और राहुल चुप हैं, जो ये बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई दिए। योगी अमित शाह साथ में थे तो अमित शाह ने योगी के कामकाज की जमकर तारीफ की। हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यूपी में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे महत्वपूर्ण है।
5: यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
7: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
5: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था। 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने। आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना।
7: इस ट्रेड शो में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में बातचीत करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ट्रेड शो भी देखा। स्टॉल पर भी दोनों साथ जानकारी लेते दिखे। इस दौरान शाह ने यूपी में निवेश के माहौल की बात की, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
5: 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
7: अमित शाह योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है, जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
8: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत की वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था।
7: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
9: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
7: 2022 की तरह बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जहां बीजेपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल्स को बल प्रयोग करना पड़ा।
10: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज्य की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
2: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
10: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
3: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इससे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे, मत मिसलीड।
10: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
0: सूरत से आज हैरान करने वाली खबर आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। सूरत सिविल अस्पताल में 1.5 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की।
6: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
11: तो उसकी वो घर पे पता नहीं वो नहीं गया, रिसेप्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेजिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी रिसेप्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
6: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर पुलिस ने दावा किया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनीत मिनोचा का बेटा ही है। पहले इस हत्याकांड में व्यापारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की साजिश क्यों रची और इस मामले में अपनी पत्नी को कैसे फंसाया।
12: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया ट्विस्ट आया है, जहां बहू नहीं बल्कि बेटे के पिता के कत्ल में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
25: तो हमारे

0: तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें सुब्रत की भी भूमिका है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था, सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है। सुब्रत को ये भी हमें जानकारी कि इनके पिताजी भी पार्टी करते थे, ये भी जानकारी में आया था कि ये पिता की और बेटे की अनबन थी, पटरी निभाती थी आपस में। और ये भी जानकारी मिली थी कि इनके जो पैसा इनको मिलता है वो पैसा बहुत कम मिलता है, इनकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है।
1: सवाल उठता है कि क्यों? तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते थे, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। लेकिन अब जब उनका बेटा ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मरवा डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है कि उनके पिता विनीत मिनोचा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके ना ले आए, और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उनके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे।
2: जिनमें से मेरे थोड़ा शक भी होता था कभी बार कि मतलब कहीं और कोई आ ना जाए और किसी और को ना ले आओ, ले आने का मतलब ब्याह कहें।
1: सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, उसे बस ये अफसोस है कि पिता को चाकू से गोद कर मारा, क्योंकि डील तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी।
3: तो एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह, क्या आपको पछतावा है?
4: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया, मैं वैसे नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
1: लेकिन सवाल है कि क्या इस प्लान में सुब्रत की पत्नी शालू शामिल थी या नहीं? सुब्रत तो इनकार कर रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस ने अभी तक शालू को क्लीन चिट नहीं दी है। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
5: खबर यूएन की, जहां खाड़ी देशों में जारी तनाव को महसूस किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद जब नेतन्याहू भाषण के लिए पहुंचे तो कई देशों ने बायकॉट कर दिया, और ये एक दो देश नहीं बल्कि 77 देश थे।
6: यूएन के मंच पर जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे तो 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधिमंडल हॉल से बाहर निकल गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने कायरों को बाहर जाने वाला तंज कसा।
7: बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, इफ देयर आर एनी अदर मोरल कावर्ड्स who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
6: बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले झेल रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों से सबसे बड़ी राहत सऊदी अरब जैसे सुन्नी अरब देशों को मिली है। नेतन्याहू की स्पीच और इजराइल की गतिविधियां इस बार यूएन में ड्रामे से भरपूर दिखी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी। कल नेतन्याहू ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस डिवाइस दिखाया।
7: Regime is especially afraid when their people have this. When their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spells rather spends millions and billions of dollars censoring the internet.
6: इजरायली पीएम की इस स्पीच के बाद यूएन में उसके स्थायी राजदूत डेनी डेनन ईरान के राजनयिक के पास उसी स्टारलिंक डिवाइस को लेकर पहुंचे। उनसे कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। बहरहाल यूएन में खाड़ी देशों में जारी तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है, जहां अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद अब इसराइल के भाषण के दौरान बायकॉट की तस्वीरें आई हैं। आज तक फिरो।
5: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की दी सलाह। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर FIR। RJD सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोली, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल पीएम, पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत की बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट, यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका, झारखंड में एहतियात। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक क्लेश छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेंजी का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है? आइए दिखाते हैं कैसे SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: CEC के खिलाफ जेन जी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश पर।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुपी, ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस फॉर द डैमेज दैट इज टेकन प्लेस टू आवर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भरकर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: इलेक्शन कमीशन ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश पर या पार्टी के आधार।
1: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आयसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
10: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
11: That Ganesh Kumar has to resign, the SIR process has to stop, the entire EC has to be overhauled and that the voter lists of January 2025 have to be reinstated.
1: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
3: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
6: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया, मेरी मांग है कि बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहाँ फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमानत जब्त कराएगी मोदी से बनारस।
1: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
2: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोह का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
1: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
12: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
13: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
1: चंडीगढ़, शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
14: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
0: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाल दी गई। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग को लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए, जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोक देना चाहिए।
1: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
4: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
1: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी ना होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
15: ज्ञानेश कुमार विरुद्ध इम्पीचमेंट आना हुई एवं फिट केस फॉर इम्पीचमेंट जेखने सांविधानिक पद के अपव्यवहार करा हुई।
1: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
16: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं कि उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
1: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसएसआर प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
17: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
18: Should immediately resign and the whole SIR process should be thoroughly revisited.
1: सीईसी के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर सीजेपी ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
19: भी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
20: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
1: विपक्ष ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है, तो ज्ञानेश कुमार के बचाव में बीजेपी उतरी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी।
21: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
1: उधर एसआईआर को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में एसआईआर के फैसलों, दिशा निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की एसआईटी जांच की मांग की है, जबकि महाराष्ट्र में एसआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें एसआईआर की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे, इन पर लिखा था कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस बीच चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अखिलेश यादव ने अपने मिशन की शुरुआत रायबरेली से की, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली को ही क्यों चुना, अब इस पर राजनीति तेज हो गई।
1: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जनसमूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
22: अखिलेश जी, रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
1: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का ये बयान क्यों आया? अखिलेश भी रायबरेली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बता रहे हैं।
23: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
1: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
24: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
23: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
24: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
23: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
1: पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, जिसके बीच अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान का आगाज करना कहीं न कहीं गठबंधन को एक बड़ा संदेश है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भले ही जुबानी तीर छोड़े जा रहे हों, लेकिन अखिलेश और राहुल चुप हैं, जो ये बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई दिए। योगी अमित शाह साथ में थे तो अमित शाह ने योगी के कामकाज की जमकर तारीफ की। हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यूपी में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे महत्वपूर्ण है।
5: यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
7: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
5: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है।
7: इस ट्रेड शो में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में बातचीत करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ट्रेड शो भी देखा, स्टॉल पर भी दोनों साथ जानकारी लेते दिखे। इस दौरान शाह ने यूपी में निवेश के माहौल की बात की, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
5: 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
7: अमित शाह योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है, जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
8: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत के वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था।
7: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
9: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
7: 2022 की तरह बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक भी
0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जहां बीजेपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल्स को बल प्रयोग करना पड़ा।
10: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
2: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
10: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
3: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इससे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे, मत मिसलीड।
10: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
0: सूरत से आज हैरान करने वाली खबर आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। सूरत सिविल अस्पताल में 1.5 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की।
6: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
11: तो उसकी वो घर पे पता नहीं वो नहीं गया, रिसेप्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेजिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी रिसेप्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
6: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है, और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर पुलिस ने दावा किया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनीत मिनोचा का बेटा ही है। पहले इस हत्याकांड में व्यापारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की साजिश क्यों रची और इस मामले में अपनी पत्नी को कैसे फंसाया।
12: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया ट्विस्ट आया है, जहां बहू नहीं बल्कि बेटे के पिता के कत्ल में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
25: तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें
4: सुब्रत की भी भूमिका है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था, सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है। सुब्रत को ये भी हमें जानकारी कि इनके पिताजी भी पार्टी करते थे, ये भी जानकारी में आया था कि ये पिता की और बेटे की अनबन थी, पटरी निभाती थी आपस में। और ये भी जानकारी मिली थी कि इनके जो पैसा इनको मिलता है वो पैसा बहुत कम मिलता है, इनकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है।
1: सवाल उठता है कि क्यों? तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते थे, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। लेकिन अब जब उनका बेटा ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मरवा डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है कि उनके पिता विनीत मिनोचा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके ना ले आए, और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उनके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे। सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, उसे बस ये अफसोस है कि पिता को चाकुओं से गोद कर मारा, क्योंकि डील तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी।
13: तो एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह, क्या आपको पछतावा है?
14: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया, मैं वैसे नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
1: लेकिन सवाल है कि क्या इस प्लान में सुब्रत की पत्नी शालू शामिल थी या नहीं? सुब्रत तो इनकार कर रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस ने अभी तक शालू को क्लीन चिट नहीं दी है। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
0: खबर यूएन की, जहां खाड़ी देशों में जारी तनाव को महसूस किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद जब नेतन्याहू भाषण के लिए पहुंचे तो कई देशों ने बायकॉट कर दिया, और ये एक दो देश नहीं बल्कि 77 देश थे।
15: के मंच पर जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे तो 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधिमंडल हॉल से बाहर निकल गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने कायरों को बाहर जाने वाला तंज कसा।
16: बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, इफ देयर आर एनी अदर मोरल कावर्ड्स who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
15: बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले झेल रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड रहा है कि ईरान के खिलाफ इसराइल के हमलों से सबसे बड़ी राहत सऊदी अरब जैसे सुन्नी अरब देशों को मिली है। नेतन्याहू की स्पीच और इसराइल की गतिविधियां इस बार यूएन में ड्रामे से भरपूर दिखी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी। कल नेतन्याहू ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस डिवाइस दिखाया।
16: Iranian regime is especially afraid when their people have this. When their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spends millions and billions of dollars censoring the internet.
15: इजरायली पीएम की इस स्पीच के बाद यूएन में उसके स्थायी राजदूत डैनी डेनन ईरान के राजनयिक के पास उसी स्टारलिंग डिवाइस को लेकर पहुंचे। उनसे कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। बहरहाल यूएन में खाड़ी देशों में जारी तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है, जहां अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद अब इसराइल के भाषण के दौरान बायकॉट की तस्वीरें आई हैं। आज तक फिरो।
0: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की दी सलाह। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर FIR। RJD सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोली, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल PM, पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत की बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट, यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका, झारखंड में एहतियात। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक क्लेश छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेंजी का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: CEC के खिलाफ जेंजी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी। ज्ञानेश कुमार पर BJP बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। बनारस में मोदी को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस फॉर द डैमेज दैट इज टेकन प्लेस टू आवर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भर कर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: इलेक्शन कमीशन ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश।
1: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आयसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
10: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
11: That Ganesh Kumar has to resign, the SIR process has to stop, the entire EC has to be overhauled and that the voter lists of January 2025 have to be reinstated.
1: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
3: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
6: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया। मेरी मांग है बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहां फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमानत जब्त कराएगी मोदी से बनारस।
1: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
12: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोह का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
1: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
13: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
14: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
1: चंडीगढ़, शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
15: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
0: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाल दी गई। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग को लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए, जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोक देना चाहिए।
1: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
4: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
1: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी न होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
16: ज्ञानेश कुमार विरुद्ध इम्पीचमेंट आना हुई एवं फिट केस फॉर इम्पीचमेंट जेखने सांविधानिक पद के अपव्यवहार करा हुई।
1: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
17: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं, क्यों उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
1: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी एसएसआर प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
18: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
19: Should immediately resign and the whole SIR process should be thoroughly revisited.
1: सीईसी के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर सीजेपी ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा न होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
20: भी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
21: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
1: विपक्ष ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है, तो ज्ञानेश कुमार के बचाव में बीजेपी उतरी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी।
22: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता है, और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
1: उधर एसआईआर को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में एसआईआर के फैसलों, दिशा निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की एसआईटी जांच की मांग की है। जबकि महाराष्ट्र में एसआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें एसआईआर की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे, इन पर लिखा था कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस बीच चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अखिलेश यादव ने अपने मिशन की शुरुआत रायबरेली से की, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली को ही क्यों चुना, अब इस पर राजनीति तेज हो गई।
1: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जनसमूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
23: अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
1: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का ये बयान क्यों आया? अखिलेश भी रायबरेली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बता रहे हैं।
24: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
1: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
25: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
24: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त, और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
25: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
24: उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
1: पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, जिसके बीच अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान का आगाज करना कहीं न कहीं गठबंधन को एक बड़ा संदेश है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भले ही जुबानी तीर छोड़े जा रहे हों, लेकिन अखिलेश और राहुल चुप हैं, जो ये बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई दिए। योगी अमित शाह साथ में थे तो अमित शाह ने योगी के कामकाज की जमकर तारीफ की। हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यूपी में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे महत्वपूर्ण है।
2: यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
5: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
2: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है।
5: इस ट्रेड शो में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में बातचीत करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ट्रेड शो भी देखा। स्टॉल पर भी दोनों साथ जानकारी लेते दिखे। इस दौरान शाह ने यूपी में निवेश के माहौल की बात की, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
2: 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
5: अमित शाह योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है, जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
7: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत की वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था।
5: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
8: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
5: 2022 की तरह बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जहां बीजेपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल्स को बल प्रयोग करना पड़ा।
9: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
3: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
9: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
6: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इसे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे, मत मिसलीड।
9: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
0: सूरत से आज हैरान करने वाली खबर आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। सूरत सिविल अस्पताल में 1.5 महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की।
10: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
11: तो उसकी वो घर पे पता नहीं, वो नहीं गया, रिसेप्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी रिसेप्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
10: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर पुलिस ने दावा किया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनीत मिनोचा का बेटा ही है। पहले इस हत्याकांड में व्यापारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की साजिश क्यों रची और इस मामले में अपनी पत्नी को कैसे फंसाया।
12: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया ट्विस्ट आया है, जहां बहू नहीं बल्कि बेटे के पिता के कत्ल में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
13: तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें सुब्रत की भी भूमिका है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था, सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है, सुब्रत को ये भी हमें जानकारी कि इनके पिताजी भी पार्टी करते थे, ये भी जानकारी में आया था कि ये पिता की और बेटे की अनबन थी, पटरी निभाती

0: से बहुत कम मिलता है।
1: सवाल उठता है कि क्यों? तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते थे, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। लेकिन अब जब उनका बेटा ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मरवा डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है कि उनके पिता विनीत मिनोचा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके ना ले आए, और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उनके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे।
2: कई जगह संबंध थे, अवैध संबंध थे कई औरतों के साथ, जिनमें से शक भी होता था कई बार कि मतलब कहीं और कोई आ ना जाए और किसी और को ना ले आए। वो ले आने का मतलब ब्याह है।
1: सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, उसे बस ये अफसोस है कि पिता को चाकुओं से गोद कर मारा, क्योंकि डीड तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी।
3: तो एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह, क्या आपको पछतावा है?
4: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया, मैं वैसे नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
1: लेकिन सवाल है कि क्या इस प्लान में सुब्रत की पत्नी शालू शामिल थी या नहीं? सुब्रत तो इनकार कर रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस ने अभी तक शालू को क्लीन चिट नहीं दी है। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
5: खबर यूएन की, जहां खाड़ी देशों में जारी तनाव को महसूस किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद जब नेतन्याहू भाषण के लिए पहुंचे तो कई देशों ने बायकॉट कर दिया, और ये एक दो देश नहीं बल्कि 77 देश थे।
6: मंच पर जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे तो 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिनिधिमंडल हॉल से बाहर निकल गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने कायरो को बाहर जाने वाला तंज कसा।
7: बिफोर आई बिगिन, जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, इफ देयर आर एनी अदर मोरल कावर्ड्स हु हैवंट येट लेफ्ट दिस हॉल, प्लीज डू सो नाउ, थैंक यू वेरी मच।
6: बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले झेल रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों से सबसे बड़ी राहत सऊदी अरब जैसे सुन्नी अरब देशों को मिली है। नेतन्याहू की स्पीच और इजराइल की गतिविधियां इस बार यूएन में ड्रामे से भरपूर दिखी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी। कल नेतन्याहू ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस डिवाइस दिखाया।
7: When their people have this, when their people have this, this is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spends millions and billions of dollars censoring the internet.
6: इजरायली पीएम की इस स्पीच के बाद यूएन में उसके स्थायी राजदूत डैनी डेनन ईरान के राजनयिक के पास उसी स्टारलिंक डिवाइस को लेकर पहुंचे। उनसे कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। बहरहाल यूएन में खाड़ी देशों में जारी तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है, जहां अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद अब इसराइल के भाषण के दौरान बायकॉट की तस्वीरें आई हैं। आज तक फिरो,
5: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन, सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री जयशंकर का करारा जवाब, भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोले, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल पीएम, पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत की बारिश, उत्तराखंड में अलर्ट, यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका, झारखंड में एहतियात। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक क्लेश छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेंजी का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है? आइए दिखाते हैं कैसे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: सीईसी के खिलाफ जेंजी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी, ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबॉडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस फॉर द डैमेज दैट इज टेकन प्लेस टू आवर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भरकर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: इलेक्शन कमीशन ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश।
1: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आयसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
10: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
11: That Ganesh Kumar has to resign, the SIR process has to stop, the entire EC has to be overhauled and that the voter lists of January 2025 have to be reinstated.
1: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
3: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
6: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया। मेरी मांग है कि बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहां फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमानत जब्त कराएगी मोदी से बनारस।
1: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
2: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोह का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
1: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
12: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
13: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
1: चंडीगढ़, शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
14: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
0: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाल दी गई। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग को लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए, जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोक देना चाहिए।
1: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
4: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
1: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी न होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
15: ज्ञानेश कुमार विरुद्ध इम्पीचमेंट आना हुई एवं एटा फिट केस फॉर इम्पीचमेंट जेखने सांविधानिक पद के अपव्यवहार करा हुई।
1: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
16: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं, क्यों उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
1: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसएसआर प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
17: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
18: Should immediately resign and the whole SIR process सीईसी के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर सीजेपी ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा न होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
19: भी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
20: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
18: विपक्ष ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है, तो ज्ञानेश कुमार के बचाव में बीजेपी उतरी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी।
21: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता है, और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
18: उधर एसआईआर को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में एसआईआर के फैसलों, दिशा निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की एसआईटी जांच की मांग की है। जबकि महाराष्ट्र में एसआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें एसआईआर की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे, इन पर लिखा था कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस बीच चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अखिलेश यादव ने अपने मिशन की शुरुआत रायबरेली से की, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली को ही क्यों चुना, अब इस पर राजनीति तेज हो गई।
18: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जनसमूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
22: अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
18: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का ये बयान क्यों आया? अखिलेश भी रायबरेली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बता रहे हैं।
23: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
18: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
24: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
23: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त, और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
24: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
23: उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
18: पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, जिसके बीच अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान का आगाज करना कहीं न कहीं गठबंधन को एक बड़ा संदेश है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भले ही जुबानी तीर छोड़े जा रहे हों, लेकिन अखिलेश और राहुल चुप हैं, जो ये बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई दिए। योगी अमित शाह साथ में थे तो अमित शाह ने योगी के कामकाज की जमकर तारीफ की। हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यूपी में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे महत्वपूर्ण है।
5: यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
7: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
5: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है।
7: इस ट्रेड शो में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में बातचीत करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ट्रेड शो भी देखा। स्टॉल पर भी दोनों साथ जानकारी लेते दिखे। इस दौरान शाह ने यूपी में निवेश के माहौल की बात की, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
5: 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
7: अमित शाह योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है, जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
8: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत की वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था।
7: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
9: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
7: 2022 की तरफ बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जहां बीजेपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल्स को बल प्रयोग करना पड़ा।
10: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
2: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है। तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
10: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
3: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इसे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे, मत मिसलीड।
10: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
0: सूरत से आज हैरान करने वाली खबर आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। सूरत सिविल अस्पताल में 1.5 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की।
6: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
11: तो उसकी वो घर पे पता नहीं, वो नहीं गया, रिसेप्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी रिसेप्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
6: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है, और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: खबर यूएन की, जहां खाड़ी देशों में जारी तनाव को महसूस किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद जब नेतन्याहू भाषण के लिए पहुंचे तो कई देशों ने बायकॉट कर दिया, और ये एक दो देश नहीं बल्कि 77 देश थे।
6: यूएन के मंच पर जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे तो 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधिमंडल हॉल से बाहर निकल गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने कायरों को बाहर जाने वाला तंज कसा।
12: बिफोर आई बिगिन, जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, इफ देयर आर एनी अदर मोरल कावर्ड्स who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
6: बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले झेल रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों से सबसे बड़ी राहत सऊदी अरब जैसे सुन्नी अरब देशों को मिली है। नेतन्याहू की स्पीच और इजराइल की गतिविधियां इस बार यूएन में ड्रामे से भरपूर दिखी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी। कल नेतन्याहू ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस डिवाइस दिखाया।
12: Is especially afraid when their people have this. When their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spends millions and billions of dollars censoring the internet.
6: इजरायली पीएम की इस स्पीच के बाद यूएन में उसके स्थायी राजदूत डैनी डेनन ईरान के राजनयिक के पास उसी स्टारलिंक डिवाइस को लेकर पहुंचे। उनसे कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। बहरहाल यूएन में खाड़ी देशों में जारी तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है, जहां अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद अब इसराइल के भाषण के दौरान बायकॉट की तस्वीरें आई हैं। आज तक फिरो।
0: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की दी सलाह। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोली, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल पीएम, पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत की बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट, यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका, झारखंड में एहतियात। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक क्लेश छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेंजी का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: सीईसी के खिलाफ जेन जी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष रूप से संविधान और नियमकानून के आदेश पर है।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी। ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबॉडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस, फॉर द डैमेज दैट इज टेकन प्लेस टू आवर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भरकर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: इलेक्शन कमीशन ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष रूप से संविधान और नियमकानून के आदेश पर है।
1: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आयसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
10: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
11: That Ganesh Kumar has to resign, the SIR process has to stop, the entire EC has to be overhauled and that the voter lists of January 2025 have to be reinstated.
1: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
3: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
6: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया। मेरी मांग है कि बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहाँ पे फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमानत जब्त कराएगी मोदी बनारस।
1: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
2: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोह का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
1: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
12: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
13: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
1: चंडीगढ़, शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
14: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
0: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाल दी गई। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग को लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए, जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोक देना चाहिए।
1: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
4: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
1: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी ना होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
15: ज्ञानेश कुमार विरुद्ध इम्पीचमेंट आना হয়েছিল এবং এটা একটা ফিট কেস ফর ইমপিচমেন্ট যেখানে সাংবিধানিক পদকে অপব্যবহার করা হয়েছে।
1: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
16: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं कि उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
1: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी SSR प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
17: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
1: सीईसी के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर सीजेपी ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
18: भी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करे, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
19: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
1: विपक्ष ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है, तो ज्ञानेश कुमार के बचाव में बीजेपी उतरी है। जी हां, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी।
20: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
1: उधर एसआईआर को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में एसआईआर के फैसलों, दिशा निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की एसआईटी जांच की मांग की है, जबकि महाराष्ट्र में एसआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें एसआईआर की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे, इन पर लिखा था कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस बीच चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अखिलेश यादव ने अपने मिशन की शुरुआत रायबरेली से की, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली को ही क्यों चुना, अब इस पर राजनीति तेज हो गई।
1: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जनसमूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
21: अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
1: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का ये बयान क्यों आया? अखिलेश भी रायबरेली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बता रहे हैं।
22: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली यहाँ पर।
1: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
23: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
22: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
23: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
22: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
1: पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, जिसके बीच अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान का आगाज करना कहीं न कहीं गठबंधन को एक बड़ा संदेश है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भले ही जुबानी तीर छोड़े जा रहे हों, लेकिन अखिलेश और राहुल चुप हैं, जो ये बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई दिए। योगी अमित शाह साथ में थे तो अमित शाह ने योगी के कामकाज की जमकर तारीफ की। हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यूपी में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे महत्वपूर्ण है।
5: यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
7: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
5: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना।
7: इस ट्रेड शो में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में बातचीत करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ट्रेड शो भी देखा। स्टॉल पर भी दोनों साथ जानकारी लेते दिखे। इस दौरान शाह ने यूपी में निवेश के माहौल की बात की, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
5: 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
7: अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है, जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
8: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत के वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था।
7: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
9: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
7: 2022 की तरह बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक भी
0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जहां बीजेपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल्स को बल प्रयोग करना पड़ा।
24: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
2: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
24: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
3: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इससे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे, मत मिसली।
24: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
0: सूरत से आज हैरान करने वाली खबर आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। सूरत सिविल अस्पताल में 1.5 महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की।
6: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
10: तो उसकी वो घर पे पता नहीं, वो नहीं गया, इंटरसेक्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी डिसेक्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
6: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है, और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर पुलिस ने दावा किया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनीत मिनोचा का बेटा ही है। पहले इस हत्याकांड में व्यापारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की साजिश क्यों रची और इस मामले में अपनी पत्नी को कैसे फंसाया।
11: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया ट्विस्ट आया है, जहां बहू नहीं बल्कि बेटे के पिता के कत्ल में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
25: तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें सुब्रत की भी भूमिका है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में, कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था। सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है। सुब्रत को ये भी हमें जानकारी कि इनके पिताजी भी पार्टी करते थे, ये भी जानकारी में आया था कि ये पिता की और बेटे की अनबन थी, पटरी निभाती थी आपस में, और ये भी जानकारी मिली थी कि इनके जो पैसा इनको मिलता है वो पैसा बहुत कम मिलता है, इनकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है।
1: सवाल उठता है कि क्यों, तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते थे, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। लेकिन अब जब उनका बेटा ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मरवा डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है कि उनके पिता विनीत मिनोचा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके ना ले आए, और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उनके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे।
4: जिनमें से मेरे थोड़ा शक भी होता था कभी बार कि मतलब कहीं और कोई आ ना जाए और किसी और को ना ले आओ, ले आने का मतलब ले आ गए।
1: सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, उसे बस ये अफसोस है कि पिता को चाकुओं से गोद कर मारा, क्योंकि डील तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी।
12: तो एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह, क्या आपको पछतावा है?
13: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया, मैं वैसे नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
1: लेकिन सवाल है कि क्या इस प्लान में सुब्रत की पत्नी शालू शामिल थी या नहीं। सुब्रत तो इनकार कर रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस ने अभी तक शालू को क्लीन चिट नहीं दी है। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
0: खबर यूएन की, जहां खाड़ी देशों में जारी तनाव को महसूस किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद जब नेतन्याहू भाषण के लिए पहुंचे तो कई देशों ने बायकॉट कर दिया, और ये एक दो देश नहीं बल्कि 77 देश थे।
14: यूएन के मंच पर जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे तो 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधिमंडल हॉल से बाहर निकल गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने कायरों को बाहर जाने वाला तंज कसा।
15: बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, इफ देयर आर एनी अदर मोरल कावर्ड्स who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
14: बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले झेल रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों से सबसे बड़ी राहत सऊदी अरब जैसे सुन्नी अरब देशों को मिली है। नेतन्याहू की स्पीच और इजराइल की गतिविधियां इस बार यूएन में ड्रामे से भरपूर दिखी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी। कल नेतन्याहू ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस डिवाइस दिखाया।
15: Regime is especially afraid when their people have this. When their people have this. This is a communications device, Starlink.

0: इजरायली पीएम की इस स्पीच के बाद यूएन में उसके स्थायी राजदूत डैनी डेनन ईरान के राजनयिक के पास उसी स्टारलिंग डिवाइस को लेकर पहुंचे। उनसे कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। बहरहाल यूएन में खाड़ी देशों में जारी तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है, जहां अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद अब इसराइल के भाषण के दौरान बायकॉट की तस्वीरें आई हैं। आज तक फिरो।
1: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की दी सलाह। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर FIR। RJD सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोली, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल PM, पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत की बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट, यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका, झारखंड में एहतियात। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक क्लेश छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेंजी का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: CEC के खिलाफ जेंजी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश पर।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी। ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबॉडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस, फॉर द डैमेज दैट इज टेकन प्लेस टू आवर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भरकर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर

0: ऐसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी ऐसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
1: इलेक्शन कमीशन ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश पर या किसी रूलिंग पार्टी के आधार पर।
0: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर ऐसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
2: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी।
3: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाल दी गई। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग को लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए, जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोक देना चाहिए।
0: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
4: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
0: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी न होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
5: ज्ञानेश कुमार विरुद्ध इम्पीचमेंट आना हुई एवं एटा एक फिट केस फॉर इम्पीचमेंट जेखने सांविधानिक पद के अपव्यवहार करा हुई।
0: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
6: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं, क्यों उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
0: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी एसएसआर प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है, तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
7: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
8: Should immediately resign and the whole SIR process should be thoroughly revisited.
0: CEC के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर CJP ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
9: वे अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
10: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
0: विपक्ष ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है, तो ज्ञानेश कुमार के बचाव में बीजेपी उतरी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी।
11: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता है, और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
0: उधर SIR को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में SIR के फैसलों, दिशा निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की SIT जांच की मांग की है, जबकि महाराष्ट्र में SIR के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें एसआईआर की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे, इन पर लिखा था कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस बीच चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अखिलेश यादव ने अपने मिशन की शुरुआत रायबरेली से की, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली को ही क्यों चुना, अब इस पर राजनीति तेज हो गई।
0: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जनसमूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
12: अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
0: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का ये बयान क्यों आया? अखिलेश भी रायबरेली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बता रहे हैं।
13: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
0: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
14: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
15: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
14: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
15: उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
0: पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, जिसके बीच अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान का आगाज करना कहीं न कहीं गठबंधन को एक बड़ा संदेश है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भले ही जुबानी तीर छोड़े जा रहे हों, लेकिन अखिलेश और राहुल चुप हैं, जो ये बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई दिए। योगी अमित शाह साथ में थे तो अमित शाह ने योगी के कामकाज की जमकर तारीफ की। हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यूपी में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे महत्वपूर्ण है।
16: यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
17: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
16: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है।
17: इस ट्रेड शो में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में बातचीत करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ट्रेड शो भी देखा, स्टॉल पर भी दोनों साथ जानकारी लेते दिखे। इस दौरान शाह ने यूपी में निवेश के माहौल की बात की, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
16: 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
17: अमित शाह योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है, जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
18: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत की वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था।
17: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
19: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
17: 2022 की तरफ बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक ब्यूरो।
3: जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जहां बीजेपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल्स को बल प्रयोग करना पड़ा।
17: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
20: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
17: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
21: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इससे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे हैं। मत मिसलीड।
17: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
3: सूरत से आज हैरान करने वाली खबर आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। सूरत सिविल अस्पताल में 1.5 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की।
1: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
2: तो उसकी वो घर पे पता नहीं, वो नहीं गया, रिसेप्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी रिसेप्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
1: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है, और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
3: कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर पुलिस ने दावा किया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनीत मिनोचा का बेटा ही है। पहले इस हत्याकांड में व्यापारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की साजिश क्यों रची और इस मामले में अपनी पत्नी को कैसे फंसाया।
22: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया ट्विस्ट आया है, जहां बहू नहीं बल्कि बेटे के पिता के कत्ल में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
23: तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें सुब्रत की भी भूमिका है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में, कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था। सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है। सुब्रत को ये भी हमें जानकारी कि इनके पिताजी भी पार्टी करते थे, ये भी जानकारी में आया था कि ये पिता की और बेटे की अनबन थी, पटरी निभाती थी आपस में। और ये भी जानकारी मिली थी कि इनके जो पैसा इनको मिलता है वो पैसा बहुत कम मिलता है, इनकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है।
22: सवाल उठता है कि क्यों। तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते थे, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। लेकिन अब जब उनका बेटा ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है, तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मरवा डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है कि उनके पिता विनीत मिनोचा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके ना ले आए, और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उनके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे।
24: कई जगह संबंध थे, अवैध संबंध थे कई औरतों के साथ, जिनमें से शक होता था कई बार कि मतलब कहीं और कोई आ ना जाए और किसी और को ना ले आओ, ले आने का मतलब ब्याह पे।
22: सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, उसे बस ये अफसोस है कि पिता को चाकुओं से गोद कर मारा, क्योंकि डील तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी।
25: तो एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह, क्या आपको पछतावा है?
26: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया। मैं वैसे नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
0: लेकिन सवाल है कि क्या इस प्लान में सुब्रत की पत्नी शालू शामिल थी या नहीं। सुब्रत तो इनकार कर रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस ने अभी तक शालू को क्लीन चिट नहीं दी है। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
3: खबर यूएन की, जहां खाड़ी देशों में जारी तनाव को महसूस किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद जब नेतन्याहू भाषण के लिए पहुंचे तो कई देशों ने बायकॉट कर दिया, और ये एक दो देश नहीं बल्कि 77 देश थे।
1: यूएन के मंच पर जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे तो 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधिमंडल हॉल से बाहर निकल गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने कायरों को बाहर जाने वाला तंज कसा।
4: बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, इफ देयर आर एनी अदर मोरल कावर्ड्स who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले झेल रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों से सबसे बड़ी राहत सऊदी अरब जैसे सुन्नी अरब देशों को मिली है। नेतन्याहू की स्पीच और इजराइल की गतिविधियां इस बार यूएन में ड्रामे से भरपूर दिखी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी। कल नेतन्याहू ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस डिवाइस दिखाया।
4: Regime is especially afraid when their people have this. When their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spells rather spends millions and billions of dollars censoring the internet.
1: इजरायली पीएम की इस स्पीच के बाद यूएन में उसके स्थायी राजदूत डेनी डेनन ईरान के राजनयिक के पास उसी स्टारलिंग डिवाइस को लेकर पहुंचे। उनसे कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। बहरहाल यूएन में खाड़ी देशों में जारी तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है, जहां अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद अब इसराइल के भाषण के दौरान बायकॉट की तस्वीरें आई हैं। आज तक फिरो।
3: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की दी सलाह। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर FIR। RJD सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोली, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल PM, पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत की बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट, यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका, झारखंड में एहतियात। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक क्लेश छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कांग्रेस जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेंजी का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: CEC के खिलाफ जेंजी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान।
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी। ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबॉडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस फॉर द डैमेज दैट इज टेकन प्लेस टू आवर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भरकर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: इलेक्शन कमीशन ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश पर पार्टी के आधार।
1: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आयसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
10: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
11: That Ganesh Kumar has to resign, the SIR process has to stop, the entire EC has to be overhauled and that the voter lists of January 2025 have to be reinstated.
1: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
3: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
6: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया। मेरी मांग है बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहाँ पे फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमानत जब्त कराएगी मोदी से बनारस।
1: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
2: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोह का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
1: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
12: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
13: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
1: चंडीगढ़, शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
14: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
0: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाल दी गई। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग को लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए, जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोक देना चाहिए।
1: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
4: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
1: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी ना होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
15: ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध इम्पीचमेंट आना हुई एवं एटा एक फिट केस फॉर इम्पीचमेंट जेखने सांविधानिक पद के अपव्यवहार करा हुई छे।
1: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
16: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं, क्यों उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
1: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी SSR प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
17: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
18: Should immediately resign and the whole SIR process should be thoroughly revisited.
1: CEC के खिलाफ मचे हंगामे के बीच VIP के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर CJP ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
19: वे अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
20: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
1: विपक्ष ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है, तो ज्ञानेश कुमार के बचाव में BJP उतरी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के BJP अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी।
21: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए, सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
1: उधर SIR को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में SIR के फैसलों, दिशा निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की SIT जांच की मांग की है, जबकि महाराष्ट्र में SIR के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें SIR की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे, इन पर लिखा था कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस बीच चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो
0: खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अखिलेश यादव ने अपने मिशन की शुरुआत रायबरेली से की, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली को ही क्यों चुना, अब इस पर राजनीति तेज हो गई।
1: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जनसमूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
22: अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
1: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का ये बयान क्यों आया, अखिलेश भी रायबरेली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और BJP की बता रहे हैं।
23: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
1: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
24: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई, राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
23: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
24: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
23: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
1: पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, जिसके बीच अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान का आगाज करना कहीं न कहीं गठबंधन को एक बड़ा संदेश है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भले ही जुबानी तीर छोड़े जा रहे हों, लेकिन अखिलेश और राहुल चुप हैं, जो ये बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई दिए। योगी अमित शाह साथ में थे तो अमित शाह ने योगी के कामकाज की जमकर तारीफ की। हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यूपी में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे महत्वपूर्ण है।
5: यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
7: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
5: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना।
7: इस ट्रेड शो में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में बातचीत करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ट्रेड शो भी देखा। स्टॉल पर भी दोनों साथ जानकारी देते दिखे। इस दौरान शाह ने यूपी में निवेश के माहौल की बात की, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
5: 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
7: अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है, जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
8: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत की वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था।
7: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
9: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
7: 2022 की तरह बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जहां बीजेपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल्स को बल प्रयोग करना पड़ा।
10: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
2: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
10: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
3: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इससे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे, मत मिसलीड।
10: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
0: सूरत से आज हैरान करने वाली खबर आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। सूरत सिविल अस्पताल में 1.5 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की।
6: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
11: तो उसकी वो घर पे पता नहीं वो नहीं गया, डिसेक्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी डिसेक्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
6: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है, और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर पुलिस ने दावा किया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनीत मिनोचा का बेटा ही है। पहले इस हत्याकांड में व्यापारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की साजिश क्यों रची और इस मामले में अपनी पत्नी को कैसे फंसाया।
12: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया ट्विस्ट आया है, जहां बहू नहीं बल्कि बेटे के पिता के कत्ल में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
25: तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें सुब्रत की भी भूमिका है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में, कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था। सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है। सुब्रत को ये भी हमें जानकारी कि इनके पिताजी भी पार्टी करते थे, ये भी जानकारी में आया था कि ये पिता की और बेटे की अनबन थी, पटरी निभाती थी आपस में। और ये भी जानकारी मिली थी कि इनके जो पैसा इनको मिलता है वो पैसा बहुत कम मिलता है, इनकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है।
1: सवाल उठता है कि क्यों? तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते थे, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। लेकिन अब जब उनका बेटा ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मरवा डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है कि उनके पिता विनीत मिनोचा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके ना ले आए, और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उनके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे।
4: कई जगह संबंध थे, अवैध संबंध थे कई औरतों के साथ, जिनमें से शक भी होता था कभी बार कि मतलब कहीं और कोई आ ना जाए और किसी और को ना ले आओ, ले आने का मतलब ब्याह कहे।
1: सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, उसे बस ये अफसोस है कि पिता को चाकू से गोद कर मारा, क्योंकि डील तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी।
13: तो एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह, क्या आपको पछतावा है?
14: मुझे पिताजी को मरवाने का केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया, मैं वैसे नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
1: लेकिन सवाल है कि क्या इस प्लान में सुब्रत की पत्नी शालू शामिल थी या नहीं? सुब्रत तो इनकार कर रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस ने अभी तक शालू को क्लीन चिट नहीं दी है। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
0: खबर यूएन की, जहां खाड़ी देशों में जारी तनाव को महसूस किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद जब नेतन्याहू भाषण के लिए पहुंचे तो कई देशों ने बायकॉट कर दिया, और ये एक दो देश नहीं बल्कि 77 देश थे।
15: यूएन के मंच पर जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे तो 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधिमंडल हॉल से बाहर निकल गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने कायरों को बाहर जाने वाला तंज कसा।
16: बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, इफ देयर आर एनी अदर मोरल कावर्ड्स who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
15: बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले झेल रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों से सबसे बड़ी राहत सऊदी अरब जैसे सुन्नी अरब देशों को मिली है। नेतन्याहू की स्पीच और इजराइल की गतिविधियां इस बार यूएन में ड्रामे से भरपूर दिखी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी। कल नेतन्याहू ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस डिवाइस दिखाया।
16: Regime is especially afraid when their people have this. When their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spells rather spends millions and billions of dollars censoring the internet.
15: इजरायली पीएम की इस स्पीच के बाद यूएन में उसके स्थायी राजदूत डैनी डेनन ईरान के राजनयिक के पास उसी स्टारलिंग डिवाइस को लेकर पहुंचे, उनसे कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। बहरहाल यूएन में खाड़ी देशों में जारी तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है, जहां अमेरिका और ईरान की धमकियों के बाद अब इसराइल के भाषण के दौरान बायकॉट की तस्वीरें आई हैं। आज तक फिरो।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक क्लेश छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटों की डेडलाइन दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेनजी का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है? आइए दिखाते हैं कैसे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष की निशाने पर है।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
17: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
18: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
19: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: सीईसी के खिलाफ जेन जी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
20: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश
1: पर। चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी, ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी बनाम विपक्ष।
21: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया।
22: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
26: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबॉडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस फॉर द डैमेज दैट हैज टेकन प्लेस टू आवर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भरकर ले जाती है।
27: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ

0: दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
1: इलेक्शन कमीशन ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश पार्टी के आधार।
0: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आयसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
2: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
1: That Ganesh Kumar has to resign, the SIR process has to stop, the entire EC has to be overhauled and that the voter lists of January 2025 have to be reinstated.
0: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
1: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
3: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। बनारस में मोदी को जिताया, मेरी मांग है कि बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहाँ पे फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमानत जब्त कराएगी मोदी। बनारस
0: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
4: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोह का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
0: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
5: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
6: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
0: चंडीगढ़, शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
7: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
8: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।